0: मेरे पागलों, हमारी कल्पना थोड़ी अलग है। हम तुमको जो बनाना चाहते, तुम बनना चाह रहे बाबा के चेला, हम बनाना चाहते तुमको गुरु। तुम गुरु बनो, तुम्हारे अंदर कला उतरे, तुम्हारे अंदर ब्रह्म ज्ञान उतरे, तुम्हारे अंदर मोक्ष का रास्ता निकले, तुम्हारे अंदर आनंद निकले, तुम्हारे अंदर प्रसन्नता आए, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट आए। पर्चा बने या ना बने, खुशी का मना हो तुम्हारी, दुख जाए या ना जाए, सुख आ जाए। और छूट है बंदी, महासुख होई, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा। यही तो हमारे हनुमान जी कह रहे, तुम्हारा दुख जाए या ना जाए, सुख आ जाए, दुख अपने आप चला जाएगा। हमारी कल्पना थोड़ी अलग है, हमारी विचारधारा थोड़ी अलग है तुमको लेकर। तुम देखना चाहते चमत्कार, हम चाहते हैं तुम्हारे अंदर नमस्कार। तुम चाहते हो कि तुम्हारे मन की बात बता दे, हम थोड़ा अलग सोचते हैं तुम्हारे लिए। हम मन की बात बताने को लेकर के बहुत प्रयत्न नहीं करना चाह रहे, हम चाह रहे तुम्हारी मन की बात तुम खुद परमात्मा से बताओ। तुम्हारे मन में परमात्मा है, जियो आनंद में, लूटो आनंद। भले ही फकीर रहो, चेहरे पर मुस्कुराहट तो अमीरों जैसी रखो। तुम्हें देख करके लगे ही ना कि ये फक्कड़ है। और कितने अमीर नहीं है जिनके चेहरे लटके भय, और कितने फकीर नहीं है जो खिलखिलाकर हंस रहे। और क्या काम की अमीरी जो मनहीन हो जाए, मन दुखी हो जाए, प्रसन्नता गायब हो जाए, खुशी चली जाए। और यहां ऐसे कितने लोग नहीं बैठे होंगे जिनको कोई कमी नहीं है, पर एक ही कमी है, खुशी नहीं है। और कभी कभी देखना, बड़े बड़े अमीर खुश नहीं रह पाते, पर भीख मांगने वाला एक सिक्का में भी आनंद लूट लेता है। मेरे पागलो, हम चाहते हैं तुम्हारे अंदर वो खुशी जागे, वो आनंद जागे, कि जेब में भले ही फूटी कौड़ी ना हो, पर तुम्हारी बैठक तो सम्राटों जैसी हो। भले ही बुढ़ापा हो, पर आंखों में चमक ऐसी हो जैसे अभी अभी जन्म लिया। कभी हो सके तो ऐसे सोना कि पूरी दुनिया लुट गई, सब आदमी मर चुके, हम अकेले बचे। हमारे सोने का यही तरीका है। हम 6 बजे सुबह सोते हैं, पर पूरा सोते 3 घंटे सोएंगे, इतना गहरा सोएंगे कि मानो 18 घंटे सोकर उठे, 3 घंटे सोने में भी। और हम सोने का तरीका थोड़ा हमारा अलग है। जैसे ही कमरे में गए, थोड़ी न्यूज व्यूज पड़ी, बंद किया, बैठे थोड़ी देर, और ऐसे सिर पे हाथ रखा, बताया दिमाग को कि सुन भाई, दुनिया लुट चुकी है, पृथ्वी पे भूकंप आ चुका है 11 स्केलेटर का, और सब मर चुके हैं, और कल कोई काम है नहीं है, दरबार में आदमी ही नहीं बचे, तो दरबार लगाना नहीं है। अब जब सब लुट गए हैं, कोई आदमी है ही नहीं, तो खूब बेहतर सो ले। ये हम अपनी पर्सनल बात आज हमने बताई। लोग हमसे पूछते हैं कि आप कम सोने के बाद भी कैसे हंसते रहते। बस ऐसे सोते हैं, इतनी गहरी नींद आती है, इतनी गहरी कि जब सब लुट ही गया है तो काम ही बचा क्या। और सच भी है, कब क्या हो जाए कोई ठिकाना थोड़ी। यहीं बैठे हैं, गिर जाए गाज, आ जाए बाढ़। नेपाल में दिन में 12 बजे स्कूलों में बैठे ही तो थे लोग, कर ही रहे तो काम। उन्हें पता था कि बाढ़ आएगी, तपती दोपहरी थी, 12-2 बजे दिन में आ गई बाढ़। लाखों लोग बह गए, भागने तक का मौका ना मिला। देखे होंगे वीडियो तुमने, गिर जाए गाज, आ जाए बाढ़, फिर काहे की तुम्हारी अमीरी, काहे की तुम्हारी उपलब्धि, और काहे का तुम्हारा ज्ञान, सब धरा रह जाएगा। इसलिए मेरे पागलो, ना तुम बीते कल में जियो, ना आने वाले कल में जियो, जीना है तो इसी पल में जियो। अभी मैं जियो, जो होगा सो देखा जाएगा। आदमी पर ही तो मुसीबत आती है, आने दो, आएगी देखी जाएगी। तुम हमसे ही देखो कितने लोग नहीं लगे रहते हमारे लिए रोज, और लगे भी रहेंगे। हम आदमी ऐसे हैं कि कईयों के दिमाग हमने खराब कर रखे, और होने भी चाहिए क्योंकि हम सीधी बातें बोलते आदमी, हम बहुत सीधे हैं जलेबी जैसे, पर हमने कईयों की बर्बाद, और दुकानें बंद होनी भी चाहिए। अरे तुम हिंदू होकर हर वालों के चक्कर में पड़ो ही क्यों, अपने भगवान कम पड़ गए क्या? और हम तो चाहते हैं भारत का कोई भी व्यक्ति बाबाओं के चक्कर में ना पड़े, हमारे भी चक्कर में ना पड़े, हम तुम्हें खुद बाबा बनाना चाहते। बाबा का मतलब यह नहीं कि फकीर, बाबा का मतलब यह नहीं कि तुम कल ही लुगाई छोड़ के हमारे पास आ जाओ कि गुरु जी कह रहे थे बनने बाबा तो हम बन गए ना। बाबा का मतलब ही है जिसे कल की फिक्र नहीं है, बाबा का मतलब है जो चिंता नहीं चिंतन करता है, बाबा का मतलब है जो वासना में नहीं डूबा उपासना में डूबा, बाबा का मतलब है जो साधन में ना फंसे साधना में फंस जाए, बाबा का मतलब है जो विचार तो करे पर कार्य भी करे, बाबा का मतलब है कल की टेंशन में नहीं आज की अटेंशन में जिए। हम ऐसा बनाना चाहे। और मेरे पागलो अंतिम बात, ढोंग की जिंदगी जीने से बेहतर है ढंग की जिंदगी जिया जाए, ढोंग की जिंदगी जीने से बेहतर है ढंग की जिंदगी जिया जाए। इसलिए हमारी आदत है हम कमरे में पर रहे या कैमरे पर रहे, कमरे में रहे या कैमरे में रहे, एक जैसे रहते हैं अपनी मस्ती में रहते हैं। हमारे कारण अभी देखो तुम हमारी लकड़ी की खड़ाऊ को सोने की खड़ाऊ घोषित कर दी, देखो तो तुम लफड़े जलवे देखो जरा तुम हमारे, कहीं सोना पैर में पहना जाता है तुम्हें? हम इतने उल्लू लग रहे, लेकिन हमने कल ही एक चेला को बोला है कि बेटा तू सोने की खड़ाऊ ही मंगवा, अपन लगाएंगे आग, जलो बेटा। कई लोगों को सुलग गई आग, लगे हैं पोस्ट डालने, वीडियो बना रहे। एक ने तो वीडियो में भेजा ये बाबा है जो सोने की खड़ाऊ पहन रहा, इसे बाबा कहोगे? हमने उसको खबर भिजवाई, बहुत बड़ा भारत का प्रसिद्ध आदमी है, हमने उसको खबर भिजवाई कि हम सुनो तुम्हारे लिए ही नहीं, हम खुद कहते आई एम नॉट बाबा, तुम परेशान काहे होते भैया, और तो हमें बाबा बनना भी नहीं, और तुम्हारे लिए क्या बाबा बनेंगे, और तुम्हारे जैसे व्यक्ति यदि हमें प्रमाण पत्र दें कि हम बाबा हैं तो हम तो ना लेंगे, भले ही फकीर बन जाएं, ढाबा बन जाएंगे, पर तुम्हारे जैसे आदमी, अरे हम तुम्हारे लिए थोड़ी बने, हम तो बने हैं अपने हनुमान जी के लिए, हमें तुम्हें थोड़ी रिझाना, आओ तो वेलकम, नहीं आओ तो भीड़ कम। और सुनो ठटरी के बरे हरो, अभी तो सोने की बातें वायरल हुई, हम तो डायमंड की पहनेंगे। हाँ तुम समझ, वो एक व्यक्ति ने न्यूज पे कहा ये माया मोह छोड़ने वाले बाबा, माया मोह की बातें करने वाले देखो सोने की खड़ाऊ पहन रहे। बेटा तुमने हमारे प्रवचन सुने ही नहीं, हमने माया की बातें बोली नहीं क्योंकि हम खुद माया लेके प्रवचन करते, तो हमने पहली बात तो माया छोड़ने की बातें बोली नहीं, और दूसरी बात हमारे जैसे लोग ही ना पहनेंगे तो तुम्हारे जैसे जलने वाले पहनेंगे क्या? अपने अपने चेलों की बात, हमारे चेले चाहते हैं कि गुरु पहनो, उनकी श्रद्धा को ठेस ना पहुंचे। अब कोई ले आए बेचारे को धक्का नहीं लग, एक कल आए गांधीधाम से, उन्होंने कहा कि आज आप धोती पहनो, हमने कहा पहन लेंगे भैया, पर इसका मतलब ही नहीं कि कल तुम जींस पैंट ले आओ, जो मर्यादा है रहेंगे मर्यादा में, पर सुनो हम तुम्हारे हिसाब से ना रहेंगे, रहेंगे तो हम अपने बालाजी के हिसाब से, तुम्हें चाहे भला लगे चाहे बुरा लगे, आओ तो वेलकम, न आओ तो भीड़ कम।
1: पर हम तो भैया ऐसे ही रहे। तो आज हमने कहा है अपने चेला से कि सोने की खड़ाऊ मंगवाई जाए, जब बदनाम हो ही गए हैं तो कम से कम ढंग से बदनाम हो लें। भगवान ने चाहा तो कल तक आ जाएंगे, भले ही कर्जा लेना पड़े हमको, हाँ भले ही हम दो दिन बाद कर्जा वापस उसको चुका देंगे, वापस खड़ाऊ कर देंगे दो दिन बाद, पर अब जिद तो हमारी भी है सोने की ही पहने की। आग तो अपन लगाएंगे चाहे किराए पे हमें लेके आना पड़े, किराए। हमने यही कहा, एक दुकानदार से फोन लगा के हमने कहा, हमने कहा भैया सोने की खड़ाऊ है, बोले मैं तो नहीं है। हम कहा एक काम करो, सोना रखा हो तुम पे तो कुछ दिन के लिए हमें उधार दे दो भैया, किराए पे दे दो, हम चुका देंगे किराया। बोले आखिर ऐसी पड़ी क्या? हम कहा कुछ नहीं, कुछ लोगों को हमारी लकड़ी की खड़ाऊ सोने की लग गई, उनका भ्रम हमें दूर करके सत्य करना है।
0: मेरे पागलों,
1: एक बात तुम समझना सीखना, धर्म का मतलब जानना नहीं होता, धर्म का मतलब मानना होता और माना जाना चाहिए। हमारे तो हनुमान जी का रंग ही सोने का है। स्वर्ण शैलाभि देहम कंचन वरन विराज सुवेशा कानन कुंडल। अब जिसके आराध्य का रंग ही सोने का हो वो सोने की खड़ाऊ तो पहन ही सकता है भैया, इतना तो कर सकता है। जलाएंगे बेटा हम, खूब जलाएंगे, तुम जलो, तुम अपनी जलन बरकरार रखो, हम अपना जलवा बरकरार रखेंगे। तुम जलो बेटा, जितना जलना है जलो, वो समंदर खंगालने में लगे हैं, वो समंदर खंगालने में लगे हैं, जिनके खुद के लंगोट फटे हुए हैं वो हमारी पगड़ी उछालने में लगे हैं। जलो बेटा जलो जलो, कल सोने की आएंगी खड़ाऊ, आएंगी बेटा आएंगी, और तुम कल सोने पे बात फिर करोगे हम डायमंड की लाएंगे, भलाई नकली लाना पड़े हमें, पर बेटा हम लाएंगे, तुम्हें तो सोने ना देंगे चैन से। और सुनो बेटा वीडियो भी बनाएंगे, और सुनो अकाउंट दे दोगे तो तुम्हारे पर्सनल अकाउंट पे भिजवाएंगे हम कि ले बेटा देख, दिस इज गोल्ड ठटरी के भरे। पर हम तुमसे कहेंगे पागलो, ये ऐसे लोग तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हारी भक्ति पर लांछन लगाएंगे, आरोप लगाएंगे, तुम्हारा डीमोटिवेट करेंगे, तुम्हारे श्रद्धा और भक्ति को दबाएंगे। ये वो लोग हैं जो खुद तो खाते नहीं, दूसरों को भी खाने नहीं दे, खुद तो भक्ति करते नहीं, दूसरों को भी नहीं करने। तुम हमसे ही सीख लेना, हाथी चले बाजार। तो पड़ोसी यदि जलता हो तो किराए की कार ले जाना, पर जलाना बेटा जलाना, चाय में शक्कर ना हो पर बैठ के पीना दरवाजे पर ही, और सुनो सिप सिप करके पीना। और यदि घरवाली हो तो कहना शांति की अम्मा, पप्पू की बाई, शक्कर थोड़ा कम डाला करो, ऐसे जलाना। और बाहर बैठना कुर्सी पर, जब पड़ोसी बाहर छत पे हो पैर पे पैर रखना और फिर फुरकना, हो पानी पर पीना चाय जैसा, और जलाना और कहना पप्पू की बाई चीनी कम डाला करो ताकि बेचारे जल जाएं सामने वाले। और सुनो बीच बीच में ऐसी हरकतें करना, पड़ोसी जलने वाले हो दरवाजे पर खड़े हुए थोड़ा ऊपर देखना और थोड़ा हंस देना, वाह कुछ नहीं ऐसे ही, उसका दिमाग खराब हो जाएगा कि ऊपर है कौन, आधे तो इसी में परेशान रहेंगे। पर मेरे पागलो, हम ऐसी ही दुनिया बनाना चाहते हैं कि तुम जियो आनंद में। हमने एक बात बचपन से सीखी है, मंदिरों के बनाने से सनातन का भला नहीं होगा, मनुष्य के मन में मंदिर बनाए जाएंगे तो मनुष्य का भला हो, तो सनातन का भला हो। इसलिए हमने मंदिरों की दान पेटियों में आने वाली चढ़ोतरी से मंदिरों का निर्माण नहीं किया, गरीब बेटियों का विवाह करवाया। इसीलिए बागेश्वर धाम पर अब तक पूरी दुनिया में अस्पतालों में मंदिर थे, हमने नई कल्पना की, अस्पतालों में मंदिर नहीं, मंदिरों में अस्पताल होने चाहिए, जहां दवा और कृपा दोनों मिले, जहां कृपा भी हो दवा भी हो दोनों मिले, और दोनों ही प्रार्थना के द्वार हैं। मंदिर में भी प्रार्थना की जाती है, अस्पताल में भी जब कोई अपना मौत से और जीवन से लड़ रहा होता उस वक्त भी प्रार्थना की जाती है। इसलिए हमने मंदिर बनाने पर जोर नहीं दिया, अस्पताल बनाने पर जोर दिया। और मेरे पागलों, एक बात तुम भी मानो बहुत पक्की और सच्ची, कि जीवन को ऐसे जियो जो वास्तविक प्रैक्टिकल हो। धर्म का मतलब ही है प्रैक्टिकल जीना, वास्तविकता में जीना। पूजा हो पाए ना हो पाए चलेगा, पर किसी का दिल ना दुख जाए। तुम्हारी पूजा वरना बेकार है। हम एक बात हमेशा बोलते हैं, यहीं पर पिछले बार बोली थी, आदमी भी बड़ा गजब का है, प्याज खाता नहीं है ब्याज पूरा खाता है। हाँ, प्याज नहीं खाता ब्याज पूरा खाता है, ब्याज खाता है लोगों का भेजा खाता है, प्याज नहीं खाता भेजा खा लेता है। अब वो कहता कि हम धार्मिक। भैया धार्मिक का मतलब ही है हंसना और हंसाना, आनंद लेना और आनंद बांटना, ये धार्मिकता है। इसलिए आज की बात बहुत ध्यान रखना, अंतिम बात और सुनो, आज के बाद अभी से कल की प्रार्थना को हम दोहरा रहे, या तो आज के बाद तुम हनुमान जी को छोड़ दो या हनुमान जी पर छोड़ दो।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: गणेश उत्सव के इस पावन अवसर पर जीएनटी में भी गणपति पधारे और हमें यकीन है कि हमारे दर्शकों के घर पर भी गणपति बप्पा जरूर पधारे होंगे और हम चाहते हैं कि आप भी जीएनटी के गणपति उत्सव का हिस्सा बनिए। आप अपने अपने घर पधारे गजानन का वीडियो बनाइए और हमारे संग शेयर कीजिए, हम उन वीडियोस को दुनिया को दिखाएंगे। आप हमें अपने वीडियोस स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7303409922। ये नंबर कॉल करने के लिए नहीं है, ये नंबर सिर्फ और सिर्फ वीडियोस या तस्वीरें भेजने के लिए है। जब भी आप अपना वीडियो या फोटोज भेजें तो साथ में अपना नाम, अपने शहर, गांव और कस्बे का नाम जरूर लिखें।
7: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
2: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
3: गणपति उत्सव का आज 7वां दिन, गणपति पंडालों में गजानन के दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं श्रद्धालु। बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल पुणे में बापा की आरती में शामिल हुई। गुजरात के अंबाजी धाम में आस्था का महाउत्सव लगा, आज से भादरवी महामेले का शुभारंभ, करीब 40 लाख श्रद्धालुओं के आने का अनुमान।
9: मध्य प्रदेश के मेधावी छात्रों को बड़ी सौगात। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने 12वीं बोर्ड में 70% से ऊपर लाने वाले छात्रों को उपहार दिया। लगभग 7,500 छात्रों को लाभ। मेरठ में एयर शो का आज दूसरा और आखिरी दिन। सूर्य किरण एरोबैटिक टीम 9 हॉक एम के 132 विमान से आसमान में दिखाएगी हैरत अंगेज करतब। दिल्ली से जापान के लिए टीम इंडिया रवाना। आईजीआई एयरपोर्ट पर भव्य विदाई। 22 सितंबर को श्रेयस सैयर की कैप्टनसी में जापानी के खिलाफ एकमात्र T20 खेलेगी। इसके बाद एशियन गेम्स में हिस्सा लेगी। 2000 साल पुराना रोमन शहर बना लाइट आर्ट का कैनवस। क्रोएशिया में पोला में 16 जगहों पर रोशन हुई ऐतिहासिक इमारतें। फेस्टिवल ने बिखेरी रंगों की चमक।
7: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
9: मोतिहारी में गणपति उत्सव की धूम। गुजरी बाजार में कोलकाता की थीम पर बापा की 15 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई। गणपति बापा मोरिया के लगे जयकारे। गुजरी बाजार में 31 साल से हो रहा है भव्य आयोजन। गणेश जी के साथ भोलेनाथ और विश्वकर्मा के दर्शन। ऐतिहासिक पंच मंदिर में दिव्य स्वरूप में बापा विराजमान हुए। पंच मंदिर में सुबह शाम महाआरती और ढोल नगाड़ों की गूंज सुनने को मिल रही है। दर्शन के लिए उमड़ रही है बापा के भक्तों की भीड़। गजानन की आस्था और भक्ति में सराबोर है श्रद्धालु। शाम को लेजर लाइट शो और फूलों की सजावट से सजता है बाजार। भव्य कलाकारी को देखने के लिए पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। भगवान गणेश पांच गजानन के दिव्य स्वरूप में विराजमान। अनंत चतुर्दशी तक चलेगा 10 दिवसीय गणेश महोत्सव। 25 सितंबर को मनाई जाएगी अनंत चतुर्दशी। गणेशोत्सव के 10वें दिन होगा बप्पा का विसर्जन। सूरत के रांदेर में अनोखी थीम पर सजा गणेश पंडाल। भगवान गणेश के दर्शन के साथ अंगदान का संदेश बाहर। मानव शरीर के अलग अलग अंगों का सांकेतिक प्रदर्शन। सूरत की डोनेट लाइफ और वास्तव ग्रुप की अनूठी पहल। ऑर्गन डोनेशन सिटी थीम में अंग सौंपने की जीव झांकी। अंगों को तेजी से पहुंचाने वाले ग्रीन कॉरिडोर का अद्भुत प्रदर्शन। ब्रेन डेड और प्राकृतिक मृत्यु पर दान होने वाले अंगों की जानकारी। पुलिस वाहन एम्बुलेंस और हवाई जहाज की प्रतिकृतियों से सजावट। 1400 अंग दान और 1291 लोगों को मिला नया जीवन। भगवान गणेश की कथा को प्रथम अंग प्रत्यारोपण से जोड़ा गया। धार्मिक आस्था के साथ सामाजिक जागरूकता का संदेश दिया गया। धार्मिक आस्था के साथ जागरूकता का अनूठा केंद्र बना। पंडाल में दर्शन के लिए उमड़ रही है श्रद्धालुओं की भारी भीड़। बापा का उत्सव मनाओ अंगदान का दीप जलाओ विशेष स्लोगन रखा गया। सूरत में जन जन तक रहा अंगदान महादान का संदेश। पुणे में श्रीमंत भाऊ साहब रंगारी गणपति की भव्य और दिव्य सजावट की गई। गजानन की आस्था और भक्ति में पूरी तरह सराबोर नजर आ रहे हैं भक्त। गणेशोत्सव के दौरान पंडाल में उमड़ रहा भक्तों का सैलाब। बापा के अलौकिक स्वरूप पर भव्य दरबार को देखने के लिए लग रही हैं लंबी कतारें। गणपति बापा मौर्या के जयकारों से गूंज उठा पूरा परिसर। पुणे के इस प्रमुख गणेश पंडाल की भव्य सजावट देखकर लोग मंत्रमुग्ध हो रहे हैं। बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल ने किए बापा के दर्शन। श्रीमंत भाऊ साहेब रंगारी गणपति पंडाल में महाआरती में शामिल हुई आशीर्वाद दिया। दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट के लोगों ने धूमधाम से मनाया गणेश उत्सव। बीजेपी नेता सुनील देवधर के आवास पर गायक जुबीन गर्ग की स्मृति में रखा गया विशेष कार्यक्रम। तेलंगाना में गणेश चतुर्थी की शानदार जश्न मनाया गया। पलवंचा शहर के पंडालों में कुल 2,90,00,000 के नोटों से सजाई गई पापा की प्रतिमाएं। गजानन की एक प्रतिमा पर 1,40,00,000 के नोट से हुई भव्य सजावट। बापूजी नगर में कपूर समाज ने खास पूजा के साथ गणपति का अनोखा श्रृंगार किया। पंडाल के प्रवेश द्वार से लेकर गणपति के दरबार तक रंग बिरंगी मालाओं से सजाया गया पंडाल। अनोखी सजावट देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। भगवान गणेश की दूसरी प्रतिमा का 1,50,00,000 रूपये से हुआ श्रृंगार। टीम एकादंत यूथ ऑर्गेनाइजेशन ने खास सजावट की। स्थानीय व्यापारियों से चंदा इकट्ठा करके किया गया है ये श्रृंगार। आयोजकों के मुताबिक बैंकर्स ने भी सजावट के लिए नए नोट उपलब्ध कराकर मदद की है। हुगली में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के घर में विराजे गजानन। विसर्जन से पहले प्रहलाद जोशी ने पूजा की। पुणे के दगडू शेड गणपति पंडाल में उमड़ा आस्था का मेला। बापा को अर्पित किया गया 251 किलो का मोदक केक। अमरावती में बद्रीनाथ धाम मंदिर की थीम पर सजाया गया गणेश उत्सव पंडाल। दूर दूर से देखने के लिए पहुंच रहे हैं लोग। गणपति बप्पा के साथ भक्तों को बद्रीनाथ धाम के भी दर्शन हो रहे हैं। रंगीन लाइटों से सजाया गया है पंडाल। अमरावती में 41 सालों से अलग अलग थीम पर पंडालों को सजाने की परंपरा जारी है। रुक्मिणी गणेश उत्सव मंडल की ओर से होता है यह आयोजन। सूरत के मैदरपुरा इलाके में गणेश उत्सव का अनोखा रंग हॉरर की थीम पर तैयार किया गया है पंडाल। डरावनी फिल्म की तर्ज पर बनाया गया है पंडाल का माहौल। गजानन के दर्शन से पहले भक्तों को मिलता है अलग ही रोमांच। सूरत के मैदरपुरा में हर साल अलग अलग थीम पर पंडाल बनाने की परंपरा है। उत्सव को अलग स्वरूप देने की कोशिश की जाती है। मुंबई में 6 दिनों में 32,000 से ज्यादा बप्पा की प्रतिमाओं को विदाई दी गई है। बीएमसी ने जारी किया है आंकड़ा। मुंबई में अब तक 31,500 घरेलू गणपति प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। सार्वजनिक गणेश मंडलों को 650 मूर्तियों का विसर्जन किया गया। दिल्ली के श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश मंदिर में राधाअष्टमी पर्व की धूम देखने को मिली। द्वारका सेक्टर 13 में स्थित इस्कॉन मंदिर में धूमधाम से जन्मोत्सव मनाया गया। फूलों से राधा रानी का भव्य और दिव्य अभिषेक किया गया। उत्सव का मुख्य आकर्षण रहा विशेष बोट फेस्टिवल। बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। रंग बिरंगी सुगंधित फूलों और गुब्बारों से सजाया गया कुंड और नौका। फूलों से सजी नावों में विराजमान कराई गई भगवान राधा कृष्ण की प्रतिमाएं। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की मानसी गंगा लीला का हुआ सुंदर चित्रण। मंदिर में हुई विशेष राधा अष्टमी आरती। आस्था और भक्ति में श्रद्धालु सराबोर दिखे। श्रद्धालुओं ने इस अनूठे दर्शन का आनंद लिया। नाव उत्सव की भव्य और शानदार सजावट ने श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध किया। अद्भुत और अलौकिक नजारा दिखा। कोलकाता के ऐतिहासिक गौड़िये मठ बाग बाजार में श्री राधाअष्टमी महोत्सव का आयोजन किया गया। सीएम शुभेंदु अधिकारी राधा रानी के जन्मोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। अलवर के भतृहारी धाम में अनोखे मेले का भव्य समापन हुआ। मेले में ग्रामीण संस्कृति और परिवेश की अद्भुत झलक देखने को मिली। तो वहीं मूसल चक्की बेलन और ओखल रहे आकर्षण का केंद्र। कश्मीर में एलओसी के पास स्थित तीतवाल में धूमधाम से मनाया गया शारदा दिवस। शारदा पीठ यात्रा के वार्षिक उत्सव पर हुआ विशेष कार्यक्रम। क्रॉसिंग ब्रिज पर खड़े होकर भक्तों ने पार दर्शन की मांगी मन्नत। भक्तों ने किशन गंगा नदी किनारे आरती उतारी। तीतवाल में मां शारदा के गूंज जयकारे। कर्नाटक के सीएम डी के शिव कुमार चिकमंगलुरु के बोलेन होनूर रंभापुरी पीठ पहुंचे। पीठासीन देवता श्री वीरभद्र स्वामी के दर्शन पूजन किए। साधु संतों का भी आशीर्वाद लिया। मध्य प्रदेश के मेधावी छात्रों को सीएम डॉक्टर मोहन यादव की बड़ी सौगात। मुख्यमंत्री ने मेधावी छात्रों को बांटी ई स्कूटी। लगभग 7,500 छात्रों को लाभ मिला। कक्षा 12वीं के मेधावी छात्रों को ई स्कूटी का तोहफा मिला। बोर्ड परीक्षा में 70% या उससे ज्यादा अंक लाने वाले टॉपर्स को मिला इसका फायदा। आईआईटी रुड़की में वार्षिक दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। पहले दिन एनएसए अजय डोभाल ने किए 1,277 ग्रेजुएट मेधावी छात्रों को डिग्रियां बांटी और पदक दिए। आज दूसरे दिन पीजी और पीएचडी के स्टूडेंट्स को दी जाएंगी उपलब्धियां। कुल 2,701 मेधावी छात्रों को डिग्रियां सौंपी जाएंगी। सीएम भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद में साबरमती सेंट्रल जेल का दौरा किया। कैदियों के पुनर्वास और उनकी काउंसलिंग पर जोर दिया। उत्तर प्रदेश में 1,00,000 सरकारी नौकरी भर्ती का महाअभियान शुरू हुआ। पहले दिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने 818 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए। कार्यक्रम के दौरान नव नियुक्त उम्मीदवारों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने सेल्फी ली। फोटो सेशन में अपने नियुक्ति पत्र दिखाते हुए नजर आए चयनित अभ्यर्थी। जूनियर महिला हॉकी एशिया कप जीत कर लौटी भारतीय टीम के सदस्य मधु पटेल का भव्य स्वागत, फूल मालाओं और ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार वेलकम। बेटी की उपलब्धि से परिवार और गांव में खुशी का माहौल, मधु की उपलब्धि पर मां की आंखों में गर्व के आंसू आए। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ की रशिया की यात्रा, सेंट पीटर्सबर्ग में ऐतिहासिक तोप चलाने का विशेष सम्मान मिला। तमिलनाडु के मरीना बीच पर चलाया गया सफाई अभियान, गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने भी हिस्सा लिया। भारतीय नौसेना के आईएनएस त्रिशूल ने मिस्र के अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह का दौरा किया, मिस्र के नौसैनिक जहाज अल कदीर ने गर्मजोशी से स्वागत किया। आईएनएस त्रिशूल के क्रू ने चैटबी वॉर मेमोरियल में दोनों विश्व युद्धों के बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत के राजदूत ने आईएनएस त्रिशूल का दौरा किया और क्रू से मुलाकात की। पुलवामा के काकापोरा स्टेशन पर यात्रियों की सुरक्षा को लेकर जवानों का मॉक ड्रिल हुआ, चाक चौबंद इंतजाम की परखी गई। ड्रिल में पुलिसकर्मियों और दूसरे संबंधित एजेंसियों ने हिस्सा लिया। किसी भी स्थिति में निपटने के लिए सुरक्षा और इमरजेंसी रिस्पांस टीमों की तैयारी को परखना और उसे बेहतर बनाना लक्ष्य था। पंजाब के ऐतिहासिक फतेहगढ़ साहिब गुरुद्वारा पहुंची दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, टेका मत्था, प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने फतेहगढ़ साहिब से दूसरी नशा मुक्ति यात्रा को हरी झंडी दिखाई, नशे से प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। पंजाब में 4000 किलोमीटर का सफर तय करेगी ये यात्रा, 30 सितंबर को जालंधर में होगी समापन, गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे मौजूद। पंजाब के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को मान सरकार का बड़ा तोहफा, डीए में 8% की बढ़ोतरी, करीब 8 लाख कर्मचारी और पेंशनर्स को मिलेगा लाभ। त्योहारी सीजन से पहले कर्मचारियों को मिली सौगात, बढ़ा हुआ डीए 1 अक्टूबर से जारी होगा, 4-4% की 2 किश्तों में लाभ मिलेगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव के नतीजे घोषित हुए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की 3 सीटों पर ऐतिहासिक जीत हुई। नए डूसो अध्यक्ष बने यश डबास, सचिव पद पर रिया छाबड़ी ने दर्ज की जीत, सह सचिव पद पर लक्ष्य राज सिंह की शानदार विजय। उपाध्यक्ष पद पर निर्दलीय उम्मीदवार दीपांशु शौकीन की हुई जीत, उन्हें मिले 30,000 से ज्यादा वोट। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी की शानदार विजय पर सभी युवा साथियों को हार्दिक बधाई दी, पोस्ट में ज्ञानशील और एकता की जीत का करार दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने भी एबीवीपी की विजय उम्मीदवारों को शुभकामनाएं दी, पोस्ट में लिखा, ये जनादेश पूरे भारत के युवाओं के मन का प्रतिबिंब है। पटना के महावीर मंदिर पहुंचे एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा, एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया और प्रोड्यूसर एकता कपूर, आने वाली फिल्म द वन की कामयाबी की कामना की। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह फिर बने पेरेंट्स, दीपिका ने बेटी को जन्म दिया। अजय देवगन की मच अवेटेड फिल्म गोलमाल 5 की रिलीज डेट आउट हुई, 8 जनवरी 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है, मेकर्स ने शेयर किया नया पोस्टर। अल्लू अर्जुन की मेगा फिल्म राका का नया प्रमोशनल टीजर आउट हुआ, राका में 4 किरदारों में नजर आएंगे अल्लू अर्जुन। आलिया भट्ट की अपकमिंग फिल्म का नया गाना बावरी यूट्यूब पर हुआ जबरदस्त हिट, गाने में सोनम मबापात्रा की आवाज है, फिल्म डोंट बी शाय का है गाना। 2000 साल पुराना रोमन शहर बना लाइट आर्ट का कैनवस, क्रोएशिया में पुला में 16 जगहों पर रोशन हुई ऐतिहासिक इमारतें, लाइट फेस्टिवल ने बिखेरी रंगों की चमक। पुला में इतिहास और डिजिटल आर्ट का अनोखा मेल देखने को मिला, इमारतों पर शानदार प्रोजेक्शन दिखे, ड्रोन कैमरों ने कैद किया रोशनी का भव्य नजारा। इस साल अंतरिक्ष और ब्रह्मांड बना फेस्टिवल की थीम, कलाकारों ने रोशनी से पेश की अपनी कल्पनाएं, वॉइस ऑफ यूक्रेन ने पुरातत्व संग्रहालय हुआ रोशन। पुल के मुख्य रोमन चौक पर दिखी खास कलाकृतियां, तो वहीं अ बटरफ्लाई फ्लैपिंग इन इट्स विंग्स बनी खास प्रस्तुति, दर्शकों ने उत्साह दिखाया। जर्मनी, यूक्रेन, नॉर्वे और हांगकांग के कलाकारों ने रोशनी से रचा नया अनुभव, रात में ऐतिहासिक इमारतों पर बदलते रंगों ने बनाया माहौल।
7: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
10: क्या पीपल के पौधे की पूजा करने से शनि की पीड़ा कम हो जाती है? क्या पीपल के पौधे से संतान की प्राप्ति सरल हो जाती है? क्या पीपल की पत्तियां आपको रेगुलर धन दे सकती हैं? क्या है पीपल और शनि का कनेक्शन, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।

0: खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: गुड न्यूज टुडे लगातार दर्शकों से अपील कर रहा है कि आप भी जीएनटी पर मनाई जा रहे इस गणेश उत्सव से जुड़िए, और इसके लिए आपको करना बस इतना है कि अपने घर पर पधारे का जानन का वीडियो बनाइए और हमारे साथ शेयर कीजिए। हम उन वीडियोस को दुनिया को दिखाएंगे। हमारे पास लगातार दर्शक वीडियोस भेज भी रहे हैं। राजस्थान के कोटा से निखिल ने गणेश उत्सव की शानदार तस्वीरें हमारे साथ शेयर की है। घर में सजाए पंडाल में बप्पा विराजमान है। वीडियो में गणपति नंदी पर सवार है, बप्पा को फूलों की माला पहनाई गई है। गजानन का ये स्वरूप मनमोहक लग रहा है। वहीं दूसरी तस्वीर बप्पा की लुधियाना की अंजलि शर्मा ने भेजी है। बप्पा की भव्य और दिव्य प्रतिमा को घर में स्थापित किया गया है। बप्पा को फलों, ड्राई फ्रूट्स और भोग लगाया गया है। बप्पा की ये तस्वीर भक्तों को मंत्रमुग्ध कर रही है।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: दौड़ दौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। गणपति महोत्सव का पावन समय चल रहा है और इस समय में ज्यादातर लोग भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे दूर्वा यानी डूब की महिमा के बारे में और डूब के यानी दूर्वा के चमत्कारी प्रयोग के बारे में। अब जान लेते हैं दिनांक 20 सितंबर 2026 दिन रविवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। केतु विद्यमान है सिंह राशि में, सूर्य और बुध कन्या राशि में, शुक्र तुला राशि में, चंद्रमा धनु राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में, मंगल और बृहस्पति फिलहाल संचरण कर रहे हैं कर्क राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। हम आज बात कर रहे हैं दूर्वा की यानी डूब की। डूब का धार्मिक महत्व क्या है? देखिए, डूब या दूर्वा एक तरह की घास है और डूब यानी कि दूर्वा हिंदू परंपराओं के पूजा विधान में बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। माना जाता है कि डूब की उत्पत्ति भगवान विष्णु के रोम से हुई है। समुद्र मंथन के बाद अमृत कलश को सबसे पहले डूब पर ही रखा गया था, इसीलिए ऐसा मानते हैं कि डूब के अंदर भी अमरत्व के गुण आ गए हैं। सामान्यतः भगवान गणेश को डूब घास अर्पित करना विशेष लाभकारी माना जाता है और भगवान गणेश की पूजा में डूब घास का विशेष प्रयोग होता है। मात्र डूब अर्पित करने से भगवान गणेश की अपार कृपा जीवन में पाई जा सकती है। दूर्वा पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो हिंदू पूजा में आप देखेंगे सामान्यतः दूर्वा का यानी डूब घास का बहुतायत में प्रयोग किया जाता है। दूर्वा का औषधीय और वैज्ञानिक महत्व क्या है? डूब में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। डूब के पत्तों से जो रस निकलता है वो इतना महत्वपूर्ण है कि उसको हरा रक्त यानी ग्रीन ब्लड कहा जाता है। दूर्वा के प्रयोग से शरीर विषमुक्त होता है, पेट की समस्याएं और जलन दूर होती है। दूब के रस के नियमित प्रयोग से एनीमिया दूर हो जाता है और त्वचा की कांति, त्वचा की चमक बढ़ जाती है। दूब और हल्दी को मिला करके, पीस करके इसका लेप अगर शरीर पर लगाया जाए तो त्वचा संबंधी बीमारियां दूर हो जाती हैं। और दूब की कोंपल के प्रयोग से नशे की समस्या भी दूर हो जाती है। तो दूब का प्रयोग औषधि में और दवाइयों में भी किया जाता है और दूब का प्रयोग करने से शरीर का और त्वचा का स्वास्थ्य बेहतर रहता है। दूब पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब आपको बताते हैं कि दूब के अलग अलग प्रयोग से जीवन की बाधाएं कैसे दूर होंगी। अगर आप नियमित पूजा में भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें, दूब अर्पित करें, तो आपकी बाधाओं का नाश होगा। कोई काम लंबे समय से ना हो पा रहा हो तो नियमित दूर्वा अर्पित करने से काम की बाधाएं दूर हो जाएंगी और साथ ही साथ धन संपत्ति की प्राप्ति भी आपको होगी। भगवान गणेश को 3 टुकड़े या 5 टुकड़े या 3 गांठ या 5 गांठ दूर्वा अर्पित करनी चाहिए। अगर जीवन में कोई बड़ी रुकावट है, अगर जीवन में कोई बड़ी बाधा है तो दूर्वा की माला भगवान गणेश को अर्पित करनी चाहिए। ऐसा करने से हर तरह की रुकावट दूर होगी। और ऐसा माना जाता है कि पूजा में दूर्वा का प्रयोग करने से बुध नामक ग्रह की समस्याएं शांत होती हैं। अगर आपके घर में कच्ची जमीन है तो जमीन में दूर्वा लगाएं या गमले में दूर्वा लगाएं। ऐसा करने से शांति और समृद्धि दोनों प्राप्त होगी। नियमित रूप से भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और घर से निकलते समय उसमें से थोड़ी सी दूब अपने पास रख लें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी। जीवन में कितनी भी बड़ी रुकावट हो, कितनी भी बड़ी बाधा हो, लगातार 21 दिनों तक अगर आप भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें तो जीवन की बाधा, जीवन की रुकावट दूर होगी। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए क्या है लकी टिप। अगर आप शीघ्र विवाह करना चाहते हैं तो नियमित रूप से भगवान गणेश की पूजा पीले फूलों से करके प्रार्थना करिएगा, आपका विवाह शीघ्र होगा। अब जान लेते हैं दिनांक 20 सितंबर 2026 दिन रविवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल गणेश जी को लाल फूल अर्पित करिएगा और घर से निकलते समय उसमें से एक फूल अपने पास रख लीजिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की
2: एवरेस्ट दिखा ला, सही दिखा सही ला।
3: देश भर में गणपति उत्सव की रौनक, गणेश पूजा का आज सातवां दिन, पंडालों में श्रद्धालुओं का तांता लगा। गुजरात के सूरत में सजा बप्पा का अनोखा पंडाल, अंगदान को लेकर लोगों को किया जा रहा है जागरूक, पौराणिक झांकियों की भी झलक। गुजरात के अंबाजी धाम में आस्था का महाउत्सव लगा, आज से भादरवी महामेले का शुभारंभ हुआ, करीब 40 लाख श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। मेरठ में एयर शो का आज दूसरा और आखिरी दिन, सूर्य किरण एरोबैटिक टीम 9 हॉक MK-132 विमान से आसमान में दिखाएगी हैरतअंगेज करतब। रोमन शहर बना लाइट आर्ट का कैनवस टो एशिया के पुला में 16 जगहों पर रोशन हुई ऐतिहासिक इमारतें, फेस्टिवल ने बिखेरी रंगों की जमा।
2: एवरेस्ट दिखा ला, सही दिखा सही ला।
4: सोना खरीदना हो या बेचना हो, हमारा जॉय आलोकास द बेस्ट है।
5: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं गुड लक टुडे, और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में।
6: नमस्कार।
5: आपने बहुत से एस्ट्रोलॉजर से ये बात सुनी होगी कि शनिवार के दिन पीपल के पेड़ की पूजा उपासना करें, यहाँ तक कि मैंने बचपन से ही अपने घर में ये सुना था कि शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक पीपल के पेड़ पर चलाना चाहिए। तो आखिरकार पीपल और शनि का आपस में क्या कनेक्शन है, इसके बारे में आज के कार्यक्रम में हम पंडित जी से जानेंगे, लेकिन उससे पहले आज का गुड लक मंत्र क्या है वो जान लेते हैं।
6: अगर आप लगातार बीमारियों से परेशान रहते हैं, अगर लगातार आपके साथ बीमारियां रहती हैं, तो एक नियम बना लीजिए, किसी अस्पताल में धन का या दवाइयों का दान करिए, या किसी गरीब व्यक्ति का इलाज करवाइए, उसकी दवाइयां करवाइए। आप इलाज किसी और का करवाएंगे, बीमारियां आपकी दूर हो जाएंगी।
5: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं 20 सितंबर 2026 यानी कि दिन रविवार का पंचांग क्या है।
6: दिनांक 20 सितंबर 2026 दिन रविवार, तिथि है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, शाम के 5:51 तक। नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
5: तो चलिए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, और जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि आज हम पंडित जी से ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार भगवान शनिदेव और पीपल के पेड़, इन दोनों का आपस में क्या कनेक्शन है। लेकिन उससे पहले पंडित जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, और अक्सर ये सवाल मेरे जहन में भी आता रहा है कि पीपल के पेड़ को बहुत ज्यादा पूजनीय माना गया है, अक्सर लोग खंडित मूर्तियां भी रख देते हैं पीपल के पेड़ के नीचे, दीपक जलाने के लिए कहा जाता है, क्यों इतना महत्व है पीपल के पेड़ का?
6: जी देखिए, हिंदू परंपरा में हम केवल देवी देवताओं की पूजा नहीं करते, हम प्रकृति की पूजा भी करते हैं, नदी की, पर्वतों की, वृक्षों की, भूमि की, सबकी पूजा करते हैं। और वृक्षों में पीपल का वृक्ष हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता है। वैसे पीपल, बरगद, बेलपत्र, नीम, इनको बहुत पवित्र मानते हैं, लेकिन पीपल को सर्वाधिक पवित्र माना जाता है। मुख्य रूप से इसको भगवान विष्णु का स्वरूप या भगवान कृष्ण का स्वरूप मानते हैं। ऐसा माना जाता है कि इसके पत्तों में, इसकी टहनियों में, कोपलों में भी देवी देवताओं का वास होता है। कहा जाता है कि पीपल के मूल में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु और शीर्ष में शिव जी निवास करते हैं, और शाखाओं में, पत्तों में, फलों में सभी देवताओं का निवास माना जाता है। पीपल का वृक्ष प्राकृतिक और आध्यात्मिक रूप से इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, अश्वत्थ सर्व वृक्षाणाम, वृक्षों में मैं पीपल हूं। यानी पीपल के वृक्ष को ईश्वरीय दर्जा प्राप्त है, भगवान का स्वयं का स्वरूप पीपल के वृक्ष को माना जाता है।
5: तो चलिए बातचीत का जो सिलसिला है इसे यूं ही जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का राशिफल।
6: मेष राशि, करियर की स्थिति में आपके सुधार होगा, नौकरी में लाभ के योग बन रहे हैं, कोई शुभ सूचना आपको मिल सकती है। सूर्य देव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, मानसिक चिंता हो सकती है, धन खर्च से परेशानी होगी, पारिवारिक विवादों से बचाव करें, गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर की समस्या हल होगी, धन की स्थिति में सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सुनहरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
5: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, और एक ऐसा सवाल पंडित जी से पूछते हैं जो अमूमन सभी के जहन में है, वो है कि पीपल के वृक्ष से आखिरकार शनि का संबंध है क्या?
6: सामान्यतः जैसा सरगम ने कहा कि पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाते हैं, पीपल के वृक्ष में जल डालते हैं, बहुत सारे काम, बहुत सारे प्रयोग शनिवार के दिन किए जाते हैं। तो पीपल के वृक्ष से शनि का क्या संबंध है? देखिए, पीपल के वृक्ष के गुण शनि से काफी मिलते जुलते हैं। सबका कल्याण करना, सबकी सहायता करना, सबको ऊर्जा और जीवन प्रदान करना। इसके अलावा पीपल को शनि के ईष्ट देव श्री कृष्ण का स्वरूप भी माना जाता है। पीपल से संबंध रखने वाले पिप्पलाद मुनि ने शनि को दंड दिया था। तब से माना जाता है कि पीपल के वृक्ष की पूजा करने से शनि की पीड़ा शांत होती है और पीपल के वृक्ष की उपासना किसी भी रूप में करने से शनि कृपा करते हैं। देखिए, इसके पीछे का विज्ञान ये है कि अगर आप पीपल के वृक्ष की पूजा करेंगे, पीपल के वृक्ष की श्रद्धा करेंगे, तो दरअसल आप पीपल काटेंगे नहीं, पीपल लगाएंगे। पीपल बहुत सारा ऑक्सीजन देता है, मानव के जीवन के लिए जरूरी है, इसीलिए उसके वैज्ञानिक महत्व को समझते हुए उसे धर्म से और ग्रह से जोड़ दिया गया है।
5: तो पीपल के पेड़ पर हमारी जो चर्चा है यूं ही जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं कर्क सिंह और कन्या राशि का राशिफल।
6: कर्क राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, करियर में बड़ा अवसर मिलेगा, संतान की समस्या हल होगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संतान पक्ष से सहयोग मिलेगा, काम की अधिकता रहेगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, जल्दबाजी में निर्णय ना लें, बड़ों की सलाह से लाभ होगा, गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
5: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब कार्यक्रम में समय हो गया है आपका सवाल का, तो पंडित जी से ही जान लेते हैं आज का पहला सवाल वो किसका ले रही है।
6: जी, आज का पहला प्रश्न विश्वमोहन जी ने हमें लिखा है और विश्वमोहन जी हमें भुवनेश्वर उड़ीसा से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 13 मार्च 1975, जन्म का समय शाम के 7 बजे, जन्म का स्थान है कोलकाता। विश्वमोहन जी कह रहे हैं कि मैं नौकरी बदलना चाहता हूं, काफी समय से मेरी नौकरी नहीं बदल पा रही है, तो कब तक मेरी नौकरी बदलेगी और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। विश्वमोहन जी, अभी नौकरी बदलने की कोई जरूरत नहीं है, अभी आपकी नौकरी बिल्कुल ठीक चल रही है और आने वाले समय में आपका नौकरी में प्रमोशन भी होगा, तो कृपा करके नौकरी बदलने का प्रयास अभी ना करें। जून 2027 के बाद अगर आवश्यकता लगेगी तो नौकरी बदलिएगा, अन्यथा इसी नौकरी में आपकी बेहतर उन्नति दिखाई दे रही है। आपका करियर और स्वास्थ्य बेहतर रहे इसके लिए एक ओपल बनवा करके पहन लीजिए, 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल धारण करें, सुबह और शाम दोनों समय एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा।
5: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब पंडित जी अगला सवाल किसका ले रहे हैं उसके बारे में उनसे जानकारी ले लेते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को याद दिला दूं कि अगर आप हमारे ये कार्यक्रम रोज देखते हैं, इसे काफी पसंद करते हैं और कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हमारी ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है। इस ईमेल आईडी पर आप हमें अपने प्रश्न लिख करके भेज सकते हैं, साथ में अपनी बर्थ डिटेल्स लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए पंडित जी से ही जान लेते हैं अगला सवाल। पंडित जी, आप किसका ले रहे हैं उसके बारे में बताएं।
6: अगला प्रश्न सोनिया जी ने हमें लिखा है, प्रयागराज से लिखती हैं। 14 अप्रैल 1993 का जन्म है, दोपहर में 1:55 प्रयागराज उत्तर प्रदेश। सोनिया कह रही हैं कि मेरा विवाह अब तक नहीं हो पाया है, तो मेरे विवाह होने की क्या संभावना है और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। सोनिया, आपकी कुंडली के हिसाब से अभी भी विवाह होने में थोड़ा समय है आपके। 2027 के सेकेंड हाफ में, मई 2027 से दिसंबर 2027 के समय में आपका विवाह होगा और प्रयागराज के आसपास या प्रयागराज में ही होने की संभावना आपकी कुंडली में बनती है। आपका विवाह शीघ्र हो, बेहतर हो, इसके लिए एक मोती बनवा के पहन लें, 10-12 रत्ती की मोती, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती धारण करें, रोज सुबह 108 बार ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का जप करें तो आपको लाभ होगा।
5: तो पीपल की पूजा करने से शनि की कौन कौन सी समस्याएं हैं जिसमें लाभ हो सकता है, ये पंडित जी से जानते हैं।
6: देखिए, आपको बता दिया कि पीपल के वृक्ष को शनि कृपा के लिए पूजते हैं और शनि की समस्याओं को दूर करने के लिए पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती है। तो अगर आप नियमित रूप से पीपल के वृक्ष की पूजा करें तो शनि की किन किन समस्याओं में लाभ होगा। अगर अल्प आयु का योग है तो वो योग कमजोर होता है, पीपल का वृक्ष लगाने से और उसकी पूजा करने से आयु लंबी होती है। अगर रोग और लंबी बीमारी का योग है तो ये भी दूर हो जाता है, निश्चित रूप से व्यक्ति के स्वास्थ्य में सुधार होता है। पीपल के पौधे लगाने से, पीपल के वृक्ष की पूजा करने से वंश वृद्धि होती है और संतान की समस्याओं का निवारण होता है। पीपल का पौधा अगर आप लगाएं और इसका संरक्षण करें, इसका देखभाल करें, तो शनि की दशाओं का नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। पीपल के वृक्ष की पूजा करने के दो तरीके हैं। प्रातः काल सूर्योदय के पहले पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती है और संध्या काल सूर्यास्त के बाद पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती है। अगर आप दोनों में से किसी तरीके से या दोनों तरीके से पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं तो शनि की अनुकूलता मिलेगी, शनि की दशाओं का नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर असर नहीं डालेगा।
5: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब पंडित जी से जान लेते हैं तुला वृषभ और धनु राशि का राशिफल क्या है।
6: तुला राशि, स्वास्थ्य की स्थिति में आपके सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, लाभकारी यात्रा हो सकती है, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, करियर की समस्याएं हल होंगी, धन की स्थिति में सुधार होगा, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, सूर्य देव को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, धन लाभ के योग हैं, नौकरी में कुछ बदलाव होगा, स्थान परिवर्तन हो सकता है, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
5: तो अगर संतान नहीं हो रही है, संतान प्राप्ति के लिए पीपल और शनि का आखिरकार क्या प्रयोग करने से आपको लाभ होगा, इसके बारे में पंडित जी से जानते हैं।
6: अगर आप काफी प्रयास कर रहे हैं, काफी समय बीत गया है और संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो पीपल के साथ शनिदेव के लिए क्या प्रयोग करेंगे? एक पीपल का पौधा किसी सार्वजनिक स्थान पर लगवाइएगा, उसमें जल डालिएगा और नियमित रूप से उसकी रक्षा करिएगा। हर शनिवार को उसी पीपल के पौधे के पास या किसी पीपल के वृक्ष के पास कम से कम 108 बार शनि मंत्र का जप करिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो संतान की प्राप्ति आपके लिए आसान होगी।
5: तो शनि पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए आखिरकार पीपल के पेड़ की किस तरीके से पूजा उपासना की जा सकती है, किस तरीके से उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, आइए उसके बारे में जानते हैं।
6: अगर शनि की महादशा है, अंतरदशा है, साढ़े साती है, ढैया है और उसकी वजह से शनि से आपको पीड़ा मिल रही है तो क्या करेंगे? पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक हर शनिवार की शाम को जलाएं। इसके बाद वृक्ष की 9 बार या 3 बार परिक्रमा करें और परिक्रमा के बाद ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का वहीं पर या घर पर आकर के कम से कम 1, 3 या 11 माला जप करिएगा। अगर ऐसा आप निरंतर करते जाएं तो शनि की पीड़ा से आपको जल्दी से जल्दी छुटकारा मिल जाएगा।
5: तो अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, ऐसे में नियमित धन लाभ के लिए पीपल के पेड़ से जुड़े क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं, ये पंडित जी से जानते हैं।
6: अगर आप चाहते हैं कि आपके उपास रेगुलर पैसा आए, धन का अभाव ना हो, धन की मुश्किल ना हो तो क्या करेंगे? शनिवार को किसी भी समय दिन में सूर्यास्त के पहले पीपल के पेड़ के नीचे से उसका एक पत्ता उठा लाइएगा, तोड़िएगा नहीं, जो गिरा हुआ पत्ता होगा वो उठाइएगा, उस पर सुगंध लगा लीजिएगा, दोनों तरफ कोई भी सुगंध लगा लें और पत्ते को अपने पर्स में रख लीजिएगा। 1 महीने तक इस पत्ते को अपने पर्स में रखे रहें और हर महीने पत्ते को बदल दें। और ज्यादा लाभ चाहते हैं तो हर सप्ताह में पुराने पत्ते को बदलकर नया पत्ता सुगंध लगाकर रख लीजिएगा। ऐसा करने से आपके पास निरंतर धन आता रहेगा।
5: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जानते हैं मकर कुंभ और मीन राशि का राशिफल।
6: मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, मानसिक चिंता हो सकती है, वाहन सावधानी से चलाएं, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, धन की समस्या हल होगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे। सूर्य देव को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर की समस्याएं दूर होंगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सिल्वर और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
5: तो चलिए अब समय हो गया है पंडित जी से जानने का कि आज का अगला यानी कि तीसरा सवाल वो किसका ले रहे हैं।
6: जी अगला प्रश्न विशाखा जी ने हमें लिखा है और विशाखा जी इंदौर मध्य प्रदेश से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 3 फरवरी 1982। जन्म का समय दोपहर के 2:50। जन्म स्थान है इंदौर। विशाखा जी कह रही हैं कि काफी समय से अपने पति के साथ मिल करके एक प्रॉपर्टी लेना चाहती हैं लेकिन उसमें बार बार अड़चने आ रही हैं, तो क्या उपाय करें और प्रॉपर्टी कब तक मिल सकेगी। विशाखा जी अभी थोड़ा सा इंतजार करिए, अप्रैल 2027 से दिसंबर 2027 का जो समय है इस समय में आप प्रॉपर्टी खरीद पाएंगी। जमीन खरीद कर मकान बनवाने का प्रयास मत करिए, बना बनाया मकान या बना बनाया फ्लैट खरीदने का प्रयास करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। सुबह और शाम दोनों समय एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें और मंगलवार को गुड़ का या लाल फल का अगर आप दान करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
5: तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आज का अंतिम सवाल भी ले लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दूं कि अगर आप भी पंडित जी से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हमारी ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है, इस पर आप हमें अपना प्रश्न लिख करके भेज सकते हैं। तो पंडित जी आज का अंतिम सवाल आप किसका ले रहे हैं उसके बारे में बताएं।
6: आज का अंतिम प्रश्न सुनील कुमार जी ने हमें लिखा है और सुनील कुमार जी हमें मेल लिखते हैं नागपुर महाराष्ट्र से। इनकी जन्म की तारीख है 1 मई 1970। जन्म का समय सुबह के 8:35 और जन्म का स्थान है नागपुर। ये कह रहे हैं कि मैं अपनी पुरानी प्रॉपर्टी बेच करके किसी और जगह शिफ्ट होना चाहता हूं, तो क्या ऐसा करना मेरे लिए बेहतर होगा और भविष्य मेरा आने वाले समय में कैसा रहेगा। सुनील जी आपकी कुंडली के हिसाब से अप्रैल 2027 के बाद आपका स्थान परिवर्तन दिख रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि आप अपनी पुरानी प्रॉपर्टी बेच करके नागपुर से पूरी तरह अपना स्थान परिवर्तन अगले साल कर लें। और स्थान परिवर्तन करना आपके लिए कुल मिला जुला के अच्छा रहेगा, उसमें किसी तरह के चिंता की आवश्यकता दिखाई नहीं दे रही है। एक पन्ना बनवा करके पहन लें, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहने, रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप करिएगा, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
5: तो पंडित जी एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। बहुत सी बार ऐसा हुआ है और ये मेरा निजी अनुभव भी रहा है कि घर में अचानक एकाएक ना दीवार में से पीपल का पौधा निकलने लगता है, तो अब लोगों को ये समझ में नहीं आता शुभ है अशुभ है, उसे काटे या ना काटे, क्योंकि देवताओं का वास होता है पीपल के पेड़ में, तो बड़ा डर लगता है। ऐसे में हमारे दर्शकों को बताएं कि इस परिस्थिति में क्या कुछ किया जा सकता है।
6: जी देखिए, पीपल का पौधा सामान्यतः लगाया नहीं जाता, बेसिकली चिड़ियों के माध्यम से, कौवे के माध्यम से उसके बीच जगह जगह घूमते हैं, दीवार के किनारे, पिलर के नीचे, सड़क के किनारे अपने आप पीपल का पौधा उग आता है। अब अगर घर की दीवार पर पीपल का पौधा निकल गया, घर की छत में क्रैक था, वहां पीपल का पौधा निकल आया, तो लोग घबरा जाते हैं क्योंकि तोड़ेंगे तो है नहीं, काटेंगे भी नहीं, लोग डरते हैं। और अगर नहीं काटेंगे, नहीं हटाएंगे तो दीवार गिरेगी, छत टूटेगी, तो क्या करना चाहिए? देखिए, ऐसी स्थिति में पीपल का पौधा जब छोटा रहे उस पर निगाह बनाए रखिए, और जैसे ही कोई छोटा पीपल का पौधा छोटे रूप में उग जाता है, निकल आता है, तो जब वो छोटा है उसी समय उसे सावधानी से दीवार से या छत पर से या किनारे से निकाल लीजिए, और उसको निकाल कर ले जाकर पार्क में या सड़क के किनारे सार्वजनिक स्थान पर सावधानी पूर्वक लगा दीजिए। ऐसा करने से उसका दोष नहीं लगेगा, और अगर आप पार्क में या सार्वजनिक स्थान पर लगा देंगे तो आपको फायदा भी होगा। लेकिन एक सिचुएशन ये होती है कि पीपल का पौधा निकला, आपने ध्यान नहीं दिया, वो बड़ा हो गया, मोटा हो गया, अब उसको निकाल तो सकते नहीं क्योंकि निकालेंगे तो दीवार टूटेगी और उतना बड़ा पौधा या पेड़ कहीं लगेगा नहीं। ऐसे में शास्त्र का नियम ये है कि पहले आपको पीपल के वृक्ष से अनुमति लेनी होगी, बाकायदा उसके लिए पूजा करनी होगी, तब आप उस मोटे पीपल को वहां से हटा सकते हैं जो आपके दीवार में या छत पर निकल आया है। तो उसको अनुमति लेके पूजा और अनुष्ठान के साथ हटाइए, और उसके बदले में कम से कम 4-5 पीपल के पौधे सार्वजनिक स्थान पर लगवा दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो पीपल का पौधा या पेड़ हटाने का दोष आपको परेशान नहीं करेगा। लेकिन मान लिया आप प्लॉट बनवा रहे, मकान बनवा रहे, प्लॉट के किनारे एक बड़ा सा पीपल का पेड़ है, मजबूरी ना हो तो पीपल का पेड़ केवल अपने स्वार्थ के लिए मत कटवाइएगा। मजबूरी की बात दूसरी है, लेकिन अगर केवल स्वार्थ के लिए, केवल डिजाइन और डेकोरेशन के लिए अगर आप पीपल का पेड़ कटवाएंगे तो इसका दुष्प्रभाव आपके परिवार को, आपके संतान को झेलना पड़ेगा।
5: तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जिनका जन्मदिन यानी कि बर्थडे 20 सितंबर 2026 को है, पहले तो आप सभी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ से, हैप्पी बर्थडे। अब जल्दी से पंडित जी से जान लेते हैं कि आप लोगों का आने वाला जो साल है वो कैसा रहने वाला है।
6: जिन लोगों का जन्मदिन 20 सितंबर को है उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला वर्ष आर्थिक स्थिति के लिए उत्तम रहेगा, करियर और स्थान में परिवर्तन हो सकता है, अविवाहितों का विवाह इस साल हो सकता है। इस साल के खास तौर से अंतिम समय में स्वास्थ्य में थोड़ा सा उतार चढ़ाव रह सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर सूर्य देव की उपासना करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
5: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं कि आखिरकार आज की जिज्ञासा क्या है और उस जिज्ञासा का समाधान क्या है।
6: बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि शनि देव के मंत्र का, शनि चालीसा का पाठ घर में नहीं करना चाहिए। क्या ऐसा है? देखिए, शनि देव के मंत्र का जप आप कहीं भी कर सकते हैं, घर हो या बाहर हो, सिर्फ पवित्रता और श्रद्धा के साथ मंत्र का जप करना चाहिए। घर में भी मंत्र पढ़ सकते हैं, घर में भी चालीसा कर सकते हैं, लेकिन घर में शनि देव का चित्र या मूर्ति आपको स्थापित नहीं करनी चाहिए।
5: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं 20 सितंबर 2026 यानी कि दिन रविवार का शुभ पहर कौन सा है।
6: दिन रविवार शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में एक बार सुंदर कांड का पाठ करिएगा। ऐसा करने से करियर की तमाम बाधाएं दूर होंगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही 20 सितंबर रविवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में।
5: और अब समय हो गया है पंडित जी से जानने का कि आखिरकार आज की गुडलक राशि कौन सी है।
6: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों को पूजा में किस चीज का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। आज की गुडलक राशि है मिथुन। इनको पूजा में सुगंधित धूप बत्ती का प्रयोग जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से आपके मन और आपके दिमाग की चिंताएं दूर होंगी।
5: तो चलिए कार्यक्रम के अंत में अब समय हो गया है पंडित जी से जानने का कि आखिरकार आज का महा उपाय क्या है।
6: जी अगर आप सरदर्द से परेशान रहते हों तो क्या करेंगे, अपने हाथों की अंगुलियों के बीच की जगह को हल्के हल्के दबाना चाहिए। सुबह शाम 5-5 मिनट ऐसा करिए। धीरे धीरे लगभग 1 सप्ताह के अंदर आपको लाभ होना शुरू हो जाएगा।
5: पंडित जी हमें तमाम जानकारी देने के लिए हमेशा की तरह आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
6: धन्यवाद।
5: तो चलिए इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए गुड न्यूज़ टुडे के साथ।

0: जिसने हिला दिया महाराष्ट्र, जिसे कांप रहे हैं मिलावटखोर, हाई कोर्ट की कैंटीन पर लगा दिया ताला, सब्जी बेचकर पढ़ाई, बेईमानों से लड़ाई, बंदे में है दम, सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9:00।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: और चलिए अब आपको दिखाते हैं सूरत के एक अनोखे गणपति पंडाल की तस्वीरें। सूरत के रांदेर इलाके में इस बार गणेश उत्सव के दौरान शानदार सामाजिक संदेश देने वाली थीम पर गणेश पंडाल तैयार किया गया है। आमतौर पर गणेश पंडालों में धार्मिक और पौराणिक झांकियां देखने को मिलती हैं, लेकिन इस पंडाल में भगवान गणेश के दर्शन के साथ साथ ऑर्गन डोनेशन यानी अंगदान को लेकर लोगों को जागरूक करने की कोशिश भी की जा रही है। पंडाल की पूरी सजावट और झांकी का उद्देश्य लोगों को ये समझाना है कि अंगदान के जरिए किसी जरूरतमंद व्यक्ति को नया जीवन दिया जा सकता है। पंडाल में मानव शरीर के अलग अलग अंगों को सांकेतिक रूप से प्रदर्शित किया गया है। पंडाल के अंदर प्रवेश करते ही ऑर्गन डोनेशन को लेकर अलग अलग जानकारी प्रदर्शित की गई है। इस पंडाल में सूरत की डोनेट लाइफ संस्था और वास्तु ग्रुप की ओर से अंगदान को लेकर किए जाने वाले कार्यों को भी दर्शाया गया है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं पुणे में गणेश उत्सव की तस्वीरें। पुणे में श्रीमंत दगडू शेठ गणपति के अलावा भाऊ साहेब रंगारी गणपति मंडल के पंडाल में भी गजानन के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। यहां स्थापित गणेश जी की मूर्ति बहुत अनोखी है। इस मूर्ति में भगवान गणेश को एक राक्षस पर प्रहार करते हुए दिखाया गया है। ये मूर्ति लकड़ी और बुरादे से बनाई गई है। स्थापना के बाद से इस मूल मूर्ति को कभी बदला नहीं गया है। श्रीमंत दगडू शेठ भाऊ साहेब रंगारी गणपति मंडल की स्थापना साल 1892 में पुणे में क्रांतिकारी भाव साहेब रंगारी की थी। आपको बता दें इसे भारत का सबसे पहला सार्वजनिक गणेश मंडल माना जाता है। तो वहीं स्वतंत्रता पूर्व काल में लोकमान्य तिलक और भाव साहेब रंगारी जैसे क्रांतिकारियों ने समाज को संगठित करने के लिए इसकी शुरुआत की थी। हर साल गणेश चतुर्थी के दौरान यहाँ भारी संख्या में भक्त दर्शन के लिए पहुँचते हैं। और चलिए अब आपको दिखाते हैं बिहार में गणपति उत्सव की खास तस्वीरें। बिहार के में पूर्वी चंपारण जिले में मोतिहारी में धूमधाम से गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। शहर के गुदरी बाजार और ऐतिहासिक पंच मंदिर में 10 दिन के गणेश पूजा महोत्सव का खास आयोजन किया गया है। यहां पर गणपति प्रतिमाओं की भव्यता और सुंदरता देखते ही बनती है। गुदरी बाजार में 31 साल से गणेश पूजा का आयोजन किया जा रहा है और इस बार यहां कोलकाता की थीम पर भव्य पंडाल बनाया गया है और करीब 15 फीट ऊंची गणेश जी की प्रतिमा लगाई गई है। वहीं दूसरी तरफ शहर के ऐतिहासिक पंच मंदिर में भी गणेश उत्सव हो रहा है। यहाँ बप्पा का रोज अलग अलग रूपों में श्रृंगार किया जाता है और दिव्य आरती होती है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं जम्मू कश्मीर के टिटवाल में शारदा उत्सव की तस्वीरें। नियंत्रण रेखा पर टिटवाल में स्थित शारदा मंदिर में लोगों ने शारदा दिवस मनाया और इसका आयोजन भी पीओ के में स्थित शारदा पीठ की सालाना यात्रा के अवसर पर होता है। और इस सिलसिले में मंदिर परिसर में हवन और किशन गंगा नदी में पवित्र स्नान किया जाता है। इस दौरान देश भर से आए सैकड़ों श्रद्धालुओं ने शारदा मंदिर में टिटवाल के क्रॉसिंग ब्रिज तक निकाली गई प्रतीकात्मक यात्रा में हिस्सा लिया और उन्होंने शारदा पीठ तीर्थ यात्रा तुरंत फिर से शुरू करने की मांग की। और चलिए अब आपको दिखाते हैं तस्वीरें राजस्थान के भर्तृहरि धाम में लगे मेले की। राजस्थान के अलवर में स्थित भर्तृहरि धाम में अनोखा मेला लगता है और बाबा के प्रति श्रद्धालुओं में गहरी आस्था है, जिसके चलते

0: मेले में हर साल बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं और खास बात यह है कि मेले में आदिवासी जातिया मीना भील गुर्जर गवारिया स्थित ग्रामीण इलाकों से लोग यहां पर पहुंचते हैं। कल लोक देवता भर्तृहरि बाबा के धार्मिक स्थल पर चल रहे मेले का समापन हो गया। मेले के अंतिम दिन भी सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा के दर्शन और पूजन के लिए पहुंचे हुए नजर आए। इस मेले में लोग डंडे मुशल और लकड़ी से बने हुए सामान भी खरीदते हैं, इसलिए बाबा के मेले को कई लोग लठ मेला भी कहते हैं। मेले में पूजा अर्चना के साथ ग्रामीण संस्कृति और पारंपरिक देहाती सामानों की झलक भी लोगों को आकर्षित करती है।
1: हिसार वालों का भंडारा चल रहा है जल्दी से जल्दी।
0: गणेशोत्सव का आज सातवां दिन है। शहर शहर बप्पा का दरबार सजा हुआ है और भक्ति के साथ भव्यता के कई रंग दिखाई दे रहे हैं। कहीं 108 किलो चांदी और सोने से सजा गणराय का दिव्य स्वरूप है तो कहीं 251 किलो के विशाल मोदक का भोग अर्पित किया गया है। कहीं हीरों से बप्पा का खास अलंकार है तो कहीं बद्रीनाथ धाम की प्रतिकृति थीम पर पंडाल को तैयार किया गया है। सूरत में गणपति तक पहुंचने के लिए डर और रोमांच से भरे रास्ते से होकर गुजरना है तो काशी में ढोल ताशों के बीच महाराष्ट्र वाली भक्ति के रंग में सबका मन मोह लिया है।
2: चांदी का वैभव, सोने की चमक, हीरों की जगमगाहट, 251 किलो के मोदक की मिठास और करोड़ों के नोटों से सजा गणराय का दरबार। कहीं बद्रीनाथ धाम की दिव्यता है तो कहीं डर और रोमांच से भरे रास्ते के बाद बप्पा के दर्शन। और जब महाराष्ट्र की भक्ति पहुंचती है काशी की गलियों तक तो ढोल ताशों की गूंज में पूरा शहर बन जाता है मिनी महाराष्ट्र। गणेश उत्सव के नजारे बता रहे हैं कि विघ्नहर्ता के दरबार में भक्ति के रंग जितने अलग हैं उतनी ही अनोखी है उन्हें सजाने और संवारने की श्रद्धा। महाराष्ट्र की जालना में तो गजानन का स्वरूप देखते ही नजरें ठहर जा रही हैं। श्री अनोखा गणेश मंडल के दरबार में विराजे हैं करीब 5.5 फीट ऊंचे 108 किलो चांदी से बने गणपति। ऊपर से 40 से 50 तोला सोने की परत और कीमत करीब 3.5 से 4 करोड़ रुपए। खामगांव के सराफा व्यापारी विश्वकर्मा जांगड़ ने इस बहुमूल्य प्रतिमा को तैयार किया है।
3: आप देख रहे हैं एक भव्य दिव्य गणेश जी की मूर्ति 108 किलो की हमारे सभी सदस्य द्वारा बनाई गई है और इसमें 40 से 50 तोले के आसपास स्वर्ण भी है। तो यह लोगों को जालना वासियों को और सभी भक्तजनों को एक सबकी मनोकामनाएं पूरी हो रही है ऐसा सभी जने यहाँ आकर माइक में बोल रहे हैं। और अनोखा गणेश मंडल ऐसा गणेश मंडल है जो छत्रपति शिवाजी महाराज पुतले पर ही हमारा 11वां वर्ष है और स्वर्ण की और चांदी की मूर्ति का यह 4वां साल है। हम यहाँ पर हर साल यह सभी भक्तगणों के आग्रह पर दर्शन को लाते हैं और इसको बाद में हम यहाँ पर जालना क्रिटिकल हॉस्पिटल है सोनी साहब का वह एक छोटा सा कांच का मंदिर बना के वह स्थापना करते और सभी भक्तजनों की मांगनी के अनुसार हम जल्द से जल्द जालना शहर में एक भव्य दिव्य अनोखाती गणेश जी की मूर्ति का मंदिर हम बनाने जा रहे हैं।
2: कीमती प्रतिमा है तो सुरक्षा भी चाक चौबंद है। 6 सुरक्षा कर्मी 24 घंटे निगरानी में तैनात है। सीसीटीवी कैमरों से आसपास के परिसर पर भी नजर रखी जा रही है। पिछले 3 साल से 108 किलो चांदी और सोने की परत वाली प्रतिमा स्थापित की जा रही है। इस बार ये सिलसिला लगातार 4 साल से जारी है। पुणे में तो चारों तरफ बप्पा का अद्भुत रूप बना हुआ है लेकिन वहीं गणराय के चरणों में भोग भी ऐसा है कि देखने वालों की आंखें ठहर जाएं। श्रीमंत दगड़ू शेठ हलवाई सार्वजनिक गणपति के 134वें उत्सव में 251 किलो का रसमलाई फ्लेवर मोदक केक अर्पित किया गया। इस विशाल नैवेद्य को तैयार करने में 40 से 50 कलाकारों ने मेहनत की है। ट्रॉली से जब ये भव्य केक मंडप तक पहुंचा, तो श्रद्धालुओं की भीड़ इसे देखने उमड़ पड़ी। इसके साथ ही मोतीचूर लड्डू का भी विशाल नैवेद्य चढ़ाया गया। लड्डू इतना भारी था कि फोर्कलिफ्ट की मदद लेनी पड़ी। मालानी परिवार 26 साल से इस परंपरा को निभा रहा है। एक दान स्वरूप के लिए सिंबल ऑफ ऑनर नाम का खास अलंकार तैयार किया गया। गणेश भक्त समर शेख की संकल्पना से बने इस आभूषण में 55 हीरे जड़े हैं। कुल वजन 9.69 कैरेट। 5 कारीगरों ने 2 महीने की मेहनत से इसे तैयार किया। अनुमानित कीमत करीब 5 लाख रुपए बताई जा रही है। अमरावती में भी बप्पा की अलग ही भव्यता देखने को मिल रही है। जहां रुक्मणी गणेश उत्सव मंडल ने इस बार श्रद्धालुओं के लिए उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम की प्रतिकृति तैयार की है। साइंस कोर मैदान में बने पंडाल में गणपति की प्रतिमा के साथ बद्रीनाथ मंदिर की भव्य झांकी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है।
4: उत्तराखंड में प्रसिद्ध जो मंदिर है बद्रीनाथ मंदिर, उसकी झांकी हमने यहाँ बना के अमरावती के लोगों के दर्शन के लिए यहाँ पे देखावा सादर किया है। और साथ में ही सामाजिक उपक्रम देने के लिए 10 दिन आरोग्य शिविर का यहाँ पे आयोजन किया गया है।
2: 41 सालों से अलग अलग धार्मिक स्थलों को थीम बनाकर उत्सव मनाने वाला यह मंडल इस बार अमरावती में ही बद्रीनाथ धाम जैसा अनुभव देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन गुजरात के सूरत में गणपति दर्शन का रास्ता बिल्कुल अलग है। महिधरपुरा में बना पंडाल श्रद्धालुओं को पहले ले जाता है डर और रहस्य की दुनिया में। 3 से 4 लेयर में तैयार इस हॉरर थीम में कहीं भूत प्रेत, कहीं पिशाच तो कहीं डरावने किरदार। लाइन में आगे बढ़ते ही हर मोड़ पर नया सीन सामने आता है। कुछ पल के लिए ऐसा लगता है जैसे किसी हॉरर फिल्म के सेट में पहुंच गए हो। आयोजकों ने इस कॉन्सेप्ट की करीब 6 महीने तक प्लानिंग की थी।
5: गणेश उत्सव के दौरान अलग अलग प्रकार की थीम देखने को मिल रही है और हम इस वक्त पहुंचे हैं एक गणेश पंडाल में, जहां एक हॉरर थीम पर गणेश पंडाल बनाया गया है। तस्वीरों के जरिए हम आपको पहले बताने की कोशिश करेंगे कि ये पूरा एक पर्दा लगा हुआ है और इसके अंदर पूरा हॉरर जो सीन है वो क्रिएट होता है और लोग है इसके अंदर से पूरा भूत का एहसास करते हैं, हॉरर सीन का पूरा एहसास करते हैं। आप देखेंगे वाकई में देखने में एकदम से बहुत ही डेंजर लगता है, बच्चे यहाँ से डर भी जाते हैं लेकिन आनंद भी लेते हैं। तो लोग आते हैं, उन्हें यहाँ पर कहीं कहीं एक डराने का भी काम किया जाता है, लोग एंजॉय करते हैं। तो ये गणेश पंडाल में अगर भगवान गणेश के दर्शन करने उससे पहले लोग जो है यहाँ पर हॉरर शो देखते हैं और हॉरर शो के बाद लोग भगवान गणेश के दर्शन करते हैं। तो अपने आप में एक अनोखा गणेश पंडाल सूरत का है ये, जहाँ पर हॉरर थीम पर ये गणेश पंडाल तैयार किया गया है। यहाँ लोग खास करके बच्चे बहुत ही आनंद पूर्वक यहाँ पर देखने के लिए आते हैं। हॉरर शो है यहाँ पर, एक तरह से जो कलाकार हैं वो अपना इस पे थीम दिखाते हैं और यहाँ उसके बाद लोग भगवान गणेश के दर्शन करने पहुँचते हैं। यहाँ पीछे देखें गणेश भगवान का ये पंडाल है, यहाँ पर जो है भगवान गणेश विराजमान है, इनकी पूजा पाठ होता है। यानी कि गणेश पंडाल में प्रवेश करने से पहले आपको हॉरर थीम दिखाई जाती है और उसके बाद भगवान गणेश के दर्शन कराए जाते हैं।
2: पिछले 2 महीनों में पंडाल को तैयार किया गया, मकसद था कि सूरत के लोगों को विदेशों में दिखाई देने वाले हेलोवीन और मिस्ट्री थीम का अनुभव यहीं कराया जाए। इसको लेकर बच्चों में खासा उत्साह है। डर का ये रास्ता पार करने के बाद ही सामने आते हैं गणपति बप्पा।
6: ये फॉरेन कंट्री में ऐसा थीम जो आपने देखने को मिलने आया, तो ये साल हमने ऐसा सोचा, हम आखिरी 4 साल से ये प्रोग्राम बना रहे हैं लेकिन ये साल हमने बहुत सोच समझ के, आज समझ लो कि 6 महीने से हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि अपने सूरत की जनता को, कि बाहर का दुनिया में जो जा नहीं सकते हैं, जो देखने जा नहीं सकते हैं, उन लोगों को यहाँ पे वो दुनिया का एहसास करवाया कि बाहर की दुनिया में हॉलोविन थीम क्या होता है, मिस्ट्री थीम क्या होता है, वो आप लोग सूरत की जनता को दिखाने के लिए अपने ये प्लानिंग किया है।
2: तेलंगाना के भद्राद्री कोठागुडैम में पलवंचा में गणेश चतुर्थी पर 2 प्रतिमाओं का श्रृंगार नोटों से किया गया। बापूजी नगर में 1,40,00,000 रुपए के नोटों से सजावट की। टीम एकदंत यूथ ऑर्गेनाइजेशन ने दूसरी प्रतिमा पर 1,50,00,000 रुपए के नोट लगाए, यानी दोनों जगह मिलाकर 2,90,00,000 रुपए के नोटों से गणराय का दरबार सजाया गया। आयोजकों ने स्थानीय कारोबारियों से चंदा जुटाया, बैंकर्स ने भी नए नोट उपलब्ध कराकर सहयोग दिया। भोले की नगरी काशी में गणपति उत्सव की धूम देखने को मिल रही है। इन दिनों हर हर महादेव के साथ गणपति बप्पा मोरिया की गूंज भी सुनाई दे रही है। मुंबई के लालबाग के राजा की तर्ज पर यहां गणपति की प्रतिमूर्ति की भव्य शोभा यात्रा निकली। बुलानाला से शुरू हुई इस यात्रा में हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। किसी ने मराठी वेशभूषा पहनी तो भुसावल से आए गजपति ढोलताशा दल के 80 कलाकारों ने अपनी ताल से माहौल में महाराष्ट्र का रंग भर दिया।
7: हर बार आते हैं यहाँ पे, उनको हमारी तरफ से जो हम मान वंदना कहते हैं वो देते हैं। ढोल पतंग ये महाराष्ट्र की एक परंपरा है जो हम निभाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे महाराष्ट्र में सिर्फ हमारा एक ही ऐसा पदक है कि जो जिनका खुद का सार्वजनिक गणेशोत्सव का मंडल भी है।
8: यहाँ पर आप लोग का जो परफॉर्मेंस है बाकी जगहों से कितना ज्यादा अलग हो जाता है, कितनी एनर्जी मिलती है?
7: हमारी जो पहली बात तो ये है कि ये महादेव की नगरी है तो ऑलरेडी वाइब्स हाई ऑन रहती ही है। जैसे महादेव जी का डमरू बजता है वैसे ही हमारे बच्चों के ढोल बजते हैं उतनी ही एनर्जी के साथ। बस हमारी यही कामना है महादेव से कि सब अच्छा हो आगे भी।
2: गणेश उत्सव के नजारे अलग अलग जरूर है लेकिन भावना एक है, पार्वती नंदन को अपने दिल के सबसे करीब रखना। वाराणसी से रोशन जायसवाल, जालना से गौरव साली, सूरत से संजय सिंह, अमरावती से धनंजय साबले, तेलंगाना से अब्दुल बशीर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
10: जिसने हिला दिया महाराष्ट्र, जिसे कांप रहे हैं मिलावटखोर, हाई कोर्ट की कैंटीन पर लगा दिया ताला, सब्जी बेचकर पढ़ाई, बेईमानों से लड़ाई, बंदे में है दम। सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
11: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
12: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
13: अविश्वास में विश्वास बसता है
11: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
14: Good news today.
11: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
11: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
13: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: खूब घास का धार्मिक महत्व क्या है? दूब घास के प्रयोग से काम की बाधाएं कैसे दूर हो सकती हैं? और दूब घास से गणपति का क्या संबंध है? जानिए दूर्वा यानी दूब घास की महिमा सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
3: एवरेस्ट तीखा लाल, सही तीखा सही लाल।
4: देश भर में गणपति उत्सव की रौनक, गणेश पूजा का आज सातवां दिन, पंडालों में श्रद्धालुओं का तांता लगा। गुजरात के सूरत में सजा बापा का अनोखा पंडाल, अंगदान को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है, पौराणिक झांकियों की भी झलक। तमिलनाडु के नटराज मंदिर में नाट्यांजलि नृत्य महोत्सव का शुभारंभ हुआ, समारोह में दिखी भारतीय संस्कृति की झलक, कलाकारों ने मनमोहक प्रस्तुति दी। गुजरात के अंबाजी धाम में आस्था का महाउत्सव, आज से भादरवी महामेले का शुभारंभ, करीब 40 लाख श्रद्धालुओं के आने का अनुमान। एशियन गेम्स का आज पहला दिन, टेबल टेनिस की महिला टीम स्पर्धा में भारत ने जीत के साथ शुरुआत की, इंडोनेशिया के खिलाफ अपने पहले ग्रुप स्टेज मुकाबले में भारत ने 3-0 से जीत हासिल की। दिल्ली में फिट इंडिया मूवमेंट के तहत साइकिलिंग, पूर्व क्रिकेटर परविंदर रवाना ने हिस्सा लिया, नाच गाने से भी स्वस्थ जीवन का संदेश।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की।
4: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका, मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। एक शानदार खबर निकलकर सामने आई है, आपको बता दें जापान के आईजी नागोया में जारी 20वें एशियन गेम्स में महिला टेबल टेनिस टीम ने जीत के साथ शुरुआत की है और अपने पहले ग्रुप स्टेज मुकाबले में भारत ने इंडोनेशिया को 3-0 से मात दी है। तो वहीं मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में सुचिका तारियाल ने कमाल कर दिया है। आपको बता दें सुचिका तारियाल ने क्वार्टर फाइनल में मंगोलियाई एथलीट को हराकर ट्रेडिशनल 60 किलोग्राम वेट कैटेगरी के सेमीफाइनल में प्रवेश किया है और इसके साथ ही सुचिका ने कम से कम ब्रॉन्ज पक्का कर लिया है। सुचिका अपना सेमीफाइनल मुकाबला मंगलवार को खेलने जा रही हैं। ये शानदार खबर निकलकर सामने आई है, सेमीफाइनल में सुचिका पहुंच चुकी हैं और अब खेलने जा रही हैं, जिसके ऊपर सभी की निगाहें रहने वाली हैं। जापान के आईजी नागोया में 20वां एशियन गेम्स चल रहा है, जिसमें महिला टेबल टेनिस टीम ने जीत दर्ज की है और शुरुआत की है, एक शानदार शुरुआत। पहले ग्रुप स्टेज मुकाबले में भारत ने इंडोनेशिया को हरा दिया है और 3-0 से मात दी है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं जीएनटी एक्सप्रेस।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबर।
4: मोतिहारी में गणपति उत्सव की धूम, गुजरी बाजार में कोलकाता की थीम पर बापा की 15 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई, गणपति बापा मोरिया के लगे जयकार। गुजरी बाजार में 31 साल से हो रहा है भव्य आयोजन, गणेश जी के साथ भोलेनाथ और विश्वकर्मा के दर्शन, ऐतिहासिक पंच मंदिर में दिव्य स्वरूप में बापा विराजमान हुए। पंच मंदिर में सुबह शाम महाआरती और ढोल नगाड़ों की गूंज सुनने को मिल रही है, दर्शन के लिए उमड़ रही है बप्पा के भक्तों की भीड़, गजानन की आस्था और भक्ति में सराबोर हैं श्रद्धालु। शाम को लेजर लाइट शो और फूलों की सजावट से सजता है बाजार, भव्य कलाकारी को देखने के लिए पहुंच रहे हैं श्रद्धालु, भगवान गणेश पांच गजानन के दिव्य स्वरूप में विराजमान। अनंत चतुर्दशी तक चलेगा 10 दिवसीय गणेश महोत्सव, 25 सितंबर को मनाई जाएगी अनंत चतुर्दशी, गणेशोत्सव के 10वें दिन होगा बप्पा का विसर्जन। सूरत के रांदेर में अनोखी थीम पर सजा गणेश पंडाल। भगवान गणेश के दर्शन के साथ अंगदान का संदेश बाहर, मानव शरीर के अलग अलग अंगों का सांकेतिक प्रदर्शन। सूरत की डोनेट लाइफ और वास्तव ग्रुप की अनूठी पहल, ऑर्गन डोनेशन सिटी थीम में अंग सौंपने की जीव झांकी, अंगों को तेजी से पहुंचाने वाले ग्रीन कॉरिडोर का अद्भुत प्रदर्शन। ब्रेन डेड और प्राकृतिक मृत्यु पर दान होने वाले अंगों की जानकारी, पुलिस वाहन एम्बुलेंस और हवाई जहाज की प्रतिकृतियों से सजावट, 1400 अंग दान और 1291 लोगों को मिला नया जीवन। भगवान गणेश की कथा को प्रथम अंग प्रत्यारोपण से जोड़ा गया, धार्मिक आस्था के साथ सामाजिक जागरूकता का संदेश दिया गया, धार्मिक आस्था के साथ जागरूकता का अनूठा केंद्र बना। पंडाल में दर्शन के लिए उमड़ रही है श्रद्धालुओं की भारी भीड़, बप्पा का उत्सव मनाओ अंगदान का दीप जलाओ विशेष स्लोगन रखा गया, सूरत में जन जन तक रहा अंगदान महादान का संदेश। पुणे में श्रीमंत भाऊ साहब रंगारी गणपति की भव्य और दिव्य सजावट की गई, गजानन की आस्था और भक्ति में पूरी तरह सराबोर नजर आ रहे हैं भक्त। गणेशोत्सव के दौरान पंडाल में उमड़ रहा भक्तों का सैलाब, बापा के अलौकिक स्वरूप और भव्य दरबार को देखने के लिए लग रही हैं लंबी कतारें। गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों से गूंज उठा पूरा परिसर, पुणे के इस प्रमुख गणेश पंडाल की भव्य सजावट देखकर लोग मंत्रमुग्ध हो रहे हैं। बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल ने किए बप्पा के दर्शन, श्रीमंत भाऊ साहेब रंगारी गणपति पंडाल में महाआरती में शामिल हुई, आशीर्वाद दिया। दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट के लोगों ने धूमधाम से मनाया गणेशोत्सव, बीजेपी नेता सुनील देवधर के आवास पर गायक जुबीन गर्ग की स्मृति में रखा गया विशेष कार्यक्रम। तेलंगाना में गणेश चतुर्थी की शानदार जश्न मनाया गया, पलवंचा शहर के पंडालों में कुल 2,90,00,000 के नोटों से सजाई गई पापा की प्रतिमाएं। गजानन की एक प्रतिमा पर 1,40,00,000 के नोट से हुई भव्य सजावट, बापूजी नगर में कपूर समाज ने खास पूजा के साथ गणपति का अनोखा श्रृंगार किया। पंडाल के प्रवेश द्वार से लेकर गणपति के दरबार तक रंग बिरंगी मालाओं से सजाया गया पंडाल, अनोखी सजावट देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। भगवान गणेश की दूसरी प्रतिमा का 1,50,00,000 रूपये से हुआ श्रृंगार, टीम एकादंत यूथ ऑर्गेनाइजेशन ने खास सजावट की। स्थानीय व्यापारियों से चंदा इकट्ठा करके किया गया है ये श्रृंगार, आयोजकों के मुताबिक बैंकर्स ने भी सजावट के लिए नए नोट उपलब्ध कराकर मदद की है। हुगली में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के घर में विराजे गजानन, विसर्जन से पहले प्रहलाद जोशी ने पूजा की। पुणे के दगडू शेठ गणपति पंडाल में उमड़ा आस्था का मेला, बप्पा को अर्पित किया गया 251 किलो का मोदक केक। अमरावती में बद्रीनाथ धाम मंदिर की थीम पर सजाया गया गणेशोत्सव पंडाल, दूर दूर से देखने के लिए पहुंच रहे हैं लोग। गणपति बप्पा के साथ भक्तों को बद्रीनाथ धाम के भी दर्शन हो रहे हैं, रंगीन लाइटों से सजाया गया है पंडाल। अमरावती में 41 सालों से अलग अलग थीम पर पंडालों को सजाने की परंपरा जारी है, रुक्मिणी गणेशोत्सव मंडल की ओर से होता है यह आयोजन। सूरत के मैदरपुरा इलाके में गणेशोत्सव का अनोखा रंग हॉरर की थीम पर तैयार किया गया पंडाल, डरावनी फिल्म की तर्ज पर बनाया गया पंडाल का माहौल, गजानन के दर्शन से पहले भक्तों को मिलता है अलग ही रोमांच। सूरत के मैदरपुरा में हर साल अलग अलग थीम पर पंडाल बनाने की परंपरा है, उत्सव को अलग स्वरूप देने की कोशिश होती है। मुंबई में 6 दिनों में 32,000 से ज्यादा बप्पा की प्रतिमाओं को विदाई दी गई है, बीएमसी ने आंकड़ा जारी किया है। मुंबई में अब तक 31,500 घरेलू गणपति प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया, सार्वजनिक गणेश मंडलों की 650 मूर्तियों का विसर्जन किया गया। दिल्ली के श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश मंदिर में राधाअष्टमी पर्व की धूम देखने को मिली, द्वारका सेक्टर 13 में स्थित इस्कॉन मंदिर में धूमधाम से मनाया गया जन्मोत्सव। फूलों से किया गया राधा रानी का भव्य और दिव्य अभिषेक। उत्सव का मुख्य आकर्षण रहा विशेष बोट फेस्टिवल, बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। रंग बिरंगे सुगंधित फूलों और गुब्बारों से सजाया गया कुंड और नौका फूलों से सजी नाव में विराजमान कराई गई भगवान राधा कृष्ण की प्रतिमाएं। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की मानसी गंगा लीला का हुआ सुंदर चित्रण, मंदिर में हुई विशेष राधा अष्टमी आरती, आस्था और भक्ति में सराबोर दिखे श्रद्धालु। श्रद्धालुओं ने इस अनूठे दर्शन का आनंद लिया। नाव उत्सव के भव्य और शानदार सजावट ने श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध किया, दिखा अद्भुत और अलौकिक नजारा। दिल्ली में फिट इंडिया मूवमेंट के तहत कार्यक्रम का आयोजन, पूर्व भारतीय क्रिकेटर परविंदर अवाना ने भी हिस्सा लिया। फिट इंडिया मूवमेंट इवेंट के मंच पर लोगों को फिटनेस का टेस्ट हुआ, प्रतिभागियों ने पुशअप लगाए। फिट इंडिया इवेंट में लोगों ने जमकर डांस करके बहाया पसीना, हर उम्र के लोगों ने हिस्सा लिया। फिट इंडिया मूवमेंट के तहत संडे ऑन साइकिल का भी आयोजन किया गया, बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। चंडीगढ़ में फिटनेस और एकता का संदेश देने के लिए सुखना लेक पर मैराथन का आयोजन, 150 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। कुडलोर के ऐतिहासिक नटराज मंदिर में विश्व प्रसिद्ध नाट्यांजलि नृत्य महोत्सव का भव्य शुभारंभ किया गया, राज्यपाल भी समारोह में शामिल हुए। नाट्यांजलि नृत्य महोत्सव की विधि विधान से शुरुआत की गई, कलाकारों ने मनमोहक प्रस्तुति दी। नाट्यांजलि समारोह में दिखी भारतीय संस्कृति की भव्यता, बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। बेंगलुरु में अन इवनिंग विद लेजेंड्स कंपैशन एंड एक्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, कई दिग्गजों ने हिस्सा लिया। एन इवनिंग विद लेजेंड्स कंपैशन एंड एक्शन कार्यक्रम में भव्य संगीत समारोह का आयोजन हुआ, म्यूजिक बैंड ने लोगों का दिल जीता। उत्तर प्रदेश में 1,00,000 सरकारी नौकरी भर्ती का महाअभियान शुरू हुआ, पहले दिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने 818 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए। कार्यक्रम के दौरान नव नियुक्त उम्मीदवारों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने सेल्फी ली, फोटो सेशन में अपने नियुक्ति पत्र दिखाते हुए नजर आए चयनित अभ्यर्थी। जूनियर महिला हॉकी एशिया कप जीतकर लौटी भारतीय टीम के सदस्य मधु पटेल का भव्य स्वागत, फूल मालाओं और ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार वेलकम। बेटी की उपलब्धि से परिवार और गांव में खुशी का माहौल, मधु की उपलब्धि पर मां की आंखों में गर्व के आंसू आए। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ की रशिया की यात्रा, सेंट पीटर्सबर्ग में ऐतिहासिक तोप चलाने का विशेष सम्मान मिला। तमिलनाडु के मरीना बीच पर चलाया गया सफाई अभियान, गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने भी हिस्सा लिया। भारतीय नौसेना के आईएनएस त्रिशूल ने मिस्र के अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह का दौरा किया, मिस्र के नौसैनिक जहाज अल कदीर ने गर्मजोशी से स्वागत किया। आईएनएस त्रिशूल के क्रू ने चैट बी वॉर मेमोरियल में दोनों विश्व युद्धों के बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत के राजदूत ने आईएनएस त्रिशूल का दौरा किया और क्रू से मुलाकात की। पुलवामा के काकापोरा स्टेशन पर यात्रियों की सुरक्षा को लेकर जवानों का मॉक ड्रिल हुआ, चाक चौबंद इंतजाम की परखी गई। ड्रिल में पुलिसकर्मियों और दूसरे संबंधित एजेंसियों ने हिस्सा लिया, किसी भी स्थिति में निपटने के लिए सुरक्षा और इमरजेंसी रिस्पांस टीमों की तैयारी को परखना और उसे बेहतर बनाना लक्ष्य था। पंजाब के ऐतिहासिक फतेहगढ़ साहिब गुरुद्वारा पहुंची दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, टेका मत्था, प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने फतेहगढ़ साहिब से दूसरी नशा मुक्ति यात्रा को हरी झंडी दिखाई, नशे से प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। पंजाब में 4,000 किलोमीटर का सफर तय करेगी ये यात्रा, 30 सितंबर को जालंधर में होगी समापन, गृहमंत्री अमित शाह रहेंगे मौजूद। पंजाब के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को मान सरकार का बड़ा तोहफा, डीए में 8% की बढ़ोतरी, करीब 8,00,000 कर्मचारी और पेंशनर्स को मिलेगा लाभ। त्योहारी सीजन से पहले कर्मचारियों को मिली सौगात, बढ़ा हुआ डीए 1 अक्टूबर से जारी होगा, 4-4% की 2 किश्तों में लाभ मिलेगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव के नतीजे घोषित हुए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की 3 सीटों पर ऐतिहासिक जीत हुई। नए डूसो अध्यक्ष बने यश डबास, सचिव पद पर रिया छाबड़ी ने दर्ज की जीत, सह सचिव पद पर लक्ष्य राज सिंह की शानदार विजय। उपाध्यक्ष पद पर निर्दलीय उम्मीदवार दीपांशु शौकीन की हुई जीत, उन्हें मिले 30,000 से ज्यादा वोट। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी की शानदार विजय पर सभी युवा साथियों को हार्दिक बधाई दी, पोस्ट में ज्ञानशील और एकता की जीत का करार दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने भी एबीवीपी की विजय उम्मीदवारों को शुभकामनाएं दी, पोस्ट में लिखा, ये जनादेश पूरे भारत के युवाओं के मन का प्रतिबिंब है। पटना के महावीर मंदिर पहुंचे एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा, एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया और प्रोड्यूसर एकता कपूर, आने वाली फिल्म द वन की कामयाबी की कामना की। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह फिर बने पेरेंट्स, दीपिका ने बेटी को जन्म दिया। अजय देवगन की मच अवेटेड फिल्म गोलमाल 5 की रिलीज डेट आउट हुई, 8 जनवरी 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है, मेकर्स ने शेयर किया नया पोस्टर। अलू अर्जुन की मेगा फिल्म राका का नया प्रमोशनल टीजर आउट हुआ, राका में 4 किरदारों में नजर आएंगे अलू अर्जुन। आलिया भट्ट की अपकमिंग फिल्म का नया गाना बावरी यूट्यूब पर हुआ जबरदस्त हिट, गाने में सोनम मबापात्रा की आवाज है, फिल्म डोंट बी शाय का है गाना। 2000 साल पुराना रोमन शहर बना लाइट आर्ट का कैनवस, क्रोएशिया में पुला में 16 जगहों पर रोशन हुई ऐतिहासिक इमारतें, लाइट फेस्टिवल ने बिखेरी रंगों की चमक। पुला में इतिहास और डिजिटल आर्ट का अनोखा मेल देखने को मिला, इमारतों पर शानदार प्रोजेक्शन दिखे, ड्रोन कैमरों ने कैद किया रोशनी का भव्य नजारा। इस साल अंतरिक्ष और ब्रह्मांड बना फेस्टिवल की थीम, कलाकारों ने रोशनी से पेश की अपनी कल्पनाएं, वॉइस ऑफ यूक्रेन ने पुरातत्व संग्रहालय हुआ रोशन। पुल के मुख्य रोमन चौक पर दिखी खास कलाकृतियां, तो वहीं अ बटरफ्लाई फ्लैपिंग इन इट्स विंग्स बनी खास प्रस्तुति, दर्शकों ने उत्साह दिखाया। जर्मनी, यूक्रेन, नॉर्वे और हांगकांग के कलाकारों ने रोशनी से रचा नया अनुभव, रात में ऐतिहासिक इमारतों पर बदलते रंगों ने बनाया माहौल। चाइना के वुहान में इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल का आयोजन, 12 देशों के 21 दिग्गज पतंगबाजों का जमावड़ा लगा, आसमान में दिखा रंग बिरंगा नजारा। चाइना में पतंगों का महासंग्राम, वुहान में पतंगों का वर्ल्ड क्लास शो, 8 अलग अलग कैटेगरी में मुकाबले, स्पोर्ट काइट्स ने बढ़ाया रोमांच। पतंगबाजी के शौकीनों के लिए खास मौका, पारंपरिक और आधुनिक पतंगों की झलक देखने को मिली काइट फेस्टिवल में, कलाकारों ने नृत्य की शानदार प्रस्तुति दी। उत्तरी चाइना के इनर मंगोलिया में छाया घना कोहरा, वेटलैंड का नजारा जादुई भरा, प्रकृति प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना। चाइना के हेनान प्रांत में दिखे अद्भुत बादल, पहाड़ बादलों के समंदर में तैरते हुए दिखाई दिए, एरगुन वेटलैंड में सुबह होते ही सूरज की पहली किरण ने कोहरे को चीरा। सैंटियागो में वार्षिक स्वतंत्रता दिवस सैन्य परेड सजी, चिले के झंडों के रंगों वाले लड़ाकू विमानों ने भरी उड़ान, आसमान में बने खूबसूरत रंगों ने दर्शकों का मनमोहा। चिले पुलिस की जाबाज की 9 यूनिट परेड में शामिल हुए अनुभवी पुलिस डॉग्स अपने हैंडलर्स के साथ कदम ताल करते हुए दिखे, लाखों की संख्या में पहुंचे दर्शक। पुलिस पीपल्स ने मिलिट्री परेड में डेब्यू किया, परेड का हिस्सा बनने से पहले पपीज पिंजरों में चहकते हुए दिखे, नन्हे जाबाजों ने परेड ग्राउंड पे आते ही खींचा सभी का ध्यान। महिला पुलिसकर्मी पपीज की गोद में लिए हुए नजर आई, तो वहीं मार्च से पहले सुरक्षा बलों ने पपीज को बड़े प्यार से दुलारा, सोशल मीडिया पर यूथ पेट्रोल नाम से मशहूर पपीज। 26 पपीज को मिल रही है ट्रेनिंग, इनमें 17 जर्मन शेफर्ड और बेल्जियम मेलिन नोइस हैं, 9 गोल्डन रिट्रीवर पपीज भी इनमें शामिल हैं। चाइना के बीजिंग में अनोखा रोबोट किंडरगार्टन शुरू, इंसानों के बच्चों की तरह रोबोट्स को दी जा रही है ट्रेनिंग, शोगांग पार्क में हो रही है रोबोट्स की पढ़ाई। सेंटर में 1 दर्जन से ज्यादा छोटे बड़े ह्यूमनॉइड रोबोट्स बालघर में अपनी शारीरिक टूट फूट को संभालना सीख रहे हैं रोबोट्स। बदलते परिवेश के हिसाब से खुद के काम में परिवर्तन कर रहे हैं रोबोट्स। रोबोट्स को पहनाई गई इलेक्ट्रिक त्वचा बाधाओं को पहले ही भाप लेंगे। 19 साल की कैनेडाई सर्फर एरिन ब्रूक्स ने रचा इतिहास। विमेंस कैटेगरी में ट्रेस्टल्स प्रो सर्फिंग का जीता खिताब। करियर की लगातार तीसरी वर्ल्ड चैंपियनशिप टूर जीता। पुरुषों में ब्राजील के मिगुएल पुपो बने नए चैंपियन, तो वहीं ट्रेस्टल्स प्रो सर्फिंग के फाइनल में जापान के स्टार सर्फर कानाओ इग्राशी को हराया। भारत को पहली बार मिली एशियाई सीनियर वुशु चैंपियनशिप की मेजबानी। साल 2028 में होगी प्रतियोगिता। भारत की मेजबानी में 42 देश वुशु चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगे। मेडल के लिए 500 से ज्यादा खिलाड़ी उतरेंगे मैदान में। मोहम्मद सिराज हैदराबाद रणजी टीम के कैप्टन बने। चामा मिलिंद को मिली उपकप्तानी। रणजी ट्रॉफी की 11 अक्टूबर से होगी शुरुआत। त्रिपुरा की टीम से होगी हैदराबाद की पहली भिड़ंत। मोहन बागान का 8 साल का इंतजार खत्म। 31वीं बार कोलकाता लीग का बना चैंपियन।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो।
2: जिसने हिला दिया महाराष्ट्र, जिसे कांप रहे हैं मिलावटखोर, हाईकोर्ट की कैंटीन पर लगा दिया ताला, सब्जी बेचकर पढ़ाई, बेईमानों से लड़ाई, बंदे में है दम। सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
6: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
7: अविश्वास में विश्वास बसता है।
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे,
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: गणेश उत्सव के इस पावन अवसर पर जीएनटी में भी गणपति पधारे और हमें यकीन है कि हमारे दर्शकों के घर पर भी गणपति बप्पा जरूर पधारे होंगे और हम चाहते हैं कि आप भी जीएनटी के गणपति उत्सव का हिस्सा बनिए। आप अपने अपने घर पधारे गजानन का वीडियो बनाइए और हमारे संग शेयर कीजिए, हम उन वीडियोस को दुनिया को दिखाएंगे। आप हमें अपने वीडियो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7303409922। ये नंबर कॉल करने के लिए नहीं है, ये नंबर सिर्फ और सिर्फ वीडियोस या तस्वीरें भेजने के लिए है। जब भी आप अपना वीडियो या फोटोज भेज रहे हैं तो साथ में अपना नाम, अपने शहर, गांव और कस्बे का नाम जरूर लिखें। गुड न्यूज टुडे लगातार अपने दर्शकों से यह अपील कर रहा है कि आप भी जीएनटी पर मनाए जा रहे इस गणेश उत्सव से जुड़िए और इसके लिए आपको करना बस इतना है कि अपने घर पर पधारे गजानन का वीडियो बनाइए और हमारे साथ शेयर कीजिए, हम उन वीडियोस को दुनिया को दिखाएंगे। हमारे पास लगातार दर्शक वीडियोस भेज भी रहे हैं। गुजरात के वडोदरा से कामाक्षी पंचोली ने हमें गणेश उत्सव का वीडियो भेजा है जहां घर में बप्पा की मनमोहक प्रतिमा स्थापित की गई है। बप्पा की प्रतिमा को भव्य तरीके से सजाया गया है, गजानन को फलों और मिष्ठान का भोग भी लगाया गया है, भक्त ने भगवान गजानन का श्रृंगार भी किया है। तो वहीं बप्पा की दूसरी तस्वीर मध्य प्रदेश के इंदौर से अनिकेत चौहान ने हमें भेजी है जिसमें भक्ति के भाव से बप्पा का अद्भुत श्रृंगार किया गया है। गणेशोत्सव पर घर के ही मंदिर में विराजे भगवान गजानन का भव्य श्रृंगार किया गया है जिसमें फूलों के साथ रंग बिरंगी लाइटिंग से सजावट की गई है। गजानन के सिर पर भव्य पगड़ी बप्पा की शोभा बढ़ा रही है।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
4: देश भर में गणपति उत्सव की रौनक, गणेश पूजा का आज सातवां दिन, पंडालों में श्रद्धालुओं का तांता लगा। तमिलनाडु के नटराज मंदिर में नाट्यांजलि नृत्य महोत्सव का आयोजन, दिखी भारतीय संस्कृति की झलक, कलाकारों ने मनमोहक प्रस्तुति दी। गुजरात के अंबाजी धाम में आस्था का महाउत्सव, आज से भादरवी महामेले का शुभारंभ, पहुंच सकते हैं करीब 40 लाख श्रद्धालु। जापान में चल रहे एशियन गेम्स में टेबल टेनिस के महिला टीम इवेंट में भारत ने जीत के साथ शुरुआत की। इंडोनेशिया के खिलाफ अपने पहले ग्रुप स्टेज मुकाबले में भारत ने 3-0 से जीत हासिल की। दिल्ली में फिट इंडिया मूवमेंट के तहत साइकिलिंग, पूर्व क्रिकेटर परविंदर अवाना ने हिस्सा लिया, नाच गाने से भी स्वस्थ जीवन का संदेश दिया।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम, और मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। एक बार फिर से लेकर एक दमदार शख्सियत का सफरनामा। इस बार जिस निर्भीक शख्सियत का सफरनामा लेकर हम हाजिर हुए हैं, उसने महाराष्ट्र में मिलावटखोरी करने वाली और लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करने वाली लॉबी के खिलाफ ऐलानी जंग कर दिया है। महाराष्ट्र में फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का कमिश्नर बनने के बाद इस शख्स ने अपने ताबड़तोड़ एक्शन से लोगों की सेहत की कीमत पर मुनाफाखोरी करने वाली लॉबी की नींद उड़ा कर रख दी है।

0: आप समझ गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि महाराष्ट्र में फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन विभाग के कमिश्नर तुकाराम मुंडे हैं। महाराष्ट्र की जनता जिन्हें अब सिंघम आईएएस कहने लगी है। 25 मई 2026 को एफडीए के कमिश्नर पद की जिम्मेदारी मिलने के बाद से ही तुकाराम एक्शन मोड में है। इनके कमिश्नर बनने के बाद महाराष्ट्र के होटल्स, रेस्टोरेंट, कैफे और कन्फेक्शनरीज के मालिक और मालकिनों को पहली बार एहसास हुआ कि उनका काम सिर्फ आंखें मूंद कर मुनाफा वसूली करना नहीं है बल्कि लोगों की सेहत और हाइजीन का कायदे से ख्याल रखना भी है। 4 महीने से भी कम में इनके कार्यकाल में महाराष्ट्र के होटल्स और रेस्टोरेंट्स की सूरत बदल गई है। आम लोग इनकी कार्यशैली से काफी खुश हैं।
1: अंधेरा कितना ही घनघोर क्यों ना हो, एक दिया काफी होता है उस अंधेरे की कालिमा को चीरने के लिए। और उजाले की प्रकृति ही कुछ ऐसी है कि वो व्यवस्था की वस्तु स्थिति को उजागर कर देता है। महाराष्ट्र के एक आईएएस अधिकारी ने अदम्य इच्छा शक्ति, नेक नियति और कर्तव्य निष्ठा के रथ पर सवार होकर व्यवस्थागत नियमों का दीप प्रज्वलित किया तो कई नामचीन संस्थाओं, कंपनियों और हस्तियों के स्याह चेहरे उजागर हो गए। महाराष्ट्र के इस युगांधर आईएएस अधिकारी का नाम है तुकाराम हरिभाऊ मुंडे, एक ऐसा नौकरशाह जिसने अपनी जिम्मेदारियों के तर्जे अमल की बेहतरीन नजीर पेश कर न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि देश भर के ब्यूरोक्रेट्स को बता दिया है कि अगर वो सच्ची निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करें तो करोड़ों हिंदुस्तानियों की बहुत सी दुश्वारियां यूं ही खत्म हो जाएंगी। आपको बता दें कि महाराष्ट्र कैडर के आईएएस ऑफिसर के तौर पर साल 2006 में सोलापुर के असिस्टेंट कलेक्टर के पद पर ज्वाइनिंग के बाद से अब तक तुकाराम मुंडे हर रोज आम लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं सीधे तौर पर सुनते हैं।
2: That's where you pointed out that I meet people during 4 to 5 every day. So that's a connect with the people, and it's a practice I have been doing it since I joined the service, not now. So I believe that if public servant or civil servant is to serve in a public space, so who am I serving? Each and every individual. See, if I do not know or do not meet them, do not connect with them, how would I know what are the issues? What are they facing?
1: 21 साल के प्रशासनिक सफर में 25 से ज्यादा तबादलों का दंश झेल चुके तुकाराम मुंडे को 25 मई 2026 को महाराष्ट्र के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन विभाग के कमिश्नर की जिम्मेदारी सौंपी गई। तुकाराम जब से एफडीए के कमिश्नर बने हैं मिलावटखोर, मुनाफाखोर, धांधलेबाज पनाह मांग रहे हैं। उन्हीं के विभाग के भ्रष्ट, बेईमान और कामचोर मातहत कर्मचारी त्राहिमाम कर रहे हैं, लेकिन जनता बहुत प्रसन्न है। सच कहें तो आम लोगों को पहली बार पता चला है कि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कितने काम का विभाग है। बीते 15 सितंबर को तुकाराम ने सोशल साइट एक्स पर एक पोस्ट कर कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स के अंदर चल रही एक ऐसी धांधली उजागर की है जिसे आम जनता पूरी तरह अनजान थी। अस्पतालों के मेडिकल इक्विपमेंट्स प्रोक्योरमेंट को लेकर तुकाराम मुंडे ने जो खुलासा किया है उसने सनसनी मचा दी है। 15 सितंबर को अपनी एक्स पोस्ट में तुकाराम ने लिखा है, महाराष्ट्र में हॉस्पिटल में इस्तेमाल होने वाली सामग्रियों पर किए गए सर्वे में ये पाया गया कि एक आईवी इन्फ्यूजन सेट की एक्चुअल खरीद करीब 11 रुपए होती है जबकि इस पर MRP 325 रुपए लिखी होती है, यानी 2841% का मार्कअप। बढ़ोतरी, एक सिरिंज 6.75 रुपए में खरीदी जाती है जबकि उस पर MRP लिखी होती है 57.20 रुपए। एक कैथेटर 29.41 रुपए में खरीदा जाता है जबकि उस पर MRP लिखी होती है 310 रुपए। कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स में भर्ती होने वाले मरीज के डिस्चार्ज से पहले परिजनों को जब बिल दिया जाता है तो उसे देखकर उनकी पेशानियों पर पसीने की बूंदें छलकने लगती हैं। उन्हें क्या पता कि इस भारी भरकम बिल के पीछे नौकरशाहों और हॉस्पिटल्स की दुराभिसंधि का हाथ है। बहरहाल अगर तुकाराम जैसे मसीहा के हाथ में कमान हो तो जनता राहत की उम्मीद कर सकती है। महाराष्ट्र FDA की ओर से सामने रखे गए सर्वे के नतीजों के बाद ट्रेड प्रोक्योरमेंट प्राइस और घोषित MRP के बीच अंतर को लेकर स्पष्ट गाइडलाइन बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हॉस्पिटल्स के साथ ही मोटे मुनाफे के लिए जनता की सेहत से खिलवाड़ करने वाले होटल्स, रेस्तरां, कॉन्फेक्शनरीज, डेयरीज, कैफे और फूड एंड एग्रो फैक्ट्रीज पर भी तुकाराम मुंडे कहर बनकर बरस रहे हैं। त्योहारी मौसम में मुनाफाखोरों की चांदी हो जाती है, इसलिए मिलावट का धंधा चरम पर पहुंच जाता है। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की धूम के बीच फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने मुंबई के मशहूर बार और रेस्तरा कैफे मुंडेगर का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया। वजह जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। FDA ने अपनी जांच में पाया कि गर्म खाने की चीजों को जरूरी तापमान 60 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा पर नहीं रखा जा रहा था और कोल्ड स्टोरेज का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से कम पर नहीं रखा जा रहा था। इसके साथ ही खाना बनाने वाली जगह ड्रेनेज सिस्टम तय मानकों के मुताबिक नहीं था, जिससे क्रॉस कंटामिनेशन का खतरा था। सोचिए, सरकार ने पब्लिक हेल्थ को ध्यान में रखकर कितने अच्छे रेगुलेशंस बनाए हैं, पर इन रेगुलेशंस के कंप्लायंस को लेकर नौकरशाहों में इतनी बेफिक्री बेपरवाही है कि रेस्तरा या कैफे मालिकों को कौन कहे, आम जनता भी उदासीन हो जाती है। नतीजा ये होता है कि पैसे देकर होटल्स में खाना खाओ और तोहफे के तौर पर बीमारी घर ले आओ। पर FDA के कमिश्नर के तौर पर तुकाराम ने पूरे देश को चता भी दिया है और बता भी दिया है कि कानून की किताब ठंडे बस्ते में डालने के लिए नहीं होती। क्या तुकाराम से पहले किसी ने सोचा होगा कि भंडारे, महाप्रसाद, लंगर या सामूहिक भोज के लिए भी गाइडलाइंस जारी की जा सकती है? महाराष्ट्र FDA ने इसके लिए भी गाइडलाइंस जारी कर दी है, जिसके मुताबिक भंडारा, महाप्रसाद, लंगर या किसी सामूहिक भोज के आयोजन से कम 7 दिन पहले ऑनलाइन फॉर्म जमा करना पड़ेगा। ऐसे आयोजनों में सिर्फ लाइसेंस प्राप्त कैटरर्स की ही सेवाएं ली जा सकेंगी। खाना बनाने और पीने के लिए साफ या RO वाटर ही इस्तेमाल करना होगा। खाना बनाने और परोसने वाले वॉलेंटियर्स के लिए मास्क, दस्ताने और हेड कैप पहनना जरूरी होगा। भंडारों में आमतौर पर हाइजीन को अनदेखा कर दिया जाता है। इसमें खाना खाने वाले आमतौर पर मुफलिसी के मारे लोग ही होते हैं, इसलिए हाइजीन को लेकर आपत्ति दर्ज कराने का सूरत हाल नहीं होता। पर तुकाराम बचपन में बेबस गुर्बत की कड़वी हकीकत से बाबस्ता हो चुके हैं, इसीलिए गरीबों के दर्द को जानते हैं। वैसे FDA की भंडारे वाली गाइडलाइंस का हर तबके के लोग स्वागत कर रहे हैं।
3: नहीं, ये जो निर्णय लिया है वो अच्छा लिया है, जो भी है वो सबके हित के लिए है। अगर जो भी है वो जो भी भंडारा या जो भी होता है उसमें अगर क्लीननेस रहेगा तो ये सबके हेल्थ के लिए अच्छा है।
4: इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज फॉर द गुड ऑफ द पीपल, गुड ऑफ द कम्युनिटी, और ये एक्सेप्टेबल होना चाहिए। और उनकी जो भी गाइडलाइंस है, ऑफकोर्स वो डिटेल में देखेंगे, जैसे कि हमारा मंडल होता है या ग्रुप्स होते हैं जहां पर ये सारी चीजें होती है, भंडारे एंड ऑल दैट, वो उनको फॉलो करना चाहिए। और ये सभी के लिए है, गवर्नमेंट अगर कुछ पॉलिसीज ला रही है।
1: साफ है कि गरीब या आम जनता की सेहत और स्वास्थ्य को लेकर तुकाराम मुंडे बहुत संवेदनशील हैं। दूसरी ओर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट की अनदेखी करने वाली रसूखदार और पावरफुल लॉबी के खिलाफ एक्शन लेने में वो जरा भी हिचकिचाते नहीं है। अंजाम की परवाह किए बगैर तुकाराम ऐसी लॉबी से सीधा हेड ऑन कर लेते हैं। तुकाराम ने विमल इलायची का विज्ञापन करने पर बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान समेत अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को 14 अगस्त 2026 को नोटिस भेज दिया था। नोटिस में साफ तौर पर कहा गया कि विज्ञापन में इलायची के नाम पर पान मसाले का प्रमोशन हो रहा है, जबकि महाराष्ट्र में तंबाकू उत्पादों पर बैन है।
2: जो नोटिस इश्यू किया गया है अबाउट एडवर्टाइजिंग रेगुलेशन वायलेशन, उनको नोटिस रेगुलेशन 2018 के हिसाब से दिया गया है और सेक्शन 24 ऑफ फसाई एक्ट जो है उसके हिसाब से दिया गया है, क्योंकि ये गुटखा और जो प्रोडक्ट है महाराष्ट्र में बैन है और उसका एडवर्टाइजिंग ये सरोगेट एडवर्टाइजिंग में आता है, इसलिए हमने उनको नोटिस दिया, उनको टाइम दिया है।
1: साफ है कि निर्भीक तुकाराम रसूखदारों और पावरफुल लॉबीज के खिलाफ एक्शन लेने में जरा भी परहेज नहीं करते, हालांकि उन्हें इस नायकत्व के लिए धमकियां भी मिलती रही हैं। पर जो इंसान कर्तव्य परायणता का दिया अपने हाथों में लेकर लोकहित के अग्निपथ पर निकल जाता है, वो रास्ते में आने वाले सेहरा या बयाबा की परवाह नहीं करता। नियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराने और नियमों की अनदेखी करने वालों पर घास गिराने की वजह से शुरू से ही इनकी राह में कांटे बिछाए जाते रहे हैं, लेकिन एक सच्चे योद्धा की तरह हर मुश्किलों का ये डट कर मुकाबला करते हैं। आत्मा अगर गवाही दे तो बड़े से बड़ा एक्शन लेने से भी परहेज नहीं करते।
2: Once you do that and if you are a public servant, what is my role? That's the question I ask as a public servant. And if my role is to contribute for the betterment of the society, should I trade that part or should I compromise on that part? That was the question I ruminated upon. And the answer I got is I should trade this part, whatever the cost may be. Maybe sometimes it is less or more, whatever it is. That's a choice, and that's a choice I made. And I don't think I regret anything of that today.
1: कहने की जरूरत नहीं कि साल 2026 में लोक सेवा का व्रत लेने के बाद से ही तुकाराम व्यापक जनहित के पथ पर निर्भीक होकर आगे बढ़ रहे हैं। 21 साल के सफर में 25 बार ट्रांसफर की दुश्वारी झेली, लेकिन जहां भी पोस्टिंग हुई, जिस विभाग की भी जिम्मेदारी मिली, पूरी क्रांति ला दी। 25 मई 2026 को FDA कमिश्नर बनने के बाद से ऐसे ऐसे साहसिक काम किए हैं कि नियमों की धजिया उड़ाने वाले पनाह मांग रहे हैं। महाराष्ट्र FDA का कमिश्नर बनने के बाद पहले हफ्ते में ही उन्होंने सब स्टैंडर्ड और मिलावटी सामान बेचने वाले 50 से ज्यादा ठिकानों पर छापे मारे और 100 लोगों को गिरफ्तार किया। उपचार के दावे वाले भ्रामक विज्ञापन दिखाने के आरोप में पतंजलि के आउटलेट पर छापे मारे और 51 लाख रुपए का सामान जब्त कर लिया। ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट जैसी ई कॉमर्स कंपनियों के 86 वेयर हाउसेज की जांच की और नियमों की अनदेखी की वजह से 14 वेयर हाउसेज के लाइसेंस सस्पेंड कर दिए। मुंबई में डोमिनोज पिज्जा के 4 आउटलेट के लाइसेंस सस्पेंड कर दिए। महाराष्ट्र में एनालॉग पनीर यानी बिना डेयरी से बने पनीर पर 1 साल तक के लिए बैन लगा दिया।

0: कि उनका काम सिर्फ मुनाफा ऐठना नहीं है बल्कि लोगों की सेहत का स्वास्थ्य का भी पूरा ख्याल रखना है।
1: ऐसा नहीं है कि एफडीए का कमिश्नर बनने के बाद से ही तुकाराम एक्शन मोड में आए हैं। महाराष्ट्र कैडर का आईएएस अधिकारी बनने के बाद से ही तुकाराम नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों पर वज्रपात करते रहे हैं और इसके लिए कई बार इन्हें धमकियां भी मिली, राह में रोड़े अटकाए गए, लेकिन तमाम चुनौतियों के बाद भी कभी भी अपने कर्तव्य पद से विचलित नहीं हुए। एक गरीब किसान परिवार में जन्म लेने वाले तुकाराम ने बचपन में गरीबी का दंश झेला है, जीवन की दुश्वार देखी हैं, पैदावार के लिए खेतों में पसीना बहाया है और इसलिए इनका व्यक्तित्व फौलादी हो गया, हालात से हार नहीं मानने का जज्बा पैदा हो गया।

0: तुकाराम मुंढे आज महाराष्ट्र में आइडियल ब्यूरोक्रेसी की मिसाल बन चुके हैं। उनकी ईमानदारी और कर्तव्य परायणता गरीब मजलूम लोगों के स्वास्थ्य और सेहत की उम्मीद की लौ बन चुकी है। जबकि महाराष्ट्र में नियमों की अनदेखी करने वाले फूड और ड्रग बिजनेस से जुड़े प्रतिष्ठानों को हर पल तुकाराम का डर सता रहा है। बतौर एफडीए कमिश्नर 4 महीने से भी कम के इनके कार्यकाल में एफडीए 12,000 से ज्यादा निरीक्षण और छापेमारी कर चुका है। इनमें से 900 से ज्यादा हाई इंपैक्ट रेड्स शामिल हैं। खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता नियमों के उल्लंघन की वजह से महाराष्ट्र में कुल 603 कमर्शियल लाइसेंस सस्पेंड किए जा चुके हैं। मिलावटखोरी, प्रतिबंधित गुटखा या पान मसाला बेचने और नियमों की अनदेखी के मामले में 875 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इतना ही नहीं, एफडीए ने ऐसे मामलों में 650 से ज्यादा एफआईआर भी दर्ज कराई है। तुकाराम की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वे नियमों की अनदेखी करने वाले प्रतिष्ठानों या व्यक्तियों के कद या रसूख से बेपरवाह रहते हैं। एफडीए ने नामी गिरामी फार्मास्यूटिकल कंपनी सिप्ला की पुणे स्थित यूनिट का 26 अगस्त को निरीक्षण किया और पैकेजिंग, स्टोरेज और खरीद बिक्री के रिकॉर्ड्स में गड़बड़ी और अनियमितता पाने पर इस यूनिट का सेल्स लाइसेंस रद्द कर दिया। तुकाराम के ताबड़तोड़ एक्शंस की जद में मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन यानी एमसीए भी आ चुका है। एफडीए ने एमसीए के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में स्थित 5 फूड आउटलेट्स पर 20 अगस्त को छापा मारकर 5 के एफएसएसएआई लाइसेंस सस्पेंड कर दिए। इतने हाई प्रोफाइल प्रतिष्ठानों के खिलाफ एक्शंस होंगे तो मामला कोर्ट में पहुंचेगा ही। एमसीए ने एफडीए के एक्शन के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया तो कोर्ट ने तुकाराम मुंडे को कड़ी फटकार लगा दी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि हम एफडीए को कितनी बार समझा चुके हैं कि मच्छर को तलवार से मत मारो, क्या आप खुद को लॉर्ड समझते हैं कि कुछ भी कर सकते हैं? तुकाराम को फटकार लगाते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनसे ये भी पूछ लिया कि एफडीए सिर्फ निजी संस्थानों पर छापेमारी क्यों कर रहा है, कानून का पालन तो सरकारी परिसरों की कैंटीन्स में भी होना चाहिए। तुकाराम भी कहां मानने वाले थे, उन्होंने अगले ही दिन बॉम्बे हाईकोर्ट कैंपस की 3 कैंटीनों पर रेड कर दी और 2 कैंटीन के लाइसेंस कैंसिल कर दिए।
1: ड्यूरिंग द हियरिंग द क्वेश्चंस वर एज वेदर यू आर टेकिंग एक्शन अगेंस्ट ओनली प्राइवेट और यू आर टेकिंग एक्शन अगेंस्ट द एस्टैब्लिशड गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट, वी आर टेकिंग, वी हैव द डेटा टू बैक इट अप एंड इन दैट कोर्स ऑफ इंटरेक्शन सेज दैट हैव यू inspected Mantralaya canteen, so we had already done that. So then have you inspected or visited High Court canteen also, which we had not done. So I said we have not done that, but we have done this one. So High Court expects that it should be visited. Well, fine, next day my team goes and finds it out whatever it is there.
0: बॉम्बे हाईकोर्ट की कैंटीन पर रेड डालकर तुकाराम ने ये साबित कर दिया कि वो अलग ही मिट्टी के बने हैं। आपको बता दें कि इस तरह की चुनौतियां तुकाराम अपने सर्विस पीरियड में अनेकों बार फेस कर चुके हैं। साल 2006 में सोलापुर में बतौर असिस्टेंट कलेक्टर अपनी पहली पोस्टिंग में रेत माफियाओं पर एक्शन लिया तो उन पर जानलेवा हमला हो गया। साल 2007 में नांदेड़ में अवैध रेत खनन के खिलाफ कार्रवाई की तो 5 महीने में तबादला हो गया।

0: 2012 में मुंबई सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट में पोस्टिंग हुई तो टैक्स चोरों से 310 करोड़ रुपए वसूल लिए। साल 2014 में कलेक्टर बनकर दोबारा सोलापुर पहुंचे तो टैंकर माफियाओं की नकेल कस दी, जिसके बाद इन्हें महाराष्ट्र का वाटरमैन कहा जाने लगा। मार्च 2017 में पुणे महानगर परिवहन महामंडल लिमिटेड के चेयरमैन बने तो ड्यूटी से लंबे समय से गायब चल रहे 158 कॉन्ट्रैक्ट ड्राइवरों को एक साथ सस्पेंड कर दिया। साल 2022 में महाराष्ट्र के हेल्थ केयर कमिश्नर बने तो सरकारी डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस बंद करवा दी। कहने की जरूरत नहीं कि तुकाराम मुंढे को जो भी जिम्मेदारी मिली उन्होंने कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी की नई लीक खींच दी। दरअसल इस इंसान का पालन पोषण चांदी के चम्मच से नहीं हुआ है, इनका बचपन बहुत ज्यादा दुश्वारियों और आर्थिक तंगी के बीच बीता है। महाराष्ट्र के बीड जिले के गुमनाम से गांव ताड़सोना के एक गरीब किसान परिवार में 3 जून 1975 को जन्मे तुकाराम के पिता के पास इनके लिए चप्पल खरीदने तक के पैसे नहीं होते थे, लिहाजा ये बिना चप्पल के नंगे पांव स्कूल जाते थे। दिन में पढ़ाई करते थे और रात में खेतों की सिंचाई का काम भी करते थे। क्या आप यकीन करेंगे कि तुकाराम मासूम उम्र में सिर पर सब्जियां रखकर साप्ताहिक बाजार जाते थे और उन्हें बेचकर पैसे ले आते थे ताकि घर की रोजमर्रा की जरूरतें पूरी हो सकें। इतनी हार्डशिप में रहकर भी ये अपने क्लास में टॉप करते थे। तभी तो साल 2005 में तुकाराम ने यूपीएससी क्रैक किया और ऑल इंडिया 20वीं रैंक हासिल की। आज वही ताड़सोना गांव का गुदड़ी का लाल ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा का दिया जलाकर नौकरशाहों को सच्चाई की राह दिखा रहा है।
1: बंदे में है दम में आज आपने महाराष्ट्र के एफडीए कमिश्नर तुकाराम मुंडे के जीवन से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं को देखा। अगले हफ्ते ऐसी ही किसी और बेमिसाल शख्सियत के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम।
6: और इसी बीच एक शानदार खबर निकलकर सामने आ रही है एशियन गेम्स से जुड़ी हुई। आपको बता दें जापान में एशियन गेम्स चल रहा है और भारत को पहला मेडल मिल चुका है। भारतीय महिला टीम ने शूटिंग महिला इवेंट में सिल्वर मेडल हासिल कर लिया है। जापान की आईटी नागोया में जारी 20वीं एशियन गेम्स में इला वेनिल वलारिन, सोनम मस्कर और विदारसा विनोद ने 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट में रजत पदक हासिल कर लिया है। भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पोडियम पर जगह बना ली है और इस पदक के साथ शूटिंग ने एशियन गेम्स में भारत के पदक अभियान की शुरुआत कर दी है। तो वहीं भारतीय महिला हॉकी टीम ने अपने पहले ग्रुप स्टेज मैच में उज्बेकिस्तान को 19-0 से करारी शिकस्त दी। दीपिका ने भारत के लिए 8 गोल्स किए जबकि 7 अलग अलग भारतीय खिलाड़ियों ने भी गोल दागे हैं। तो एक शानदार शुरुआत हुई है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं सूरत के एक अनोखे गणपति पंडाल की तस्वीरें। सूरत के रांदेर इलाके में इस बार गणेश उत्सव के दौरान शानदार सामाजिक संदेश देने वाली थीम पर गणेश पंडाल तैयार किया गया है। आमतौर पर गणेश पंडालों में धार्मिक और पौराणिक झांकियां देखने को मिलती हैं, लेकिन इस पंडाल में भगवान गणेश के दर्शन के साथ साथ ऑर्गन डोनेशन यानी अंगदान को लेकर लोगों को जागरूक करने की कोशिश भी की जा रही है। पंडाल की पूरी सजावट और झांकी का उद्देश्य लोगों को ये समझाना है कि अंगदान के जरिए किसी जरूरतमंद व्यक्ति को नया जीवन दिया जा सकता है। पंडाल में मानव शरीर के अलग अलग अंगों को सांकेतिक रूप से प्रदर्शित किया गया है। पंडाल के अंदर प्रवेश करते ही ऑर्गन डोनेशन को लेकर अलग अलग जानकारी प्रदर्शित की गई है। इस पंडाल में सूरत की डोनेट लाइफ संस्था और वास्तु ग्रुप की ओर से अंगदान को लेकर किए जाने वाले कार्यों को भी दर्शाया गया है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं पुणे में गणेशोत्सव की तस्वीरें। पुणे में श्रीमंत दगडू शेठ गणपति के अलावा भाऊ साहेब रंगारी गणपति मंडल के पंडाल में भी गजानन के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। यहां स्थापित गणेश जी की मूर्ति बहुत अनोखी है। इस मूर्ति में भगवान गणेश को एक राक्षस पर प्रहार करते हुए दिखाया गया है। ये मूर्ति लकड़ी और बुरादे से बनाई गई है। स्थापना के बाद से इस मूल मूर्ति को कभी बदला नहीं गया है। श्रीमंत दगडू शेठ भाऊ साहेब रंगारी गणपति मंडल की स्थापना साल 1892 में पुणे में क्रांतिकारी भाव साहेब रंगारी की थी ने की थी। आपको बता दें इसे भारत का सबसे पहला सार्वजनिक गणेश मंडल माना जाता है। तो वहीं स्वतंत्रता पूर्व काल में लोकमान्य तिलक और भाव साहेब रंगारी जैसे क्रांतिकारियों ने समाज को संगठित करने के लिए इसकी शुरुआत की थी। हर साल गणेश चतुर्थी के दौरान यहाँ भारी संख्या में भक्त दर्शन के लिए पहुँचते हैं। और चलिए अब आपको दिखाते हैं बिहार में गणपति उत्सव की खास तस्वीरें। बिहार के में पूर्वी चंपारण जिले में मोतिहारी में धूमधाम से गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। शहर के गुदरी बाजार और ऐतिहासिक पंच मंदिर में 10 दिन के गणेश पूजा महोत्सव का खास आयोजन किया गया है। यहां पर गणपति प्रतिमाओं की भव्यता और सुंदरता देखते ही बनती है। गुदरी बाजार में 31 साल से गणेश पूजा का आयोजन किया जा रहा है और इस बार यहां कोलकाता की थीम पर भव्य पंडाल बनाया गया है और करीब 15 फीट ऊंची गणेश जी की प्रतिमा लगाई गई है। वहीं दूसरी तरफ शहर के ऐतिहासिक पंच मंदिर में भी गणेश उत्सव हो रहा है। यहाँ बप्पा का रोज अलग अलग रूपों में श्रृंगार किया जाता है और दिव्य आरती होती है।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की
7: एवरेस्ट तीखा लाल, सही तीखा सही लाल।
6: एशियन गेम्स में खुला भारत का खाता, शूटिंग में महिला टीम ने जीता सिल्वर मेडल, 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट में जीता पदक। दिल्ली में फिट इंडिया मूवमेंट के तहत साइकिलिंग, पूर्व क्रिकेटर परविंदर रवाना ने लिया हिस्सा, नाच गाने से भी स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। देशभर में गणपति उत्सव की रौनक, गणेश पूजा का आज सातवां दिन, पंडालों में श्रद्धालुओं का तांता लगा। तमिलनाडु के नटराज मंदिर में नाट्यांजलि नृत्य महोत्सव का आयोजन, दिखी भारतीय संस्कृति की झलक, कलाकारों ने मनमोहक प्रस्तुति दी। गुजरात के अंबाजी धाम में आस्था का महाउत्सव, आज से भादरवी महामेले का शुभारंभ, पहुंच सकते हैं करीब 40 लाख श्रद्धालु।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। गणपति महोत्सव का पावन समय चल रहा है और इस समय में ज्यादातर लोग भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे दूर्वा यानी डूब की महिमा के बारे में और डूब के यानी दूर्वा के चमत्कारी प्रयोग के बारे में। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 20 सितंबर 2026 दिन रविवार, तिथि है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि शाम को 5:51 तक। नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र। चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम को 4:30 से लगभग 6 तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 20 सितंबर 2026 दिन रविवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। केतु विद्यमान है सिंह राशि में, सूर्य और बुध कन्या राशि में, शुक्र तुला राशि में, चंद्रमा धनु राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में, मंगल और बृहस्पति फिलहाल संचरण कर रहे हैं कर्क राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशि फल कैसा रहने वाला है। हम आज बात कर रहे हैं दूर्वा की यानी डूब की। डूब का धार्मिक महत्व क्या है? देखिए, डूब या दूर्वा एक तरह की घास है और डूब यानी कि दूर्वा हिंदू परंपराओं के पूजा विधान में बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। माना जाता है कि डूब की उत्पत्ति भगवान विष्णु के रोम से हुई है। समुद्र मंथन के बाद अमृत कलश को सबसे पहले डूब पर ही रखा गया था, इसीलिए ऐसा मानते हैं कि डूब के अंदर भी अमरत्व के गुण आ गए हैं। सामान्यतः भगवान गणेश को डूब घास अर्पित करना विशेष लाभकारी माना जाता है और भगवान गणेश की पूजा में डूब घास का विशेष प्रयोग होता है। मात्र डूब अर्पित करने से भगवान गणेश की अपार कृपा जीवन में पाई जा सकती है।
दूरवा पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, करियर की स्थिति में सुधार होगा, नौकरी में लाभ के योग बन रहे हैं, कोई शुभ सूचना मिल सकती है। सूर्य देव को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, मानसिक चिंता हो सकती है, धन खर्च से परेशानी होगी, पारिवारिक विवादों से बचाव करें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मिथुन राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर की समस्या हल होगी, धन की स्थिति में सुधार होगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, करियर में बड़ा अवसर मिलेगा, संतान की समस्या हल होगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तो हिंदू पूजा में आप देखेंगे सामान्यतः दूर्वा का यानी दूब घास का बहुतायत में प्रयोग किया जाता है। दूर्वा का औषधीय और वैज्ञानिक महत्व क्या है? दूब में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। दूब के पत्तों से जो रस निकलता है वो इतना महत्वपूर्ण है कि उसको हरा रक्त यानी ग्रीन ब्लड कहा जाता है। दूर्वा के प्रयोग से शरीर विषमुक्त होता है, पेट की समस्याएं और जलन दूर होती है। दूब के रस के नियमित प्रयोग से एनीमिया दूर हो जाता है और त्वचा की कांति, त्वचा की चमक बढ़ जाती है। दूब और हल्दी को मिला करके पीस करके इसका लेप अगर शरीर पर लगाया जाए तो त्वचा संबंधी बीमारियां दूर हो जाती हैं। और दूब की कोंपल के प्रयोग से नशे की समस्या भी दूर हो जाती है। तो दूब का प्रयोग औषधि में और दवाइयों में भी किया जाता है और दूब का प्रयोग करने से शरीर का और त्वचा का स्वास्थ्य बेहतर रहता है। दूब पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह
सिंह राशि धन लाभ के योग बन रहे हैं, संतान पक्ष से आपको सहयोग मिलेगा, काम की अधिकता रहेगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि स्वास्थ्य का ध्यान रखें, जल्दबाजी में निर्णय ना लें, बड़ों की सलाह से लाभ होगा, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। तुला राशि स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, लाभकारी यात्रा हो सकती है, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि करियर की समस्याएं हल होंगी, धन की स्थिति में सुधार होगा, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, सूर्य देव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब आपको बताते हैं कि डूब के अलग अलग प्रयोग से जीवन की बाधाएं कैसे दूर होंगी। अगर आप नियमित पूजा में भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें, डूब अर्पित करें, तो आपकी बाधाओं का नाश होगा। कोई काम लंबे समय से ना हो पा रहा हो तो नियमित दूर्वा अर्पित करने से काम की बाधाएं दूर हो जाएंगी और साथ ही साथ धन संपत्ति की प्राप्ति भी आपको होगी। भगवान गणेश को 3 टुकड़े या 5 टुकड़े या 3 गांठ या 5 गांठ दूर्वा अर्पित करनी चाहिए। अगर जीवन में कोई बड़ी रुकावट है, अगर जीवन में कोई बड़ी बाधा है तो दूर्वा की माला भगवान गणेश को अर्पित करनी चाहिए। ऐसा करने से हर तरह की रुकावट दूर होगी और ऐसा माना जाता है कि पूजा में दूर्वा का प्रयोग करने से बुध नामक ग्रह की समस्याएं शांत होती हैं। अगर आपके घर में कच्ची जमीन है तो जमीन में दूर्वा लगाएं या गमले में दूर्वा लगाएं। ऐसा करने से शांति और समृद्धि दोनों प्राप्त होगी। नियमित रूप से भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और घर से निकलते समय उसमें से थोड़ी सी दूब अपने पास रख लें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी। जीवन में कितनी भी बड़ी रुकावट हो, कितनी भी बड़ी बाधा हो, लगातार 21 दिनों तक अगर आप भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें तो जीवन की बाधा, जीवन की रुकावट दूर होगी। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ
कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, धन लाभ के योग हैं, नौकरी में कुछ बदलाव होगा, स्थान परिवर्तन हो सकता है, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, मानसिक चिंता हो सकती है, वाहन सावधानी से चलाइएगा, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कुंभ राशि, धन की समस्या हल होगी, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, सूर्य देव को अगर जल अर्पित करें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, करियर की समस्याएं दूर होंगी, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए क्या है लकी टिप। अगर आप शीघ्र विवाह करना चाहते हैं तो नियमित रूप से भगवान गणेश की पूजा पीले फूलों से करके प्रार्थना करिएगा, आपका विवाह शीघ्र होगा। अब जान लेते हैं दिनांक 20 सितंबर 2026 दिन रविवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल गणेश जी को लाल फूल अर्पित करिएगा और घर से निकलते समय उसमें से एक फूल अपने पास रख लीजिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: क्या घर में सूर्य का प्रकाश घर को शुभ या अशुभ बना सकता है? क्या घर की दिशा की वजह से घर शुभ या अशुभ हो सकता है? घर में रहने वाले लोग घर में शुभता अशुभता कैसे ले आते हैं? क्या आपका घर शुभ है या अशुभ है? क्या है इसके लक्षण, जानिए मेरे साथ गुड लक स्पेशल में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
7: मेरे पागलो, हमारी कल्पना थोड़ी अलग है। हम तुमको जो बनाना चाहते तुम बनना चाह रहे बाबा के चेला, हम बनाना चाहते तुमको गुरु। तुम गुरु बनो, तुम्हारे अंदर कला उतरे, तुम्हारे अंदर ब्रह्म ज्ञान उतरे, तुम्हारे अंदर मोक्ष का रास्ता निकले, तुम्हारे अंदर आनंद निकले, तुम्हारे अंदर प्रसन्नता आए, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट आए। पर्चा बने या ना बने, खुशी कमना हो तुम्हारी, दुख जाए या ना जाए, सुख आ जाए। अछूट है बंदी महासुख होई, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा। यही तो हमारे हनुमान जी कह रहे, तुम्हारा दुख जाए या ना जाए, सुख आ जाए, दुख अपने आप चला जाएगा। हमारी कल्पना थोड़ी अलग है, हमारी विचारधारा थोड़ी अलग है तुमको लेकर। तुम देखना चाहते चमत्कार, हम चाहते हैं तुम्हारे अंदर नमस्कार। तुम चाहते हो कि तुम्हारे मन की बात बता दे, हम थोड़ा अलग सोचते हैं तुम्हारे लिए। हम मन की बात बताने को लेकर के बहुत प्रयत्न नहीं करना चाह रहे, हम चाह रहे तुम्हारी मन की बात तुम खुद परमात्मा से बताओ। तुम्हारे मन में परमात्मा है, जियो आनंद में, लूटो आनंद। भले ही फकीर रहो, चेहरे पर मुस्कुराहट तो अमीरों जैसी रखो। तुम्हें देख करके लगे ही ना कि ये फक्कड़ है। और कितने अमीर नहीं है जिनके चेहरे लटके भय, और कितने फकीर नहीं है जो खिलखिलाकर हंस रहे। और क्या काम की अमीरी जो मन हीन हो जाए, मन दुखी हो जाए, प्रसन्नता गायब हो जाए, खुशी चली जाए। और यहां ऐसे कितने लोग नहीं बैठे होंगे जिनको कोई कमी नहीं है, पर एक ही कमी है, खुशी नहीं है। और कभी कभी देखना बड़े बड़े अमीर खुश नहीं रह पाते, पर भीख मांगने वाला एक सिक्का में भी आनंद लूट लेता है। मेरे पागलो, हम चाहते हैं तुम्हारे अंदर वो खुशी जागे, वो आनंद जागे कि जेब में भले ही फूटी कौड़ी ना हो पर तुम्हारी बैठक तो सम्राटों जैसी हो। भले ही बुढ़ापा हो पर आंखों में चमक ऐसी हो जैसे अभी अभी जन्म लिया। कभी हो सके तो ऐसे सोना कि पूरी दुनिया लुट गई, सब आदमी मर चुके, हम अकेले बचे। हमारे सोने का यही तरीका, हम 6 बजे सुबह सोते हैं पर पूरा सोते 3 घंटे सोएंगे, इतना गहरा सोएंगे कि मानो 18 घंटे सोकर उठे, 3 घंटे सोने में भी। और हम सोने का तरीका थोड़ा हमारा अलग है, जैसे ही कमरे में गए थोड़ी न्यूज व्यूज पड़ी, बंद किया, बैठे थोड़ी देर और ऐसे सिर पे हाथ रखा, बताया दिमाग को कि सुन भाई दुनिया लुट चुकी है, पृथ्वी पे भूकंप आ चुका है 11 स्केलेटर का और सब मर चुके हैं और कल कोई काम है नहीं है, दरबार में आदमी ही नहीं बचे तो दरबार लगाना नहीं। अब जब सब लुट गए हैं कोई आदमी है ही नहीं तो खूब बेहतर सो ले। ये हम अपनी पर्सनल बात आज हमने बताई। लोग हमसे पूछते हैं कि आप कम सोने के बाद भी कैसे हंसते रहते, बस ऐसे सोते हैं, इतनी गहरी नींद आती है, इतनी गहरी कि जब सब लुट ही गया है तो काम ही बचा क्या। और सच भी है, कब क्या हो जाए कोई ठिकाना थोड़ी, यहीं बैठे हैं, गिर जाए गाज, आ जाए बाढ़। नेपाल में दिन में 12 बजे स्कूलों में बैठे ही तो थे लोग, कर ही रहे तो काम, उन्हें पता था कि बाढ़ आएगी, तपती दोपहरी थी, 12-2 बजे दिन में आ गई बाढ़, लाखों लोग बह गए, भागने तक का मौका ना मिला। देखे होंगे वीडियो तुमने, गिर जाए गाज, आ जाए बाढ़, फिर काहे की तुम्हारी अमीरी, काहे की तुम्हारी उपलब्धि और काहे का तुम्हारा ज्ञान, सब धरा रह जाएगा। इसलिए मेरे पागलों, न तुम बीते कल में जियो, न आने वाले कल में जियो, जीना है तो इसी पल में जियो, अभी में जियो, जो होगा सो देखा जाएगा। आदमी पर ही तो मुसीबत आती है, आने दो, आएगी देखी जाएगी। तुम हमसे ही देखो कितने लोग नहीं लगे रहते हमारे लिए रोज, और लगे भी रहेंगे। हम आदमी ऐसे हैं कि कईयों के दिमाग हमने खराब कर रखे और होने भी चाहिए, क्योंकि हम सीधी बातें बोलते हैं। आदमी हम बहुत सीधे हैं जलेबी जैसे, पर हमने कईयों की बर्बाद, और दुकानें बंद होनी भी चाहिए। अरे तुम हिंदू होकर वालों के चक्कर में पड़ो ही क्यों, अपने भगवान कम पड़ गए क्या। और हम तो चाहते हैं भारत का कोई भी व्यक्ति बाबाओं के चक्कर में ना पड़े, हमारे भी चक्कर में ना पड़े, हम तुम्हें खुद बाबा बनाना चाहते। बाबा का मतलब यह नहीं कि फकीर, बाबा का मतलब यह नहीं कि तुम कल ही लुगाई छोड़ के हमारे पास आ जाओ, गुरु जी कह रहे थे बने हो बाबा तो हम बन गए ना। बाबा का मतलब ही है जिसे कल की फिक्र नहीं है, बाबा का मतलब है जो चिंता नहीं चिंतन करता है, बाबा का मतलब है जो वासना में नहीं डूबा उपासना में डूबा, बाबा का मतलब है जो साधन में ना फंसे साधना में फंस जाए, बाबा का मतलब है जो विचार तो करे पर कार्य भी करे, बाबा का मतलब है कल की टेंशन में नहीं आज की अटेंशन में जिए। हम ऐसा बनाना चाहे। और मेरे पागलों, अंतिम बात, ढोंग की जिंदगी जीने से बेहतर है ढंग की जिंदगी जिया जाए, ढोंग की जिंदगी जीने से बेहतर है ढंग की जिंदगी जिया जाए। इसलिए हमारी आदत है हम कमरे में पर रहे या कैमरे पर रहे, कमरे में रहे या कैमरे में रहे, एक जैसे रहते हैं, अपनी मस्ती में रहते हैं। हमारे कारण अभी देखो तुम हमारी लकड़ी की खड़ाऊ को सोने की खड़ाऊ घोषित कर दी। देखो तो तुम लफड़े, जलवे देखो जरा तुम हमारे, कहीं सोना पैर में पहना जाता है? तुम्हें हम इतने उल्लू लग रहे, लेकिन हमने कल ही एक चेला को बोला है कि बेटा तू सोने की खड़ाऊ ही मंगवा, अपन लगाएंगे आग, जलो बेटा। कई लोगों को सुलग गई आग, लगे हैं पोस्ट डालने, वीडियो बना रहे। एक ने तो वीडियो में भेजा, ये बाबा है जो सोने की खड़ाऊ पहन रहा, इसे बाबा कहोगे? हमने उसको खबर भिजवाई, बहुत बड़ा भारत का प्रसिद्ध आदमी है, हमने उसको खबर भिजवाई कि हम सुनो तुम्हारे लिए ही नहीं, हम खुद कहते आई एम नॉट बाबा, तुम परेशान काहे होते भैया, और तो हमें बाबा बनना भी नहीं, और तुम्हारे लिए क्या बाबा बनेंगे, और तुम्हारे जैसे व्यक्ति यदि हमें प्रमाण पत्र दें कि हम बाबा हैं तो हम तो ना लेंगे, भले ही फकीर बन जाए, ढाबा बन जाएंगे, पर तुम्हारे जैसे आदमी है। अरे हम तुम्हारे लिए थोड़ी बने, हम तो बने हैं अपने हनुमान जी के लिए, हमें तुम्हें थोड़ी रिझाना, आओ तो बैल कम, न आओ तो भीड़ कम। और सुनो ठटरी के बरे हरो, अभी तो सोने की बातें वायरल हुई, हम तो डायमंड की पहनेंगे। हाँ तुम समझ। और एक व्यक्ति ने न्यूज पे कहा ये माया मोह छोड़ने वाले बाबा, माया मोह की बातें करने वाले, देखो सोने की खड़ाऊ पहन रहे। बेटा तुमने हमारे प्रवचन सुने ही नहीं, हमने माया की बातें बोली नहीं, क्योंकि हम खुद माया लेके प्रवचन करते हैं, तो हमने पहली बात तो माया छोड़ने की बातें बोली नहीं, और दूसरी बात हमारे जैसे लोग ही ना पहनेंगे तो तुम्हारे जैसे जलने वाले पहनेंगे क्या? अपने अपने चेलों की बात है, हमारे चेले चाहते हैं कि गुरु पहनो, उनकी श्रद्धा को ठेस ना पहुंचे। अब कोई ले आए बेचारे को धक्का नहीं लग। एक कल आए गांधीधाम से, उन्होंने कहा कि आज आप धोती पहनो, हमने कहा पहन लेंगे भैया, पर इसका मतलब ही नहीं कि कल तुम जींस पैंट ले आओ, जो मर्यादा है रहेंगे मर्यादा में, पर सुनो हम तुम्हारे हिसाब से ना रहेंगे, रहेंगे तो हम अपने बालाजी के हिसाब से, तुम्हें चाहे भला लगे चाहे बुरा लगे, आओ तो बैल कम न आओ तो भीड़ कम, पर हम तो भैया ऐसे ही रहें। तो आज हमने कहा है अपने चेला से कि सोने की खड़ाऊ मंगवाई जाए, जब बदनाम हो ही गए हैं तो कम से कम ढंग से बदनाम हो लें, भगवान ने चाहा तो कल तक आ जाएंगे, भले ही कर्जा लेना पड़े हमको, हाँ भले ही हम दो दिन बाद कर्जा वापस उसको चुका देंगे, वापस खड़ाऊ कर देंगे दो दिन बाद, पर अब जिद तो हमारी भी है सोने की ही पहने की, आग तो अपन लगाएंगे चाहे किराए पे हमें लेके आना पड़े, किराए। हमने यही कहा, एक दुकानदार से फोन लगा के हमने कहा, हमका भैया सोने की खड़ाऊ है, बोले मैं तो नहीं है, हम कहा एक काम करो सोना रखा हो तुम पे तो कुछ दिन के लिए हमें उधार दे दो भैया, किराए पे दे दो, हम चुका देंगे किराया। बोले आखिर ऐसी पड़ी क्या? हम कहा कुछ नहीं, कुछ लोगों को हमारी लकड़ी की खड़ाऊ सोने की लग गई, उनका भ्रम हमें दूर करके सत्य करना है। मेरे पागलों एक बात तुम समझना सीखना, धर्म का मतलब जानना नहीं होता, धर्म का मतलब मानना होता और माना जाना चाहिए। हमारे तो हनुमान जी का रंग ही सोने का है, स्वर्ण शैलाभि देहम कंचन वरण विराज सुवेशा कानन कुंडल। अब जिसके आराध्य का रंग ही सोने का हो वो सोने की खड़ाऊ तो पहन ही सकता है भैया, इतना तो कर सकता है। जलाएंगे बेटा हम खूब जलाएंगे, तुम जलो, तुम अपनी जलन बरकरार रखो, हम अपना जलवा बरकरार रखेंगे। तुम जलो बेटा जितना जलना है जलो, वो समुंदर खंगालने में लगे हैं, वो समंदर खंगालने में लगे हैं, जिनके खुद के लंगोट फटे हुए हैं वो हमारी पगड़ी उछालने में लगे हैं। जलो बेटा जलो जलो, कल सोने की आएंगी, खड़ा हूं, आएंगी बेटा आएंगी, और तुम कल सोने पे बात फिर करोगे, हम डायमंड की लाएंगे, भलाई नकली लाना पड़े हमें, पर बेटा हम लाएंगे, तुम्हें तो सोने ना देंगे चैन से। और सुनो बेटा, वीडियो भी बनाएंगे, और सुनो अकाउंट दे दोगे तो तुम्हारे पर्सनल अकाउंट पे भिजवाएंगे हम, कि ले बेटा देख, दिस इज गोल्ड ठटरी के भरे। पर हम तुमसे कहेंगे पागलो, ये ऐसे लोग तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हारी भक्ति पर लांछन लगाएंगे, आरोप लगाएंगे, तुम्हारा डीमोटिवेट करेंगे, तुम्हारे श्रद्धा और भक्ति को दबाएंगे। ये वो लोग हैं जो खुद तो खाते नहीं, दूसरों को भी खाने नहीं दे, खुद तो भक्ति करते नहीं, दूसरों को भी नहीं करने। तुम हमसे ही सीख लेना, हाथी चले बाजार। तो पड़ोसी यदि जलता हो तो किराए की कार ले जाना, पर जलाना बेटा जलाना, चाय में शक्कर ना हो पर बैठ के पीना दरवाजे पर ही, और सुनो सिप सिप करके पीना। और यदि घरवाली हो तो कहना शांति की अम्मा, पप्पू की बाई, शक्कर थोड़ा कम डाला करो, ऐसे जलाना। और बाहर बैठना कुर्सी पर, जब पड़ोसी बाहर छत पे हो पैर पे पैर रखना, और फिर फुरकना हो पानी पर पीना चाय जैसा, और जलाना और कहना पप्पू की बाई चीनी कम डाला कर, ताकि बेचारे जल जाए सामने वाले। और सुनो बीच बीच में ऐसी हरकतें करना, पड़ोसी जलने वाले हो दरवाजे पे खड़े हुए थोड़ा ऊपर देखना, और थोड़ा हंस देना, वाह कुछ नहीं ऐसे ही, उसका दिमाग खराब हो जाएगा कि ऊपर है कौन, आधे तो इसी में परेशान रहेंगे। पर मेरे पागलो, हम ऐसी ही दुनिया बनाना चाहते हैं कि तुम जियो आनंद में। हमने एक बात बचपन से सीखी है, मंदिरों के बनाने से सनातन का भला नहीं होगा, मनुष्य के मन में मंदिर बनाए जाएंगे तो मनुष्य का भला हो, तो सनातन का भला हो। इसलिए हमने मंदिरों की दान पेटियों में आने वाली चढ़ोतरी से मंदिरों का निर्माण नहीं किया, गरीब बेटियों का विवाह करवाया। इसीलिए बागेश्वर धाम पर अब तक पूरी दुनिया में अस्पतालों में मंदिर थे, हमने नई कल्पना की, अस्पतालों में मंदिर नहीं, मंदिरों में अस्पताल होने चाहिए, जहां दवा और कृपा दोनों मिले, जहां कृपा भी हो दवा भी हो और दोनों मिले, और दोनों ही प्रार्थना के द्वार हैं। मंदिर में भी प्रार्थना की जाती है, अस्पताल में भी जब कोई अपना मौत से और जीवन से लड़ रहा होता उस वक्त भी प्रार्थना की जाती है। इसलिए हमने मंदिर बनाने पर जोर नहीं दिया, अस्पताल बनाने पर जोर दिया। और मेरे पागलो, एक बात तुम भी मानो बहुत पक्की और सच्ची, कि जीवन को ऐसे जियो जो वास्तविक प्रैक्टिकल हो। धर्म का मतलब ही है प्रैक्टिकल जीना, वास्तविकता में जीना। पूजा हो पाए ना हो पाए चलेगा, पर किसी का दिल ना दुख जाए। तुम्हारी पूजा वरना बेकार है। हम एक बात हमेशा बोलते हैं, यहीं पर पिछले बार बोली थी, आदमी भी बड़ा गजब का है, प्याज खाता नहीं है ब्याज पूरा खाता, हाँ प्याज नहीं खाता ब्याज पूरा खाता है, ब्याज खाता है लोगों का भेजा खाता है, प्याज नहीं खाता भेजा खा लेता। अब वो कहता कि हम धार्मिक, भैया धार्मिक का मतलब ही है हंसना और हंसाना, आनंद लेना और आनंद बांटना, ये धार्मिकता है। इसलिए आज की बात बहुत ध्यान रखना। अंतिम बात और सुनो, आज के बाद अभी से कल की प्रार्थना को हम दोहरा रहे, या तो आज के बाद तुम हनुमान जी को छोड़ दो या हनुमान जी पर छोड़ दो, या तो बालाजी को छोड़ दो या बालाजी पर। भगवान के घर देर है अंधेर, भैया वो बहुत दयालु हैं, उनके जैसा कौन दयालु हो। हमारे जैसे साधारण व्यक्ति पर कृपा करें, आप तो वैसे ही भक्त हो, हमारे जैसे उल्टे आदमी साधारण जीव न पढ़े न लिखे, देखो तो तुम उनकी कृपा। हमारे जैसे अनपढ़ गवार को 16-16 देश घुमा रहे, जिनकी अंग्रेजी इतनी है आई कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश बट आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग, इतने में हम 16 देश निपटाया, लंदन की संसद में घुस गए, वहां प्रवचन सुनाया है, 3-3 देशों के प्रधानमंत्रियों, देखो तो तुम जलवा, हनुमान जी की कृपा तो देखो वो कितने बड़े दयालु नहीं। अरे बालाजी की कृपा तो देखो, जिस गांव में हम भीख मांगते थे चावल नहीं देते थे लोग, आलू नहीं देते थे, उस गांव में आज अन्नपूर्णा चल रही, 20,000 लोग भंडारा पा रहे, देखो तो तुम वो कितने दयालु हैं, कितने चमत्कारी हैं बालाजी। जिस गांव में हमें खुद की सगी बहन के लिए 20,000 रुपया उधार नहीं दिए, घर घर गए पिताजी के नाम गिरवी रखी तब 35,000 रुपया मिले, उस गांव में बालाजी का चमत्कार तो देखो, हर साल बेटियों के विवाह हो रहे, चमत्कार तो देखो। और इसीलिए हमने हर बेटी के विवाह में प्रण लिया कि साल भर कथा करेंगे, बाहर जाएंगे, जो भी चढ़ोतरी मिलेगी दान मिलेगा। हमने हर बेटी को केवल डबल बेड, सोफा, एलईडी टीवी, सोने की कील, पायल, बिछिया, किचन सेट, सोफा सेट, डिनर सेट और एलईडी टीवी के साथ, उनको हर बेटी को बाल मुकुंद जी ठाकुर जी रामचरितमानस के साथ 30,000 रुपया की नगद एफडी दी। हम अपनी बहन के लिए 20,000 उधार नहीं उठा पाए तो क्या हुआ, हमारे यहां धाम से जिस बेटी का विवाह होगा उसको हम नगद रुपया देंगे। पर ये हम नहीं कर रहे ना, हमारा ये कोई चमत्कार है, हम तो कथा करने जाते लोगों का भला होता। कल ही हमको एक व्यक्ति मिले आर्मी में, कल ही मंच पे वो आई थी माताजी, उनके बेटा की आर्मी में नौकरी लग गई, वो पैसा लेके आई, बोले गुरुजी ये लो, हम कहा हमें काहे को दे रहे, एक काम करो एक बेटी का कन्यादान कर देना, तुम्हारा भला हो गया उस बेटी का भला हो जाए, हमें क्या, आज हमें तो भगवान की दया, भोजन मिल ही रहा, कपड़े मिल ही रहे हैं, रोज पहनने और खाने को मिल ही जाता है, भगवान की दया। जरा बालाजी का चमत्कार तो देखो मेरे पागलो, जिस गांव में मेडिकल स्टोर नहीं था उस गांव में 300 बेड का हॉस्पिटल बन रहा है, चमत्कार तो देखो, जिस गांव में विधायक भी 5 साल में एक बार नहीं आता था वोट मांगने भर आता था, उस गांव में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दर्शन करने जा रहे, जरा बालाजी का चमत्कार तो देखो कितने चमत्कारी है, जहां कोई पूछता नहीं था आज देखो तो हम तो भाग्य पर इतराते रहते हैं, धन्य प्रभु की माया। जब चेलों के घर में निमंत्रण होता, कल ही 2-3 चेलों के घर गए, आज भी एक चेला के घर जा रहे, वो 4-5 साल से जुड़ा, उनके भंडारे पर उनके घर भंडारा है, जा रहे हैं, बहुत गरीब हैं, साधारण से हैं, उनके यहाँ जा रहे हैं, जब जाते हैं भगवान से देख पूछ प्रार्थना करते कि बा प्रभु कल तक कोई मांगने पे भोजन नहीं देता था, आज तुम्हारी दया तो देखो, लोग निमंत्रण की लाइन लगा करके खड़े हैं।

0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की

0: बदल सकता है, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जिनकी उम्र 70 साल से 100 साल तक है, और इस उम्र में भी इन लोगों को जरा भी जोड़ों का दर्द नहीं है। यानी ये लोग इस उम्र में भी कहीं जाने के लिए, उठने बैठने के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं है। एक लाइन में कहें तो ये लोग इस उम्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर है।
1: मैं पिछले एक साल से आयुर्वेदिक महाशक्तिशाली फॉर्मूला ले रहा हूँ, फौजी 360 इसका नाम है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में, यानी घुटने कमर कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
2: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
3: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैनू जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है। अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
0: फौजी 360 को अब तक जितने भी लोगों ने इस्तेमाल किया है, उन सभी लोगों को जोड़ों के पुराने से पुराने दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे के दर्द से पूरी तरह आजादी मिली है। और ये दावा हम नहीं, वो लोग खुद कर रहे हैं जो फौजी 360 इस्तेमाल कर चुके हैं।
4: इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं, और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
5: और सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि इसे हर बंदा ले सकता है, डायबिटीज वाला मरीज ले सकता है, ब्लड प्रेशर वाला मरीज ले सकता है, और मेरा खुद का दर्द खत्म हुआ यार। इसीलिए मैं खुल के बताता हूँ कि ये फौजी गजब की चीज है।
0: फौजी 360 के सिर्फ एक कोर्स के बाद 80-90 साल के बुजुर्ग भी जवानों की तरह सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पोते पोतियों को गोदी में लिए घंटों उनके साथ खेल रहे हैं।
6: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने।
0: ये बात सुनने में बड़ी हैरान करने वाली है, पर इन बुजुर्गों ने इंटरनेट पर प्रूफ के साथ वीडियोस भी अपलोड हैं, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। और जोड़ों के दर्द के तेल और स्प्रे बेचने वाले दुकानदार परेशान है, क्योंकि फौजी 360 लेने के बाद कोई भी व्यक्ति कभी भी इन जोड़ों के दर्द को ठीक करने वाली दवाएं, जैसे तेल, गोली और स्प्रे के चक्कर में दोबारा कभी नहीं फंसेगा।
7: 3 साल से आंटी जी के घुटनों में इतना दर्द था कि इनका घुटना मुड़ता भी नहीं था, जरा भी नहीं मुड़ता था। और आज की स्थिति देखते हैं आप, ये देखिए इनका पूरा घुटना मुड़ रहा है, हॉस्पिटल खुद चल के आई हैं, और ये सब कमाल हुआ है फौजी 360 से। हम रिपोर्ट से समझते हैं, देखिए इनके पुरानी रिपोर्ट है, पूरी घुटने जकड़ चुके थे, जाम हो चुके थे, जिसके कारण घुटनों में पूरी तरीके से मूवमेंट खत्म हो गया था। और आज की डेट है, जब से इन्होंने फौजी 360 यूज करना शुरू किया है, उसके बाद उनके घुटनों में एक तरीके से नई जान आई है। और हमें इतना अच्छा लगता है जब हम देखते हैं कि लोगों के पैसे बच रहे हैं और लोगों को फौजी 360 जैसे नेचुरल प्रोडक्ट से आराम मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जिन भी लोगों को जोड़ों से संबंधित कोई भी समस्या है, एक बार फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
0: फौजी 360 के इफेक्ट्स और रिजल्ट्स को जानने के लिए हमने बहुत से एक्सपर्ट से बात करी, और लगभग सभी का यही कहना था कि फौजी 360 जोड़ों के दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे के दर्द के लिए राम बाण की तरह काम करता है।
8: किट में मिलने वाले जो दूसरे प्रोडक्ट होते हैं, जैसे तेल, स्प्रे, ये सिर्फ ऊपरी और टेम्परेरी राहत देते हैं, और वहीं फौजी 360 शरीर के अंदर जाकर जोड़ों को, हड्डियों को, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
9: ये साहिल जी हैं, 2 महीने पहले आए थे, कह रहे थे मेरे दोनों घुटने बदल दो क्योंकि बहुत परेशानी हो रही थी इन्हें चलने फिरने में। मैंने कहा हम पैसे बर्बाद नहीं करेंगे, आप फौजी 360 का एक कोर्स लेके देखिए, फिर मिलते हैं। आज आए हैं, बताइए सर कैसे रिजल्ट मिले आपको, क्या स्थिति अभी?
8: पहले तो जितना धन्यवाद आपको दूं उतना कम है डॉक्टर साहब, क्योंकि पूरा चल लेता हूं मैं मोटरसाइकिल चलाने लगा हूं वापस से अपनी। अब बिल्कुल भी बुरी स्थिति नहीं है, एकदम बिल्कुल दर्द खत्म हो चुका है। अब तो आप मुझे बोलो 5 किलोमीटर चले जाओ, मैं बिल्कुल चले जाऊंगा, अभी भी सीढ़ी चढ़ के आया हूं हॉस्पिटल में।
0: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
6: 2 साल से घुटने और कमर के कारण पलंग पकड़ लिया था, सब पलंग पे ही हो रहा था, अग्ना मुतना भी पलंग पे हो रहा था, जरा भी नहीं चल पाता था। 3 महीने से ये फौजी 360 पाउडर ले रहा हूँ, अब
10: खुद से उठ जाता हूँ, बाथरूम हो जाता हूँ, चल फिर लेता हूँ, बहुत आराम है, बहुत राहत है।
0: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी

0: 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
1: रोज 150 सीढ़ी चढ़कर मैं मेरे भोले बाबा के मंदिर जाती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है मेरे घुटनों में। और ये कमाल किसी तेल या स्प्रे से नहीं हुआ है, क्योंकि उनसे कुछ होता ही नहीं है। मुझे तो फायदा हुआ है फौजी 360 से। अरे कमाल का ट्रीटमेंट है। इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
0: दुनिया के किसी भी तेल या स्प्रे के साथ कभी भी कोई गारंटी नहीं मिलती, यानी दर्द खत्म होगा या नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं। लेकिन फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है, यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
2: 15 साल पहले चिकनगुनिया हुआ था, तब से शरीर के हर कोने में दर्द बना रहता था। होम्योपैथी, फिजियोथेरेपी, ये तेल, वो स्प्रे, सब ट्राई कर लिया, मगर आराम मिला 3 महीने पहले इस फौजी 360 से। अब कसम खा के बता रहा हूँ, जरा भी दर्द नहीं है शरीर में।
1: घुटने के दर्द के कारण मैं चल भी नहीं पाती थी, पर ये जब से फौजी 360 लिया है ना, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। अब आप देखो, मैं घर का पूरा काम खुद कर लेती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है।
3: 5 साल से तो मैंने नमाज भी अदा नहीं की थी, क्योंकि घुटना मेरा मुड़ता ही नहीं था। अब घुटने बदलवाने के लिए जितने पैसे भी नहीं थे कि घुटने बदलवा लें इस उम्र में, फिर ये फौजी 360 जब से लेना शुरू किया है, अब मैं खुद चल लेता हूँ, खुद का काम पूरी तरीके से कर लेता हूँ। और जो मैंने पलंग पकड़ लिया था ना, वो वहाँ से बच गया हूँ मैं। अब ये तो ताकत है फौजी 360 की, ये अल्लाह की दुआ से कम नहीं है फौजी 360। अब खुद का काम मैं खुद से करता हूँ बिल्कुल।
4: हमारे नेपाल में पहाड़ी इलाका है तो चलना फिरना बहुत होता है, जोड़ों में बहुत दर्द का प्रॉब्लम शाप को रहता है, पर हमने कभी तेल या स्प्रे नहीं लगाते, कुछ नहीं होता उससे। सारे लोग मेरी उम्र के यहाँ फौजी 360 लेते हैं, बहुत कमाल का दवाई है, बिल्कुल भी जोड़ों में दर्द नहीं है इसको लेने से।
0: अगर आप चाहते हैं कि आपके जोड़ों का दर्द अंदर से पूरी तरह ठीक हो सके और आपको पूरी तरह आराम मिल सके, तो सिर्फ एक कॉल करके इस कमाल के आयुर्वेदिक फॉर्मूले फौजी 360 को अपने घर मंगा सकते हैं और जोड़ों के दर्द से पूरी तरह आजादी पा सकते हैं।
5: बॉलीवुड का एक गाना है ना, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान। तो मेरी कहानी भी ऐसी है कि मैं दुनिया के लगभग बहुत से बड़े बड़े देशों में रहा हूँ और मैंने सब जगह ये जोड़ों के दर्द, स्पेशली घुटने के दर्द का इलाज कराया, बट कहीं भी वैसा रिजल्ट नहीं मिला। 2 years back when we shifted to India, तब ये फौजी 360 के बारे में पता पड़ा, we started using it। मुझे और मेरी वाइफ दोनों को इतना कमाल का रिलीफ मिला कि ऐसा रिलीफ किसी भी ट्रीटमेंट से आज तक नहीं हुआ था।
0: फौजी 360 के बारे में और डिटेल में जानने के लिए हमारी टीम उस आयुर्वेदिक आश्रम तक पहुंची जहां फौजी 360 बनाया जाता है और उन एक्सपर्ट से बात करी और वो सीक्रेट जानने की कोशिश करी कि कैसे सिर्फ एक फॉर्मूले से लोगों के जोड़ों का दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, पूरी तरह ठीक हो रहा है।
6: इसमें कुछ ऐसी औषधियां हैं जो आपकी बोन्स को मजबूत बनाता है, जो आपके लिगामेंट में जो फ्लूइड की कमी हो गई है ये उसे दोबारा रिस्टोर करने में मदद करता है। और साथ ही दूसरी दवाओं से ये बेहतर इसीलिए है कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसे डायबिटिक पेशेंट ले सकता है, इसे ब्लड प्रेशर का मरीज ले सकता है, क्योंकि ये पूरी तरह सुरक्षित है और आपको पहले दिन से फायदा दिखने लगेगा। ये ताकत है फौजी 360 की। बस यही कारण था कि हमने सोचा कि अब समय आ चुका है लोगों की, जनता की सेवा करने का और घर घर इसे भिजवाने का। तो जो आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, आप इस पर फोन कर सकते हैं, हमारे केंद्र पर डायरेक्ट फोन होगा, आप अपनी समस्या बताइए। अगर आपको बात सही लगती है, फौजी 360 आपको लगता है कि हाँ अब समय है कि जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक करना है, तो आप इसे मंगा सकते हैं। और साथ ही इसमें कुछ ऐसी औषधियां भी हैं जो आपको पूरे समय आपके शरीर में चुस्ती बनाए रखता है।
0: फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है, यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
7: फौजी 360 मार्केट में मिलने वाले दूसरे जो पेन किलर ऑयल्स होते हैं, स्प्रे होते हैं, उनसे कैसे अलग है, मैं आपको साइंटिफिकली समझाता हूं कि ऐसा क्या है इस ट्रीटमेंट में जो इसके रिजल्ट्स बहुत ही शानदार है। देखिए, कोई भी तेल या स्प्रे कैसे काम करता है सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ। आपके दर्द वाले हिस्से पे जब आप तेल लगाते हैं तो ये बाहर से आपके उस पर्टिकुलर एरिया को सुन्न कर देता है, मतलब आपके बॉडी के अंदर दर्द तो रहता है, उस जोड़ के अंदर दर्द तो है, और वहीं फौजी 360 जो है ये अंदर से काम करता है, क्योंकि जब आप इसे कंज्यूम करते हैं बॉडी को वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है जो जोड़ों को मजबूत बनाता है अंदर से, जो जोड़ों की चिकनाहट कम हो गई है ना ये उसको दोबारा लौटाता है। तो ये एक अंदर से काम करने वाली चीज है, यानी ये पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से ठीक करता है, और वहीं तेल और स्प्रे सिर्फ टेंपरेरी राहत देते हैं। तो आप अगर अभी भी जोड़ों के दर्द के लिए तेल या स्प्रे यूज कर रहे हैं तो आप आज से ही वो सब बंद कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ पैसे बर्बाद करने की बात है और टेंपरेरी रिलीफ की बात है। अगर आप पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से मजबूत बनाना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, तो आप एक बार ये फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
8: पिछले महीने मैं बाथरूम में स्लिप हो गई थी तो बहुत दर्द रहता था पेट में, डॉक्टर ने कहा कुछ L1 L2 का कुछ तो बताया था, पर इन्होंने फौजी 360 लाके दिया और उससे इतना आराम हुआ है कि अब जरा भी दर्द नहीं है। मम्मी पापा जी ने भी लेना शुरू किया है और उनको भी जो घुटनों में दर्द था उन्हें भी राहत मिली है। तो हर घर में मुझे लगता है ये फौजी 360 होना ही चाहिए।
9: मैं तो 12 महीने ही केदारनाथ बाबा के चरणों में ही रहता हूँ और यहाँ इतनी ठंड पड़ती है कि ठंड के चक्कर में पूरे समय शरीर अकड़ा हुआ रहता है, सारे जोड़ में बड़ा दर्द बना रहता था, पर जब से ये फौजी 360 किया है ना शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो कहीं चलना हो बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता, बर्फ में भी चल लेता हूँ बिल्कुल भी दर्द नहीं है। ये ताकत है इस आयुर्वेदिक फौजी 360 की।
0: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
10: टीवी पे फौजी के बारे में देखा तो मैंने फोन करके फौजी 360 को सीधा घर मंगा लिया, क्योंकि 3 साल से कमर में इतना भयंकर दर्द था कि घर के सारे कामों के लिए मैं पूरी तरीके से बाइयों पे निर्भर हो चुकी थी। सिर्फ 15 दिन हुए हैं और अब बिल्कुल भी दर्द नहीं है, कमर में जरा भी दर्द नहीं है, इतना शक्तिशाली है ये फौजी 360।
11: बिना सहारे के मैं 2 कदम भी नहीं चल पाती थी, पूरे समय बहू और बेटे की मदद ही लेनी पड़ती थी, पर जब से ये फौजी 360 लिया है कमर में घुटने में जरा भी दर्द नहीं है। अब सीढ़ियां चढ़ जाती हूँ, उतर जाती हूँ, चल लेती हूँ आराम से, इधर का सारा काम कर लेती हूँ, अब दर्द में पूरी तरीके से राहत है।
12: मेरी उम्र 88 साल है, रोज 5 किलोमीटर पैदल चलता हूँ लेकिन फिर भी जरा भी दर्द नहीं है। ये शक्ति है फौजी 360 की।
0: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं, फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
13: 1 साल पहले दोनों घुटने बदलने के लिए बोल दिया था, मगर मैंने घर बैठे आयुर्वेद के एक फॉर्मूले से अपने घुटने और जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक किया है और अब मैं वो सब कर सकता हूँ जो जवान आदमी भी नहीं कर सकता। आप में दम हो आप करके बताओ। जोड़ों के दर्द के लिए जो भी लोग तेल या स्प्रे लगाते हैं ना उन्हें आज से ही ये सब बकवास चीजें बंद करना चाहिए। इससे कुछ नहीं होता है क्योंकि जोड़ों के दर्द का इलाज अंदर से होता है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में यानी घुटने कमर कहीं भी जरा भी दर्द नहीं और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
0: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
9: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो कहीं चलना हो बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
14: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है मैनू जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है। अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
0: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं, फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
15: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने का।
0: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 अपने घर मंगा सकते।
16: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
17: क्या घर में सूर्य का प्रकाश घर को शुभ या अशुभ बना सकता है? क्या घर की दिशा की वजह से घर शुभ या अशुभ हो सकता है? घर में रहने वाले लोग घर में शुभता अशुभता कैसे ले आते हैं? क्या आपका घर शुभ है या अशुभ है? क्या है इसके लक्षण? जानिए मेरे साथ गुड लक स्पेशल में।
18: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
19: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
18: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
20: और दुर्भाग्य कहता है
18: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
19: अविश्वास में विश्वास बसता है,
18: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
0: गुड न्यूज टुडे

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: एवरेस्ट तीखा लाल, सही तीखा सही लाल।
3: एशियन गेम्स में खुला भारत का खाता, शूटिंग में महिला टीम ने जीता सिल्वर मेडल, 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट में जीता पदक। देवभूमि उत्तराखंड में फिर शुरू हुई पवित्र चार धाम यात्रा, खराब मौसम की वजह से रोकी गई थी यात्रा, केदारनाथ यात्रा मार्ग फिर भक्तों से गुलजार हुआ। रामनगरी अयोध्या के सूर्यकुंड मंदिर में उमड़ा आस्था का मेला, श्रद्धालुओं ने किए भगवान सूर्यदेव के दर्शन, सरयू नदी में भी लगाई पवित्र डुबकी। सैलानियों से गुलजार हुआ जम्मू कश्मीर, श्रीनगर में पर्यटक उठा रहे हैं शिकारा राइड का लुत्फ, कठुआ में रोड कनेक्टिविटी बढ़ने से पर्यटन को लगे पंख। देश भर में गणपति उत्सव की रौनक, गणेश पूजा का आज सातवां दिन, पंडालों में श्रद्धालुओं का तांता लगा।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
4: Hong Jim Hall.

से जिसने भी हथियार खरीदा उसके सामने पछताने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा। कम कीमत और सस्ती टेक्नोलॉजी के चक्कर में चीन से वेपन तो खरीद लिया गया, लेकिन वो जंग के मैदान में कितना कारगर है इसका पता अब उसके खरीदारों को हो रहा है। यानी कि चीन से डिफेंस डील करने वाले देश के सामने अब सर पीटने के अलावा दूसरा रास्ता नहीं बचा। ना तो चीन की मिसाइलें मंजिल तक पहुंच रही हैं, न ही उसके टैंक पराक्रम दिखा रहे हैं। चीन के मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम भी लाइव फायर के दौरान खुद तबाह हो चुके हैं। वहीं ऑपरेशन सिंदूर में चीन के एयर डिफेंस सिस्टम का फ्लॉप होना दुनिया ने देख ही लिया।

0: चीन की ड्यूप्लीकेसी के बारे में पूरी दुनिया जानती है और अब तो इसके बाकायदा सबूत मिलने शुरू हो गए हैं, यानी अब दुनिया देख भी रही है। दरअसल हाल ही में सऊदी अरब ने हूती विद्रोहियों पर हमला किया, जिसमें उसने DF-15A का इस्तेमाल किया, जो कि अपने टारगेट पर पहुंचने से पहले ही फट गई। और आपको ये भी बता दें कि ये वही DF-15A है जो सऊदी अरब ने चीन से ली थी।
1: सोशल मीडिया पर DF-15 मिसाइल के कुछ वीडियोस भी सामने आए हैं। इनमें ये मिसाइल एक रेगिस्तान में पड़ी दिख रही है और कुछ लोग इसे देखते और फिर धकेलकर इधर उधर करते नजर आ रहे हैं। ये लोग हूती लड़ाके और उनके समर्थक बताए गए हैं, जो गिरी हुई सऊदी मिसाइल का जायजा ले रहे हैं।
0: दरअसल DF-15A शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का बूस्ट रेंज है। अब हाल ही में विश्लेषकों ने जो सऊदी अरब की तरफ से यमन में हमला किया गया था, वहीं से इसके कुछ अवशेष ढूंढे हैं, जिसके बाद और जिसके अध्ययन से ये पता चलता है कि ये चीनी निर्मित ही है।
1: कई रक्षा विशेषज्ञों का दावा है कि ये मिसाइल सऊदी अरब की रॉयल सऊदी स्ट्रेटेजिक मिसाइल फोर्स ने हूती ठिकानों पर दागी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक मिसाइल लक्ष्य से चूक गई और यमन के रेगिस्तान में जा गिरी।
0: अगर मिसाइल दागने की पुष्टि हो जाती है तो ये प्रमाणिक हो जाएगा कि सऊदी अरब ने पहली बार चीनी मिसाइल का इस्तेमाल किया है। हालांकि अभी तक ना तो यमन और न ही चीन से इसके बारे में कोई भी आधिकारिक जानकारी सामने आई है। सऊदी अरब भी फिलहाल खामोश है।
1: दावा यह किया जा रहा है कि करीब 3 दशक में ये पहली बार हुआ है जब सऊदी फोर्स ने चीन से खरीदी गई DF-15A शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का युद्ध में इस्तेमाल किया है। विश्लेषक इस निष्कर्ष पर इसलिए पहुंचे क्योंकि हूतियों के पास DF-15A जैसी मिसाइल होने के कोई प्रमाण नहीं है। उनके शास्त्रागार में मुख्य रूप से ईरानी तकनीक वाली मिसाइलें और ड्रोन हैं। सऊदी अरब के पास पहले से चीन से खरीदी गई DF-3A और DF-21 जैसी मिसाइलें होने के रिपोर्ट्स लंबे समय से चल रही हैं। लेकिन सऊदी अरब ने DF-15A शॉर्ट रेंज मिसाइल प्रणाली भी चीन से खरीद रखी है। इसकी कोई आधिकारिक जानकारी पहले कभी सामने नहीं आई, इसीलिए कई विशेषज्ञों ने इसे सऊदी की गुप्त मिसाइल क्षमता का हिस्सा माना है। अगर ये सऊदी की मिसाइल थी तो इसका लक्ष्य चूकना सऊदी की गुप्त मिसाइल क्षमता पर सवाल खड़े करता है। साथ ही चीनी हथियारों की विश्वसनीयता पर भी चर्चा छिड़ गई है।
2: देखिए, सबसे पहले ये बात क्लियर है कि सऊदी अरबिया का जो मिसाइल प्रोग्राम है उसकी शुरुआत देखिए चाइना ने की थी, और इसी के तहत चाइना ने अपने तमाम मिसाइलों की जो सप्लाई है वो सऊदी अरबिया को की थी, जिसमें प्रमुख जो मिसाइल्स हैं वो हैं DF-3A और DF-21। ये दोनों मिसाइलें लगातार सऊदी अरबिया के पास बनी हुई है, जिसका वो टाइम टू टाइम इस्तेमाल करता है। जहां तक उसके दूसरी मिसाइल DF-15 अल्फा का सवाल है, जब हूतियों के ऊपर मिसाइल फायर की सऊदी अरब ने, तो उसके जो रेमनेंट, उसके जो स्प्रिंटर थे, उससे पता लगा कि सऊदी अरबिया के पास DF-15 अल्फा मिसाइल भी है, जो कि एक बड़ा ही प्रोमिनेंट बैलिस्टिक मिसाइल है। तो इस तरीके के जब आप मिसाइल को फायर करते हैं तो दिखाता है कि आपकी इन्वेंट्री में ये मिसाइल है।
1: सऊदी चीन मिसाइल डील का इतिहास लगभग 40 साल पुराना है और बेहद गोपनीय रहा है। ये रक्षा इतिहास के सबसे दिलचस्प अध्यायों में से एक है, क्योंकि सऊदी अरब पारंपरिक रूप से अमेरिका का सबसे बड़ा हथियार खरीदार रहा है, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए उसने हमेशा चीन पर ही भरोसा किया है। 1980 के दशक के मध्य में जब सऊदी अरब को ईरान इराक युद्ध के दौरान अपनी सुरक्षा को खतरा महसूस हुआ तो उसने अमेरिका से बैलिस्टिक मिसाइलें मांगी। अमेरिका ने इसराइल के विरोध और मध्य पूर्व में हथियारों की होड़ बढ़ने के डर से सऊदी को मिसाइलें देने से मना कर दिया। इसके बाद सऊदी अरब के प्रिंस खालिद बिन सुल्तान, जिन्हें सऊदी मिसाइल प्रोग्राम का जनक कहा जाता है, उन्होंने 1985 में गुप्त रूप से चीन से संपर्क किया। दोनों देशों के बीच तब आधिकारिक राजनयिक संबंध भी नहीं थे। साल 1988 में ये खुलासा हुआ कि सऊदी अरब ने चीन से DF-3A इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल खरीदी है। ये चीन की एक परमाणु सक्षम मिसाइल थी, लेकिन सऊदी अरब को देने के लिए चीन ने इसमें बदलाव कर दिए और इसे सिर्फ कन्वेंशनल पेलोड यानी कि पारंपरिक उच्च विस्फोटक ले जाने लायक ही बना दिया। सऊदी अरब ने मिसाइलों को खरीदने के बाद करीब 26 साल तक दुनिया से इसे छिपा कर रखा और पहली बार 2014 की एक सैन्य परेड में इसे सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया गया।
2: देखिए, सबसे पहले सऊदी अरेबिया अमेरिका का बहुत ही स्ट्रांग एलाई है। सऊदी अरेबिया में अमेरिका के तमाम मिलिट्री बेसिस हैं, लेकिन जहां तक मिलिट्री मिसाइल्स का सवाल है, उसने चाइना की तरफ रुख किया क्योंकि चाइना उसको एक सस्ती मिसाइल देता है, एक जो उसका कॉस्ट इफेक्टिवनेस होता है। और साथ में ये देखिए, 1980 के दशक में चाइना के सऊदी अरेबिया के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन हुए और वो इतने प्रकार हुए कि तमाम तरीके का इन्वेस्टमेंट चाइना ने किया। इसी के तहत उसने ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में मध्यस्थता की, सऊदी अरेबिया और सीरिया के बीच में मध्यस्थता की। तो ये शुरुआत उसकी, उसको एक सस्ती मिसाइल देता है, एक जो उसका कॉस्ट इफेक्टिवनेस होता है। और साथ में ये देखिए, 1980 के दशक में चाइना के सऊदी अरेबिया के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन हुए और वो इतने प्रकार हुए कि तमाम तरीके का इन्वेस्टमेंट चाइना ने किया। इसी के तहत उसने ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में मध्यस्थता की, सऊदी अरेबिया और सीरिया के बीच में मध्यस्थता की। तो ये शुरुआत उसकी 1980 में हुई थी, जिसके तहत उसने DF-3 अल्फा मिसाइल को सप्लाई किया और आज की डेट में वो अन्य तरीके की भी मिसाइलें सऊदी अरेबिया को दिया। तो ये ज्यादा हिस्ट्री में ना जाके ये रिसेंटली 80s के दशक का यह डेवलपमेंट है।
1: DF-3 मिसाइलें बहुत पुरानी हैं, लिक्विड फ्यूल आधारित थी और उनकी सटीकता बेहद खराब थी, इसीलिए सऊदी अरब को अपनी रणनीतिक क्षमता को आधुनिक बनाने की जरूरत पड़ी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब ने साल 2007 में चीन के साथ एक और गुप्त समझौता किया और अधिक आधुनिक DF-21 मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें खरीदी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA को सऊदी और चीन के बीच DF-21 मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल सौदे की भनक लग गई थी, लेकिन तब उन्होंने ये सुनिश्चित कर लिया था कि ये मिसाइलें भी परमाणु हथियार ले जाने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ पारंपरिक हमलों के लिए ही मॉडिफाई की गई हैं। तो अमेरिका ने इस पर कोई कड़ा विरोध नहीं जताया।
0: हाल ही में यमन के मरी प्रांत में DF-15 ने कमलबा मिलने से इस बात की पुष्टि होती है कि सऊदी अरब चीनी मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि सऊदी अरब भले ही अभी तक इस बात से इनकार करता आया हो, लेकिन इससे एक और बात की पुष्टि होती है और वो ये कि डील का दायरा इससे कहीं ज्यादा बड़ा है।
1: पिछले कुछ वर्षों में अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया कि सऊदी अरब अब सिर्फ चीन से मिसाइलें खरीद नहीं रहा है बल्कि चीन की तकनीकी मदद से अपनी खुद की बैलिस्टिक मिसाइल भी विकसित कर रहा है।
2: देखिए, जहां तक सऊदी अरेबिया के इंडिजिनस डेवलपमेंट का सवाल है मिसाइल के फील्ड में, डेफिनेटली उसकी मदद चाइना कर रहा है और इसी के तहत सऊदी अरेबिया ने सॉलिड फ्यूल मिसाइल डेवलप कर लिया है। उसके यहाँ जो ये मिसाइल बन रही है उसका उस जगह का नाम है अल दवदामी। इस जगह पे उसका मिसाइल प्रोग्राम है और इसकी मदद लगातार चाइना ने की है। और अब जब से युद्ध की शुरुआत किया है उसमें जरूर सेटबैक लग सकता है, लेकिन इसके पहले जब युद्ध नहीं हो रहा था तो चाइना अपने इन्वेस्टमेंट मार्केट और तमाम तरीके के डिफेंस इक्विपमेंट का मार्केट उसने मिडिल ईस्ट को पकड़ा था। तो इसी के तहत लगातार उसने टेक्नोलॉजिकल नोहाउ और जो उसका रॉ मटेरियल है सऊदी अरेबिया को दिया, जिससे कि सऊदी अरेबिया की जो इंडिजिनस मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो आगे बढ़ा और साथ में उसने सॉलिड फ्यूल का मिसाइल डेवलप किया।
1: सऊदी अरब लंबे समय से यमन में हूतियों के खिलाफ हवाई हमले करता रहा है। बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल युद्ध की तीव्रता बढ़ाने के संकेत माने जाते हैं। मारीब क्षेत्र में हाल ही में लड़ाई तेज हुई है और दोनों पक्ष एक दूसरे पर हमले बढ़ा रहे हैं।

0: कम कीमत, मेड इन चाइना, लेकिन शर्तें कड़ी। ये वो तमाम ऐसी चीजें हैं जो चीन हर उस देश पर लगाता है जिसे वो अपने हथियार देता है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर चीन कभी नहीं करता है, और इसी के साथ साथ चीन मेंटेनेंस का खर्चा भी बिल्कुल नहीं लेता। यानी जो भी देश हथियार खरीदेगा मेंटेनेंस के लिए, उसको वापस चीन का दरवाजा खटखटाना होगा। लेकिन विशेषज्ञ ये कहते हैं कि चीनी हथियार इस वक्त कागजों पर भले ही पुख्ता नजर आ रहे हो, लेकिन रण क्षेत्र में ये पूरी तरह से फिसड्डी साबित हो रहे हैं।
1: ग्लोबल डिफेंस मार्केट में चीन खुद को अमेरिका और रूस के विकल्प के तौर पर पेश करता है। वास्तविक युद्ध में उसकी प्रमुख मिसाइलों का फेल होना चीन के हथियारों की विश्वसनीयता और उनकी तकनीकी गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े करता है। मेड इन चाइना के चक्कर में फंसे बांग्लादेश का हाल देख लीजिए। 9 सितंबर 2026 को चटगांव में फील्ड फायर अभ्यास के दौरान टाइप 59 टैंक में विस्फोट हो गया, और जैसे ही टैंक से गोला दागा गया, वो बैरल से बाहर निकलने के बजाय टैंक के भीतर ही ब्लास्ट कर गया। इस भीषण विस्फोट के कारण टैंक के क्रू मेंबर्स में 2 बांग्लादेशी जवानों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक वरिष्ठ अधिकारी गंभीर रूप से घायल हो गया।
0: विशेषज्ञों का मानना है कि भले ही तोप और इलेक्ट्रॉनिक्स नया कर दिया गया हो, लेकिन टैंक का मेटल वही पुराना है, यानी 50 साल पुराना, जिसका असर ये हो रहा है कि टैंक बड़े बड़े गोला बारूद को झेल ही नहीं पा रहा। एक बार फायर करने के बाद वो वापस टैंक के अंदर ही विस्फोट करता है। इसका एक जीता जागता उदाहरण हाल फिलहाल में मिला भी है।
2: देखिए, टैंक T-59 जो टैंक है वो बहुत ही पुराना टैंक है, चाइनीज ओरिजिन का है। अगर आपने इसको मेंटेन नहीं किया, रिफर्बिश करके आप काम चलाते रहते हैं, तो समय के साथ हर एक इक्विपमेंट की उपयोगिता घटती जाती है, और वो भी ऐसे समय में जब आप उसको ट्रेनिंग पर्पसेस के लिए यूज कर रहे हैं, लगातार उसको अपग्रेड कर रहे हैं, और जो उसका मेटलर्जी है वो फेल होता है। देखिए, जब ब्रीच प्रेमेच्योर होता है तो उसके कई रीजन होते हैं। एमिशन की भी वजह हो सकती है, जो प्रेशर ब्रीच में जनरेट हुआ उसको सस्टेन नहीं कर पाया, इसका मतलब मेटलर्जी उसकी खराब थी, या फिर उसके बैरल में कोई रेमनेंट रह गया, या बैरल क्लीन नहीं हुआ उसकी वजह से प्रीमेच्योर हुआ। तो वजह कुछ भी हो सकती है। जब इस तरीके के लगातार इंसिडेंसेस होते हैं तो बेसिक शक जाता है उसकी मेटलर्जी पे, क्या कितना प्रेशर जनरेट कर रहा है, या इरेटिक बिहेवियर ऑफ एमिशन। तो इन सारी चीजों को देखना पड़ेगा।
1: हादसे में शामिल टैंक चीन में बना टाइप 59 है, जिसका इस्तेमाल बांग्लादेश की सेना करती है। टाइप 59 चीन में बना एक पुराना मेन बैटल टैंक है। इसे चीन का पहला ऐसा टैंक भी माना जाता है जिसे बड़ी तादाद में बनाया गया था। बांग्लादेशी सेना के बेड़े में शामिल टाइप 59 दुर्जॉय टैंक मूल रूप से करीब 70 साल पुराना सोवियत डिजाइन है, जिसे चीन ने कॉपी करके बनाया था और बाद में बांग्लादेश को इसे अपग्रेड करके दे दिया। टाइप 59 सैन्य टैंक काफी पुराना है, लेकिन समय के साथ इसके कई नए वर्जन और अपग्रेड तैयार किए गए हैं। इनमें ज्यादा बेहतर तोप, फायर कंट्रोल सिस्टम, रात में देखने की सुविधा और टैंक की सुरक्षा बढ़ाने वाले उपकरण जोड़े गए हैं, लेकिन मूल संरचना पुरानी ही रही।
2: जो हादसे हुए T-59 के, आप कितना भी अपग्रेड कर दें, लेकिन आप उसकी मेटलर्जी नहीं बदल पाएंगे। जो आयरन है, जो बैरल है 125 mm स्मूथ बोर, उसको आप रिप्लेस नहीं कर पाते। हालांकि जो टैंक है, जब नंबर ऑफ राउंड्स जितने वो फायर कर लेते, उसकी EFC वैल्यू होती है, इक्विवेलेंट फुल चार्ज की वैल्यू होती है, उसमें कितना वियर एंड टियर हुआ, और उसका बैरल भी बदला जाता है, लेकिन उस मेटलर्जी को आप कैसे इंप्रूव करेंगे जो एक पर्टिकुलर तरीके से बनाई गई है। उस कितना प्रेशर जनरेट करा, एमिनिशन जो आप लोड करके फायर कर रहे हैं, जब उसका प्रोपेलेंट बर्न होता है तो कितना प्रेशर जनरेट करता है, और क्या वो स्टील या मेटलर्जी उसको सस्टेन कर पा रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये एक आउटडेटेड इक्विपमेंट है, टैंक है।
1: चीनी टैंकों में सेफ्टी फीचर्स और मेटल की क्वालिटी हमेशा से सवालों के घेरे में रही है। जरा सी ओवरहीटिंग या फिर लो क्वालिटी गन बैरल की वजह से गोला अंदर ही ब्लास्ट हो जाता है।
0: बांग्लादेश में हुए टैंक हादसे ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा, और साथ ही साथ चीनी हथियारों की विश्वसनीयता पर भी अब सवाल खड़े हो गए हैं। लेकिन यहाँ बांग्लादेश की मजबूरी है, वो चीन के अलावा कहीं और जा नहीं सकता, क्योंकि 70% हथियार उसने चीन से ही लिए हैं।
1: बांग्लादेश की सेना रक्षा उपकरणों के लिए बहुत बड़े पैमाने पर चीन पर निर्भर है। सीब्रियनी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट और रक्षा विशेषज्ञों की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश दुनिया में चीनी हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है। वो अपनी सैन्य जरूरतों का 72-74% हथियार अकेले चीन से आयात करता है। हाल के वर्षों में खासकर 2024-26 के बीच चीनी हथियारों में लगातार आ रही खराबियों, घटिया कलपुर्जों और चीनी कंपनियों की ओर से मरम्मत के लिए मांगी जाने वाली भारी भरकम कीमत के कारण बांग्लादेशी सेना में असंतोष बढ़ा है और यही वजह है कि बांग्लादेश अब धीरे धीरे अपनी सैन्य निर्भरता को बांटने के लिए तुर्की और कुछ हद तक पश्चिमी देशों के विकल्पों की तरफ भी हाथ बढ़ा रहा है।
0: चीन अपनी सेना के लिए नए और अपग्रेडेड हथियार बना रहा है, लेकिन ऐसे में जो पुराने हथियारों का जखीरा है वो काफी हद तक चीन के पास बचा हुआ है, जैसे कि टाइप 59 टैंक हो या फिर जेट्स हो। अब इन्हें चीनी कंपनियां थोड़ा अपग्रेड करके बांग्लादेश और अफ्रीकी देशों को कम कीमतों में बेच देती हैं और यहीं से चीन मुनाफा भी कमा रहा है और दूसरे देशों को कर्जदार भी बना रहा है। बाकी उसके सैन्य उपकरणों पर जो विश्वसनीयता है वो तो दुनिया जानती ही।
1: रक्षा विशेषज्ञ और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीनी हथियारों के नाकाम होने के पीछे कई वजह हैं। पहला है बड़े परीक्षणों का अभाव। अमेरिकी और रूसी हथियारों के उलट चीनी हथियार निर्यात करने से पहले मुश्किल और वास्तविक युद्ध जैसी परिस्थितियों से नहीं गुजरते। दूसरा है गुणवत्ता पर मात्रा को प्राथमिकता। चीन का मेन फोकस हथियारों की विश्वसनीयता और लाइफ साइकिल के बजाय भारी मात्रा में सस्ते हथियार बाजार में उतारने पर है। तीसरा है घटिया पुर्जे और सर्विसिंग। चीनी कंपनियां बिक्री के बाद मेंटेनेंस सपोर्ट देने में नाकाम रहती हैं, जिससे खरीदार देश के पास खराब पुर्जों को बदलने का कोई और विकल्प नहीं बचता। सस्ते होने के कारण जो देश चीनी हथियारों के जाल में फंस रहे हैं वो अब अंतर्राष्ट्रीय मोर्चों पर इन रक्षा सौदों को लेकर पछता रहे हैं और चीन की वैश्विक साख को इससे धक्का भी लगा है।
2: पूरे विश्व जानता है कि चाइनीज इक्विपमेंट या चाइनीज कोई भी प्रोडक्ट है उसकी रिलायबिलिटी नहीं होती, वो वन टाइम यूज होता है। आपने यूज किया यूज एंड थ्रो टेक्नोलॉजी, तो उसमें क्वालिटी कंट्रोल नहीं होता। बहुत बड़ा आप जो इन्वेस्टमेंट, जो इनपुट का इन्वेस्टमेंट है वो नहीं करते हैं। जब आप इसको डिफेंस के इक्विपमेंट में लागू करते हैं तो आपने मेटलर्जी हो गया, आप सस्ता लोहा, सस्ता मटेरियल, सस्ता एमिनिशन, सस्ते एक्सप्लोसिव, इन सारी चीजों का अगर आप इस्तेमाल करेंगे सिर्फ इस वजह से कि आपको कॉस्ट कटिंग करना है, सिर्फ इस वजह से कि आपको मास प्रोडक्शन करना है, क्योंकि आप मैन्युफैक्चरिंग हब है, डिफेंस के फील्ड में आप आत्मनिर्भर हैं, तो इससे होता यह है कि आपकी क्वालिटी कंप्रोमाइज होती है। और जब वो डिफरेंट डिफरेंट एनवायरमेंट में, डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर में, डिफरेंट डिफरेंट टेरेन में जब उसका इस्तेमाल होता है तो कोई ना कोई हिस्से पुर्जे उसके फेल होते हैं।
1: दिसंबर 2025 में कंबोडिया थाईलैंड में संघर्ष के दौरान एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें दावा ये किया गया था कि चीन का हथियार कैसे युद्ध के मैदान में फ्लॉप साबित हो गया। वीडियो में दावा किया गया कि कंबोडियाई सैनिक जब थाईलैंड पर निशाना लगाने के लिए चीनी रॉकेट लॉन्च कर रहे थे तो उसमें ब्लास्ट हो गया, जिसकी चपेट में कई कंबोडियाई सैनिक आ गए। 8 सैनिकों की तो जान चली गई।
2: देखिए, जहां तक चाइनीज MLRS और 19B रॉकेट सिस्टम का सवाल है, जब इसको लॉन्च किया गया, फायर किया गया, तो ये वर्टिकली अब जाके स्प्लिट हो गया। कहने का मतलब ये है कि जब आपने फायरिंग किया तो इसका जो एमिनिशन है, जो मिसाइल का नोज है, जो सेंसर है, वो पहले से ही एक्टिवेट हो गया, या तो इतने तरीके से सस्टेन फायरिंग में वो इस चीज को बियर नहीं कर पाया, या फिर इतना हीट जनरेट हुआ विद इन द बैरल उसकी वजह से एक्सप्लोजन हुआ। तो चाहे किसी भी वजह से आपका प्रीमेच्योर एक्सप्लोजन हुआ हो, कंबोडियन आर्मी ने इसको सफर किया एट द टाइम ऑफ वॉर। आपको ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा जिसमें रिडंडेंसी हो, जिसमें आप जो रेट ऑफ फायर डिस्क्राइब करें उसको अगर मेंटेन करें तो किसी भी तरीके के हादसे ना हो।
1: कंबोडिया की सेना में चीन से खरीदी गई MLRS टाइप 90B रॉकेट का इस्तेमाल होता है और इसी हथियार को इस्तेमाल थाईलैंड के खिलाफ किया जा रहा था। दरअसल कंबोडिया के साथ युद्ध में थाईलैंड भी चीन से खरीदे गए टैंकों का इस्तेमाल ही कर रहा था। ये टैंक थे VT-4। युद्ध के समय इसकी परीक्षा हुई तो ये फ्लॉप साबित हुआ। VT-4 टैंक का बैरल फट गया जिससे इसके क्रू मेंबर्स घायल हो गए। हथियारों की ताकत और भरोसे की असली परीक्षा युद्ध के मैदान में होती है और रणभूमि में चीन के हथियारों की विश्वसनीयता क्या है वो धीरे धीरे दुनिया देख रही है। कंबोडिया के साथ युद्ध में थाई सेना के VT-4 टैंक का बैरल फटना चीन के लिए शर्मनाक है। मेन गन के अलावा टैंक का फायर कंट्रोल से जुड़ा टारगेटिंग सिस्टम और उसका लेजर वार्निंग सिस्टम भी खराब हो गया। ये सिस्टम आधुनिक बख्तरबंद लड़ाई के लिए बहुत जरूरी है, खासकर टारगेट पहचानने, हमले की सटीकता और दुश्मन के लेजर हमले से चेतावनी के लिए।
2: देखिए, जहां तक टैंक टेक्नोलॉजी का सवाल है, उस जब VT-4 टैंक की हम बात करते हैं तो उसको भी काफी तरीके का सेटबैक लगा। मेरा मानना है कि जो मेंटेनेंस टैंक को चाहिए, जो आपको उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना कि कितने राउंड उसने एपी शॉट फायर किए, कितने उसने हीट एमिशन फायर किया, इन सब का रिकॉर्ड रखेंगे तो बेहतर होगा, जिससे कि आप मेटलर्जी कितना वियर एंड टियर हुआ इसको आप कैलकुलेट कर पाएंगे। और जहां तक उसके लेजर लॉकिंग सिस्टम का सवाल है, उसको भी आपको एक फूल प्रूफ रखना होगा। ये देखिए, टैंक को सर्वाइव करने के लिए ये सारे सिस्टम काम करने चाहिए। अगर लॉकिंग सिस्टम ही खराब हो जाएगा तो आप कैसे टारगेट को लॉक करके उसके ऊपर फायर करेंगे।
1: VT-4 एक मेन बैटल टैंक है जिसे चीनी कंपनी नॉरिनको ने बनाया है। चीन ने इस टैंक को पाकिस्तान और थाईलैंड समेत कई देशों को एक्सपोर्ट किया। इस टैंक में 125 mm की स्मूथबोर गन, जो पारंपरिक गोला बारूद के साथ साथ गन से लॉन्च होने वाली गाइडेड प्रोजेक्टाइल भी फायर कर सकती है। इसके साथ ही टैंक में एक डिजिटल फायर कंट्रोल सिस्टम और लेजर वार्निंग रिसीवर जैसे डिफेंसिव सिस्टम भी है, जो युद्ध के दौरान फेल हो गया था। मौजूदा समय में थाई सेना में 62 VT-4 टैंक ऑपरेशन है। इस टैंक का इस्तेमाल पाकिस्तानी सेना भी करती है।
0: एक एक करके चीन के तमाम हथियार फिसड्डी साबित हो रहे। कागजों पर भले ही ये कितने मजबूत हो, लेकिन रणक्षेत्र में ये बिल्कुल जीरो है। और इसका जीता जागता सबूत है पाकिस्तान द्वारा हाल ही में भारत पर किया गया हमला, जहां पर पाकिस्तान ने ड्रोन्स और मिसाइलें दागी थी, जो पूरी तरह से फिसड्डी साबित हुई है। और ये पूरी दुनिया ने देखा भी है।
1: चीन, जो खुद अपने तैयार किए गए एयर डिफेंस सिस्टम पर भरोसा नहीं करता है, जिसने अपनी सुरक्षा के लिए खुद रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीद रखा है, उसके यहाँ तैयार एयर डिफेंस सिस्टम पर पाकिस्तान इतरा रहा था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना के पराक्रम के सामने चीन से खरीदे गए HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम की एक नहीं चली। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान के लाहौर में तैनात चीन में बना HQ-9 एयर डिफेंस तबाह कर दिया।
0: पाकिस्तान ने 5 साल पहले चीन के साथ HQ-9 की डील की थी। अब चीन और पाकिस्तान दोनों इस बात का दावा करते हैं कि HQ-9 सीधे रूस के S-400 को टक्कर देता है। अब ये टक्कर कितनी दी गई है, इसका सिर्फ भारत ने ट्रेलर दिखाया है और पाकिस्तान खुद ब खुद पीछे चला गया।
1: चीन के हथियारों की खोखली ताकत को जानने के बावजूद पाकिस्तान चीन से सबसे ज्यादा हथियार खरीदता है। इसके पीछे पाकिस्तान की मजबूरी भी है। वो चीन के कर्ज के जाल में इस कदर फंस चुका है कि उसके पास कोई और विकल्प बचा ही नहीं है। लिहाजा चीन जो भी करता है, पाकिस्तान उसे सर झुकाकर कबूल करता है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के आंकड़ों के मुताबिक साल 2020 से 2024 के बीच में चीन ने पाकिस्तान के 81% आयातित हथियारों की आपूर्ति की है। 2020 से 24 से और 2015 से 19 की तुलना में देखा जाए तो पाकिस्तान ने हथियारों के आयात में 61% की बढ़ोतरी की है। आंकड़ों से साफ है कि चीन पाकिस्तान पर मेहरबान नहीं, बल्कि पाकिस्तान को लूटने खसोटने के लिए अपने कबाड़ हथियारों से थोप रहा है।
2: चाइना लगातार पाकिस्तान को एक टेस्ट बेड मानता है। उसने अपने BRI और CPEC के तरह का इन्वेस्टमेंट करके चाइना ने पूरी तरीके से पाकिस्तान को गुलाम बना रखा है। तमाम तरीके की जो मिलिट्री एड है, तमाम तरीके के एयर डिफेंस, तमाम तरीके के रॉकेट, मिसाइल, टैंक आज की डेट में वो पाकिस्तान को देता है। इसलिए देता है कि जैसे विश्व में दिखा सके कि पाकिस्तान आर्मी इसका इस्तेमाल कर रही है, इसका बखूबी हिंदुस्तान के बरखिलाफ उसने उसका डिप्लॉयमेंट कर रखा है, उसका ऑपरेशनल रेडीनेस 100% है और इसके तहत वो अन्य देशों को अपना सामान भेज सके।
0: रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
4: सास बहू और बेटिया में आज देखिए टेलीविजन की दुनिया में अनलिमिटेड ड्रामा। दोपहर 1:28 से लेकर 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से। गुंडी
1: पाकिस्तान को चीन से मिलने वाले हथियारों में आधुनिक फाइटर जेट, मिसाइल, रडार और एयर डिफेंस सिस्टम भी शामिल हैं। पाकिस्तान में बनाए गए कुछ हथियारों में भी चीन की भूमिका है। इन्हें या तो चीन की कंपनियों ने बनाया या फिर इनमें चीन की तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। चीन और पाकिस्तान के बीच रक्षा सहयोग साल 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद शुरू हुआ था, जब अमेरिकी हथियारों के प्रतिबंध ने पाकिस्तान को चीन की तरफ लाकर खड़ा कर दिया। चीन ने फाइटर जेट, टैंक और तोपखानों की आपूर्ति की, जिससे दीर्घकालिक संबंधों की नींव पड़ी। चीन और पाकिस्तान के बीच 1963 का चीन पाकिस्तान समझौता हुआ, जिसके तहत सीमा विवादों का समाधान किया गया और 1966 में सैन्य सहायता शुरू की गई। अब पाकिस्तान में चीनी हथियारों का एक बड़ा हिस्सा है। अमेरिका की स्पेशल फोर्सेस ने 3 जनवरी 2026 की रात ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान अमेरिकी हेलीकॉप्टर्स और विमान बिना किसी रोक टोक के कराकास में घुसे। ये सब इसलिए हुआ कि वहाँ चीन के उपकरण फेल साबित हुए। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान चीन का तथाकथित एंटी स्टेल्थ रडार सिस्टम पूरी तरह से फेल साबित हुआ। चीन का दावा था कि उसके रडार अमेरिकी स्टेल्थ विमानों को पलक झपकते ही पकड़ लेंगे, लेकिन हकीकत में वेनेजुएला का आकाश पूरी तरह से खुला रहा और एक ऑपरेशन के बाद राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अरेस्ट करके अमेरिका ले जाया गया। वैसे वेनेजुएला भी एक ऐसा मुल्क है जो चीन पर अंधाधुन भरोसा करता है और उससे उसने अत्याधुनिक रडार सिस्टम खरीदे थे और दावा ये किया गया था कि ये रडार सिस्टम अमेरिका के फाइटर जेट्स को भी जाम कर सकते हैं। अब इसका उदाहरण भी सुन लीजिए। हाल फिलहाल में अमेरिका ने, आपको याद होगा कि किस तरीके से एब्सोल्यूट रिजॉल्व ऑपरेशन के जरिए वेनेजुएला पर हमला किया, जहां पर उनके रडार सिस्टम पूरी तरह से फेल हो गए और अमेरिका ने राष्ट्रपति मदुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। वेनेजुएला की हवाई सुरक्षा फेल होना चीन की सैन्य तकनीक पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा रहा है। पाकिस्तान के बाद वेनेजुएला दूसरा ऐसा देश है जिसने चीनी हथियारों पर भरोसा कर बड़ी कीमत चुकाई है। खराब गुणवत्ता और सही ढंग से काम नहीं करने की वजह से पिछले कुछ समय में चीन में बने हथियारों को लेकर उसके खरीदार देशों का भरोसा कम हुआ है। ढाका स्थित लेंस एशिया की रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान के F-22P फ्रिगेट में बार बार समस्याएं आ रही हैं। फ्रिगेट में बार बार सेंसर और रडार की खराबी के साथ इंजन में भी गड़बड़ियां पाई गई हैं और इसके साथ साथ JF-17 लड़ाकू विमानों में भी तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। हाल ही में रेगिस्तानी वातावरण में चीनी स्काई शील्ड लेजर सिस्टम के संचालन में भी कठिनाई आई। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि म्यांमार, नाइजीरिया और JF-17 खरीदने वाले दूसरे देशों की मीडिया ने भी विमानों के जमीन पर उतरने, मिशन कंप्यूटर की खराबी और एयरफ्रेम संबंधी समस्याओं का जिक्र किया। रिपोर्ट में बताया गया कि JF-17 के सटीक नहीं होने और कम हथियार ले जाने की क्षमता के कारण नाइजीरिया इटली के M-346 FA लड़ाकू जेट खरीदने के लिए मजबूर हुआ।
2: JF-17 फाइटर एयरक्राफ्ट चाइना ने बनाया और तमाम देशों को सप्लाई किया, लेकिन ये जो सिस्टम है पूरी तरीके से फेल साबित हुआ है। 40% पाकिस्तान के पास जो JF-17 फाइटर एयरक्राफ्ट है वो ग्राउंडेड है। कितने सारे क्रैशेज हुए, उसका जो एयर फ्रेम है वो तक क्रैक कर गया, जहां तक उसके जो चाहे डॉग फाइट या जो मैन्यूवरिंग कैपेबिलिटी है एयर में वो कॉम्प्रोमाइज है। आपने एक सिस्टम बना दिया लेकिन उसकी सस्टेनेबिलिटी नहीं दिया, स्ट्रक्चर डिफेक्ट है, उसमें क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, उसकी कैनोपी नहीं खुलती जिससे कि पायलट सही टाइम पे इजेक्ट कर सके। जब इतने सारी दिक्कतें हैं और उसका जो रडार सिस्टम आपने माउंट किया उसके जो ऑल ऑफ वेट में जब वो ऐड किया जाता है तो कहीं ना कहीं वो अनस्टेबल हो जाता है। तो इतने सारे चैलेंजेस, चाहे वो मैकेनिकल हो, चाहे वो स्ट्रक्चरल हो, चाहे वो आपके एवियोनिक्स से रिलेटेड हो या रडार से रिलेटेड हो, सारे फील्ड में ये फेल नजर आता है। इसी वजह से इसकी जो ग्राउंड में जो इन ऑपरेशन में की जो कैपेबिलिटी है वो 40% ग्राउंडेड है यार। एयरक्राफ्ट, तो ये दिखाता है कि ये एक फील्ड सिस्टम है जिसको तमाम देशों ने जिन्होंने खरीदा वो आज की डेट में सफर कर रहे हैं।
1: चीन के खराब हथियार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जग हसाई करा रहे हैं। चीन से हथियार खरीदने वाले ज्यादातर देश आज परेशान हैं। कोई खराब मेंटेनेंस से जूझ रहा है तो किसी को खराब बिल्ड क्वालिटी के हथियार मिले हैं। सस्ते होने की वजह से चीन के हथियार दुनिया भर में ज्यादा डिमांड में हैं, लेकिन अब चीनी हथियारों की पोल खुलने के बाद से उसके करीबी भी चीनी हथियारों से तौबा करने लगे हैं। अब आपको यहाँ सीपरी की एक ताजा रिपोर्ट बताते हैं जिसमें एक आंकड़ा दिया गया है, और वो आंकड़ा ये है कि हाल फिलहाल में चीनी हथियारों की बिक्री में 5.4% की गिरावट आई है। यानी पूरी दुनिया में जो चीन हथियार देता है उसमें 5.4% की गिरावट आई है। अब इसको आप महज एक गिरावट नहीं देखिए, यानी दुनिया का भरोसा चीन पर कम हुआ है, चीन की विश्वसनीयता कम हुई है, ये आंकड़ा यही बता रहा है। चीन की सेना अपनी ताकत दिखाने के लिए प्रोपेगेंडा का सहारा लेती है, लाइट कैमरा और एक्शन के जरिए खुद को सर्वशक्तिमान दिखाने की कोशिश करती है, और इसी चकाचौंध को देखकर कई देश धोखा खा जाते हैं।
2: ये बिल्कुल सच है कि चाइना ने अपने पावर को प्रोजेक्ट करने के लिए, अपने डिफेंस इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए, पूरे विश्व का मार्केट कैप्चर करने के लिए एक तरीके का प्रोपोगंडा कैंपेन चला रखा है। जितने लेवल पे चाइना के डिफेंस इक्विपमेंट फेल हुए हैं, चाहे वो एयर डिफेंस सिस्टम हो, चाहे रॉकेट हो, चाहे एयरक्राफ्ट हो, ये दिखाता है कि उनके यहाँ क्वालिटी कंट्रोल नहीं है। मास प्रोडक्शन के साथ आपको क्वालिटी कंट्रोल देखना होगा, स्पेशली डिफेंस इक्विपमेंट में। ऐसा ना हो कि सोल्जर आपके इक्विपमेंट को इस्तेमाल करे और वो खुद ही धराशायी हो जाए या इंजर्ड हो जाए, जिसके कि तमाम विश्व में एग्जाम्पल हैं। जिसने भी चाइनीज इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया वो क्षतिग्रस्त हुआ, वो इंजर्ड हुआ। लिहाजा एक प्रोपोगंडा कैंपेन है, टोटल मार्केटिंग पॉलिसी है। सस्ते इक्विपमेंट बनाओ, वर्ल्ड में मार्केटिंग करो, एडवर्टीजमेंट करो और तमाम तरीके के झूठे वादे करो।
1: चीन की तिलिस्मी ताकत की कई बार पोल खुल चुकी है। 25 अगस्त 2023 का वाकया है जब चीन की 093417 सबमरीन उसके नौ सैनिकों के लिए काल साबित हुई। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी ने खुलासा करते हुए दावा किया था कि चीन के 55 नौ सैनिकों की पीले सागर में पानी के नीचे दम घुटने की वजह से मौत हो गई। बताया जाता है कि चीन ने हाल फिलहाल में शंघाई में अमेरिका और ब्रिटेन की पनडुब्बियों को निशाना बनाने के लिए उन्हें ट्रैप करने की कोशिश की, लेकिन नतीजा देखिए, यहाँ पर चीन खुद ही फंस गया। उसकी पनडुब्बी में ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से खुद उसके सैनिकों की जान चली गई। चीन ऐसे किसी हादसे से इनकार करता है और दुनिया से छिपाने की कोशिश करता है कि उसकी ताकत और तकनीक में किसी भी तरह की कोई भी खामी है। चीन अपने हथियारों को बेचने के लिए खुद को तकनीक में सबसे आगे बताता रहा है। इसके लिए चीन ने रिवर्स इंजीनियरिंग के साथ कॉपी का भी सहारा लिया, और इसका जीता जागता उदाहरण उसका फिफ्थ जनरेशन फाइटर प्लेन J-20 है, जो कि अमेरिका की F-22 की कॉपी है।

0: वैसे चीन ने अपने तमाम हथियार नकल करके या फिर चोरी करके बनाए, ये तो पूरी दुनिया जानती है। लेकिन यहाँ पर चीन एक तकनीक का इस्तेमाल करता है जिसका नाम है रिवर्स इंजीनियरिंग। अब यहाँ ये समझने की जरूरत है कि रिवर्स इंजीनियरिंग होती क्या है। इसको आप यूं समझ सकते हैं कि किसी भी हथियार को जिस तरीके से बनाया जाता है, अब उसे उल्टे तरीके से देखना शुरू करती है। बस चीन इसी तकनीक का इस्तेमाल करता है। आइए बताते हैं आपको।
1: चीन के पास कागजों पर मॉडर्न हथियार तो हैं, लेकिन जंग में वो कितना कारगर साबित होगा इसके बारे में पक्का नहीं कहा जा सकता। दूसरे देशों की तकनीक चुराने के लिए कुख्यात चीन ने अमेरिका के कई हथियारों की कॉपी कर हथियारों का बड़ा जखीरा तैयार किया, जिसमें एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम से लेकर स्टेल्थ फाइटर जेट F-35 की कॉपी तक शामिल है। चीन ने अमेरिका के F-35 और F-22 की कॉपी करके J-31 को तैयार किया। चीन में बनने वाला J-31 एक स्टेल्थ मल्टीरोल फाइटर जेट है। इसे शेनयांग एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन बनाता है और इसका सबसे पहला मॉडल 2012 में दिखाया गया था। चीन का दावा है कि जो देश अपने लिए अमेरिका में बने F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट को नहीं खरीद सकते हैं, वो चीन से फाइटर जेट खरीद सकते हैं। चीन J-31 को शेनयांग FC-31 के नाम से भी जाना जाता है और इसे अमेरिकी F-35 और F-22 रैप्टर की एक घटिया कॉपी कहा जा सकता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि J-31 से चीनी वायुसेना खुद दूरी बनाकर रखती है। अमेरिका के F-16 लड़ाकू जहाज बनाने वाली कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने F-22A रैप्टर फाइटर बनाया था, जिसकी गिनती दुनिया के अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों में होती है। जुलाई 2014 के आखिर में चीन की चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन चेंगडू ने J-20 लड़ाकू विमान का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इस जहाज की डिजाइनिंग F-22 रैप्टर और अमेरिकी नेवी में इस्तेमाल होने वाले F-35 स्ट्राइक फाइटर प्लेन से मिलती जुलती है।
0: जुलाई 2014 में अमेरिका ने एक चीनी बिजनेसमैन को पकड़ा था, जिस पर आरोप ये था कि उसने बहुत सारा डिफेंस डेटा चोरी किया है, जिसमें F-35 और F-22 का डेटा भी शामिल है और उसने चीन को दिया है। उसके बाद ये भी पता चला कि चीनी हैकर्स ने F-35 और F-22 का डेटा चुरा कर अपने यहाँ इसे बनाने की कोशिश की।
1: चीनी फौज LAC से लेकर दक्षिण चीन सागर में अपने हथियारों की नुमाइश के चाहे जितने भी स्वांग रचे, अपनी सेना का चाहे जितना भी झूठा पराक्रम दिखा ले, दुनिया जानती है कि वो अपने फर्जी हथियारों के दम पर जंग नहीं।

चीन अपने इकलौते स्टेल्थ अटैक हेलीकॉप्टर Z-20 पर बहुत ज्यादा इतराता है, लेकिन सच तो ये है कि हेलीकॉप्टर और कुछ नहीं बल्कि अमेरिका के ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर की डुप्लीकेट कॉपी है। साल 2011 में अमेरिकी सील का एक ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर पाकिस्तान में क्रैश हो गया था। उसी मलबे को हासिल कर चीन ने जुगाड़ कर ये हेलीकॉप्टर बना डाला। ये देखने में भले ही ब्लैक हॉक जैसा हो, लेकिन काम कितना करता है इसे लेकर चीन ने भी कोई गारंटी नहीं दी है।

0: जिस J-10 विमान को अपनी इजाद बताता है, अब उसका भी सच जान लीजिए। यह अमेरिका की F-16 की कार्बन कॉपी है। अमेरिका इस प्लेन को लावी के नाम से इसराइल के लिए बना रहा था। इसराइल से जानकारी, चीन ने हथियाई और हूबहू F-16 जैसा दिखने वाला जेट तैयार कर लिया। लेकिन ये जेट युद्ध भूमि में दम दिखाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है।
1: जहां तक चाइना के J-10 चेंगडू डीप स्ट्राइक एयरक्राफ्ट का सवाल है, ये काफी हद तक उसने F-16 लॉकहीड मार्टिन के द्वारा बनाए गए डीप स्ट्राइक एयरक्राफ्ट को कॉपी किया है। चाहे वो बियॉन्ड विजुअल रेंज का एंगेजमेंट हो, चाहे टेक ऑफ हो, चाहे स्पीड हो, तमाम तरीके की एवियोनिक्स को उसने कॉपी किया है। इसी वजह से देखिए, चाइना जब भी विश्व के मार्केट में एंटर करता, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे एरोनॉटिक्स हो, किसी भी में, वो ऐसे कंट्री में घुसता जहां की पिच अमेरिकन इक्विपमेंट इस्तेमाल हो रहा है, जिससे वो उसको कॉपी कर सके। पाकिस्तान में घुसा, सऊदी अरेबिया में घुसा, वहां से उसने इन सारे जो एयरक्राफ्ट हैं F-16 एयरक्राफ्ट, उसको कॉपी किया, उसका प्रोटोटाइप अपने यहां बनाया, और ये प्रोटोटाइप है J-10 एयरक्राफ्ट। ये काफी हद तक F-16 से मिलता हुआ, कुछ बेहतरी है, कुछ उस चीजों को नहीं काबू कर पाया जो उसने इसमें ऐड किया। साथ में उसमें मिसाइल की रेंज, जिसमें PL-15 मिसाइल की लो स्पीड एजिलिटी, यानी लो स्पीड में अगर एयरक्राफ्ट होता तो कितना एजाइल होगा, उसमें उसने महारत हासिल की, और साथ में सेंसर को इंप्रूव किया, और कॉस्ट कटिंग के लिए तो चाइना जाना ही जाता है। इन सारी चीजों को इन्वॉल्व करके उसने J-10 बनाया, जो कि मोर और लेस F-16 का कॉपी है। ये बिल्कुल सही है।
0: जब डिजाइन चोरी की हो और डुप्लीकेट माल बनाने की हो तो चीन किसी को नहीं बख्शता। रूस ने जब चीन को अपने सुखोई 33 विमान के डिजाइन सीक्रेट देने से मना कर दिया, तो चीन ने यूक्रेन से SU-33 का एक विमान ट्रेनिंग के लिए खरीदा और उसकी डुप्लीकेट कॉपी J-15 के नाम से तैयार कर डाली। दिखता भले ही ये सुखोई जैसा है, लेकिन असली सुखोई के सामने कितनी देर तक टिकेगा, ये बहुत बड़ी बात है। अमेरिकी ट्रेड वॉर के चलते चीन और रूस एक दूसरे के नजदीक आए। बावजूद इसके, रूस अपने कई हथियारों की टेक्नोलॉजी का हस्तांतरण चीन को नहीं करता है। भारत और चीन ने रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदा है, लेकिन रूस ने भारत के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर हस्ताक्षर किए, जबकि चीन के साथ ऐसा कुछ नहीं किया गया। चीन अपने J-11B को लेकर बहुत ज्यादा इतराता। अब इसके बनने की कहानी आपको बताते हैं। दरअसल सोवियत संघ के विघटन के बाद जब रूस में नगदी का संकट हुआ, तो रूस ने अपने Su-27 को चीन को बेचने का ऐलान किया, और जिसमें दोनों देशों के बीच में डील हुई कि 200 विमानों का आदान प्रदान होगा। बाद में जाके 100 विमान चीन ने खरीदे और इस डील को तोड़ दिया। अब उसी तकनीक पर चीन ने अपने इस विमान को इजाद किया। शेनयांग J-11B दिखने में रूस के S-27 जैसा है। चीन ने नकल करके शेनयांग J-11B बना तो लिया, लेकिन ताकत और क्षमता के मामले में रूस के सुखोई 27 के पास तक नहीं फटक पाता। अमेरिका का ये दूसरा सबसे बेहतरीन नंबर का विमान है F-22, जिसे हथियार की दुनिया में रैप्टर के नाम से जाना जाता है। 1999 में यूगोस्लाविया में नाटो कार्रवाई के दौरान एक अमेरिकी F-22 जेट दुर्घटनाग्रस्त हो गया। चीन ने इसका मलबा हासिल कर लिया और इसकी भी डुप्लीकेट कॉपी J-20 के नाम से तैयार कर डाली। चीन की कंपनी स्टार यूवी सिस्टम ने स्टार श्रेड

0: के नाम से एक ड्रोन डेवलप किया है जो अमेरिका के मौजूदा X-47B का क्लोन दिखता है। चीन ने पहले इस ड्रोन के फोटो और डिजाइन हासिल की और बाद में ईरान में एक दुर्घटनाग्रस्त ड्रोन को हासिल करके इसकी टेक्नोलॉजी बना ली। वहीं अमेरिका में मौजूद एक चीनी जासूस ने X-47B ड्रोन के स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और दस्तावेजों को चीन को बेच दिया। माना जाता है कि X-47B ड्रोन की बाकी पेचीदगियां चीन ने साइबर अटैक के जरिए हासिल कर ली। चीनी हथियारों उनकी कहानी तो बहुत लंबी है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर चीनी हथियारों पर कितना भरोसा किया जा सकता है। वैसे पूरी दुनिया देख भी चुकी है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, दुनिया जानती है। लेकिन सवाल यह है कि चीन ने अपने इन्हीं हथियारों की बदौलत बहुत सारे देशों को अपने कर्ज के जाल में भी फंसा रखा है। लेकिन भरोसा कितना है वो तमाम देश जानते हैं। चीन पर भरोसा करना मतलब धोखा खाना। चीन की कंपनियों के प्रति कम होते विश्वास का असर उसके हथियार कारोबार पर भी दिखने लगा है। दुनिया भर में चीन की कंपनियों के प्रति पहले ही विश्वास उठ चुका है। अब चीन से हथियार खरीदने वाले देश भी दूसरे विकल्प तलाश रहे हैं। प्रण क्षेत्र में मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
6: गणेश उत्सव के इस पावन अवसर पर GNT में भी गणपति पधारे और हमें यकीन है कि हमारे दर्शकों के घर पर भी गणपति बप्पा जरूर पधारे होंगे और हम चाहते हैं कि आप भी GNT के गणपति उत्सव का हिस्सा बनिए। आप अपने अपने घर पधारे गजानन का वीडियो बनाइए और हमारे संग शेयर कीजिए, हम उन वीडियोस को दुनिया को दिखाएंगे। आप हमें अपने वीडियो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7303409922। ये नंबर कॉल करने के लिए नहीं है, ये नंबर सिर्फ और सिर्फ वीडियोस या तस्वीरें भेजने के लिए है। जब भी आप अपना वीडियो या फोटोज भेज रहे हैं तो साथ में अपना नाम, अपने शहर, गांव और कस्बे का नाम जरूर लिखें। गुड न्यूज टुडे लगातार दर्शकों से अपील कर रहा है कि आप भी GNT पर मनाए जा रहे इस उत्सव से जुड़िए और इसके लिए आपको बस करना इतना है कि अपने घर पधारे गजानन का वीडियो बनाइए और हमारे साथ शेयर कीजिए, हम उन वीडियोस को दुनिया को दिखाएंगे। हमारे पास लगातार दर्शक वीडियोस भेज भी रहे हैं। महाराष्ट्र के नागपुर से किशोर पारखी ने हमें गणेश उत्सव का वीडियो भेजा है जहां घर में बापा की मनमोहक प्रतिमा स्थापित की गई। बापा की प्रतिमा को भव्य तरीके से सजाया गया है, गजानन को फलों और मिष्ठान का भोग भी लगाया गया है। भक्त ने भगवान गजानन का श्रृंगार किया है। बप्पा की दूसरी तस्वीर महाराष्ट्र के पुणे से मयूरी ओझा ने हमें भेजी है, जिसमें भक्ति के भाव से बप्पा का अद्भुत श्रृंगार किया गया है। गणेशोत्सव पर घर के ही मंदिर में विराजे भगवान गजानन का भव्य श्रृंगार किया गया है, जिसमें फूलों के साथ रंग बिरंगी लाइटिंग से सजावट की गई है। गजानन के सिर पर भव्य मुकुट बप्पा की शोभा बढ़ा रहा है।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
7: क्या घर में सूर्य का प्रकाश घर को शुभ या अशुभ बना सकता है? क्या घर की दिशा की वजह से घर शुभ या अशुभ हो सकता है? घर में रहने वाले लोग घर में शुभता अशुभता कैसे ले आते हैं? क्या आपका घर शुभ है या अशुभ है? क्या है इसके लक्षण? जानिए मेरे साथ गुड लक स्पेशल में।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: एवरेस्ट तीखा लाल, सही तीखा सही लाल।
3: देश भर में गणपति उत्सव की रौनक, अमरावती के गणपति पंडाल में खाटू श्याम मंदिर की भव्य झांकी, पुणे के गणेश मंदिर की भव्य श्रृंगार। बिहार के मधेपुरा में गणेश प्रतिमा के विसर्जन पर शोभा यात्रा, कोलकाता की त्रिकाल झांकी बनी आकर्षण, कलाकारों ने दी मनमोहक प्रस्तुति। देवभूमि उत्तराखंड में फिर से शुरू हुई पवित्र चारधाम यात्रा, खराब मौसम की वजह से रोकी गई थी यात्रा, केदारनाथ यात्रा मार्ग फिर भक्तों से गुलजार हुआ। राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज से आई भारत और अमेरिका के युद्ध अभ्यास 2026 की शानदार तस्वीरें, M777 अल्ट्रा लाइट होविट्ज़र तोप से की गई लाइव फायरिंग। एशियन गेम्स में खुला भारत का खाता, शूटिंग में महिला टीम ने जीता सिल्वर मेडल, 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट में जीता पदक।

स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। देखिए, जिस घर में आप रहते हैं अगर वो घर शुभ हो, उस घर की तरंगे अच्छी हों, तो उस घर में रहने पर आप उन्नति करते हैं, आप स्वस्थ रहते हैं, आप प्रसन्न रहते हैं। तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपका घर कितना शुभ है, कितना मंगलकारी है, और आपको लग्न के अनुसार बताएंगे कि आपके घर में कहां कहां पर गड़बड़ियां हो सकती हैं और उनको बेहतर करने के उपाय क्या हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं सप्ताह का मंत्र क्या है। सप्ताह का मंत्र है ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय स्वाहा। ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय स्वाहा। जीवन में अगर प्रेम बढ़ाना हो, जीवन में किसी टूटते रिश्ते को बचाना हो, किसी संबंध को बेहतर करना हो, तो ये मंत्र बहुत कारगर होता है। नित्य प्रातः 108 बार इस मंत्र का जप तुलसी या चंदन की माला से करिए। जिस रिश्ते को, जिस संबंध को बचाना है, जहां पर मधुरता लानी है, वहां पर इस मंत्र का जप करके प्रार्थना करिए, आपको लाभ होगा। रिश्ता कितना भी खराब क्यों ना हो गया हो, रिश्ता क्यों ना टूट रहा हो, अगर इस मंत्र का निरंतर आप रोज प्रातः काल जप करें तो रिश्ते में माधुर्य बढ़ेगा और रिश्ता टूटने से बच जाएगा। देखिए, ज्यादातर हम लोग कहते हैं कि ग्रह शुभ है, ग्रह अशुभ है, या ये कहते हैं कि आपके कर्म शुभ हैं या कर्म अशुभ हैं। क्या घर भी शुभ या अशुभ होते हैं? और अगर घर शुभ या अशुभ होते हैं तो इनका प्रभाव क्या है? देखिए, दुनिया की हर चीज के अंदर तरंगे पाई जाती हैं, ज्यादा या कम मात्रा में हर चीज के अंदर तरंगे होती हैं। मकान, जमीन, यहां तक कि आपके कपड़ों में, आपकी वस्तुओं में भी तरंगे होती हैं। ये तरंगे शुभता भी पैदा करती हैं और अशुभता भी पैदा करती हैं। ये तरंगे शुभ भी होती हैं और अशुभ भी होती हैं। जब कहीं पर नकारात्मक तरंगे ज्यादा हो जाएं, जब अशुभता ज्यादा हो जाती है, तो मकान और जमीन में रहने पर समस्या पैदा होती है। ऐसे अशुभ मकानों में, ऐसे अशुभ जगहों पर रहने पर कुंडली के शुभ योग काम करना बंद कर देते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि मेरा समय ठीक चल रहा है, मेरी दशा ठीक चल रही है, लेकिन जीवन में कुछ शुभ नहीं हो रहा है। उसका कारण ये होता है कि जिस मकान में, जिस घर में वो रहते हैं वो अशुभ होता है, वहां की तरंगे अशुभ होती हैं और वो जीवन में शुभता नहीं लाने देती।
ये जो अशुभता है कि आपका घर शुभ है या अशुभ है, इस बात को कुंडली के माध्यम से जाना जा सकता है। और अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें अपने घर में, अपने रिहाइश में, तो अपने घर की, अपने ऑफिस की, अपने जमीन की अशुभता को, नकारात्मक तरंगों को महसूस कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आपके घर में अशुभता है, अगर आपके घर में अशुभ तरंगें इकट्ठा हो गई हैं, तो वो मकान, वो जमीन अशुभ हो जाती है और वहां रहने पर कुंडली के शुभ योग भी बहुत काम नहीं कर पाते हैं। अब ये जानते हैं कि जो दिशाएं हैं, जो डायरेक्शंस हैं, उनसे मकान कैसे शुभ या अशुभ हो जाता है। देखिए, आम तौर पर जैसा लोगों का मानना है कि पूरब और उत्तर दिशा के मकान सबसे ज्यादा शुभ होते हैं। सामान्यतः लोग ऐसा मानते हैं कि पूर्व दिशा के मकान और उत्तर दिशा के मकान सबसे ज्यादा शुभ होते हैं। सामान्यतः लोग ऐसा मानते हैं कि पश्चिम और दक्षिण दिशा के मकान शुभ नहीं होते। देखिए, ऐसा है नहीं। हर दिशा अपने आप में पवित्र है और हर दिशा के मकान अपनी अपनी जगह पर शुभ हो जाते हैं। आपको ये समझना होगा कि किस दिशा के मकान में क्या सावधानी रखनी चाहिए। जैसे अगर आपका मकान पूर्व दिशा का है, पूरब मुखी अगर आपका मकान है, तो पूरी तरह से सात्विक रहिएगा। पूर्व दिशा का मकान अत्यंत पवित्र मकान है, ऐसे मकानों में सामान्यतः मांस मदिरा का प्रयोग नहीं करना चाहिए और ऐसे मकान में पूरी तरह से सात्विक रहना चाहिए। अगर मकान पश्चिम दिशा का है, वेस्ट साइड का है, तो मकान में, घर में लकड़ी का प्रयोग कम करें, अन्यथा लकड़ी खराब होगी, दीमक लगेगी और घर में नुकसान होगा। तो अगर पश्चिम दिशा का मकान है, तो घर में लकड़ी का प्रयोग कम करना चाहिए। अगर उत्तर दिशा का मकान है, तो आग और बिजली के उपकरण पर विशेष ध्यान देना चाहिए। घर में जहां पर खाना पकाते हैं, फायरप्लेस है, आग वाली चीजें हैं, वहां पर ध्यान रखिए और बिजली के उपकरणों पर विशेष ध्यान दीजिए। अगर उत्तर दिशा का मकान है तो दक्षिण दिशा का अगर मकान है तो वहां पर सीलन आने की संभावना सबसे ज्यादा है और दक्षिण दिशा के मकानों में गंदगी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि

स्थिति में घर में बीमारियां फैलेंगी, घर में उन्नति नहीं होगी। एक बात और समझिए कि घर के जो मुखिया हैं उनकी कुंडली के हिसाब से मकान होना चाहिए। जैसे अगर घर की मुखिया के कुंडली में मंगल अच्छा है तो दक्षिण दिशा का मकान आप ले सकते हैं। घर के मुखिया की कुंडली में अगर शनि अच्छा है तो पश्चिम दिशा का मकान लिया जा सकता है। यानी घर का डायरेक्शन क्या होगा ये घर के मुखिया की कुंडली से देखेंगे तो लाभ ज्यादा होगा और घर का फायदा आप ज्यादा उठा पाएंगे। तो एक चीज हो गई घर की दिशा, वो घर में शुभता और अशुभता पैदा कर सकती है। अब जानते हैं कि सूर्य का प्रकाश कितना महत्वपूर्ण है और सूर्य के प्रकाश की कमी से किस तरह की अशुभता जीवन में पैदा होती है। जिन घरों में सूर्य का प्रकाश आता है उन घरों में बीमारी और अशुभता बहुत दिन तक टिक नहीं पाती है। लेकिन जिन घरों में सूर्य का प्रकाश नहीं आता वहां पर अकारण बिना वजह के बीमारियां पैदा हो जाती हैं। जिन घरों में सूर्य का प्रकाश नहीं आता ऐसे घरों में बच्चों के भविष्य और स्वास्थ्य के बिगड़ने की संभावना ज्यादा होती है। जिन घरों में सूर्य का प्रकाश नहीं आता उन घरों में बीमारियां जरूर आती हैं और छोटे से लेकर बड़े लोग बीमार रहते हैं। सूर्य का प्रकाश अगर घर में नहीं आएगा तो ऐसे घर में रहने पर व्यक्ति नशे का और अवसाद यानी डिप्रेशन का शिकार हो सकता है, इसकी संभावना बनती है। जिन घरों में सूर्य का प्रकाश नहीं आता उन घरों में निगेटिव एनर्जी अगर इकट्ठा होती है तो वो निकल नहीं पाती, निगेटिव एनर्जी लंबे समय तक बनी रहती है। इसलिए भय का और नकारात्मकता का अनुभव होता है। अगर आपके घर में सूर्य का प्रकाश नहीं आया और आपने घर में दुनिया भर के उपाय कर रखे हैं, कोई उपाय काम नहीं करेगा। घर में सूर्य का थोड़ा बहुत प्रकाश आना जरूरी है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश अगर आपके घर में आएगा तो घर में नकारात्मकता इकट्ठा नहीं होगी। अब अगर आपके घर में सूर्य का प्रकाश नहीं आता तो कौन सा उपाय करना चाहिए? घर में शीशा लगाकर शीशे की सहायता से सूर्य के प्रकाश की व्यवस्था करिए या घर में ऐसा सुधार करिए जिससे थोड़ा बहुत सूर्य का प्रकाश आने लगे। रोज सवेरे घर में 3 बार शंख जरूर बजाइए ताकि नकारात्मक तरंगे हट जाएं। रोज सवेरे गायत्री मंत्र का
108 बार उच्चारण करिएगा। बोल बोल कर रोज सवेरे 108 बार गायत्री मंत्र पढ़िए और घर में लोहे का सामान कम से कम रखिएगा। अगर इतना करने के बावजूद भी घर की अशुभता नष्ट नहीं हो रही है, घर की अशुभता में कमी नहीं आ रही है, तो घर बदल दीजिएगा। बेहतर होगा एक शीशा ऐसा लगाएं जिससे रिफ्लेक्ट होकर घर में सूर्य का प्रकाश आए, या दीवार में खिड़की बनवाएं, रोशनदान बनवाएं। ऐसा करने से भी घर में सूर्य का प्रकाश आएगा, और जब किसी घर में सूर्य का प्रकाश आता है वहां अशुभता बहुत समय तक नहीं रह पाती है। तो घर की दिशा हो गई, सूर्य का प्रकाश हो गया। अब जो आप अपने घर में कलर का प्रयोग करते हैं, जिन रंगों का प्रयोग करते हैं, उन रंगों से किस तरह से अशुभता पैदा होती है। देखिए, घर में अगर आपने गलत जगह पर गलत रंग का प्रयोग किया है तो इससे आपकी किस्मत खराब हो सकती है, क्योंकि रंग जो हैं वो तरंग तो पैदा करते ही हैं। ये आपके सोच को, दिलो दिमाग को प्रभावित करते हैं। तो घर में गलत रंगों के प्रयोग से आपकी किस्मत खराब हो सकती है। अगर रंगों का संतुलन ठीक ना हो, घर में आपने बैलेंस करके अगर रंग नहीं लगाए हो, तो व्यक्ति की सोच खराब हो जाती है। घर में रहने वाला इंसान निगेटिव सोचता है, उसकी सोच में दिक्कतें आ जाती हैं। गाढ़े रंगों का अगर आप अपने घर में प्रयोग करें, बहुत ज्यादा लाल रंग का प्रयोग करें, या बहुत ज्यादा भूरे रंग का, काले रंग का प्रयोग करें, तो ऐसे घर में रहने पर जीवन में संघर्ष बढ़ेगा। भूरा रंग, लाल रंग, गाढ़ा हरा रंग नौकरी में समस्याएं बढ़ा देता है। और अगर आपने अपने घर में ब्राउन कलर का, भूरे रंग का ज्यादा इस्तेमाल किया है, तो इसकी वजह से आपके जीवन में दरिद्रता आ सकती है। यानी आपके घर में कौन सा स्थान किस रंग का होना चाहिए, ये समझना आपके लिए जरूरी है। और अगर आप सही रंगों का प्रयोग करेंगे तो आपको लाभ अवश्य होगा। क्या उपाय करें, घर के रंगों को कैसे बेहतर करें? घर में हल्के और चमकदार रंगों का प्रयोग करें, लाइट और ब्राइट शेड के रंगों का प्रयोग करने से लाभ होगा। घर की छत का रंग हमेशा आपको सफेद रखना चाहिए। घर की छत का रंग अगर सफेद रखेंगे तो अच्छा होगा। घर में ज्यादातर सफेद रंग का और हल्के पीले रंग का प्रयोग करना चाहिए। अगर आपने घर में गलत रंग लगाए हुए हैं तो उसको बदलिए।
पहले वहां सफेद रंग लगाइए और इसके बाद जो रंग चेंज करना है उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। मुख्य द्वार पर, मेन डोर पर सफेद या क्रीम रंग का प्रयोग करें। मेन डोर पर काले रंग का दरवाजा, काले रंग का गेट ना लगाएं। व्हाइट या क्रीम कलर का प्रयोग करें। मुख्य गेट को आप हल्का ब्राउन रख सकते हैं, लेकिन मेन डोर का रंग भूल कर भी काला नहीं होना चाहिए। अब ये जानते हैं कि जो लोग घर में रहते हैं या घर में जो घटनाएं घटती हैं उससे किस तरह की अशुभता पैदा होती है। देखिए, अगर घर में बुरे स्वभाव के लोग हों, बुरी आदत वाले लोग हों, तो घर में अशुभता पैदा होगी। घर में चीख चिल्लाहट मचती हो, क्रोध में झगड़े होते हों, घर में मदिरा पान किया जाता हो, यानी बुरी आदतें हों, तो ऐसे घर में अशुभता आएगी। अगर घर में गलत तरीके से अर्जित धन का प्रयोग होता हो तो घर में अशुभता आएगी। घर में गलत तरीके से पैसा आएगा तो वो पैसा बीमारियां और कष्ट अपने साथ ले आएगा और इसमें आपको मुश्किल उठानी पड़ेगी। अगर घर में किसी की अप्राकृतिक मृत्यु हो गई हो, किसी ने सुसाइड किया हो या सडन डेथ हो गई हो, तो घर में इसकी वजह से भी अशुभता पैदा होती है अगर इसका उपाय ना किया जाए। और अगर घर के लोगों की वजह से, लोगों के स्वभाव की वजह से अगर घर में अशुभता पैदा होती है, तो ऐसी दशा में घर में धीरे धीरे दरिद्रता आनी शुरू हो जाती है। घर के लोगों का रोजगार खराब होने लगता है और घर में बच्चे बीमार रहने लगते हैं, उनके अंदर अजीब आदतें आ जाती हैं और घर इतना ज्यादा अशुभ हो जाता है कि घर में अकेले रहने पर डर लगता है या घर में कोई है ऐसा एहसास होता है, ऐसा अनुभव होता है। तो मुख्यतः घर में रहने वाले जो लोग हैं उनकी आदतों से, उनके खान पान से, उनके स्वभाव से घर में अशुभता पैदा हो सकती है। इसलिए घर में रहने वाले लोगों को अपने आचरण का, अपने जीवन का बहुत ध्यान देना चाहिए। क्या उपाय किया जाए? गलत और बुरे कामों से तौबा करिए। गलत काम, अशुभ काम, बुरे काम मत करिए। घर के लोगों को आपस में षड्यंत्र नहीं करना चाहिए।

शक्ति का प्रयास नहीं करना चाहिए। देखिए, जहां तक हो सके गलत तरीके से पैसा मत कमाइए। ऐसा पैसा जैसे आएगा वैसे जाएगा। अगर घर में किसी की अप्राकृतिक मृत्यु हुई है, किसी ने सुसाइड किया है या लंबी बीमारी के बाद मृत्यु हुई है, तो पूरे घर की सफेदी करवाइए और एक महीने तक दोनों समय घर में भगवत गीता का पाठ करवाइएगा। घर में भगवान शिव या भगवान कृष्ण की मूर्ति या उनका चित्र स्थापित करिएगा और उसकी नियम पूर्वक रोज पूजा करिएगा, आपको लाभ होगा। एक बात आप समझ लीजिए कि आप बाकी सारी चीजों के उपाय कर सकते हैं, दिशाओं का, घर में रहने वालों का, घर के रंगों का, लेकिन सूर्य के प्रकाश का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। इसीलिए रोशनदान निकलवा के, खिड़की निकलवा के, शीशा लगाकर ऐसी व्यवस्था जरूर करें जिससे आपके घर में सूर्य का प्रकाश आता रहे। देखिए, अलग अलग लग्न के लोगों की, लग्न की बात कर रहा हूं मैं, राशि की नहीं, अलग अलग लग्न के लोगों की कुंडली में संपत्ति की स्थिति अलग अलग होती है और उसी के हिसाब से उनके घर की समस्याएं होती हैं। तो अब आपको बताते हैं कि किस लग्न के व्यक्ति के जीवन में घर में किस तरह की समस्या होती है और इसको बेहतर करने के लिए क्या उपाय करें। सबसे पहले बात करते हैं मेष लग्न की। इनके घर में आम तौर पर सफाई की और पौधों की समस्या होती है। इनके घर में साफ सफाई बेहतर नहीं होती। बहुत सारे पौधे लगा लेते हैं, उनकी देखभाल नहीं करते, उस चक्कर में घर में गड़बड़ियां होती हैं। इसीलिए मेष लग्न वाले अपने घर में सोच समझकर पौधे लगाएं, उल्टे सीधे गलत पौधे ना लगाएं और घर को अगर साफ सुथरा बनाए रखें तो आपके घर की शुभता बढ़ेगी और उस घर में रहने पर आपको लाभ होगा। वृषभ लग्न। वृषभ लग्न वालों के घर में आम तौर पर सूर्य के प्रकाश की व्यवस्था होती है, गड़बड़ी होती है उसमें, क्योंकि ये अपना घर बहुत अच्छा तो बना लेते हैं, सजा लेते हैं, रंग पे ध्यान दे लेते हैं, वास्तु पे ध्यान दे लेते हैं, लेकिन सूर्य के प्रकाश की समस्या इनके घर में आम तौर पर रहती है। सूर्य के प्रकाश की दिक्कत इनके घर में पाई जाती है। इसीलिए आप देखेंगे कि वृषभ लग्न वालों के घर में ज्यादातर लोग बीमार रहते हैं, क्योंकि घर में सूर्य का प्रकाश नहीं आता। ऐसी स्थिति में अगर आपका लग्न वृषभ लग्न है तो घर में पर्याप्त रोशनी की और सूर्य के प्रकाश की व्यवस्था करिए, चाहे खिड़की तोड़कर, चाहे रोशनदान तोड़कर, चाहे शीशा लगाकर।
अपने घर में सूर्य के प्रकाश की व्यवस्था जरूर करें। अगर आप सूर्य के प्रकाश की व्यवस्था करेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे, आपके घर की शुभता बढ़ेगी। मिथुन लग्न, इनके घर में बेवजह का सामान भरा रहता है, अनावश्यक कूड़ा कबाड़ क्लटर ये भर करके अपने घर में रखे रहते हैं। जरूरत नहीं है फिर भी जूता नहीं हटाएंगे पुराना, जरूरत नहीं है फिर भी पुराने कपड़े नहीं हटाएंगे, तो इनके घर में अनावश्यक सामान भरा रहता है। देखिए, अगर आपका लग्न मिथुन लग्न है तो घर में व्यर्थ के सामान मत भरिए। वायु का वेंटिलेशन, एयर का वेंटिलेशन ठीक रखिए, घर में हवा पानी ठीक से आती रहे, कूड़ा कबाड़ इकट्ठा मत करिए। क्योंकि अगर आपका मिथुन लग्न है और आप अपने घर में कूड़ा कबाड़ इकट्ठा करेंगे, आपका ज्यादातर पैसा उधार बांटने में और बीमारी में खर्च होगा। कर्क लग्न, इनके घर में बाथरूम का मामला गड़बड़ होता है, बाथरूम में टाइल टूट जाएगी, बाथरूम में पानी टपकता रहेगा, ये लगातार घर की साफ सफाई करते रहते हैं लेकिन घर में गंदगी बनी रहती है। तो कर्क लग्न वालों के बाथरूम का और सफाई का मामला आम तौर पर गड़बड़ होता है। देखिए, अगर आपकी कुंडली कर्क लग्न की है तो घर में बाथरूम में पानी का ध्यान दें कि बेवजह पानी बर्बाद ना हो, और बाथरूम का फर्श टूट गया, टोटी खराब हो गई, उसको बदलवाइए और अपने घर में सफाई रखिए। बाकी लोगों से भी कहिए कि आपको सफाई रखने में वो सपोर्ट करें, मिल करके घर को साफ सुथरा रखें, बहुत अच्छा होगा। सिंह लग्न, सिंह लग्न वालों के घर में प्रकाश की व्यवस्था अक्सर गड़बड़ रहती है, किसी कोने में बल्ब फ्यूज हो गया, कहीं लाइट नहीं आ रही है, कहीं घर का कोई हिस्सा पूरी तरह से अंधेरा है, ऐसा भी सिंह लग्न वालों के साथ देखा गया है। देखिए, अगर आपकी कुंडली सिंह लग्न की है तो बिजली का और प्रकाश का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। घर में प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था हो, बिजली बिल्कुल ठीक हो और बिजली की फिजूल खर्ची ना करें। कन्या लग्न, कन्या लग्न वालों के घर का मेन डोर गड़बड़ होगा। 90% मामले में देखिएगा कि कन्या लग्न वालों का घर बड़ा शानदार होता है, बहुत बढ़िया बनाते हैं, लेकिन इनका मेन डोर गड़बड़ होता है। मुख्य द्वार या तो टूटा रहता है या मुख्य द्वार का रंग ये काला करवा देते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो कन्या लग्न वालों के घर के मुख्य द्वार में गड़बड़ी पाई जाती है। जो कन्या लग्न के लोग हैं, इनको अपने घर के मुख्य द्वार का और वाहन की पार्किंग का ध्यान रखना चाहिए। ऐसा करने से और संपत्तियां बना पाएंगे, जीवन में और धनवान बन पाएंगे। अब जानते हैं तुला लग्न के बारे में। तुला लग्न के जो लोग हैं, इनके घर में क्या दिक्कत होती है? इनके घर में बेवजह के झगड़े बहुत होते हैं।
छोटी छोटी बात पर घर में कलेश होता है, विवाद होता है और रसोई इनके घर में गड़बड़ होती है, रसोई की दिशा ठीक नहीं होती। इस वजह से तुला लग्न वालों के जीवन में मुश्किलें आ जाती हैं। अगर आपका तुला लग्न है तो घर में शांति बनाए रखिए और पूजा उपासना पर विशेष ध्यान दीजिए। पूजा उपासना पूरी करिए। रसोई में खाना बनाते समय बहुत ध्यान दीजिए, आपका चेहरा पूरब या उत्तर की तरफ होना चाहिए। अगर आप ऐसा करें तो आपको लाभ होगा। घर में शांति रखिए, रसोई को साफ सुथरा रखिए, खाना बनाते समय पूरब या उत्तर की तरफ चेहरा रखिए तो निश्चित रूप से आपके घर की अशुभता दूर हो जाएगी। वृश्चिक लग्न, इनके घर में अक्सर पानी की गड़बड़ी रहती है। पानी बेवजह का बहता है, बेवजह का पानी वेस्ट होता है और घर में सीलन भी रहती है इनके, ऐसा देखा गया है। तो अगर आपका वृश्चिक लग्न है तो घर में पानी की स्थिति पर और सीलन पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। अपने घर में पानी की सिचुएशन ठीक रखें, पानी की बर्बादी ना करें और अपने घर में सीलन से घर को बचाइएगा। धनु लग्न, धनु लग्न वालों के घर में इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान अक्सर खराब होते हैं। अक्सर इनके घर में बिजली की समस्या होती है, अक्सर इनके घर में रसोई की समस्या भी पाई जाती है। अगर आपका धनु लग्न है तो घर की वायरिंग पर, बिजली के फिटिंग पर, बिजली के उपकरणों पर और रसोई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। धनु लग्न वालों के घर में शॉर्ट सर्किट ज्यादा होता है और धनु लग्न वाले ये भी जान लें कि आपके घर में बिजली के सामान जो खराब होते रहते हैं उसकी वजह से पैसे की बर्बादी बहुत होती है। तो घर की वायरिंग ठीक रखें और अपने घर की रसोई पर विशेष ध्यान देंगे। मकर लग्न, इनके घर में रंगों की समस्या रहती है। गाढ़ा रंग करवा लेंगे, किचन में गुलाबी करवा लेंगे, बेडरूम में पीला करवा लेंगे, उल्टे सीधे रंग उल्टी सीधी जगह पे लगवा लेते हैं। इसकी वजह से मुश्किल होती है, इनके घर में रंगों की समस्या रहती है और प्रकाश की कमी रहती है, घर में अक्सर अंधकार महसूस होता है। इनको अपने घर में सही रंगों पर ध्यान देना चाहिए। खिड़की दरवाजे ऐसे रखने चाहिए जिससे नेचुरल प्रकाश, सूर्य का प्रकाश घर में आता रहे। अगर आप ऐसा करेंगे तो घर की अशुभता दूर होगी और घर की स्थितियां बेहतर होंगी। कुंभ लग्न, इनके घर में सफाई की समस्या होती है। अक्सर घर में गंदगी इकट्ठा हो जाती है और घर की चीजें अस्त व्यस्त रहती हैं, एक जगह पर नहीं रह पाती, घर में अव्यवस्था रहती है और सफाई की समस्या भी रहती है। इनको घर को साफ सुथरा
और व्यवस्थित रखना चाहिए। अगर आपका लग्न कुंभ लग्न है तो घर को साफ सुथरा और व्यवस्थित रखें। आपका पैसा बीमारियों में बेवजह बांटने में खर्च नहीं होगा। मीन लग्न, मीन लग्न वालों के घर में एक तो पानी बेवजह टपकता बहुत है, पानी बेवजह बर्बाद बहुत होता है, और सूर्य का प्रकाश इनके घर में आम तौर पर नहीं आता, जिसकी वजह से घर में बीमारी भी होती है, पैसे की बर्बादी भी होती है। तो देखिए, सूर्य के प्रकाश की व्यवस्था करें, खिड़की निकलवा के, रोशनदान लगवा के, शीशा लगवा के, जैसे भी संभव हो सूर्य के प्रकाश की व्यवस्था करें, और पानी की बर्बादी से बचिए। जो लोग पानी की बर्बादी करते हैं उन्हें गंभीर बीमारियां होती हैं, और पानी की बर्बादी करने वाले के पास पैसा कभी नहीं रहेगा, कभी नहीं बचेगा, पैसे की बचत को लेकर परेशान रहेंगे। तो गुड लक स्पेशल में आज के लिए बस इतना ही। आपका आने वाला सप्ताह शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

किंग्स बहू और बेटियां में आज देखिए टेलीविजन की दुनिया में अनलिमिटेड ड्रामा। दोपहर 1:28 से लेकर 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: गणेश उत्सव के इस पावन अवसर पर जेएनटी में भी गणपति पधारे, और हमें यकीन है कि हमारे दर्शकों के घर पर भी गणपति बप्पा जरूर पधारे होंगे, और हम चाहते हैं कि आप भी जेएनटी के गणपति उत्सव का हिस्सा बनिए। आप अपने अपने घर पधारे गजानन का वीडियो बनाइए और हमारे संग शेयर कीजिए, हम उन वीडियोस को दुनिया को दिखाएंगे। आप हमें अपने वीडियो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारा नंबर है 7303409922। ये नंबर कॉल करने के लिए नहीं है, ये नंबर सिर्फ और सिर्फ वीडियोस या तस्वीरें भेजने के लिए है। जब भी आप अपना वीडियो या फोटोज भेजें तो साथ में अपना नाम, अपने शहर, गांव और कस्बे का नाम जरूर लिखें।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
2: जिसने हिला दिया महाराष्ट्र, जिसे कांप रहे हैं मिलावटखोर, हाईकोर्ट की कैंटीन पर लगा दिया ताला, सब्जी बेचकर पढ़ाई, बेईमानों से लड़ाई, बंदे में है दम, शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आपको। इस वक्त की शानदार खबर आपको बता दें, जापान में चल रहे एशियन गेम्स में भारत को एक और मेडल मिल गया है। जी हाँ, आपको बता दें विमेंस 10 मीटर एयर राइफल इंडिविजुअल फाइनल इवेंट में भारत की इला वेनल वरालरेवन ने सिल्वर मेडल जीत लिया है और उसके साथ ही एशियन गेम्स में भारत के अब तक 2 मेडल्स सामने आ चुके हैं। आज ही इससे पहले भारतीय महिला शूटर्स की टीम ने 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट में रजत पदक हासिल किया था। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पोडियम पर जगह बनाई और इन पदकों के साथ एशियन गेम्स में भारत के मेडल अभियान की शुरुआत हो गई है। और भी कई मुकाबलों में मेडल्स पर आज निगाहें बनी हुई हैं। और चलिए अब आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश के मेरठ में एयर शो की तस्वीरें। मेरठ में एयर शो का जो दूसरा और अंतिम दिन है, भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण टीम ने यहां पर हैरतअंगेज करतब दिखाई। टीम ने मेरठ के आसमान में अलग अलग फॉर्मेशन बनाकर दर्शकों को रोमांचित कर दिया। मेरठ में न्यू इंटीग्रेटेड टाउनशिप में आयोजित एयर शो में विमानों में आसमान में रोमांचक और हैरतअंगेज हवाई करतब दिखाए गए। आपको बता दें इस दौरान 9 हॉक MK-130 विमानों की गड़गड़ाहट सुनकर लोग रोमांचित हो उठे और वहीं विमानों ने जमीन से सिर्फ 100 फीट की ऊंचाई पर शानदार फॉर्मेशन बनाया और धुएं से लकीरें खींचकर आसमान को तिरंगे के रंग में रंग दिया। और इतना ही नहीं, विमानों ने हवा में गजब की कलाबाजियां दिखाई। और चलिए अब आपको दिखाते हैं तस्वीरें महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में चल रहे सैन्य अभ्यास की। भारत और अमेरिका के इस युद्ध अभ्यास 2026 के दौरान M777 अल्ट्रा लाइट होविट्ज़र ULH से लाइव फायरिंग की गई, जिसमें डायरेक्ट फायरिंग मेथड का इस्तेमाल करके सामने दिख रहे टारगेट पर निशाना साधा गया। इस दौरान ULH गन क्रू ने बेहतरीन प्रोफेशनलिज्म, सटीकता और युद्ध के लिए तत्परता का प्रदर्शन किया। फायरिंग के दौरान सभी तय टारगेट्स को सफलतापूर्वक निशाना बनाकर नष्ट कर दिया गया। फायरिंग के बाद US अमेरिकी सेना के जवानों ने ULH बैटरी के अधिकारियों और जवानों से बातचीत की। दोनों सेनाओं के बीच इस दौरान प्रोफेशनलिज्म देखने को मिला, प्रोफेशनल जानकारी और लड़ाई के बेहतरीन तौर तरीकों के बारे में बातचीत भी हुई। अभ्यास की ये तस्वीरें भारतीय सेना ने जारी की। और चलिए अब आपको दिखाते हैं महाराष्ट्र के अमरावती में गणपति पंडाल की शानदार तस्वीरें। यहाँ के बुधवारा इलाके में आजाद हिंद गणेश

0: शिवोत्सव मंडल ने पंडाल में खाटू श्याम मंदिर की भव्य झांकी तैयार की है। यहां गणपति बप्पा की सुंदर प्रतिमा के साथ खाटू श्याम मंदिर की भव्य झांकी बनाई गई है। पंडाल में पहुंचने वाले श्रद्धालु पहले गणपति बप्पा के दर्शन कर रहे हैं और इसके बाद खाटू श्याम जी के दर्शन भी कर रहे हैं। मंदिर की आकर्षक सजावट और झांकी श्रद्धालुओं का ध्यान खींच रही है। आजाद हिंद गणेश उत्सव मंडल करीब 98 सालों से गणेशोत्सव की परंपरा को निभा रहा है। मंडल हर साल अलग अलग थीम के जरिए गणपति उत्सव को खास बनाने का प्रयास करता है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं महाराष्ट्र में पुणे के पास रांजन गांव महागणपति का झिलमिलाता रूप। पुणे जिले के शिरूर तालुका में स्थित रांजन गांव महागणपति मंदिर गणेश उत्सव के अवसर पर आकर्षक लाइटिंग से जगमगा उठा। ड्रोन कैमरे से कैद मंदिर और रोशनी से जगमगाता पूरा परिसर का विहंगम दृश्य बेहद आकर्षक नजर आया। ये मंदिर अष्टविनायक गणपति मंदिरों में शामिल है। मंदिर के साथ साथ पूरे गांव में भी आकर्षक लाइटिंग की गई है। रात के अंधेरे में जगमगाती रोशनी से रांजन गांव का नजारा बेहद खूबसूरत नजर आया। ड्रोन कैमरे से कैद इन विहंगम दृश्यों में रोशनी से सजा महागणपति मंदिर और दूर तक फैली रोशनी की चमक दिखाई दी। गणेशोत्सव में रोशनी का यह भव्य नजारा श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए खास आकर्षण बना हुआ है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं महाराष्ट्र के जालना में गणेशोत्सव की एक खास तस्वीर। जालना में गणेशोत्सव के पंडाल में अनोखी भूगोल प्रदर्शनी लगाई गई है। यहां पर समर्थ रामदास स्वामी की ओर से स्थापित 11 मूर्ति की प्रतिमाओं के साथ भूगोल प्रदर्शनी लगाई गई है और पृथ्वी से लेकर अंतरिक्ष और पूरे ब्रह्मांड तक की अलग अलग अवधारणाओं को मॉडल के माध्यम से समझाने की कोशिश की गई है। इसका उद्देश्य है छात्रों को आसानी से और रोचक तरीके से भूगोल की जानकारी देना। दरअसल कई छात्रों को भूगोल का अध्ययन थोड़ा सा मुश्किल और उबाऊ लगता है और यही वजह है कि छात्रों के मन से भूगोल विषय का डर दूर हो जाए और इस विषय के प्रति उनकी रुचि बढ़ाई जाए। इसके लिए शिक्षक श्रीकांत चिंचखेड़कर ने ये पहल की है। महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक देश भर में गणेशोत्सव धूमधाम से चल रहा है तो कई जगहों पर गणपति बप्पा की विदाई भी हो रही है। अभी हम आपको दिखा रहे हैं गणपति की विदाई की दो खास तस्वीरें। एक तस्वीर बिहार के मधेपुरा जिले के मुरलीगंज की है और दूसरी तस्वीर महाराष्ट्र के बीड की है। मुरलीगंज में 5 दिन पूजा अर्चना के बाद भगवान श्री गणेश की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। गाजे बाजे ढोल नगाड़ों और गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों के साथ शोभा यात्रा की शुरुआत हुई और नदी में विधि विधान के साथ भगवान की प्रतिमा को विदाई दी गई। महाराष्ट्र के बीड में लिंबा गणेश में मयूरेश्वर गणपति को शाही अंदाज में विदाई दी गई। बीड तहसील के लिंबा गणेश गांव में 225 सालों से चली आ रही एक गांव एक गणपति की अनूठी परंपरा इस साल भी पूरी श्रद्धा और धूमधाम के साथ निभाई गई। यहां सरकार वाड़ा में स्थापित मयूरेश्वर गणपति की विदाई शाही ठाट बाट के साथ पूरी हुई। इस भव्य जुलूस में आसपास के 12 गांवों की टीमों ने हिस्सा लेकर समा बांध दिया। और चलिए अब आपको दिखाते हैं बेंगलुरु में सजी संगीत की महफिल की तस्वीरें। बेंगलुरु में हाल ही में एन इवनिंग विद लेजेंड्स कंपैशन इन एक्शन संगीतमय कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें बड़ी संख्या में कलाकारों से सुरों की महफिल सजी और ये कार्यक्रम वन वर्ल्ड वन फैमिली मिशन के सेवा कार्यों और समाज के प्रति करुणा की भावना को समर्पित करता था ताकि जन्मजात हृदय रोग से पीड़ित बच्चों की मदद की जा सके। आध्यात्मिक गुरु सदगुरु श्री मधुसूदन साई और दिग्गज पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह के लिए डबल सेलिब्रेशन का मौका है। दीपिका एक बार फिर से एक बच्चे की मां बन चुकी हैं। दोनों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए फैंस के साथ एक खुशखबरी शेयर की है और अब उनकी बड़ी बेटी दुआ को एक छोटी बहन मिल गई है। खास बात यह है कि एक दिन पहले ही दीपिका और रणवीर अपने परिवार के साथ मुंबई के लाल बागचा राजा पंडाल में और सिद्धि विनायक मंदिर में बप्पा के दर्शन के लिए पहुंचे थे।
1: दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह के घर पर एक बार फिर से किलकारी गूंज रही है। दीपिका और रणवीर एक बार फिर से पेरेंट्स बन गए हैं। दीपिका पादुकोण एक बार फिर से बेटी की मां बनी हैं। इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए उन्होंने ये खुशखबरी शेयर की। हालांकि उन्होंने बेटी के जन्म की जानकारी को बेहद पर्सनल रखने की कोशिश की। और सोशल मीडिया पर इस अनाउंसमेंट को बहुत सादगी पूर्ण तरीके से शेयर किया। इसके साथ ही उन्होंने नजर बट्टू वाली इमेज भी शेयर की है। खास बात ये है कि दीपिका और रणवीर की दूसरी बिटिया का जन्म 19 सितंबर को हुआ, जब देश भर में राधा अष्टमी का पावन पर्व मनाया जा रहा था। साथ ही ये भी अहम है कि इस वक्त गणेश उत्सव चल रहा है और बेटी के पैदा होने से एक ही दिन पहले दीपिका और रणवीर गणपति के दर्शन करके उनका आशीर्वाद लेने पंडालों में भी पहुँचे थे। 18 सितंबर को वे लाल बागचा राजा के पंडाल में पहुँचे थे, साथ ही सिद्धि विनायक के दरबार में भी उन्होंने हाजिरी लगाई थी। इस दौरान रणवीर दीपिका का हाथ थामे उनके साथ मंदिर के अंदर जाते हुए नजर आईं। दोनों को मंदिर में देखकर फैंस ने एक्ट्रेस की डिलीवरी के कयास लगाने शुरू कर दिए थे। बताया जाता है कि 2024 में भी अपनी पहली संतान के जन्म से पहले दोनों सिद्धि विनायक मंदिर पहुंचे थे और अब 2026 में दूसरे बीबी का वेलकम करने से पहले भी दीपिका रणवीर गजानन के दर्शन करना नहीं भूले। बप्पा का आशीर्वाद लेने के ठीक एक दिन बाद ही उन्होंने अपनी दूसरी बेटी के जन्म की खुशखबरी सुनाई। बता दें 8 सितंबर 2024 को दीपिका और रणवीर की बड़ी बेटी दुआ का जन्म हुआ था और अब इस बार 19 सितंबर को उनके घर में एक और लाडली बिटिया रानी खुशियां लेकर आई है। दीपिका की दोनों बेटियों का जन्म सितंबर महीने में हुआ और इसे भी खूबसूरत संयोग माना जा रहा है। दीपिका और रणवीर ने इसी साल अप्रैल में एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताया था कि वो एक बार फिर से पेरेंट्स बनने वाले हैं। इसके बाद से ही उनके दूसरे बेबी का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था और अब दीपिका और रणवीर के घर एक और नन्ही परी आई है। तो बॉलीवुड और फिल्म इंडस्ट्री से लेकर तमाम दोस्त, शुभचिंतक और फैंस उन्हें खूब बधाइयां दे रही हैं। मुंबई से भावना अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: और चलिए अब आपको दिखाते हैं कलाबाजी की कुछ ऐसी तस्वीरें जिनको देखकर आप दंग रह जाएंगे। चाइना की ये तस्वीर है जहां पर पोयांग में कलाकारों ने हवा में छलांग लगाने, कलाबाजी दिखाने और हवा में ही रोमांचक तरीके से कैच पकड़ने जैसे करतबों के जरिए एक्रोबेटिक्स की ताकत और खूबसूरती का प्रदर्शन किया। चाइनीज कलाबाजों ने इंसानी पिरामिड बनाया और लंबी रस्सी से कूदते हुए दर्शकों को हैरान कर दिया। शेनडोंग एक्रोबेटिक ट्रूप के कलाबाजों ने इंसानी पिरामिड बनाते हुए लंबी रस्सी से छलांग लगाई, जिसको देखकर तमाम लोग हैरान हो गए। पोयांग में 12वीं चाइना एक्रोबेटिक्स गोल्डन क्राइसेंथेमम अवार्ड नेशनल एक्रोबेटिक्स कंपटीशन और 6ठे चाइना एक्रोबेटिक्स आर्ट फेस्टिवल का समापन समारोह आयोजित किया गया था। इस दौरान कलाबाजों ने शानदार करतब दिखाए।
2: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
3: बहू और बेटियां में आज देखिए टेलीविजन की दुनिया में अनलिमिटेड ड्रामा। दोपहर 1:28 से लेकर 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

0: जिसने हिला दिया महाराष्ट्र, जिसे कांप रहे हैं मिलावटखोर। हाई कोर्ट की कैंटीन पर लगा दिया ताला। सब्जी बेचकर पढ़ाई, बेईमानों से लड़ाई। बंदे में है दम। शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
0: एवरेस्ट दिखा ला, सही दिखा सही लाल।
3: भारत को शूटिंग में मिला दूसरा सिल्वर मेडल। इला वेनल वलारविवन ने 10 मीटर एयर राइफल में किया कमाल। इससे पहले महिला टीम ने जीता था रजत पदक। मेरठ में एयर शो दूसरा और आखिरी दिन। सूर्य किरण एरोबैटिक टीम ने दिखाई हैरतअंगेज करतब। बड़ी संख्या में दीदार के लिए पहुंचे लोग। जोधपुर में भारत जापान का संयुक्त अभ्यास वीरगार्जुन। भारत और जापान के एयर चीफ ने तेजस में भरी उड़ान। 22 सितंबर तक चलेगी एक्सरसाइज। देशभर में गणपति उत्सव की रौनक। अमरावती के गणपति पंडाल में खाटू श्याम मंदिर की भव्य झांकी। पुणे के गणेश मंदिर का भव्य श्रृंगार। बिहार के मधेपुरा में गणेश प्रतिमा के विसर्जन पर शोभा यात्रा। कोलकाता के त्रिकाल झांकी बनी आकर्षण। कलाकारों ने मनमोहक प्रस्तुति दी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। आपको बता दें, एक शानदार खबर निकलकर सामने आ रही है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक और बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली है। मंधाना अब T20 इंटरनेशनल क्रिकेट महिला और पुरुष दोनों में इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज बन गई है। उन्होंने न्यूजीलैंड की दिग्गज बल्लेबाज सूजी बेट्स को पीछे छोड़ते हुए ये मुकाम हासिल किया है। ये अचीवमेंट स्मृति ने बांग्लादेश के खिलाफ एशियन गेम्स 2026 के दूसरे सेमीफाइनल में हासिल की है। स्मृति मंधाना ने इस मैच में 19 गेंदों में 37 रनों की पारी खेली है। तो वहीं मंधाना महिला T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 छक्के पूरे करने वाली पहली भारतीय भी बन गई हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है स्मृति मंधाना की और भारतीय टीम की, महिला क्रिकेट टीम की। आपको बता दें, क्रिकेट टीम की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में ये बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली है। क्रिकेट में महिला और पुरुष दोनों में इतिहास रच दिया है उन्होंने। सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज बन चुकी हैं T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में। न्यूजीलैंड की दिग्गज बल्लेबाज सूजी बेट्स को पीछे छोड़ा है।
1: गुड न्यूज टुडी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबर।
4: सास बहू और बेटियां में आज देखिए टेलीविजन की दुनिया में अनलिमिटेड ड्रामा। दोपहर 1:28 से लेकर 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: सभी भाइयों और बहनों को बाबा रवि गिरी का स्नेहिल आशीर्वाद। तो भाइयों और बहनों, मेरा नाम बाबा रवि गिरी है, मैं 78 साल का हूं और पिछले 50 वर्षों से सिर्फ एक ही कार्य कर रहा हूं, प्राकृतिक शुद्ध और गारंटेड इलाज देना। मैंने जीवन के पूरे 78 साल देखे हैं और उनमें से 50 साल केवल एक ही सेवा में लगे हैं, आयुर्वेद के माध्यम से रोगों का इलाज करना। आज हम एक ऐसी पीड़ा पर चर्चा करेंगे जो न बोले तो भीतर से जलाती है और बोले तो लोग हंसते हैं, और उसका नाम क्या है? बवासीर। अरे भाइयों और बहनों, ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये शरीर का रोग है, और जैसे सिर में दर्द होता है वैसे ही गुदा में भी रोग हो सकता है, और सबसे ज़्यादा लोग मेरे पास में बवासीर की बीमारी के लिए ही आते हैं, क्योंकि ये रोग न तो उम्र देखता है, न पैसा देखता है, न पद या ओहदा देखता है, बस जब होता है तो इंसान को नाक में दम कर देता है। जलन, दर्द, खून आना, बैठ भी ना पाए। मैंने खुद देखा है लोगों को रोते हुए, और तभी मैंने ठान लिया था बवासीर का इलाज निकालूंगा, ऐसा इलाज जो बवासीर वापस ना हो। मैंने जड़ी बूटियों को परखा, हजारों नुस्खे आजमाए, और फिर तैयार की एक ऐसी औषधि जो आज मैं गर्व से कहता हूँ गारंटी से बवासीर को ठीक करती है। तो भाई और बहनों, आपने पाइल्स के बहुत सारे इलाज कराए होंगे, कई दवाइयां खाई होंगी, लेकिन आपकी बवासीर ठीक नहीं हुई होगी। मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूँ कि आपकी पुरानी से पुरानी पाइल्स ठीक होगी, और ये मेरी गारंटी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको खूनी बवासीर है या बादी बवासीर, एक हफ्ते में आराम और 21 दिन में बीमारी जड़ से खत्म, ना ऑपरेशन ना साइड इफेक्ट। मैंने ये दवा उन्हीं जड़ी बूटियों से बनाई है जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने आजमाया था, और आज देश भर से लोग फोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बाबा जी आपने तो हमें एक नया जीवन दान दे दिया है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, इलाज चाहिए तो आयुर्वेद अपनाओ, और अगर गारंटी इलाज चाहिए तो मेरे 50 वर्षों के अनुभव लो, नहीं फायदा हुआ तो पैसे वापिस, इतना भरोसा है मुझे अपने इलाज पर। तो भाई और बहनों, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि बवासीर क्या होती है और क्यों होती है। बवासीर क्या है? हमारे मल द्वार या एनस जिसको बोलते हैं, एनस के अंदर या फिर बाहर छोटे छोटे रक्त वाहिकाएं या ब्लड वेसल होती है जो कभी कभी सूज जाती है, फूल जाती है और धीरे धीरे मांस जैसा बाहर निकलने लगता है। इसी को हम आम भाषा में कहते हैं बवासीर या पाइल्स। अगर इन सूजी हुई नसों से खून निकलने लगे तो उसे कहते हैं खूनी बवासीर, और अगर सिर्फ मांस बाहर निकलता है, जलन, दर्द और खुजली होती है तो वो कहलाती है बादी बवासीर। अब सवाल आता है कि ये होती क्यों है? तो सुनिए, इसके मुख्य कारण है कब्ज। अगर पेट साफ नहीं होता, मल सख्त आता है और रोज जोर लगाना पड़ता है तो धीरे धीरे नसें फूल जाती है। दूसरा, लंबे समय तक बैठना। जो लोग घंटों बैठे रहते हैं ऑफिस में गाड़ी चलाते हुए या फिर मोबाइल पर, तो उनमें रक्त संचार घटता है और नसों पर दबाव पड़ता है। तीसरा कारण है तीखा और भारी खाना खाना। बहुत ज्यादा लोग क्या होते हैं कि मिर्ची मसाले, तली चीजें और कम पानी, ये शरीर को गर्म करते हैं और अंदर जलन पैदा करते हैं। चौथा कारण होता है वंशानुगत कारण, जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं। अगर आपके घर में माता पिता को बवासीर रही है तो संभावना बढ़ जाती है कि आपको भी हो सकती है। यह रोग सिर्फ शरीर को नहीं, इंसान की आत्मा तक को थका देता है। लेकिन इसके अलावा भी कई कारण हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिसका आहार संतुलित नहीं है, उसका कुछ भी संतुलित नहीं हो सकता। आयुर्वेद के अनुसार आहार ही सभी रोगों की जड़ का मुख्य कारण है। फिर जीवन शैली और पाइल्स यानी बवासीर तो मुख्य रूप से आहार से संबंधित है। आहार और विचार दोनों आपके शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विचार से अभिप्राय है, जीवन शैली से है, पर लोगों की इसी अनियमितता को देखते हुए मैंने कुछ खास जड़ी बूटियों का मिश्रण तैयार किया है बवासीर यानी पाइल्स के लिए। बवासीर के मेरे पास बहुत से मरीज आते हैं, कई तो दो तीन बार ऑपरेशन करवा चुके होते हैं फिर भी कोई आराम नहीं होता। वो इतनी आस लेकर आते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। बवासीर का मेरे पास एक बहुत ही कारगर फार्मूला है जो मैंने अब कुडोस आयुर्वेदा से बनवाया है। बवासीर एक बहुत ही कॉमन आम समस्या बन गई है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है पाइल्स होने के चांसेस भी एक व्यक्ति में बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम अपना पूर्ण रूप से ध्यान नहीं रख पाते हैं। और एक बात याद रखो, तनाव भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे गुस्सा आना, काम का तनाव, नींद पूरी ना होना, ये सब पेट को खराब करते हैं और पेट की गड़बड़ी बवासीर को बुलाती है। मैंने देखा है लोग बवासीर से पीड़ित होते हैं पर डॉक्टर के पास जाने में डरते हैं। औरतें तकलीफ सहती है पर परिवार से भी नहीं कह पाती, और फिर जब हालात गंभीर हो जाते हैं तो ऑपरेशन कराना पड़ता है। पर संतों का ये कहना है, रोग को समझो, शरीर की पुकार सुनो और जीवन शैली सुधारो। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे बताए हुए नुस्खे अपनाओ और बवासीर को जड़ से खत्म करो। ये मेरी गारंटी है कि आपको जल्दी आराम मिलेगा, ये कोई मामूल। लेकिन उससे पहले इसका सही पहचानना जरूरी है। अगर ये लक्षण आपको दिखें, खून आना, सूजन होना, खुजली या जलन, मांस का टुकड़ा सा बाहर निकल आना, तो समझ लीजिए ये बवासीर की दस्तक है और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बाबा रविगिरी हूं ना, आयुर्वेद में ऐसे ऐसे नुस्खे हैं जिनसे बवासीर जड़ से ठीक हो जाती है। पर पहले रोग को जानो, स्वीकार करो, फिर उपचार करो। ये लाइलाज नहीं है और आयुर्वेद में इसका स्थायी समाधान है। मैंने खुद देखा है हजारों लोगों को इससे मुक्ति पाते हुए। तो भाइयों और बहनों, यहां मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जिसे बहुत ध्यान से सुनना है। हर रोग का है समाधान जब हो मन में विश्वास का ध्यान। आयुर्वेद की राह पकड़ो, बिना डर के जीवन जियो। तो भाइयों और बहनों, मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पाइल्स की दिक्कतों को मैं जड़ से खत्म कर सकता हूं। अगर मेरे बताए गए नुस्खे अपनाते हो तो खुद आप बदलाव महसूस करोगे। अब हम बात करेंगे इलाज की। मेरे ये योगों में हरड़, जीरा, काली मिर्च, पीपली, मूल, चित्रक, छव्य, सूर्नकंद, अपामार्ग, अमलतास और बहुत कुछ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं हरड़ के फायदे। ये हरड़ है, औषधीय गुणों से भरपूर है। हरड़ के आयुर्वेद में चमत्कारिक फायदे बताए गए हैं। सेलेनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, विटामिन, प्रोटीन, जीवाणु रोधी, एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर है ये हरड़। बवासीर की बीमारी को दूर करने में बेहद असरदार साबित हुई है। जीरा जो छोंक में यूज करते हैं, ये वही जीरा है। ये कब्ज हो चाहे बवासीर हो, इन सब में बहुत कारगर है। बवासीर का असली कारण खाना अच्छी तरह से न पचना और कब्ज का हो जाना होता है। जीरा लीवर से एंजाइम्स बनाकर खाने को पचवाता है, अपच को दूर करता है और सख्त लैटिन को मुलायम करता है। अगला है काली मिर्च जो पाचन क्रिया को मजबूत करती है। इसके बाद में है पीपली मूल, ये आंतों में अगर कीड़े हैं तो उनको खत्म करता है, आंतों में सूजन को खत्म करता है। इसके बाद में है चित्रक। चित्रक की रेचिन प्रकृति मानी गई है, यह एक नेचुरल लैक्सेटिव है जो लैटिन को धक्का मारता है, आंतों में पड़ा नहीं रहने देता, रेचन करने वाला है। इसके बाद में है सूरन कंद, यह है सूरन कंद, ये एक प्रोबायोटिक है और पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। और यह है अपामार्ग, क्षार सूत्र की असली जड़ी बूटी है ये। इसमें सूजन घटाने वाले तत्व है जो बवासीर के मसों को शरीर से काट देते हैं। इसके बाद में है ये अमलतास, अमलतास पर बड़े शोध हुए हैं बड़ी बड़ी लेब में, और पता चला है कि इसमें प्रस्तुत है एंथ्राक्विनोनेज जो बवासीर पर काम करता है, पाचन शक्ति को मजबूत और जड़ पर काम करती है और बवासीर को जड़ से खत्म कर देती है। इसके बाद में है लज्जालु, लज्जालु पर जनरल ऑफ आयुर्वेद ने बताया है कि खूनी बवासीर पर चमत्कारित काम करता है, चाहे कोई भी डिग्री का बवासीर हो सब पर यह काम करता है। इसके बाद में है कचनार, कचनार की छाल काम दिया करती है, ये सूजन को घटाता है, बवासीर में कब्ज को काटता है, आंतों की सूजन को घटाता है, शरीर को विष हरण करता है और शुद्ध करता है। ये है निर्गुंडी, ये वातनाशक है, वात बढ़ने के कारण सूजन हो जाती है मसों में, ये निर्गुंडी जो है ये वात को शमन करके सूजन को घटाता है और मसों का नाश कर देता है। आखिर में यह है इंद्रायन, ये है इंद्रायन की जड़, इसके अंदर फ्लेवोनाइड्स, बेंजोइक एसिड, गैलिक एसिड, ये सारे गुण इसमें होते हैं जो बवासीर में आराम देते हैं। तो ये जितनी भी मैंने जड़ी बूटियां आप देख रहे हैं वो मैंने बताई है, ये सब मिलाकर मैंने बवासीर के लिए एक नुस्खा तैयार किया है और मैंने हजारों लोगों को इस पीड़ा से मुक्ति दिलाई है बिना ऑपरेशन, बिना किसी साइड इफेक्ट, सिर्फ शुद्ध और आयुर्वेदिक नुस्खों से। मेरे बताए नुस्खे अपनाओ, रोज नियम से इन्हें निभाओ, बवासीर को जड़ से मिटाओ, फिर लौट के कभी ना आए वो दर्द पुराना। और हाँ, खान पान में संयम जरूर रखिए, मिर्च मसाले कम, पानी ज्यादा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आपने मेरे बताए हुए नुस्खे नियम से अपनाए तो बवासीर जड़ से खत्म हो जाएगी और फिर दोबारा लौट कर नहीं आएगी। तो अब ऑपरेशन नहीं, अपनाओ रविगिरी के नुस्खे और कहो बवासीर तुझे जड़ से अलविदा। अब देर मत करो, मुझे तुरंत संपर्क करो और ये आयुर्वेदिक दवाई मंगवाओ ताकि बवासीर को हमेशा के लिए अलविदा कह सको। अब मैं भी आपसे इजाजत चाहूंगा, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
8: भारत को शूटिंग में मिला दूसरा सिल्वर मेडल, इला वेनेल वलारेवन ने 10 मीटर एयर राइफल में किया कमाल, इससे पहले महिला टीम ने जीता था रजत पदक। मेरठ में एयर शो का दूसरा और आखिरी दिन, सूर्य किरण एरोबैटिक टीम ने दिखाई हैरतअंगेज करतब, बड़ी संख्या में दीदार के लिए पहुंचे लोग। जोधपुर में भारत जापान का संयुक्त अभ्यास वीर गार्जियन, भारत और जापान के एयर चीफ ने तेजस से भरी उड़ान, 22 सितंबर तक चलेगी एक्सरसाइज।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची।
9: दोस्तों मैं हूं रिंकी भाभी और लेकर आई हूं आपके लिए मनोरंजन जगत की मसालादार खबरें। सीरियल्स का सस्पेंस हो, रियलिटी शोज का हंगामा या फिर वेब सीरीज का तड़का, सास बहू और बेटियां के इस शो में आपको मिलेगी मनोरंजन की हर खबर। तो चलिए बिना देर किए सबसे पहले देखते हैं आज की खास खबरें।
10: सास बहू और बेटियां की एंटरटेनमेंट से भरी गुड न्यूज में आज देखिए मुस्कान की मुंह दिखाई में होगा घर में बवाल। घर छोड़कर भागी मायरा, विद्या बनी सहारा।

0: अनुपमा करेंगी गणपति बप्पा का स्वागत।
1: आप तो सब जानते हैं, सब देखते हैं, आपने मेरी श्रद्धा भी देखी है और मेरा संघर्ष भी, पर मैं हार नहीं मानूंगी। बहुत जल्द आपको मेरे अपने घर बुलाऊंगी गणपति बप्पा।
2: आ जाओ के अपनी पर।
0: और फिर एक बार बिग बॉस में दिखेंगे सलमान खान के जलवे, ट्रोलर्स को मिलेगा करारा जवाब, मेरा ही जलवा। और मुलाकात होगी अदा खान से, जानेंगे उनकी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बेहतरीन जर्नी सिर्फ और सिर्फ सास बहू और बेटियां में।
3: नहीं होता है ना, किसी और की तकलीफ उन्हें दिखाई नहीं देती।
4: हमें कैमरास भी पहनाए गए थे, तो बहुत कुछ चेंज हुआ है हमें। इट्स नॉट what we used to do, ke wide angle and close ups and wo sab kuch abhi bahut change ho gaya hai.
5: सीरियल मन अति सुंदर में चल रही है होने वाले मम्मी पापा की पूजा, और इस पूजा में राध्या की जगह शामिल है अंतरा और प्रथम। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब पूजा के दौरान अंतरा बेहोश हो जाती है और राध्या परेशान नजर आती है। चलते हैं सीरियल के सेट पर।
0: बेहोश हुई अंतरा, होने वाले मम्मी पापा के लिए घर में रखी गई पूजा। राध्या पर उठे सवाल, दंगल टीवी के सीरियल मन अति सुंदर में वही आज घर पर मेहमान आए हैं और लोग अंतरा को देखकर उसे पसंद कर चुके हैं अपने पोतों के लिए। लेकिन अब उन्हें कौन बताए कि भाई अंतरा तो प्रथम के होने वाले बच्चे की माँ बनने वाली है। तभी तो देखिए कैसे सभी घर वाले हैरान हैं जब आए हुए मेहमान अंतरा के लिए अपने पोते का हाथ मांगते हैं। भाई ये सुनकर तो खुद अंतरा हैरान हो जाती है और देखिए कैसे भाई उसे चक्कर आ जाता है और वो बेहोश हो जाती है, जिसके चलते पूरा घर हो जाता है परेशान।

बेहोश हुए अंतरा को संभाला गया और उसे पानी भी पिलाया गया, जिसके बाद हुई होने वाले मम्मी पापा की पूजा। लेकिन ये पूजा राध्या और प्रथम की नहीं, बल्कि प्रथम और अंतरा की है। और देखिए कैसे भाई, कहीं ना कहीं राध्या का मन बेहद उदास हो रहा है। ऐसे में अब देखना होगा कि कैसे राध्या प्रथम को अंतरा के झूठे बुने हुए जाल से बचाएगी।

0: मई से ब्यूरो रिपोर्ट।
1: रियलिटी शो बिग बॉस 20 में इस हफ्ते हुए वीकेंड के वॉर में सलमान ने दिया सोशल मीडिया ट्रोलर्स को करारा जवाब, जहां वो होस्टिंग के दौरान शर्टलेस भी नजर आए। इसके अलावा सलमान ने लगाई घर वालों की क्लास, चलिए देखते हैं।
2: आ जाओ क्या अपनी पर
3: मेरा ही जलवा
2: मेरा। प्रोफेशन के दो साइड होते हैं, दो पहलू होते हैं। ये एक तो अच्छी बात है कि लोग आ रहे हैं, किसी का नाम ले रहे हैं, लोगों को फॉलो कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं, करेक्ट?
4: Yes.
2: जितने फॉलोअर, जितने ट्वीट्स, आई डोंट नो हाउ दिस होल थिंग वर्क्स, बट एक आमदनी उस फोन से, उस ब्लू टिक के अकाउंट से या जैसे भी है, वो जितने फॉलोअर्स हैं उतने पैसे आते हैं ना। यू गाइस ऑल ऑन सोशल मीडिया, इवन ट्रोल्स को वैसे ही होता होगा जितना इंटरेक्शन।
4: हाँ सर, वर्क करता है वैसे ही, ट्रोल वाले जो लोग ट्रोल करते हैं।
2: हाँ हाँ, पैसे ही कमाते हैं ना।
4: हाँ, उन लोग पैसे कमाते हैं।
2: हाँ, तो मतलब के बेसिकली किसी को नीचा दिखा के आप पैसे कमा रहे हैं। आई डोंट थिंक जिसको आप नीचा दिखा रहे हैं वो माइंड कर रहा होगा, बिल्कुल ही नहीं। आप अपनी अपब्रिंगिंग आप वो दिखा रहे हो, जो आपको रोजी रोटी दे रहा है आप उसी के बारे में भला बुरा कह रहे हो, गंदा लिख रहे हो उसके जिस्म पर, उसके वजन पर, उसके लुक्स पर, उसके खानदान पर, किसी के स्माइल पर, किसी के फ्लॉप पर, किसी के मां बनने पर। बद्दी लग रही है, मोटी हो गई है, बूढ़ा हो गया है, ये चल रहा है और वो पैसे कमा रहा है। ये सब चीजें करने के बाद पे एंड में आता है फॉलो मी, लेट मी नो व्हाट योर कमेंट ऑन दिस इज, एंड मजे ले लेके कह रहे हैं ये हंस के। और ज्यादा करके लोग वो अपनी शक्ल से भी नहीं आते उस पर, किसी और की आइडेंटिटी है, किसी और का नाम है। क्या जो ऊपर वाले ने वो शक्ल दी आपको उससे आप एम्बेरेस्ड हो और फिर आप किसी और की शक्ल, किसी और का वजन, जिसका आप लाइफ में कभी मिलोगे नहीं, कभी देखेगी नहीं, कभी देखेगा नहीं वो आप उसको, जब आप खुद अपनी शक्ल से इतने बेजार हो, इतने परेशान हो अपने खुद के जिस्म से कि आप किसी दूसरे को ट्रोल कर रहे हो। और फिर उनके घर में भी बहने हैं, उनके घर में भी माँ बाप हैं, और वो अगर अपनी खुद की बहनें या गर्लफ्रेंड या बीवियों को या माँ बाप को देख लें और कंपैरिजन कर लें तो वो कहीं पर भी नहीं आते। या तो अगर ये करना है तो ये मेरी माता है, ये मेरे पिता है, ये मैं हूँ, ये मेरी बीवी है, मेरी गर्लफ्रेंड है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा भाई, हम ऐसे दिखते हैं। पेट्रोल कर लो या आपको भी ऐसा दिखना चाहिए, लेकिन वो तो होगा नहीं। अब वो तो गंदगी है ही, इसके ऊपर बात भी नहीं करना चाहिए, लेकिन उनको समझाने के लिए, क्योंकि ना समझ है, वो पैसे कमा रहे हैं, इनको ऐसा लगता है कि किसी की मार के कमाओ, हाँ मजा आता है इनको। एंड देन देयर आर लॉट्स ऑफ गुड पीपल जो के तारीफ करते हैं, जो के सच में एडवाइस देते हैं, फील करते हैं, और जिस पर्पस के लिए सोशल मीडिया बना था उसका सही इस्तेमाल करते हैं। एक है जो कि मोहब्बत फैलाए जा रहे हैं और एक है जो कि नफरत फैलाए जा रहे हैं। और किसके ऊपर नफरत, जो कि आपको पैसे कमा के दे रही है उसकी बुराई कर रहे हैं आप। बेसिकली होता है ना कि किसी के दुखती रग पर हाथ रखना, किसी के फेलियर को सेलिब्रेट करना, मजा आता है इनको। मेरे ऊपर भी हुआ था, अभी भी हो रहा होगा शायद, हर जगह बूढ़ा हो गया, ऑफकोर्स 60 साल का हो गया यार।
5: We love you.
6: We love you, sir.
7: Always.
2: You cannot be maine pyar kiya all the bloody time.
4: Yes, sir.
2: In every show, this age has become suddenly, oh, buda ho gaya, ye ho gaya, wo ho gaya. What do you want to troll? And why do you want to troll somebody who ke pregnant hua? Pregnant hone ke baad everyone puts on weight. Jab wo picture mein wapas se aa jayengi, wo fit aa jayengi. She wants to spend time with the family. मुझे पता है कि कौन कौन मुझे ट्रोल करता है। अब हम रिएक्ट नहीं करते हैं, हमारे फैन क्लब्स इतने सारे हैं कि हमको पता है कि कौन कौन करता है। हमको ऐसा लगता है कि यार ये क्या फर्क पड़ता है यार, बोलने दो इनको। वो होता है ना कि अगर आप गाड़ी में जा रहे हो और एक कुत्ता आपको फॉलो करता है, आप गाड़ी स्टॉप करके उस कुत्ते को गली में तो फॉलो नहीं करोगे ना उसको मारने के लिए, तो यू टेक इट दैट ओनली। चलो they are making money by putting you down. Ab aise bhi heroes honge ya producers honge ya dusre log honge jo ke ye cheez encourage karte honge thode bahut paise dekar aur phir log corruption ki baat karte hain. Aap khud corrupt ho paison ke liye, aap 5 star doge, 4 star doge, 3 star doge. So that is also a huge corruption na. To where are you in any position or place to talk about ethics, morals or corruption? And then on the other hand, there are lots of people that do such good work on social media. Main dekhta hoon kabhi kabhi, to itna acha lagta hai. And then your trollers hain. Ab industry wale bolte nahi hai, some don't want to comment on the political aspect of what is happening in the country. Nahi karna, hamari marzi, nahi hamari jankari nahi, humko, we don't want to get into this. And why should we get into this? ताकि एक जर्नलिस्ट पूछे और फिर आप चलाएं और आपके सोशल मीडिया, आपके टीवी के ऊपर आपको टीआरपी मिले. डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट. दैट इज योर जॉब. यू गो एंड फाइंड आउट व्हाट द ऑनेस्ट ट्रूथ इज एंड यू कम एंड टेल अस. यू हैव टू इन्फॉर्म अस, यू हैव टू टेल अस. डोंट हैव टू ब्रिंग अस एंड टेक आवर ओपिनियन एंड आवर कॉमेंट्स. क्या चाहिए उनको? ट्रोल्स चाहिए. जस्ट इमेजिन एक दिन मैं अपने फैन क्लब को बोलूंगा कि ये 8, 10, 15, 20 लोग हैं जो के मेरे बारे में ये उनको सब पता है कि ये कहां पर रहते हैं, इनके सज्जन पिताजी कहां पर काम करते हैं, इनके माताजी कहां पर काम करती हैं, इनकी बहन कहां पर काम करती है, इनकी पत्नी कहां काम करती है और ये क्या करते हैं. करीबन 8-10 साल पहले एक लड़का जो था जो बहुत ही गंदी गंदी ऊपटांग चीजें लिख रहा था, तो मैंने उसका पता लगाया. साइबर सेल से मिल जाता है ये सब, भले ही आप किसी भी आइडेंटिटी पर हो. सीधा जाके उसके घर पे पहुंचे. मदर वॉज अ टीचर, द फादर वॉज अ प्रोफेसर, द सिस्टर वॉज गोइंग टू सम नाइस स्कूल. आई सेड ये मैं छाप दूं क्या? ये लड़का है जिसकी तस्वीर ये नहीं है, ये तस्वीर है, इसका नाम ये है और इसकी माता ये है, इसकी पिता ये है. करूं? नहीं नहीं मुझे माफ कर दो, नहीं नहीं मुझे माफ कर दो. बट इट्स वेरी इजिली डन. अब ये रुकेगा नहीं, तो ये तो होने वाला है कभी ना कभी, किधर भी हो. और ये अभी तक के इसके ऊपर लॉ नहीं है. ओटीटी पे लॉ आ गया है, सिनेमा में तो लॉ कब से था, या टीवी पर सेंसरशिप है, सोशल मीडिया पर भी आएगा. तो उस वक्त कहां बचकर भागेंगे ये लोग? और जो लोग जो लाइक सब्सक्राइब करते हैं ऐसे लोगों को मजे के लिए कि किसी और के बारे में बुराई सुनने के लिए, उनका क्या कैरेक्टर है और उनकी परवरिश का क्या? ऑल यू पीपल हियर, इसका शिकार हो चुके हो आप लोग.
4: Yes, sir.
2: कोई रिएक्ट करता है, कोई रिएक्ट नहीं करता है. अब माही, डू यू नो के नाउडेज इज अ न्यू ट्रेंड के गाड़ी में से निकलने के वक्त द कैमरा इज हियर. गाड़ी में बैठने वक्त द कैमरा इज हियर, ताकि एक उनको हिप शॉट मिल जाए, एक पेपराजी कि एक टांगों का शॉट मिल जाए, एंड देन वन बिहाइंड से जो एक शॉट लेते हैं, विच नन ऑफ द हीरोइंस, नन ऑफ द गर्ल्स लाइक. देयर मस्ट बी अ फ्यू, कुछ होंगी जो कि बोल हाँ ये ले लो, आई डोंट माइंड इट. बट उनका क्या जिनको ये अच्छा नहीं लगता है? अभी बीच में आई सॉ अभी सही वो बच्ची जिसने हमारे साथ दबंग की, महेश मांजेकर की बेटी, शी सो ऑकवर्ड विद दैट. आई जस्ट सॉ नेहा धूपिया, शी फाइट इन माई ओन नीस के चल रही और पीछे से ये शॉट लिया जा रहा है. क्यों भाई? और कैप्शन क्या आता है? पहचानो ये कौन है, गेस हु दिस इज.
0: Yeah, I've seen this.
2: वो कौन लोग हैं? एंड आई एम सेइंग दिस टू ऑल द गर्ल्स हु डोंट लाइक दिस. जहां ऐसा हुआ घूम के चमाट मारो. बोलना अपनी माँ बहनों का ये शॉट ले ले जा और हमको दिखा, सोशल मीडिया पे डाल, थाइस का शॉट ले ले. डिस्गस्टिंग पीपल. एंड ऑल द टाइम हर फंक्शन में हर जगह. इनको बनाया किसने यार? इनको प्रेस का कार्ड दिया है किसने? व्हाट इज द मेंटालिटी? सम पीपल आर देयर हु वांट टू डू इट, हु डोंट माइंड दिस एट ऑल. बट 90% of the girls that I know, and all the girls who have become mothers now, and they're married, they don't want, they've never wanted this earlier, and they don't want this now, even now. Aur ye karte rehte hain, bhai mota ho gaya, bhai ko troll, kar lo na troll, ye lo.
5: कर लो टोली,
2: आ जाओ ये सब निकाल ले रहा निकालो चलो ये ले आए, आओ भाई तुमको टोली का मटेरियल दे देता हूं मैं, कम कम जावेद ये लो ये पकड़ो ये
6: सो गुड
2: ये ना कोई सिक्स पैक आ जाओ निकाल लो ये
7: Respect, lot of respect, Bhaijaan.
8: Insane.
9: Guys, 3, 2, 1.
10: That's so amazing.
9: We love you, sir.
6: Love you, sir. Love you.
7: Love you, sir.
11: See this?
12: Yeah. Yeah.
2: कमाल. पहले अपने आप को देखो भाई. ये जो आप लोग जो कमेंट करते हो ना, किसके ऊपर, किसी के ऊपर जो भी करते हो, पहले अपनी शक्ल देख लो, अपना जिस्म देख लो, उसके बाद करना ये. अपने माँ बाप को देख लो पहले, उनकी सेहत देख लो, उसके बाद करना. समझे? एक समझ में आता है यार के भाई यू लॉस्ट वेट और यू पुट ऑन वेट भाई, वे आर वरीड, वो समझ आता है. लेकिन मजाक उड़ाना सोयल के ऊपर, वरुण के ऊपर, हर एक इंडस्ट्री के ऊपर,

0: बक सकते गाली।
1: और ये ट्रोलर्स को लगता है कि यार तुम कुछ भी कर हम डर जाएंगे, जिस दिन हम उतर आए ना भगते फिरोगे तुम, टकला हो गया है, पिक्चर का लुक है। एंड द रियल रीजन इज कि अ फ्रेंड ऑफ माइन पास्ड अवे सम टू मंथ्स अगो, ट्रांसप्लांट करा रहा है। इट डजंट मेक अ डिफरेंस टू मी, बट कितने लोग डिप्रेशन में जाते हैं, मेरी बुराई करो मैं तुमको रॉन्ग प्रूफ करूंगा, मेरी तारीफ करो मैं ऐसा करूंगा कि तुम जाके नेक्स्ट टाइम और तारीफ करो। दैट इज माय पर्सनालिटी। हर एक की पर्सनालिटी, बैठो यार, हर एक की पर्सनालिटी डिफरेंट है। मैं बुराई से भी निकाल लेता हूं अपने बेनिफिट के लिए और अच्छाई से भी निकाल लेता हूं। बट इतने सारे लोग हैं जब उनके बारे में बुरा लिखते हैं विच इज नॉट ट्रू, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। कितने सारे सुसाइड्स हुए यार, ट्रोल ट्रोल ट्रोल कुछ भी यार, मतलब एंड द लैंग्वेज दैट दे यूज, उनकी परवरिश पता चलती है कि ये कौन है। उनके तो मुंह भी नहीं लगना चाहिए, वो तो कभी कभी ऐसा लगता कि ये हमारे लोग हैं भी या नहीं, ये इंसान भी है या नहीं। पैरासाइट्स, और ये तबका बहुत छोटा है। एंड वी नीड टू वाइप दिस आउट। नहीं देखना आपको पिक्चर, मत देखो। ये नया आया है कि हमारे वजह से तुम बने हो, ये बने हो। हम फैंस को रिस्पेक्ट देते हैं, इसका मतलब कि ये तुम ऐसा करो हमारे साथ। टिकट खरीदी आपने पिक्चर देखने के लिए, हमें थोड़ी खरीदा आपने यार। वी गिव इट आवर बेस्ट सो दैट आपको पिक्चर में मजा आए। एंड दिस इज फॉर ऑल ऑफ यू गाइस, व्हेन यू कम आउट ऑफ द हाउस, यू आर सलमान खान सो यू कैन से एनीथिंग। नो एथिक्स, नो मॉरल्स, नो प्रिंसिपल्स, नो स्क्रूपल्स। This has come to me because मैं तो ये शो देखता हूं ना, हमारे यहां पर 108 कैमरा है, एक कैमरा मैन ने कभी ऐसा शॉट नहीं दिया है। एंड यू पीपल आर इन कॉम्प्रोमाइजिंग पोजिशन ऑल द टाइम, बाथरूम में, इधर उधर। दिस इज आर थिंग दैट वी विल नेवर पुट अ वुमन डाउन, कि वी विल नेवर शो समथिंग लाइक दिस। दिस इज वेयर द थॉट इज कम फ्रॉम। बोलते ना कि बड़ा ही कॉन्ट्रोवर्शियल शो है, बड़ा ही मतलब अग्रेसिव शो है, चैलेंजिंग शो है, लॉट्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स एंड लॉट्स ऑफ गाली, बट दिस डज नॉट हैपन। हाउ मेनी पीपल गेटिंग सैड एंड डिप्रेस्ड एंड दे डोंट नो हाउ टू कम आउट, ट्राइंग टू लूज वेट। मतलब हु आर यू टू पास कमेंट्स ऑन दिस एंड मेक मनी आउट ऑफ देम? शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को यार। एंड आई एम सो हैप्पी फॉर द गाइज, आजकल ऐसे बहुत सारे आ गए हैं जो के ये जब ऐसे कोई हरकत होती है ना तो उनको ना उनके हैंडल पर बजाते हैं। एंड आई सल्यूट दोज गाइस, सल्यूट दोज गाइस। चलो, दिस गाइस हैव गॉट इनफ मटेरियल टू फ्लोर मी नाउ। और यहां पर जो चल रहा है, बदतमीज चल रहा है यहां पर, वो है हमारे भाई साइड में, गजब बेइज्जती, आसिफ एपिटोम ऑफ बदतमीजी। ये घर पे भी ऐसे हो क्या?
2: नहीं सर।
0: कौन कौन है घर पे?
2: अम्मी है सर, सिस्टर है, दो भाई हैं, बहन है।
0: घर पे तो मुझे गारंटी है कि अम्मी और बहनों के सामने ये साइड तो नहीं दिखता होगा।
2: नहीं सर।
0: तो फिर अम्मी और बहनें ये शो नहीं देख रही हैं?
2: देख रही हैं सर।
0: हाँ, और ये जो आपका अग्रेशन है जो चार्ज करते हो, वो देख लेना भाई कि खुद गिर ना जाओ तुम, क्योंकि मुझे तुम में ऐसी कोई क्वालिटी नहीं दिखती है कि सामने वाला भिड़ गया तो तुम उसके ऊपर हावी हो जाओगे। ना तुमने कोई मार्शल आर्ट्स किया होगा, ना तुम में लड़ने का एक कोई स्किल होगा। और ये तो घर है, यहाँ पे अलाउड भी नहीं है, और कोई ना कोई बीच में आ जाता है रोकने के लिए। अगली बार छोड़ देना भाई इसको, इतना अच्छा मौका मिला है यार आसिफ। और ये क्या चक्कर है कि बिग बॉस बायस्ड है, कि जब भी कोई गलती होती है तो आप चारों ये कहते हैं कि बिग बॉस बायस्ड है। नॉमिनेशन ये बताओ कौन डिस्कस कर रहा था? और ये हमेशा से रूल यहाँ का ही नहीं, जब ये बाहर बिग ब्रदर में भी ये है कि नोबडी कैन डिस्कस नॉमिनेशन। बिग बॉस ने जब वो क्लिपिंग दिखाई नॉमिनेशन डिस्कशन की, उसके बाद वो जो क्लासिक केस है ना, वो एक तो चोरी, उसके ऊपर से सीना चोरी। यार गलती कबूल करने में मतलब कि प्रॉब्लम क्या है यार? ये हेकड़ी कहां से आती है? और जब खुद को पता है कि यार ये गलत है, उसके बावजूद उसको चैलेंज करना, कि दुनिया बेवकूफ है क्या? और उसके ऊपर से ये कहना कि दूसरों ने भी किया होगा, लेकिन

0: दिखाया नहीं है, बुलशिट है यार ये. जितना भी होता है ना यहाँ पर 9 बजे से 10-10:30 बजे तक वो डेढ़ घंटा दिखता है, लेकिन 24/7 भी चलता है ये, समझे आप. कोई एडिट नहीं होता उसमें, 2 मिनट का एडिट होता है कि अगर आप लोगों ने गाली वाली बकी है, कुछ ऐसी बातें की हैं जो कि आप ही लोग गंदे लगोगे, वो ही काटते हैं. अमरपाली
1: जी,
0: लव, उदिति एंड अमन
2: सर,
0: आप लोग इस ग्रुप को थैंक यू बोलिए, क्योंकि रेगुलर नॉमिनेशन के हिसाब से आप चारों नॉमिनेट हुए थे, लेकिन इन चारों की हरकत की वजह से आप चारों बच गए. एंड आसिफ, फॉर योर इंफॉर्मेशन, बिग बॉस के डीएनए रिपोर्ट्स आए हैं और रिजल्ट ये है कि बिग बॉस किसी के सगे नहीं है. इसका मतलब ये है कि आप सब उनकी नजर में और मेरी नजर में एक है. एज अ टीम ये शो सक्सेस होगा आप लोगों के वजह से, इसका फायदा होगा आप लोगों को. और आप लोगों का सिलेक्ट होना, कौन कौन से फील्ड्स आए, वो तो जस्टिफाई तो होना चाहिए ना यार. आप कहते हो कि हम दिन रात कंटेंट देते हो, तो अगर आपके कहने के मुताबिक आप बहुत सारा कंटेंट दे रहे हैं, आप क्या गर्दन दे दें. आपने ये बोला था. यस, मुझे बताओ कि यार ये कलर्स वाले, एंडमोल वाले, हाँ जियो हॉटस्टार वाले, यार ये खुद अपने दुश्मन है कि ये इनको अपनी खुद की टीआरपी नीचे लेके आनी है. कंटेंट जो अच्छा वो दिखाएंगे नहीं. आपको पता है ना कि हमेशा इस शो से जो निकला है उसको कलर्स में काम मिला है. जियो हॉटस्टार ने दिया है काम, एंडमोल ने दिया है काम, बानी जे ने दिया है काम, तो वो तो सबको दिखाएंगे ना यार, क्योंकि हर टाइप का काम है यहाँ पर. चलो एक रीजन बता दो क्यों हम आपके अगेंस्ट बायस होंगे.
3: फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं जो भी चीज बाहर खराब लगी वो मैं माफी मांगता हूँ उस चीज के लिए. मैं सीरियसली दिल से माफी मांगता हूँ. और दूसरी चीज ये कि मैं पहली बार सर इस तरीके का कुछ भी चीज कर रहा हूँ, मुझे बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है चीजों का.
0: अरे लेकिन खुद की पर्सनालिटी का तो आइडिया है ना.
3: जी जी सर,
0: उसी बदतमीजी का तो आइडिया है ना.
3: जी जी,
0: मम्मी ने सिखाया बचपन से कि बेटा ये बदतमीजी है, ऐसा मत करो, ये नहीं करो, वो नहीं करो, ये भाषा मत बोलो, ये बोली मत बोलो,
3: सर
0: ये क्या कहेंगे तुम, सॉरी बोलो, है ना.
3: सर मैंने जब पहली बार जब मैं बाहर जब टास्क के टाइम पे जब मेरे और काजी भाई के बीच में जब अग्रेशन हुआ, काजी भाई ने सबसे पहले थोड़ा अग्रेशन शुरू किया था. उस अग्रेशन को देखते हुए और वो जो लोग मेरे को सपोर्ट कर रहे थे वो उनके साथ भी थोड़ा बदतमीजी कर रहे थे, उसके जवाब में मेरे से थोड़ा ज्यादा हो गया और जो मैंने बुरे अल्फाज कहे, मैंने टास्क खत्म होते फौरन जाके उनसे माफी मांगी.
0: ये जो फीडबैक है ना ये मुझे आया है
3: जी.
0: ये जो लोग देख रहे हैं वो लोग बोल रहे हैं, जो मुझे मैसेज करके बोल रहे हैं कि ये कौन है आसिफ, इतना बदतमीज क्यों हो जा रहा है. तो इसीलिए मैंने आपको ये बोला है कि इसे कंट्रोल करो.
3: एक और दूसरी भी जब चीज हुई थी सर, कल परसों की बात, हम लोग अंदर थे तो मैंने बहुत ही नॉर्मली मेरा सेंटेंस, आप किसी से भी पूछ सकते हैं घर में, कभी भी मेरा जो पहला सेंटेंस होता है वो भाई आप ये कर लीजिए, कर लो भी नहीं बोलता हूँ सर मैं. अगर लोगों को बदतमीजी लग रही है तो मैं माफी मांगता हूँ दिल से. अब सामने वाला बंदा अगर आंख बड़ी कर करके मेरे ऊपर चढ़ रहा है तो अपने बचाओ में क्या मुझे करना चाहिए, मुझे समझ में नहीं आता.
0: वो आपका जद्दोजहद है, वो आपका स्ट्रगल है, वो आप डिसाइड करो कि मुझे क्या करना है ऐसे सिचुएशन में. आपने काफी जिंदगी देखी है, काफी हार्डशिप्स देखे होंगे और आपसे एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि वो जैसे मैं बोल रहा था ना कि ये ट्रोलर वोलर, वो सेम आप भी कर रहे हो कि इसकी बॉडी इंजेक्शन से बनी है
3: सर, उन्होंने
0: इसका जूनियर आर्टिस्ट का कार्ड बनवा दो, वो जो भी बोले. आप क्यों बोल रहे हो यार. अमन
2: सर,
0: आप भी कोई दूध के धुले हुए नहीं हो भाई.
2: अग्रीड सर.
0: आप काफी कुछ बोल जाते हो और फिर ये अच्छी बात है कि आप दोनों में कि आप बाद में रियलाइज भी कर जाते हो, लेकिन हीट ऑफ द मोमेंट में आप बहुत सारी कुछ गलत बातें कर जाते हो.
2: आई नो सर, होता है.
0: ओके, शायरी और पोएट्री तो करोगे नहीं आप. हाँ वो तो निकल जाती हैं कुछ चीजें और अग्रेशन में, लेकिन नहीं निकलनी चाहिए. अगर निकल गई है तो उस बात का एहसास होना चाहिए और झट से माफी मांग लेना चाहिए. टास्क के दौरान जो भी हुआ
1: जी
0: उसके रेफरेंस में मैं आपको कुछ बोलना चाहूंगा
1: जी.
0: आपके पॉइंट्स ना यूजुअली आर वेरी वैलिड, सेंस बात करती हो आपके और माई के इतने आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं समझ में आ गया है लोगों को कि आप दोनों की नहीं बनती और देव अंडरस्टूड के क्या प्रॉब्लम है. दूसरे मैटर्स में भी अक्सर लोग आपके पॉइंट ऑफ व्यू का वेट करते हैं क्योंकि आप इस घर की एक मैच्योर सदस्य मानी जाती हो
1: जी.
0: और मैच्योर का मतलब बुजुर्ग नहीं, मैच्योरिटी एक छोटी सी एज में भी आती है और बड़ी सी एज में भी कभी नहीं आती. मैच्योरिटी का एज से कोई ताल्लुक नहीं है
1: जी.
0: आप सेंसिबल होके क्लैरिटी के साथ आप समझाती हो बट इस मामले में आप जरा सा भटक गई क्योंकि अरिशवा के साथ आपका कुछ पुराना हिसाब बाकी है. इस वजह से आपने सिचुएशन को समझने की जरूरत नहीं समझी, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा.
1: सर मैंने अपने हिसाब से जो एक बात बोली थी जो मुझे लगता है कि मिस इंटरप्रेट शायद हो सकती है, जब लड़के बाहर आए थे मैं उस सफेद कमरे के अंदर थी नहीं, आई कुड जस्ट हियर वॉइसेस और सबकी आवाज बराबर सुनाई दे रही थी, सिर्फ स्काउट की नहीं सुनाई दे रही थी, हर किसी की आवाज इक्वली बाहर आ रही थी. तो मुझे लग रहा था कि दोनों तरफ से लोग एक दूसरे को इंस्टिगेट कर रहे होंगे. बाहर आने के बाद जब पूरी तरह बात इस पर पलट गई कि मुझे नचनिया बोला, मुझे नचनिया बोला, मेरे प्रोफेशन पर गए, तो मैंने अपनी तरफ से यंग को स्काउट को दोनों को यही चीज बोली, स्टिक टू द वॉयलेंस पार्ट, कि तुम्हारे साथ भी वॉयलेंस हुआ है, तुम्हारी आंख में भी गई है चीजें, इस पे स्टिक करो, वो इंस्टिगेट कर रही है तो और बोलो मत, स्टिक टू दिस पार्ट.
0: यू नो अनुपाली प्रॉब्लम क्या है, ये जो आपने फ्यूचर प्रिडिक्ट किया है ना कि अरिशवा विल प्ले द वुमन कार्ड, इस नतीजे पर आप कैसे पहुंच गई?
1: सर मुझे लगता है जब स्काउट ने बोला ही नहीं है नचनिया वर्ड, और वो बहुत बड़ा शब्द है सर, एटलीस्ट मैं जिन स्टेट,
0: मतलब डांसर या
1: नहीं, नहीं मैं जिन स्टेट से आती हूँ सर, वहाँ पे इट हैज अ वेरी टिपिकल मीनिंग.
0: यस आई नो वो कॉनोटेशन चेंज कर दिया गया है. शोले का डायलॉग है अब बड़ी करारी नचनिया है.
1: Exactly.
0: अब वो उसको लोगों ने, हर प्रोफेशन, साला डॉक्टर है, साला पुलिस वाला है, साला लॉयर है, हर प्रोफेशन को ये गाली बकते हैं ये इस कसम के लोग.
1: एग्जैक्टली सर. और मैं जेन्युइनली बोलती हूँ, कुछ लोग तो हम एक्टर्स को भी उसी तरह कैटेगराइज करते हैं.
0: Exactly.
1: हम लोग उससे गो थ्रू करते हैं.
0: अब जैसे आइटम गर्ल
1: जी. जी लेकिन सर हमको ऐसा कोई बोलता है हमें जरूर बुरा लगता है, बट जब सामने वाला बोल रहा है कि मैंने ये नहीं बोला है, उसके बाद भी लगातार यही उसके बोला जा रहा है कि नहीं आपने यही बोला है, तो मैंने बोला कि यार अब वो वुमन कार्ड खेलेगी, अपना काम मत लूज करो.
0: ये आपने नचनिया सुन कहां से लिया था?
1: बाहर आके बोला गया था कि नचनिया बोला जा रहा है, नचनिया बोला जा रहा
0: है. किसने कहा?
1: सब लोग बोल रहे थे. अरिशवा कह रही थी कि मुझे नचनिया बोला है अंदर स्काउट ने.
4: बात एक्ट्रेस अदा खान की, जिनके साथ सास बहू और बेटियां की टीम ने की एक खास मुलाकात और जाना उनकी जिंदगी से जुड़ी अनजानी बातों के बारे में, और साथ ही उनकी नागिन जर्नी पर भी की खुलकर बात. देखते हैं कैसा रहा अदा संग हमारा ये स्पेशल पॉडकास्ट.
5: लेट्स टॉक विद अमित त्यागी एंड आई एम अमित त्यागी एंड आज मेरी मेहमान है एक मेरी बहुत अच्छी दोस्त एंड आई थिंक मैं पिछले 18 सालों से इनको जानता हूँ और इनकी अदाओं का कोई डेफिनेशन नहीं, बिकॉज़ शी इज रियली ब्यूटीफुल ऑन द प्रीवियस्ट फेस ऑफ टेलीविजन एंड नाउ OTT. पर मेरे साथ हैं अदा खान.
6: Hi.
5: टेलीविजन. Hi, how are you doing?
6: I'm so happy to be being interviewed by you. Seriously, after a very long time.
5: Yes, it's really long time. और अदा को जैसे मैंने कहा कि I think 18-19 साल से जानता हूँ, कि almost first show से, and I've seen her journey. And now ये हम 2026 में अदा is making a new taking a new plunge in the world of OTT with a new show live, जिसके लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं. तो अदा पहले बताओ, ये बताओ इतने दिन कहाँ थी आप?
6: Well, कुछ ना कुछ कर ही रही थी या तो घूम रही थी, बट यू नो जब एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है and I grab it with both hands and I think lift was that for me.
5: टेलीविजन से जब आपने शुरुआत की थी, योर फर्स्ट शो वाज पालनपुर एक्सप्रेस.
7: पावनी, पता है कल सपने में मैंने एक चेहरा देखा
6: जी.
5: एक बहुत ही अनोखा शो था एंड दैट स्टार्टेड द बॉल रोलिंग एंड आज हम अदा को देख रहे हैं. बट हाउ स्पेशल इज द फर्स्ट शो, स्पेशली शो लाइक पालनपुर एक्सप्रेस, व्हिच वाज वेरी डिफरेंट, वेरी ओटीटी काइंड ऑफ शो उस जमाने में. आई थिंक 2007 या 2008 की बात है. 2009 में, उस जमाने में ऐसे शो टिपिकल सास बहू का दुनिया थी उस वक्त. उसके बीच में एक अलग सा शो आया, बहुत ही अलग आपका रोल था, और मेरी एक और दोस्त उसमें पूजा कंवल भी थी, और बहनों का रोल था बेस्ट फ्रेंड्स, एंड इट वाज अबाउट स्पोर्ट्स. तो स्पोर्ट्स के ऊपर एक शो से शुरुआत की आपने पालन पोषण में, तो स्पेशली जो फर्स्ट शो.
7: मुझे इसलिए पता है सरजू, क्योंकि बुआ जी ने आधे पालमपुर को फोन करके पावनी के किस्से सुना दिए.
6: यार फर्स्ट शो हमेशा बहुत ज्यादा स्पेशल होता है. आई थिंक वो एक शो था जो मैं जब कमर्शियल्स कर रही थी उसके दौरान मुझे ये शो मिला था, और मेरे लिए बहुत स्पेशल था बिकॉज मुझे एक्टिंग बिल्कुल नहीं आती थी, यू नो. तो जो मैंने वहां सीखा है, डांट खा के सीखा है, कैमरा एंगल्स नहीं पता थे बिकॉज आई नेवर हैड कहते ना वो प्रॉपर
5: ट्रेनिंग,
6: तो एक्टिंग ट्रेनिंग या कुछ. वहां से मैंने काफी कुछ सीखा. डायरेक्टर मुझे सिखाते थे, असिस्टेंट डायरेक्टर सिखाते थे कि ओएस क्या होता है, कैमरा एंगल, सो मेक मी सिट नेक्स्ट टू द मॉनिटर एंड सी, तभी आप समझोगे. सो उस शो से
5: सीखा
6: मैंने, इवन इन बैने.
5: यस नेक्स्ट शो. यस
6: आई थिंक हर शो में जो मैंने किया, यू नो एवरी डे आई लर्न न्यू थिंग फ्रॉम एवरी शो. तो बहुत कुछ सीखने को मिला, बीट अमृत मंथन, बीट बहने, बीट नागिन, सितारा, पिया बसंती. आई थिंक हर डायरेक्टर, हर डीओपी, हर किसी से, हर एक्टर से मैंने कुछ नया सीखा है, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट आई लव अबाउट एक्टिंग.
5: मैंने इतने साल से टेलीविजन किया है, मुझे अच्छी बात टेलीविजन की ये लगती है कि एक्टर्स वो आपके सच में दोस्त बन जाते हैं. तो मैंने एक बात अदा जो मैंने नोटिस की आपकी, बहुत खूबसूरत बात है कि जनरली जो क्या होता है जब एक सीरियल में कई सारे कलाकार होते हैं तो आपस में क्या होता है एक दिमाग रिश्ते बनाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन यू हैव बीन फ्यू एक्ट्रेसेस जिन्होंने मल्टीपल लोगों के साथ काम किया, अच्छा रिश्ता बना के रखा. आई थिंक इट्स अ वेरी टाइट रोप टू वॉक. मेरी लाइट तो नहीं ले रहे, आपस में पर्सनल इश्यूज हो जाते हैं, प्रोफेशनल इश्यू आते हैं, लेकिन मैंने देखा फ्रॉम द फर्स्ट शो टू लास्ट आपने सबके साथ मिलजुल के काम किया. नाउ इट्स अ वेरी अगेन आई से टाइट रोप टू वॉक, बिकॉज आपको अपना भी ध्यान रखना है कि हम भी दिखे, हमारा भी स्टैंड रहे. लेकिन तो कैसे मैनेज किया, बिकॉज एक बहुत ही एक अलग ट्रेट मैंने आपका देखा है. आई थिंक आपने मल्टीपल शोज में मल्टीपल एक्ट्रेसेस से काम किया लेकिन अपना इम्पैक्ट भी छोड़ा, तो वो कितना मुश्किल होता है सब में.
6: मेरी मॉम ने मुझे ये सिखाया हमेशा से कि यू नो चाहे कितने भी लोग तुम्हारे साथ काम कर रहे हैं, यू नो जस्ट वर्क एज अ फैमिली, वर्क एज अ टीम, नेवर लेट इनसिक्योरिटी कम इन यू. चाहे एक्ट्रेस हमारे साथ है जो कितनी भी खूबसूरत, बट नेवर फॉरगेट योर ओन ब्यूटी, यू नो यू आर एन इंडिविजुअल बाय योरसेल्फ, सो वर्क विद दैट लव. सो आई थिंक जब भी मैं कोई सेट पे जाती हूँ या जब भी मैं काम करती हूँ, इवन इन फॉर दैट मैटर इन दिस इन द लिफ्ट दैट वी डिड दिस टाइम, इट वाज विद ऑल दैट लव एंड पैशन कि मुझे काम करना है. एंड एवरीबडी दे ऑल वांट टू वर्क एंड दे ऑल वांट टू बी, एंड आई थिंक जब वो एक लव, एक पैशन एक साथ पे जुड़ जाता है ना, तो वो अपने आप ही चलने लगता है, यू नो. इवन इन नागिन आई थिंक मी, अर्जुन एंड मौनी, आई थिंक वी बॉन्डेड रियली वेल.
5: यस यस आई थिंक ऐसा रिश्ता मुझे नागिन कितने सीजन आ गए, लेकिन दैट्स द ओजी सीजन आई कॉल इट.
6: यार एंड सुधा जी, यू नो वी ऑल जस्ट बॉन्डेड एंड वी वर लाइक ऑल हैड दैट लव फॉर वर्क एंड दैट पैशन, क्या होगा क्या करेंगे, चलो अच्छा करना है. सो आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आज तक माशाल्लाह यू नो अ बॉन्ड इज स्टिल देयर, वी ऑल आर स्टिल इन टच. मेरे सारे शोज के एक्टर्स के साथ, यू नो इवन अमृत मंथन एक्टर्स, मेरा वसीम, वी ऑल आर स्टिल फ्रेंड्स. सो आई थिंक दिस होल जर्नी अबाउट एक्टिंग इज नॉट ओनली अबाउट योर वर्क बट ऑल्सो आई थिंक कि आपने कितने रिश्ते बनाए. चाहे आप मेरे बेस्ट फ्रेंड ना बने हो बट कहीं ना कहीं हम जुड़े हुए हैं दिल से.
5: वो एक गुडविल इंसान कमाता है, आई थिंक वो बहुत अच्छी बात.
6: यस यस थैंक यू.
5: अदा आपका बहुत स्वीट फेस है, बिल्कुल एक यू नो एक खूबसूरत हीरोइन वाला चांद जैसा मुकर है. लेकिन जब भी आप नेगेटिव प्ले करते हो इट्स लकी फॉर यू, ऑलवेज वर्क फॉर यू. स्टार्टेड विद अमृत पंथन, यू प्लेड अ ग्रे कैरेक्टर, आई वोंट कॉल इट नेगेटिव, इट्स कॉल्ड ग्रे व्हिच इज अलाउड इन दीस डेज, एंड देन ऑफ कोर्स नागिन, यू वर अ ग्रे नागिन.
6: Yes.
5: So I know having a sweet face, very, you know, very homely face and still negative work. So isn't like a very paradoxical situation, but it works in your favor.
7: Yehi hamara rishta. Yehi hamara pyar.
6: I don't know why. How? I think आई थिंक यू नो जो आप पॉजिटिव करते हो ना उससे कहीं ज्यादा मेहनत आपको नेगेटिव कैरेक्टर में लगती है बिकॉज उसमें ज्यादा एनर्जी होती है. यू हैव टू कन्विंस पीपल व्हाई यू आर डूइंग इट.
8: इंतकाम अब शुरू हो चुका है.
6: मेरे लिए कोई नेगेटिव कैरेक्टर जो मैं करती हूँ आई डोंट से अ यस जस्ट बिकॉज इट्स अ नेगेटिव वैम. No, मैं सबसे पहले उसकी बैक स्टोरी जानना चाहती हूँ कि why is this person bad? And I want to convince the audience कि मैं इसलिए बुरी हूँ. ये मेरा मुद्दा है. Which is why I think लोग शेषा से भी कनेक्ट हुए थे बिकॉज मैंने मुझे पता है इसके पीछे इमोशन क्या है. Why will the people connect?
7: अब नागमनी और रतिक यही मेरी जिंदगी का मकसद है.
6: अगर मैं सिर्फ ऐसे ही तुम्हारे पानी में जहर डाल दू why I just want to be a bad person? So I think for me, it's a very big challenge when I'm doing negative. And I think usme main kehte na bahut zyada ghus jati hu phir ki bahut zyada bura nahi lagna chahiye. There should be somewhere convincing. So isliye I think maybe people kind of like it and they enjoy it. And yeah, mujhe bhi karne mein maza aata hai bahut.
9: अभी जैसे आजकल वेब सीरीज का जमाना है, सब रियलिज्म का जमाना है, फिल्में हो, ओटीटी हो, इवन सीरियल भी बहुत रियलिस्टिक हो गए. मतलब बीइंग रियल, नो मेकअप मेकअप लुक, ओवर द टॉप नहीं जाना है. तो ये जो नया जो नॉर्मल आ गया, जो एक जमाने में इतना नॉर्मल नहीं था जब आपने शूट किया होगा. नाउ आई थिंक लिफ्ट में यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस वेरी बिकॉज़ इट्स मेड बाय अ वेरी यंग टीम ऑफ डायरेक्टर्स कट.
10: जॉब चेंज करना इतना आसान नहीं होता. ऑलराइट, पर तुम्हें कैसे पता होगा? लाइफ में एक दिन भी काम किया है तुमने?
9: तो अमृत मंथन के डायरेक्टर्स कट और लिफ्ट के डायरेक्टर्स कट जो सेम टीम है, जनरेशन बदल गई है. हाउ डिफरेंट वाज इट वर्किंग? फेल्ट एनी डिफरेंट?
10: माय गॉड, लोग कितने मतलबी होते हैं ना. किसी और की तकलीफ उन्हें दिखाई नहीं देती.
6: आई थिंक अमित, मैंने भीम एंड गुलशन के साथ फर्स्ट टाइम काम किया है एंड गुलशन was assisting Neeraj sir. He was also
9: chhota bachcha,
6: chhote the tab, and Neeraj sir was directing Amrit Manthan. He was a DOP as well. He was a DOP as well. And so tab maine dekha tha aur ab maine dekha hai. I was like, really? Matlab unhone jo magic kiya na, unhone the camera angles, so one shots le rahe hain. Hamara even promo was one shot. मतलब तुम, मैं सोचती भी नहीं थी ये कैसा शॉट है. यू नो हाउ व्हाट हाउ यू गोना डू इट. सो एवरी डे फॉर मी वाज अ न्यू एक्सपीरियंस, न्यू चैलेंज, कुछ नया करवाते थे. और हम चारों यही सोचते थे आज क्या नया करने वाले ये वन शॉट में. हमें कैमरास भी पहनाए गए थे. एवरी एक्टर, वी वर गिवन अ हेलमेट, कैमरा वाज राइट ऑन आवर फेस, लाइक डिफरेंट थिंग्स एवरी डे. तो बहुत कुछ चेंज हुआ है अमित. इट्स नॉट what we used to do, ke wide angle and close ups and wo sab kuch abhi bahut change ho gaya hai. It's a very different,
9: even the makeup world, and matlab bahut change hua hai.
6: Makeup has changed, even the way you act it is changed. So bahut kuch change hua hai Amit in these so many years.
9: Hamesha jo bhi television mein kaam karta hai एक सपना रहता है कि भैया बॉलीवुड में जाना है. और अब तो कई टेलीविजन निकल के लोग सक्सेसफुल हो गए हैं. बॉनी रॉय उसका क्लासिक एग्जांपल है, विक्रांत मैसी हुई, यामी गौतम हुई, जो आज टेलीविजन से बहुत आगे निकल चुके हैं. दे हैव बिकम स्टार्स इन देयर ओन राइट. तो ये क्या लगता है, वो जो डिमार्केशन था बॉलीवुड और टीवी का वो खत्म हो चुका है और आपने कभी नहीं सोचा कि बॉलीवुड फिल्म करो? एक सपना रहता है हमेशा.
6: बेसिकली अमित क्या है ना, आई एम नॉट द पर्सन, आई थिंक यू नो मी दैट वे, कि मैं एक रैट रेस का हिस्सा बनूं और जहाँ सब जा रहे हैं, इधर उधर जा रहे तो मैं उधर जाऊँ, वो उधर जा रहे तो मैं उधर जाऊँ, वो उधर जा रहे तो मैं वहां जाऊँ. आई एम नॉट दैट पर्सन हु जस्ट वांट्स टू कीप ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके नो. आई थिंक आई जस्ट लाइक टू फॉलो माय ओन जर्नी.
9: यस,
6: आई लाइक टू सी मैं कहां जा. आई लाइक टू कीप दैट इंटरेस्ट.
9: बॉलीवुड के ऑफर आए होंगे, आई एम श्योर यू आर अ परफेक्ट बॉलीवुड फेस, जो एक सुंदर हीरोइन होनी चाहिए. यू हैड दैट ऑल द क्वालिटीज.
6: इंशाल्लाह जब होगा तो होगा यार. आई मीन व्हेन इट हैज टू हैपन इट विल हैपन एंड इट विल हैपन ब्यूटीफुली इंशाल्लाह. बट फिलहाल जो भी मुझे अच्छे जो ऑफर्स आते हैं एंड समथिंग दैट आई रियली एंजॉय डूइंग, आई ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी एंड आई डू इट. या
9: रियलिटी शो की जो दुनिया आजकल बढ़ती जा रही है, किस्म किस्म के रियलिटी शो आ गए. कोई जेल में बंद कर रहा है, कोई घर में बंद कर रहा है, कोई प्यार मोहब्बत ढूंढ रहा है. मतलब हर तरह और किस्म के रियलिटी शोज आते जा रहे हैं. बट दादा, यू हैव बीन वेरी सेलेक्टिव विद द शो यू हैव डन नॉन फिक्शन. तो बहुत कम ही आपने शोज किए हैं.
6: To do.
9: I think Big Boss ka call aapko mujhe pichle 12 13 saal se to aa hi ja raha hu continuously.
6: I'm not yet ready for Big Boss yet. Inshallah jab hona hoga again hoga. But I really you know, there is a pressure on me to do reality show. Yes, definitely yes. So I'm thinking about it. But as an actor, you know, kahin na kahin mujhe acha lagta hai ek, you know, थोड़ी मिस्ट्री हो. आई डोंट नो, आई फील दैट.
9: डू यू थिंक सोशल मीडिया हैज टेकन अवे द मिस्ट्री ऑफ द एक्टर्स?
6: या एब्सोल्युटली.
9: डू यू सपोर्ट इट? आई मीन इट्स लाइक अ डबल एज स्वॉर्ड, इट कैन कट यू आल्सो, इट कैन.
6: इट्स नॉट अबाउट बीइंग सपोर्टिव और एनीथिंग, बट कहीं ना कहीं यस, द चार्म इज गॉन. अभी लोग भूल चुके हैं इन्फ्लुएंसर्स और एक्टर्स में फर्क क्या है.
9: वेरी ट्रूली सर.
6: बोथ ऑफ देम हैव इक्वल हार्ड वर्क. कंटेंट बनाने में पूरा टाइम इज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर. आई मीन मैं नहीं कर पाऊंगी इतना कंटेंट बनाना. साइमल्टेनियसली वर्किंग फॉर 12 14 18 आवर्स अ डे इज समथिंग दैट एक्टर्स डू एंड आई एंजॉय दैट. ओके, नाउ इफ यू टेल मी कीप मेकिंग कंटेंट, आई डोंट थिंक आई विल मेक दैट वेल. सो आई रिस्पेक्ट द इन्फ्लुएंसर्स व्हाट दे आर डूइंग, आई रिस्पेक्ट एक्टर्स व्हाट दे आर डूइंग, बट समहाउ आई फील दे शुड नॉट बी यू नो, people should not feel that they are same. So art is like ho gaya because of social media, they feel yeah, it's the same difference kya hai. So you understand, that is one thing that I'm not very happy about. Yeah,
9: अदा को मैं जब से जानता हूँ तो एक बहुत important इनकी life का phase था, इनकी मम्मी, और वो हमेशा she was very close to her. I think जाने के बाद एक void आ गया था, because I see and feel it. Because you're very very close to your mother always.
6: Yes, yes.
9: तो उनके जाने के बाद कैसे cope up किया? Because ये कहने वाली बात है, लेकिन जिसके ऊपर गुजरती है वो जानता है. तो मम्मी बहुत pillar थी आपकी, आज आप जहाँ हो उनकी वजह से थी.
6: I think you can never say cope up, because वो cope up कभी होता ही नहीं है. And that void is always there. चाहे आप कुछ भी कर लो, you still want that, you still, you know, miss the person, and you still want those advices where you don't know you will get it again from. So I don't think you can ever cope with that, or you can, anybody in this world can fill that void. It's just that aap jee rahe ho, bas jee lete ho phir.
9: Umeed karte hain ki abhi naya jo aa gaya hai Dada ka, your 2026 version, with me, I'm sure you're gonna stay, we're gonna see
6: Inshallah.
9: More of you.
6: Inshallah,
9: what do you have to share to the fans? We've always loved you, and since so many years,
6: thank you, the thank
9: characters.
6: What will you say to them? Well, one more show is coming on TV. I will tell you later. When it comes, but abhi ke liye, Inshallah, please, you all watch our show, The Lift. Dekhe. It's on Director's Cut Production YouTube channel. And Tuesday and Friday, 4 o'clock episodes aayenge. And I'm telling you, you're gonna love it. So please like and subscribe as well. And please in the comments tell us कि आपको क्या अच्छा लगा, और क्योंकि हम सब ने बहुत मेहनत की and all are very excited.
9: Thank you so much, Ada. And उम्मीद है कि आपकी अदाओं का जादू हमेशा चलता रहे. Medium is just a medium, but thank I you. Think the talent matters, and you are one talent to watch out for.
6: Thank you so much.
9: I'm sure नया ज़माना reality shows, she's a powerhouse.
4: Twist और turns से भरी होती है TV serials की दुनिया, जहां हर मोड पर एक नया ड्रामा दर्शकों को हैरान करता है. किस सीरियल में आया है कौन सा ट्विस्ट, देखना काफी मजेदार होगा. तो चलिए चलते हैं सीरियल्स की इस दिलचस्प दुनिया में.
11: स्टेपलेस के सीरियल अनुपमा में बहुत जल्द शाह हाउस में होगा पापा का आगमन. ऐसे में शुरू हो चुकी हैं तैयारियां, और तैयारियों के बीच अनुपमा को आ गई है अनुज की याद. देखिए कैसे इस चश्मे को देखकर वो अपने अनुज की आशिकी में खो गई है. लेकिन तभी ही होती है राही की एंट्री, जो आज अपनी मम्मी के साथ अपने दिल की बात को शेयर करने के लिए आई है.

0: मम्मी राही तू इतनी रात को सब ठीक है बेटा? हाँ
1: बेटी घर आए तो माँ को खुशी बाद में होती है लेकिन चिंता पहले।
0: जानी
1: सब पर चिंता करने की कोई बात नहीं है मम्मी। वो एक्चुअली आज अभी तक कैफे में कस्टमर्स थे। ट्रेन कैफे बंद कर रहा था तो मुझे लगा तब तक मैं आपसे आके एक बार मिल लूं।
2: अच्छा ये तो अच्छी बात है बेटा।
0: संभल के सर
2: कैफे में लोग बहुत सारे होने चाहिए, सुबह शाम भरा रहना चाहिए।
1: जी अंकल थैंक यू।
0: अच्छा सुन कल जल्दी आ जाएगी ना?
1: हाँ मम्मी बप्पा टाइम तो मेरा और पॉप्स का फेवरेट है, मैं कैसे नहीं आऊंगी।
0: हाँ और वहाँ सब ठीक है? क्या हुआ? वसुंधरा जी और मीता जी को परी और ईशु के साथ में काम करना पसंद?
1: बिल्कुल गवारा नहीं है मम्मी। मोटी भाई ने तो परी को फैसला ही सुना दिया है कि वो ईशु के साथ काम नहीं कर सकती है। और परी काम करने के लिए तरस रही है, ऊपर से मीता का की बुटीक में उसे कुछ भी नहीं करने देती, उसे कोई भी फैसला तक लेने नहीं देती है, सिर्फ उसके टैलेंट को यूज करती है। लेकिन अब देखना मम्मी इस बार ना परी लड़ जाएगी।
0: अरे लड़ाई झगड़े से बात बिगड़ती है, क्या फायदा? और सुन तू मेरी परी का साथ देना पर सिर्फ घर वालों को समझाने में। उन लोगों से कहने कि परी के लिए अपनी पहचान बनाना कितना जरूरी है।
1: हम बात करते हैं मम्मी लेकिन वहाँ सिर्फ बतंगड़ी बनता है और कुछ नहीं। और मोटी बाप को कोशिश नहीं, उन्हें बस नतीजा देख के जज करना होता है। और क्या कर सकती हूँ? और अनुज कैफे भी ठीक से प्रॉफिट नहीं कमा पा रहा है, अगर कैफे ऐसे ही चलता रहा तो फिर कैफे चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा।
2: लेकिन बेटा बिजनेस प्रॉफिटेबल होने में एस्टेब्लिश होने में वक्त लगता है।
1: यस अंकल आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड पर ऑलरेडी बहुत टाइम तो हो चुका है ना, और मोटिबा को रिजल्ट नहीं दिख रहा है तो क्या कर सकते हैं? पर उन्होंने कहा कि वो किसी इन्वेस्टर से मिलवाने वाली है, कोई बड़ी पार्टी है, यंग है, इंटेलिजेंट है, पता नहीं, मतलब वो अहमदाबाद में किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमारे बिजनेस को भी एक्सपेंड करने में वो हमारी हेल्प करेंगे।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है राही। अगर वसुंधरा जी ने प्रेम के लिए किसी से बात की है तो बहुत सोच समझ के बात की होगी।
2: आई एग्री। और बेटा वैसे भी ये तो गणपति का महीना है, ऐसे में तो सब लोग आप लोग सब ये मानते हैं कि जो भी होगा अच्छा होगा, तो ये शुरुआत अच्छी होगी।
0: यंग इन्वेस्टर नाम क्या बताया?
1: नाम कहाँ बताया, क्योंकि मोटी बाई ने अभी तक हमें भी नहीं बताया है। और आप तो पूछिए मत, वो कितना बिल्डअप दे रही थी, बाप रे। उन्होंने कहा कि कल जब वो आएंगे तो खुद ही मिल लेना। अब देखिए अच्छा है बुरा है गलत है सही है ये तो मिलके ही पता चलेगा ना।
0: सुनिए बेबी 2 मिनट वेट, मैं कुछ खिला के भेजती हूँ।
1: नहीं नहीं मम्मी मैं आप अब सुनिए ना, मैं चलती हूँ, वो प्रेम शायद वेट कर रहा होगा। आप बस इतनी प्रार्थना कीजिए कि कल हमारी मीटिंग अच्छी हो प्लीज।
0: सब अच्छा होगा, सब बेस्ट होगा।
1: ठीक है मैं चलती हूँ। ओके बाय बाय।
3: ऐसे में अब देखना होगा कि बप्पा के आने से अनुपमा की जिंदगी में खुशियाँ आएंगी या फिर नए ट्विस्ट की बहार।
0: आप तो सब जानते हैं, सब देखते हैं, आपने मेरी श्रद्धा भी देखी है और मेरा संघर्ष भी, पर मैं हार नहीं मानूंगी। हाँ बहुत जल्द आपको मेरे अपने घर बुलाऊंगी, गणपति बप्पा।
4: तेरे से एक जरूरी बात करनी है अन्नू।
0: बताइए ना क्या बात है।
4: पहले प्रॉमिस कर तुम मना नहीं करेगी।
5: हम जो मांगेंगे वो तुम दोगी।
4: हाँ
3: सराब स्टार प्लस की सीरियल सैराब में मैं आज नोएनिका और ईशान की सुहाग रात है, और जरा देखिए तो कैसे मैं दोनों का ही दिखा रोमांटिक अंदाज।

0: और देखिए कैसे भाई आज पहली बार खुलकर दोनों ने एक दूसरे से किया अपने प्यार का इजहार।
1: बहुत प्यार करता हूँ तुमसे नेहा का।
2: मैं भी बहुत प्यार करती हूँ तुमसे शान।
1: मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरी जिंदगी में ऐसे रहोगे। इतनी सारी दिक्कत परेशानियों को छोड़कर हम एक हो गए।
2: सिर्फ तुमने नहीं सोचा था,
1: तुमने भी कभी नहीं सोचा था।
2: क्योंकि मुझे सोचने में डर लगता था ईशान, इसलिए मैंने सपने में सोचा था। और देखो ना, आज हमारे सपने मिल गए ईशान। अब तुम मुझसे ये नहीं कह सकते

0: तुम्हें मेरा जो ये प्यार है ना, ये खुद कमाया है। तुम इस प्यार की हकदार हो। सच कह रहा हूँ।
1: अच्छा, रात बहुत हो गई है शान।
0: तो आज तो हमारी सुहाग रात है। आज मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगा इतनी जल्दी।
1: सुबह मुझे नींद आएगी।
0: हाँ तो कोई नहीं, तुम सुबह सो जाना आराम से, लेकिन आज हम रात भर जाग के बातें करेंगे।
1: फिर तुम्हारी तबीयत खराब हो सकती है शान, तुम्हारे कॉन्सर्ट्स भी है ना।
0: नहीं होगी मेरी तबीयत खराब, और अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगी ना तो मैं तुम्हारे साथ बहुत सारा रोमांस करूंगा। अरे शर्मा रही हो तुम?
1: मैं कहाँ शर्मा रही हूँ।
0: नहीं शर्मा रही हो तुम, और वैसे भी आज की रात तो बहुत कमाल है। तुम इतने कमाल के लिरिक्स लिखती हो, मैं इतना अच्छा गाता हूँ। अगर आज सुहाग रात में गाना नहीं होगा ना, सुहाग रात अधूरी रह जाएगी।
1: ठीक है सुनो।
0: तुम्हारे लिरिक्स, मेरी आवाज और हमारा प्यार।
2: ऐसे में बहुत जल्द कहानी में लीप भी आने वाला है, जहाँ ईशान और नयनिका की गुड न्यूज देखने को मिलेगी।
3: नयनिका की जिंदगी में एक और खुशी जुड़ी है। नयनिका, इसलिए मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि मैं दिल से बहुत खुश हूँ।
1: शुभ दीजिए ना। खुश।

0: दरअसल ये रिश्ता क्या कहलाता है, में मायरा घर से भाग गई है, जिसे लेकर अभीरा और अरमान काफी परेशान हैं। लेकिन इन सब के बीच विद्या दे रही है अपनी पोती मायरा का साथ। आखिर विद्या क्यों जा रही है अभीरा अरमान के खिलाफ, चलिए देखते हैं।
1: घर से भागी मायरा, अभीरा का गुस्सा, विद्या ने दिया मायरा का साथ, स्टारप्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अरमान और अभीरा पूरे परिवार के साथ हैं। ऐसे में पूरे परिवार को एक साथ देखकर मायरा मौके का फायदा उठाती है और देखिए किसे सबकी नजरों से छिपते छिपाते भाग निकलती है। लेकिन उसे ये नहीं पता कि अभीरा की नजर उस पर पड़ गई है। ऐसे में अभीरा वहाँ से जाने लगती है कि अरमान उसे रोक लेता है, लेकिन अभीरा बिना बताए ही अरमान कहाँ छोड़कर वहाँ से चली जाती है और अगले ही पल मायरा को घर ले आती है। इतना ही नहीं, वो तो घर वालों के सामने मायरा को फटकार भी लगाती है। इससे पहले कि अभीरा अपना गुस्सा और उतारती, बीच में आ जाती है विद्या, जो मायरा को गले लगा लेती है और उसका साथ देती है। ऐसे में मायरा को अपनेपन का एहसास तो होता ही है और तभी वो घर वालों को बताती है कि उसे कबीर का कॉल आया था और उसने बताया था कि उसके घर वाले उसके साथ जोर जबरदस्ती कर रहे हैं। इस बात पर विद्या उसकी बात को समझती है और उसे जाने के लिए कहती है, लेकिन मायरा के जाते ही अभीरा और अरमान दोनों अपनी माँ विद्या से सवाल करने लगते हैं।
2: शुरू से जब मतलब एंट्रेंस एग्जाम मिस होने से ही जो सिचुएशन क्रिएट हुई है बहुत ही ज़्यादा क्रेजी हो चुकी है। एंड मतलब वही होता है ना, एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ और बोलने पड़ते हैं, तो वो बस एक एंट्रेंस एग्जाम का झूठ छुपाने के लिए 100 और झूठ बोलने पड़े, उसकी वजह से सिचुएशन और ख़राब होती गई होती गई। मायरा ने बताने की भी कोशिश की, मतलब बहुत गिल्टी फील कर रही है मायरा उसकी उसका एग्ज़ाम छूटा एंड ऑल बट वो बता भी नहीं पाई मम्मा पापा को इतना खुश देख के। और जब बताने का टाइम आया तो कभी कुछ हो रहा था, कभी उसकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी। फिर कबीर बॉयफ्रेंड बन गया एंड ऑल, तीज हो गया, मम्मा ने सीधा बॉयफ्रेंड देख लिया, मम्मा को पता चल गया, तो उसके बाद अगर मायरा एग्ज़ाम का बताती तो और बड़ा वो हो जाता। तो ऐसे चीज़ें छुपती गई, बता भी नहीं पाई मायरा एंड ऑल, और सिचुएशन और ज़्यादा वर्स होती गई। तो अभी जिस पॉइंट पे हम लोग चल रहे हैं तो सिचुएशन पूरी बिगड़ चुकी है ऑलरेडी। कबीर का पता चल गया, एंट्रेंस एग्ज़ाम का पता चल गया, पेरेंट्स और मायरा के बीच का जो इक्वेशन था वो ऐसा हो रहा है, हिल गया है पूरा, दो सब बहुत सैड हैं, घर में पूरा सैडनेस भरी हुई है, तो बहुत ही सैड सीन्स हैं एंड ऑल। तो अभी माधव जी के फ्रेंड आते हैं तो फॉर अ चेंज उनके सामने सब लोग खुश होने का ट्राई करते हैं एंड इतने टाइम से ना मायरा ने कुछ खाया ना मम्मा पापा ने कुछ खाया है, क्योंकि दोनों अपनी मायरा को बहुत बुरा लग रहा है कि उसने उनसे इतनी बात छुपाई, एंड कहीं ना कहीं थोड़ा गुस्सा भी है कि वो समझ नहीं रहे मायरा का पीओवी, और पेरेंट्स इसलिए गुस्सा है कि मायरा ने उनसे इतनी सारी बातें छुपाई, एंड उनके पीओवी से तो कबीर बहुत ही बुरा लड़का है और मायरा इतने बुरे लड़के के साथ है मना करने के बावजूद भी. तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें हैं, एंड अभी वो जाके थोड़ा सा जो है आइस ब्रेक मोमेंट आता है, हम लोग एक दूसरे को लड्डू खिलाते हैं बहुत टाइम बाद तीनों, तो वो थोड़ा अच्छा मोमेंट है.
1: भाई यहाँ तो विद्या का डर भी जायज है और अरमान अभीरा की परेशानी भी, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनकी बेटी किसी गलत इंसान के हाथ में पड़े. ऐसे में विद्या उन्हें समझाने की कोशिश करती है, क्योंकि प्यार के लिए इस घर में सभी बच्चों ने बगावत चुकी है.
2: दादी मायरा को सपोर्ट कर रही है कि मतलब आजकल की जनरेशन जो है वो ये बोल के, दादी ये बोलती है दादी कि छोटी छोटी चीज़ों में बहुत बड़े कदम उठा लेते हैं, मतलब मायरा कुछ ऐसा गलत ना कर दे कि हम परिवार वाले उसकी बात नहीं मान रहे हैं तो मायरा कुछ भी कर सकती है, जनरेशन के हिसाब से दादी को ऐसा लगता है. तो इसलिए वो सपोर्ट कर रहे हैं कि इससे पहले कि मायरा कुछ बड़ा कदम उठाए, कुछ और ज़्यादा गलत हो, तो बेहतर है कि हम उसे एक चांस दे एंड ऑल. या
1: फिलहाल तो विद्या ने भी अपनी बात सभी के सामने रखी है और कहीं ना कहीं विद्या की बात को सब लोग समझ भी रहे हैं. अब देखना होगा कि कैसे अरमान और अभीरा मिलकर अपनी बेटी मायरा की बात सुनेंगे और कैसे हर कदम पर उसके साथ चलेंगे ताकि उसके साथ कुछ गलत ना हो सके. मुंबई से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट.
0: सीरियल हमारी भाभी नंबर वन में चल रही है मुस्कान की मुंह दिखाई रस्म, जहां बंसरी भाभी ने मुस्कान की चोरी पकड़ने के लिए रचा एक चक्रव्यूह. लेकिन मुस्कान भी कहां कम है, अब ऐसे में बंसरी कैसे करती है मुस्कान का पर्दाफाश, देखना दिलचस्प होगा.
1: मुंह दिखाई की रस्म में देवरानी जेठानी की फुगड़ी, फुगड़ी में हुआ तमाशा, बंसरी ने फेंका पासा, दंगल टीवी की सीरियल हमारी भाभी में आज हो रही है मुस्कान की मुंह दिखाई की रस्म में, जहां पर मुस्कान की मुंह दिखाई पर मुस्कान को मिल रहे हैं गहने पर गहने. ऐसे में मुस्कान ने अपना प्लान बनाया, अपनी दोस्त को सारे गहने पकड़ाए और वहां से रफा दफा किया. लेकिन ये बात पता चल गई बंसरी को, और देखिए कैसे बंसरी ने न सिर्फ मुस्कान की सखी को रोका बल्कि उसे रोक कर बाकी की सारी रस्में अदा करने की बात कही. इतना ही नहीं, वो तो अपनी देवरानी यानी कि मुस्कान को हाथ पकड़ कर ले आई बीच सभा में, और देखिए कैसे घूंघट उठाकर अपनी देवरानी से गुजारिश करती है कि वो उसके साथ फुगड़ी खेले. यही तो देवरानी जिठानी का रिश्ता है सहेलियाना वाला. बस फिर क्या, बंसरी की बात को मानते हुए मुस्कान फुगड़ी खेलने तो लगती है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि बंसरी क्या खेल खेलेगी.

0: ये तो चमत्कारी हो गए हैं। हमारे साथ साथ ये दागिने भी फुगड़ी करते करते यहाँ आ गए ना। क्या है तुम्हारे ये लुटेरे दोस्त ये दागिने यहाँ से चुरा के भागने की फिराक में थे? ऐसा तो नहीं कि तुमने इन्हें कहा था कि ये दागिने यहाँ से नफू चक्कर कर दे?
1: कैसी बात है, मुझे तो पता भी नहीं था कि इन्होंने चोरी चोरी कर अपने पास छुपा रखी। और जैसे आप शौक हो वैसे मैं भी शौक हूँ।
0: अच्छा
2: भाई, मानना पड़ेगा मुस्कान को। बंसरी की चाल पर उसने भी पासा फेंक दिया और बता दिया कि उसे तो पता ही नहीं था। इतना ही नहीं, अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए भरी सभा में उसने अपने ही दोस्त की गालों पर जोरदार तमाचा जड़ दिया और खरी खोटी सुनाने लगी।
0: तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी ऊंची हरकत करने की? तुमने तो मेरे लॉस के सामने मेरी नाक कटवा दी। सॉरी, सिर्फ एक सॉरी। अगर मेरा बस चलता तो मैं अभी पुलिस बुलाती। हाँ तो बुला लेते हैं ना पुलिस को।
2: भाई यहाँ तो बंसरी ने भी मौके पर चौका लगा दिया और पुलिस को बुलाने की बात कही, जिस पर मुस्कान हैरान रह गई। इससे पहले कि बंसरी पुलिस को बुलाती, वहाँ पर आ गई फूईबा, जिन्होंने बंसरी को रोक लिया। ऐसे में मुस्कान की दोस्त ने भी बंसरी से माफी मांग ली।
3: ए बापला, इस घर में पुलिस नहीं आएगी, कहीं दो छो बंसरी।
0: मुझे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। पुलिस को मत बुलाओ।
2: अब सच क्या है बंसरी बखूबी जानती है, इसीलिए उसने पुलिस को बुलाया नहीं। ऐसे में उसने सारे गहने जो नीचे पड़े हुए थे वो समेट लिए और जाकर फूई बा को दे दिया।
0: और फूई बा को पता है, लोग कभी कभी ना कानूड़ा का उदाहरण देते, कहते कि कानूड़ा भी तो माखन चोर थे। इसका मतलब ये कि हम भी चोरी कर सकते है, पर ऐसा नहीं। वो लोग हैं ना कि गलत मतलब निकालते ही रहते। सही मतलब तो ये है कि अहंकार की जो मटकी होती है ना वो हमेशा ऊपर रहती है, पर कानूड़ा तो उस मटकी को तोड़ के, अहंकार को तोड़ के मन रूपी माखन को निशुद्ध करते थे।
2: भाई बंसरी ने तो बड़े ही प्यार से सभी के सामने मुस्कान को ताने भी कस दिए और उस ताने पर उसे तालियां भी मिल गईं और किसी को पता ही नहीं चला। खैर जो माहौल बिगड़ गया है, बंसरी कोशिश कर रही है उस माहौल को सुधारने की।
0: अरे चलो अबे, सब ऐसे चिंता वाला चेहरा लेके क्यों खड़े हो? अरे मुंह दिखाई का फंक्शन है, थोड़ा दवाए करते हैं। आज लगन का फंक्शन होता ले तो मस्त मजाना फटाना गाते थे। सीरियसली भाभी, मैं मम्मी से तब से यही कह रही हूँ कि फटाने वाले दवा मस्ती करते है ना।
3: हाँ हाँ, ये ना वातावरण थोड़ा धीर गंभीर हो गया है भाई। चलो चलो कुछ मस्ती शुरू करो तुम लोग। हाँ
0: हाँ, पर सोच लो कोई बात, खींचा तानी में ये बंसी बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेगी। फिर अगर जब से किसी को बुरा लगेगा तो मैं बच्चे माफी नहीं मांगूंगी। हाँ
1: बंसरी, फटाना गाने में तो मस्ती मजाक चलता ही है ना, और गाते हैं फटाना, घर में ना थोड़ा शादी वाला माहौल तो लगेगा। हाँ
2: अब सामने वाले को तो बंसरी ने पहले ही आगाह कर दिया और शुरू कर दिया सबकी गुजारिश पर फटाना गाना। और देखिए कैसे उसी गाने के जरिए वो मार रही है मुस्कान को जबरदस्त ताना।
0: दुल्हन के दोस्त लुटेरे, जटानी पोल खोलेरे, आप मां शरम नसीरे, डरानी नरम नसीरे, दुल्हन जो लूट ले आए, जटानी बाज भगाए।
1: मुस्कान जवाब दो,
4: सो बेसिकली गुजरातियों में ना शायद ये एक वो है, फटाना गाते हैं बेसिकली मुँह दिखाई की रस्म में। तो एक दूसरे को फटाना गाते गाते ना आप कुछ भी बोल सकते हो मस्ती मस्ती में, और उस चीज़ का आप बुरा भी नहीं मान सकते। एक रस्म होती है, खुद मुझे आज पता चली है। और बंसरी ने जैसा कि पहले देख लिया अभी कि वो जो मुस्कान के दोस्त है वो सब गहने वगैरह लेकर के जा रहे हैं, तो ये बंसरी का आइडिया है कि फटाना गाते गाते ना वो इन शॉर्ट मुस्कान को चैलेंज कर रही है कि अब मैं कुछ भी हो जाए मैं तुझे यहाँ से निकाल के रोकूंगी, क्योंकि मैंने सब देख लिया है, तेरा झूठ सबके सामने है, और तू भले देवरानी मैं जेठानी हूँ, और मैं तुझे यहाँ से रफा दफा करके रहूँगी।
2: बेचारी मुस्कान, उसकी तो आज ही बोलती बंद हो गई। और उसका साथ देने के लिए उसकी सारी सखियां भी आ गई। लेकिन यहाँ तो बाजी बंसरी मार ले जा रही है, सभी में घमासान चल रहा है। ऐसे में मुस्कान बीच में आती है तो बंसरी जाने अनजाने उसे धक्का दे देती है, जिसके चलते मुस्कान गिर जाती है। और अब मुस्कान का गिरना कहानी में नया ट्विस्ट लाएगा। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
5: सीरियल इश्क जुनूनी में गुरु से दूर जा चुकी है रूहानी, और रूहानी के लिए गुरु की तड़प साफ जाहिर है, जिसके चलते घर में हंगामा हो रहा है। ऐसे में कहानी में क्या नया मोड़ आता है, देखना दिलचस्प होगा।
2: रूहानी के गम में डूबा गुरु। में शुरू हुआ नया हंगामा, गुरु और बंदूक का खेल। दंगल टीवी के सीरियल इश्क जुनूनी में भाई जब से ही रूहानी इस घर से गई है, मानो घर के जज्बात और माहौल दोनों ही बदल गए। ऐसे में देखिए कैसे भाई गुरु और संदीप में छिड़ गई है नई जंग। जहां गुरु अपने बीवी के गम में उदास है, तो वहीं संदीप अपनी बहना को खो देने के टेंशन में गलत और सही की समझ भूल गया है। और देखिए कैसे इन दोनों के बीच देखने को मिल रही है तश्नेबाजी।
6: गुरु तुम अगर तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं तुम्हारी कंपाउंडर नहीं हूँ, अगर तुम्हारे दिल में जरा सा भी शक है तो उठाओ गुरु और मार डालो मुझे। करते रहना आपकी मेहरबानी अपनी एक गुंडा में।
2: तरफ हंगामा चल ही रहा होता है कि हो जाती है ईशानी के मम्मी पापा की एंट्री। और देखिए कैसे भाई वो जबरन जिद पर अड़ गए हैं कि वो ईशानी को इस घर से लेकर ही जाएंगे, लेकिन ईशानी है कि उसने यहाँ से जाने से साफ साफ इनकार कर दिया है।
6: ये मेरा घर है, ये मेरे अपने लोग हैं और मैं इन्हीं के पास रहूंगी।
2: गुस्से में इसी बीच हो गई झड़प, जहां पर ईशानी की मम्मी ने गुरु की माँ को धक्का मार दिया। भाई बस फिर क्या, गुरु का गुस्सा भड़क उठा और देखिए कैसे घर में शुरू हो गया हाई वोल्टेज ड्रामा।

0: ऐसा कर रहा तो तुम्हें मैं नहीं महसूस होती, रूहानी महसूस होती।
1: कोई बाजार में मिलने वाला खिलौना था, तुम्हें एक शरीर से निकाल के दूसरे शरीर में डाल दिया। अरे निकालना ही था तो उसका दिमाग, इसका दिमाग निकाले कंपाउंडर के दिमाग में डाल देते ना। डॉक्टर है ना आप, बताइए दिमाग से कोई जीता है क्या? किसने दिया आपको यहाँ?
2: रोहानी का डेथ सर्टिफिकेट है, पुलिस स्टेशन का रिपोर्ट। आपने जिंदगी छीनी मेरी रोहानी की।
1: जवाब तो दरोगा के सवाल का जवाब दो।
3: चुप क्यों हो? बोलिए ना, जवाब दीजिए।
4: अभी ने क्या पूछा आपसे?
1: झूठ। अगर वो मर गई थी तो किसी को बताया क्यों नहीं? हाँ

0: ऐसे में गुरु भी रूहानी को नहीं भुला पा रहा है और उसने इसी के चलते ईशानी को भी घर में रहने से साफ साफ इनकार कर दिया है। लेकिन ईशानी जिद पर अड़ गई है।
1: पहले हमारी कंपाउंडर की कहानी चुराई, फिर उसके बाद का दिल चुराया और अब उसकी जगह लेने चली आई यहाँ पर। मैं हमारी कंपाउंडर का दिल छीना है हमसे, हम तुमसे तुम्हारी जिंदगी छीन लेंगे।
0: इन सब हंगामों के पहले देखिए कैसे, तो यहाँ पर ईशानी गुरु के कमरे में होती है और जब गुरु की एंट्री होती है भाई देखिए कैसे इन दोनों के बीच देखने को मिलता है एक अजीब सा रिश्ता जो कहीं ना कहीं गुस्से का है। लेकिन गुरु के दिल में ईशानी को देख के रूहानी का दिल धड़कता है, लेकिन फिर भी गुरु अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पा रहा है। ऐसे में देखना होगा कि क्या अब फाइनली वो इस हकीकत को मानेगा या नहीं। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
2: हम आपको दिखाते हैं बाप्पा की भक्ति के रंग, जिसमें आपके फेवरेट सितारे पूरी तरह डूबे हुए नजर आ रहे हैं। कहीं गणपति विसर्जन चल रहा है तो कहीं नाच गाकर बाप्पा के लिए सितारे अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं।
0: तेजस्वी के बाप्पा का विसर्जन, विघ्नहर्ता की विदाई के पहले आखिरी आरती, सितारों की बापा भक्ति, भाई तेजस्वी प्रकाश गणपति बापा की भक्त है और कई सालों से वो अपने घर पर बापा को विराज रही है। और आज देखिए कैसे, आज है उनके बापा का विसर्जन और उसके पहले एक आखिरी आरती में शामिल हुआ तेजस्वी का पूरा परिवार, करण कुंद्रा, उनकी मम्मी और उनके सभी क्लोज रिलेटिव्स और टीवी इंडस्ट्री से जुड़े कई सितारे भी उनके घर पर बापा के दर्शन के लिए पहुँचे और की सब ने मिलकर बापा की आरती। आरती के बाद आई बापा के विदाई की बारी और देखिए कैसे भाई ढोल नगाड़ों की धुन पर तेजस्वी ने नाचते गाते किया बापा को विदा।

0: एमर गॉसिप और हाई वोल्टेज ड्रामा मनोरंजन की दुनिया से हम लेकर आए हैं कुछ ऐसी रॉकिंग और शॉकिंग खबरें जो आपके चेहरे पर ले आएंगी एक प्यारी सी मुस्कान। आइए आपको ले चलते हैं आज की रॉकिंग खबरों की ओर।
1: पेश है बॉलीवुड ओटीटी और टेलीविजन की रॉकिंग और शॉकिंग खबरें। रॉकिंग और शॉकिंग खबरों में सबसे पहले बात करते हैं जेनिफर विंगेट की, जिनकी हाल ही में शादी हुई है। ऐसे में सामने आए हैं ये सभी विजुअल्स, जहां उनकी शादी के सभी नज़ारे हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। मैं इनकी शादी में शामिल हुए हैं इनके करीबी दोस्त जेनिफर की जोड़ी विलियम के साथ लग रही है बेहद ही कमाल।

अपना जन्मदिन, वो भी अनुपमा के सेट पर। आइए देखते हैं ये सभी नज़ारे। इसी के साथ साथ टीम अनुपमा पहुंच गई है लालबाग चराजा के दर्शन करने के लिए।

0: देख लीजिए पति पत्नी और पंगा का ये नया प्रोमो, जहां आपको देखने मिलेगा अर्चना और परमीत का लाफ्टर।
1: हनीमून से मून तक मैं कुछ कह नहीं रहा, सिर्फ सह रहा हूँ।
2: सह रहा हूँ? सह रहा हूँ?
3: What do you mean?
1: Nothing, baby, nothing.
4: What do you mean?
0: तारक मेहता का उल्टा चश्मा में भाई गोकुल धाम वाले फिर एक बार नए भूत से हो गए हैं खौफनाक। आइए डालते हैं इन पर एक नजर।
5: तो भूत पुतले से भागा।
0: आलिया भट्ट ने सोशल मीडिया पर शेयर की है गणपति सेलिब्रेशन से लेकर विसर्जन तक की ये तस्वीरें। आइए डालते हैं भट्ट और कपूर परिवार के इन त्योहार की ये झलकियों पर एक खास नजर।

0: फैमिली फुल हाउस विद रोहित शर्मा में खास मेहमान बनकर आने वाली है तवान की टीम यानी कि सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया। देख लीजिए मस्ती भरे ये सभी पल।
1: मैं बैटिंग थोड़ी इस तरफ करता हूँ।
0: वैसे इसी के साथ साथ वन की टीम पहुंच गई है बिहार मुलाकात करने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री सम्राट चौधरी से भी।
2: प्रेम से बोलिए श्री गजानन गणेश जी महाराज की, जगत जननी जगदम्बा की, रमापति रामचंद्र की, उमापति महादेव की, वृंदावन बिहारी लाल की, सत्य सन गंगा ये नमः, भागीरथ ये नमः, चरण कमलेषु अनंत अनंत कोटि नमस्कारं समर्पयामि, तिलक आशीर्वादः। ओम मा स्वस्ति नायन्द्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूर्वा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो वरिष्ठनेमिः।
0: वीर हिरानी बहुत जल्द करने वाले हैं अपना थिएट्रिकल डेब्यू लगन लगी रे से, जिसमें उनके अपोजिट नजर आएंगी रशा थडानी।

लिए खत्म होता है सास बहू और बेटियां का सफर। कल फिर होगी आपसे मुलाकात और इसी तरह जारी रहेगा मनोरंजन का सिलसिला। तब तक के लिए नमस्कार।

0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: जिसने हिला दिया महाराष्ट्र, जिसे कांप रहे हैं मिलावटखोर। हाई कोर्ट की कैंटीन पर लगा दिया ताला। सब्जी बेचकर पढ़ाई, बेईमानों से लड़ाई, सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबर।
3: एवरेस्ट दिखा लाल, सही दिखा सही लाल।
4: गोल्ड मेडल से बस एक कदम दूर भारतीय महिला क्रिकेट टीम एशियन गेम्स में बांग्लादेश को 114 रनों से दीमात। शेफाली वर्मा ने 49 गेंद में लगाई सेंचुरी। एशियन गेम्स में भारत को शूटिंग में मिला दूसरा सिल्वर मेडल। एलाविन ने 10 मीटर एयर राइफल में किया कमाल। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में भी पदक पक्का। गुजरात के अंबाजी धाम में आस्था का महाउत्सव विधि विधान से। भादरवी महामेले का शुभारंभ, करीब 40 लाख श्रद्धालुओं के आने का अनुमान। देशभर में गणपति उत्सव की रौनक। अमरावती के गणपति पंडाल में खाटू श्याम मंदिर की भव्य झांकी, पुणे के गणेश मंदिर का भव्य श्रृंगार। मेरठ में एयर शो और दूसरा आखिरी दिन, सूर्यकिरण एरोबैटिक टीम ने दिखाया हैरतअंगेज करतब। बड़ी संख्या में दीदार को पहुंचे लोग।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
4: 20वें एशियन गेम्स के पहले ही दिन इंडियन महिला टीम ने किया कमाल, बांग्लादेश को 114 रनों से हराया। एशियन गेम्स के फिनाले में भारत ने बनाई जगह, 22 सितंबर को श्रीलंका के खिलाफ खेलेगा मैच। टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 195 रन बनाए, पीछा करते हुए बांग्लादेश की पूरी टीम 81 रनों पर ढेर। शेफाली वर्मा ने महिला टी20 में बनाया सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड, 49 गेंद में लगाई सेंचुरी। टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में शेफाली वर्मा सबसे ज्यादा सिक्स लगाने वाली बल्लेबाज भी बन गई, उनके नाम अब तक 102 छक्के लगाने का रिकॉर्ड। एशियन गेम्स 2026 का आज पहला दिन, कई खेलों के मेडल पर भारत की नजर। एशियन गेम्स में भारत को मिला पहला मेडल, 10 मीटर एयर राइफल की महिला टीम ने जीता सिल्वर। नेक्स्ट मार्शल आर्ट्स में भारत के लिए अच्छी खबर, सुचिका तारियाल ने सेमीफाइनल्स में प्रवेश किया, एक मेडल पक्का। एशियन गेम्स में भारत को शूटिंग में मिला दूसरा सिल्वर मेडल। एला वेनिल ने 10 मीटर एयर राइफल में जीता सिल्वर। मेरठ में एयर शो आज उसका दूसरा दिन और आखिरी दिन, सूर्य किरण एरोबैटिक टीम नौ हॉक MK-132 विमान से आसमान में दिखाया हैरतअंगेज करतब। देशभर में गणेशोत्सव की धूम, विभिन्न स्वरूपों में गजानन की आराधना, कई जगहों पर प्रतिमा विसर्जन भी जारी। राजकोट के गणपति के पंडाल में नजर आया अनोखा नजारा, रोबोट के जरिए उतारी गई आरती। गणेश पंडाल में धर्म और टेक्नोलॉजी के संगम को देखने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे लोग, बप्पा के दर्शन करने के लिए दूर दूर से पहुंच रहे हैं भक्त। बिहार के मधेपुरा में गणेश प्रतिमा के विसर्जन पर शोभा यात्रा, कोलकाता की त्रिकाल झांकी बनी आकर्षण का केंद्र। मधेपुरा में प्रतिमा विसर्जन के दौरान कलाकारों ने मनमोहक प्रस्तुति दी, बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए। पुणे के रांचण गांव महागणपति मंदिर गणेश उत्सव की धूम, ड्रोन कैमरे में कैद हुआ नजारा। गणेशोत्सव के चलते रांझण गांव में रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया पूरा इलाका, रात में रोशनी से नहाया। राजनगांव महागणपति मंदिर में हर साल होता है भव्य आयोजन, दूर दूर से पहुंचते हैं दर्शनार्थी। अमरावती के बुधवार में खाटू श्याम मंदिर में थीम पर गणेश पंडाल में सजाई गई भव्य झांकी, आजाद हिंद गणेश उत्सव मंडल ने तैयार किया। बप्पा के साथ खाटू श्याम जी के दर्शन करने को लेकर भक्तों में भारी उत्साह, बड़ी संख्या में पहुंचे भक्त। भलाई में बस्तर की प्रसिद्ध दंतेश्वरी माता मंदिर की थीम पर बना गणेश पंडाल। रक्षी अम्बन मंदिर में विराजमान कुरक विनायक घर की तरह बनाए गए गजानन। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में सर्वधर्मीय महाआरती का आयोजन हुआ, हिंदू समाज के साथ मुस्लिम, सिख, बौद्ध और ईसाई समाज के लोग शामिल हुए। कोल्हापुर में महापालिका की अच्छी शुरुआत, बस से गणेश मूर्तियों तक पहुंचाया गया विसर्जन स्थल। झालम गणेश उत्सव पर अनोखी प्रदर्शनी देखने को मिली, प्रतिमाओं के जरिए समझाया जा रहा है भूगोल का विज्ञान। पुणे में श्रीमंत भाऊ साहेब रंगारी गणपति की भव्य और दिव्य सजावट के जनन की आस्था और भक्ति में पूरी तरीके से लीन नजर आए भक्त। गणेशोत्सव के दौरान पंडाल में मड़ रहा है बप्पा के भक्तों का भारी सैलाब, बप्पा के अलौकिक स्वरूप के हो रहे हैं दर्शन। गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों की गूंज, पुणे के इस प्रमुख गणेश पंडाल की भव्य सजावट। बैडमिंटन खिलाड़ी सायना नेहवाल ने किए बप्पा के दर्शन, श्रीमंत भाऊ साहेब रंगारी गणपति पंडाल में महाआरती में शामिल हुए, आशीर्वाद लिया। दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट के लोगों ने धूमधाम से मनाया गणेश उत्सव, बीजेपी नेता सुनील देवघर के आवास पर गायक जुबिन गर्ग की स्मृति में रखा गया विशेष कार्यक्रम। चित्तौड़गढ़ श्री सांवलिया सेठ मंदिर में देखिए समर्पण की मिसाल, व्यापारी ने करीब 1 किलो 200 ग्राम चांदी से बना सीमेंट प्लांट का मॉडल तैयार किया। भगवान को अर्पित किए गए सीमेंट प्लांट के मॉडल की करीब 2.5 लाख रुपए बताई जा रही है कीमत, अनोखी भेंट को लेकर व्यापारी बने चर्चा का विषय। अंबाजी में भादरवी महामेला आज से हो गया शुरू, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने रथ खींचकर उद्घाटन किया। भादरवी महामेला में दिखा शक्ति, भक्ति और आस्था का संगम, 7 दिनों तक धूमधाम से जारी रहेगा उत्सव। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड की तैयारियां लगभग पूरी, 22 सितंबर को होगा आयोजन। दिल्ली के श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश मंदिर में राधाष्टमी पर्व की धूम, द्वारका सेक्टर 13 स्थित स्कॉन मंदिर में धूमधाम से मनाया जाएगा जन्मोत्सव। फूलों से किया गया राधा रानी का भव्य और दिव्य अभिषेक उत्सव का मुख्य आकर्षण रहा विशेष बोट फेस्टिवल। रंग बिरंगे सुगंधित और फूल गुब्बारों से सजाया गया कुंड और नौका। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की मानसी गंगा लीला का हुआ सुंदर चित्रण, मंदिर में हुई विशेष राधाष्टमी आरती, श्रद्धालुओं ने इस अनूठे दर्शन कर लिया आनंद। नाव उत्सव की भव्य और शानदार सजावट ने श्रद्धालुओं को किया मंत्रमुग्ध। भारत और जापान के बीच संयुक्त वायु अभ्यास वीर गार्जियन 26 जारी, 22 सितंबर तक एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर में आयोजन होगा। एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह और JASDF के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल ने युद्ध अभ्यास का किया निरीक्षण। अयोध्या में सूर्य कुंड मिलेगा आगाज, श्रद्धालुओं ने सरयू नदी के पवित्र जल में लगाई पवित्र डुबकी। सूर्यदेव को अर्घ्य देकर श्रद्धालुओं ने अपने परिवार के लिए मांगी सुख समृद्धि की कामना। श्रीनगर पर्यटक सुहावने मौसम को उठा रहे लुत्फ, डल झील में पारंपरिक शिकार की सवारी। जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस पर निकाली गई रैली, लोगों ने की थी विश्व शांति की प्रार्थना। हैदराबाद में नशा मुक्ति को लेकर चलाया गया अभियान, साइकिल राइडिंग से लोगों को किया गया जागरूक। तमिलनाडु के थूथुकुड़ी में चिथराई उत्सव की धूम, पारंपरिक बैलगाड़ी दौड़ का आयोजन। बैलगाड़ी दौड़ में हिस्सा लेने के लिए दूर दूर से पहुंचे प्रतिभागी। उत्तर प्रदेश में बाराबंकी के हेतमापुर में सरयू नदी का कटान जारी, बाढ़ की चपेट में आधा गांव। सरयू नदी में लगभग 30 पक्के मकान बाढ़ में डूब गए, पीड़ित परिवारों को प्रशासन ने भेजी आर्थिक मदद।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है।
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है।
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को

0: भाई और बहनों नमस्कार। मैं बाबा रवि गिरी आज जो कार्यक्रम लेके आया हूं वो आपकी आंखें खोल देगा। क्या आप जानते हैं कि मैं 78वें वर्ष में चल रहा हूं, लेकिन आपको शायद ये जानकर विश्वास ना हो कि मैं आज भी रोज कई किलोमीटर आराम से चलना ही नहीं बल्कि दौड़ भी लगा सकता हूं। इस उम्र में जहां लोग दर्द से, खासकर जोड़ों के दर्द से परेशान रहते हैं, मैं इस उम्र में भी पूरी तरह फिट हूं। न मुझे जोड़ों का कोई भी दर्द है और ना मेरी एनर्जी कम है। आप जानते हैं कि ऐसा कैसे संभव हो पाया? तो मैं आपको बता दूं कि मेरे बनाए नुस्खों की वजह से, जो इस उम्र में भी मुझे हाथ पैर कंधे घुटने के दर्द से दूर रखते हैं। और आज के कार्यक्रम से ये आपके साथ भी मैं साझा कर रहा हूं, आप भी अगर जोड़ों के दर्द से जूझ रहे हैं, दवाएं खाते खाते परेशान हो गए हैं, तो एक बार मेरे नुस्खों को आजमा कर देखें, आपको 100% लाभ मिलेगा। ये मेरा आपसे वादा है। और ये नुस्खे कितने कारगर हैं इसका जीता जागता सबूत मैं आपके सामने बैठा हूं। इस उम्र में भी मेरे शरीर के सारे जोड़ चुस्त हैं, दुरुस्त हैं। मैंने ये नुस्खे अपने 50 वर्षों से भी अधिक के आयुर्वेदिक अनुभवों के ज्ञान और लंबे शोध के बाद तैयार किए हैं और हजारों लोगों को मैंने ठीक भी किया है। अगर आपको कई सालों से जोड़ों के दर्द की समस्या है, कोई चोट की वजह से दर्द है, बढ़ती उम्र के साथ दर्द बढ़ रहा है, या फिर कम उम्र में ही जोड़ों में, खासकर घुटनों में दर्द रहने लगा है, जोड़ों में ग्रीस कम हो गया है, गैप आ गया है, या फिर पानी भर गया है, समस्या चाहे जो भी हो और आपकी उम्र भी चाहे जो भी हो, आपको मेरे बनाए नुस्खे जरूर फायदा देंगे। ये मेरा आपसे वादा है। आपको बता दूं कि पुरुषों के मुकाबले जोड़ों के दर्द की समस्या महिलाओं को जल्दी और ज्यादा होती है, जिसका कारण हार्मोनल असंतुलन की वजह से, यानी मेनोपॉज भी आपको हो सकता है। लेकिन मैं बाबा रवि गिरी आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी ये सभी समस्याएं मेरे नुस्खों से बिल्कुल ठीक हो सकती है और जोड़ों के दर्द से छुटकारा पाकर आप बिना दर्द के चलना फिरना ही नहीं दौड़ना भी शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए ये जो नंबर हैं इन पे कॉल करना है, आपको आपकी सभी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। तो भाइयों और बहनों, अगर आपको लगता है कि बढ़ती उम्र में जोड़ों का दर्द होता ही होता है, तो मैं आपको बता दूं कि उम्र सिर्फ एक संख्या है। अगर आप ध्यान देंगे, सही दिनचर्या अपनाएंगे और अपने जोड़ों का ध्यान रखेंगे, तो आपके जोड़ आपको कभी परेशान नहीं करेंगे, बल्कि उम्र भर आपके शरीर का अच्छे से बोझ उठाएंगे और आपको चुस्त और दुरुस्त रखेंगे। और ऐसा करने में आपको मेरे नुस्खे हर तरह से मदद करेंगे। इन नुस्खों को मैंने इन्हीं सभी बातों को और समस्याओं को ध्यान में रखकर बनाया है। यदि हिम्मत और दृढ़ निश्चय हो तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। आपकी सोच और आपके प्रयास ही आपको आगे बढ़ाते हैं। जब मैं इस उम्र में भी आराम से कई किलोमीटर तक दौड़ सकता हूं, तो आप क्यों नहीं दौड़ सकते? तो आप अभी ये नीचे जो नंबर दिए गए हैं इन पे कॉल करके मेरे नुस्खों का फायदा उठाएं और अपनी दवा बुक करें। अगर आप सुबह उठते ही अपने घुटनों या पीठ में दर्द महसूस करते हैं तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। क्या आपको वो दिन याद है जब आप बच्चों के साथ पार्क में दौड़ा करते थे या बिना थके सीढ़ियां चढ़ लेते थे और अब थोड़ा सा चलना भी भारी लगने लगता है। जोड़ों का दर्द ना सिर्फ हमारे शरीर को तकलीफ देता है बल्कि हमारी जिंदगी के कई खूबसूरत पलों को भी हमसे छीन लेता है। न रोज के काम अच्छे से कर पाते हैं और न ही हर दिन की भागदौड़ में वो आत्मविश्वास रह जाता है। जरा सी सीढ़ियां चढ़ने पर घुटनों में दर्द होने लगता है, जमीन पर बैठना मुश्किल हो गया है और चलने में भी डर लगता है कि कहीं दर्द और ना बढ़ जाए। सच तो ये है कि जोड़ों का दर्द सिर्फ शारीरिक तकलीफ नहीं देता, ये हमारे अंदर की हिम्मत को भी गिरी पाए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये दर्द होता क्यों है? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे आम कारण है गठिया यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये सबसे आम प्रकार है जो उम्र बढ़ने के साथ साथ जोड़ों की घिसावट की वजह से होता है। इसमें कार्टिलेज जो हड्डियों को आपस में रगड़ने से बचाता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है जिससे जोड़ों में दर्द और अकड़न होती है। क्या आप जानते हैं कि गठिया के 100 से ज्यादा प्रकार हैं जिनमें हल्के से लेकर गंभीर दर्द का सामना करना पड़ सकता है। रोमेटॉइड आर्थराइटिस जोड़ों के दर्द की ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर की इम्यून सिस्टम खुद ही जोड़ों पर हमला करने लगती है। इससे जोड़ों में सूजन, दर्द और समय के साथ हड्डियों की बनावट तक बदल सकती है। तो भाइयों और बहनों, मेरे नुस्खे इन सारी समस्याओं में असरकारक है क्योंकि इनमें ढेरों शक्तिशाली जड़ी बूटियों को मैंने अपने 50 साल से ज्यादा के अनुभव से अलग अलग फार्मूलेशन में मिलाया है जो आपको आपकी समस्या के हिसाब से बनाकर दी जाती है। इसलिए ये बिल्कुल सीधा असर करती है। मैंने ये नुस्खे पुरुष हो चाहे महिला हो, उम्र चाहे 20 साल हो चाहे फिर 70-80 साल हो, चलने में दिक्कत हो, सीढ़ियां चलने में दर्द होता हो, जोड़ों से कटकट की आवाज आती हो, इन सभी समस्याओं पर गहन चिंतन और शोध के बाद ही ये नुस्खे तैयार किए हैं जिनका असर अचूक है। चलती रहनी चाहिए जिंदगी बिना दर्द के और बिना रुकावट के। मैं बाबा रविगिरी आपको कुछ ऐसे नुस्खे और जड़ी बूटियां बताऊंगा जिससे आप अपने जोड़ों का समाधान तुरंत पा सकते हैं। जोड़ों के दर्द में प्रयोग की जाने वाली आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जो मैं बताने जा रहा हूं उनमें सबसे पहला है तेलपर्ण। इसको तेलपर्ण क्यों कहा जाता है कि इसके पत्तों में तेल होता है इसलिए इसको तेलपर्ण कहते हैं। वैसे आम भाषा में इसको नीलगिरी के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो है ये है सती तेल। ये सूजन को घटाता है, अंदर तक समाकर ये सूजन बढ़ाने वाले इंटरल्यूकिन स्तर को कम करता है और सूजन को घटाता है। इसके बाद में है ये तेजोवती। इसमें मौजूद लिनालूल और लिमोनेन कफ दोष शमन करके और सूजन को घटाता है। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर यानी TNF और इंटरल्यूकिन 6 के बढ़े हुए लेवल्स को घटाता है ये। इसके बाद में है ये तेज पत्ता यानी त्वक पत्थर। ये जोड़ों में जकड़न से निजात दिलाता है, जोड़ों में गतिशीलता देता है। इसके बाद में यह है ज्योतिषमती, ये वात और कफ को संतुलित करके जोड़ों के दर्द में आराम दिलाता है। ये है गंध पत्र, ये गंधपुरा पत्र में 85 से 99% तक मिथाइल सिलिसिलेट होता है जो दर्द निवारक है। तो इससे मांसपेशियों, जोड़ों, हड्डियों के दर्द में आराम मिलता है। इसके बाद में ये है लवंग, इसमें प्रस्तुत यूजेनॉल दर्द को और सूजन को कम करता है और अंदर के इन्फेक्शंस को खत्म कर देता है। इसके बाद में यह है तिल का तेल, बहुत अच्छी चीज है ये। तिल के तेल में एंटी इंफ्लामेटरी गुण पाया जाता है जो घुटनों में होने वाली सूजन और दर्द को कम करने में प्रभावी होता है। इसके बाद में ये तेल है, ये मेजन करी तेल, इस पौधे में औषधीय गुण होते हैं और इसका उपयोग पारंपरिक रूप से विभिन्न बीमारियों जैसे पेट दर्द और गैस्ट्रोएंटेराइटिस के साथ साथ मधुमेह, एडिमा, सर्दी, गठिया, अस्थमा और दर्दनाक चोट के इलाज के लिए किया जाता है। उसके बाद में यह है सुरंजन कटु, ये सूजन रोधी एवं दर्द निवारक प्रभावों के लिए जाना जाता है। यह एक प्रोपेरिएटरी मेडिसिन है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के गठिया में मसल्स और हड्डियों के समर्थन के लिए किया जाता है। इसके बाद में यह है चित्रक मूल, ये गठिया के लक्षणों को कम करने के लिए यानी चित्रक की जड़ अत्यंत फायदेमंद मानी जाती है। यह एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर है, यह दर्द निवारक, सूजन को कम करने वाली, एक बैक्टीरिया और फंगस का नाश करने वाली भी है। यह है ट्रिक टू, इसमें मौजूद बायो एक्टिव कंपाउंड जोड़ों के दर्द, सूजन, लालिमा एवं जोड़ों की कठोरता को कम करने में मदद करता है। यह है अजवाइन, अजवाइन पाचन को दुरुस्त करता है, टॉक्सिन को बाहर निकालता है, प्रोटीन, फैट, फाइटोकेमिकल, फाइबर, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन जैसे पोषक तत्व इसमें प्रचुर मात्रा में भरे हुए हैं। आखिर में है अबरक भस्म, यह कफ को संतुलित करके आरए फैक्टर को कंट्रोल करता है और सर्दियों में जो जोड़ों का दर्द ठंड की वजह से बढ़ जाता है उसको नियंत्रित करता है। साइटिका से आजकल बहुत लोग परेशान है। साइटिका आप सभी जानते हैं कि एक टांग में होने वाला दर्द है जिसका उद्गम रीढ़ की हड्डी से शुरू होता है क्योंकि वहां की नस हिल जाती है। मेरे पास ऐसी अभिमंत्रित ताबीज भी है जो इस दर्द को दूर कर देगी। जोड़ों का दर्द एक असहनीय रोग है, यह एक व्यक्ति से उसकी आत्मनिर्भरता छीन लेता है। तो मेरी एक ही सलाह है, अब गोलियों से नहीं इलाज सिर्फ नुस्खों से करें क्योंकि इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और असर 100% मिलेगा। ये मेरा यानी बाबा रविगिरी का वादा है। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करना है और अपने लिए मेरे नुस्खे मंगवाने हैं। फिर देखिए दर्द कैसे खुद ब खुद भागता है, ये मेरा वादा है। तो अब मुझे आज्ञा दीजिए और तब तक आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। तो राम राम भाई और बहनों, नमस्कार।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
2: किस ग्रह की अशुभ दशा में हृदय रोग होने की संभावना होती है? किस ग्रह की अशुभ दशा में लंबी बीमारी हो सकती है? और किस ग्रह की अशुभ दशा में विचित्र बीमारियां हो जाती हैं, ग्रहों की अशुभ दशा का क्या है प्रभाव और क्या है अशुभ दशा से बचने के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़-धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़-धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
9: गोल्ड मेडल से बस एक कदम दूर भारतीय महिला क्रिकेट टीम एशियन गेम्स में बांग्लादेश को 114 रनों से मात दी, शेफाली वर्मा ने 49 गेंदों में लगाई सेंचुरी। एशियन गेम्स में भारत को शूटिंग में मिला दूसरा सिल्वर मेडल, एला वेनिल ने 10 मीटर एयर राइफल में किया कमाल, मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में भी पदक पक्का। गुजरात के अंबाजी धाम में आस्था का महोत्सव, विधि विधान से भादरवी महामेले का शुभारंभ, करीब 40 लाख श्रद्धालुओं के आने का अनुमान। देशभर में गणपति उत्सव की रौनक, अमरावती के गणपति पंडाल में खाटू श्याम मंदिर की भव्य झांकी, पुणे के गणेश मंदिर का भव्य श्रृंगार। मेरठ में हर शो और आखिरी दिन सूर्यकिरण एरोबेटिक टीम ने दिखाया हैरतअंगेज करतब, बड़ी संख्या में दीदार करने के लिए पहुंचे लोग।

नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार में। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। भगवान गणपति मंगल मूर्ति हैं, विघ्नहर्ता हैं, प्रथम पूजनीय हैं। सनातन संस्कृति में हर शुभ कार्य का आरंभ ही गणपति के नाम से करने की परंपरा है। आज हम आपको अष्ट विनायक के 8 स्वरूपों की महिमा बताएंगे। चाहे आपके जीवन में रोगों ने डाला हो डेरा या फिर धन संपदा की हो गई हो कमी, आपको लगता हो शत्रुओं से भय या फिर हो कोई और परेशानी, ये सारी समस्याएं और विघ्न बाधाएं विघ्नहर्ता के दर्शन मात्र से दूर हो जाती हैं। माना जाता है कि गणपति के इन 8 स्वरूपों की उपासना करने से आपके सभी कष्टों का अंत हो सकता है।

0: वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। शुभता और मंगल के प्रतीक हैं गणपति, इसीलिए तो वे प्रथम पूजनीय हैं। हर उत्सव का आरंभ है। अपने स्वरूप से भक्तों को सीख देने वाले और हर समस्या का हल हैं मंगल मूर्ति। माता पिता तुम मेरे शरण गहूं में किसकी, ये पंक्तियां बताती हैं कि गणपति को प्रथम पूजे जाने का अधिकार क्यों दिया महादेव ने। धर्मग्रंथ कहते हैं कि जब भी देवों पर संकट आया तो गणपति ने अपनी बुद्धि से हर संकट का निवारण किया, इसीलिए तो वे बुद्धि के देव कहलाए। आज हम आपको बताएंगे गणपति के अंग अंग से क्यों बरसती है शुभता और भगवान गणेश के 8 स्वरूपों से कौन से वरदान प्राप्त किए जा सकते हैं। भगवान शिव और पार्वती के पुत्र श्री गणेश जीवन की समस्याओं को हल करने में सक्षम हैं, इसलिए उनकी पूजा सबसे पहले की जाती है। हालांकि इनके अनंत नाम और अनगिनत स्वरूप हैं, परंतु इनके 8 स्वरूप विशेष रूप से ऐसे हैं जो किसी भी व्यक्ति की कमजोरियों और परेशानियों को दूर करते हैं। अगर ये कमजोरियां दूर हो जाएं, तो व्यक्ति जीवन में हर प्रकार से उन्नति कर सकता है, यहाँ तक कि ईश्वर की उपलब्धि भी इन कमजोरियों के जाने के बाद प्राप्त हो सकती है। अपने कुशाग्र बुद्धि से सर्वप्रथम भगवान गणेश ने अपने माता पिता की परिक्रमा की और कार्तिकेय से पहले माता पिता के सम्मुख प्रस्तुत हो गए, इसलिए इन्हें सभी देवी देवताओं में सर्वप्रथम पूजनीय माना जाता है और इन्हें रोली मौली चावल धूप दीप मोदक और दूर्वा अर्पित की जाती है। भगवान गणेश को अष्ट विनायक भी कहा जाता है। कहते हैं कि अष्ट विनायक के मंदिरों की यात्रा करने वाला विशिष्ट गुणों और शक्तियों का अनुभव करता है। चलिए जानते हैं आखिर भगवान गणेश के ये 8 स्वरूप क्या कहते हैं।
1: अष्ट विनायक स्वरूप की गणेश जी 8 रूपों में हमें दर्शन देते हैं। 8 रूपों में हम कोई प्रकृति तो देख सकते हैं। 8 प्रकार के उनके कार्य हैं और 8 प्रकार के समस्याओं की मुक्ति के लिए जब कोई व्यक्ति विभिन्न प्रकार के कष्टों से मुक्त युक्त रहता है तब उससे मुक्ति पाने के लिए अष्ट विनायक के 8 अलग अलग रूपों का यदि दर्शन करता है, यानी किसी को कर्जा है, किसी का मुकदमा है, किसी की बीमारी है, किसी को काल मृत्यु भय है, किसी को गरीबी है, किसी को बच्चा नहीं हो रहा है, किसी का कोख बंधा हुआ है, तो ये प्रकार के विभिन्न प्रकार के स्वरूपों को यदि हम दर्शन करते हैं उसके अनुसार शास्त्र के अनुसार तो हमारी मनोकामना पूर्ण होती है।
0: भगवान गणेश की अनेक स्वरूपों में उपासना की परंपरा है। मुद्गल पुराण के अनुसार भगवान गणेश के अनेक अवतार हैं, जिनमें 8 अवतार प्रमुख हैं। हर अवतार का प्राकट्य अलग अलग असुरों के नाश के लिए हुआ था और इनकी अलग अलग उपासना करने से मनुष्य अपने मन की अलग अलग वृत्तियों पर नियंत्रण पा जाता है। कथा के अनुसार भगवान गणपति ने वक्रतुंड का स्वरूप एक राक्षस का वध करने के लिए रखा था। माना जाता है कि अगर आपसे कोई शत्रुता रखता हो तो गणपति के स्वरूप के पूजन से आपका कल्याण होगा। उनके स्वरूप की उपासना से ज्ञात अज्ञात शत्रु बाधा का भी अंत हो जाता है।
1: वक्रतुंड के अवतार की महिमा की गणेश जी का सुर मुड़ा हुआ है और लंबाई लिया हुआ है, उसमें सांपों के सेज पर बैठे हुए मुद्रा में आप कुछ जगहों पर देख सकते हैं, तो यह अष्टवक्र जो है तमाम प्रकार के कष्टों मुक्ति समस्याओं के लिए होता है। यदि आपको यदि कष्टों से मुक्ति पाना है, यदि मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो अष्टवक्र विनायक का यदि दर्शन करते हैं तो आपके जीवन में मोक्ष की भी प्राप्ति होती है।
0: भगवान गणेश का पहला अवतार वक्रतुंड का है। इस स्वरूप में श्री गणेश जी ने मत्सरासुर का अहंकार भंग किया था। यदि आप अपने शत्रुओं से परेशान हैं और विरोधियों ने जीना दूभर कर दिया है तो आप एक लाल आसन पर बैठकर पूर्व दिशा में मुंह करें और वक्रतुंडाय हूँ मंत्र का रुद्राक्ष की माला से 108 बार जाप करें। ऐसा करने से आपके विरोधी शांत होंगे। कथा के अनुसार भगवान गणपति को एक दंत का स्वरूप देने वाले श्रीहरि का अवतार परशुराम थे, जिनके फरसे के प्रहार से गणपति एक दंत कहलाए। माना जाता है कि उनके इस स्वरूप की उपासना करने से जीवन में बार बार आने वाले व्यवधानों का अंत हो जाता है।
1: एक दंत की महिमा ये कहती है कि कोई विद्यार्थी इनका पूजा करता है, कोई छात्र इनका पूजा करता है, कोई योग अभ्यासी इनका पूजा करता है तो उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। यह स्मरण शक्ति को तेज करता है, बालकों को बुद्धि देता है, शिक्षा दीक्षा में सफलता देता है, ज्ञान की वृद्धि करता है और ज्ञान के जो है चक्षु खुल जाते हैं, धर्म की प्राप्ति होती है, काम की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है और हर प्रकार के जो भी आप कष्ट से युक्त हैं वो कष्ट पूर्ण हो जाता है।
0: भगवान गणेश का दूसरा स्वरूप एक दंत का है। इस अवतार में उन्होंने मदासुर को पराजित किया था। इस अवतार में उनका वाहन मूषक बताया गया है। यदि आपके हर कार्य में बार बार रुकावट आती है तो आप उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके 27 बार ओम एक दंताय नमः का जाप करें, आपके हर कार्य का विघ्न दूर होगा। गणपति के स्वरूप से अहंकार भी नष्ट हो जाता है। गणपति ने असुर मोहासुर के अहंकार को नष्ट करके सृष्टि को अशांति से बचाया था और महोदर नाम पाया था। माना जाता है कि गणपति के स्वरूप की उपासना करने से आप ज्ञान के शिखर को छू सकते हैं।
1: उन्होंने एक राक्षस का वध किया था। वो राक्षस इतना प्रतापी था, इतना उपद्रवी था कि उसने धरती पर लोगों का जीना हराम कर दिया था, लोगों और देवताओं को भी उसने बहुत परेशान किया। तब भगवान गणेश ने यह रूप लेकर उसका जो है वध किया, तब से उनका नाम महादर पड़ा। स्वरूप है, यदि इनकी पूजा किया जाए तो ज्ञान अर्जन होता है, सम्मान अर्जन होता है, जीवन में सफलता मिलती है और व्यक्ति अपने जीवन में बहुत बड़ी सफलता प्राप्त कर लेता है।
0: भगवान गणेश का तीसरा स्वरूप महोदर का है, जिसमें श्री गणेश ने मोहासुर का गर्व भंग किया था। ये स्वरूप ज्ञान का स्वरूप है। यदि आप बहुत मेहनत के बाद भी विद्या और ज्ञान प्राप्त नहीं कर पा रहे तो आप भगवान गणेश के महोदर रूप की पूजा अर्चना करें। उन्हें हर सोमवार और बुधवार के दिन पीले फूल अर्पण कर ओम महोदराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। गणेश पुराण कहता है कि कलयुग के अंत में गणेश जी का धूम्रवर्ण अवतार होगा, जो अपनी सेना के साथ पापियों का विनाश करेगा। गणपति की महिमा अपार है। वे विघ्नों के विनाशक, बुद्धि और समृद्धि के देवता हैं। आगे हम बताएंगे गणपति के बचे हुए स्वरूपों की महिमा। तब तक आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार।
2: ऐसा माना जाता है कि गणपति की सेवा से बुद्धि का वरदान मिलता है। कहते हैं अष्ट विनायक के 8 रूपों के दर्शन से हर बाधा दूर हो सकती है। अभी आपने गणपति के वक्रतुंड, महोदर और एक दंत स्वरूप के दर्शन किए। अब आपको दर्शन करवाते हैं भगवान के गजानन, लंबोदर और विकट स्वरूप के, जिनके दर्शन मात्र से आपकी हर समस्या हो जाएगी छूमंतर।

0: गणपति की काया में ही संसार की माया का रहस्य छिपा है। सदाचार और संस्कार का पाठ पढ़ाता है उनका चरित्र। उनके बड़े कान, छोटी आंख और बड़ा पेट सुनने, एकाग्रता और रहस्यों को छुपाने का प्रतीक हैं। माना जाता है कि गणपति के चौथे स्वरूप गजानन की उपासना करने वाले व्यक्ति के जीवन से संक्रमण का नाश हो जाता है। उसके विचार शुद्ध होकर सात्विक होने लगते हैं। माना जाता है कि अगर आपको क्रोध आता हो, मन में मलिन विचारों ने डेरा जमाना शुरू कर दिया हो, तो ज्योतिष में इस समस्या को हल करने के लिए कौन सा महाप्रयोग बताया गया है जानते हैं।
1: गजानन यह शांति का, प्रसन्नता का, बुद्धि का यह स्वरूप है। यह माता के गोद में बैठे हुए बालक का स्वरूप है। यह सफलता को देता है। गजानन अवतार हमें ज्ञान देता है, हमें बुद्धि देता है और यह उत्पत्ति यानी माता ने अपने हाथों से गजानन को बनाया था और तब से गजानन नाम पड़ा और परिवार के लिए समर्पित रूप है। यदि बालक हो, परिवार हो, महिला हो, पुरुष, यदि कोई भी इनके रूप का दर्शन करता है तो उसके जीवन में उन्नति, प्रगति, सफलता प्राप्त होती है।
0: भगवान गणेश का चौथा स्वरूप गजानन का है। इसमें प्रभु ने लोभासुर का अहंकार भंग किया था। यदि आप अपने गुस्से और दूषित विचारों को खत्म करना चाहते हैं तो भगवान गणेश के ओम गजाननाय नमः मंत्र का 108 बार 40 दिन तक जाप करें। ऐसा करने से मन में शांति आएगी और क्रोध भी कम होगा। लंबोदर भगवान गणेश के विशाल पेट का प्रतीक है जो ज्ञान, समृद्धि और सभी दुखों को समाहित करने की क्षमता रखता है। लंबोदर की पूजा से धैर्य, शांति और संयम मिलता है। ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि अगर आपका कोई सामान लेकर न लौटा रहा हो या धन को हड़प कर बैठ गया हो तो गणपति के स्वरूप की उपासना से आपको अपना खोया धन हासिल हो सकता है।
1: जब गणेश जी लंबे सुर के साथ और उनका पेट निकला होता है और लंबोदर माने लंबे पेट वाला, जिनका पेट लंबा हो और जिनकी सुर लंबी हो और उनको लड्डू बहुत पसंद है, लड्डू का भोग लगाने वाला जो रूप है वो गणेश जी का वो लंबोदर कहलाता है। यह ज्ञान को दर्शाता है, यह भोजन को दर्शाता है। यानी जो भी आप भोग लगाएंगे उस दिन बुधवार के दिन यदि लड्डू का भोग लगाते हैं तो यह लंबोदर स्वरूप गणेश उसको स्वीकार करते हैं और आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं।
0: भगवान गणेश का पांचवा रूप लंबोदर स्वरूप में है। इस स्वरूप में भगवान श्री गणेश ने क्रोधासुर को परास्त किया था। ये स्वरूप शक्ति का है। यदि आपके अथक प्रयासों के बाद भी कोई व्यक्ति आपका धन ना लौटा रहा हो तो आप एक लाल आसन पर बैठकर पूर्व दिशा में मुंह करके ओम लंबोदराय नमः का 108 बार जाप करें और 5 मोदक भगवान गणपति को अर्पण करें। हनुमान जी की तरह गणपति भी संकटों का नाश करने वाले हैं। माना जाता है कि विकट गणेश की उपासना से दुर्लभ कार्य सिद्ध होते हैं, जीवन की बड़ी अड़चनें दूर होती हैं। साथ ही गणपति का विकट स्वरूप आपके परिवार पर आने वाली विकट समस्या को भी हल कर सकता है। भगवान गणेश के छठे रूप का नाम विकट है और इसमें उन्होंने कामासुर को परास्त किया था। इस रूप में मोर इनका वाहन है। यदि आपके परिवार पर अचानक कोई मुसीबत आ जाए तो परिवार के सभी सदस्यों को अपने दाएं हाथ में दूरवा लेकर ओम विकटाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करके दूरवा भगवान गणपति को अर्पण करनी चाहिए। तो ज्योतिष में बताए ये महा उपाय अपनाकर आप भी संकटों का अंत कर सकते हैं। आगे हम जानेंगे गणपति के सातवें और आठवें स्वरूप की महिमा।
2: तो आज आज हम आपको दर्शन करवा रहे हैं गणपति के 8 स्वरूपों के, जिनकी उपासना से ही भक्तों का कल्याण हो जाता है। अब आपको दर्शन करवाते हैं गणपति के विघ्नराज और धूम्रवर्ण स्वरूप के, जिनकी महिमा है अपरंपार। देखिए।

पार्वती नंदन के अलग अलग स्वरूपों से होगा आपका वंदन, क्योंकि बुद्धिदाता सुख समृद्धि के साथ ही देते हैं ज्ञान का वरदान। जीवन में छाया हो क्लेश या दूर करना हो अहंकार, तो ये सब गणपति की उपासना से ही दूर होगा। साथ ही अगर घर में हो रहा है धन धान्य का अभाव, तो गणपति का सातवां स्वरूप आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। चलिए जानते हैं गणपति के विघ्नराज स्वरूप की महिमा। भगवान गणेश का सातवां स्वरूप विघ्नराज का है। इस स्वरूप में उन्होंने ममतासुर का अहंकार नष्ट किया था। यही श्री विष्णु का स्वरूप है। यदि आपके घर में अन्न और धन की बरकत नहीं है, तो आप भगवान गणेश के विघ्नराज रूप के वंदना करें। हर रोज सुबह के समय ओम विघ्नराजाय नमः नमः मंत्र का 27 बार जाप करें। छोटे बच्चों में मोदक बांटें। कहते हैं कि उत्तम स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। अगर आपके पास संसार का सारा वैभव है, लेकिन सेहत को लेकर अगर आप परेशान हैं, तो कीजिए गणपति के धूम्रवर्ण स्वरूप का आह्वान। माना जाता है कि गणपति का ये स्वरूप आपको निरोगी रखेगा। भगवान गणेश का आठवां स्वरूप धूम्रवर्ण का है, जिसमें उन्होंने अभिमानासुर को परास्त किया था। ये शिव का स्वरूप है। यदि आप काफी समय से बीमार हैं और दवा का असर नहीं हो रहा है, तो आप शाम के समय कुशा के आसन पर बैठकर रुद्राक्ष की माला से ओम धूम्रवर्णाय नमः मंत्र का 3 बार जाप करें। ऐसा करने से आप अपने आप को जल्दी स्वस्थ महसूस करने लगेंगे। तो देखा आपने, ज्योतिष में बताए ये महा उपाय करके आप अपने परेशानियों का अंत कर सकते हैं।

तो विघ्नहर्ता आपके सारे विघ्न हरें और करें आपका कल्याण, इसी कामना के साथ हम लेंगे इजाजत। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा जीएनटी।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
6: गुड न्यूज टुडे लगातार दर्शकों से अपील कर रहा है कि आप भी जीएनटी पर मनाए जा रहे इस उत्सव से जुड़िए।

0: इसके लिए बस आपको इतना सा करना है कि अपने घर पधारे गजानन का वीडियो बनाकर हमें भेजना है, हम उन वीडियोस को दुनिया तक पहुंचाएंगे। हमारे पास लगातार दर्शकों की वीडियोस पहुंच रहे हैं। तस्वीरें देखिए, गुजरात के आणंद से मितुल पाठक ने हमें गणेशोत्सव का वीडियो भेजा है, जहां पर घर में बप्पा की मनमोहक प्रतिमा स्थापित की गई। बप्पा की प्रतिमा को भव्य तरीके से सजाया गया है, गजानन को फलों और मिष्ठान का भोग भी लगाया गया है, भक्त ने भगवान गजानन का श्रृंगार किया। देखिए बप्पा की दूसरी तस्वीर राजस्थान के जयपुर से कृतिका महावर ने भेजी, और जिसमें भक्ति के भाव से बप्पा का अद्भुत श्रृंगार किया गया। गणेशोत्सव पर घर के ही मंदिर में विराजे भगवान गजानन का भव्य श्रृंगार किया गया, जिसमें फूलों के साथ रंग बिरंगी लाइटिंग से सजावट की गई है। गजानन के सिर पर भव्य मुकुट बप्पा की शोभा और बढ़ा रहा है। अब आपको बता देते हैं, जापान में चल रहे एशियाई खेलों में आज भारत का प्रदर्शन कैसा रहा। देखिए, एशियाई खेलों के क्रिकेट मुकाबले में भारतीय महिला टीम गोल्ड मेडल से बस एक कदम अब दूर है। टीम इंडिया ने बांग्लादेश को सेमीफाइनल्स में धो डाला, और अब गोल्ड मैच में भारतीय टीम श्रीलंका से भिड़ने जा रही है। इससे पहले विमेंस 10 मीटर एयर राइफल इंडिविजुअल फाइनल इवेंट में भारत की इला वेनिल ने सिल्वर मेडल अपने नाम कर लिया, जबकि आज ही भारतीय महिला शूटर्स की टीम ने 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट में रजत पदक अपने नाम कर लिया है। वहीं पर देखिए, मिक्स्ड मार्शल आर्ट में भी भारतीय टीम ने कांस्य पदक अपने नाम किया है। राजस्थान के जोधपुर में भारत और जापान का संयुक्त अभ्यास वीर गार्जियन 2026 चल रहा है। यह अभ्यास 9 सितंबर से 22 सितंबर 2026 तक राजस्थान के जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन पर आयोजित किया जा रहा है। इसमें खास बात देखिए यह है कि आज जापान के एयर चीफ जनरल ताके हिरो मोरिता और भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल एपी सिंह ने स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस में उड़ान भरी है, और तेजस में दोनों देशों की वायुसेना प्रमुखों की इस उड़ान ने भारत जापान रक्षा साझेदारी, इंटर ऑपरेटेबिलिटी और रणनीतिक संबंधों को नई ऊंचाई दी है। इस 14 दिवसीय अभ्यास में भारत के तेजस, राफेल, सुखोई 30 MKI और जापान के F-21 विमान जटिल ऑपरेशन मिशनों को अंजाम देंगे। राजस्थान में प्रसिद्ध कृष्ण धाम श्री सांवरिया सेठ जी के मंदिर में एक श्रद्धालु ने अनोखा चढ़ावा चढ़ाया है। निम्बा हेड़ा के एक व्यापारी ने धर्मराज बंजारा ने अपने कारोबार में मिली सफलता से खुश होकर भगवान के चरणों में करीब प्राइवेट सीमेंट प्लांट का एक मॉडल अर्पित किया। तस्वीरें देखिए, सीमेंट प्लांट का ये मॉडल जो है 1 किलो 200 ग्राम चांदी से पूरी तरीके से बना हुआ है, और इसकी कीमत जो है 2,40,000 रुपये बताई जा रही है। कारोबार में कामयाबी के बाद कारोबारी ने भगवान को ये भेंट अर्पित की। अपने संकल्प को पूरा करने के लिए धर्मराज पंचारा ने अपने परिवार, रिश्तेदारों और मित्रों के साथ निम्बाहेड़ा से मंदिर तक की पैदल यात्रा भी पहुंचकर दर्शन के बाद उन्होंने चांदी से बना सीमेंट प्लांट का मॉडल जो है बकायदा भगवान सांवरिया सेठ के चरणों में भेंट किया। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह के लिए डबल सेलिब्रेशन का मौका आ गया है। जी हाँ, दीपिका एक बार फिर से उन्होंने बच्ची को जन्म दिया है। दोनों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए फैंस के साथ ये खुशखबरी शेयर की। अब उनकी बड़ी बेटी दुआ को एक छोटी बहन मिल गई है, और खास बात यह है कि एक दिन पहले ही दीपिका और रणवीर अपने परिवार के साथ मुंबई के लालबाग चौराहा पंडाल में और सिद्धिविनायक मंदिर में बप्पा के दर्शन करने के लिए पहुंचे थे।
1: दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह के घर पर एक बार फिर से किलकारी गूंज रही है। दीपिका और रणवीर एक बार फिर से पेरेंट्स बन गए हैं। दीपिका पादुकोण एक बार फिर से बेटी की मां बनी हैं। इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए उन्होंने ये खुशखबरी शेयर की। हालांकि उन्होंने बेटी के जन्म की जानकारी को बेहद पर्सनल रखने की कोशिश की, और सोशल मीडिया पर इस अनाउंसमेंट को बहुत सादगी पूर्ण तरीके से शेयर किया। इसके साथ ही उन्होंने नजर बट्टू वाली इमेज भी शेयर की है। खास बात ये है कि दीपिका और रणवीर की दूसरी बिटिया का जन्म 19 सितंबर को हुआ, जब देश भर में राधा अष्टमी का पावन पर्व मनाया जा रहा था। साथ ही ये भी अहम है कि इस वक्त गणेशोत्सव चल रहा है, और बेटी के पैदा होने से एक ही दिन पहले दीपिका और रणवीर गणपति के दर्शन करके उनका आशीर्वाद लेने पंडालों में भी पहुँचे थे। 18 सितंबर को वे लाल बागचा राजा के पंडाल में पहुंचे थे, साथ ही सिद्धि विनायक के दरबार में भी उन्होंने हाजिरी लगाई थी। इस दौरान रणवीर दीपिका का हाथ थामे उनके साथ मंदिर के अंदर जाते हुए नजर आईं। दोनों को मंदिर में देखकर फैंस ने एक्ट्रेस की डिलीवरी के कयास लगाने शुरू कर दिए थे। बताया जाता है कि 2024 में भी अपनी पहली संतान के जन्म से पहले दोनों सिद्धि विनायक मंदिर पहुंचे थे और अब 2026 में दूसरे बेबी का वेलकम करने से पहले भी दीपिका रणवीर गजानन के दर्शन करना नहीं भूले। बापा का आशीर्वाद लेने के ठीक एक दिन बाद ही उन्होंने अपनी दूसरी बेटी के जन्म की खुशखबरी सुनाई। बता दें 8 सितंबर 2024 को दीपिका और रणवीर की बड़ी बेटी दुआ का जन्म हुआ था और अब इस बार 19 सितंबर को उनके घर में एक और लाडली बिटिया रानी खुशियां लेकर आई है। दीपिका की दोनों बेटियों का जन्म सितंबर महीने में हुआ और इसे भी खूबसूरत संयोग माना जा रहा है। दीपिका और रणवीर ने इसी साल अप्रैल में एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताया था कि वो एक बार फिर से पेरेंट्स बनने वाली हैं। इसके बाद से ही उनके दूसरे बेबी का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था और अब दीपिका और रणवीर के घर एक और नन्ही परी आई है। तो बॉलीवुड और फिल्म इंडस्ट्री से लेकर तमाम दोस्त, शुभचिंतक और फैंस उन्हें खूब बधाइयां दे रहे हैं। मुंबई से भावना अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
11: एवरेस्ट तीखा लाल, सही तीखा सही लाल।
0: गोल्ड मेडल से बस एक कदम दूर भारतीय महिला क्रिकेट टीम एशियन गेम्स में बांग्लादेश को 114 रनों से हराया, शेफाली वर्मा ने 49 गेंदों में लगाई सेंचुरी। एशियन गेम्स में भारत को शूटिंग में मिला दूसरा सिल्वर मेडल। एला बेनिल वलारिवन ने 10 मीटर एयर राइफल में किया कमाल। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में भी पदक पकड़ा। गुजरात के अंबाजी धाम में आस्था का महोत्सव। विधि विधान से भादरवी महामेले का शुभारंभ। करीब 40 लाख श्रद्धालुओं का अनुगमन। इस बार गणपति उत्सव की रौनक। अमरावती के गणपति पंडाल में खाडू श्याम मंदिर की भव्य झांकी। पुणे के गणेश मंदिर का भव्य श्रृंगार। मेरठ में एयर शो दूसरा और आखिरी दिन। सूर्य किरण एरोबैटिक टीम ने दिखाया हैरतअंगेज करतब। बड़ी संख्या में दीदार करने के लिए पहुंचे लोग।

नमस्कार, मैं हूँ सरगम पंच श्रीवास्तव और आज के हमारे स्पेशल शो में बात होगी फिल्म हनुमान अंश के बॉलीवुड पर पड़ रहे असर की। देखिए, विशाल चतुर्वेदी के निर्देशन में बनी हनुमान अंश को दर्शकों से ऐसा रिस्पांस मिला है जिसकी कल्पना खुद मेकर्स ने भी शायद नहीं की होगी। शुरुआती दो हफ्तों में कछुए की रफ्तार से चल रही इस फिल्म ने अचानक ऐसी रफ्तार पकड़ी कि देखते ही देखते 300 करोड़ रुपए के क्लब में ये फिल्म शामिल हो गई है। देखिए, फिल्म को रिलीज हुए एक महीने से ज्यादा का समय हो गया है और अब भी दर्शकों में से लेकर जो उत्साह है वो बरकरार है। लेकिन हनुमान अंश की सफलता से आने वाले दिनों में सिनेमाघरों में आस्था और भक्ति भाव से भरी फिल्मों की जो लाइनें हैं वो भी लगने वाली हैं। देखिए, आप टीवी स्क्रीन पर उन फिल्मों के नाम देख सकते हैं जिनके बारे में मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, क्योंकि हनुमान अंश एक तरीके से केस स्टडी हो गई है और इसे फॉलो करते हुए अब बाकी फिल्में भी खास तौर पर इसी थीम पर बन रही फिल्में आने वाली हैं। देखिए, महाकाव्य श्री रामायण कथा श्री राम की ये फिल्म हो या फिर वाल्मीकि रामायण, रामायण पार्ट वन, चिरंजीवी हनुमान द इटर्नल, महाअवतार परशुराम, श्रीमद् भागवत पार्ट वन, विष्णुरथ, कृष्णावतारम पार्ट टू, करण जौहर की फिल्म राधा कृष्ण, इसको लेकर तो बस भी पिछले काफी समय से है, प्रेमानंद जी महाराज पर राधा अंश, छठ पूजा पर द वन, तेरा साईं, हारे का सहारा, बाबा खाटू श्याम हमारा, महाकाली जैसी फिल्म जो है वक्त वक्त पर रिलीज होंगी। तो देखिए, यूं कहें तो हनुमान अंश ने बॉलीवुड का जो ट्रेंड है वो बदल करके रख दिया है और अब आने वाले समय में हनुमान अंश को फॉलो करते हुए इसी तरीके की कई फिल्में आने वाली हैं।

0: 2 करोड़ का छोटा बजट और कमाई 300 करोड़ के पार। बात हनुमान अंश फिल्म की हो रही है। फिल्म हनुमान अंश ने बॉक्स ऑफिस को हिलाकर रख दिया है। कई बड़े बजट की फिल्मों को पछाड़ते हुए देश की पहली सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाली फिल्म भी बन गई है। बाबा नीब करौरी पर बनी हनुमान अंश फिल्म रिलीज के बाद शुरुआती 2 हफ्तों में कछुए की रफ्तार से चल रही थी, लेकिन फिल्म ने अचानक ऐसी रफ्तार पकड़ी कि देखते ही देखते 300 करोड़ क्लब में शामिल हो गई। फिल्म को रिलीज हुए 1 महीने से ज्यादा हो गया है और अभी भी दर्शकों में वैसा ही उत्साह बरकरार है। हनुमान अंश फिल्म की सफलता का मुख्य राज मजबूत कंटेंट, दर्शकों का आध्यात्मिक जुड़ाव और सकारात्मक मौखिक प्रचार को बताया जा रहा है। जब फिल्म रिलीज हुई थी तो पहले हफ्ते में ही लगने लगा था कि फिल्म डूब जाएगी। दूसरे हफ्ते में भी फिल्म ने कुछ खास कमाल नहीं दिखाया। फिल्म मेकर्स भी निराशा के बवंडर में डूबने लगे थे। तभी चमत्कार होना शुरू हुआ और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अपना करिश्मा दिखाना शुरू कर दिया, जो अभी तक जारी है। बॉलीवुड में अक्सर ऐसा देखा गया है कि किसी खास विषय पर बनी फिल्म अगर सफलता का परचम लहराती है तो कई फिल्म मेकर्स उसी राह पर चल निकलते हैं। मान लीजिए अगर कोई रोमांटिक या एक्शन फिल्म हिट हो जाती है तो अन्य मेकर्स उसी तरह की फिल्मों को बनाने में लग जाते हैं। कुछ ऐसा ही अब बॉलीवुड में दिखने लगा है।
1: हनुमान अंश का बॉक्स ऑफिस सफर बिल्कुल आसान नहीं था। 10 लाख से ओपनिंग की शुरुआत के बाद ऐसा वक्त आया कि जब थिएटर्स ने ये फिल्म के शोज को रिड्यूस कर दिया था, घटा दिया था, लेकिन स्ट्रॉन्ग वर्ड ऑफ माउथ के बाद ये पिक्चर ऐसी चली कि आज 300 करोड़ कमा चुकी है। बॉक्स ऑफिस पर अब ऑडियंस जा ही रही है और अब ये छोटी सी फिल्म 300 करोड़ का वर्ल्ड वाइड बिजनेस करके बॉलीवुड के लिए एक इंटरेस्टिंग सवाल खड़ा करती है। क्या डिवोशनल और फेथ बेस्ड सिनेमा के लिए ऑडियंस का एपिटाइट बढ़ रहा है? क्या फिल्म मेकर्स अब इस जॉनर को और ज्यादा फोकस देंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हनुमान अंश ने बॉक्स ऑफिस पर एक नया ट्रेंड सेट कर दिया है?
0: आने वाले दिनों में थिएटर में कई और भक्ति वाली फिल्में रिलीज होने वाली हैं, क्योंकि बॉलीवुड के कई जाने माने प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भक्ति फिल्मों का ऐलान कर रहे हैं।
2: पहले हफ्ते में, दूसरे हफ्ते में काफी लो थे इसके कलेक्शंस भी, लेकिन धीरे धीरे वर्ड ऑफ माउथ से ये फिल्म बढ़ी है और अब तो सब जगह इसकी चर्चा है। इसका वीकेंड का कलेक्शन जो है वो करीब 20-25 करोड़ के ऊपर जा रहा है। हर रोज इसका कलेक्शन बढ़ते जा रहा है और ये मिरेकल ही हम कहेंगे, बहुत बड़ा चमत्कार है। और इस तरीके से जो अब लोगों ने इस भक्ति भाव की फिल्म को देखने का नजरिया बदला है, ये बहुत ही पॉजिटिव चेंज है। अब बॉलीवुड को समझ में आने लगा है कि जिस तरीके से पहले राजा हरिश्चंद्र से लेकर रामायण से लेकर हमारे देश में भक्ति पे फिल्में बनती थी, जिसमें जय संतुष्टि माता थी जो 1975 में आई थी शोले के कंपटीशन में और वो इतनी जबरदस्त चली थी, उसके अलावा मनोज कुमार साहब ने साई बाबा पे फिल्म बनाई थी वो चली थी, उसका म्यूजिक अच्छा था। और अब गुजराती में एक फिल्म है लाड़ो जो पिछले साल चली, जिसने 100 करोड़ का बिजनेस किया। और उसी तरीके से हनुमान हंस जो कि 2 करोड़ की फिल्म है, अगर वो इस वक्त 325 करोड़ कर चुकी है और 350 करोड़ के ब्रैकेट में जा रही है और जिस तरीके से उसका वर्ड ऑफ माउथ है, उससे मुझे लगता है कि 400 करोड़ के भी बॉक्स में ये चले जाएगी। तो इसका सीधा सा मतलब है कि भक्ति भाव और श्रद्धा वाली फिल्में अब चलने लगी है, लोगों को ये पसंद आने लगी है और बॉलीवुड का रुख अब भक्तिभाव की फिल्मों की तरफ बढ़ने लगा है।
0: हनुमान अंश में मेकर्स ने भी फिल्म के दूसरे पार्ट का ऐलान किया है। फिल्म नीब करौरी बाबा के जीवन पर बनी है। देश के सबसे बड़े क्रिकेटर विराट कोहली और अनुष्का शर्मा से लेकर कई विदेशी सेलेब्स भी नीब करौरी बाबा के भक्त हैं। ऐसे में खबरें हैं कि मेकर्स सेलेब्स को इस फिल्म में कैमियो के लिए अप्रोच कर रहे हैं, हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। हनुमान अंश का पार्ट 2 भी आएगा, ऐसा कंफर्म माना जा रहा है।
2: हनुमान अंश एक्चुअली नीम करौली बाबा की ट्रिलॉजी ही थी ये बेसिकली, जिसका एक ही पार्ट अभी आया है। उसके 2 पार्ट जिसमें आगरा और मथुरा का चैप्टर आएगा वो ऑलरेडी अब बनने वाला है, क्योंकि फिल्म ने अपार सफलता पाई है। इसके अलावा फिर हम देखो तो रामायण आएगी जो कि दिवाली में आएगी, रामायण पार्ट 1, उसको लेकर भी काफी एक्साइटमेंट है क्योंकि उसमें बहुत बड़ी स्टार कास्ट है।
0: फिल्म के डायरेक्टर डॉक्टर विशाल चतुर्वेदी ने फिल्म हनुमान अंश के पार्ट टू की घोषणा की है। पार्ट टू में कैची धाम की कहानी भी दिखाई जाएगी। नीव करोरी बाबा 1960 के दशक की शुरुआत में कैची पहुंचे थे और 15 जून 1964 को हनुमान मंदिर और आश्रम की स्थापना हुई थी। जीवन के अंतिम वर्षों में कैची उनका प्रमुख आध्यात्मिक केंद्र रहा। डायरेक्टर विशाल चतुर्वेदी 2006 के आसपास अपनी पोस्टिंग के दौरान कई बार कैची धाम गए थे। यही उनका पहली बार नीव करोली बाबा के शिक्षाओं से परिचय हुआ। इस अनुभव का उन पर गहरा असर पड़ा और करीब दो दशकों बाद यही जुड़ाव हनुमान अंश की कहानी की प्रेरणा बना। नैनीताल में भवाली के पास शिप्रा नदी के किनारे स्थित कैची धाम नीव करोली बाबा से जुड़े प्रमुख आध्यात्मिक स्थलों में शामिल है। नैनीताल में उनसे जुड़े चार प्रमुख धाम बताए जाते हैं, कैची धाम, काकड़ी घाट, हनुमान गढ़ी और भूमि आधार। एप्पल कंपनी के को फाउंडर स्टीव जॉब्स से लेकर फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग तक बाबा नीव करौरी के कैची धाम में दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं। हॉलीवुड एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स ने एक इंटरव्यू में बताया था कि नीव करौली बाबा की एक तस्वीर देखकर उनकी हिंदू धर्म में रुचि जागी थी। विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, मनोज वाजपेयी तक बाबा के आश्रम पहुंच चुके हैं। हनुमान अंश के दूसरे पार्ट में कैची धाम के महत्व और महिमा को विस्तार से दर्शाया जाएगा। हनुमान अंश की कहानी फिल्म के डायरेक्टर डॉक्टर विशाल चतुर्वेदी की लिखी किताब पर आधारित है। हनुमान अंश के डायरेक्टर विशाल चतुर्वेदी ने एक और फिल्म का ऐलान किया है। फिल्म का नाम भी तय हो गया है, राम बोला। ये हनुमान अंश में साथ काम कर चुके महावीर जैन फिल्म्स के साथ ही विशाल चतुर्वेदी बनाएंगे। इस फिल्म में भारतीय इतिहास के सबसे महान कवियों और आध्यात्मिक पुरुषों में से एक महाकवि गोस्वामी तुलसीदास के जीवन और यात्रा को दिखाया जाएगा। फिल्म में उनके जीवन से जुड़े उन पहलुओं को सामने लाने की कोशिश होगी जिन्होंने उन्हें भारतीय साहित्य और भक्ति परंपरा का एक महत्वपूर्ण नाम बनाया है। जीवन के कई अनदेखे पहलुओं को भी दिखाने की कोशिश की जाएगी। फिल्म को लेकर फिलहाल कलाकारों और रिलीज डेट से जुड़ी ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है।
2: हनुमान अंश की अपार सफलता के बाद जो डायरेक्टर थे हनुमान अंश के विशाल चतुर्वेदी, वो अब नई फिल्म बनाने जा रहे राम बोला, जो कि आचार्य तुलसीदास जी जिन्होंने रामचरितमानस लिखा था उनकी जीवनी पर है और इनको महावीर जैन प्रोड्यूस कर रहे हैं। वो ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी है। उसके अलावा हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम हमारा, ये भी एक बहुत बड़ी फिल्म है जो कि अनाउंस हुई है। तो ये हो गया है कि सफलता जो हनुमान अंश को मिली है उससे बहुत सारी फिल्में अनाउंस हुई है। छोटे मोटे प्रोडक्शन हाउस ने भी बनाए हैं और जो रेप्यूटेड प्रोडक्शन हाउसेज हैं उन्होंने भी अनाउंसमेंट किए, जिसमें तेरा साई करके फिल्म आ रही है जिसमें संजय मिश्रा है। उसके अलावा श्रीमद भागवतम करके फिल्म है जो कि सागर फिल्म्स जिन्होंने पहले महाभारत बनाई थी, रामायण बनाई थी, वो बना रहे हैं। उसके अलावा करण जौहर का प्रोडक्शन हाउस भी राधा और कृष्ण पे फिल्म बनाने जा रहा है, उसके ऊपर भी काफी चर्चाएं हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो बोलबाला चल रहा है हनुमान अंश की सफलता के बाद, ये बड़ा अच्छा है। अब लोग चैतन्य महाप्रभु भी फिल्म बनाने वाले हैं और ऑलरेडी हम कल्कि बना चुके हैं, कल्कि का सीक्वल आने वाला है। तो ऐसे में जब हम देखते हैं कि श्रद्धा और भक्ति की फिल्में बॉलीवुड को पसंद आने लगी और बॉलीवुड का रुख अब उस तरफ होने लगा है, तो ये बड़ी खुशी की बात।
0: आपको बता दें कि गोस्वामी तुलसीदास का नाम राम बोला दुबे था। कहा जाता है कि उन्हें स्वयं प्रभु हनुमान के दर्शन हुए थे और उन्हीं के निर्देश के बाद तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी। मुंबई से अनीता ब्रिटो के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: देखिए, हनुमान अंश की कामयाबी ने सिर्फ बॉक्स ऑफिस के आंकड़े नहीं बदले हैं बल्कि बॉलीवुड के फिल्म मेकर्स का मूड भी बदल दिया है। देखिए, रामायण से लेकर कृष्ण, हनुमान से लेकर परशुराम और संतों के जीवन तक फिल्म इंडस्ट्री में कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर अब इसके बाद काम चल रहा है।

0: ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि फिल्म हनुमान अंश की सफलता के बाद पौराणिक और धार्मिक फिल्मों को लेकर दर्शकों का रुझान बढ़ रहा है, इसलिए बॉक्स ऑफिस पर भक्ति से जुड़ी फिल्मों की ऑडियंस बढ़ रही है। इसी साल यानी 2026 में महाकाव्य रामायण पर आधारित एक या दो नहीं बल्कि तीन बड़ी फिल्में सिनेमा घरों में रिलीज होने जा रही हैं।
1: अब बॉलीवुड जागृत हो गया है कि ऐसी फिल्में बनाई जाएं जो श्रद्धा पे हो, और हनुमान अंश ने सारे के सारे पैरामीटर्स भक्ति की फिल्मों को देखने का नजरिया बदल दिया है, और इसलिए अच्छा म्यूजिक और अच्छी कहानी लेकर अब लोग माइथोलॉजी की फिल्में, रिलीजियस फिल्में, वो फिल्में जहां पर वो अपनी श्रद्धा को दिखा सके, ऐसी फिल्में बनने का फिर से बोलबाला शुरू हो चुका।
0: सबसे पहले इसी महीने 25 सितंबर को महाकाव्य श्री रामायण कथा श्री राम की सिनेमा घरों में रिलीज होने जा रही है। अभिषेक सिंह के डायरेक्शन में बनी यह हिंदी फिल्म रामायण की कहानी को नई पीढ़ी तक पहुंचाने की कोशिश करती दिखाई देगी। फिल्म में देव शर्मा भगवान राम और अंजलि अरोड़ा माता सीता की भूमिका में नजर आएंगी, जबकि रावण का रोल रजनीश दुग्गल निभाते नजर आएंगे। फिल्म के डायलॉग्स और गाने जयदेव जानेवाल ने लिखे हैं, जबकि संगीत देव आशीष ने दिया है। कच्चा बादाम वाली अंजलि अरोड़ा ने रामायण में माता सीता का किरदार निभाया है।

0: इस फिल्म के रिलीज होने के कुछ ही दिनों बाद 2 अक्टूबर 2026 को वाल्मीकि रामायण नाम की फिल्म रिलीज होगी। जैसा कि नाम से साफ है, फिल्म का आधार महर्षि वाल्मीकि की रामायण है। इसमें रामायण की कहानी को सिनेमाई अंदाज में पेश किया जाएगा। फिल्म का निर्देशन भावना तलवार ने किया है। मशहूर सिनेमेटोग्राफर विनोद प्रधान ने फिल्म की सिनेमेटोग्राफी की है। इसकी कहानी और पटकथा आनंद नीलकंठन ने लिखी है, जबकि डायलॉग्स डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने लिखे हैं।
1: तुम्हारा नया राजा।
0: रामायण पर बनने वाली तीसरी और सबसे बड़ी फिल्मों में नितेश तिवारी की रामायण पार्ट 1 शामिल है। ये फिल्म 6 नवंबर 2026 को सिनेमा घरों में दस्तक देगी। नमित मल्होत्रा के प्रोडक्शन में इस फिल्म को बड़े स्तर पर बनाया जा रहा है। फिल्म को 2 हिस्सों में रिलीज किया जाएगा और इसे भारत के साथ साथ दुनिया भर के दर्शकों तक पहुँचाने की तैयारी है।
2: तीनों लोकों में एक ही राज होगा।

0: जब जब सृष्टि पर संकट आया भगवान विष्णु ने अवतार लेकर
1: फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम और साई पल्लवी माता सीता के किरदार में नजर आएंगी। रवि दुबे लक्ष्मण और सनी देओल हनुमान की भूमिका निभा रहे हैं। साउथ की फिल्मों के सुपरस्टार यश फिल्म में रावण का किरदार निभाएंगे। इसके अलावा अरुण गोविल दशरथ लारा दत्ता केकई और रकुल प्रीत सिंह शूर्पणखा के रोल में नजर आएंगी। फिल्म में और भी कई बड़े कलाकार अलग अलग किरदार में दिखेंगे। फिल्म की कहानी और स्क्रीन प्ले श्रीधर राघवन और नितेश तिवारी ने तैयार किया है। इसके डायलॉग्स नितेश तिवारी और श्रेयस जैन ने लिखे हैं। फिल्म के गाने कुमार विश्वास ने लिखे हैं और संगीत की जिम्मेदारी ऑस्कर विजेता एआर रहमान और हर्ष जिमर ने संभाली है।
2: एक पुत्र होने के नाते अपने पिता के वचन का पालन करना मेरा कर्तव्य है।
3: तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास। वचन का क्या जो आपने मुझे विवाह के समय दिया था? अब हमारा भाग्य एक है और भाग्य में जो भी लिखा है मुझे स्वीकार है।

एआई तकनीक से बनाई गई फिल्म चिरंजीवी हनुमान द इटरनल की पहली झलक सामने आ गई है। भगवान हनुमान की कहानी कहती है फिल्म 2026 में ही सिनेमा घरों में रिलीज होनी है। चिरंजीवी हनुमान द इटरनल को सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली भारत की पहली एआई द्वारा निर्मित फिल्म बताया जा रहा है। हालांकि अभी फिल्म के रिलीज डेट सामने नहीं आई है। 1:11 के स्वस्थ ग्लिम्स वीडियो की शुरुआत में झरना और खूबसूरत वादियां दिखती हैं। इसके बाद पर्वतीय गुफाओं के पार पवन पुत्र हनुमान की छवि दिखती है। जंगलों के बीच से कैमरे की जबरदस्त मूवमेंट के बाद पवन पुत्र हनुमान को हवा में विचरण करते हुए दिखाया जाता है। हाथों में गदा लिए हनुमान जी को अभी सिर्फ पीछे से दिखाया गया है, उनका चेहरा अभी सामने नहीं आया है। बैकग्राउंड में हनुमान चालीसा की पंक्तियां भी सुनाई देती हैं। पहली झलक दिखाता है ये वीडियो फिल्म को लेकर दर्शकों को उत्साहित जरूर करता दिख रहा है। चिरंजीवी हनुमान को नेशनल अवार्ड जीतने वाले निर्देशक राजेश मापुस्कर ने निर्देशित किया है, जबकि फिल्म का निर्माण आलोक जैन, अजित अंधारे, विजय सुब्रमण्यम और विक्रम मल्होत्रा ने स्टार स्टूडियो 18 के सहयोग से किया है। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि फिल्म को 2026 में हनुमान जयंती के मौके पर सिनेमा घरों में रिलीज किया जा सकता है। जय हो।

0: सिनेमा प्रेमियों को केजीएफ, सालार और कांतारा जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में देने वाले कोमले फिल्म्स ने परशुराम जयंती के अवसर पर फैंस को तोहफा दिया है। फिल्म महाअवतार परशुराम का पहला पोस्टर और टीजर साझा किया गया है। भगवान विष्णु के 10 अवतारों पर आधारित 7 भागों वाले एनिमेटेड महाअवतार सिनेमैटिक यूनिवर्स की है दूसरी फिल्म है। इससे पहले फिल्म महाअवतार नरसिम्हा काफी पसंद की गई थी। ये एक 3D एनिमेटेड फिल्म होगी जिसमें एक्शन और ड्रामा होगा। भारत के सबसे बड़े सिनेमैटिक यूनिवर्स का यह दूसरा हिस्सा अश्विन कुमार के निर्देशन में बन रहा है। फिल्म के दिसंबर 2027 में रिलीज होने की उम्मीद है। बॉलीवुड में आज तक सैकड़ों धार्मिक और पौराणिक फिल्में बनी हैं, लेकिन आज तक कोई निर्माता निर्देशक श्रीमद् भागवत को पहले पर्दे पर साकार नहीं कर सका है, लेकिन अब ये बड़ा कारनामा होना तय हो गया है। श्रीमद् भागवतम के पहले पार्ट श्रीमद् भागवतम पार्ट 1 विष्णु रथ का पहला टीजर पोस्टर जारी कर दिया गया है। रमानंद सागर के पोते आकाश सागर और अमृत सागर के सह निर्देशित पोस्टर में भगवान श्री कृष्ण के हाथ की एक झलक दिख रही है। फिल्म में भगवान श्री कृष्ण की कहानी बताई जाएगी। उम्मीद की जा रही है कि ये फिल्म भी अगले साल रिलीज होगी।
1: दूसरों से नहीं जीते जाते, मन जीतना पड़ता है।
2: कृष्णा
0: इस साल भगवान कृष्ण पर एक फिल्म आई थी, कृष्ण अवतारम। ये फिल्म इसी साल रिलीज हुई थी। फिल्म में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को दिखाया गया था। कृष्ण अवतारम को दर्शकों का खूब प्यार भी मिला था। अब मेकर्स ने इसके सीक्वल यानी दूसरा पार्ट का ऐलान किया है जो साल 2028 में रिलीज होगा।

0: हार्दिक गज्जर के निर्देशन में बनी कृष्ण अवतारम पार्ट 1 द हार्ट 7 मई को सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में सिद्धार्थ गुप्ता ने कृष्ण, सुष्मिता भट्ट ने राधा, निवाशनी कृष्णन ने रुक्मणी और संस्कृति जयाना ने सत्यभामा की भूमिका निभाई थी। रोमांस, रिश्तों और फैमिली ड्रामों की फिल्में बनाने वाले करण जौहर अब राधा कृष्ण की दिव्य प्रेम कहानी को बड़े पर्दे पर उतारने की तैयारी में हैं। रिपोर्ट्स की माने तो धर्मा प्रोडक्शंस के बैनर तले बनने वाले इस फिल्म का नाम राधा कृष्ण रखा गया है और प्रोजेक्ट फिलहाल डेवलपमेंट के एडवांस स्टेज में पहुँच चुका है। इस बेहद महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की कमान फिल्म मेकर सचिन रवि को सौंपी गई है। वह फिल्म की कहानी लिखने के साथ साथ इसे डायरेक्ट भी करेंगे। फिल्म की कहानी में भगवान कृष्ण के जन्म से लेकर कंस के वध तक का सफर दिखाए जाने की खबर है। हालांकि सबसे बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है कि राधा और कृष्ण के किरदार में कौन नजर आएगा। मेकर्स ने फिलहाल स्टारकास्ट को पूरी तरह सीक्रेट रखा है। बाबा नीप करोरी के जीवन पर बनी फिल्म के बाद एक और संत के जीवन को बड़े पर्दे पर लाने की तैयारी शुरू हो गई है। वैष्णव किन्नर अखाड़े की जगत गुरु शंकराचार्य हिमांगी सखी ने संत प्रेमानंद महाराज के जीवन पर आधारित राधा अंश नाम की फिल्म बनाने की घोषणा की है। खबर है कि फिल्म का नाम राधा अंश होगा और इसका उद्देश्य संत प्रेमानंद महाराज के आध्यात्मिक जीवन, उनके विचारों और राधा रानी के प्रति उनके अटूट भक्ति को लोगों तक पहुँचाना है। खबर है कि फिल्म को लेकर फिल्म मेकर टीम से शुरुआती बातचीत हो चुकी है और टीम ने इस प्रोजेक्ट को लेकर सहमति भी जताई है। अब संत प्रेमानंद महाराज और उनके शिष्यों से आधिकारिक अनुमति लेने के लिए उनसे मुलाकात की जाएगी। फिल्म में कलाकारों का चयन भी उनके शिष्यों की सलाह के आधार पर किए जाने की बात सामने आ रही है।
1: देखिए, भक्ति फिल्मों का असर अब सिर्फ रामायण और कृष्ण की कहानियों तक सीमित नहीं है। छठी मैया से लेकर साई बाबा, खाटू श्याम से लेकर मां महाकाली तक आस्था के अलग अलग रंग अब बड़े पर्दे पर नजर आने वाले हैं। आने वाले दिनों में कई ऐसी फिल्में दर्शकों के सामने होंगी जिनकी कहानी सीधे लोगों की आस्था और उनके विश्वास से जुड़ी हुई होगी।
2: भुतक्के, इस वन की काली शक्ति रात के साए से भी काले, तूफान से भी तेज, जिससे देवी भी हमें नहीं बचा सकती, और अगर कोई रात को वन में प्रवेश करता है तो उसकी लाश भी नहीं मिलती।
3: अब मुझे धीरे धीरे समझ आ रहा है कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है सब
4: बॉक्स ऑफिस पर भक्ति फिल्मों का ऐसा असर देखने को मिल रहा है कि आने वाली कई फिल्मों में इसका अलग अलग स्वरूप देखने को मिलेगा। तमन्ना भाटिया और सिद्धार्थ मल्होत्रा की 25 सितंबर को रिलीज होने वाली फिल्म द वन में विस्तार से छठ पूजा को दिखाया गया है।
3: इसी वजह से इस मनुष्य का पे नहीं आना चाहता।
4: तमन्ना भाटिया ने हाल में अपना एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में उन्हें छठी मैया की पूजा करते हुए दिखाया गया था। छठी मैया पर बन रही फिल्म द वन को लेकर ऑडियंस का जबरदस्त रिएक्शन मिल रहा है। फिल्म का ट्रेलर भी रिलीज कर दिया गया है।
5: आपके पति नास्तिक हैं क्या?

0: साईं बाबा के जीवन पर एक और फिल्म बन रही है। इस फिल्म का नाम है तेरा साईं। खास बात यह है कि फिल्म में मशहूर एक्टर संजय मिश्रा साईं बाबा के किरदार में नजर आएंगे। अविका गौर, सयाजी शिंदे, मनोज जोशी, रोहन मेहरा जैसे एक्टर्स भी दमदार रोल में नजर आने वाले हैं। ये फिल्म 5 फरवरी 2027 को रिलीज होनी है। राजस्थान के सीकर में खाटू श्याम बाबा का मंदिर है। इस मंदिर में लोगों की काफी आस्था है। हर दिन यहाँ पर खाटू श्याम के दर्शन के लिए भारी संख्या में भक्त पहुँचते हैं। ऐसे में हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम हमारा नाम से एक भक्ति फिल्म का ऐलान किया गया है। फिल्म बाबा खाटू श्याम की भक्ति पर बेस्ड होगी। रिपोर्ट के मुताबिक ये फिल्म साल 2027 में दस्तक देगी। हालांकि इस जानकारी की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। फिल्म महाकाली अगले साल 8 जनवरी 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इस फिल्म में अक्षय खन्ना असुरों के महागुरु शुक्राचार्य के अवतार में दिखने वाले हैं। अक्षय खन्ना के फैंस उन्हें इस रूप में देखने को लेकर उत्साहित हैं। हनुमान फेम प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स की अगली फिल्म है। फिल्म में धर्म और अधर्म के बीच होने वाले एक ऐसे महायुद्ध की झलक है जो सिर्फ अच्छाई और बुराई की लड़ाई तक सीमित नहीं है। यह असुरों के शक्तिशाली गुरु शुक्राचार्य के नेतृत्व में शुरू होने वाले उस संघर्ष की कहानी है जो पूरी दुनिया के भविष्य का फैसला करता हुआ दिखाया जाएगा। का टीजर आ चुका है। इस फिल्म में मां महाकाली के दिव्य रूप के भी दर्शन होंगे जिनकी वजह से देवताओं को जीत मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: तो चलिए इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
5: गुड न्यूज टुडे लगातार दर्शकों से अपील कर रहा है कि आप भी GND पर मनाए जा रहे इस उत्सव से जुड़िए। इसके लिए बस आपको इतना सा करना है कि अपने घर पधारे गजानन का वीडियो बनाना है और हमें भेज देना है। हम उन वीडियोस को दुनिया तक पहुंचाएंगे। हमारे पास लगातार दर्शकों की वीडियोस आ रही हैं। देखिए गुजरात के आनंद से मितुल पाठक ने गणेशोत्सव की मनमोहक वीडियो शेयर की है। नीली पगड़ी और नीली वस्त्रों से सुशोभित भगवान गजानन सुगंध पुष्पों से शोभायमान लग रहे हैं बिल्कुल। और मूसक पर सवार बप्पा की विधि विधान से पूजा की जा रही है। दूसरी तस्वीर देखिए, वहीं पर राजस्थान की राजधानी जयपुर से कृतिका महावर ने ये तस्वीरें भेजी हैं। बाल गणेश की प्रतिमा को बड़े ही भक्ति भाव के साथ घर में लाया गया, जिसके बाद पूजा अर्चना करने के साथ बप्पा की स्थापना की गई। गजानन के मंडप को फूलों के साथ रंग बिरंगी लाइट से सजाया गया।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
5: गोल्ड मेडल से बस एक कदम दूर भारतीय महिला क्रिकेट टीम, एशियन गेम्स में बांग्लादेश को 114 रनों से दी मात, शेफाली वर्मा ने 49 गेंद में लगाई सेंचुरी। एशियन गेम्स में भारत को शूटिंग में मिला दूसरा सिल्वर मेडल, एला वेनिल वलारिवन ने 10 मीटर एयर राइफल में किया कमाल, मिक्स मार्शल आर्ट्स में भी पदक पक्का। गुजरात के अंबाजी धाम में आस्था का महाउत्सव, विधि विधान से भादरवी महामेले का शुभारंभ, करीब 40 लाख श्रद्धालुओं के आने का अनुमान। देशभर में गणपति उत्सव की रौनक, अमरावती के गणपति पंडाल में खाटू श्याम मंदिर की भव्य झांकी, पुणे के गणेश मंदिर का भव्य श्रृंगार। मेरठ में अर्शो और दूसरा आखिरी दिन सूर्य किरण एरोबैटिक टीम ने दिखाया हैरतअंगेज करतब, बड़ी संख्या में दीदार को पहुंचे लोग।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबर।
5: 20वें एशियन गेम्स के पहले ही दिन इंडियन महिला टीम ने किया कमाल, बांग्लादेश को 114 रनों से हराया। एशियन गेम्स के फाइनल में भारत ने बनाई जगह, 22 सितंबर को श्रीलंका के खिलाफ होगा मैच। टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 195 रन बनाए, पीछा करते हुए बांग्लादेश की पूरी टीम 81 रनों पर ढेर। शेफाली वर्मा ने महिला T20 में बनाया सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड, 49 गेंदों में ठोक दिया सेंचुरी। महिला T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में शेफाली वर्मा सबसे ज्यादा सिक्स लगाने वाली बल्लेबाज बन गई, उनके नाम अब तक 102 छक्के लगाने का रिकॉर्ड। एशियन गेम्स 2026 का आज पहला दिन, कई खेलों के मेडल पर भारत की नजर। एशियन गेम्स में भारत को मिला पहला मेडल, 10 मीटर एयर राइफल की महिला टीम ने जीता सिल्वर। नेक्स्ट मार्शल आर्ट्स में भारत के लिए अच्छी खबर, सुचिका ने सेमीफाइनल्स में किया प्रवेश, एक मेडल पक्का। एशियन गेम्स में भारत को शूटिंग में मिला दूसरा सिल्वर मेडल, एला वेनिल ने 10 मीटर एयर राइफल में जीता सिल्वर। मेरठ में एयर शो आज उसका दूसरा और आखिरी दिन, सूर्यकिरण एरोबैटिक्स टीम ने 9 हॉक MK-132 विमान से आसमान में दिखाया करतब। देशभर में गणेश उत्सव की धूम, विभिन्न स्वरूपों में गजानन की आराधना, कई जगहों पर प्रतिमा विसर्जन भी जारी। राजकोट के गणपति पंडाल में नजर आया अनोखा नजारा, रोबोट के जरिए उतारी गई आरती। प्रवेश पंडाल में धर्म और टेक्नोलॉजी के संगम को देखकर लोग रह गए हैरान। बप्पा के दर्शन करने के लिए दूर दूर से पहुंच रहे हैं लोग। बिहार के मधेपुरा में गणेश प्रतिमा के विसर्जन पर शोभा यात्रा। कोलकाता की त्रिकाल झांकी बनी आकर्षण का केंद्र। मधेपुरा में प्रतिमा विसर्जन के दौरान कलाकारों ने मनमोहक प्रस्तुति दी। बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए। पुणे के राजण गांव महागणपति मंदिर में गणेशोत्सव की शानदार धूम। ड्रोन में दिखी तस्वीरें अद्भुत। गणेशोत्सव के चलते राजण गांव को भी रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया। राजण गांव महागणपति मंदिर में हर साल होता है भव्य आयोजन। दूर दूर से पहुंचते हैं दर्शनार्थी। अमरावती के बुधवारा में खाटू श्याम मंदिर की थीम पर गणेश पंडाल में सजाई गई भव्य झांकी। आजाद हिंद गणेश उत्सव पंडाल में तैयार। बप्पा के साथ खाटू श्याम जी की भी दर्शन करने का मौका मिला। बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। भिलाई में बस्तर की प्रसिद्ध दंतेश्वरी माता मंदिर की थीम पर बना गणेश पंडाल। नक्शा मन मंदिर में विराजमान कुरक का विनायक घर की तरह बनाने की कोशिश की गई। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले सर्वधर्मीय महाआरती का आयोजन किया गया। हिंदू समाज के साथ मुस्लिम सिख बौद्ध और ईसाई समाज के लोग भी शामिल हुए। गोलापुर में महापालिका की अच्छी शुरुआत। बस से गणेश मूर्ति को पहुंचाया गया विसर्जन स्थल। जालना में गणेशोत्सव पर अनोखी प्रदर्शनी। प्रतिमाओं के जरिए समझाया जा रहा है भूगोल का विज्ञान। पुणे में श्रीमंत भाऊ साहेब रंगारी गणपति की भव्य और दिव्य सजावट के जनन की आस्था और भक्ति में पूरी तरीके से सराबोर नजर आए भक्त। गणेशोत्सव के दौरान पंडाल में उमड़ रहा बप्पा के भक्तों का सैलाब। बप्पा के अलौकिक स्वरूप के हो रहे हैं दर्शन। गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों की गूंज। पुणे के प्रमुख गणेश पंडाल की भव्य सजावट। बैडमिंटन खिलाड़ी सायना नेहवाल ने किए बप्पा के दर्शन। श्रीमंत भाऊ साहेब रंगारी गणपति पंडाल में महाआरती की शामिल हुए लोग। दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट के लोगों ने धूमधाम से मनाया गणेश उत्सव। बीजेपी नेता सुनील देवघर के आवास पर गायक जुबिन गर्ग की स्मृति में रखा गया विशेष कार्यक्रम। चित्तौड़गढ़ श्री संवरिया सेठ मंदिर में देखिए समर्पण की अद्भुत मिसाल। व्यापारी ने करीब 1 किलो 200 ग्राम चांदी से बना सीमेंट प्लांट मॉडल अर्पित किया। भगवान को अर्पित किए गए सीमेंट प्लांट का मॉडल की करीब 2.5 लाख रुपए बताई जा रही है कीमत। अंबाजी में भादरवी महामेला आज से शुरू। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने रथ खींचकर उद्घाटन किया। भादरवी महामेले में दिखा शक्ति भक्ति और आस्था का अद्भुत संगम। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड की तैयारियां लगभग पूरी। 22 सितंबर को होगा आयोजन। दिल्ली के श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश मंदिर में राधाष्टमी पर्व की धूम। द्वारका सेक्टर 13 स्थित स्कॉन मंदिर में धूमधाम से तैयारियां। लोगों से किया गया राधा रानी का भव्य और दिव्य अभिषेक। रंग बिरंगे सुगंधित फूलों और गुब्बारों से अद्भुत नौका को सजाया गया। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की मानसी गंगा लीला का हुआ सुंदर चित्र। मंदिर में हुई विशेष राधाष्टमी आरती। आस्था और भक्ति में सराबोर नजर आ श्रद्धालु। श्रद्धालुओं से अनूठे दर्शन का आनंद लिया। नव उत्सव की भव्य और शानदार सजावट। भारत और जापान के बीच संयुक्त वायु अभ्यास वीर गार्जियन 2026 जारी। 22 सितंबर तक का एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर में आयोजन। चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह और JASDF के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल ने युद्ध अभ्यास का निरीक्षण किया। अयोध्या में सूर्यकुंड मेले का आगाज। श्रद्धालुओं ने सरयू नदी के पवित्र जल में पवित्र डुबकी लगाई। सूर्यदेव को अर्घ्य देकर श्रद्धालुओं ने अपने परिवार के लिए सुख समृद्धि की कामना की। श्रीनगर पर्यटक सुहावने मौसम को उठा रहे हैं लुत्फ। डल झील में पारंपरिक शिकारा राइड। जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस पर निकल गई रैली। लोगों ने विश्व शांति की प्रार्थना की। हैदराबाद में नशा मुक्ति को लेकर चला गया अभियान, ना साइकिल राइडिंग से लोगों को जागरूक किया गया। तमिलनाडु की थूथुकुड़ी में चिथिराई उत्सव की धूम, पारंपरिक बैलगाड़ी दौड़ का आयोजन। बैलगाड़ी दौड़ में हिस्सा लेने दूर दूर से पहुंच रहे प्रतिभागी, बड़ी संख्या में लोग जुटे। राजौरी के सरकारी आईटीआई की लोगों को रोजगार से जोड़ने की अच्छी पहल, छात्रों को दी जा रही है वोकेशनल ट्रेनिंग। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में हेतमापुर में सरयू नदी का कटान जारी, बाढ़ की चपेट। सरयू नदी में लगभग 31 पक्के मकान बाढ़ में डूब गए, पीड़ित परिवारों को प्रशासन ने भेजी आर्थिक मदद। सरयू नदी के जलस्तर पर प्रशासन की पूरी नजर, प्रभावित परिवारों के लिए भोजन व्यवस्था। बिहार के कैमूर में बनेगा नया एयरपोर्ट, प्रशासन ने सरकार को भेजा प्रस्ताव। कैमूर के रामपुर प्रखंड में 161 एकड़ भूमि हुई चिन्हित। दिल्ली में फिट इंडिया मूवमेंट के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, पूर्व भारतीय क्रिकेटर परविंदर अवाना ने हिस्सा लिया। फिट इंडिया मूवमेंट इवेंट के मंच पर लोगों की फिटनेस का भी हुआ टेस्ट। फिट इंडिया इवेंट में लोगों ने जमकर डांस करके बहाया पसीना, हर उम्र लोगों के लिए हसरे। फिट इंडिया मूवमेंट के तहत संडे ऑन साइकिल का भी आयोजन किया गया, बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। चंडीगढ़ में फिटनेस और एकता का संदेश देने के लिए सुखना लेक पर हुआ मैराथन। कुड्डलोर के ऐतिहासिक नटराज मंदिर में विश्व प्रसिद्ध नाट्यांजलि नृत्य महोत्सव का भव्य शुभारंभ। नाट्यांजलि नृत्य महोत्सव की विधि विधान के साथ हुई गई शुरुआत, कलाकारों ने दस्तक दी। नाट्यांजलि समारोह में देखी भारतीय संस्कृति की भव्यता। बेंगलुरु में एन इवनिंग विद लेजेंड्स कंपैशन इन एक्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एन इवनिंग विद लेजेंड्स कंपैशन इन एक्शन कार्यक्रम में भव्य संगीत समारोह का आयोजन किया गया। किश्तवाड़ प्रीमियर लीग का दूसरा सीजन चौगान ग्राउंड में आयोजित किया गया, टूर्नामेंट में 24 टीमों ने हिस्सा लिया। असम में जुबीन दिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। जम्मू कश्मीर के कठुआ में बेहतर सड़क संपर्क से चमका पर्यटन, खूबसूरत हिल स्टेशन सरथल पर पहुंचा असम। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ धाम के लिए तीर्थयात्रियों की आवाजाही फिर से हो गई शुरू। बद्रीनाथ धाम पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। रोजगार को लेकर लखनऊ से आई गुड न्यूज, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 912 युवाओं को बांटा नियुक्ति पत्र। पुलिस विभाग में होगी 912 चयनित अभ्यर्थियों की तैनाती, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुभकामनाएं दी। पेशन रोजगार के तहत लखनऊ के लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम हुआ। दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में गोल्फ बॉल प्रीमियर लीग का आयोजन किया गया। कॉफबॉल प्रतियोगिता में रोजाना खेले जाएंगे दो मुकाबले, विजेता टीम को 31 लाख रुपए का पुरस्कार। 2000 साल पुराना रोमन शहर बना लाइट आर्ट एंड कैनवस, क्रोएशिया के पुला में 16 जगहों पर रोशन हुई ऐतिहासिक इमारतें। पुला में ऐतिहासिक और डिजिटल आर्ट का अनोखा प्रदर्शन। इस साल अंतरिक्ष और ब्रह्मांड बना फेस्टिवल की मुख्य थीम, कलाकारों ने रोशनी से पेश की कल्पनाएं। के मुख्य रोमन चौक पर देखिए खास कलाकृतियां, बटरफ्लाई फ्लैपिंग इट्स विंग्स बनी खास प्रस्तुति। जर्मनी, यूक्रेन, नॉर्वे और हांगकांग के कलाकारों ने अद्भुत रोशनी दी। चीन के वुहान में इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल, 12 देशों के 21 दिग्गज पतंगबाजों का जमावड़ा। चीन में पतंगों का महासंग्रह, वुहान में पतंगों का वर्ल्ड क्लास शो। पतंगबाजी के शौकीनों के लिए खास मौका, पारंपरिक और आधुनिक पतंगों की अद्भुत झलक। उत्तरी चीन के इनर मंगोलिया में छाया घना कोहरा, वेटलैंड का नजारा अद्भुत। चीन के हेनान प्रांत में देखे अद्भुत बादल, पहाड़ बादलों के समुद्र में तैरते हुए नजर आए। सैंटियागो में वार्षिक स्वतंत्रता दिवस सैन्य परेड सजी, चिली के झंडे के रंगों वाले लड़ाकू विमानों ने भरी उड़ान।

0: $400. 26 पपीज को मिल रही है ट्रेनिंग, इनमें 17 जर्मन शेफर्ड और बेल्जियम मेलिनोस। चीन के बेजिंग में अनोखा रोबोट किंडरगार्टन हुआ शुरू, इंसानों के बच्चों की तरह रोबोट्स को दी जा रही है ट्रेनिंग। सेंटर में एक दर्जन से ज्यादा छोटे बड़े ह्यूमनॉइड रोबोट्स शामिल। बदलते परिवेश के हिसाब से खुद के काम में परिवर्तन कर रही हैं रोबोट्स। 19 वर्षीय कनाडियन सर्फर एरन ब्रूक्स ने रचा इतिहास, विमेंस कैटेगरी में ट्रेल्स प्रो सर्फिंग में जीता खिताब। पुरुषों में ब्राजील के मिगुएल पुपो बने चैंपियन। भारत को पहली बार मिली एशिया सीनियर वुशु चैंपियनशिप की मेजबानी, साल 2028 में होगी प्रतियोगिता। भारत की मेजबानी में 42 देश वुशु चैंपियनशिप में लेंगे हिस्सा। मोहम्मद सिराज हैदराबाद रणजी टीम के हो गए कप्तान, चामा मिलिंद को मिली उपकप्तानी। रणजी ट्रॉफी की 11 अक्टूबर से होगी शुरुआत, त्रिपुरा की टीम से होगी हैदराबाद की पहली बिड़ंत। मोहन बगान का 8 साल का इंतजार हुआ खत्म, 31वीं बार कलकत्ता लीग का बना चैंपियन।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
2: जिसने हिला दिया महाराष्ट्र, जिसे कांप रहे हैं मिलावटखोर, हाई कोर्ट की कैंटीन पर लगा दिया ताला, सब्जी बेचकर पढ़ाई, बेईमानों से लड़ाई, बंदे में है दम। शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9:00।

0: सैन्य अभ्यास की भारत और अमेरिका के इस युद्ध अभ्यास 2024 के दौरान M777 अल्ट्रा लाइट होविजर ULH से लाइव फायरिंग की गई, जिसमें डायरेक्ट फायरिंग मेथड का इस्तेमाल करके सामने दिख रहे टारगेट पर निशाना साधा गया। इस दौरान ULH गन क्रू ने बेहतरीन प्रोफेशनलिज्म, सटीकता और युद्ध के लिए तत्परता का शानदार प्रदर्शन दिखाया। फायरिंग के दौरान सभी तय टारगेट को सफलतापूर्वक निशाना बनाकर नष्ट कर दिया गया। फायरिंग के बाद यूएस अमेरिकी सेना के जवानों ने ULH बैटरी के अधिकारियों और जवानों से बातचीत भी की। दोनों सेना के बीच इस दौरान प्रोफेशनल जानकारी और लड़ाई के बेहतरीन तौर तरीकों के बारे में चर्चा भी हुई और अभ्यास की ये तस्वीरें भारतीय सेना ने जारी की है। देखिए, हम आपको दिखाते हैं महाराष्ट्र के अमरावती में गणपति पंडाल की शानदार तस्वीरें। यहाँ के बुधवारा इलाके में आजाद हिंद गणेश उत्सव मंडल ने पंडाल में खाटू श्याम मंदिर की भव्य झांकी तैयार की है। देखिए तस्वीरें, यहाँ गणपति बप्पा की सुंदर प्रतिमा के साथ खाटू श्याम मंदिर की भव्य झांकी आपको देखने को मिलेगी। पंडाल में पहुंचने वाले श्रद्धालु पहले गणपति बप्पा के दर्शन कर रहे और इसके बाद खाटू श्याम जी के दर्शन भी कर रहे हैं। मंदिर की आकर्षक सजावट और झांकी श्रद्धालुओं को खूब आकर्षित कर रही है। आजाद हिंद गणेश उत्सव मंडल करीब 98 वर्षों से गणेश उत्सव की परंपरा इसी तरीके से निभा रहा है। मंडल हर साल अलग अलग थीम के जरिए गणपति उत्सव को खास बनाने का प्रयास करता है। हम आपको दिखाते हैं महाराष्ट्र में पुणे के पास राजगांव महागणपति के झिलमिलाता स्वरूप। ये देखिए तस्वीरें, पुणे जिले के शिरूर तालुका स्थित राजगांव महागणपति मंदिर गणेशोत्सव के अवसर पर आकर्षक लाइटिंग से जगमगा उठा। तस्वीरें देखिए, ड्रोन कैमरों से कैद मंदिर और रोशनी से जगमगाता पूरा परिसर का विहंगम दृश्य ये देखने को मिल रहा है। यहाँ पर मंदिर अष्टविनायक गणपति मंदिरों में शामिल हैं। मंदिर के साथ साथ पूरे गांव में भी आकर्षक लाइटिंग की गई। रात के अंधेरे में जगमगाती रोशनी से राजगांव का नज़ारा बहुत खूबसूरत नजर आया। ड्रोन कैमरों से एरियल तस्वीरों को देखिए, विहंगम दृश्यों में रोशनी से सजा महागणपति मंदिर और दूर तक फैली रोशनी अद्भुत चमक रही है। गणेशोत्सव में रोशनी का ये भव्य नजारा श्रद्धालुओं पर्यटकों के लिए खास आकर्षण है। अब आपको दिखाते हैं महाराष्ट्र के जालना में गणेशोत्सव की एक खास तस्वीर। जालना में गणेशोत्सव के पंडाल में अनोखी भूगोल प्रदर्शनी लगाई गई। जी हाँ, यहाँ पर समर्थ रामदास स्वामी की ओर से स्थापित 11 मारुति की प्रतिमाओं के साथ भूगोल प्रदर्शनी लगाई गई। ये देखिए, और पृथ्वी से लेकर अंतरिक्ष और पूरे ब्रह्मांड तक की अलग अलग अवधारणाओं को मॉडल के माध्यम से समझने का प्रयास किया गया है। इसका मकसद छात्रों को आसानी से और रोचक तरीके से भूगोल की जानकारी देना है। दरअसल कई छात्रों को भूगोल का अध्ययन थोड़ा कठिन और उबाऊ लगता है। इसी वजह से छात्रों के मन से भूगोल विषय का डर दूर हो और उस विषय के प्रति उनकी रुचि बढ़ाने के लिए शिक्षक श्रीकांत चिंचखेड़कर ने ये पहल की है। महाराष्ट्र से बिहार तक देश भर में गणेश उत्सव धूमधाम से चल रहा है, तो कई जगहों पर गणपति बप्पा की विदाई भी हो रही है। अभी हम आपको दिखाने जा रहे हैं गणपति की विदाई की दो खास तस्वीरें। एक तस्वीर है ये देखिए, बिहार के मधेपुरा जिले के मुरलीगंज की, और दूसरी तस्वीर देख लीजिए महाराष्ट्र की भीड़ की है। मुरलीगंज में 5 दिन पूजा अर्चना करने के बाद भगवान श्री गणेश की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। साजे बाजे ढोल नगाड़ों और गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों के साथ शोभा यात्रा की शुरुआत हुई और नदी में विधि विधान के साथ भगवान की प्रतिमा को विदाई भी दी गई। देखिए, महाराष्ट्र भीड़ के लिंबा गणेश में मयूरेश्वर गणपति को शाही अंदाज में विदाई दी गई। बीड़ा तहसील के लिंबा गणेश गांव में 225 सालों से चली आ रही है एक गांव एक गणपति की अनोखी परंपरा इस साल भी पूरा श्रद्धा और धूमधाम के साथ इसको निभाया गया। यहां पर देखिए, सरकार वाड़ा में स्थापित मयूरेश्वर गणपति की विदाई शाही ठाट बाट के साथ संपन्न हुई। इस भव्य जुलूस में आसपास के 12 गांवों की टीमों ने हिस्सा लिया और समा। अब आपको दिखाते हैं बेंगलुरु में सजीव संगीत की महफिल की तस्वीरें। बेंगलुरु में हाल ही में एन इवनिंग विथ लेजेंड्स कंपैशन इन एक्शन संगीतमय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में देखिए कलाकारों के सुर से जो पूरी महफिल थी वो पिरोई। और ये कार्यक्रम जो है वन वर्ल्ड वन फैमिली मिशन के सेवा कार्यों और समाज के प्रति करुणा की भावना को समर्पित करता था, ताकि जन्मजात हृदय रोग से पीड़ित बच्चों की मदद की जा सके। आध्यात्मिक गुरु सदगुरु श्री मधुसूदन साई और दिग्गज पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर भी कार्यक्रम में शामिल हुए। गुड न्यूज टुडे लगातार दर्शकों से अपील कर रहा है कि आप भी जीएनटी पर मनाए जा रहे इस उत्सव में शामिल हो जाइए। इसके लिए आपको बस इतना सा करना है कि आपके घर पधारे गए जनन का वीडियो बनाना है और हमें भेज देना है। हम उन वीडियोस को दुनिया तक पहुंचाते हैं। हमारे पास लगातार दर्शक वीडियोस भेज रहे हैं। ये देखिए, गुजरात के वडोदरा से भाव्या मुकेश शाह ने गणेश उत्सव का वीडियो हमसे शेयर किया है। उन्होंने बड़े भक्तिभाव के साथ भगवान के जनन की दो प्रतिमाओं की स्थापना की है। कमल पुष्प सहित तमाम सुगंधित फूलों की माला से पप्पा का शोभायमान बिल्कुल नजर आ रहे हैं। सर पर शानदार मुकुट धारण किए बप्पा को फल और मिष्ठान का भोग भी लगाया गया। दूसरी तस्वीर देखिए, उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से डॉक्टर आशीष एम मोहिते ने हमें भेजी है। एक घर में खूबसूरत पंडाल सजाकर बप्पा को श्रद्धा और भक्ति के साथ विराजमान किया गया है। शानदार लाइटिंग से पंडाल को सजाया गया।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: किस ग्रह की अशुभ दशा में हृदय रोग होने की संभावना होती है? किस ग्रह की अशुभ दशा में लंबी बीमारी हो सकती है? और किस ग्रह की अशुभ दशा में विचित्र बीमारियां हो जाती हैं? ग्रहों की अशुभ दशा का क्या है प्रभाव और क्या है अशुभ दशा से बचने के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है।
11: एवरेस्ट तीखा लाल, सही तीखा सही लाल।
0: गोल्ड मेडल से बस एक कदम दूर भारतीय महिला क्रिकेट टीम, एशियन गेम्स में बांग्लादेश को 114 रनों से हराया। शेफाली वर्मा ने 49 गेंदों में लगाई सेंचुरी। एशियन गेम्स में भारत को शूटिंग में मिला दूसरा सिल्वर। येला बेनिल बलारिवन ने 10 मीटर एयर राइफल में किया कमाल। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में भी पदक पक्का। अंबाजी धाम में आस्था का महोत्सव विधि विधान से। भादरवी महामेला का शुभारंभ, करीब 40 लाख श्रद्धालुओं के आने का अनुमान। देश भर में गणपति उत्सव की रौनक। अमरावती के गणपति पंडाल में खाटू श्याम मंदिर की भव्य झांकी, फोड़े के गणेश मंदिर का भव्य श्रृंगार। दूसरा और आखिरी दिन सूर्य किरण एरोबैटिक टीम ने देखा हैरतअंगेज करतब, बड़ी संख्या में दीदार करने पहुंचे लोग।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: अब आपको दिखाते हैं तस्वीरें महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में चल रहा है।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम, और मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। एक बार फिर से लेकर एक दमदार शख्सियत का सफरनामा। इस बार जिस निर्भीक शख्सियत का सफरनामा लेकर हम हाजिर हुए हैं, उसने महाराष्ट्र में मिलावटखोरी करने वाली और लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करने वाली लॉबी के खिलाफ ऐलानी जंग कर दिया है। महाराष्ट्र में फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का कमिश्नर बनने के बाद इस शख्स ने अपने ताबड़तोड़ एक्शन से लोगों की सेहत की कीमत पर मुनाफाखोरी करने वाली लॉबी की नींद उड़ा कर रख दी है।

0: आप समझ गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि महाराष्ट्र में फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन विभाग के कमिश्नर तुकाराम मुंडे हैं। महाराष्ट्र की जनता जिन्हें अब सिंघम आईएएस कहने लगी है। 25 मई 2026 को एफडीए के कमिश्नर पद की जिम्मेदारी मिलने के बाद से ही तुकाराम एक्शन मोड में है। इनके कमिश्नर बनने के बाद महाराष्ट्र के होटल्स, रेस्टोरेंट, कैफे और कन्फेक्शनरीज के मालिक और मालकिनों को पहली बार एहसास हुआ कि उनका काम सिर्फ आंखें मूंद कर मुनाफा वसूली करना नहीं है बल्कि लोगों की सेहत और हाइजीन का कायदे से ख्याल रखना भी है। 4 महीने से भी कम में इनके कार्यकाल में महाराष्ट्र के होटल्स और रेस्टोरेंट्स की सूरत बदल गई है। आम लोग इनकी कार्यशैली से काफी खुश हैं।
1: अंधेरा कितना ही घनघोर क्यों ना हो, एक दिया काफी होता है उस अंधेरे की कालिमा को चीरने के लिए। और उजाले की प्रकृति ही कुछ ऐसी है कि वो व्यवस्था की वस्तु स्थिति को उजागर कर देता है। महाराष्ट्र के एक आईएएस अधिकारी ने अदम्य इच्छा शक्ति, नेक नियति और कर्तव्य निष्ठा के रथ पर सवार होकर व्यवस्थागत नियमों का दीप प्रज्वलित किया तो कई नामचीन संस्थाओं, कंपनियों और हस्तियों के स्याह चेहरे उजागर हो गए। महाराष्ट्र के इस युगांधर आईएएस अधिकारी का नाम है तुकाराम हरिभाऊ मुंडे। एक ऐसा नौकरशाह जिसने अपनी जिम्मेदारियों के तर्जे अमल की बेहतरीन नजीर पेश कर न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि देश भर के ब्यूरोक्रेट्स को बता दिया है कि अगर वो सच्ची निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करें तो करोड़ों हिंदुस्तानियों की बहुत सी दुश्वारियां यूं ही खत्म हो जाएंगी। आपको बता दें कि महाराष्ट्र कैडर के आईएएस ऑफिसर के तौर पर साल 2006 में सोलापुर के असिस्टेंट कलेक्टर के पद पर ज्वाइनिंग के बाद से अब तक तुकाराम मुंडे हर रोज आम लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं सीधे तौर पर सुनते हैं।
2: That's where you pointed out that I meet people during 4 to 5 every day. So that's a connect with the people. And it's a practice I have been doing it since I joined the service, not now. So I believe that if public servant or civil servant is to serve in a public space, so who am I serving? Each and every individual? So if I do not know or do not meet them, do not connect with them, how would I know what are the issues? What are they facing?
1: 21 साल के प्रशासनिक सफर में 25 से ज्यादा तबादलों का दंश झेल चुके तुकाराम मुंडे को 25 मई 2026 को महाराष्ट्र के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन विभाग के कमिश्नर की जिम्मेदारी सौंपी गई। तुकाराम जब से एफडीए के कमिश्नर बने हैं मिलावटखोर, मुनाफाखोर, धांधलेबाज पनाह मांग रहे हैं। उन्हीं के विभाग के भ्रष्ट, बेईमान और कामचोर मातहत कर्मचारी त्राहिमाम कर रहे हैं लेकिन जनता बहुत प्रसन्न है। सच कहें तो आम लोगों को पहली बार पता चला है कि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कितने काम का विभाग है। बीते 15 सितंबर को तुकाराम ने सोशल साइट एक्स पर एक पोस्ट कर कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स के अंदर चल रही एक ऐसी धांधली उजागर की है जिसे आम जनता पूरी तरह अनजान थी। अस्पतालों के मेडिकल इक्विपमेंट्स प्रोक्योरमेंट को लेकर तुकाराम मुंडे ने जो खुलासा किया है उसने सनसनी मचा दी है। 15 सितंबर को अपनी एक्स पोस्ट में तुकाराम ने लिखा है, महाराष्ट्र में हॉस्पिटल में इस्तेमाल होने वाली सामग्रियों पर किए गए सर्वे में ये पाया गया कि एक आईवी इन्फ्यूजन सेट की एक्चुअल खरीद करीब 11 रुपए होती है जबकि इस पर MRP 325 रुपए लिखी होती है, यानी 2841% का मार्कअप। बढ़ोतरी, एक सिरिंज 6.75 रुपए में खरीदी जाती है जबकि उस पर MRP लिखी होती है 57.20 रुपए। एक कैथेटर 29.41 रुपए में खरीदा जाता है जबकि उस पर MRP लिखी होती है 310 रुपए। कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स में भर्ती होने वाले मरीज के डिस्चार्ज से पहले परिजनों को जब बिल दिया जाता है तो उसे देखकर उनकी पेशानियों पर पसीने की बूंदें छलकने लगती हैं। उन्हें क्या पता कि इस भारी भरकम बिल के पीछे नौकरशाहों और हॉस्पिटल्स की दुराभिसंधि का हाथ है। बहरहाल अगर तुकाराम जैसे मसीहा के हाथ में कमान हो तो जनता राहत की उम्मीद कर सकती है। महाराष्ट्र FDA की ओर से सामने रखे गए सर्वे के नतीजों के बाद ट्रेड प्रोक्योरमेंट प्राइस और घोषित MRP के बीच अंतर को लेकर स्पष्ट गाइडलाइन बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हॉस्पिटल्स के साथ ही मोटे मुनाफे के लिए जनता की सेहत से खिलवाड़ करने वाले होटल्स, रेस्तरां कॉन्फेक्शनरीज, डेयरीज, कैफे और फूड एंड एग्रो फैक्ट्रीज पर भी तुकाराम मुंडे कहर बनकर बरस रहे हैं। त्योहारी मौसम में मुनाफाखोरों की चांदी हो जाती है, इसलिए मिलावट का धंधा चरम पर पहुंच जाता है। आर और रेस्तरा कैफे मुंडेगर का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया, वजह जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। एफडीए ने अपनी जांच में पाया कि गर्म खाने की चीजों को जरूरी तापमान 60 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा पर नहीं रखा जा रहा था और कोल्ड स्टोरेज का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से कम पर नहीं रखा जा रहा था। इसके साथ ही खाना बनाने वाली जगह ड्रेनेज सिस्टम तय मानकों के मुताबिक नहीं था, जिससे क्रॉस कंटामिनेशन का खतरा था। सोचिए, सरकार ने पब्लिक हेल्थ को ध्यान में रखकर कितने अच्छे रेगुलेशंस बनाए हैं, पर इन रेगुलेशंस के कंप्लायंस को लेकर नौकरशाहों में इतनी बेफिक्री बेपरवाही है कि रेस्तरा या कैफे मालिकों को कौन कहे, आम जनता भी उदासीन हो जाती है। नतीजा ये होता है कि पैसे देकर होटल्स में खाना खाओ और तोहफे के तौर पर बीमारी घर ले आओ। पर एफडीए के कमिश्नर के तौर पर तुकाराम ने पूरे देश को जता भी दिया है और बता भी दिया है कि कानून की किताब ठंडे बस्ते में डालने के लिए नहीं होती। क्या तुकाराम से पहले किसी ने सोचा होगा कि भंडारे, महाप्रसाद, लंगर या सामूहिक भोज के लिए भी गाइडलाइंस जारी की जा सकती है? महाराष्ट्र एफडीए ने इसके लिए भी गाइडलाइंस जारी कर दी है, जिसके मुताबिक भंडारा, महाप्रसाद, लंगर या किसी सामूहिक भोज के आयोजन से कम 7 दिन पहले ऑनलाइन फॉर्म जमा करना पड़ेगा। ऐसे आयोजनों में सिर्फ लाइसेंस प्राप्त कैटरर्स की ही सेवाएं ली जा सकेंगी। खाना बनाने और पीने के लिए साफ या आरओ वाटर ही इस्तेमाल करना होगा। खाना बनाने और परोसने वाले वॉलेंटियर्स के लिए मास्क, दस्ताने और हेड कैप पहनना जरूरी होगा। भंडारों में आमतौर पर हाइजीन को अनदेखा कर दिया जाता है। इसमें खाना खाने वाले आमतौर पर मुफलिसी के मारे लोग ही होते हैं, इसलिए हाइजीन को लेकर आपत्ति दर्ज कराने का सूरते हाल नहीं होता। पर तुकाराम बचपन में बेबस गुर्बत की कड़वी हकीकत से बाबस्ता हो चुके हैं, इसीलिए गरीबों के दर्द को जानते हैं। वैसे एफडीए की भंडारे वाली गाइडलाइंस का हर तबके के लोग स्वागत कर रहे हैं।
3: नहीं, ये जो निर्णय लिया है वो अच्छा लिया है, जो भी है वो सबके हित के लिए ही है। अगर जो भी है, जो भी भंडारा या जो भी होता है उसमें अगर क्लीननेस रहेगा तो ये सबके हेल्थ के लिए अच्छा है।
4: इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज फॉर द गुड ऑफ द पीपल, गुड ऑफ द कम्युनिटी, और ये एक्सेप्टेबल होना चाहिए। और उनकी जो भी गाइडलाइंस है, ऑफकोर्स वो डिटेल में देखेंगे, जैसे कि हमारा मंडल होता है या ग्रुप्स होते हैं जहां पर ये सारी चीजें होती है, भंडारे एंड ऑल दैट, वो उनको फॉलो करना चाहिए। और ये सभी के लिए है, गवर्नमेंट अगर कुछ पॉलिसीज ला रही है।
1: साफ है कि गरीब या आम जनता की सेहत और स्वास्थ्य को लेकर तुकाराम मुंडे बहुत संवेदनशील है। दूसरी ओर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट की अनदेखी करने वाली रसूखदार और पावरफुल लॉबी के खिलाफ एक्शन लेने में वो जरा भी हिचकिचाते नहीं हैं। अंजाम की परवाह किए बगैर तुकाराम ऐसी लॉबी से सीधा हेड ऑन कर लेते हैं। तुकाराम ने विमल इलायची का विज्ञापन करने पर बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान समेत अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को 14 अगस्त 2026 को नोटिस भेज दिया था। नोटिस में साफ तौर पर कहा गया कि विज्ञापन में इलायची के नाम पर पान मसाले का प्रमोशन हो रहा है, जबकि महाराष्ट्र में तंबाकू उत्पादों पर बैन है।
2: जो नोटिस इश्यू किया गया है अबाउट एडवर्टाइजिंग रेगुलेशन वायलेशन, उनको नोटिस रेगुलेशन 2018 के हिसाब से दिया गया है और सेक्शन 24 ऑफ फसाई एक्ट जो है उसके हिसाब से दिया गया है। क्योंकि ये गुटखा और जो प्रोडक्ट है महाराष्ट्र में बैन है और उसका एडवर्टाइजिंग ये सरोगेट एडवर्टाइजिंग में आता है, इसलिए हमने उनको नोटिस दिया, उनको टाइम दिया है।
1: साफ है कि निर्भीक तुकाराम रसूखदारों और पावरफुल लॉबीज के खिलाफ एक्शन लेने में जरा भी परहेज नहीं करते, हालांकि उन्हें इस नायकत्व के लिए धमकियां भी मिलती रही हैं। पर जो इंसान कर्तव्य परायणता का दिया अपने हाथों में लेकर लोकहित के अग्निपथ पर निकल जाता है, वो रास्ते में आने वाले सेहरा या बयाबा की परवाह नहीं करता। नियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराने और नियमों की अनदेखी करने वालों पर घास गिराने की वजह से शुरू से ही इनकी राह में कांटे बिछाए जाते रहे हैं, लेकिन एक सच्चे योद्धा की तरह हर मुश्किलों का ये डट कर मुकाबला करते हैं। आत्मा अगर गवाही दे तो बड़े से बड़ा एक्शन लेने से भी परहेज नहीं करते।
2: Once you do that and if you are a public servant, what is my role? That's the question I ask as a public servant. And if my role is to contribute for the betterment of the society, should I trade that part or should I compromise on that part? That was the question I ruminated upon. And the answer I got is I should trade this part, whatever the cost may be. Maybe sometimes it is less or more, whatever it is. That's a choice, and that's a choice I made. And I don't think I regret anything of that today.
1: कहने की जरूरत नहीं कि साल 2026 में लोक सेवा का व्रत लेने के बाद से ही तुकाराम व्यापक जनहित के पथ पर निर्भीक होकर आगे बढ़ रहे हैं। 21 साल के सफर में 25 बार ट्रांसफर की दुश्वारी झेली, लेकिन जहां भी पोस्टिंग हुई, जिस विभाग की भी जिम्मेदारी मिली, पूरी क्रांति ला दी। 25 मई 2026 को FDA कमिश्नर बनने के बाद से ऐसे ऐसे साहसिक काम किए हैं कि नियमों की धजिया उड़ाने वाले पनाह मांग रहे हैं। महाराष्ट्र FDA का कमिश्नर बनने के बाद पहले हफ्ते में ही उन्होंने सब स्टैंडर्ड और मिलावटी सामान बेचने वाले 50 से ज्यादा ठिकानों पर छापे मारे और 100 लोगों को गिरफ्तार किया। उपचार के दावे वाले भ्रामक विज्ञापन दिखाने के आरोप में पतंजलि के आउटलेट पर छापे मारे और 51 लाख रुपए का सामान जब्त कर लिया। ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट जैसी ई कॉमर्स कंपनियों के 86 वेयर हाउसेज की जांच की और नियमों की अनदेखी की वजह से 14 वेयर हाउसेज के लाइसेंस सस्पेंड कर दिए। मुंबई में डोमिनोज पिज्जा के 4 आउटलेट के लाइसेंस सस्पेंड कर दिए। महाराष्ट्र में एनालॉग पनीर यानी बिना डेयरी से बने पनीर पर 1 साल तक के लिए बैन लगा दिया। तुकाराम मुंडे के इन ताबड़तोड़ एक्शन से महाराष्ट्र की आम जनता राहत महसूस कर रही है। दूसरी ओर होटल्स, रेस्तरा, कॉन्फेक्शनरीज, डेयरीज, कैफे और फूड एंड एग्रो फैक्ट्रीज के मालिकों को पहली बार यह एहसास हुआ है कि उनका काम सिर्फ मुनाफा ऐंठना नहीं है, बल्कि लोगों की सेहत का, स्वास्थ्य का भी पूरा ख्याल रखना है।
0: ऐसा नहीं है कि FDA का कमिश्नर बनने के बाद से ही तुकाराम एक्शन मोड में आए हैं। महाराष्ट्र कैडर का IAS अधिकारी बनने के बाद से ही तुकाराम नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों पर वज्रपात करते रहे हैं और इसके लिए कई बार इन्हें धमकियां भी मिली, राह में रोड़े अटकाए गए, लेकिन तमाम चुनौतियों के बाद भी कभी भी अपने कर्तव्य पद से विचलित नहीं हुए। एक गरीब किसान परिवार में जन्म लेने वाले तुकाराम ने बचपन में गरीबी का दंश झेला है, जीवन की दुश्वारी देखी हैं, पैदावार के लिए खेतों में पसीना बहाया है और इसलिए इनका व्यक्तित्व फौलादी हो गया, हालात से हार नहीं मानने का जज्बा पैदा हो गया।

0: तुकाराम मुंढे आज महाराष्ट्र में आइडियल ब्यूरोक्रेसी की मिसाल बन चुके हैं। उनकी ईमानदारी और कर्तव्य परायणता गरीब मजलूम लोगों के स्वास्थ्य और सेहत की उम्मीद की लौ बन चुकी है। जबकि महाराष्ट्र में नियमों की अनदेखी करने वाले फूड और ड्रग बिजनेस से जुड़े प्रतिष्ठानों को हर पल तुकाराम का डर सता रहा है। बतौर एफडीए कमिश्नर 4 महीने से भी कम के इनके कार्यकाल में एफडीए 12,000 से ज्यादा निरीक्षण और छापेमारी कर चुका है। इनमें से 900 से ज्यादा हाई इंपैक्ट रेट्स शामिल हैं। खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता नियमों के उल्लंघन की वजह से महाराष्ट्र में कुल 603 कॉमर्शियल लाइसेंस सस्पेंड किए जा चुके हैं। मिलावटखोरी, प्रतिबंधित गुटखा या पान मसाला बेचने और नियमों की अनदेखी के मामले में 875 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इतना ही नहीं, एफडीए ने ऐसे मामलों में 650 से ज्यादा एफआईआर भी दर्ज कराई है। तुकाराम की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वे नियमों की अनदेखी करने वाले प्रतिष्ठानों या व्यक्तियों के कद या रसूख से बेपरवाह रहते हैं। एफडीए ने नामी गिरामी फार्मास्यूटिकल कंपनी सिप्ला की पुणे स्थित यूनिट का 26 अगस्त को निरीक्षण किया और पैकेजिंग, स्टोरेज और खरीद बिक्री के रिकॉर्ड्स में गड़बड़ी और अनियमितता पाने पर इस यूनिट का सेल्स लाइसेंस रद्द कर दिया। तुकाराम के ताबड़तोड़ एक्शंस की जद में मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन यानी एमसीए भी आ चुका है। एफडीए ने एमसीए के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में स्थित 5 फूड आउटलेट्स पर 20 अगस्त को छापा मारकर 5 के एफएसएसएआई लाइसेंस सस्पेंड कर दिए। इतने हाई प्रोफाइल प्रतिष्ठानों के खिलाफ एक्शंस होंगे तो मामला कोर्ट में पहुंचेगा ही। एमसीए ने एफडीए के एक्शन के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया तो कोर्ट ने तुकाराम मुंडे को कड़ी फटकार लगा दी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि हम एफडीए को कितनी बार समझा चुके हैं कि मच्छर को तलवार से मत मारो, क्या आप खुद को लॉर्ड समझते हैं कि कुछ भी कर सकते हैं? तुकाराम को फटकार लगाते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनसे ये भी पूछ लिया कि एफडीए सिर्फ निजी संस्थानों पर छापेमारी क्यों कर रहा है, कानून का पालन तो सरकारी परिसरों की कैंटीन्स में भी होना चाहिए। तुकाराम भी कहां मानने वाले थे, उन्होंने अगले ही दिन बॉम्बे हाईकोर्ट कैंपस की 3 कैंटीनों पर रेड कर दी और 2 कैंटीन के लाइसेंस कैंसिल कर दिए।
1: ड्यूरिंग द हियरिंग द क्वेश्चंस वर एज वेदर यू आर टेकिंग एक्शन अगेंस्ट ओनली प्राइवेट और टेकिंग एक्शन अगेंस्ट द एस्टैब्लिशमेंट गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट, वी आर टेकिंग, वी हैव द डेटा टू बैक इट अप एंड इन दैट कोर्स ऑफ इंटरेक्शन से द हैव यू inspected Mantralaya canteen, so we had already done that. So then have you inspected or visited High Court canteen also, which we had not done. So I said we have not done that, but we have done this one. So High Court expects that it should be visited. Well, fine, next day my team goes and finds it out whatever it is there.
0: बॉम्बे हाई कोर्ट की कैंटीन पर रेड डालकर तुकाराम ने ये साबित कर दिया कि वो अलग ही मिट्टी के बने हैं। आपको बता दें कि इस तरह की चुनौतियां तुकाराम अपने सर्विस पीरियड में अनेकों बार फेस कर चुके हैं। साल 2006 में सोलापुर में बतौर असिस्टेंट कलेक्टर अपनी पहली पोस्टिंग में रेत माफियाओं पर एक्शन लिया तो उन पर जानलेवा हमला हो गया। साल 2007 में नांदेड़ में अवैध रेत खनन के खिलाफ कार्रवाई की तो 5 महीने में तबादला हो गया। 2012 में मुंबई सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट में पोस्टिंग हुई तो टैक्स चोरों से 310 करोड़ रुपए वसूल लिए। साल 2014 में कलेक्टर बनकर दोबारा सोलापुर पहुंचे तो टैंकर माफियाओं की नकेल कस दी, जिसके बाद इन्हें महाराष्ट्र का वाटरमैन कहा जाने लगा। मार्च 2017 में पुणे महानगर परिवहन महामंडल लिमिटेड के चेयरमैन बने तो ड्यूटी से लंबे समय से गायब चल रहे 158 कॉन्ट्रैक्ट ड्राइवरों को एक साथ सस्पेंड कर दिया। साल 2022 में महाराष्ट्र के हेल्थ केयर कमिश्नर बने तो सरकारी डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस बंद करवा दी। कहने की जरूरत नहीं कि तुकाराम मुंडे को जो भी जिम्मेदारी मिली उन्होंने कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी की नई लीक खींच दी। दरअसल इस इंसान का पालन पोषण चांदी के चम्मच से नहीं हुआ है, इनका बचपन बहुत ज्यादा दुश्वारियों और आर्थिक तंगी के बीच बीता है। महाराष्ट्र के बीड जिले के गुमनाम से गांव ताड़सोना के एक गरीब किसान परिवार में 3 जून 1975 को जन्मे तुकाराम के पिता के पास इनके लिए चप्पल खरीदने तक के पैसे नहीं होते थे, लिहाजा ये बिना चप्पल के नंगे पांव स्कूल जाते थे। दिन में पढ़ाई करते थे और रात में खेतों की सिंचाई का काम भी करते थे। क्या आप यकीन करेंगे कि तुकाराम मासूम उम्र में सिर पर सब्जियां रखकर साप्ताहिक बाजार जाते थे और उन्हें बेचकर पैसे ले आते थे ताकि घर की रोजमर्रा की जरूरतें पूरी हो सकें। इतनी हार्डशिप में रहकर भी ये अपने क्लास में टॉप करते थे। तभी तो साल 2005 में तुकाराम ने यूपीएससी क्रैक किया और ऑल इंडिया 20वीं रैंक हासिल की। आज वही ताड़सोना गांव का गुदड़ी का लाल ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा का दिया जलाकर नौकरशाहों को सच्चाई की राह दिखा रहा है।
2: बंदे में है दम में आज आपने महाराष्ट्र के एफडीए कमिश्नर तुकाराम मुंडे के जीवन से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं को देखा। अगले हफ्ते ऐसी ही किसी और बेमिसाल शख्सियत के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: राजस्थान के जोधपुर में भारत और जापान का संयुक्त अभ्यास वीर गार्जियन 2026 चल रहा है। यह अभ्यास 9 सितंबर से 22 सितंबर 2026 तक राजस्थान के जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन पर आयोजित किया जा रहा है। इसमें खास बात देखिए यह है कि आज जापान के एयर चीफ जनरल ताके हिरो मोरिता और भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल एपी सिंह ने स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस में उड़ान भरी है और तेजस में दोनों देशों की वायुसेना प्रमुखों की इस उड़ान ने भारत जापान रक्षा साझेदारी, इंटर ऑपरेटेबिलिटी और रणनीतिक संबंधों को नई ऊंचाई दी है। इस 14 दिवसीय अभ्यास में भारत के तेजस, राफेल, सुखोई 30 एमकेआई और जापान के F-21 विमान जटिल ऑपरेशन मिशनों को अंजाम देंगे। राजस्थान में प्रसिद्ध कृष्ण धाम श्री सांवरिया सेठ जी के मंदिर में एक श्रद्धालु ने अनोखा चढ़ावा चढ़ाया है। निम्बा हेड़ा के एक व्यापारी ने धर्मराज बंजारा ने अपने कारोबार में मिली सफलता से खुश होकर भगवान के चरणों में खरीबा प्राइवेट सीमेंट प्लांट का एक मॉडल अर्पित किया। तस्वीरें देखिए, सीमेंट प्लांट का ये मॉडल जो है 1 किलो 200 ग्राम चांदी से पूरी तरीके से बना हुआ है और इसकी कीमत जो है 2,40,000 रुपए बताई जा रही है। कारोबार में कामयाबी के बाद कारोबारी ने भगवान को ये अनोखी भेंट अर्पित की। अपने संकल्प को पूरा करने के लिए धर्मराज पंचारा ने अपने परिवार, रिश्तेदारों और मित्रों के साथ निम्बाहेड़ा से मंदिर तक की पैदल यात्रा भी पहुंचकर दर्शन के बाद उन्होंने चांदी से बना सीमेंट प्लांट का मॉडल जो है बकायदा भगवान सांवरिया सेठ के चरणों में भेंट किया। देखिए, गुड न्यूज टुडे लगातार दर्शकों से अपील कर रहा है कि आप भी GND पर मनाए जा रहे इस उत्सव में शामिल हो जाइए। इसके लिए बस आपको इतना सा करना है कि अपने घर पधारे गजानन का वीडियो आपको बनाना है, हमें भेज देना है, हम उन वीडियोस को दुनिया तक पहुंचाएंगे। तस्वीर देखिए, हमारे पास लगातार दर्शक जो है वीडियोज भेज रहे हैं। महाराष्ट्र के कोला से सर्वेश सावले ने हमें गणेश उत्सव की अद्भुत तस्वीरें शेयर की हैं। अपने वाहन मूसक के साथ पंडाल में विराजमान बप्पा के सिर पर नारंगी पगड़ी शोभायमान नजर आ रही और भगवान के दर्शन के गली में सुंदर मालाएं और बप्पा को फल और मिष्ठान का भोग लगाया गया। दूसरी तस्वीर देखिए, मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर से अंकिता सोनी ने शेयर किए। शानदार लाइटिंग के साथ गणपति पंडाल सजाया गया है, फूल और मालाओं से सुशोभित दरबार में बप्पा विराजमान नजर आ रहे हैं और विधि विधान के साथ मंगल मूर्ति की आराधना की जा रही है।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आती है।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
4: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
6: किस ग्रह की अशुभ दशा में हृदय रोग होने की संभावना होती है? किस ग्रह की अशुभ दशा में लंबी बीमारी हो सकती है और किस ग्रह की अशुभ दशा में विचित्र बीमारियां हो जाती हैं? ग्रहों की अशुभ दशा का क्या है प्रभाव और क्या है अशुभ दशा से बचने के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
1: महाराजपुर के चंद्रपुर में सजा तुकुम के राजा का दरबार, श्रद्धालुओं के बीच आकर्षण का केंद्र बनी बप्पा की मनमोहक प्रतिमा। चावल, दाल, साबूदाना और मूंगफली के दानों से किया गया है निर्माण। गुजरात के अंबाजी धाम में आस्था का महोत्सव, विधि विधान से भादरवी महामेले का शुभारंभ, करीब 40 लाख श्रद्धालुओं के आने का अनुमान। नेशनल पार्क से गांधी सागर में शिफ्ट हुई मादा चीता CCB2। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अभ्यारण्य में किया रिलीज, देश का दूसरा बड़ा चीता घर बना गांधी सागर। गोल्ड मेडल से बस एक कदम दूर भारतीय महिला क्रिकेट टीम, एशियन गेम्स में बांग्लादेश को 114 रनों से हराया। शफली वर्मा ने 49 गेंद में लगाई सेंचुरी। गेम्स में भारत को शूटिंग में मिला दूसरा सिल्वर मेडल, एला बेनिल ने 10 मीटर एयर राइफल में किया कमाल, मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में भी पदक पक्का। मेरठ में एयर शो के आखिरी दिन आसमान में देखा रोमांच, सूर्य किरण एरोबैटिक टीम ने दिखाया हैरतअंगेज करतब, बड़ी संख्या में दीदार को पहुंचे लोग। एशियन गेम्स के पहले ही दिन इंडियन महिला टीम ने किया कमाल, बांग्लादेश को 114 रनों से हराया। एशियन गेम्स के फाइनल में भारत ने बनाई जगह, 22 सितंबर को श्रीलंका के खिलाफ होगा मैच। टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 195 रन बनाए, पीछा करते हुए बांग्लादेश की पूरी टीम 81 रनों पर ढेर। शेफाली वर्मा ने महिला T20 में बनाया सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड, 49 गेंदों में ठोक दिया सेंचुरी। महिला T20 सेमीफाइनल्स में किया प्रवेश, एक मेडल पक्का। देशभर में गणेशोत्सव की धूम, विभिन्न स्वरूपों में गजानन की आराधना, कई जगहों पर प्रतिमा विसर्जन भी जारी। राजकोट के गणपति पंडाल में नजर आया अनोखा नजारा, रोबोट के जरिए उतारी गई आरती। गणेश पंडाल में धर्म और टेक्नोलॉजी के संगम को देखकर लोग रह गए हैरान, बप्पा के दर्शन करने के लिए दूर दूर से पहुंच रहे हैं लोग। बिहार के मधेपुरा में गणेश प्रतिमा के विसर्जन पर शोभा यात्रा को

कोलकाता की त्रिकाल जहांगी बनी आकर्षण का केंद्र। मधेपुरा में प्रतिमा विसर्जन के दौरान कलाकारों ने मनमोहक प्रस्तुति दी, बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए। पुणे के राजौंड गांव महागणपति मंदिर में गणेशोत्सव की शानदार धूम, ड्रोन में दिखी तस्वीरें अद्भुत। गणेशोत्सव के चलते राजौंड गांव को भी रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया। राजौंड गांव महागणपति मंदिर में हर साल होता है भव्य आयोजन, दूर दूर से पहुंचते हैं दर्शनार्थी। अमरावती के बुधवारा में खाटू श्याम मंदिर की थीम पर गणेश पंडाल में सजाई गई भव्य जहां की आजाद हिंद गणेश उत्सव पंडाल में तैयार। पप्पा के साथ खाटू श्याम जी की भी दर्शन करने का मौका मिला, बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। भिलाई में बस्तर की प्रसिद्ध दंतेश्वरी माता मंदिर की थीम पर बना गणेश पंडाल। नक्शमन मंदिर में विराजमान कुरक का विनायक घर की तरह बनाने की कोशिश की गई। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले सर्वधर्मीय महाआरती का आयोजन किया गया। हिंदू समाज के साथ मुस्लिम, सिख, बौद्ध और ईसाई समाज के लोग भी शामिल हुए। कोल्हापुर में महापालिका की अच्छी शुरुआत, बस से गणेश मूर्ति को पहुंचाया गया विसर्जन स्थल। जालना में गणेश उत्सव पर अनोखी प्रदर्शनी, प्रतिमाओं के जरिए समझाया जा रहा है भूगोल का विज्ञान। पुणे में श्रीमंत भाऊ साहेब रंगारी गणपति की भव्य और दिव्य सजावट के जनन की आस्था और भक्ति में पूरी तरीके से सराबोर नजर आए भक्त। गणेश उत्सव के दौरान पंडाल में उमड़ रहा बप्पा के भक्तों का सैलाब, बप्पा के अलौकिक स्वरूप के हो रहे हैं दर्शन। गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों की गूंज, पुणे के प्रमुख गणेश पंडाल की भव्य सजावट। बैडमिंटन खिलाड़ी सायना नेहवाल ने किए बप्पा के दर्शन, श्रीमंत भाऊ साहेब रंगारी गणपति पंडाल में महाआरती की शामिल हुए लोग। दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट के लोगों ने धूमधाम से मनाया गणेश उत्सव। बीजेपी नेता सुनील देवघर के आवास पर गायक का जुबिन गर्ग की स्मृति में रखा गया विशेष कार्यक्रम। चित्तौड़गढ़ श्री संवलिया सेठ मंदिर में दिखी समर्पण की अद्भुत मिसाल, व्यापारी ने करीब 1 किलो 200 ग्राम चांदी से बना सीमेंट प्लांट मॉडल अर्पित किया। भगवान को अर्पित किया गया सीमेंट प्लांट का मॉडल की करीब 2.5 लाख रुपए बताई जा रही है कीमत। अंबाजी में भादरवी महामेला आज से शुरू, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने रथ खींचकर उद्घाटन किया। भादरवी महामेले में दिखा शक्ति, भक्ति और आस्था का अद्भुत संगम। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड की तैयारियां लगभग पूरी, 22 सितंबर को होगा आयोजन। दिल्ली के श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश मंदिर में राधाष्टमी पर्व की धूम, द्वारका सेक्टर 13 स्थित स्कॉन मंदिर में धूमधाम से तैयारियां। दोनों से किया गया राधा रानी का भव्य और दिव्य अभिषेक। रंग बिरंगे सुगंधित फूलों और गुब्बारों से अद्भुत नौका को सजाया गया। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की मानसी गंगा लीला का हुआ सुंदर चित्र, मंदिर में हुई विशेष राधाष्टमी आरती, आस्था और भक्ति में सराबोर नजर आ श्रद्धालु। श्रद्धालुओं से अनूठे दर्शन का आनंद लिया, नव उत्सव की भव्य और शानदार सजावट। भारत और जापान के बीच संयुक्त वायु अभ्यास वीर गार्जियन 2026 जारी, 22 सितंबर तक का एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर में आयोजन। चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह और JASDF के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल ने युद्ध अभ्यास का निरीक्षण किया। अयोध्या में सूर्यकुंड मेले का आगाज, श्रद्धालुओं ने सरयू नदी के पवित्र जल में पवित्र डुबकी लगाई। सूर्यदेव को अर्घ्य देकर श्रद्धालुओं ने अपने परिवार के लिए सुख समृद्धि की कामना की। श्रीनगर पर्यटक सुहावने मौसम को उठा रहे हैं लुत्फ, डल झील में पारंपरिक शिकारा राइड। जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस पर निकल गई रैली, लोगों ने विश्व शांति की प्रार्थना की। हैदराबाद में नशा मुक्ति को लेकर चला गया अभियान, साइकिल राइडिंग से लोगों को जागरूक किया गया। तमिलनाडु की थूथुकुड़ी में चिथरई उत्सव की धूम, पारंपरिक बैलगाड़ी दौड़ का आयोजन।
रेलगाड़ी दौड़ में हिस्सा लेने दूर दूर से पहुंच रहे प्रतिभागी, बड़ी संख्या में लोग जुटे। राजौरी के सरकारी आईटीआई की लोगों को रोजगार से जोड़ने की अच्छी पहल, छात्रों को दी जा रही है वोकेशनल ट्रेनिंग। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में हेतमापुर में सरयू नदी का कटान जारी, बाढ़ की चपेट। सरयू नदी में लगभग 31 पक्के मकान बाढ़ में डूबकर पीड़ित परिवारों को प्रशासन ने भेजी आर्थिक मदद। सरयू नदी के जलस्तर पर प्रशासन की पूरी नजर, प्रभावित परिवारों के लिए भोजन व्यवस्था। बिहार के कैमूर में बनेगा नया एयरपोर्ट, प्रशासन ने सरकार को भेजा प्रस्ताव। कैमूर के रामपुर प्रखंड में 161 एकड़ भूमि हुई चिन्हित। दिल्ली में फिट इंडिया मूवमेंट के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, पूर्व भारतीय क्रिकेटर परविंदर अवाना ने हिस्सा लिया। फिट इंडिया मूवमेंट इवेंट के मंच पर लोगों की फिटनेस का भी हुआ टेस्ट। फिट इंडिया इवेंट में लोगों ने जमकर डांस करके बहाया पसीना, हर उम्र लोगों के लिए सरे। फिट इंडिया मूवमेंट के तहत संडे ऑन साइकिल का भी आयोजन किया गया, बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। चंडीगढ़ में फिटनेस और एकता का संदेश देने के लिए सुखना लेक पर हुआ मैराथन। कुड्डलोर के ऐतिहासिक नटराज मंदिर में विश्व प्रसिद्ध नाट्यांजलि नृत्य महोत्सव का भव्य शुभारंभ। नाट्यांजलि नृत्य महोत्सव की विधि विधान के साथ हुई गई शुरुआत, कलाकारों ने दस्तक दी। नाट्यांजलि समारोह में देखी भारतीय संस्कृति की भव्यता। बेंगलुरु में एन इवनिंग विद लेजेंड्स कंपैशन इन एक्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एन इवनिंग विद लेजेंड्स कंपैशन इन एक्शन कार्यक्रम में भव्य संगीत समारोह का आयोजन किया गया। किश्तवाड़ प्रीमियर लीग का दूसरा सीजन चौगान ग्राउंड में आयोजित किया गया, टूर्नामेंट में 24 टीमों ने हिस्सा लिया। असम में जुबीन दिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। जम्मू कश्मीर के कठुआ में बेहतर सड़क संपर्क से चमका पर्यटन, खूबसूरत हिल स्टेशन सरथल पर पहुंचा असम। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ धाम के लिए तीर्थयात्रियों की आवाजाही फिर से हो गई शुरू। बद्रीनाथ धाम पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। रोजगार को लेकर लखनऊ से आई गुड न्यूज, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 912 युवाओं को बांटा नियुक्ति पत्र। पुलिस विभाग में होगी 912 चयनित अभ्यर्थियों की तैनाती, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुभकामनाएं दी। पेशन रोजगार के तहत लखनऊ के लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम हुआ। दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में गोल्फ बॉल प्रीमियर लीग का आयोजन किया गया। गोल्फ बॉल प्रतियोगिता में रोजाना खेले जाएंगे दो मुकाबले, विजेता टीम को 31 लाख रुपए का पुरस्कार। 2000 साल पुराना रोमन शहर बना लाइट आर्ट एंड कैनवस, क्रोएशिया के पुला में 16 जगहों पर रोशन हुई ऐतिहासिक इमारतें। पुला में ऐतिहासिक और डिजिटल आर्ट का अनोखा प्रदर्शन। इस साल अंतरिक्ष और ब्रह्मांड बना फेस्टिवल की मुख्य थीम, कलाकारों ने रोशनी से पेश की कल्पनाएं। के मुख्य रोमन चौक पर देखिए खास कलाकृतियां, बटरफ्लाई फ्लैपिंग इट्स विंग्स बनी खास प्रस्तुति। जर्मनी, यूक्रेन, नॉर्वे और हांगकांग के कलाकारों ने अद्भुत रोशनी दी। चीन के वुहान में इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल, 12 देशों के 21 दिग्गज पतंगबाजों का जमावड़ा। चीन में पतंगों का महासंग्रह, वुहान में पतंगों का वर्ल्ड क्लास शो। पतंगबाजी के शौकीनों के लिए खास मौका, पारंपरिक और आधुनिक पतंगों की अद्भुत झलक। उत्तरी चीन के इनर मंगोलिया में छाया घना कोहरा, वेटलैंड का नजारा अद्भुत।
चीन के हेनान प्रांत में देखिए अद्भुत बादल पहाड़।

0: बादलों के समुद्र में तैरते हुए नजर आए। सैंटियागो में वार्षिक स्वतंत्रता दिवस सैन्य परेड सजी, चिली के झंडे के रंगों वाले लड़ाकू विमानों ने भरी उड़ान। चिली पुलिस की जामाजा केनाइन यूनिट परेड में हुई शामिल। अनुभवी पुलिस डॉग्स अपने हैंडलर्स के साथ कदम तार करते हुए नजर आए। पुलिस पपीज ने मिलिट्री परेड में किया डेब्यू। महिला पुलिसकर्मी पपीज को गोद में लेकर नजर आई। मार्च से पहले सुरक्षा बलों ने पपीज को बड़े प्यार से दुलारा। 26 पपीज को मिल रही है ट्रेनिंग, इनमें 17 जर्मन शेफर्ड और बेल्जियम मेलिनोस। चीन के बीजिंग में अनोखा रोबोट किंडरगार्टन हुआ शुरू। इंसानों के बच्चों की तरह रोबोट्स को दी जा रही है ट्रेनिंग। सेंटर में एक दर्जन से ज्यादा छोटे बड़े ह्यूमनॉइड रोबोट्स शामिल। बदलते परिवेश के हिसाब से खुद के काम में परिवर्तन कर रहे हैं रोबोट्स। वर्षीय कनाडियन सर्फर एरन ब्रूक्स ने रचा इतिहास। विमेंस कैटेगरी में ट्रेल्स प्रो सर्फिंग में जीता खिताब। पुरुषों में ब्राजील के मिगुएल पोपो बने चैंपियन। भारत को पहली बार मिली एशिया सीनियर वुशु चैंपियनशिप की मेजबानी। साल 2028 में होगी प्रतियोगिता। भारत की मेजबानी में 42 देश वुशु चैंपियनशिप में लेंगे हिस्सा। मोहम्मद सिराज हैदराबाद रणजी टीम के हो गए कप्तान। चामा मिलिंद को मिली उप कप्तानी। रणजी ट्रॉफी की 11 अक्टूबर से होगी शुरुआत। त्रिपुरा की टीम से होगी हैदराबाद की पहली बिड़ंत। मोहन बगान का 8 साल का इंतजार हुआ खत्म। 31वीं बार कलकत्ता लीग का बना चैंपियन।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आती है।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को। गुड न्यूज
0: सिंह उन्होंने बच्ची को जन्म दिया है। दोनों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए फैंस के

0: उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए फैंस के साथ ये खुशखबरी शेयर की। अब उनकी बड़ी बेटी दुआ को एक छोटी बहन मिल गई है। और खास बात यह है कि एक दिन पहले ही दीपिका और रणवीर अपने परिवार के साथ मुंबई के लालबाग चौराहा पंडाल में और सिद्धिविनायक मंदिर में बप्पा के दर्शन करने के लिए पहुंचे थे।
1: दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह के घर पर एक बार फिर से किलकारी गूंज रही है। दीपिका और रणवीर एक बार फिर से पेरेंट्स बन गए हैं। दीपिका पादुकोण एक बार फिर से बेटी की मां बनी हैं। इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए उन्होंने ये खुशखबरी शेयर की। हालांकि उन्होंने बेटी के जन्म की जानकारी को बेहद पर्सनल रखने की कोशिश की और सोशल मीडिया पर इस अनाउंसमेंट को बहुत सादगी पूर्ण तरीके से शेयर किया। इसके साथ ही उन्होंने नजर बट्टू वाली इमेज भी शेयर की है। खास बात ये है कि दीपिका और रणवीर की दूसरी बिटिया का जन्म 19 सितंबर को हुआ, जब देश भर में राधा अष्टमी का पावन पर्व मनाया जा रहा था। साथ ही ये भी अहम है कि इस वक्त गणेश उत्सव चल रहा है और बेटी के पैदा होने से एक ही दिन पहले दीपिका और रणवीर गणपति के दर्शन करके उनका आशीर्वाद लेने पंडालों में भी पहुँचे थे। 18 सितंबर को वे लाल बागचा राजा के पंडाल में पहुंचे थे। साथ ही सिद्धि विनायक के दरबार में भी उन्होंने हाजिरी लगाई थी। इस दौरान रणवीर दीपिका का हाथ थामे उनके साथ मंदिर के अंदर जाते हुए नजर आईं। दोनों को मंदिर में देखकर फैंस ने एक्ट्रेस की डिलीवरी के कयास लगाने शुरू कर दिए थे। बताया जाता है कि 2024 में भी अपनी पहली संतान के जन्म से पहले दोनों सिद्धि विनायक मंदिर पहुंचे थे और अब 2026 में दूसरे बीबी का वेलकम करने से पहले भी दीपिका रणवीर गजानन के दर्शन करना नहीं भूले। बप्पा का आशीर्वाद लेने के ठीक एक दिन बाद ही उन्होंने अपनी दूसरी बेटी के जन्म की खुशखबरी सुनाई। बता दें 8 सितंबर 2024 को दीपिका और रणवीर की बड़ी बेटी दुआ का जन्म हुआ था और अब इस बार 19 सितंबर को उनके घर में एक और लाडली बिटिया रानी खुशियां लेकर आई है। दीपिका की दोनों बेटियों का जन्म सितंबर महीने में हुआ और इसे भी खूबसूरत संयोग माना जा रहा है। दीपिका और रणवीर ने इसी साल अप्रैल में एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताया था कि वो एक बार फिर से पेरेंट्स बनने वाले हैं। इसके बाद से ही उनके दूसरे बेबी का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था और अब दीपिका और रणवीर के घर एक और नन्ही परी आई है। तो बॉलीवुड और फिल्म इंडस्ट्री से लेकर तमाम दोस्त, शुभचिंतक और फैंस उन्हें खूब बधाइयां दे रहे हैं। मुंबई से भावना अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: गणेश उत्सव के पावन अवसर पर गुड न्यूज टुडे में भी गणपति पधारे और हम लोग श्योर हैं कि हमारे दर्शकों के घर भी गणपति बप्पा का जरूर आगमन हुआ होगा। हम चाहते हैं कि आप भी जीएनटी के गणपति उत्सव का हिस्सा बने। आप अपने अपने घर पधारे गजानन का वीडियो बनाकर हमें भेजिए, हम उन वीडियोस को दुनिया तक पहुंचाएंगे। आप हमें अपने वीडियो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7303409922। ये नंबर कॉल करने के लिए नहीं है, बल्कि ये नंबर सिर्फ वीडियो या तस्वीरें भेजने के लिए है। जब भी आप अपना वीडियो या फोटो भेजें तो साथ में अपना नाम और अपने शहर, गांव, कस्बे का नाम जरूर लिखें।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
3: किस ग्रह की अशुभ दशा में हृदय रोग होने की संभावना होती है? किस ग्रह की अशुभ दशा में लंबी बीमारी हो सकती है और किस ग्रह की अशुभ दशा में विचित्र बीमारियां हो जाती हैं? ग्रहों की अशुभ दशा का क्या है प्रभाव और क्या है अशुभ दशा से बचने के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
4: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: एवरेस्ट तीखा लाल, सही तीखा सही लाल।
3: महाराज के चंद्रपुर में सजा तुकुम के राजा का दरबार, श्रद्धालुओं के बीच आकर्षण का केंद्र बनी पप्पा की मनमोहक प्रतिमा। चावल, दाल, साबुदाना और मूंगफली के दानों से किया गया निर्माण। गुजरात के अंबाजी धाम में आस्था का महोत्सव विधि विधान से, भादरवी महामेले का शुभारंभ, करीब 40 लाख श्रद्धालुओं के आने का अनुमान। नेशनल पार्क से गांधी सागर में शिफ्ट हुई मादा चीता CC-B2। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अभ्यारण्य की थी किया रिलीज, देश का दूसरा बड़ा चीता घर बना गांधी सागर। गोल्ड मेडल से बस एक कदम दूर भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने एशियन गेम्स में बांग्लादेश को 114 रनों से हराया। शेफाली वर्मा ने 49 गेंदों में लगाई सेंचुरी। गेम्स में भारत को शूटिंग में मिला दूसरा सिल्वर मेडल। इलावेनिल ने 10 मीटर एयर राइफल में किया कमाल, मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में भी पदक पकड़ा। मेरठ में एयर शो के आखिरी दिन आसमान में देखा रोमांच, सूर्य किरण, एरोबैटिक टीम ने दिखाया रतंगेज करतब, बड़ी संख्या में दीदार को पहुंचे लोग।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की

नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। देखिए, देश में जगह जगह गणेशोत्सव की अनुपम छटा बिखरी हुई है। भगवान गणेश का अलग अलग रूप में श्रृंगार हो रहा है। एक से एक भव्य, अद्भुत और अनन्य पंडालों में बप्पा की शान से वो विराजे हुए हैं। पूरा देश इस वक्त बप्पा की भक्ति में पूरी तरीके से लीन है। मुंबई में तो गणपति उत्सव के अलग ही रंग देखने को मिल रहे हैं। अलग अलग थीम पर बनाए गए पंडालों के साथ साथ बप्पा की प्रतिमाओं को भी अद्भुत और अलौकिक रूप दिया गया है। तस्वीरें देखिए, तमाम तस्वीरें आपके टेलीविजन में स्क्रीन में इस वक्त हम दिखा रहे हैं। खासकर अगर आप देखें मुंबई में महाराष्ट्र के, तो अद्भुत श्रृंगार बप्पा के किया गया है। बड़े बड़े पंडाल तमाम लगाए गए हैं। और बात सिर्फ महाराष्ट्र की नहीं है, बल्कि समूचे देश में अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ इसी प्रकार की तस्वीरें देखने को मिलेंगी। देश में जगह जगह गणेशोत्सव की अनुपम छटा बिखरी हुई है। भगवान गणेश का अलग अलग रूप में श्रृंगार हो रहा है। एक से एक भव्य, अद्भुत और अनन्य पंडालों में बप्पा शान से विराजमान है। पूरा देश इस वक्त बप्पा की भक्ति में लीन है। मुंबई में तो गणपति उत्सव के अलग ही रंग देखने को मिल रहे हैं। अलग अलग थीम पर बनाए गए पंडालों के साथ साथ बप्पा की प्रतिमाओं को भी अद्भुत और अलौकिक रूप दिया गया है।

0: विघ्नहर्ता के पधारने के बाद से पूरे देश में गणेशोत्सव की दिव्य छटा बिखरी हुई है। मुंबई के लालबाग के राजा के दरबार में हर दिन भक्तों का रेला उमड़ रहा है। यूं तो बप्पा के 32 स्वरूप हैं, लेकिन सबसे अलग और मनोहारी रूप हैं लालबाग के राजा, जिनका आशीर्वाद पाने के लिए हर रोज लाखों भक्तों की भीड़ उमड़ती है। हर आम और खास बप्पा के इस रूप के दर्शन के लिए उमड़ता है। एक्टर से लेकर क्रिकेटर तक लालबाग चौराजा के दर्शन में हाजिरी लगाते हैं। लेकिन धूम सिर्फ लालबाग चौराजा के दरबार में नहीं है, चर्चा परेल के राजा की भी है, क्योंकि इस बार पप्पा ने वारकरी विठल का अवतार लिया है। इस वेशभूषा में और पगड़ी के साथ पप्पा सबसे अलग, सबसे निराली नजर आते हैं। हाथों में मृदंग और वीणा ने इस मूर्ति को और भी भव्यता दी है। परेल के पंडाल की गिनती यूं भी मुंबई के बड़े पंडालों में होती है, लेकिन इस बार प्रतिमा को महाराष्ट्र की धार्मिक परंपरा से जोड़कर इसे नया लेवल दिया गया है।
1: मुंबई के बहुचर्चित एक ऐसे गणेश उत्सव पंडाल में जहां हमेशा ही विशेष थीम बनाई जाती है, यानी कि परेल का राजा के दरबार में सबसे पहले आप खुद ही गणपति बप्पा का दर्शन करें। बहुत ही विशाल और भव्य रूप में यहाँ पर स्थापित किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक तकरीबन 24 फीट की बप्पा की ऊंचाई है और विट्ठल के अवतार में यहाँ पर आए हुए हैं, और उनका दर्शन करने के लिए मुंबई, महाराष्ट्र, देश के कोने कोने से तमाम श्रद्धालु पहुँच रहे हैं और हर कोई उन्हें सिर्फ एक झलक देखना चाहता है। वाकई में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं, और देखने के बाद ऐसा लगता है कि कितना भी यहाँ पर लोगों ने कतार खड़ा हुए होंगे और कितना भी समय लगाया होगा, लेकिन देखने के बाद बप्पा को तुरंत ही थकावट दूर हो जाती है, एक अलग ही तरह की एनर्जी आ जाती है।
0: परेल का ये गणेश पंडाल इस साल अपने 80वें साल में है। हर साल नई अंदाज की प्रतिमा इसकी खासियत रही है। इस साल भी भक्त बप्पा को देखकर गदगद हैं। अब आपको घाट कोपर लिए चलते हैं, जहां भावेश्वर के राजा का भव्य दरबार सजा है, जिनकी प्रतिमा ऐसी है कि सभी देखकर दंग हैं। अखिल ब्रह्मांड में साकार गणपति, जिनके पीछे स्वयं भगवान सूर्य की आभा और सामने नतमस्तक सभी ग्रह। अंतरिक्ष की थीम में बप्पा नवग्रह के साथ सूर्य नारायण के अवतार में पधारे हैं। बप्पा की इस अभूतपूर्व कल्पना ने सभी श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया है।
1: गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। मुंबई के घाटकोपर इलाके में मैं इस समय मौजूद हूँ, भावेश्वर के राजा के दरबार में हूँ। पहले आप खुद भी बप्पा का दर्शन करें, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं इस समय, और देखिए क्या स्वरूप, क्या अवतार के साथ यहाँ पर पधार गए हैं, स्थापित किए गए हैं, और यही वजह है कि कोने कोने से मुंबई के लोग बप्पा का दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। खासियत क्या है, क्या दिखाने की कोशिश हो रही है इस मंडल द्वारा, क्या चलचित्र है, ये जानने की हम सीधे कोशिश करते हैं। मंडल के अध्यक्ष पुनीत हमारे साथ हैं, कैसे हैं?
2: बस ठीक है सर।
1: चेहरे पे इतनी ज्यादा आपके खुशी नजर आ रही है, बप्पा को ले ही आ गए, इतने खूबसूरत, क्या इनका किरदार है, क्या अवतार है, थोड़ा बताओ।
2: हमारा जो भावेश्वर राजा और कुणाल भाई पाटिल के जो मूर्तिकार है हमारे, उनका एक ही टारगेट रहता है कि कुछ नया दिखे, कुछ नया करना है और नए अवतार में भगवान को लाना है। तो इस साल हमने सूर्य नारायण के अवतार में भावेश्वर राजा को लाए है, और साथ में है नव ग्रह, जो सूर्य नारायण है जो मेन ग्रह है, जो सबको, सभी ग्रहों को शक्ति प्रदान करते हैं, और आजू बाजू सौर्य मंडल में भगवान बैठे हैं, ऐसा हम लोग ने इस साल थीम बनाया है।
0: 52 साल के वक्त से ये पंडाल गणपति की ऐसी ही भव्य प्रतिमा के लिए मशहूर है। भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन आस्था गहरी है।
3: तो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है, इतने मनमोहक है कि नजर ही नहीं हटती, और उस पर उनकी जो सजावट की है यहाँ के श्रद्धालुओं ने, वो तो बहुत ही ज्यादा उम्दा है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। बप्पा को देखो तो बस देखते ही रह जाओ, इतनी मनमोहक मूर्ति है।
4: और बहुत ही सुकून और शांति हमें मिलती है जब हम लोग 10 दिन बप्पा के दर्शन करते हैं, लोगों का मिलना जुलना होता है, नए नए लोग उसे मिलते हैं और ना खुशियां बांटते हैं, भजन कीर्तन होता है, तो मन को बहुत शांति मिलती है, ये एक डिटॉक्स है सबके लिए।
0: गणेश उत्सव में बप्पा को अलग अलग थीम वाले पंडालों और रूपों में विराजित किया गया है। मुंबई में एक बेटे ने अपने पिता के पेशे और उनके संघर्ष को समर्पित एक गणेश पंडाल सजाया है। ऑटो रिक्शा मॉडल में भगवान गणपति की स्थापना की है और साथ में पिता का कटआउट लगा दिया है।
5: 2021 में जैसे हम लोग ने मुंबई लोकल ट्रेन बनाया था मिनिएचर कॉन्सेप्ट में, फिर उसके बाद हर साल के जैसे मुंबई लोकल हुआ, बस ट्राम हुआ, फिर BHT हो गया, अलग अलग कॉन्सेप्ट जो मुंबई के ट्रांसपोर्ट होते हैं वो यूटिलाइज करके हम लोग गणपति को फेस्टिवल को कनेक्ट करते हैं। तो ये साल मुझे कॉन्सेप्ट था कि ये साल मुझे डेकोरेशन मेरे डैडी को डेडिकेट करना है, तो मुंबई का जो रिक्शा है तो उस हिसाब से मैंने सोचा कि ये साल बापा को मैं मुंबई रिक्शा में बैठा था, तो एक यूनिक कॉन्सेप्ट उसमें बन सकता है।
0: ऑटो रिक्शा मॉडल के अंदर बप्पा और बाहर चश्मा लगाए खड़े उनके पिता का ये कटआउट न सिर्फ गणपति इंस्टॉलेशन की एक अनोखी मिसाल है, बल्कि पिता पुत्र के बीच मजबूत रिश्ते की इमोशनल कहानी भी बयां कर रही है। मुंबई के किंग सर्कल की GSB महागणपति, जिनकी गिनती देश के सबसे समृद्ध गणपति मंडलों में होती है, यहां इस साल 66 किलो से ज्यादा सोना, 335 किलो चांदी और कीमती रत्नों से बप्पा का अलौकिक श्रृंगार किया गया है। महागणपति के गणेश उत्सव को 703 करोड़ 27 लाख रुपए का रिकॉर्ड इंश्योरेंस कवर दिया गया है, लेकिन GSB महागणपति की पहचान सिर्फ सोने और चांदी की चमक नहीं, बल्कि यहाँ की वैदिक परंपरा, पूजा, सेवा और हर दिन हजारों श्रद्धालुओं के लिए होने वाला अन्नदान भी इसकी सबसे बड़ी खासियत है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: सिर्फ मुंबई नहीं, आपको बता दें पूरे महाराष्ट्र में इन दिनों अलग ही रौनक देखने को मिल रही है। बप्पा की भक्ति में हर कोई लीन है और उनका आशीर्वाद पाना चाहता है। पुणे और नागपुर में भी गजानन के एक से बढ़कर एक पंडाल और प्रतिमाएं तैयार किए गए हैं।

0: देश भर में अनोखी थीम पर गणपति पंडाल सजे हैं और गजानन एक से बढ़कर एक स्वरूप इन पंडालों में विराजमान है। मैसूर पैलेस की थीम पर बने इस डालिया शहरी गणपति पंडाल में गोल्डन गणेश स्वरूप दिख रहा है। यहाँ करीब 25 से 30 किलो के सोने चांदी और अमेरिकी डायमंड से भगवान गजानन सजाए गए हैं। बाप्पा का मुकुट, हाथ, पैर, ये सभी सोने चांदी से बनाए गए हैं। यहाँ तक कि उनके नीचे लगाई गई गणपति महाराज का छोटा स्वरूप भी सोने चांदी और हीरे से तैयार किया गया है।
1: आप देखेंगे एक पंडाल में भगवान गणेश यहाँ पर विराजमान है और जो मूर्ति है उस पे आप देखेंगे तो गोल्ड, सिल्वर और डायमंड्स से जड़ी हुई ज्वेलरी यहाँ पर लगाई गई है। भगवान गणेश यहाँ पर विराजमान है, लोग आते हैं यहाँ पर दर्शन करते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, आरती पूजा में शामिल होते हैं।
0: डालिया शहरी के गणपति बापा को सूरत का राजा भी कहा जाता है। बड़ी मात्रा में आभूषणों के इस्तेमाल करने की वजह से डालिया शहरी के बापा को गुजरात के सबसे महंगे गणपति माना गया है।
2: ये पिछले 30 साल से लगाए थे, ये जो शनगार आप देख रहे हैं वो पिछले 30 साल से है, तो इसकी जो कीमत है वो आप अंदाज लगा सकते हैं, पिछले 30 साल से और इस साल बहुत कंपेयर हो सकता है।
0: अब ओझर के विघ्नहर बाप्पा का शाही अंदाज देखिए। यहाँ 200 साल पुराने करोड़ों के गहनों से विघ्नेश्वर का श्रृंगार किया गया है। पेशवाकालीन ठाट बाट में बाप्पा के स्वर्ण रूप की झलक पाने के लिए यहाँ भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। पुणे से 85 किलोमीटर दूर कुकड़ी नदी के किनारे बसा है ओझर का श्री विघ्नहर मंदिर। यहाँ गणेशोत्सव पर बाप्पा का सबसे शाही श्रृंगार किया गया है। सिंदूर लेपित स्वरूप मूर्ति, बाईं ओर घूमी हुई सून और आंखों नाभि में जड़े हीरे, यहाँ बाप्पा को पेशवा काल के 200 साल पुराने सोने के गहने पहनाए गए हैं। माथे पर हीरा और चंद्रकोर, गले में चंद्रहार और स्वास्तिक हार, सिर पर छत्र, कंठीहार, शिवगंध और कमर में करदूरा। हर हार की कीमत लाखों में, पूरा श्रृंगार करोड़ों का।
3: कुछ अलंकार जो है पेशवेकालीन है, उसमें कंठीहार है, एक चंद्रकोर है, उसमें पेशवेकालीन हीरा जड़ा हुआ है। बाद में वो जो वस्त्र पहना है वो रेशमी जरी के वस्त्र पहनाए जाते हैं और उसमें स्वस्तिकार रहता है, बादाम हार रहता है, करगोटा रहता है, वो सब सोने का रहता है। और जो मुकुट रहता है उस पे भी वो पेशवेकालीन हीरे हीरा मौजूद है और वो पेशवेकालीन मुकुट पहनाया जाता है।
0: बाप्पा का ये इकलौता मंदिर है जहाँ सोने का कलश और शिखर है। खास बात तो ये है कि आभूषण से सजे बाप्पा के इस अद्भुत अलौकिक रूप का दर्शन भक्त सिर्फ साल में दो बार ही कर पाते हैं, एक भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी और दूसरा माँ शुक्ल चतुर्थी के मौके पर।
4: 1785 को बनाया गया है, तभी से पुरानी अलंकार तो है और देवस्थान ट्रस्ट ने नया अलंकार भी बनाया, सब सोने का अलंकार इधर रहते और वो सब पहनाए जाते
0: हैं। पुणे में गणपति बाप्पा का एक ऐसा मंडप तैयार किया गया है जिसे देखकर बच्चे ही नहीं बल्कि बड़े भी हैरान रह गए। चॉकलेट, कैंडी, आइसक्रीम और बिस्किट से सजे इस अनोखे बंगले में गणपति बाप्पा विराजमान है। थर्माकोल की मदद से चॉकलेट, आइसक्रीम, कैंडी और बिस्किट की आकर्षक आकृतियां तैयार की गई हैं। ये तस्वीरें पुणे के FC रोड की है जहां 21,000 पानी पूरी से 13 फीट ऊंची गणेश मूर्ति बनाई गई है। बाप्पा की इस नाजुक और अनूठी प्रतिमा का निर्माण 2 महीने की कड़ी मेहनत के बाद हुआ और अब इसकी देखभाल के लिए 24 घंटे कारीगर तैनात है। आयोजकों का मानना है कि 21,000 पानीपुरी से बनी इस विशेष प्रतिमा को विसर्जित करने के बजाय इससे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर तैयार किया जाएगा। ये है पुणे का सबसे प्रसिद्ध श्रीमंत दगड़ू शेठ हलवाई गणपति का पंडाल, जो गणेशोत्सव के दौरान इन दिनों सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र बना हुआ है।
5: दगड़ूशेठ हलवाई गणपति मंदिर में है, इस बार इसे प्रेम मंदिर कहा जा रहा है। आप देख सकते हो भीड़ जुटी है भक्तों की, और गणपति मेरे महादेव का जो उनका मुकुट है वो पहने हुए है, गणेश जी है हाथ में मोदक है, और पुणे का सबसे बड़ा गणेशोत्सव यहाँ किया जाता है। पुणे में 5 मानाचे गणपति यानी कि पहले 5 रेपुटेड गणपति है, उनके अलावा ये अहम गणेश है जहाँ भक्तों की भीड़ रहती है।
0: इस पंडाल की थीम वृंदावन के प्रसिद्ध प्रेम मंदिर से प्रेरित है, इसलिए मंदिर की दरो दीवार पर राधा कृष्ण की लीलाओं को भी बेहद करीने से उकेरा गया है, जो इस पंडाल में खूबसूरती में 4 चांद लगाने का काम कर रहा है। करीब 120 फीट लंबी, 90 फीट चौड़ी और 100 फीट ऊंची ये विशाल संरचना दूर से ही श्रद्धालुओं का ध्यान अपनी ओर खींच रही है।
6: ये सब गणेश जी जो विराजमान हुए हैं उनके द्वारा ये पूरा चैतन्यमय प्रेम मंदिर हो गया है, नहीं तो वो एक सेट हो सकता था, लेकिन गणेश जी के स्थापना से यहाँ चैतन्य
5: से जिंदा दिल बनाया गया
6: जी, यहाँ चैतन्य की लकीर ये भक्तों की श्रद्धा से ये बढ़ गई है।
0: ये नजारा महाराष्ट्र के चंद्रपुर का है, जहां एक ही पंडाल में भक्तों को लालबाग के राजा और साईं बाबा का आशीर्वाद मिल रहा है। दूर दूर से पहुंच रहे भक्त बाबा के दर्शन के साथ साथ साईं बाबा के भी दर्शन कर पा रहे हैं। अपनी अपनी मनोकामनाएं लेकर श्रद्धालु दोनों भगवानों के दरबार में माथा टेक रहे हैं।
7: भव्य गेट यहाँ पर बनाया गया, एक बेहद ही आकर्षक गेट है। गेट से अंदर आते ही हमें द्वारका माई के दर्शन हो जाएंगे। द्वारका माई में साईं बाबा के साथ उनके भक्त किस तरीके से रहते थे, उनके जीवन पर आधारित ये द्वारका माई की झांकी यहाँ पर बनाई गई है। उस वहाँ पर भी बाबा जो है साईं बाबा प्रत्यक्ष रूप से भक्तों के बीच में आपको नजर आएंगे, और उससे थोड़ा अंदर आने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि ये साईं बाबा की जो मूर्ति है यहाँ पर साकारी गई है, और साथ ही यहाँ पर समाधि भी यहाँ साईं बाबा की बनाई गई है।
0: नागपुर में गणेशोत्सव की भव्य धूम है। शहर में मशहूर दक्षिणामूर्ति सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल ने इस बार श्रद्धालुओं के लिए कुछ ऐसा तैयार किया है जो लोगों का ध्यान खींच रहा है। यहां पुणे के आलंदी स्थित संत ज्ञानेश्वर महाराज समाधि मंदिर की हूबहू प्रतिकृति बनाई गई है, यानी नागपुर में ही श्रद्धालुओं को आलंदी तीर्थ की झलक मिल रही है। नागपुर के महल इलाके में बने इस पंडाल में भक्ति और कला का अनोखा संगम देखने को मिल रहा है। कारीगरों ने महीनों की मेहनत के बाद आलंदी के संत ज्ञानेश्वर महाराज समाधि मंदिर को यहां साकार किया है। हर छोटी बड़ी बारीकी का खास ख्याल रखा गया है। दक्षिणा मूर्ति मंडल की ये पहल श्रद्धालुओं को भक्ति से जोड़ने के साथ साथ महाराष्ट्र की समृद्ध वारकरी परंपरा की झलक भी दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
8: देखिए, अनोखी गणेश प्रतिमाओं की फहरिस्त में अगला नंबर आता है आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले की इस प्रतिमा का, जो हम दिखाने जा रहे हैं, जो इन दिनों देखिए लोगों के आकर्षण और लगातार वहां पर जो तमाम श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं। गणेश जी की इस प्रतिमा को मिट्टी की जगह 211,000 पैन से तैयार किया गया है। जी हाँ, तस्वीरें देखिए, 42 फीट ऊंची बप्पा की इस प्रतिमा सजाने के लिए अलग अलग रंगों के पैनों का प्रयोग किया गया है, और इससे बनाने में जो है 2 महीने से ज़्यादा का समय भी लगा। आयोजकों का ये कहना है कि कुछ नया करने के मकसद से उन्होंने ये अनोखी प्रतिमा बनाई। खास बात यह है कि पूजा के बाद मूर्ति में लगे सभी पैन गणेश भक्तों को भेंट कर दिए जाएंगे। इस फहरिस्त में अगला नाम जो है आंध्र प्रदेश के अनाकापल्ली का है, जहां पर विराज हैं 21,000 बड़े भरे पौधों से तैयार किए गए गणपति। गजानन की इस प्रतिमा को सिर्फ पौधों से तैयार किया गया है। श्री चिंतामणि गणपति क्षेत्र मंडल ने इस अनोखी पहल की शुरुआत की। तस्वीरें अब आपको महाराष्ट्र के वाशिम की तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए जहां पर गणपति बप्पा का यह अनोखा रूप हर किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। यहां पर एक गणपति पंडाल में 15 किलो सुपारी, 5 किलो सौंफ और करीब 1 किलो लौंग इलायची से बप्पा की प्रतिमा तैयार की गई है। देखिए भक्ति के साथ साथ इस प्रतिमा में भारतीय मसालों और पूजा सामग्री की अनोखी कलाकारी भी देखने को मिल रही है। बहुत आकर्षक दिखने वाली बप्पा की इस अनोखी प्रतिमा का वजन करीब 70 से 80 किलो बताया जा रहा है। सबसे खास बात इसमें यह है कि इसे तैयार करने में 15 से 20 दिनों का वक्त लगा है। हरिद्वार में अर्धकुंभ थीम पर बप्पा की स्थापना की गई है। यहाँ पर महामाया गणपति संगठन ने भगवान के इस विशेष स्वरूप को स्थापित किया। साल 2027 में आयोजित होने वाले कुंभ मेले को ध्यान में रखते हुए गीता भवन में अर्धकुंभ थीम पर बप्पा की मूर्ति विराजमान की गई है। पौराणिक मान्यताएं ये कहती हैं कि हरिद्वार भगवान शिव की ससुराल और भगवान गणेश की ननिहाल है। ऐसे में ननिहाल में बप्पा का स्वागत पारंपरिक विधियों के साथ हुआ। पंडाल के भीतर भगवान गणेश की प्रतिमा के साथ कुंभ के उद्गम और समुद्र मंथन की सनातन प्रसंगों को इस भव्य झांकी के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। और चलिए अब आपको हैदराबाद लिए चलते हैं जहां पर बप्पा सबसे अलग अंदाज में नजर आए। गणेश उत्सव में बप्पा के अलग अलग रूप और भव्य पंडाल तो आपने खूब देखे होंगे, लेकिन हैदराबाद में गणपति बप्पा इस बार धरती से निकलकर अंतरिक्ष की सैर करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें देखिए 69 साल पुराने गणेश पंडाल में भगवान गणेश को स्पेस थीम के साथ सजाया गया है। रॉकेट से लेकर सैटेलाइट तक पूरा पंडाल भारत की अंतरिक्ष उपलब्धियों की कहानी बयां कर रहा है। तस्वीरें देखिए। मुंबई समेत महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में इन दिनों गणेशोत्सव की रौनक अद्भुत देखने को मिल रही है। नागपुर में भी कई गणपति पंडाल इन दिनों खासी सुर्खियां बटोर रहे हैं। एक पंडाल प्रसिद्ध दक्षिणा मूर्ति सार्वजनिक गणेशोत्सव पंडाल की है, जिसने इस साल भक्तों के लिए पुणे के आलंदी स्थित संत ज्ञानेश्वर महाराज समाधि मंदिर की हूबहू रेप्लिका तैयार की है, जिसमें लोगों को आस्था और कला का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है।

0: खूबसूरत पंडाल और पंडाल में विराजे गौरी पुत्र गणेश, जिनकी मनोहारी छवि ने भक्तों को अभिभूत कर दिया है। ये तस्वीर नागपुर महल परिसर स्थित दक्षिणामूर्ति सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल की है, जिसने परंपरा के अनुसार इस साल भी थीम आधारित गणपति पंडाल सजाया है। इस बार मंडल ने पुणे के आलंदी स्थित संत ज्ञानेश्वर महाराज समाधि मंदिर की हूबहू रेप्लिका तैयार की है। विशाल प्रवेश द्वार, नक्काशीदार खम्भे, मंदिर का गुंबद और समाधि स्थल का प्रारूप, हर हिस्से को बेहद बारीकी से सजाया और संवारा गया है।
1: ये हमारा क्या बोलते हैं 107वां साल है और हमारी जो मंडल की स्थापना है 1920 में हुई है। इस बार आप जैसे देख सकते हो, हमने पूरी प्रकृति जो बनाई है, प्रतिकृति वो बनाई है, ज्ञानेश्वर महाराज समाधि मंदिर, जो संजन समाधि मंदिर आनंदी, उसके ऊपर हमने प्रकृति बनाई है, प्रतिकृति बनाई है। तो इस बार हमने पीछे जो है गणपति के बैक साइड जो है, हमने वहाँ जो वहाँ जो संजीवन समाधि है, सेम वैसी प्रतिकृति हमने वहाँ पर बनाई है।
0: कारीगरों की महीनों की मेहनत के बाद आलंदी का पवित्र धाम गणेशोत्सव पर नागपुर में साकार हुआ है, जहां लोगों को एक तरफ बप्पा की मनोहारी प्रतिमा तो दूसरी ओर संत ज्ञानेश्वर महाराज के समाधि मंदिर की झलक देखने को मिल रही है। गणेशोत्सव के दौरान रोजाना यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, जो पंडाल की इस भव्यता और थीम को पसंद भी कर रहे हैं।
1: सभी गणेश भक्तों को मैं विनती करता हूँ कि बड़ी संख्या में आइए और गणपति बप्पा के और समाधि मंदिर के दर्शन का लाभ लीजिए।
0: दक्षिणामूर्ति सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल की ये कोशिश न केवल भक्तिभाव को बढ़ा रही है, बल्कि महाराष्ट्र की समृद्ध वारकरी परंपरा को भी शहर के केंद्र में जीवंत कर दे रही है। नागपुर से योगेश वसंत पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुडनेस टुडे।
2: खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज़ टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है।
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
6: गुड न्यूज टुडे लगातार दर्शकों से अपील कर रहा है कि आप भी जीएनटी पर मनाइए, उत्सव से जुड़िए। इसके लिए आपको बस इतना सा करना है कि अपने घर पधारे गजानन का वीडियो बनाना है, हमें भेज देना है, हम उन वीडियोज को दुनिया तक पहुंचाएंगे। हमारे पास देखिए लगातार दर्शकों की वीडियोज आ रहे हैं। तस्वीरें देखिए दिल्ली के अशोकनगर से। नव्या चावला ने हमें गणेशोत्सव की शानदार तस्वीरें शेयर की हैं। घर में शानदार मंडप सजाकर बप्पा की स्थापना की गई, सुंदर फूल झालर और लाइट से पंडाल को सजाया गया है। साथ ही साथ सुगंधित पुष्पों की माला भगवान गजानन धारण किए हुए हैं, उन्हें वस्त्र और मिष्ठान के साथ भोजन परोसा गया। वहीं दूसरी तस्वीर देखिए, अदिति अग्रवाल ने हमें राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से भेजी है। बड़े ही सलीके से बाल गणेश की मनमोहक प्रतिमा तैयार की गई है और उसके बाद पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ बप्पा को आसन पर विराजमान किया गया। साथ ही साथ देखिए पुष्पों की माला पहनाई गई है और सिर पर मुकुट के साथ मोरपंख अति शोभायमान नजर आ रहा है।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
7: किस ग्रह की अशुभ दशा में हृदय रोग होने की संभावना होती है? किस ग्रह की अशुभ दशा में लंबी बीमारी हो सकती है? और किस ग्रह की अशुभ दशा में विचित्र बीमारियां हो जाती हैं? ग्रहों की अशुभ दशा का क्या है प्रभाव और क्या है अशुभ दशा से बचने के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है।
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
9: महाराष्ट्र के चंद्रपुर में सजा तुकुम के राजा का दरबार, श्रद्धालुओं के बीच आकर्षण का केंद्र बनी बप्पा की मनमोहक प्रतिमा, चावल दाल साबूदाना और मूंगफली के दानों से किया गया निर्माण। श्रीनगर के श्री सिद्धि विनायक गणेश मंदिर में गणेशोत्सव की रौनक। गुजरात के अंबाजी धाम में आस्था का महोत्सव, विधि विधान से भादरवी महामेले का शुभारंभ। कुनो नेशनल पार्क से गांधी सागर में शिफ्ट हुई मादा चीता CC-B2। मेडल से बस एक कदम दूर भारतीय महिला क्रिकेट टीम, एशियन गेम्स में बांग्लादेश को हराया। एशियन गेम्स में भारत को शूटिंग में मिला दूसरा सिल्वर मेडल, हिला वेनिल 10 मीटर एयर राइफल में किया उन्होंने कमाल, मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में भी पक्का पदक।
5: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
9: भारतीय मेंस हॉकी टीम के एशियन गेम्स में धमाकेदार आगाज, इंडोनेशिया को 13-1 से हराया। दिलप्रीत सिंह के 4 गोल की मदद से भारतीय मेंस हॉकी टीम ने इंडोनेशिया के खिलाफ 13-1 की दमदार जीत हासिल की। पूर्व मैच में सुखजीत और दलप्रीत में बेहतरीन जुगलबंदी देखने को मिली, इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने एशियन गेम्स में धमाकेदार आगाज किया। 47वें मिनट में जुगराज ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदला और 1 मिनट बाद ही सुखजीत ने अपना दूसरा फील्ड गोल किया। भारत मंगलवार को श्रीलंका के खिलाफ अपना अगला मैच खेलेगा, इंडोनेशिया को हराने के बाद भारतीय हॉकी टीम के हौसले बुलंद। बीसवें एशियन गेम्स के पहले ही दिन इंडियन महिला टीम ने किया कमाल, बांग्लादेश को 114 रनों से हराया। एशियन गेम्स के फाइनल में भारत ने बनाई जगह, 22 सितंबर को श्रीलंका के खिलाफ खेलेगा मैच। टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 195 रन बनाए, पीछा करते हुए बांग्लादेश की पूरी टीम 81 रनों पर सिमटी। शेफाली वर्मा ने महिला T20 में बनाया सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड, 49 गेंद में लगाई सेंचुरी। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में शेफाली वर्मा सबसे ज्यादा 6 लगाने वाली बल्लेबाज बने। एशियन गेम्स 2026 का पहला आज दिन, कई खेलों के मेडल पर भारत की नजर। एशियन गेम्स में भारत को मिला पहला मेडल, 10 मीटर एयर राइफल की महिला टीम ने जीता सिल्वर। मिक्स मार्शल आर्ट्स में भारत के लिए अच्छी खबर, सुचिका तारियाल ने सेमीफाइनल्स में जगह बनाई। एशियन गेम्स में भारत को शूटिंग में मिला दूसरा सिल्वर, हिलावेनिल ने 10 मीटर एयर राइफल में जीता सिल्वर। देश के लिए एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल जीतने वाली सोनम के घर मना जश्न। पौली में चल रहे भारत अमेरिका युद्धाभ्यास में भारतीय सेना के साहसी और जाबाजी मिलिट्री डॉग्स ने किया शानदार प्रदर्शन। विशेष अभियानों के दौरान सैनिकों की सहायता में प्रशिक्षण सैन्य डॉग्स ने रस्सियों से उतरने जैसे अभ्यासों में भाग लिया। प्रशिक्षण में मिलिट्री डॉग्स केनाइन, राइस, विक्टर, जैक और राउडी शामिल हुए। अभ्यास 2026 में सेना के इन डॉग्स की भागीदारी सेना के जवानों, उच्च प्रशिक्षित जानवरों और उनके प्रशिक्षकों के बीच घनिष्ठ समन्वय को उजागर किया गया। मेरठ में एयर शो का आज दूसरा और आखिरी दिन, सूर्यकिरण एरोबैटिक टीम नौ हॉक MK-132 विमान से आसमान में दिखाया हैरतअंगेज करतब। जोधपुर के एयरफोर्स स्टेशन से रविवार को भारतीय एयर चीफ मार्शल और जापान के सेना प्रमुखों ने स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस में दिखाया हुआ। वीर गर्जन सेना अभ्यास के दौरान दोनों देशों के प्रमुखों ने स्वदेशी तेजस में भरी उड़ान। जापानीज एयर चीफ को स्वदेशी तेजस लड़ाकू विमान की क्षमता, आधुनिक प्रणालियों और इसकी मारक क्षमता का कराया रूबरू। दोनों एयर चीफ ने एयरफील्ड के ऊपर फ्लाईपास किया। भारत जापान के बीच चल रहे युद्धाभ्यास की 9 सितंबर को हुई थी शुरुआत, 22 सितंबर तक चलेगा युद्धाभ्यास। देश भर में गणेश उत्सव की धूम, विभिन्न स्वरूपों में गजानन की आराधना, कई जगहों पर प्रतिमा विसर्जन की जा रही है। राजकोट के गणपति पंडाल में नजर आया अनोखा नजारा, रोबोट के जरिए उतारी गई आरती। गणेश पंडाल में धर्म और टेक्नोलॉजी के संगम को देखकर लोग रह गए हैरान, बाप्पा के दर्शन करने के लिए दूर दूर से पहुंच रहे हैं लोग। बिहार के मधेपुरा में गणेश प्रतिमा के विसर्जन पर शोभा यात्रा, कोलकाता की त्रिकाल झांकी बनी आकर्षण। मधेपुरा में प्रतिमा विसर्जन के दौरान कलाकारों ने मनमोहक प्रस्तुतियां दी, बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए। पुणे के राजचरण गांव महागणपति मंदिर में गणेश उत्सव की धूम, ड्रोन कैमरों में अद्भुत तस्वीरें। गणेश उत्सव के चलते राजचरण गांव को भी रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया। राजन गांव महागणपति मंदिर में हर साल होता है भव्य आयोजन, दूर दूर से दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं लोग। अमरावती के बुधवारा में खाटू श्याम मंदिर की थीम पर गणेश पंडाल का हुआ निर्माण। पापा के साथ खाटू श्याम जी के भी दर्शन करने के लिए पहुंच रहे भक्त बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। बेलाई में बस्तर की प्रसिद्ध दंतेश्वरी माता मंदिर की थीम पर बना गणेश पंडाल। नक्श अम्मन मंदिर में विराजमान गोरख विनायक की तरह बनाए गए गजानन की प्रतिमा। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में सर्वधर्मीय महाआरती का आयोजन किया गया। हिंदू समाज के साथ मुस्लिम, सिख, बौद्ध और ईसाई समाज के लोग शामिल हुए। कोल्हापुर में महान पालिका की अच्छी शुरुआत, बस से गणेश मूर्तियों को पहुंचाया गया विसर्जन स्थल। जालना में गणेश उत्सव पर अनोखी प्रदर्शनी, प्रतिमाओं के जरिए समझाया जा रहा है भूगोल का विज्ञान। चित्तौड़गढ़ श्री सावाली सेठ मंदिर में दिखी समर्पण की मिसाल, व्यापारी ने करीब 1 किलो 200 ग्राम चांदी से बना सीमेंट प्लांट मॉडल अर्पित किया। भाग भगवान को अर्पित किए गए सीमेंट प्लांट का मॉडल खरीदा 2.5 लाख रुपए कीमत, अनोखी भेंट को लेकर व्यापारी बनी चर्चा का विषय। अंबाजी में भादरवी महामेला आज से हो गया शुरू, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने रथ खींचकर उद्घाटन किया। भादरवी महामेला में शक्ति भक्ति और आस्था का संगम देखने को मिला, 7 दिनों तक धूमधाम से जारी रहेगा उत्सव। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड की तैयारियां, लगभग पूरी 22 सितंबर को होगा आयोजन। जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस पर निकाली गई रैली, लोगों ने की विश्व शांति की अपील। हैदराबाद में नशा मुक्ति को लेकर चलाया गया अभियान, साइकिल राइडिंग से लोगों को जागरूक किया गया। तमिलनाडु के थूथुकुड़ी में चिथराई उत्सव की धूम, पारंपरिक बैलगाड़ी दौड़। बैलगाड़ी दौड़ में हिस्सा लेने के लिए दूर दूर से पहुंचे प्रतिभागी, बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। राजौरी के सरकारी आईटीआई के लोगों को रोजगार से जोड़ने की अच्छी पहल, छात्रों को दी जा रही है वोकेशनल ट्रेनिंग। उत्तर प्रदेश में बाराबंकी के हेतमापुर में सरयू नदी का कटान जारी, बाढ़ की चपेट में आधा गांव। सरयू नदी में लगभग 31 पक्के मकान बाढ़ में डूबे, पीड़ित परिवारों को प्रशासन ने भेजी आर्थिक मदद। सरयू नदी के जलस्तर पर प्रशासन की पूरी नजर, प्रभावित परिवारों के लिए भोजन व्यवस्था। बिहार के कैमूर में बनेगा नया एयरपोर्ट, प्रशासन ने सरकार को भेजा प्रस्ताव। कैमूर के रामपुर प्रखंड में 161 एकड़ भूमि चिन्हित हुई, हवाई कनेक्टिविटी से पर्यटन और व्यापार को मिलेगी नई रफ्तार। किश्तवाड़ प्रीमियर लीग का दूसरा सीजन चौगान ग्राउंड में आयोजित किया गया, टूर्नामेंट में 24 टीमों ने हिस्सा लिया। असम के जुबीन दिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। जम्मू कश्मीर के कठुआ में बेहतर सड़क संपर्क से चमका पर्यटन, खूबसूरत हिल स्टेशन सरथल तक हुआ संपर्क। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ धाम के लिए तीर्थयात्रियों की आवाजाही फिर से शुरू, श्रद्धालुओं में भारी उत्साह। बद्रीनाथ धाम पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, विधि विधान से पूजा। रोजगार को लेकर लखनऊ से आई गुड न्यूज, आग में होगी 912 चयनित अभ्यर्थियों की तैनाती, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की शुभकामनाएं। मिशन रोजगार के तहत लखनऊ के लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई विशेष मेहमान शामिल। दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में कॉफ बॉल प्रीमियर लीग का आयोजन, कॉफबॉल प्रतियोगिता में रोजाना खेले जाएंगे दो मुकाबले, विजेता टीम को 31 लाख का इनाम। भारत को पहली बार मिली एशिया सीनियर वुशु चैंपियनशिप की मेजबानी, साल 2028 में होगी प्रतियोगिता। भारत की मेजबानी में 42 देश वुशु चैंपियनशिप में लेंगे हिस्सा, मेडल के लिए 500 से ज्यादा खिलाड़ी उतरेंगे मैदान में। मोहम्मद सिराज हैदराबाद रणजी टीम के कप्तान बन गए, चामा मिलिंद को मिली उपकप्तान। रणजी ट्रॉफी की 11 अक्टूबर से होगी शुरुआत, त्रिपुरा की टीम से होगी हैदराबाद की पहली बढ़त। मोहन बागान का 8 साल का इंतजार हुआ खत्म, 31वीं बार कलकत्ता लीग का बना चैंपियन। चीन में शंघाई युयुआन मॉल और वन फाइनेंस सेंटर हेरिटेज ग्रैंड युएन म्यूजिक सीजन का हुआ शुभारंभ। कार्यक्रम के लिए पहली बार बनाया गया वाटर स्टेज, जहां पर एक के बाद एक पारंपरिक ओपरा प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम में कई संगीतमय प्रस्तुतियों की झलक देखने को मिली, लोक कलाकारों ने अद्भुत मिसाल पेश। आयोजन में जगमगाती लालटेन भी चार चांद लगाती हुई नजर आई। चंद्रमा की थीम पर आधारित ये लालटेन आगामी मध्य शरद उत्सव का जश्न मनाती हुई नजर आई। हर साल इस कार्यक्रम में लोक कलाकारों का अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है, लोक कलाकारों और संस्कृति को बढ़ावा देना मकसद। चीन के हेनान प्रांत में 12वीं चीन एक्रोबैटिक्स गोल्डन नेशनल अवार्ड का भव्य समापन। कलाकारों ने हवाई छलांग, कलाबाजी और रोमांचक हवाई करतबों से सबका दिल जीत लिया। 10 से ज्यादा कलाकारों ने मानव पिरामिड बनाते हुए एक लंबी रस्सी को कूदकर बनाया रिकॉर्ड। चीन ने पर्वतीय संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण प्रयास के तहत 20 कलगीदार आइबिस पक्षियों को छोड़ा। इन 20 कलगीदार आइबिस पक्षियों का चयन उनके उड़ने की क्षमता पर देखा गया। इंडोनेशियाई रेस्क्यू टीम ने जावा सागर में डूबी यात्री जहाज के मलबे से एक और शख्स को सफल बाहर निकाला। शख्स को एयरलिफ्ट करके अस्पताल तक पहुंचाया गया। अधिकारियों ने बताया कि अब तक 100 से ज्यादा लोगों को बचाया जा चुका है। बाकी लापता लोगों की अभी तलाश लगातार जारी है। डूबे हुए जहाज को खोजने के लिए अभियान में जुटी हुई है। चीन के नानसिंग में खिले हुए गुलाबी मोहली घास के विशाल मैदान के साथ शरद ऋतु के दर्शनीय स्थलों का नजारा। गुलाबी घास का यह सागर स्थानीय कृषि, संस्कृति और पर्यटन के एकीकरण को प्रदर्शित करने वाला एक दृश्य। दो हजार साल पुराना रोमन शहर बना लाइट आर्ट का कैनवस। क्रोएशिया के पुलों में 16 जगहों पर रोशन हुई ऐतिहासिक इमारतें। ऐतिहासिक और डिजिटल आर्ट का अनोखा मेल, इमारतों पर देखे शानदार प्रोजेक्शन। इस साल अंतरिक्ष और ब्रह्मांड मानव फेस्टिवल की थीम, कलाकारों ने अद्भुत रोशनी पेश की। पुला के मुख्य रोमन चौक पर दिखी खास कलाकृतियां, बटरफ्लाई फ्लैपिंग हिट्स विंग्स बनी खास प्रस्तुति। जर्मनी, यूक्रेन, नॉर्वे और हांगकांग के कलाकारों ने रोशनी से रचा नया अनुभव। चीन के वुहान में इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल, 12 देशों के 21 दिग्गज पतंगबाजों ने हिस्सा लिया। चीन में पतंगों का महासंग्राम, वुहान में पतंगों का वर्ल्ड क्लास शो। पतंगबाजी के शौकीनों के लिए खास मौका, पारंपरिक और आधुनिक पतंगें मौजूद। उत्तरी चीन के इनर मंगोलिया में छाया घना कोहरा, वेटलैंड का नजारा जादू। चीन के हेनान प्रांत में देखे अद्भुत बादल, पहाड़ बादलों के समुद्र में तैरते हुए नजर आए। बीजिंग में अनोखा रोबोट किंडरगार्टन शुरू हुआ। इंसानों के बच्चों की तरह रोबोट्स को दी जा रही है ट्रेनिंग। सेंटर में एक दर्जन से ज्यादा छोटे बड़े ह्यूमनॉइड रोबोट्स मौजूद। बदलते परिवेश के हिसाब से खुद के काम में परिवर्तन कर रहे हैं रोबोट्स। वर्षीय कैनेडियाई सर्फर एरन ब्रूक्स ने रच दिया इतिहास। पुरुषों में ब्राजील के मिगुएल पुपू बन गए चैंपियन।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम।
1: अब आपको दिखाते हैं तस्वीरें। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में चल रहे सैन्य अभ्यास की भारत और अमेरिका के इस युद्ध अभ्यास 2026 के दौरान M777 अल्ट्रा लाइट होविट्जर ULH से लाइव फायरिंग की गई, जिसमें डायरेक्ट फायरिंग मेथड का इस्तेमाल करके सामने दिख रहे टारगेट पर निशाना साधा गया। इस दौरान ULH गन क्रू ने बेहतरीन प्रोफेशनलिज्म, सटीकता और युद्ध के लिए तत्परता का शानदार प्रदर्शन दिखाया। फायरिंग के दौरान सभी तय टारगेट को सफलतापूर्वक निशाना बनाकर नष्ट कर दिया गया। फायरिंग के बाद US अमेरिकी सेना के जवानों ने ULH बैटरी के अधिकारियों और जवानों से बातचीत भी की। दोनों सेना के बीच इस दौरान प्रोफेशनल जानकारी और लड़ाई के बेहतरीन तौर तरीकों के बारे में चर्चा भी हुई और अभ्यास की ये तस्वीरें भारतीय सेना ने जारी की हैं। देखिए, हम आपको दिखाते हैं महाराष्ट्र के अमरावती में गणपति पंडाल की शानदार तस्वीरें। यहाँ के बुधवारा इलाके में आजाद हिंद गणेश उत्सव मंडल ने पंडाल में खाटू श्याम मंदिर की भव्य झांकी तैयार की है। देखिए तस्वीरें, यहाँ गणपति बप्पा की सुंदर प्रतिमा के साथ खाटू श्याम मंदिर की भव्य झांकी आपको देखने को मिलेगी। पंडाल में पहुंचने वाले श्रद्धालु पहले गणपति बप्पा के दर्शन कर रहे और इसके बाद खाटू श्याम जी के दर्शन भी कर रहे हैं। आकर्षक सजावट और झांकी श्रद्धालुओं को खूब आकर्षित कर रही है। आजाद हिंद गणेश उत्सव मंडल करीब 98 वर्षों से गणेश उत्सव की परंपरा इसी तरीके से निभा रहा है। मंडल हर साल अलग अलग थीम के जरिए गणपति उत्सव को खास बनाने का प्रयास करता है। हम आपको दिखाते हैं महाराष्ट्र में पुणे के पास राजगांव महागणपति के झिलमिलाता स्वरूप, ये देखिए तस्वीरें। पुणे जिले के शिरूर तालुका स्थित राजगांव महागणपति मंदिर गणेशोत्सव के अवसर पर आकर्षक लाइटिंग से जगमगा उठा। तस्वीरें देखिए, ड्रोन कैमरों से कैद मंदिर और रोशनी से

भूगोल प्रदर्शनी लगाई गई। जी हाँ, यहाँ पर समर्थ रामदास स्वामी की ओर से स्थापित 11 मारुति की प्रतिमाओं के साथ भूगोल प्रदर्शनी लगाई गई। ये देखिए, और पृथ्वी से लेकर अंतरिक्ष और पूरे ब्रह्मांड तक की अलग अलग अवधारणाओं को मॉडल के माध्यम से समझने का प्रयास किया गया है। इसका मकसद छात्रों को आसानी से और रोचक तरीके से भूगोल की जानकारी देना है। दरअसल कई छात्रों को भूगोल का अध्ययन थोड़ा कठिन और उबाऊ लगता है, इसी वजह से छात्रों के मन से भूगोल विषय का डर दूर हो और उस विषय के प्रति उनकी रुचि बढ़ाने के लिए शिक्षक श्रीकांत चिंचखेड़कर ने ये पहल की है। महाराष्ट्र से बिहार तक देश भर में गणेश उत्सव धूमधाम से चल रहा है, तो कई जगहों पर गणपति बप्पा की विदाई भी हो रही है। अभी हम आपको दिखाने जा रहे हैं गणपति की विदाई की दो खास तस्वीरें। एक तस्वीर है ये देखिए, बिहार के मधेपुरा जिले के मुरलीगंज की, और दूसरी तस्वीर देख लीजिए महाराष्ट्र की भीड़ की है। मुरलीगंज में 5 दिन पूजा अर्चना करने के बाद भगवान श्री गणेश की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। साजे बाजे ढोल नगाड़ों और गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों के साथ शोभा यात्रा की शुरुआत हुई और नदी में विधि विधान के साथ भगवान की प्रतिमा की विदाई भी दी गई। गणपति की महाराष्ट्र भीड़ के लिंबा गणेश में मयूरेश्वर गणपति को शाही अंदाज में विदाई दी गई। बीड़ा तहसील के लिंबा गणेश गांव में 225 सालों से चली आ रही है एक गांव के गणपति की अनूठी परंपरा इस साल भी पूरा श्रद्धा और धूमधाम के साथ इसको निभाया गया। यहां पर देखिए सरकार वाड़ा में स्थापित मयूरेश्वर गणपति की विदाई शाही ठाट बाट के साथ संपन्न हुई। इस भव्य जुलूस में आसपास के 12 गांवों की टीमों ने हिस्सा लिया और समा। राजस्थान के जोधपुर में भारत और जापान का संयुक्त अभ्यास वीर गार्जियन 2026 चल रहा है। यह अभ्यास 9 सितंबर से 22 सितंबर 2026 तक राजस्थान के जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन पर आयोजित किया जा रहा है। इसमें खास बात देखिए यह है कि आज जापान के एयर चीफ जनरल ताके हिरो मोरिता और भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल एपी सिंह ने स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस में उड़ान भरी है, और तेजस में दोनों देशों की वायुसेना प्रमुखों की इस उड़ान ने भारत जापान रक्षा साझेदारी इंटर ऑपरेटेबिलिटी और रणनीतिक संबंधों को नई ऊंचाई दी है। इस 14 दिवसीय अभ्यास में भारत के तेजस राफेल सुखोई 30 MKI और जापान के F-21 विमान जटिल ऑपरेशन मिशनों को अंजाम देंगे। राजस्थान में प्रसिद्ध कृष्ण धाम श्री सांवरिया सेठ जी के मंदिर में एक श्रद्धालु ने अनोखा चढ़ावा चढ़ाया है। निम्बा हेड़ा के एक व्यापारी ने धर्मराज बंजारा ने अपने कारोबार में मिली सफलता से खुश होकर भगवान के चरणों में करीब प्राइवेट सीमेंट प्लांट का एक मॉडल अर्पित किया। तस्वीरें देखिए सीमेंट प्लांट का, ये मॉडल जो है 1 किलो 200 ग्राम चांदी से पूरी तरीके से बना हुआ और इसकी कीमत जो है 2,40,000 रुपए बताई जा रही है। कारोबार में कामयाबी के बाद कारोबारी ने भगवान को ये अनोखी भेंट अर्पित की। अपने संकल्प को पूरा करने के लिए धर्मराज पंचारा ने अपने परिवार रिश्तेदारों और मित्रों के साथ निम्बाहेड़ा से मंदिर तक की पैदल यात्रा भी पहुंचकर दर्शन के बाद उन्होंने चांदी से बना सीमेंट प्लांट का मॉडल जो है बकायदा भगवान सांवरिया सेठ के चरणों में भेंट किया। अब आपको दिखाते हैं बेंगलुरु में सजीव संगीत की महफिल की तस्वीरें। बेंगलुरु में हाल ही में एन इवनिंग विथ लेजेंड्स कंपैशन इन एक्शन संगीतमय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में देखिए कलाकारों ने सुर से जो पूरी महफिल थी वो पिरोई। और ये कार्यक्रम जो है वन वर्ल्ड वन फैमिली मिशन के सेवा कार्यों और समाज के प्रति करुणा की भावना को समर्पित करता था, ताकि जन्मजात हृदय रोग से पीड़ित बच्चों की मदद की जा सके। आध्यात्मिक गुरु सदगुरु श्री मधुसूदन साई और दिग्गज पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर भी कार्यक्रम में शामिल हुए। गुड न्यूज टुडे लगातार दर्शकों से अपील कर रहा है कि आप भी GNT पर मनाए जा रहे इस उत्सव से जुड़िए। इसके लिए बस आपको इतना सा करना है कि अपने घर पधारे का जनन का वीडियो बनाना है, हमें भेज देना है, हम उन वीडियोस को दुनिया तक पहुंचाएंगे। हमारे पास लगातार दर्शकों की वीडियोस पहुंच रहे हैं। देखिए गुजरात के वापी से अर्चना सिंह, हमें गणेश उत्सव का शानदार वीडियो उन्होंने भेजा है। यहाँ परिवार ने पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ निज निवास में बप्पा की स्थापना की है। भगवान गजानन की मनमोहक मूर्ति सुगंधित पुष्प और मालाओं से सुशोभित है। साथ ही गणपति को तरह तरह के पकवान और मिष्ठान का भोग लगाया गया है। पूरा परिवार जो है बप्पा की आराधना में लीन नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तस्वीर देखिए, दूसरी तस्वीर जो है उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद से नव्या नकलीकर की है, उन्होंने तैयार की है।

0: हमें भेजिए। शानदार लाइटिंग से बप्पा का पंडाल सजाया गया। ऊंचे आसन पर विराजमान भगवान गजानन को लड्डू, मोदक और मिष्ठान का भोग लगाया गया। सुंदर पुष्पों की माला पहले बप्पा की प्रतिमा अत्यंत शोभनीय नजर आती है। पंडाल में अखंड ज्योति प्रज्वलित नजर आ रही है। साथ ही साथ भगवान गजानन को फल अर्पित किए गए।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
2: किस ग्रह की अशुभ दशा में हृदय रोग होने की संभावना होती है, किस ग्रह की अशुभ दशा में लंबी बीमारी हो सकती है और किस ग्रह की अशुभ दशा में विचित्र बीमारियां हो जाती हैं, ग्रहों की अशुभ दशा का क्या है प्रभाव और क्या है अशुभ दशा से बचने के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है।
11: एवरेस्ट तीखा लाल, सही तीखा सही लाल।
0: महाराष्ट्र के चंद्रपुर में सजा तुकुम के राजा का दरबार, श्रद्धालुओं के बीच आकर्षण का केंद्र बनी बप्पा की मनमोहक प्रतिमा, चावल दाल साबुदाना और मूंगफली के दानों से किया गया निर्माण। श्रीनगर के श्री सिद्धिविनायक गणेश मंदिर में गणेश उत्सव की रौनक, मूर्ति विसर्जन के दौरान शहर की गलियों में उमड़ा जन समुद्र, धार्मिक आयोजन में दिखे श्रद्धा भक्ति और आस्था के रंग। गुजरात के अंबाजी धाम में आस्था का महाउत्सव, विधि विधान से भादरवी महामेले का शुभारंभ, करीब 40 लाख श्रद्धालुओं के आने का अनुमान। कूनो नेशनल पार्क से गांधी सागर में शिफ्ट हुई मादा चीता CC-B2, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अभ्यारण्य में किया रिलीज, देश का दूसरा बड़ा चीता घर बना गांधी सागर। गोल्ड मेडल से बस एक कदम दूर, भारतीय महिला क्रिकेट टीम एशियन गेम्स में बांग्लादेश को 114 रनों से हराया, शफाली वर्मा ने 49 गेंद में लगाई सेंचुरी। एशियन गेम्स में भारत को शूटिंग में मिला दूसरा सिल्वर मेडल, एला वेनिल ने 10 मीटर एयर राइफल में किया कमाल, मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में भी पदक पक्का।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर

0: नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। एक चमत्कार खुले दिव्य फिल्मों के नए द्वार, इसी पर आज हम करने वाले हैं बात। बॉक्स ऑफिस पर इस वक्त सिर्फ एक ही नाम की गूंज है और वो है हनुमान अंश। दर्शकों का जो प्यार इस फिल्म को मिल रहा है उसने मिर्जापुर द मूवी, धुरंधर 3 और टॉक्सिक जैसी फिल्मों को कड़ी टक्कर दी है और नए रिकॉर्ड बना दिए हैं। तो हनुमान अंश का उपहार 300 करोड़ पार, सातवें हफ्ते भी दहाड़ रही है, बड़ों को पछाड़ रही है। बाबा नीब करौली भर दी बॉलीवुड की झोली, दर्शकों का विश्वास, फिल्म ने रच दिया है इतिहास। एक चमत्कार खुले दिव्य फिल्मों के नए द्वार, और इसी पर करेंगे हम बात। हमारे साथ फिल्म के जानकार और धर्मगुरु भी रहेंगे मौजूद। तो फिल्म हनुमान अंश ने इतिहास रच दिया है। आपको बता दें कि फिल्म की दुनिया भर में ग्रॉस कलेक्शन 300 करोड़ के पार हो गई है। इसने भारत में ग्रॉस 280 करोड़ से ज्यादा कमाए हैं, वहीं छठे हफ्ते में भी रिकॉर्ड बनाया है। आपको बता दें कि रिलीज के पहले दिन फिल्म की 10 लाख की कमाई से ओपनिंग हुई थी, शुरुआती दो हफ्ते में महज 1.5 करोड़ कमाए थे, तीसरे हफ्ते में 10 करोड़ की कमाई की, चौथे हफ्ते में 59 करोड़ का कलेक्शन किया, फिर पांचवें हफ्ते में 83 करोड़ कमाए, अब छठे हफ्ते में 76 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। ये फिल्म हनुमान जी और बाबा नीब करौली पर बनी हुई है। बाबा को हनुमान जी का अवतार माना जाता है। फिल्म में बाबा की आध्यात्मिक यात्रा दिखाई गई है। ये फिल्म महज 2 करोड़ में बनी थी, जिसने कमाल कर दिया है। अब ये फिल्म हनुमान अंश विदेश में भी छा गई है। 11 सितंबर को ये फिल्म वर्ल्ड वाइड रिलीज हुई थी। बाबा नीब करौली पर लोगों की काफी आस्था है और इसी आस्था के बीच ये चमत्कार है जो कि इस फिल्म को रिकॉर्ड स्तर पर ले गया है। वैसे हाल ही में हमने फिल्म की टीम से खास बातचीत भी की थी। उनका कहना था कि ये फिल्म युवाओं को भी जोड़ती है, ये आस्थामय कनेक्शन युवाओं को बाबा नीब करौली की ओर भी ले जाता है।
1: अभी यूथ बहुत प्रैक्टिकल हो चुका है आजकल का, और वो क्या है कि वो जो एक्चुअल बात है ना उस पर बहुत बिलीव करता है। तो जैसे हमारे बाबा जी हैं, अगर उनके पास में कोई, हमारी फिल्म में भी ये दिखाया गया है कि कोई बीमार इंसान आता था तो बाबा जी उससे ये नहीं कहते थे कि अगड़म बगड़म छू, ऐसा नहीं करते थे, बोलते थे वैद्य के पास जाओ, वैद्य के पास जाओ, उनको दिखाओ जाके, बाकी राम जी कृपा करेंगे। तो क्या है कि वो इतनी प्रैक्टिकल बातें हैं ना कि आप भक्ति कैसे करते करते अपने जीवन में सुधार ला सकते हैं, अपने जीवन को ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। बाबा जी ने अपनी शिक्षाओं से, मतलब आप ये समझिए कि आज का यूथ या मतलब टेक हो चुका है और उसको पूरा किसने बदल के रखा हुआ है, हमारे बाबा जी ने। फेसबुक, गूगल, एप्पल, हर जगह हमारे बाबा जी हैं। तो क्या है कि अगर वो इतना बड़ा चेंज ला सकते हैं तो उनके ऊपर बनी हुई फिल्म में जो शिक्षाएं हैं और उनका जो जीवन हम देखेंगे तो उससे यूथ जो सीखेगा और उसका जो जीवन परिवर्तन होने वाला है, तो वो तो बस केवल मैं बयान ही कर सकता हूं, लेकिन सबके जीवन में बहुत परिवर्तन आने वाला है।
2: समय इस बार चल रहा है कि एक बड़ा चंक ऑफ यूथ वो भजन क्लबिंग कर रहा है। हाँ, दिल्ली के अंदर ही जो है ना कुछ कैफेज हैं जहाँ पे कॉफी और हनुमान चालीसा हो रहा है। तो पहली चीज तो ये कि मुझे लगता है कि यूथ जो है वो जितना वो डिसइल्यूजन था वो उतना ही तेजी से डिसइल्यूजन भी हो रहा है। सारा जो हम सोशल मीडिया वगैरह जो भी हम चीज़ देखते हैं, जो हमारे ट्रेंड्स जिस तरफ जा रहे थे उसे बहुत तेजी से डिसइल्यूजन भी हो रहा है। अब वो डिसइल्यूजन तो हुआ है पर उसके पास में अभी वो किस चीज को पकड़े वो उसके पास में बहुत क्लियर वो नहीं है कि किस बात को पकड़े। फॉर्चुनेटली महाराज जी हैज बीइंग सो पॉपुलर अमंग द यूथ्स के अब उनके पास में एक गुरु हैं जो कि आदर्श गुरु हैं जिनको पकड़ सकते हैं। ये फिल्म वो उस आदर्श गुरु के बारे में एक 2.5 घंटे का इंट्रोडक्शन है। मैं एक्चुअली महाराज जी की कहानी को 0.5% उनकी कहानी नहीं बोल सकता, उनके किरदार को ये निभा नहीं सकता, मैं उसको बोल नहीं सकता, लिखना तो इम्पॉसिबल है। वो एक अपने आप में रामायण अपने आप में एक बहुत बड़ा महात्म्य है जिसको मैं नहीं बोल सकता।
0: देखिए, फिल्म हनुमान अंश की सफलता के बाद से धार्मिक फिल्मों का दौर भी देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि मेकर्स ने हनुमान अंश के दूसरे भाग का ऐलान किया है। दूसरे भाग के बाद तीसरा भाग बनाने की भी योजना है। हनुमान अंश के डायरेक्टर राम बोला बनाएंगे। ये फिल्म गोस्वामी तुलसीदास के जीवन पर आधारित है। वहीं प्रशांत वर्मा के निर्देशन में फिल्म जय हनुमान बन रही है। इसमें ऋषभ शेट्टी भगवान हनुमान की भूमिका निभा रहे हैं, जबकि संजय मिश्रा की 13 साई फरवरी में रिलीज होगी। ये बाबा के जीवन पर आधारित फिल्म है। साथ ही बाबा खाटू श्याम जी पर भी फिल्म बन रही है। इस फिल्म में खाटू श्याम जी में अटूट आस्था को दिखाया जाएगा, यानी कि आने वाले समय में धार्मिक फिल्में बड़े पर्दे पर दिखेंगी। और इसी के साथ आपको बता दें कि इस चर्चा की चलिए अब हम शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको मिलवा देते हैं हमारे मेहमानों से। आपको बता दें रामकिशोर प्राचा जो कि फिल्म क्रिटिक हैं वो हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले प्रदीप सरदाना हमारे साथ जो फिल्म क्रिटिक हैं वो जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी आपका बहुत स्वागत है। साथ ही साथ हमारे साथ नलिन सिंह फिल्म डायरेक्टर जुड़ चुके हैं। नलिन आपका भी बहुत स्वागत है। आचार्य चंद्रांशु जी महाराज हमारे साथ कथावाचक जुड़ चुके हैं। आचार्य जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले प्रदीप जी आपके पास आते हुए आपसे ये समझना चाहेंगे कि ये जो फिल्म, मतलब 2 करोड़ की फिल्म 300 करोड़ पार कर जाना, मतलब ये असंभव सा लगता है, ये कैलकुलेशन भी बड़ा असंभव लगता है। एज अ फिल्म क्रिटिक आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ बॉक्स ऑफिस का कमाल है या फिर दर्शकों की जो आस्था है उसने इस फिल्म को इतना बड़ा बना दिया?
3: देखिए, सबसे बड़ा तो इसमें आस्था ही है, इसमें कोई शक नहीं है। जहां तक आस्था की बात करें तो कुछ समय पहले मई में भी इन्हीं नीम करोल महाराज पे फिल्म आई थी, लेकिन चल नहीं पाई बिल्कुल भी। लेकिन इसके अंदर क्या हुआ, ये फिल्म शुरू में नहीं चली जिस तरह शुरू में सिर्फ 10 लाख का बिजनेस किया, पूरे वीक में 90 लाख का किया, दूसरे वीक में तो और भी डाउन हो गई। पहले वीक में 250 स्क्रीन पर दिखाई जा रही थी, उसके बाद अगले वीक में तो 40 स्क्रीन पर आ गई, 40 से भी उसी सेकंड वीक में 25-27 स्क्रीन रह गए, यानी कोई आई रहता हॉल के अंदर थिएटर के अंदर तो उसके स्क्रीन और कम करते गए। और उसके बाद तो और भी कमाई 40 लाख हो गई, जो पहले 90 हुई थी उसके बाद कम हो गई। लेकिन तीसरे हफ्ते से जोर पकड़ा उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि जो उसकी पूरी टीम है उन्होंने बड़ी मेहनत करी। उन्होंने सोचा कि ये फिल्म चल नहीं पा रही, एक लास्ट एफर्ट्स करते हैं। लोगों का शुरू किया कि ये फिल्म अब शायद थिएटर पे नहीं मिलेगी, अभी आप जाके देख लीजिए अगर आपकी बाबा में आस्था है। और ये लोग हैं, इनके डायरेक्टर हैं, इनकी जो प्रोड्यूसर है, टीम है इनकी, ये जगह जगह एक गाड़ी पे निकल पड़े।
0: इस बीच नलिन के पास चलते हैं। नलिन आपसे जानना चाहेंगे एज ए फिल्म डायरेक्टर, इस तरह की फिल्म जो कि एक आध्यात्मिक किरदार पर बनती है, इसमें आपको क्या लगता है एज ए डायरेक्टर किन किन बातों का खास तरह से ख्याल रखना पड़ता है, डूज एंड डोंट्स क्या होते हैं?
4: देखिए, जब फिल्म बनती है या फिल्म इनिशियल स्टेज पर उसकी क्या कॉन्सेप्ट है और क्या थीम है वो हमें चूज करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि नीम करौली बाबा पर ये पहली फिल्म बनी है, इसके पहले भी फिल्म बनी है और धार्मिक फिल्म भी बहुत इंडिया में बनती आई है। इस तरीके से कोई सुपरहिट नहीं हुई है, तो हम उस फॉर्मूला रिटर्न पर ना जाएं कि धार्मिक फिल्म में इसलिए चल जाएगी। नहीं, ये फिल्म अच्छी बनी है, यानी पहला आपने डिसीजन लिया कि हमने धार्मिक फिल्म बनाना है, नीम करौली बाबा के ऊपर बनाना है, वहां तक ठीक है। उसके बाद जो स्क्रिप्टिंग होती है, स्क्रीन प्ले होता है, डायरेक्शन होता है, उसमें वो पकड़ है, तभी ये फिल्म चली है। जहां तक है स्लो स्टार्टिंग की बात है, डेफिनेटली आपने एडवर्टाइजमेंट, शायद बजट लो होगा इसीलिए आपने प्रचार थोड़ा कम किया है, और इसलिए ओपनिंग जो है, बॉक्स ऑफिस ओपनिंग जिसे हम कहते हैं, वो बहुत स्लो रहा, बहुत धीमा रहा। लेकिन वर्ड ऑफ माउथ जो होता है, वर्ड ऑफ माउथ से ये फिल्म की पब्लिसिटी हुई और फिर लोग, दर्शक उमर पड़े। हाँ, ये मैं जरूर कहना चाहूंगा कि अभी का जो ट्रेंड, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा धार्मिक किस्म के जो फिल्में हैं उसको लोग पसंद करना चाह रहे हैं। आई मीन, बहुत दिनों के बाद इस तरह की फिल्म आई है जिसकी मार्केट में रिक्वायरमेंट थी।
0: और लेकिन नलिन, यहाँ पर एक बात थोड़ी सी वो कॉन्ट्रोडिक्टरी है कि आप कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि बड़े दिनों बाद लोग, ऐसा लग रहा है कि धार्मिक फिल्में लोग पसंद कर रहे हैं या देखना चाह रहे हैं, लेकिन अभी अभी हमने धुरंधर 3 जैसी फिल्में देखी विच इज जस्ट ऑपोजिट, मतलब इससे कोई लेना देना नहीं है, बहुत दूर दूर से कोई वास्ता नहीं है। एक तरफ वो करोड़ों कमा रही है, उसको देखने के लिए दर्शकों की भीड़ लगी रही, वर्ल्ड वाइड भी उसने बहुत अच्छा कलेक्शन किया, लेकिन उसी दौरान आगे ही पीछे थोड़ी दूरी पर कुछ ही समय के इंटरवल में इस तरह की फिल्म का आना और छा जाना, इसे कैसे देखते हैं?
4: बिल्कुल, और दोनों डायरेक्टर्स प्रोडक्शन हाउस को आप देखेंगे तो इंडिपेंडेंट फिल्म प्रोडक्शन हाउस, ये कोई बहुत करण जौहर प्रोडक्शन या शाहरुख खान प्रोडक्शन या आमिर खान प्रोडक्शन नहीं है। इनफैक्ट आमिर खान प्रोडक्शन की फिल्म आई थी जिसमें पीटी जिंता ने रोल किया था, मैं भूल रहा हूँ, सनी देओल भी थे, वो बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं कर पाई। तो अभी हम देखेंगे कि देखिए, सही चीज राइट समय पर सही सब कुछ ठीक ठाक होता है तो ही ये फिल्म चलती है। ठीक है, स्क्रिप्ट, स्क्रीन प्ले और सही वक्त का भी होना बहुत जरूरी है। ये अभी जो ये फिल्म है, ये सब कुछ इसके लिए सही रहा है, इसलिए ये फिल्म चली। यानी इसको सिर्फ ये कहना भी ठीक नहीं रहा कि ठीक है रिलीजियस पसंद अभी ज्यादा हो गया तो कुछ भी रिलीजियस कंटेंट अगर आप ले आए तो वो चल जाएगी, ठीक है, ये भी कहना ठीक नहीं होगा। लेकिन एज अ फिल्म मेकर हम लोग है ना हर समय एक फॉर्मूला की तलाश में रहते हैं यार। अभी जो है ना लोग रिलीजियस माइंडेड है, क्या पता बीजेपी का गवर्नमेंट है ज्यादा हिंदुत्व चल रहा है, क्या पता ये भी चल जाए। तो अभी अधिकतर फिल्म मेकर्स के अगर आप ग्रुप में बैठेंगे हमारे जैसे इंडिपेंडेंट फिल्म, तो यही डिस्कशन चल, नहीं यार मुझे ये करना चाहिए।
0: लेकिन अभी जैसा प्रदीप जी ने भी कहा कि हनुमान अंश जैसे बाबा दीप करौली पर अभी कुछ दिन पहले और एक मूवी आई थी लेकिन वो फिल्म नहीं चली, ये फिल्म चल गई, कॉन्टेंट वही था लेकिन उसके बावजूद वो नहीं चल पाई और ये चल गई। इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। आचार्य चंद्रांशु जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आचार्य जी आपसे समझना चाहेंगे, एक आध्यात्मिक व्यक्तित्व, उस पर मूवी बनना, करोड़ों का उसका कलेक्शन हो जाना, इतने लोग आ गए उसे देखने के लिए, वर्ड ऑफ माउथ कहें या क्या कहें, आप इसे कैसे देखेंगे? क्या ये सनातन परंपरा और हमारी संस्कृति और उसकी आस्था का एक नए सिरे से प्रसार के तौर पर आप देखते हैं इसे?
5: बिल्कुल श्वेता जी, बहुत बहुत अच्छी बात आप कर रही हैं। ऐसा ही कुछ है, कुछ समय से चाहे राम मंदिर का बनना और इस तरह से लगातार कहीं ना कहीं हम अयोध्या रहते हैं, उसके बाद में भी बीच बीच में टाइम मिलता है तब नीम करोली बाबा के पास हम लोग अपने खुद ही पहुंचते हैं, वहां पर जाते हैं। वो बहुत बड़े महापुरुष थे, उनके प्रति बहुत बड़ी आस्था लोगों की बहुत बड़े वर्ग में जुड़ी हुई है। दूसरी बात, सबसे अच्छी बात अभी डायरेक्टर साहब कह रहे थे, बहुत अच्छी शानदार उनकी बातें हैं कि अच्छा था। देखिए जनता जनार्दन होती है, जो जनता है वो भगवान के रूप में ही होती है, कहीं ना कहीं अंतरात्मा में परमात्मा होते हैं, इस तरह से बातें हम लोग सुनते रहते हैं। कहीं ना कहीं हम पहली बार लगता है कि गए ही थिएटर में जाकर के हमने नीम करोली बाबा की फिल्म जाकर के देखा, तो जिस तरीके से जैसे वो फकीर थे और जिस तरह से उनका जीवन था, ऐसा लगता है कि जीवंत दिखाई पड़ रहा है। लोगों ने इसको स्वीकार किया और स्वीकार करने का परिणाम ये रहा कि इतनी गई। एक दूसरी बात भी इन्होंने बहुत अच्छा किया, इन लोगों ने, इनकी टीम ने, अभी कह रहे थे भैया कि ऐसा नहीं है कि बहुत धार्मिक हो गए, चल गई, सही कहते, बहुत धार्मिक होने से बहुत कुछ नहीं चल जाता, पर भगवत कृपा और संतों की महिमा देश में पहले ही रही है। और आपने इसमें बीच में देखा, हमारे देश के महापुरुषों को श्रेय देना भी बहुत जरूरी है, चाहे हमारे वृंदावन वाले पूज्य महाराज जी हो, चाहे बागेश्वर धाम हो, ऐसे तमाम जितने बड़े संत है सब लोग भी कहीं ना कहीं उसके एक हिस्सा बने, सब लोगों ने अपनी तरफ से कहा। और इस विषय को इस तरह से देखना चाहिए कि व्यक्ति अपने सामर्थ्य से जब हार जाता है, संतों की शरण में जाता है, तो कहीं भगवान की कृपा होती ही है। सीता जी की खोज में हनुमान जी गए लंका में, रात भर खोजा, आप सब जानती है, नहीं मिले, कोई सीता जी का पता उनको नहीं मिला। सुबह विभीषण जी से उनकी मुलाकात हो जाती है और विभीषण जी फिर उनको कहते हैं कि चिंता मत करिए, जुगत विभीषण सकल बताई, उन्होंने कहा इस रास्ते से जाइए तो आपको कहीं ना कहीं रास्ता मिल जाएगा और आपका कल्याण भी हो जाएगा। हनुमान जी और विभीषण जी की मित्रता हुई, सीता जी उनको मिल गई। इसी तरीके से इनका जो प्रयास था, डायरेक्टर का हो, प्रोड्यूसर का हो, इनकी अच्छी जो सद्भावना थी उसके अनुसार 10 दिन तक कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मूवी कर ही रही थी। जब आगे इनको लगा कि नहीं जाना है, तब नहीं चल पा रही ठीक से, तो कहीं ना कहीं संतों का शरण लिया, लगातार गए और महापुरुषों की कृपा, कहीं ना कहीं बाबा की कृपा इन पर बरसी और जो इतिहास रच रहा उसका ही कहीं ना कहीं एक रूप सामने दिखाई पड़ रहा। हाँ, इतनी बात जरूर है कि इस बात को कह देना, एक चीज श्वेता जी और भी, ये चीज ये कह देना कि अपने सामर्थ्य से सब कुछ हो जाता है, ये नहीं कहना, जैसे ये सच बात है कि ये पहले एक्टर होंगे या डायरेक्टर होंगे, प्रोड्यूसर होंगे, जो जगह जगह गए, सब लोगों से मिले, पर इस बात को कहना तो सहयोगती नहीं होगी, क्योंकि जिन लोगों से मिल रहे हैं श्वेता जी, हम व्यक्तिगत रूप से उन लोगों को, ज्यादातर लोगों को जानते हैं, इनको तब लोग मिलना शुरू किए, तब बुलाना शुरू किए जब ये फिट हिट होना शुरू हो गया, कहीं ना कहीं लोगों को लगा कि बहुत अच्छा देखा, तब इनको स्वीकार किया कहीं ना कहीं। तो इनका परिश्रम भी है, इनकी विनम्रता सराहनीय है, पर महापुरुषों का, बाबा की कृपा और सनातन के प्रति बढ़ती हुई जो रुचि है, लोगों का रुझान है, वह सबसे महत्वपूर्ण है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है कि जनता जनार्दन ने कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर डायरेक्टर को आशीर्वाद दिया है और बाबा के चरित्र से कहीं ना कहीं प्रभावित हुए।
0: बिल्कुल आचार्य जी, आपने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन प्रदीप जी आप इसे एज अ क्रिटिक कैसे, फिल्म क्रिटिक कैसे देखते हैं? क्योंकि देखिए हमने भी ना जाने कितनी ही फिल्में देखी हैं, जब वो आती हैं रिलीज से पहले जो उसका प्रचार प्रसार होता है, ज्यादातर जो एक्टर्स डायरेक्टर्स होते हैं वो मॉल जाना प्रेफर करते हैं या फिर कॉलेजेस जाना पसंद करते हैं जहां युवा पीढ़ी हो, ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पर हो, ताकि एक जगह पे वो जाके या फिर किसी ऐसे फेस्टिवल को टारगेट करते हैं, अगर वो किसी फेस्टिवल के आसपास आ रही है जहां पे ज्यादा लोग हों और उस क्राउड को वो टारगेट करते हैं सो दैट कि लोग फिल्म देखने आए। लेकिन इसका जो प्रचार हुआ है इस मूवी का वो बिल्कुल ही अलग तरीके से हुआ। जैसे हमने देखा इन लोगों ने भंडारे लगाए थे, ये लोग धार्मिक आयोजन कर रहे थे, इस तरह की चीजें हमने पहले कभी नहीं देखी थी। ठीक है, बजट एक कॉन्स्ट्रेंट था लेकिन ये भी चीज एक है।
3: जाहिर है असल में इसलिए मैं किया कि बजट नहीं था पब्लिसिटी के लिए। आज जो भी फिल्में बनती है बड़ी बढ़िया ब्रह्मांड फिल्म बन रही है 4,000 करोड़ उसका बजट है दो पार्ट के अंदर, तो एक पार्ट का भी 2,000 करोड़ लगा ले देखिए कितना बड़ा बजट है। और ये जितनी भी इस तरह आजकल बड़ी फिल्में बनती हैं वो अपने बजट के लिए 10%, 15%, 20% जो टोटल कॉस्ट होती है उतना बजट के लिए पब्लिसिटी के लिए रखते हैं उतना बजट। बजट है उसका पब्लिसिटी के 10-15-20% तक बजट रखना बहुत बड़ी बात होती है। 2 करोड़ के करीब कॉस्ट आई और सारा उसी पे लग गया तो पैसे बचे नहीं थे, ना ही किसी टीवी शो में जा पाए, कोई बुलाता भी नहीं, क्योंकि टीवी शो में भी उन लोगों को बुलाते जो मशहूर चेहरे हों या पब्लिसिटी होती है, और चैनल भी उन्हीं को बुलाते, हर कोई वही चाहेगा उसी को बुलाएगा जो मशहूर चेहरे हैं। तो बिल्कुल नए चेहरे थे, नई टीम थी, इसलिए इन्होंने अपना अपना अलग रास्ता अपनाया।
0: बिल्कुल नालिन, आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे एक एक समय, क्योंकि अक्सर अब चूंकि बाबा नीम करौली के ऊपर जो ये फिल्म बनी है उसको लेकर इतनी चर्चा हो रही है तो बार बार एक फिल्म याद आती है जय संतोषी माँ। वो जब आई थी तो इसी तरह से एक आध्यात्मिक लहर हमने पूरे समाज में पूरे देश में एक तरह से हमने देखा था, लोगों ने शुक्रवार का व्रत करना शुरू कर दिया था और कई लोग तो बाद में आरती की थाल लेकर के हॉल जाने लगे थे, पिक्चर हॉल जाने लगे थे, तो इस तरह की चीजें हमने देखी है। ये फेनोमेना एक तरह से उस समय वो फेनोमेना था वो फिल्म। आप इस ट्रेंड को कैसे देख रहे हैं क्योंकि अब ना सिर्फ ये फिल्म बल्कि आने वाले समय में कई सारी ऐसी फिल्में लाइंड अप है जिसमें तेरे साईं से लेकर तमाम तरह की और खाटू श्याम पर फिल्म बन रही है और बाकी रामायण और वो फिल्में तो आ ही रही हैं।
4: देखिए बॉलीवुड और थिएटर खासकर बहुत एक कठिन दौर से गुजर रहा है। बड़े बड़े जो डायरेक्टर्स हैं वो भी उनकी हिम्मत नहीं हो रही है कि वो थिएटर के लिए फिल्में बना सके और हॉल खाली पड़ा हुआ है, ये हकीकत है। जितना जल्दी इस चीज को हम लोग समझ ले उतना अच्छा है। OTT प्लेटफॉर्म उतना ज्यादा हमें पैसा नहीं देता है जितना हम सिनेमा हॉल से कमा सकते थे, वो भी फिर नेगोशिएट करता है। बड़े बड़े जो OTT प्लेटफॉर्म दो ही हैं इंडिया में, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। ट्रेंड अगर आया है रिलीजियस फिल्म्स का तो ये बहुत अच्छी बात है। अभी माहौल भी है, वैसी सरकार भी है, भारत का देश।
0: प्राचा फिल्म क्रिटिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामकिशोर जी, आपसे यहाँ पर पूछना लगता है, यही सवाल आपसे आगे बढ़ाते हुए पूछना चाहूंगी कि सिनेमा को फिल्म को वेंटिलेटर से हटाने के लिए क्या इस तरह के फिल्में जो आध्यात्मिक फिल्में अब बन रही हैं वो एक मेजर रोल प्ले कर सकती है?
6: ये सिर्फ आध्यात्मिक नहीं बल्कि जो फिल्म का कंटेंट और ग्रामर है ना और उसका जो कॉन्सेप्ट है अगर आपने वो ठीक से ग्रिप किया है और जो जनमानस के साथ वो सीधे जाके जुड़ रहा है तो हम कोई भी फिल्म जो है वो अच्छी बना सकते हैं। लेकिन वो क्या रहा है कि हम लार्जर देन लाइफ सिनेमा बना रहे हैं और ये जो फिल्म है हनुमान अंश जो है आपको आपने जिक्र किया अभी 1975 का शोले और जय संतोषी माँ एक साथ रिलीज हुई थी और इस बार भी यही हुआ है कि टॉक्सिक और हनुमान अंश जो है वो सेम डे रिलीज हुई है लेकिन उसका जो ग्राफ है वो नीचे है और इसका ऊपर है। तो मैंने फिल्म देखी है ये लेकिन इस फिल्म को देखते वक्त एक खास चीज जो मुझे समझ में आई है वो ये कि सिर्फ हमें रामायण या किसी धार्मिक विषय पर फिल्म बनाने के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल इफेक्ट जो सपनों से दूर दुनिया चली जाए लार्जर देन लाइफ या स्पेशल इफेक्ट या ग्राफिक्स की जरूरत नहीं है। आपको उसके अंदर जो ग्रामर होता है जो उसका कंटेंट होता है उसका बेसिक जो एक थॉट होता है एलिमेंट होता है वो आप अगर लेकर आते हैं तो फिल्म सीधे जाके जुड़ जाती है। धुरंधर भी एक ऐसी ही फिल्म थी और अब ये हनुमान अंश जो है आस्था एक अलग चीज है लेकिन उसका जो प्रेजेंटेशन है वो काफी स्ट्रांग है और स्ट्रांगनेस जो है वो सीधे जाके आस्था और आपकी एक अच्छी फिल्म देखने की जो भावना है उससे जाके जुड़ गई। तो जो वेंटिलेशन की बात जो कर रहे हैं मेरे भाई वो सही है कि वेंटिलेटर पर है, नलिन ने सही कहा और नलिन अच्छे से जानते हैं, उन्होंने फिल्में भी बनाई हैं और देखा है उन्होंने सिनेमा को, ये वेंटिलेटर पर तो सिनेमा है लेकिन अगर हम कोशिश करें तो हमें वेंटिलेटर पर एक अच्छे सब्जेक्ट के साथ ऑक्सीजन लाने की जरूरत है और जिसे हम ला सकते हैं अगर हमारे फिल्म मेकर चाहे तो।
0: बिल्कुल आचार्य जी, यहाँ पर जो नलिन भी अभी कह रहे थे कि जो हमारी युवा

0: पीढ़ी है, कहीं ना कहीं उससे कनेक्ट करने की यहाँ कोशिश है। और जो फिल्म के खुद डायरेक्टर हैं हनुमान अंश के, वो भी ये कह रहे थे कि युवा जो है, आज के यूथ, वो भी कनेक्ट कर रहे हैं क्योंकि भजन क्लबिंग अब शुरू हो गई है, लोग कॉफी पीते हैं और साथ में रामायण भी सुनते हैं, इस तरह की चीजें अब खूब होने लगी है मेट्रोज में। तो वाकई जिस तरह का डिस्ट्रेस हमें आजकल देखने को मिल रहा है, जिस तरह का जीवन रोजमर्रा की जिंदगी में मेट्रोज में खास करके हम जी रहे हैं, वहां पर सांस लेने की फुर्सत नहीं है, टेंशन स्ट्रेस इतनी ज्यादा है, बात करने के लिए कोई रियल इंसान नहीं है आपके पास, अच्छा दोस्त नहीं है, ऐसे में इस तरह की मूवी जो है उससे वाकई आपको लगता है कि जो आज की युवा पीढ़ी है वो अगर जाकर देखे या वो कनेक्ट कर रही है तो उसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और अपने जीवन में जो एक सुकून, एक शांति की तलाश वो कर रहे हैं वो उसे वहां मिलेगी।
1: बिल्कुल श्वेता जी, निश्चित तौर पर अभी क्या है कि भौतिकवाद और आध्यात्म में यही फर्क है। भौतिकवाद में कहीं सुकून नहीं है, सुख नहीं है, थोड़ी देर के क्षणिक सुख लगता है पर कहीं ना कहीं उसका परिणाम दुख में ही परिणित होता है। आध्यात्म में शांति है, सुकून है, कहीं ना कहीं एक अंतर आत्मा में एक अलग सी शांति सुकून महसूस होता है व्यक्ति के अंदर। अगर इस तरह से कहें कि हम मंगल ग्रह तक पहुंच गए भौतिक विकास करके, और मंगल ग्रह तक पहुंचने के बाद अगर देखते हैं जीवन में मंगल कैसे आएगा, तो विज्ञान के द्वारा बनाए हुए किसी भी प्रकार के जो भौतिक विज्ञान बना रहे हैं लगातार, उसमें कहीं अंतर आत्मा को सुकून का कोई विषय नहीं है। अगर कहीं सुकून के लिए शांति का कोई मार्ग है, वह केवल एकमात्र आध्यात्म में है। हमारे साधु संतों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, जैसे पूज निम करोली बाबा हैं हुए हैं, ऐसे पूज देवराहा बाबा जी हुए हैं, रामकृष्ण परमहंस हुए, ऐसे तमाम महापुरुष समय समय पर हुए हैं, और जिन लोगों ने लगातार परिश्रम करके एक ऐसा मार्ग दिया है जिससे व्यक्ति को सुकून महसूस हो, शांति से रह सके। तो अब यूथ क्या है, यंग जनरेशन काम बहुत करता है, दूसरी बात वह बहुत समझदार हुआ है, अब ऐसा कोई रूढ़वादी परंपरा को लेकर के नहीं चलता है। अगर उसको लगता है, उसके विचार पटल पर लगता है कि बिल्कुल ये ठीक है, उसको समझ में आती है तो तुरंत स्वीकार कर लेता है। कोई जबरदस्ती करके उसको घुमा फिरा के कुछ समझाना बुझाना चाहता है तो फिर उसको नहीं सुनता, नहीं समझता, वो उसमें प्रश्न तर्क वितर्क में फंसता है। ये जो फिल्म आई अभी, इसमें बहुत न चकाचौंध है, न बहुत कोई डायरेक्टर की अलग से कुछ दिखाई पड़ी गई, जैसा सामान्य जीवन नीम करोली बाबा जीते थे वैसा कहीं ना कहीं सामने दिखाई पड़ रहा है। और जो नेचुरल चीज होती है कहीं ना कहीं कनेक्ट तो करती ही करती है किसी को भी हो, तो वही सादगी, वही सब कुछ जो अंतरात्मा लोगों की है, वह कहीं ना कहीं कनेक्ट हुई, और उसी कारण अभी यूथ भी जुड़ा हुआ है और देश नहीं जहां तक फिल्में जा रही है वो एक छाप छोड़ रही है। मैं पहली बार फिल्म देखने के बाद में मेरे आंखों में आंसू था, बहुत से ऐसे सीन है कि देखने के बाद आंखों में आंसू भर जाता था, रोए खड़े हो जाते थे, ऐसे दृश्य हैं। तो निश्चित तौर पर अगर कोई अच्छा करता है तो कनेक्ट करता है, और लगभग हम जैसे लोग भी कहीं ना कहीं कंटिन्यू जो भी संपर्क में आता है उसको कहते हैं कि एक बार जा करके देखो जरूर। तो यह करने करने जपन जना जो लोग आपस में बातें करने लगे, इस नीम करोली फिल्म को, हनुमान अंश को लोगों ने अपनी फिल्म मान लिया और वही कहीं ना कहीं जनता जनार्दन प्रचारक बन करके काम कर रही है, ये सफलता का मेन कारण यह रहा।
0: बिल्कुल प्रदीप जी, यहाँ पर आपसे ये जानना चाहूंगी कि इस तरह की फिल्में खास करके बनाना कितना चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि इसमें न सिर्फ कहानी आप कह रहे होते हैं बल्कि करोड़ों लोगों की इसमें आस्था जुड़ी होती है।
2: बिल्कुल, बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। रामायण को भी देखें, आपको मैं बताऊं, जब रामायण सीरियल पहली बार दूरदर्शन पर आया था 1987 में, रावण सागर ने इसको बनाया, तो उसके अंदर इतने ऑब्जेक्शन थे कि उसके कम से कम 10 बार 20 बार को रिजेक्ट करके वापस कर दिया कि आप ये सीता को ऐसे कैसे कपड़े पहनाए हुए हैं, जो कट स्लीव्स हैं, ये ऐसे क्यों है, ये रोल ऐसे क्यों है। ये फिल्मों में भी होता है, आप देखिए बायोपिक बनती है उनके साथ में ये होता है। तो इस तरह की जो बायोपिक बनती है, धार्मिक बनती है फिल्में या ऐतिहासिक फिल्में बनती है, तो उनके साथ ऐसी चुनौतियां बहुत ज्यादा होती हैं कि उसके अंदर जो पात्र हैं जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो जाते हैं, उनको लोग बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, तो वो उनके ऊपर आपत्ति उठती है कि ये सीन ऐसा क्यों, ये ऐसा क्यों, ये ऐसा क्यों। ये चुनौती तो था
0: बिल्कुल, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी पैरामीटर बहुत हाई सेट कर दिया है, वो बार बहुत ऑलरेडी हाई सेट कर दिया है, इसीलिए इन लोगों को और ज्यादा सतर्कता से और बहुत कुछ ध्यान में रखकर बनाना होगा। यहाँ पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आप लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये सिर्फ एक फिल्म की सफलता की बात है या फिर दर्शकों के बदलती मानसिकता से जुड़ी ये कहानी है, जहां दर्शक फिल्म के साथ साथ आध्यात्मिक एंगल भी देखना चाहते हैं। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए गुड न्यूज़।

0: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
2: अविश्वास में विश्वास बसता है।
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: तो वाकई एक चमत्कार की हम बात कर रहे हैं। एक चमत्कार उस समय हुआ था जब खुद बाबा जीवित थे। न जाने उनसे जुड़ी कितनी ही चमत्कार की कहानियां हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन अब जबकि वो फिल्म सामने आ गई है, अब उसने जो चमत्कार किया है, 2 करोड़ से 300+ करोड़ तक का सफर अब जो तय कर लिया है, उसको लेकर आज हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप, अब आपके पास आना चाहेंगे। प्रदीप सरदाना फिल्म क्रिटिक है हमारे साथ अभी भी। प्रदीप जी से खैर आपसे हमने बात की थी, लेकिन नलिन आपसे मैं यहां पर जानना चाहूंगी कि जिस तरह से लगातार हम ये चर्चा कर रहे हैं, अब ऐसे में आपको क्या लगता है कि ये जो दौर है, अब दर्शकों की बदलती मानसिकता भी बता रहा है, दर्शक क्या वाकई अब ये चाह रहे हैं कि हमें सिर्फ बस ऐसे ही कोई कंटेंट मत दीजिए, उसमें कहीं ना कहीं ये जो धार्मिक एंगल है और प्लस लॉजिक के साथ वो भी हमें बताइए, क्योंकि युवा पीढ़ी जो है, जो जेन जी है या फिर जो जेन अल्फा है, वो बिना लॉजिक के चीजों को समझने को तैयार नहीं।
1: जेन जी और जेन अल्फा क्या है मेरे समझ में नहीं आता है, बिकॉज अभी जो हम लोगों ने देखा वो मीडिया में एक अंश को देखा और दूसरे अंश को हम लोगों ने नहीं देखा। अभी का जो ट्रेंड है, डेफिनेटली रिलीजन जो है आफ्टर, मेरा ये मानना है और हो सकता है मैं गलत भी हूं और ये डिबेटेबल भी हो सकता है, राम मंदिर के बनने के बाद जो आस्था जगी है लोगों में, खासकर एक एक मेजॉरिटी समुदाय में, वो बहुत ज्यादा हो गई है। तो अगर एक ईमानदार फिल्म बनाया जाए, ईमानदार, अब रामायण में स्पेशल इफेक्ट्स की जरूरत थी, अभी एक श्रोता वो बोल रहे थे तीर चलती थी लगती थी तो स्पेशल इफेक्ट हल्के फुल्के हैं, लेकिन ईमानदार फिल्म बनाया जाए जो बहुत ज्यादा उसको ये ना कर दिया जाए तो दर्शकों को ये पसंद आएगी। रिलीजियस फिल्म्स कम बैक हुआ है, इसका मतलब है कि परिवार सिनेमा हॉल में जा रहा है। याद रखिएगा 2 घंटे 2.5 घंटे की पिक्चर है, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर या मोबाइल पर जब आप कंटेंट देखते हैं तो आप खुद देखते हैं, अकेले देखते हैं, ठीक है, और लेकिन सिनेमा हॉल में बहुत पहले शोले शायद एक मूवी था या मेरी मूवी गांधी टू हिटलर जब रिलीज हुई थी तो हम लोग पूरा परिवार के साथ गए थे, नहीं चलो ये फिल्म को देखने के जाते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा फिल्म अभी जो आ रही थी वो परिवार के साथ देखने में लोग इंटरेस्टेड नहीं थे। तो धार्मिक फिल्मों का डेफिनेटली कमबैक हुआ है, ये मानसिकता है लोगों में, अच्छी बात है, और मेरा ये मानना है कि शायद अब परिवार के साथ इस तरह की फिल्में लोग देखना चाहेंगे, शायद मेरा बेटा, मेरी दादी या मेरे पापा के साथ ये फिल्म को देखना चाहेगा, सब लोग के साथ में, और एंजॉय करना चाहेंगे। पॉजिटिव साइन है सिनेमा की ये।
0: बिल्कुल रामकिशोर जी, आपको क्या लगता है, वाकई पॉजिटिव साइन है? नलिन, आपने वाकई बहुत सही बात कही, और इस फिल्म में जैसा कि हम भी अगर घर में सोचते हैं वीकेंड है और किसी मूवी को देखने के लिए जाना है, तो इस तरह की मूवी अगर लगी है तो हम बेधड़क या बेझिझक कहते हैं कि हाँ भाई पूरा परिवार जा सकता है या फिर कोई भी देखने के लिए जा सकता है, एक साथ सोचने की बात नहीं होती है। रामकिशोर जी, आपको क्या लगता है, कमाई कि अगर हम बात करें, शुरुआत जो ओपनिंग हुई, जैसा कि हमने कहा कि बहुत ही धीमी ओपनिंग हुई, ऐसा लगा कि पता नहीं फिल्म कितने

0: नहीं रह पाएगी, पर्दे से उतर जाएगी। एक समय वो भी हम सुन रहे थे जब ये ओटीटी भी कोई भी प्लेटफॉर्म इसे लेने को तैयार नहीं था, और अब कतारें लगी हुई है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की जो इस फिल्म को लेना चाह रहा है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि कंटेंट और आस्था ये यहां पर ज्यादा इंपॉर्टेंट और ज्यादा बड़ी हो गई है, बशर्ते जो हम देखा करते थे कि स्टारडम होता है, बड़े बड़े नाम होते हैं और हजारों करोड़ में वो बनाए जाते हैं प्रोजेक्ट्स, तो वर्सेस अगर आप देखें इन दोनों के, तो आपको क्या लगता है कि इसमें कौन जीत रहा है या हु इज द जिसका अपर हैंड है किसका?
1: धार्मिक फिल्मों का एक चलन शुरू हुआ है, लेकिन ये जो फिल्म है ये कोई धार्मिक फिल्म नहीं है, ये आस्था से जुड़ी। जो करौली बाबा है वो किसी खास धर्म को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं, तो धार्मिक फिल्म इसको कहना थोड़ा सा अलग है। मेरा मानना है कि जो हमारी आस्था का एक प्रतीक है करौली बाबा नाम के जो संत हुए हैं, ये उन पर आधारित फिल्म है, और संतों की जीवनी पर फिल्म बनाना और धार्मिक फिल्म बनाना लाइक द रामायण या महाभारत वो अलग चीज है। पर एक चीज जो बार बार यहाँ काउंट हो रही है वो ये है कि आप अगर इस फिल्म की शुरुआत से देखें तो फिल्म का एक शॉट है जिसमें एक ट्रेन है और ट्रेन में जो ये नायक है बाबा उनको उतार दिया जाता है, और वो पूरा ग्राफिक और स्पेशल इफेक्ट के साथ जो है शूट किया गया है। लेकिन उसमें जो कंटेंट है, उसका जो ग्रामर है, उसका जो प्रेजेंटेशन है, आप उसके आसपास का एरिया देखिए, कैमरे का इस्तेमाल है या डायलॉग्स है, वो बहुत ही साधारण और बहुत ही खिलंदड़ी स्वभाव से जो है उसको शूट किया गया है। और इस कैरेक्टर को भी आप देखें जो बाबा करौली का जो अभिनेता ने कैरेक्टर निभाया है, आप देखिए कि हर वक्त उनके चेहरे पर एक मुस्कान रहती है, वो डायलॉग भी बोलते हैं तो बहुत साधारण तरीके से, जैसे वो एक आम आदमी जो है आपसे बात कर रहा है, वो कहीं कोई संत महात्मा या कोई धर्म से जुड़े हुए व्यक्ति नजर नहीं आते हैं। तो ये जो एक जुड़ाव है आम आदमी का कि जो सामने कैरेक्टर डिस्प्ले किया जा रहा है वो मेरे साथ का एक कैरेक्टर है, वो किसी बहुत बड़े लार्जर देन लाइफ वाले कैरेक्टर नहीं है। और दूसरी बात ये कि जो बाजार है हमारा, बाजार में जो बहुत बड़ी फिल्में हैं, धुरंधर को अगर आप छोड़ दें
2: तो उसके अलावा बड़ी से बड़ी फिल्में धाराशाही हुई है। एक बहुत छोटी सी फिल्म है, 2 करोड़ रुपए में फिल्म बनाना, मतलब ये भी छोटे फिल्म मेकर के लिए चुनौती होता है, लेकिन 2 करोड़ रुपए की फिल्म बनाकर आप उसमें जो स्टोरी है, उसका जो कॉन्टेंट है, उसके जो एलिमेंट है जो आपके देखने वालों को टच करें जाकर, वो चाहे धर्म से जुड़ी हुई फिल्म हो, चाहे वो आस्था वाली फिल्म हो, चाहे वो कोई देशभक्ति पर बनी हुई फिल्म हो, वो बहुत काउंट होती है। तो डायरेक्टर ने उस जो काउंटनेस है, उसका जो कैरेक्टराइजेशन है अपनी कहानी का, उसको पकड़ा है, और अगर आप उसको ढंग से डिस्प्ले कर रहे हैं तो वो कोई भी उससे आगे जुड़ेगा। इस फिल्म की खास बात पहली बात तो ये है। दूसरी बात जो ओटीटी का जो मामला है, ओटीटी जो है वो एक कमर्शियल एस्पेक्ट है, और जो फिल्म बहुत बड़ी हिट हो जाती है ओटीटी उसके लेने के लिए भागते हैं, लेकिन अगर सही कंटेंट और सही कहानी वाली फिल्में आप बनाते हैं तो ओटीटी उसको भी दिखाते हैं। ये अलग बात है कि 2 करोड़ रुपए की फिल्म बनाने के बाद 300 करोड़ की कमाई फिल्में की है, लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि ऐसी ही फिल्मों का एक दौर शुरू हो जाएगा, क्योंकि लोगों का एक भाव होता है कि कोई एक फिल्म आती है जो आपको हिट करती है, कोई एक फिल्म आती है जो आपको प्रभावित करती है और मार्केट पकड़ती है, लेकिन उसके साथ वैसी ही बनने वाली दूसरी फिल्में जरूरी नहीं है कि बाजार पकड़े। लेकिन फिर भी मेरा मानना यह है कि अगर इस तरह की फिल्मों का एक दौर चलता है तो अब ये पहला वाला जो 70s 60s का दौर था जय संतोषी माता वाला, उससे अलग है। अब आप अपनी कहानी को ढंग से कह सकते हैं, अपने जो कैनवास है आपके सिनेमा का उसको ढंग से दिखा सकते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि रिसर्च करने के लिए धर्म और आस्था के प्रति या इतिहास के प्रति आपके पास अब इतना सारा मटेरियल है कि आप कोई भी बात अगर गलत तरीके से कहते हैं तो वो तुरंत सोशल मीडिया पर
0: किया जाता है। बिल्कुल, बहुत
2: तो
0: सही कहा आपने।
2: एक समय है जब
0: और ये बात ये आपने सही कहा कि ऐसा नहीं है कि ये फिल्म चल गई तो इसके बाद जितनी भी इस तरह की मूवीज अगर बनती है तो सभी चल जाएगी, ये कहना अब यहाँ पर सही नहीं होगा। प्रदीप जी, आपको क्या लगता है वाकई इस बात को, क्योंकि मुझे भी ये लगता है कि प्रभास की जो फिल्म आई थी बाहुबली, वो ऐसी फिल्म आई थी जिसमें लार्जर देन लाइफ भी हमने देखा था, VFX का इस्तेमाल देखा था, ऐसा लग रहा था कि पहली बार इंडियन सिनेमा में हम देख रहे हैं जिस तरह से VFX का इस्तेमाल किया गया था, ग्राफिक्स, तमाम चीजें, और उसके बाद उसी को कह लीजिए कॉपी करते हुए या फिर आप कह लीजिए इंस्पायर होते हुए उस तरह की फिल्में बनाने की कोशिश की गई, हमारे निर्माताओं ने बनाया लेकिन फिर वो नहीं चली, खुद प्रभास की ही दूसरी फिल्में नहीं चली जिस तरह से बाहुबली चली थी।
3: बिल्कुल, देखिए अब जब भी आप उस ट्रेंड की तरफ भागेंगे जो कहते हैं भेड़ चाल है, एक ने वो किया वो भी दूसरा भी सफल होगा ऐसा नहीं होगा। अब 1975 में शोले पिक्चर आई थी सुपर

0: साबित हुई, हालांकि शुरू में वो भी नहीं चली थी, और उसके ठीक सामने जय संतोषी माँ आई थी। तो जय संतोषी माँ ने जो बिजनेस किया, जो लोकप्रियता पाई, वो तो अद्भुत है। उस समय का तो नजारा बिल्कुल ही और होता था। मैंने उस दृश्यों को देखा है कि हर सिनेमा के बाद जय संतोषी माँ की, संतोषी माता की फोटो लगी होती थी, दो तरह का प्रसाद दिया जाता था। लेकिन उसके बाद जब और लोगों ने उस तरह की फिल्में बनाई तो वो नहीं चल पाई। यहाँ तक कि शोले में भी जब इन्होंने, रमेश सिप्पी ने कुछ साल बाद शान पिक्चर बनाई उसी ट्रेंड को लेकर, तो उनकी शान भी नहीं चली। तो इसलिए आप जब पीछे भागेंगे, हर 10 साल बाद दौर बदलता है, इसमें कोई शक नहीं है। हर 10 साल बाद कोई फिल्म आता
1: है। यानी ओरिजिनल कंटेंट हम जो अगर समझ पा रहे हैं अभी, सभी बातों का निचोड़ जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये कि ओरिजिनल कंटेंट भी होना चाहिए, ठीक है, आध्यात्मिक लोग जो हैं वो कनेक्ट भी करते हैं, और वाकई इसको हम सिर्फ एक स्पिरिचुअल मूवी नहीं कह सकते हैं, एक संत के ऊपर बनी ये मूवी है, लेकिन इसको जिस तरह से कैरेक्टर ने निभाया है अपने आप में बहुत बड़ी बात है। खुद जो फिल्म के डायरेक्टर हैं उनसे हमने बात की थी, एक्टर हैं उनसे हमने बात की थी, इन्होंने कहा कि पूरे टाइम मतलब फिल्म पे नॉनवेज अलाउड ही नहीं था, उस सेट पर नॉनवेज अलाउड ही नहीं था, कई तरह के नियम इन लोगों ने खुद फॉलो किए थे इस पूरे मूवी को बनाने के दौरान। तो कई तरह की चीजें हैं, संतों का आशीर्वाद है, जैसा कि आचार्य चंद्रांशु जी भी कह रहे थे, तमाम चीजों को मिलाकर आज ये मूवी 300 प्लस करोड़, ये जो बहुत बड़ा आंकड़ा है बॉक्स ऑफिस के लिए, उसे पार कर रही है। और जैसा कि नलिन ने कहा, वेंटिलेटर पर फिल्म है, हम तो यही उम्मीद करेंगे कि फिल्म इंडस्ट्री और ओटीटी इंडस्ट्री या फिर तमाम जो ये फिल्म से जुड़ी इंडस्ट्री है वो वेंटिलेटर से बाहर निकले, उसका एक जरिया अगर ये हो सकती है तो इससे अच्छा और क्या होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।
2: किस ग्रह की अशुभ दशा में हृदय रोग होने की संभावना होती है? किस ग्रह की अशुभ दशा में लंबी बीमारी हो सकती है? और किस ग्रह की अशुभ दशा में विचित्र बीमारियां हो जाती हैं? ग्रहों की अशुभ दशा का क्या है प्रभाव, और क्या है अशुभ दशा से बचने के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: बात करेंगे आने वाली फिल्मों की। देखिए, अल्लू अर्जुन, दीपिका पादुकोण और रश्मिका मंदाना की अपकमिंग और मोस्ट अवेटेड फिल्म राका की हर एक अपडेट के लिए फैंस एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। फिल्म के मेकर्स ने जब इसका प्रमोशनल टीजर जारी किया तो फिल्म को लेकर जो एक्साइटमेंट थी वो और ज्यादा बढ़ गई। उम्मीद की जा रही कि फिल्म 2027 में रिलीज होगी।
9: राका की हर एक अपडेट के लिए फैंस एक्साइटेड हैं। अब हाल ही में फिल्म के मेकर्स ने इसका प्रमोशनल टीजर जारी किया है, जिससे फिल्म को लेकर और भी ज्यादा एक्साइटमेंट बढ़ गई है। राका के मेकर्स ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें लिखा, एक ग्लोबल जीत देखने के लिए तैयार हो जाइए, जो मुमकिन लगता था उससे कहीं आगे। हमने कल्पना करने की हिम्मत की, हमने उसे हासिल करने की हिम्मत की। राका, एक ग्लोबल जीत। टीजर के आने से ठीक एक दिन पहले सामने आए एक दिलचस्प खुलासे के बाद हुआ है, जिसमें एक पोस्टर में सिर्फ लिखा था 37। अब तक राका के बारे में बहुत कम जानकारी सामने आई है, चाहे वो इसकी शूटिंग की जगह हो या प्रोडक्शन का पैमाना, जिससे फिल्म को लेकर उत्सुकता और बढ़ गई है। अल्लू अर्जुन, दीपिका पादुकोण और रश्मिका मंदाना की अपकमिंग और मोस्ट अवॉइडेड फिल्म को लेकर काफी सस्पेंस बना हुआ है और फैंस की बेताबी भी बढ़ गई है। खबरों के मुताबिक अल्लू अर्जुन राका के चार अलग अलग किरदार निभाएंगे। वो दादा, पिता और दो बेटों की भूमिका में नजर आएंगे। ऐसी भी चर्चा है कि फिल्म में दो पैरेलल यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट दिखाया जा सकता है, हालांकि मेकर्स ने अभी तक किसी भी जानकारी पर मुहर नहीं लगाई है। अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक पोस्टर पहले ही रिलीज किया जा चुका है, जिसे देखने के बाद इटली के इस अपकमिंग मूवी को लेकर फैंस की एक्साइटमेंट सातवें आसमान पर बनी हुई है। संभावना जताई जा रही है कि अल्लू अर्जुन का ऐसा अवतार देखने को मिलेगा जो शायद पहले कभी बड़े पर्दे पर देखने को नहीं मिला है। फिल्म में जाह्नवी कपूर और मृणाल ठाकुर भी अहम किरदारों में नजर आएंगी। इस साइंस फिक्शन एक्शन ड्रामा को सन पिक्चर्स ने प्रोड्यूस किया है। ये फिल्म अल्लू अर्जुन और इटली के बीच पहला कोलैबोरेशन भी है। फिलहाल फिल्म अल्लू अर्जुन स्टारर राका की रिलीज डेट को लेकर मेकर्स की तरफ से कोई आधिकारिक जानकारी नहीं आई है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि 2027 के अंत तक इस बहुचर्चित फिल्म को सिनेमाघरों में प्रदर्शित किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: गोलमाल 5 की रिलीज डेट का ऐलान हो चुका है। जी हाँ, रोहित शेट्टी ने उनके डायरेक्शन में बनी ये फिल्म अगले साल 2027 के पहले महीने के पहले हफ्ते में बड़े पर्दे पर दस्तक देने जा रही है। इस बार अजय देवगन की गैंग के साथ अक्षय कुमार और प्रिया मणि भी नजर आएंगी। शर्मन जोशी की भी वापसी हो रही है।

अजय देवगन इस साल और अगले साल यानी 2027 में एक के बाद एक बॉक्स ऑफिस पर बड़ा धमाका करने वाले हैं। उनकी फिल्म दृश्यम 3 को लेकर अभी फैंस की बितावी कम भी नहीं हुई थी कि उससे पहले ही अजय अक्षय की मोस्ट अवेटेड फिल्म गोलमाल 5 का नया पोस्टर शेयर करते हुए मेकर्स ने इसकी रिलीज डेट भी आउट कर दी। अजय देवगन अर्षद वारसी स्टारर फिल्म गोलमाल 5 का नया पोस्टर डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है, जिसमें गोपाल की मंडली बाइक पर सवार होकर घूम रही है। मजेदार पोस्ट के साथ निर्देशक ने सबसे बड़ी कॉमेडी फ्रेंचाइजी फिल्म की रिलीज डेट पर से पर्दा उठाते हुए कैप्शन में लिखा कि हंसी मस्ती जॉय खुशियां और परिवार, बस कुछ और नहीं। उन्होंने ये भी खुलासा किया कि गोलमाल 5 8 जनवरी 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। इसके बाद अजय देवगन ने एक्स पर पोस्ट कर बताया कि गोलमाल 5 अगले साल 8 जनवरी 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। उन्होंने इसकी घोषणा करते हुए लिखा है कि पुरानी आदत है गोलमाल करने की। गोलमाल 5 में रोहित शेट्टी बतौर डायरेक्टर वापसी कर रहे हैं, तो अजय देवगन फिर से गोपाल बनकर लौटेंगे। उनके साथ अर्षद वारसी, तुषार कपूर, कुणाल खेमू और श्रेयस तलपड़े भी वापसी कर रहे हैं। शर्मन जोशी भी इस फ्रेंचाइजी में लौट रहे हैं। 20 साल पहले 2006 में रिलीज हुई पहली फिल्म गोलमाल फन अनलिमिटेड के बाद इस फ्रेंचाइजी में शर्मन की वापसी होगी। इस बार अजय देवगन के गैंग के साथ अक्षय कुमार और प्रिया मणि भी नजर आएंगी। हालांकि अक्षय का किरदार क्या

0: होगा इसको लेकर कोई ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन ये जरूर है कि अक्षय कुमार एक अलग ही अंदाज और बोल्ड बियर्ड लुक में दिखाई दे सकते हैं। चर्चा ये भी है कि वह फिल्म में विलेन की भूमिका निभा सकते हैं। इस फिल्म की शूटिंग 2026 में ही शुरू हुई थी। नई कास्ट प्रियमणि फिल्म में नेगेटिव किरदार में नजर आ सकती है। गोलमाल फ्रेंचाइजी ने दर्शकों को सिर्फ हंसाया ही नहीं है बल्कि कमाई के मामले में भी जबरदस्त रही है। साल 2017 में गोलमाल अगेन इसकी अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म रही है, जिसने अकेले भारत में 205 करोड़ नेट की कमाई की थी। इसने उस समय 13 अलग अलग बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड बनाए थे। गोलमाल फन अनलिमिटेड 86.70 करोड़, गोलमाल रिटर्न 82.04 करोड़, गोलमाल 3 162.30 करोड़, गोलमाल अगेन 308.62 करोड़। रोहित शेट्टी चारों फ्रेंचाइजी में से पहली जहां सुपर डुपर हिट रही, तो दूसरी में करीना कपूर का सीरियल ड्रामा लोगों ने बेहद पसंद किया। तीसरी फ्रेंचाइजी में गोपाल का उंगली तोड़ना और माधव और गोपू की नोकझोंक ने लोगों को खूब हंसाया। चौथी फ्रेंचाइजी में रोहित शेट्टी ने कॉमेडी के साथ साथ हॉरर का तड़का लगाया था। अब पांचवी में वो दर्शकों के लिए क्या नया लेकर आएंगे, इसका इंतजार सभी को बेसब्री से है। ये रिपोर्ट कॉर्निश टुडे।
1: दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह के लिए डबल सेलिब्रेशन का मौका आ गया है। जी हाँ, दीपिका एक बार फिर से उन्होंने बच्ची को जन्म दिया है। दोनों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए फैंस के साथ ये खुशखबरी शेयर की। अब उनकी बड़ी बेटी दुआ को एक छोटी बहन मिल गई है और खास बात यह है कि एक दिन पहले ही दीपिका और रणवीर अपने परिवार के साथ मुंबई के लालबाग चौराहा पंडाल में और सिद्धिविनायक मंदिर में बप्पा के दर्शन करने के लिए पहुंचे थे।
2: दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह के घर पर एक बार फिर से किलकारी गूंज रही है। दीपिका और रणवीर एक बार फिर से पेरेंट्स बन गए हैं। दीपिका पादुकोण एक बार फिर से बेटी की मां बनी हैं। इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए उन्होंने ये खुशखबरी शेयर की। हालांकि उन्होंने बेटी के जन्म की जानकारी को बेहद पर्सनल रखने की कोशिश की और सोशल मीडिया पर इस अनाउंसमेंट को बहुत सादगी पूर्ण तरीके से शेयर किया। इसके साथ ही उन्होंने नजर बट्टू वाली इमेज भी शेयर की है। खास बात ये है कि दीपिका और रणवीर की दूसरी बिटिया का जन्म 19 सितंबर को हुआ, जब देश भर में राधा अष्टमी का पावन पर्व मनाया जा रहा था। साथ ही ये भी अहम है कि इस वक्त गणेश उत्सव चल रहा है और बेटी के पैदा होने से एक ही दिन पहले दीपिका और रणवीर गणपति के दर्शन करके उनका आशीर्वाद लेने पंडालों में भी पहुँचे थे। 18 सितंबर को वे लाल बागचा राजा के पंडाल में पहुँचे थे। साथ ही सिद्धि विनायक के दरबार में भी उन्होंने हाजिरी लगाई थी। इस दौरान रणवीर दीपिका का हाथ थामे उनके साथ मंदिर के अंदर जाते हुए नजर आईं। दोनों को मंदिर में देखकर फैंस ने एक्ट्रेस की डिलीवरी के कयास लगाने शुरू कर दिए थे। बताया जाता है कि 2024 में भी अपनी पहली संतान के जन्म से पहले दोनों सिद्धि विनायक मंदिर पहुंचे थे और अब 2026 में दूसरे बेबी का वेलकम करने से पहले भी दीपिका रणवीर गजानन के दर्शन करना नहीं भूले। बापा का आशीर्वाद लेने के ठीक एक दिन बाद ही उन्होंने अपनी दूसरी बेटी के जन्म की खुशखबरी सुनाई। बता दें 8 सितंबर 2024 को दीपिका और रणवीर की बड़ी बेटी दुआ का जन्म हुआ था और अब इस बार 19 सितंबर को उनके घर में एक और लाडली बिटिया रानी खुशियां लेकर आई है। दीपिका की दोनों बेटियों का जन्म सितंबर महीने में हुआ और इसे भी खूबसूरत संयोग माना जा रहा है। दीपिका और रणवीर ने इसी साल अप्रैल में एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताया था कि वो एक बार फिर से पेरेंट्स बनने वाले हैं। इसके बाद से ही उनके दूसरे बेबी का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था और अब दीपिका और रणवीर के घर एक और नन्ही परी आई है। तो बॉलीवुड और फिल्म इंडस्ट्री से लेकर तमाम दोस्त, शुभचिंतक और फैंस उन्हें खूब बधाइयां दे रहे हैं। मुंबई से भावना अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गणेश उत्सव के इस पावन अवसर पर गुड न्यूज टुडे में भी गणपति पधारे और हम लोग श्योर हैं कि हमारे दर्शकों के घर भी गणपति बप्पा का जरूर आगमन हुआ होगा। हम चाहते हैं कि आप भी जीएनटी के गणपति उत्सव का हिस्सा बने। आप अपने अपने घर पधारे गजानन का वीडियो बनाकर हमें भेजिए, हम उन वीडियोस को दुनिया तक पहुंचाएंगे। आप हमें अपने वीडियो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा नंबर है

0: 9999222। ये नंबर कॉल करने के लिए नहीं है, बल्कि ये नंबर सिर्फ वीडियो या तस्वीरें भेजने के लिए है। जब भी आप अपना वीडियो या फोटो भेजें तो साथ में अपना नाम और अपने शहर, गांव, कस्बे का नाम जरूर लिखें।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
0: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
0: गुड न्यूज टुडे लगातार दर्शकों से अपील कर रहा है कि आप भी GNT पर मनाया जा रहा है इस उत्सव से जुड़िए। इसके लिए आपको बस इतना सा करना है कि अपने घर पधारे गजानन का वीडियो बनाना है, हमें भेजना है और हम उन वीडियोस को दुनिया तक पहुंचाएंगे। देखिए दर्शक जो है लगातार हमें वीडियोस भेज रहे हैं। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से प्रीतम साहू ने गणेशोत्सव का शानदार वीडियो भेजा है हमें। मोर मुकुट के साथ बप्पा ने सिर पर उनके शानदार पगड़ी, अति शुभ मान लग रही है, और गजानन की प्रतिमा को सुगंधित पुष्पों की माला से अर्पित किया गया और पंडाल में रंग बिरंगी लाइटिंग चार चांद लगा रही है। वहीं पर देखिए दूसरी तस्वीर राजस्थान की बूंदी से उमा शंकर शर्मा ने भेजी है। हस्त निर्मित बप्पा की प्रतिमा का स्वरूप मनमोहक है, पीले और लाल रंग की पगड़ी और वस्त्र धारण किए भगवान गजानन अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हुए नजर आ रहे हैं। मंगल मूर्ति को मिष्ठान का भोग लगाया गया है, साथ ही साथ बप्पा के लिए जल रखा गया।
6: किस ग्रह की अशुभ दशा में हृदय रोग होने की संभावना होती है? किस ग्रह की अशुभ दशा में लंबी बीमारी हो सकती है? और किस ग्रह की अशुभ दशा में विचित्र बीमारियां हो जाती हैं? ग्रहों की अशुभ दशा का क्या है प्रभाव और क्या है अशुभ दशा से बचने के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
0: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर

0: पर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
2: एवरेस्ट दिखा लाल, सही दिखा सही लाल।
3: महाराष्ट्र के चंद्रपुर में सजा तुकुम के राजा का दरबार श्रद्धालुओं के बीच आकर्षण का केंद्र बनी बप्पा की मनमोहक प्रतिमा, चावल दाल साबुदाना और मूंगफली के दानों से किया गया निर्माण। श्रीनगर के श्री सिद्धि विनायक गणेश मंदिर में गणेश उत्सव की रौनक, मूर्ति विसर्जन के दौरान शहर की गलियों में उमड़ा जन समुद्र, धार्मिक आयोजन में दिखे श्रद्धा भक्ति और आस्था के रंग। कोरोना शोपार से गांधी सागर में शिफ्ट हुई मादा चीता CCP2, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अभ्यारण्य में किया रिलीज, देश का दूसरा बड़ा चीता घर बना गांधीनगर। गोल्ड मेडल से बस एक कदम दूर है भारतीय महिला क्रिकेट टीम, एशियन गेम्स में बांग्लादेश को 114 रनों से दी मात, शेफाली वर्मा ने 49 गेंद में लगाई सेंचुरी। एशियन गेम्स में भारत को शूटिंग में मिला दूसरा सिल्वर मेडल, एला बेनिल ने 10 मीटर एयर राइफल में किया कमाल, मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में भी पदक पक्का।
2: एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, भरोसा तुम हो।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
3: नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला, अच्छी और सच्ची खबरों में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे गणपति बप्पा की, गणेश उत्सव का आज सातवां दिन है, बप्पा की भक्ति और भव्यता का रंग तमाम देखने को मिल रहा है। गणपति उत्सव में आस्था और टेक्नोलॉजी का अनोखा संगम देखने को मिल रहा है, तो कहीं पर बप्पा का खाटू श्याम बाबा के साथ स्थापित उनको किया गया है, कहीं विघ्नहर्ता के पंडाल में पृथ्वी और भूगोल की प्रदर्शनी लगाई गई है, तो एक पंडाल में लोगों को अंगदान के लिए प्रेरित करने के लिए अनोखी पहल की गई है।

0: देश भर में गणेशो उत्सव पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। कहीं भव्य दिव्य पंडाल सजे हैं जिनमें बापा के अद्भुत स्वरूप विराजमान है, तो कहीं अनोखी थीम से गणपति उत्सव को खास रंग देने की कोशिश की गई है। गजानन एक है मगर उनके रूप अनेक है, जिनकी दिव्य आभा पूरे देश में इन दिनों बिखरी हुई है। ऐसे में जगह जगह एक से बढ़कर एक खूबसूरत गणपति पधारे हैं। गुजरात और महाराष्ट्र में गणपति उत्सव की सबसे ज्यादा धूम देखी जाती है। राजकोट में कई जगहों पर गणेश महोत्सव के बड़े आयोजन चल रहे हैं, कुछ नया करके सबका ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं। ऐसा ही एक गणेश पंडाल है स्पीड वेल चौक का राजा। KPS क्लब ने इस अद्भुत गणेश पंडाल का आयोजन किया है। इस साल पंडाल में एडवांस टेक्नोलॉजी और रोबोटिक्स का इस्तेमाल करके एक नया इनोवेशन किया गया है। ये दिखाने का प्रयास है कि राजकोट इंडस्ट्रीज इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के उपयोग के मामले में देश भर में क्यों जाना जाता है। इस पंडाल में दो खास रोबोट काम कर रहे हैं, जिनमें से एक रोबोट बाप्पा की आरती करता है जबकि दूसरा रोबोट घंटी बजाता है। ये रोबोटिक सिस्टम पूरी तरह से ऑटोमेशन पर काम करता है और इसे राजकोट में ही असेंबल किया गया है।
1: रोबोटिक आरती का हमने आयोजन किया है, इसमें दो रोबोट लगाया है। एक रोबोट बाप्पा की आरती उतारता है और दूसरा रोबोट आरती के साथ उसका घंट बजाता है। तो अभी क्या समय के साथ, न्यू इनोवेशन के साथ, न्यू टेक्नोलॉजी के साथ कभी लोगों को कुछ अच्छा लगे कि भाई ये कुछ ऑटोमेशन किया है और रोबोट आरती बापा की उतारता है।
0: राजकोट के लिए रोबोटिक्स कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये अनोखा नजारा लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। पंडाल को व्हाइट हेवन थीम पर सजाया गया है। अमरावती के बुधवारा इलाके में आजाद हिंद गणेश उत्सव मंडल ने पंडाल में खाटू श्याम मंदिर की भव्य झलक तैयार की है। यहां गणपति बापा की सुंदर प्रतिमा के साथ खाटू श्याम मंदिर का स्वरूप देने की कोशिश की गई है। पंडाल में पहुंचने वाले श्रद्धालु पहले गणपति बापा के दर्शन कर रहे हैं और इसके बाद खाटू श्याम जी का भी आशीर्वाद ले रहे हैं। मंदिर की आकर्षक सजावट और झांकी श्रद्धालुओं का ध्यान खींच रही है।
2: जो है हमारा उसमें खाटू श्याम बाबा का पूरा दरबार हमने सजाया है। 1928 में अब हमारे मंडल की स्थापना थी और तब से लेके अब तक कई साल से हम ये हर साल गणेश उत्सव का जो है आयोजन करते हैं।
0: महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के घुघुस में जय श्री राम गणेश मंडल की ओर से सर्वधर्मीय महाआरती का आयोजन किया गया। पिछले 10 वर्षों से चली आ रही इस अनोखी परंपरा में हिंदू समाज के साथ मुस्लिम, सिख, बौद्ध और ईसाई समाज के लोग भी बड़ी संख्या में शामिल होते हैं।
3: सर्वधर्मीय महाआरती का आयोजन किया जाता है। धर्म अनेक है मगर भाव एक है, वो है मानवता का। भगवान श्री गणेश सुख करता है, विघ्न हरता है, तो सभी धर्म के लोग यहाँ आते हैं।
0: गणेश महाआरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने उपस्थित होकर भगवान गणेश का आशीर्वाद लिया। महाराष्ट्र के जालना में गणेश उत्सव पर भूगोल प्रदर्शनी का अनोखा दृश्य साकार किया गया है। मारुति की 11 प्रतिमाओं के साथ साकार की गई ये भूगोल प्रदर्शनी इन दिनों आकर्षण और चर्चा का विषय बनी हुई है। इस पहल का उद्देश्य है कि छात्रों को भूगोल विषय कठिन ना लगे और इस विषय की अलग अलग अवधारणाएं उन्हें आसानी से समझ आए। जालना के एक शिक्षक श्रीकांत चिंच खेड़कर ने ये अनोखी शैक्षणिक उपक्रम शुरू किया है। करीब 1.5 महीने की मेहनत के बाद इसे तैयार किया गया। गणेश उत्सव के माध्यम से धार्मिक आस्था के साथ शिक्षा और ज्ञान को जोड़ने की उनकी ये पहल जालना में चर्चा का विषय बनी हुई है। पृथ्वी, भारत भूमि, सौर मंडल, ग्रह, अंतरिक्ष और ब्रह्मांड सहित भूगोल की करीब 150 अवधारणाओं को यहाँ दिखाया गया है, जबकि 80 से ज्यादा मॉडल यहाँ रखे गए हैं। इस प्रदर्शनी की खास बात ये है कि हर कॉन्सेप्ट को मराठी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में प्रस्तुत किया गया है। प्रदर्शनी में पृथ्वी की संरचना, भारत का भौगोलिक स्वरूप, सौर मंडल, विभिन्न ग्रह, अंतरिक्ष और ब्रह्मांड जैसी कई संकल्पनाओं को मॉडल के जरिए समझाया गया है।
4: क्योंकि भूगोल जो है वो समझने में भी थोड़ा सा अड़चने आ जाती है, उसके एक्सपेरिमेंट ज्यादा मालूम नहीं रहते और सिर्फ अपन डायग्राम देखते हैं तो डायग्राम से कुछ सीख नहीं पाते, तो ये डायग्राम की वजह यहाँ पे मॉडल बनाए हुए हैं। यानी दरी कैसी है एक्चुअल में, ये उनको समझ में आना चाहिए। सामुद्रधुनी बोले तो क्या है, ये उनको समझ में आना चाहिए, ये इसका मूल जो है वो कंसेप्ट है।
0: विजयादशमी यानी दशहरे तक लोगों के लिए ये प्रदर्शनी उपलब्ध रहेगी। अष्ट विनायक गणपति के मंदिर में शामिल पुणे के शिरूर का राजन गांव महागणपति मंदिर गणेश उत्सव के अवसर पर आकर्षक रोशनी से जगमगा उठा है। पूरा परिसर रोशनी की भव्य सजावट के विहंगम नजर आ रहा है। गणेश उत्सव के अवसर पर मंदिर के साथ साथ पूरा गांव भी आकर्षक ढंग से सजा दिया गया है। गणराय के उत्सव में रोशनी का ये भव्य नजारा श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए खास आकर्षण बना हुआ है। बिहार के मोतिहारी में भी भव्य गणेश पूजा का आयोजन किया गया है। गणपति बप्पा के जयकारों से इन दिनों मोतिहारी गूंज रहा है। शहर के हृदय स्थल कहे जाने वाले गुदरी बाजार और ऐतिहासिक पंच मंदिर में चल रहे 10 दिन के गणेश पूजा महोत्सव ने पूरे शहर को भक्तिमय बना दिया है। भक्तों की भारी भीड़ बाप्पा के दर्शन के लिए उमड़ रही है। पिछले 31 साल से गणेश उत्सव समिति मोतिहारी में भव्य तरीके से गणेश पूजा का आयोजन करता आ रहा है। इस बार का पंडाल कोलकाता की थीम पर बनाया गया है। करीब 15 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण किया जाता है। इस बार खास बात यह है कि भगवान गणेश के साथ बाबा विश्वकर्मा और भोलेनाथ की भी मूर्ति स्थापित की गई है। गणपति 5 अलग अलग भव्य स्वरूपों में विराजमान है। सूरत के रांदेर इलाके में इस बार गणेश उत्सव के दौरान एक बेहद अनोखी और सामाजिक संदेश देने वाली थीम पर गणेश पंडाल तैयार किया गया है। आमतौर पर गणेश पंडालों में धार्मिक और पौराणिक झांकियां देखने को मिलती है, लेकिन सूरत के इस पंडाल में भगवान गणेश के दर्शन के साथ साथ ऑर्गन डोनेशन यानी अंगदान को लेकर लोगों को जागरूक करने की कोशिश की गई है। उद्देश्य यही है कि अंगदान के जरिए किसी जरूरतमंद व्यक्ति को एक नया जीवन दिया जा सके। पंडाल के बाहर ही मानव शरीर के अलग अलग अंगों को सांकेतिक रूप से प्रदर्शित किया गया है। इन अंगों के जरिए लोगों को ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि मृत्यु के बाद भी इंसान के अंग किसी दूसरे जरूरतमंद व्यक्ति की जान को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। ये भी बताया गया है कि ब्रेन डेड व्यक्ति के कौन कौन से अंग दान किए जा सकते हैं और प्राकृतिक मृत्यु की स्थिति में किन अंगों अथवा ऊतकों का दान संभव हो सकता है। इसके साथ ही अंगदान की प्रक्रिया और इसके महत्व को भी सरल तरीके से समझाने का प्रयास किया गया है। कुल मिलाकर सूरत का ये गणेश पंडाल सिर्फ भगवान गणेश के दर्शन का केंद्र नहीं है, बल्कि अंगदान महादान के संदेश को जन जन तक पहुंचाने वाली झांकी के रूप में भी लोगों को आकर्षित कर रहा है। छत्तीसगढ़ के भिलाई में भी गणेश उत्सव को लेकर माहौल भक्तिमय बना हुआ है। पंडालों और मंदिरों से गणपति बप्पा मोरिया के जयकारे गूंज रहे हैं। सुबह से ही भगवान गणेश के दर्शन और पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगती है। इस पंडाल में तकनीक और आस्था का एक ऐसा बेजोड़ संगम तैयार किया गया है जिसे देख हर कोई दंग है। भिलाई के सेक्टर 10 में सजे इस भव्य पंडाल को देखने के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। बस्तर की दंतेश्वरी माता से लेकर तमिलनाडु के मीनाक्षी मंदिर का नाता इस पंडाल से कैसे जुड़ा है, इसका मोहक नजारा यहां पेश किया जा रहा है। लोक संस्कृति और बस्तर की पावन पहचान को इस पंडाल में खूबसूरती से उकेरा गया है। तमिलनाडु के प्रसिद्ध मीनाक्षी अम्मन मंदिर में विराजमान कुरक विनायक घर गणपति के प्रतिरूप को उकेरा गया है, जिनकी ऐतिहासिकता करीब 2500 वर्ष पुरानी है और जिन्हें प्राचीन समय में एक ही काले पत्थर को तराश कर बनाया गया था। काले पत्थर की आभा वाले ये गणपति प्रतिमा इतनी सजीव और अलौकिक लगती है कि भक्त भाव विभोर होकर बस इन्हें निहारते रह जाते हैं। इस पंडाल की जो सबसे बड़ी और चमत्कारी USP है वो है इसकी आधुनिक और डिजिट सजावट। ये भिलाई का पहला ऐसा पूर्ण रूप से डिजिटल गणेश पंडाल बन चुका है, जहां चारों तरफ हाईटेक LED स्क्रीन का जाल बिछाया गया है। लगभग 4000 स्क्वायर फीट की इस विशालकाय डिजिटल स्क्रीन पर बापा की आरती के समय जब 3D और 360 डिग्री विजुअल्स चलते हैं, तो ऐसा लगता है मानो साक्षात ब्रह्मांड नीचे उतर आया है। इस डिजिटल तकनीक के जरिए पंडाल के भीतर ही बैठे बैठे श्रद्धालु देश के 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम और 51 शक्ति पीठों का लाइव और दिव्य दर्शन भी कर पा रहे हैं। राजकोट से रौनक मजीठिया, अमरावती से धनंजय सांबले, चंद्रपुर से विकास राजूरकर, जालना से गौरव साली, पुणे से स्मिता रायचंद शिंदे, मोतिहारी से सचिन पांडे, सूरत से संजय सिंह राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर पर है दुनिया भर में मशहूर तीर्थस्थल अंबाजी। अंबाजी को देश के 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। अंबाजी में भादरवी महामेले को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। यहां पर ये उत्सव भादरवी महीने में नवमी से पूनम तक यानी 7 दिनों तक बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। मेले में देखिए शुभारंभ होने से माँ अंबे के रथ खींचकर और मंदिर के विद्वान ब्राह्मणों और उनके द्वारा शास्त्रों के अनुसार पूजा अर्चना करके इसकी शुरुआत हुई। ध्वजा चढ़ाई गई और शक्ति भक्ति और आस्था का संगम अद्भुत देखने को मिला। 20 से 26 सितंबर तक चलने वाले भादरवी महामेले में शामिल होने के लिए 40 लाख से ज्यादा भक्तों के आने की उम्मीद है। ऐसे में मेले के सुचारू आयोजन के लिए 29 कमेटियों और 7,000 कर्मचारियों को तैनात किया गया। सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए 6,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी।
6: आतुरता पूर्वक राह देखते हैं ऐसा भादरवी पूनम महामेला 2026 की आज शुरुआत की गई है। जब लाखों की संख्या में माई भक्त अगले 7 दिनों में अंबाजी में आएंगे, उनकी सेवा और सुरक्षा के लिए 7,000 से भी अधिक सरकारी कर्मचारी 24 घंटे फर्ज पर तैनात रहेंगे। पार्किंग, निःशुल्क भोजन, लॉ एंड ऑर्डर, मंदिर एवं टप्पर संचालन सहित 29 जितनी जिला कक्षा की समितियां भी बनाई गई हैं। तदुपरांत अंबाजी परिसर में 4 दिन में निःशुल्क भोजन केंद्र, अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ 8 जितने रेस्ट रूम यानी कि विश्रामा केंद्र और 40 से अधिक पार्किंग स्थलों की भी पहचान की गई है।
5: देखिए भारत और अमेरिका के बीच युद्धाभ्यास 2026 का आयोजन चल रहा है। इसमें दोनों देशों के सैनिक अपने अपने पराक्रम और कुशलता का परिचय दे रहे हैं। युद्धाभ्यास 2026 उत्तराखंड के औली और राजस्थान के महाजन फील्ड रेंज में आयोजित किया जा रहा है। इसमें देखिए दोनों देशों के 600 जवान शामिल हो रहे हैं। 9 सितंबर से शुरू हुआ ये युद्धाभ्यास 28 सितंबर तक चलेगा। इसमें दोनों देशों से 600 सैनिक भाग ले रहे हैं। माना यह जा रहा है कि यह अभ्यास भारत अमेरिका रक्षा सहयोग को नई ऊंचाई पर ले जाने वाला कदम है।
7: दुश्मनों की किसी भी चाल को किस तरह नाकाम करना है ये इन जवानों को अच्छे से पता है। आतंकियों के नापाक मंसूबों को किस तरह नेस्तोनाबूद करना है ये इन जवानों के पराक्रमी प्रदर्शन को देखकर समझा जा सकता है। भारतीय सेना के जवानों के जज्बे और शौर्य से पूरी दुनिया अच्छी तरह से वाकिफ है और यही वजह है कि भारतीय सेना और अमेरिका सेना जाबाजी का अभ्यास कर रही है। ये युद्ध अभ्यास दोनों देशों के सैनिक राजस्थान के महाजन फायरिंग रेंज और औली में कर रहे हैं।
8: अमेरिका के बीच युद्धाभ्यास का 22वां संस्करण शुरू हो चुका है और इस बार युद्धाभ्यास की खास बात यह है कि ये एक साथ दो अलग अलग मोर्चों पर किया जा रहा है। भारत और अमेरिका की सेनाएं एक तरफ पाकिस्तान की सीमा के बेहद नजदीक महाजन फील्ड फायरिंग रेंजेस में रेगिस्तान में युद्ध की बारीकियां एक दूसरे से साझा कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नजदीक औली में भारत और अमेरिका के सैनिक एक साथ एक दूसरे को अपने युद्ध कौशल से रूबरू करा रहे हैं। युद्धाभ्यास की खास बात यह भी है कि भारत और अमेरिका के 600-600 सैनिक एक साथ अलग अलग टेरेन में युद्ध के कौशल सीख रहे हैं और लगातार भारत और अमेरिका के बीच किस तरह से सैन्य तालमेल बढ़ रहा है उसकी वानगी भी पेश कर रहे हैं।
7: इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य पहाड़ी और अर्ध पहाड़ी क्षेत्रों में इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स की संयुक्त क्षमता को बढ़ाना है। यह अभ्यास सिर्फ पारंपरिक प्रशिक्षण नहीं है बल्कि इसमें ड्रोन और स्वायत्त प्रणालियों के इस्तेमाल पर विशेष जोर दिया जा रहा है। निगरानी और टोही के लिए आधुनिक तकनीक का प्रदर्शन महाजन में चल रहा है। दोनों सेनाओं के विशेषज्ञ मल्टी डोमेन वॉरफेयर यानी कई क्षेत्रों में एक साथ युद्ध की उभरती तकनीकों पर विचार साझा कर रहे हैं। इससे योद्धाओं को वास्तविक युद्ध जैसे हालात का अनुभव मिलेगा। इसके लिए दोनों देशों की सेनाओं ने कमांड पोस्ट एक्सरसाइज, एक्सपर्ट एकेडमिक डिस्कशन और सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट एक्सचेंज भी कर रही है। युद्धाभ्यास का सबसे बड़ा मकसद इंटर ऑपरेबिलिटी यानी दोनों सेनाओं के बीच तालमेल बढ़ाना है। भारतीय और अमेरिकी सैनिक एक दूसरे की रणनीति, तकनीक और प्रक्रियाएं सीख रहे हैं और पराक्रम का प्रदर्शन कर रहे हैं। पहाड़ी इलाकों में पैदल सेना आधारित अभियानों पर जोर है, इससे संयुक्त अभियान चलाने की क्षमता मजबूत होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि बदलते वैश्विक सुरक्षा माहौल में ऐसे अभ्यास दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करते हैं। इसी क्रम में महाजन फायरिंग रेंज में M777 अल्ट्रा लाइट होवित्सर तोप से लाइव फायरिंग की गई, जिसमें डायरेक्ट फायरिंग मेथड का इस्तेमाल करके सामने दिख रहे टारगेट पर निशाना साधा गया। इस युद्ध अभ्यास का एक मकसद यह भी है कि मुश्किल परिस्थितियों में काम करने के लिए समझ विकसित करना। जहां संचार व्यवस्था बाधित हो, बिना इंसानी दखल वाले सिस्टम का इस्तेमाल बढ़ रहा हो, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हो रहा हो और इंटेलिजेंस प्रोसेस करने और फैसले लेने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल बढ़ रहा हो। 9 सितंबर से शुरू हुआ ये युद्धाभ्यास 28 सितंबर तक चलेगा। इसमें दोनों देशों से 600 सैनिक भाग ले रहे हैं। माना जा रहा है कि यह अभ्यास भारत अमेरिका रक्षा सहयोग को नई ऊंचाई पर ले जाने वाला कदम है। कुल मिलाकर यह अभ्यास न सिर्फ सैन्य क्षमता बढ़ाएगा बल्कि आपसी विश्वास और सहयोग को भी मजबूत करेगा। शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: जोधपुर में भारत और जापान के सैनिक हवाई युद्धाभ्यास वीर गर्जन 2026 में अपना पराक्रम दिखा रहे हैं। इस युद्धाभ्यास में भारत की ओर से तेजस, सुखोई 30, एमकेआई और राफेल के जापान के F-2 लड़ाकू विमान भी शामिल हैं। 22 सितंबर तक चलने वाले ये अभ्यास जो है दोनों देशों की सेनाओं के बीच तालमेल, परिचालन क्षमता और रक्षा सहयोग को मजबूत करने में सहायक होगा।

0: भारत के ये हवाई योद्धा इन दिनों जापान के साथ साथ अपने युद्ध कौशल का परचम लहरा रहे हैं। भारत के जोधपुर एयरबेस पर चल रहे वीर गार्जियन 2026 में जापान और भारत के हवाई योद्धा अपने कौशल को परख रहे हैं। वीर गार्जियन 2026 युद्ध अभ्यास के लिए जापान के वायु सैनिक 8 सितंबर को ही भारत आए थे, जिनका भव्य स्वागत किया गया। खास बात यह भी है कि इस युद्धाभ्यास में भारत के एयर चीफ अमरप्रीत सिंह और जापान के एयर चीफ जनरल ताकेहिरो मोरिता ने तेजस में उड़ान भरी। जोधपुर का आसमान इस खास पल का गवाह बना। यह सिर्फ एक उड़ान नहीं थी, बल्कि भारत जापान के बढ़ते हवाई तालमेल की तस्वीर थी। जापान एयर एंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के चीफ ताकेहिरो मोरिता ने तेजस लड़ाकू विमान की जमकर तारीफ की।
1: I am grateful for the invaluable opportunity to fly on the Tejas. As an aircraft bomb from indigenous defense capabilities, Tejas stands as a symbol of India's technological innovation and embodies Make in India initiative. While flying, I found myself reflecting on the efforts of many people, both in the military and industry, who contributed to its development.
0: दोनों देशों के वायु सेना प्रमुखों की ओर से भारत के तेजस लड़ाकू विमान को उड़ाना भारत और जापान के बीच बढ़ते विश्वास का भी प्रतीक है। यह मौका इसलिए भी खास रहा क्योंकि वीर गार्जियन 2026 में पहली बार जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के लड़ाकू विमान भारत में संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का हिस्सा बन रहे हैं। युद्धाभ्यास में भारतीय वायुसेना के स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान LCA तेजस के अलावा सुखोई 30 MKI और राफेल जैसे अग्रिम पंक्ति के लड़ाकू विमानों को शामिल किया गया है। वहीं जापानी वायुसेना ने अपने F-2A लड़ाकू विमान के साथ शिरकत की है। युद्ध जैसे हालात में दोनों वायुसेनाएं अपनी हवाई युद्धक क्षमताओं को परख रही हैं। हालांकि यह अभ्यास अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। इस दौरान दोनों देशों के लड़ाकू विमानों ने एयर स्ट्राइक से जुड़े कई अभियानों का अभ्यास किया है। 2 सितंबर से 22 सितंबर तक जोधपुर में चल रहे इस अभ्यास में दोनों वायुसेनाएं कई तरह के हवाई अभियानों और युद्धक गतिविधियों का अभ्यास कर रही हैं। इसका उद्देश्य दोनों देशों की वायुसेनाओं के बीच ऑपरेशनल तालमेल, आपसी समझ और संयुक्त अभियानों के दौरान समन्वय को मजबूत करना है। जोधपुर के आसमान में तेजस की उड़ान ने संयुक्त अभ्यास में भारत की स्वदेशी हवाई शक्ति को खास तौर पर सामने रखा है। अभी तक हुए इस अभियान में दोनों देशों के वायु योद्धा अलग अलग हवाई अभियानों और ऑपरेशनल गतिविधियों को पूरा कर चुके हैं। दोनों देशों के वायुसेना अधिकारियों ने एक दूसरे की संचालन प्रक्रियाओं और युद्धक तौर तरीकों को भी समझा है। संयुक्त अभियानों के दौरान बेहतर समन्वय विकसित करना भी अभ्यास का अहम हिस्सा है। भारत और जापान की वायुसेनाओं के बीच ये युद्ध अभ्यास पहली बार नहीं हो रहा है। 2023 में भी इसे जापान में आयोजित किया गया था। वायुसेना के इस एक्सरसाइज के जरिए जहां दोनों देशों की सेनाएं रणकौशल से जुड़ी अपनी तैयारियों को परखती हैं, तो वहीं युद्ध अभ्यास में हिस्सा लेने वाले जवानों को भी एक दूसरे से काफी कुछ नया सीखने को मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा त्यौहार 22 सितंबर को दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति यानी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के आंगन में मनाया जाएगा। जी हां, इस भव्य समारोह के लिए एकता नगरी में जोरदार तैयारियां आखिरी दौर में बिल्कुल चल रही हैं। इस इवेंट के लिए जर्मन में बने हाईटेक स्टैंड वाला एयर कंडीशनड डोम खास तौर पर तैयार किया गया है और शानदार और बड़े डोम की कैपेसिटी जो है 1000 से ज्यादा है। इसमें बैठकर VIP और गणमान्य लोग खास पल के गवाह बनेंगे। देश के माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस बड़े समारोह में खास तौर पर मौजूद रहेंगी और विजेताओं को नेशनल अवार्ड से सम्मानित करेंगी। बॉलीवुड की हस्तियों के अलावा अगर हम बात करें रीजनल और खासकर गुजराती फिल्मों के जाने माने कलाकार और टेक्नीशियंस भी बड़ी संख्या में यहाँ मौजूद रहेंगे।
3: बहुत गर्व की बात है कि नेशनल फिल्म अवार्ड्स का आयोजन इस बार एकता नगर में किया जा रहा है। ऑनरेबल प्रेसिडेंट अवार्डीज को अवार्ड देने हर साल की तरह खुद पधार रहे हैं। अथॉरिटी ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ पूरी व्यवस्था करने का प्रयास किया है। अथॉरिटी का प्रयास है कि एक जो यहाँ पर पूरा एक होलिस्टिक डेवलपमेंट हुआ है, टूरिज्म लेड डेवलपमेंट हुआ है, उसको हम लोग अवार्डीज के सामने और जो भी विजिट कर रहे हैं उनके सामने शोकेस कर पाए। बिकॉज एज वी नो दे आर ऑल पब्लिक फिगर्स सेलिब्रिटीज, तो एकता नगर को भी उससे मैक्सिमम विजिबिलिटी मिले और लोगों तक पहुंचे कि एकता नगर में किस तरह से डेवलपमेंट हुआ है, किस तरह से टूरिज्म लेड डेवलपमेंट हुआ है।
2: 20वां एशियन गेम्स जापान के आइशी नागोया में शुरू हो चुका है। इसमें 45 देशों के खिलाड़ी 43 खेलों के 469 मेडल इवेंट में हिस्सा ले रहे हैं। भारत के 501 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं और इसमें देखिए 267 पुरुष और 234 महिलाएं हैं। भारतीय खिलाड़ियों ने पहले दिन 2 सिल्वर मेडल अपने नाम कर लिए। दोनों मेडल 10 मीटर राइफल शूटिंग में आए। एलफ वेनिल ने 10 मीटर राइफल इंडिविजुअल्स इवेंट में सिल्वर जीता है और इससे पहले भारतीय महिला टीम ने 1898.0 अंक के साथ दूसरा स्थान हासिल किया है और इस टीम में एला वेनिल, सोनम मस्कर और विदारसा विनोद शामिल रही। और इसके अलावा अगर हम बात करें भारतीय मेंस हॉकी टीम ने धमाकेदार आगाज करते हुए इंडोनेशिया को 13-1 से हरा दिया। वेमेंस हॉकी में भारतीय टीम ने उज्बेकिस्तान को 19-0 से पूरी तरीके से मात दी और क्रिकेट में भारतीय महिला टीम ने कमाल करते हुए बांग्लादेश को 114 रनों से मात दी है। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में सुचित्रा तारियाल ने सेमीफाइनल्स में प्रवेश करके मेडल पक्का कर लिया। खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
5: किस ग्रह की अशुभ दशा में हृदय रोग होने की संभावना होती है? किस ग्रह की अशुभ दशा में लंबी बीमारी हो सकती है और किस ग्रह की अशुभ दशा में विचित्र बीमारियां हो जाती हैं? ग्रहों की अशुभ दशा का क्या है प्रभाव और क्या है अशुभ दशा से बचने के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
2: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
9: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
9: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
9: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। मानव के जीवन में कभी खराब समय चलता है, कभी अच्छा समय चलता है। कुंडली में कभी अच्छी दशा आती है, कभी बुरी दशा आती है। तो जब आपकी बुरी दशा आए किसी ग्रह की, तो आप कौन सा उपाय करें कि उस बुरी दशा का अशुभ प्रभाव आपके ऊपर ना पड़े, आज इस विषय पर बात करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 21 सितंबर 2026 दिन सोमवार, तिथि है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि, रात के 8 बजे तक। नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। प्रातः 11:15 तक राहु काल का समय, प्रातः 7:30 से लगभग 9 बजे तक पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि अगर आपकी सूर्य की अशुभ दशा चल रही हो, सूर्य की बुरी दशा चल रही हो, तो क्या होता है और इसके प्रभाव से बचेंगे कैसे। सूर्य की अशुभ दशा में हृदय रोग, नेत्र रोग और अपयश की संभावना बनती है। सूर्य की अशुभ दशा से बचने के लिए सूर्य को नियमित रूप से जल चढ़ाएं और ज्यादा से ज्यादा सूर्य मंत्र का अगर जप करें तो आपके लिए बेहतर होगा। अगर चंद्र की अशुभ दशा चल रही हो तो इसके प्रभाव क्या होते हैं और इसके दुष्प्रभावों से कैसे बचेंगे। अगर चंद्र की अशुभ दशा चल रही हो तो इस दशा में अपमृत्यु, अचानक मृत्यु की, हृदय की और मन की समस्या हो जाती है। तो अगर चंद्र की अशुभ दशा हो तो इसके निवारण के लिए पूर्णिमा को चंद्रमा की उपासना करें और जितने समय चंद्र की अशुभ दशा चल रही हो उतने समय निरंतर भगवान शिव की अगर पूजा करें तो बेहतर होगा। अगर मंगल की अशुभ दशा चल रही हो तो क्या प्रभाव होते हैं। अगर मंगल की अशुभ दशा हो तो दुर्घटना होने के, शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी होने के और कारावास के, जेल जाने के योग बनते हैं। अगर मंगल की अशुभ दशा है तो वृषभ का दान यानी बैल का दान करना, निर्धनों को भोजन कराना शुभ होता है। साथ ही साथ मंगल की अशुभ दशा के प्रभाव से बचने के लिए
कुमार कार्तिकेय की पूजा करनी चाहिए। बाकी ग्रहों की अशुभ दशा पर बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, सेहत आपकी अच्छी रहेगी, धन का लाभ होगा, मनोरंजन में व्यस्त रहेंगे, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। पारिवारिक समस्या आपको हो सकती है, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, हालांकि दोपहर से स्थितियों में सुधार होगा। चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मिथुन राशि, काम का बोझ हल्का रहेगा, करियर में लाभ होगा, लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और आपको निभानी पड़ेंगी। शिव जी को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, धन का लाभ होता दिख रहा है, रुके हुए काम पूरे होंगे, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब अगर आपकी बुध की अशुभ दशा चल रही हो तो इसके प्रभाव क्या होते हैं और इससे बचने के उपाय क्या हैं वो जानते हैं। अगर बुध की अशुभ दशा हो तो इसमें आर्थिक रूप से क्षति होती है, आर्थिक नुकसान होता है, मानसिक रोग होते हैं और त्वचा की समस्या होती है। बुध की अशुभ दशा के निवारण के लिए भगवान विष्णु की, श्री हरि की पूजा करिएगा तुलसी दल से, और नियमित रूप से बुध की अशुभ दशा में विष्णु सहस्त्र नाम का अगर आप पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर बृहस्पति की अशुभ दशा हो तो इसके प्रभाव क्या होते हैं। बृहस्पति की अशुभ दशा में असाध्य रोग होते हैं और बड़ी बीमारियां होने की संभावना होती है। अगर बृहस्पति की अशुभ दशा चल रही है तो इसके निवारण के लिए धर्म स्थान में नियमित रूप से दान करना अनुकूल होता है। और बृहस्पति की अशुभ दशा हो तो गुरु के रूप में भगवान शिव की पूजा करने से लाभ होता है। अगर शुक्र की अशुभ दशा हो तो अपमान, अपयश और नेत्र विकार के योग बनते हैं। शुक्र की अशुभ दशा हो तो भगवान शिव की पूजा माता गौरी के साथ करना अच्छा होगा और नियमित रूप से लिंगार्चन करना चाहिए, यानी नियमित रूप से
अगर आप शिवलिंग की पूजा करें तो ऐसा करने से शुक्र की अशुभ दशा का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। बाकी ग्रहों पर भी चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, रुका हुआ धन मिल जाएगा, करियर में कुछ बदलाव होगा, मानसिक समस्या दूर होगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ऑफिस में विवादों से बचाव करें, हालांकि दोपहर से स्थितियों में सुधार होगा। चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। तुला राशि, रुका हुआ धन इस समय प्राप्त होगा, पुराने विवाद आपके हल होंगे, वाहन सावधानी से चलाइएगा, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, यात्रा के योग बन रहे हैं, धन का लाभ होगा, भावनाओं में आकर, इमोशंस में आकर निर्णय मत लीजिएगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब अगर आपकी कुंडली में शनि ग्रह की अशुभ दशा चल रही है, शनि ग्रह की बुरी दशा चल रही है, तो क्या प्रभाव होगा? शनि की दशा अगर अशुभ रूप से चलने लगे तो अपमृत्यु, आकस्मिक मृत्यु, दुर्घटना और लंबी बीमारियों से परेशानी के योग आपके लिए बनते हैं। अगर शनि की अशुभ दशा हो तो सोने का, स्वर्ण का दान करना चाहिए और पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। और अगर शनि की अशुभ दशा चल रही हो तो महामृत्युंजय मंत्र का नियमित रूप से जप करना चाहिए, आपको लाभ होगा। अगर राहु की या केतु की बुरी दशा चल रही हो तो इसके प्रभाव क्या होते हैं? राहु की या केतु की अगर बुरी दशा चले तो इस दशा में आकस्मिक घटनाएं होती हैं और विचित्र बीमारियां परेशान करती हैं। राहु केतु की अशुभ दशा चले तो शिव मंदिर में चांदी के सर्प का दान करना चाहिए। राहु के लिए भगवान भैरव की और केतु के लिए भगवान गणेश की उपासना करने से इन ग्रहों का दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा।
कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, काम की रुकावट दूर होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, मान सम्मान आपको मिलेगा। शिव जी को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान इस समय बनाए रखें, वाद विवाद से बचाव करें, दोपहर के बाद स्थितियों में सुधार होना शुरू होगा। चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कुंभ राशि, धन का बड़ा लाभ होगा, रिश्तों की समस्या हल होगी, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संपत्ति का क्रय कर सकते हैं, कोई शुभ सूचना मिलेगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तो आज हमने आपको बताया कि अलग अलग ग्रहों की जब अशुभ दशा चले, जब बुरी दशा चले तो क्या उपाय करना चाहिए। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। घर के मुख्य द्वार के आसपास पत्थर और कांटेदार पौधे ना रखें, केवल शमी का पौधा रख सकते हैं, अन्य पौधा मत रखिएगा। अगर घर के मुख्य द्वार के आसपास आप बहुत सारे पत्थर रखते हैं या कांटेदार पौधे लगाते हैं तो हर महत्वपूर्ण कार्य में आपको असफलता का सामना करना पड़ेगा। प्रातः काल भगवान कृष्ण को पीले फूल अर्पित करिएगा, घर से निकलते समय उसमें से एक फूल अपने पास रख लीजिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: हम आपको दिखाते हैं एक मनोरंजक खबर न्यूयॉर्क की। देखिए अमेरिका के न्यूयॉर्क में निकली पैथ्स की फैशन परेड। जी हाँ, न्यूयॉर्क के ब्रायंट पार्क में बड़ी संख्या में डॉगीज के साथ उनके मालिक पहुंचे और उस मौके पर जमकर उन्होंने लुत्फ उठाया।
2: पालतू कुत्तों और उनके मालिकों की ये जमघट बेहद खास है। ये तस्वीरें न्यूयॉर्क के ब्रायंट पार्क की हैं। यहाँ पर पॉज ऑन परेड के चौथे संस्करण का आयोजन किया गया, जिसमें एक से बढ़कर एक शानदार तरीके से सजे धजे डॉगीज ने हिस्सा लिया। कहीं कुत्ते स्टाइलिश आउटफिट में नजर आए तो कहीं अपने मालिकों के साथ स्ट्रोलर में सैर करते दिखे। किसी ने मैक्सिकन हैट पहन रखी थी तो किसी को परी के रूप में सजाया गया। एक डॉग स्केटबोर्ड पर अपनी स्किल्स दिखाता नजर आया तो एक फ्रेंच अंदाज में तैयार होकर पहुंचा। वहीं कई लोगों ने अपने दुलारे डॉगीज को मोतियों की माला, चमकीले जैकेट, रफल्स और अलग अलग रंग बिरंगे कॉस्ट्यूम में सजाया था। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में डॉग्स और उनके मालिक पहुंचे। इसका मकसद इंसानों और उनके वफादार दोस्तों के बीच के खास रिश्ते को सेलिब्रेट करना था।
3: Which the energy here is just incredible, as it always is when you have so many people who love dogs in one place. This is the fourth time we've come together for Paws on Parade in partnership with Bryant Park, and we really just couldn't ask for a better day, a better vibe, and a better community of dog lovers than we have here in New York City.
2: यहाँ पर सिर्फ सजे-धजे डॉग्स को देखना ही अहम नहीं था, बल्कि हर कोई अपने अपने पेट्स के साथ इस खास दिन का आनंद लेता नजर आया। कुछ डॉग स्ट्रोलर में आराम फरमाते दिखे तो कुछ को उनके मालिक प्यार से सैर कराते नजर आए। इस दौरान लोगों को अपने पेट्स के साथ समय बिताने और दूसरे डॉग लवर्स से मिलने का भी मौका मिला।
4: So it's a great event, especially for other New Yorkers. Everyone has a dog stuck in their apartment, and this is a great time for everyone to kind of come out and meet all the other people with dogs and have their dogs meet and have everyone have a good time and get out in the sun and enjoy the park.
2: Park में एक तरफ doggies माहौल का मजा ले रहे थे, तो दूसरी तरफ उनके मालिक इस पूरे माहौल को कैमरे में कैद कर रहे थे। इस दौरान pets और उनके मालिकों के बीच

0: बॉन्डिंग को देखकर एक बार फिर ये साबित हो गया कि उनके बीच का रिश्ता सिर्फ साथ रहने तक सीमित नहीं, बल्कि ये दोस्ती, प्यार और साथ का रिश्ता है। इस आयोजन में डॉग्स के साथ उनकी सुरक्षा और देखभाल से जुड़े संगठनों ने भी हिस्सा लिया। खासतौर से अमेरिकन एकेडमी ऑफ कैनाइन वाटर रेस्क्यू के प्रतिनिधि भी यहाँ मौजूद रहे। ये संस्था ऐसे डॉग्स को प्रशिक्षित करती है जो प्रोफेशनल लाइफगार्ड्स और वाटर रेस्क्यू टीमों की मदद कर सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे लगातार दर्शकों से अपील कर रहा है कि आप भी जीएनटी पर मनाए जा रहे उत्सव पर से जुड़िए, और इसके लिए आपको बस इतना से करना है कि अपने घर पर पधारे गजानन का वीडियो बनाकर हमें भेजना है। हम उन वीडियोस को दुनिया तक पहुंचाएंगे। हमारे पास लगातार दर्शक जो हैं वीडियोस भेज रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के मेरठ से करण लोधी ने हमें गणेशोत्सव की तस्वीरें शेयर की हैं। घर में खूबसूरत पंडाल सजाकर बप्पा को विराजमान उन्होंने किया है। भगवान गजानन की पगड़ी और वस्त्रों के साथ मोतियों की माला अत्यधिक शोभामान नजर आ रही है, और राम मंगल मूर्ति की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जा रही है। वहीं दूसरी तस्वीर देखिए, उत्तर प्रदेश के मेरठ से प्रतिभा शुक्ला ने हमें ये तस्वीरें भेजी हैं। उसको फ्रेंडली बप्पा की शानदार मूर्ति को घर पर विधि विधान से स्थापित किया गया है। आसन पर विराजमान भगवान गजानन को फल और मिष्ठान का भोग तैयार किया गया। परिवार पूरे श्रद्धा भाव से गणपति विघ्नहर्ता की आरती कर रहे हैं।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
4: एवरेस्ट तीखा लाल, सही तीखा सही लाल।
1: महाराष्ट्र के चंद्रपुर में सजा तुकुम के राजा का दरबार श्रद्धालुओं के बीच आकर्षण का केंद्र बनी बप्पा की मनमोहक प्रतिमा। चावल, दाल, साबूदाना और मूंगफली के दानों से किया गया निर्माण। श्रीनगर के श्री सिद्धि विनायक गणेश मंदिर में गणेशोत्सव की रौनक। मूर्ति विसर्जन के दौरान शहर की गलियों में उमड़ा जन समुद्र। धार्मिक आयोजन में दिखे श्रद्धा, भक्ति और आस्था के रंग। राजस्थान के उदयपुर में नारायण सेवा संस्थान ने सामूहिक विवाह समारोह का किया आयोजन। शादी के पवित्र बंधन में बंधे 50 गरीब और दिव्यांग जोड़े। नव विवाहितों को उपहार में दिए गए जरूरी सामान। उत्तराखंड के ऋषिकेश में एसडीआरएफ टीम ने किया महिला का रेस्क्यू। पहाड़ी से उतरते वक्त नदी के तेज बहाव में फंसी, सूचना के बाद चला गया रेस्क्यू ऑपरेशन। कुरु नेशनल पार्क से गांधी सागर में शिफ्ट हुई मादा चीता CCP2। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अभ्यारण्य में किया रिलीज। देश का दूसरा बड़ा चीता घर बना गांधी सागर। मेडल से बस एक कदम दूर है भारतीय महिला क्रिकेट टीम। एशियन गेम्स में बांग्लादेश को 114 रनों से हराया। शेफाली वर्मा ने 49 गेंदों में लगाई सेंचुरी। एशियन गेम्स में भारत को शूटिंग में मिला दूसरा सिल्वर मेडल। एला वेनिल ने 10 मीटर एयर राइफल में किया कमाल। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में भी पदक पक्का।
4: एवरेस्ट तीखा लाल, सही तीखा सही लाल।

नमस्कार, जी एनडीए स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। देश भर में गणेश उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है, तो आज बात करेंगे हम गौरी नंदन की। क्या आम क्या खास, इस समय हर घर हर दर पर गणपति की गूंज सुनाई दे रही है। जी एनडीए स्पेशल में आज हम आपको गणेश पूजन से जुड़ी परंपराओं की कहानियां सुनाने जा रहे हैं। गणेश जी के नामों से लेकर उनके पूजन में शामिल होने वाली चीजों तक हर बात का अपना महत्व होता है और एक कहानी है। चलिए शुरुआत करते हैं उस कहानी के साथ जिसके चलते श्री गणेश प्रथम पूज्य बने और गणनायक कहलाए।

0: शादी पूजा वर्षगांठ हो कोई मंगल काज, प्रथम निमंत्रण पाते हैं गणनायक गणराज। सनातन धर्म में किसी मंगल कार्य की शुरुआत हो ही नहीं सकती जब तक गणपति का पूजन न हो। सनातन धर्म में सभी देवताओं में भगवान गणेश प्रथम पूज्य माने जाते हैं। पुराणों के अनुसार भगवान गणेश को भोलेनाथ के आशीर्वाद से ही प्रथम पूज्य देवता का स्थान प्राप्त हुआ है। पौराणिक ग्रंथों में भगवान गणेश से जुड़ी इस मान्यता के कई प्रसंग मिलते हैं। पुराणों में वर्णित कथा बताती है कि जब माता पार्वती के स्नान अनुष्ठान को खंडित होने से बचाने के लिए बाल गणेश ने भगवान शिव का रास्ता रोका तो क्रोधित होकर उन्होंने बालक गणेश का सिर काट दिया था। तब माता पार्वती रुष्ट हो गई थी। उस समय भोलेनाथ ने एक हाथी का सिर बालक के धड़ से जोड़कर उसे जीवन दान दिया, लेकिन उसके बाद भी जब माता पार्वती प्रसन्न नहीं हुई तो भगवान भोलेनाथ ने बालक गणेश को वरदान दिया कि हर शुभ कार्य के पहले गणेश का पूजन होगा।
1: एक बार सभी देवताओं में यह चिंतन हुआ कि सबसे बड़ा प्रथम पूजा पाने का अधिकारी कौन है, तो सभी लोग चले अपने अपने वाहनों से परिक्रमा करने। जो सर्वप्रथम जगत की परिक्रमा करके आएगा वह प्रथम पूज्य कहलाएगा। सभी अपने अपने वाहनों से चले। गणेश जी का वाहन छोटा था और गणेश जी बहुत ही व्यग्र थे कि मैं कैसे परिक्रमा करूं और मैं अग्रगण्य कहलाऊं। तो भगवान गणपति ने नारद जी के कहने पर अपने माता पिता की परिक्रमा मूषक पर बैठ के कर ली और सर्वप्रथम वहाँ पहुँच गए। और तब सब ने निर्णय किया कि चूँकि सर्वप्रथम गणेश जी आए हैं, इसीलिए तब से आज तक गणेश जी की सबसे आगे पूजा करने का विधान है आज तक।
0: पुराणों में गणपति के प्रथम पूज्य होने का एक और प्रसंग मिलता है। इस प्रसंग से जुड़ी कथा बताती है कि जब गणेश जी और कार्तिकेय स्वामी विवाह योग्य हुए तो एक दिन शिव जी और देवी पार्वती ने सोचा कि अब इन दोनों पुत्रों का विवाह करवा देना चाहिए। तब शिव पार्वती ने कार्तिकेय स्वामी और श्री गणेश से कहा कि आप दोनों में से जो भी इस संसार की परिक्रमा करके पहले लौट आएगा हम उसका विवाह पहले करवाएंगे। शिवजी की शर्त सुनते ही कार्तिकेय स्वामी अपने वाहन मोर पर बैठकर झट उड़ गए, लेकिन गणेश जी अपने वाहन चूहे पर बैठे और कुछ सोचने के बाद उन्होंने अपने माता पिता की परिक्रमा कर ली। गणेश जी ने शिव पार्वती से कहा कि मेरे लिए आप दोनों ही पूरा संसार हैं। गणेश जी की इस बात से शिव पार्वती बेहद प्रसन्न हो गए। उन्होंने गणेश जी का विवाह करवा दिया। इसके साथ ही महादेव ने गणेश जी को सभी देवताओं में प्रथम पूज्य होने का आशीर्वाद दिया। कहा जाता है कि उसके बाद से विनायक सदा सर्वदा के लिए संसार में प्रथम पूज्य देव हो गए। आज युगों बाद भी ये परंपरा यूं ही चली आ रही है। घर में कोई भी शुभ काम हो सबसे पहले श्री गणेश का आह्वान किया जाता है। सबसे पहले गणेश जी को पूजा जाता है। मान्यता है कि सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करने से सारे काम सफल होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: गौरीसुत शिवपुत्र गणपति विनायक गजानन लंबोदर जाने कितने ही नाम है विघ्नहर्ता गणेश के। गणपति का हर नाम उनके रूप और उनकी लीलाओं से जुड़ा हुआ है, यानी उनके हर नाम के पीछे कोई कहानी या कारण है। देखिए गणेश जी का ऐसा ही एक नाम है एकदंत। एक दांत होने के चलते गणपति को एक दंत भी कहा जाता है। पौराणिक कहानियों में जिक्र मिलता है कि जब मद नाम के राक्षस ने आतंक मचाया तो गणेश जी एक दंत रूप में अवतार उन्होंने लिया और उसका अंत कर दिया। इसी तरीके से गणपति को गजानन भी कहते हैं। गज यानी हाथी का मुख होने के चलते भगवान गणेश का नाम गजानन पड़ा। इस अवतार में गणेश जी ने लोभासुर नाम के राक्षस को मारा था। गणेश जी का एक नाम लंबोदर भी है, इसका अर्थ है बड़े उदर यानी बड़े पेट वाला। क्रोधासुर नाम के राक्षस का वध करने के लिए गणेश जी ने लंबोदर स्वरूप में अवतार लिया था। क्रोधासुर यानी गुस्सा। गणेश जी की भक्ति से हम अपने क्रोध को जीत सकते हैं। इसी क्रम में गणपति का एक नाम है ध्रुव वर्ण और इस स्वरूप में गणेश जी का रंग धुएं के जैसा नजर आता है। अहंतासुर को खत्म करने के लिए गणेश जी ने धूम्र वर्ण अवतार लिया था और इसी तरह गणेश जी का एक नाम है वक्रतुंड और वक्रतुंड यानी टेढ़ी सूंड वाला। अपने वक्रतुंड अवतार में ही गणेश जी ने मत्स्यासुर और उसके पुत्रों का अंत किया था।
1: गणेश जी का नाम वक्रतुंड पीछे पड़ने का बहुत बड़ा कारण मत्स्यासुर नाम का एक असुर जो परम शिव भक्त था लेकिन देवताओं को बहुत प्रताड़ित करता था, ऋषियों को प्रताड़ित करता था, यज्ञ अनुष्ठान में बाधाएं उत्पन्न करता था। तो भगवान गणपति ने वक्रतुंड का रूप धारण करके मत्स्यासुर का वध किया और वध करने के कारण भगवान गणपति वक्रतुंड हो गए। और उनकी जो यह प्रार्थना है वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा, यह प्रार्थना सर्वविदित है, सारे लोग करते हैं। इस प्रकार भगवान गणपति के वक्रतुंड रूप का अवतार हुआ।
2: ये तो थी गणपति के नामों की महिमा। अब उनकी पूजा से जुड़ी परंपराएं भी आपको दिखाते हैं। देखिए ऐसी कई चीजें हैं जिनका गणेश जी की पूजा में होना अनिवार्य है, तो उसी तरीके से कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिनका इस्तेमाल वर्जित है, जैसे तुलसी। आइए आपको बताते हैं कि लंबोदर से जुड़ी ये कौन सी परंपराएं हैं और बप्पा से जुड़ी इन चीजों के पीछे कौन सी पौराणिक कहानियां हैं, ये भी हम आपको बताते हैं।

कहते हैं गणपति का आगमन शुभ के आरंभ और अशुभ के विनाश के लिए होता है। गणेशोत्सव के 10वें दिन जब बाप्पा की प्रतिमा को विसर्जित किया जाता है तो वे अपने साथ सारी नकारात्मकता भी ले जाती है।

0: लेकिन इससे पहले इन 10 दिनों के दौरान पूरे विधि विधान से गौरी नंदन की पूजा की जाती है। इस दौरान गणपति की इस विशेष पूजा और खुद गणपति से जुड़ी कई ऐसी परंपराएं हैं जिनका पालन बेहद जरूरी माना जाता है। जैसे गणेश जी की पूजा मोदक के बिना पूरी नहीं हो सकती। दरअसल मोदक को गणपति का प्रिय भोग माना जाता है। वैसे तो मोदक किसे पसंद नहीं होते, लेकिन गौरी पुत्र को मोदक से विशेष प्रेम है। पौराणिक कहानियों में वे माँ गौरी से लेकर देवी अनुसुईया तक सबके हाथों से मोदक पाते रहे हैं।
1: एक बार भगवान परशुराम से संहार करते समय, युद्ध करते समय भगवान गणपति के दांत का एक अंश टूट गया, तो उसके बाद उन्हें भगवान गणपति को भोजन करने में बड़ी समस्या उत्पन्न होने लगी। तो माता पार्वती ने अपने पुत्र की भूख को शांत करने के लिए मोदक बनाए और मोदक बनाकर भगवान गणपति की भूख को शांत किया। तब से मोदक चढ़ाने की भगवान को गणपति को परंपरा आरंभ हो गई। माता अनसुईया के यहाँ एक बार भोजन में भगवान गणेश जी गए, माता अनसुईया ने उन्हें भरपूर भोजन कराया, लेकिन भगवान गणपति की भूख शांत नहीं हो रही थी। तब माता पार्वती के कहने पर माता अनसुईया ने भगवान गणपति की थाली में मोदक रखा, तो भगवान गणपति की भूख शांत हो गई। तब से परंपरा हो गई, बिना मोदक के भगवान गणपति की पूजा कहीं नहीं होती है।
0: इसी तरह दूर्वा के बिना भी गणपति की पूजा अधूरी मानी जाती है। दूर्वा एक तरह की घास होती है। बताया जाता है कि दूर्वा भगवान गणेश को बेहद प्रिय है। गणपति को दूर्वा चढ़ाने के पीछे भी एक पौराणिक मान्यता है। ये कहानी बताती है कि एक समय धरती पर अलनासुर नाम के राक्षस का आतंक हो गया था। अलनासुर तपस्या से मिले वरदान के चलते इतना शक्तिशाली हो चुका था कि उसने देवताओं के राजा इंद्र को भी हरा दिया था। तब देवताओं को बचाने के लिए भगवान गणेश ने अलनासुर का लावा सोख कर उसे खत्म कर दिया था, लेकिन इसके बाद उनके पेट में भयानक जलन होने लगी। तब जलन ठीक करने के लिए ऋषि कश्यप ने गणपति को दूर्वा की गांठें खाने के लिए दी। गांठें खाते ही उनके पेट की जलन खत्म हो गई।
1: भगवान गणपति का संग्राम एक बार अनलासुर नामक दैत्य से हुआ। अनलासुर बहुत प्रतापी दैत्य था, सबको परेशान करता था। तो भगवान गणपति से युद्ध हुआ, उसके गणेश जी ने उसको निगल लिया, तो गणेश जी के पेट में जलन होने लगी। तब ऋषियों ने उसे हरी दुर्वा गणेश जी को खिलाई, तो उनके पेट की जलन शांत हुई। जलन शांत हुई तो गणेश जी को तब से दुर्वा परम प्रिय हो गई। और शास्त्र गणेश अथर्व शीर्ष में लिखा है, यो दुर्वांग कुरीर यति सव वैश्रमणोपमो भवति। जो भगवान गणपति की पूजा दुर्वा के अंकुर से करता है, उसके हर प्रकार का सुख और लाभ प्राप्त होता है।
0: इसी तरह गणपति की पूजा से जुड़ी एक और परंपरा है जिसे निभाना जरूरी माना जाता है। गणपति की मूर्ति को अक्षत यानी चावल के दानों पर स्थापित किया जाता है। इस परंपरा के पीछे भी एक खास मान्यता है।
1: अक्षत जो क्षत न हो, जो टूटे चावल न हो, और ऐसे चावल अक्षताश्च सुरस श्रेष्ठा कुंकुमाक्ता सुशोभिता। कुमकुम में रंगा हुआ, रोली में रंगा हुआ जो भगवान को गणपति को जो आसन बनाया जाता है, चूंकि चावल में श्री का वास है, लक्ष्मी का वास है, और जहाँ गणपति बैठते हैं वहाँ लक्ष्मी की आराधना स्वयं हो जाती है। इसीलिए चूंकि श्री है और धान जहाँ बोया जाता है वहाँ बहुत ज़्यादा पैदावार करता है, वृद्धि करता है। वृद्धि के कारण भगवान गणपति की पूजा चावल के पुंज पर या चावल का स्वस्तिक बनाकर, जिसको हम अक्षत कहते हैं, चावल नहीं, पूजा में अक्षत का नाम है, उस अक्षत पुंज पर या अक्षत का स्वस्तिक बनाकर या अष्टदल कमल बनाकर भगवान गणपति की स्थापना करके उनकी पूजा करके हम सनातनी लाभ को प्राप्त करें।
0: ये गणपति को प्रिय वो तमाम चीजें हैं जिनका उनकी पूजा में होना जरूरी माना जाता है। लेकिन इसी तरह कुछ ऐसी वस्तुएं भी हैं जिनका इस्तेमाल गणपति की पूजा में वर्जित माना जाता है। जैसे तुलसी के पत्ते। सारी दुनिया में जिन तुलसी को दिव्य मानकर पूजा जाता है, उन तुलसी के पत्तों का उपयोग गणपति की पूजा में वर्जित है। इस नियम के पीछे पौराणिक काल का वो अध्याय है जिसमें गणपति और तुलसी का एक दूसरे से सामना हुआ था, लेकिन तब तक तुलसी को पूजनीय होने का वरदान नहीं मिला था, बल्कि वे राजा धर्मध्वज की बेटी और एक साधारण राजकुमारी थी। एक बार तुलसी ने गणेश जी को देखा तो वे उन पर मोहित हो गए, लेकिन गणपति पहले ही विवाह न करने का मन बना चुके थे, सो उन्होंने तुलसी के निवेदन को अस्वीकार कर दिया। इस बात से क्रोधित होकर तुलसी ने उन्हें श्राप दे दिया कि कालांतर में गणेश जी को विवाह करना ही पड़ेगा। तुलसी के श्राप के जवाब में गणेश जी ने भी उन्हें श्राप दिया कि वे एक असुर की जीवन संगिनी बनेंगी। गजानन के श्राप से तुलसी भयभीत हो गईं और उन्होंने तुरंत गणपति से क्षमा मांगी। देवी तुलसी की क्षमा याचना को स्वीकार कर गणपति ने उन्हें वरदान दिया कि वे संसार का सबसे दिव्य और पूजनीय पौधा होंगी, लेकिन उन्होंने अपनी पूजा में तुलसी के उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया। यही वजह है कि आज तक गणपति की पूजा में तुलसी को शामिल नहीं किया जाता।
1: भगवान गणपति को दुर्वा प्रिय है, लेकिन तुलसी नहीं चढ़ाते, ऐसा निषेध है। निषेध इसलिए है, एक बार भगवान गणपति समुद्र के तट पर तपस्या कर रहे थे तो तुलसा देवी, तुलसी माता जी ने, हम कहते हैं, विवाह का प्रस्ताव लेके उनके पास गई। तो भगवान गणपति चूंकि आराधना कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, तो उन्होंने तुलसी माता के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। तो तुलसी ने उन्हें श्राप दिया कि आपने मेरा त्याग किया, आपके दो दो विवाह होंगे। इसलिए भगवान गणपति के दो विवाह हुए, सिद्धि और बुद्धि से। तो भगवान गणपति ने भी श्राप दिया तुलसी को कि आपका विवाह इस राक्षस से होगा।
0: विघ्नहर्ता गणपति से शुभता और समृद्धि का आशीर्वाद पाने के लिए उनकी पूजा में इन परंपराओं और मान्यताओं का ख्याल रखा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: गुड न्यूज़ टुडे लगातार दर्शकों से अपील कर रहा है कि आप भी जीएनटी पर मनाए जा रहे इस उत्सव से जुड़िए। इसके लिए आपको बस इतना सा करना है कि अपने घर पधारे गजानन का वीडियो हमें भेजना है और हम उन वीडियोस को दुनिया तक पहुंचाएंगे। हमारे पास लगातार दर्शकों की वीडियोस आ रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के झांसी से कार्तिक झा ने हमें गणेश उत्सव की तस्वीरें शेयर की हैं। शानदार पंडाल में विराजमान बप्पा खूबसूरत पगड़ी के साथ आकर्षक वस्त्र पहने अति सुंदर नजर आ रहे हैं। भगवान गजानन को प्रिय धूप घास खिलाई जा रही है और बाल गणेश स्वरूप में भगवान गजानन की विधिवत पूजा अर्चना की जा रही है। वहीं दूसरी तस्वीर देखिए, पंजाब के लुधियाना से ईशान ने भेजी है। ऊंचे आसन पर विराजमान भगवान गजानन सुगंधित पुष्पों की माला धारण किए हुए हैं। बप्पा के पंडाल को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया है।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: महाराष्ट्र के चंद्रपुर में सजा तुकुम के राजा का दरबार, श्रद्धालुओं के बीच आकर्षण का केंद्र बनी बप्पा की मनमोहक प्रतिमा, चावल, दाल, साबुदाना और मूंगफली के दानों से किया गया निर्माण। श्रीनगर के श्री सिद्धिविनायक गणेश मंदिर में गणेशोत्सव की रौनक, मूर्ति विसर्जन के दौरान शहर की गलियों में उमड़ा जन समुद्र, धार्मिक आयोजन में दिखे श्रद्धा, भक्ति और आस्था के रंग। राजस्थान के उदयपुर में नारायण सेवा संस्थान ने सामूहिक विवाह समारोह का किया आयोजन, शादी के पवित्र बंधन में बंधे 50 करीब और दिव्यांग जोड़े, नव विवाहितों को उपहार में दिए गए जरूरी सामान। उत्तराखंड के ऋषिकेश में एसडीआरएफ टीम ने किया महिला का रेस्क्यू, पहाड़ी से उतरते वक्त नदी के तेज बहाव में फंसी, सूचना के बाद चलाया गया रेस्क्यू ऑपरेशन। नेशनल पार्क से गांधी सागर में शिफ्ट हुई मादा चीता CC B2, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अभ्यारण्य में किया रिलीज, देश का दूसरा बड़ा चीता घर बना गांधी सागर। गोल्ड मेडल से बस एक कदम दूर भारतीय महिला क्रिकेट टीम, एशियन गेम्स में बांग्लादेश को 114 रनों से हराया, शेफाली वर्मा ने 49 गेंदों में लगाई सेंचुरी। एशियन गेम्स में भारत को शूटिंग में मिला दूसरा सिल्वर मेडल, एलावेनिल ने 10 मीटर एयर राइफल में किया कमाल, मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में भी पदक पक्का।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम, और मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। एक बार फिर से लेकर एक दमदार शख्सियत का सफरनामा। इस बार जिस निर्भीक शख्सियत का सफरनामा लेकर हम हाजिर हुए हैं, उसने महाराष्ट्र में मिलावटखोरी करने वाली और लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करने वाली लॉबी के खिलाफ ऐलानी जंग कर दिया है। महाराष्ट्र में फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का कमिश्नर बनने के बाद इस शख्स ने अपने ताबड़तोड़ एक्शन से लोगों की सेहत की कीमत पर मुनाफाखोरी करने वाली लॉबी की नींद उड़ा कर रख दी है।

0: आप समझ गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि महाराष्ट्र में फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन विभाग के कमिश्नर तुकाराम मुंडे हैं। महाराष्ट्र की जनता जिन्हें अब सिंघम आईएएस कहने लगी है। 25 मई 2026 को एफडीए के कमिश्नर पद की जिम्मेदारी मिलने के बाद से ही तुकाराम एक्शन मोड में है। इनके कमिश्नर बनने के बाद महाराष्ट्र के होटल्स, रेस्टोरेंट, कैफे और कन्फेक्शनरीज के मालिक और मालकिनों को पहली बार एहसास हुआ कि उनका काम सिर्फ आंखें मूंद कर मुनाफा वसूली करना नहीं है बल्कि लोगों की सेहत और हाइजीन का कायदे से ख्याल रखना भी है। 4 महीने से भी कम में इनके कार्यकाल में महाराष्ट्र के होटल्स और रेस्टोरेंट्स की सूरत बदल गई है। आम लोग इनकी कार्यशैली से काफी खुश हैं।
1: अंधेरा कितना ही घनघोर क्यों ना हो, एक दिया काफी होता है उस अंधेरे की कालिमा को चीरने के लिए। और उजाले की प्रकृति ही कुछ ऐसी है कि वो व्यवस्था की वस्तु स्थिति को उजागर कर देता है। महाराष्ट्र के एक आईएएस अधिकारी ने अदम्य इच्छा शक्ति, नेक नियति और कर्तव्य निष्ठा के रथ पर सवार होकर व्यवस्थागत नियमों का दीप प्रज्वलित किया तो कई नामचीन संस्थाओं, कंपनियों और हस्तियों के स्याह चेहरे उजागर हो गए। महाराष्ट्र के इस युगांधर आईएएस अधिकारी का नाम है तुकाराम हरिभाऊ मुंडे। एक ऐसा नौकरशाह जिसने अपनी जिम्मेदारियों के तर्जे अमल की बेहतरीन नजीर पेश कर न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि देश भर के ब्यूरोक्रेट्स को बता दिया है कि अगर वो सच्ची निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करें तो करोड़ों हिंदुस्तानियों की बहुत सी दुश्वारियां यूं ही खत्म हो जाएंगी। आपको बता दें कि महाराष्ट्र कैडर के आईएएस ऑफिसर के तौर पर साल 2006 में सोलापुर के असिस्टेंट कलेक्टर के पद पर ज्वाइनिंग के बाद से अब तक तुकाराम मुंडे हर रोज आम लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं सीधे तौर पर सुनते हैं।
2: That's where you pointed out that I meet people during 4 to 5 every day. So that's a connect with the people, and it's a practice I have been doing it since I joined the service, not now. So I believe that if public servant or civil servant is to serve in a public space, so who am I serving? Each and every individual. See, if I do not know or do not meet them, do not connect with them, how would I know what are the issues? What are they facing?
1: 21 साल के प्रशासनिक सफर में 25 से ज्यादा तबादलों का दंश झेल चुके तुकाराम मुंडे को 25 मई 2026 को महाराष्ट्र के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन विभाग के कमिश्नर की जिम्मेदारी सौंपी गई। तुकाराम जब से एफडीए के कमिश्नर बने हैं मिलावटखोर, मुनाफाखोर, धांधलेबाज पनाह मांग रहे हैं। उन्हीं के विभाग के भ्रष्ट, बेईमान और कामचोर मातहत कर्मचारी त्राही माम कर रहे हैं, लेकिन जनता बहुत प्रसन्न है। सच कहें तो आम लोगों को पहली बार पता चला है कि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कितने काम का विभाग है। बीते 15 सितंबर को तुकाराम ने सोशल साइट एक्स पर एक पोस्ट कर कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स के अंदर चल रही एक ऐसी धांधली उजागर की है जिसे आम जनता पूरी तरह अनजान थी। अस्पतालों के मेडिकल इक्विपमेंट्स प्रोक्योरमेंट को लेकर तुकाराम मुंडे ने जो खुलासा किया है उसने सनसनी मचा दी है। 15 सितंबर को अपनी एक्स पोस्ट में तुकाराम ने लिखा है, महाराष्ट्र में हॉस्पिटल में इस्तेमाल होने वाली सामग्रियों पर किए गए सर्वे में ये पाया गया कि एक आईवी इन्फ्यूजन सेट की एक्चुअल खरीद करीब 11 रुपए होती है जबकि इस पर MRP 325 रुपए लिखी होती है, यानी 2841% का मार्कअप। बढ़ोतरी, एक सिरिंज 6.75 रुपए में खरीदी जाती है जबकि उस पर MRP लिखी होती है 57.20 रुपए। एक कैथेटर 29.41 रुपए में खरीदा जाता है जबकि उस पर MRP लिखी होती है 310 रुपए। कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स में भर्ती होने वाले मरीज के डिस्चार्ज से पहले परिजनों को जब बिल दिया जाता है तो उसे देखकर उनकी पेशानियों पर पसीने की बूंदें छलकने लगती हैं। उन्हें क्या पता कि इस भारी भरकम बिल के पीछे नौकरशाहों और हॉस्पिटल्स की दुराभिसंधि का हाथ है। बहरहाल अगर तुकाराम जैसे मसीहा के हाथ में कमान हो तो जनता राहत की उम्मीद कर सकती है। महाराष्ट्र FDA की ओर से सामने रखे गए सर्वे के नतीजों के बाद ट्रेड प्रोक्योरमेंट प्राइस और घोषित MRP के बीच अंतर को लेकर स्पष्ट गाइडलाइन बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हॉस्पिटल्स के साथ ही मोटे मुनाफे के लिए जनता की सेहत से खिलवाड़ करने वाले होटल्स, रेस्तरां, कॉन्फेक्शनरीज, डेयरीज, कैफे और फूड एंड एग्रो फैक्ट्रीज पर भी तुकाराम मुंडे कहर बनकर बरस रहे हैं। त्योहारी मौसम में मुनाफाखोरों की चांदी हो जाती है, इसलिए मिलावट का धंधा चरम पर पहुंच जाता है। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की धूम के बीच फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने मुंबई के मशहूर बार और रेस्तरा कैफे मुंडेगर का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया। वजह जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। FDA ने अपनी जांच में पाया कि गर्म खाने की चीजों को जरूरी तापमान 60 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा पर नहीं रखा जा रहा था और कोल्ड स्टोरेज का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से कम पर नहीं रखा जा रहा था। इसके साथ ही खाना बनाने वाली जगह ड्रेनेज सिस्टम तय मानकों के मुताबिक नहीं था, जिससे क्रॉस कंटामिनेशन का खतरा था। सोचिए सरकार ने पब्लिक हेल्थ को ध्यान में रखकर कितने अच्छे रेगुलेशंस बनाए हैं, पर इन रेगुलेशंस के कंप्लायंस को लेकर नौकरशाहों में इतनी बेफिक्री बेपरवाही है कि रेस्तरा या कैफे मालिकों को कौन कहे, आम जनता भी उदासीन हो जाती है। नतीजा ये होता है कि पैसे देकर होटल्स में खाना खाओ और तोहफे के तौर पर बीमारी घर ले आओ। पर FDA के कमिश्नर के तौर पर तुकाराम ने पूरे देश को चता भी दिया है और बता भी दिया है कि कानून की किताब ठंडे बस्ते में डालने के लिए नहीं होती। क्या तुकाराम से पहले किसी ने सोचा होगा कि भंडारे, महाप्रसाद, लंगर या सामूहिक भोज के लिए भी गाइडलाइंस जारी की जा सकती है? महाराष्ट्र FDA ने इसके लिए भी गाइडलाइंस जारी कर दी है, जिसके मुताबिक भंडारा, महाप्रसाद, लंगर या किसी सामूहिक भोज के आयोजन से कम 7 दिन पहले ऑनलाइन फॉर्म जमा करना पड़ेगा। ऐसे आयोजनों में सिर्फ लाइसेंस प्राप्त कैटरर्स की ही सेवाएं ली जा सकेंगी। खाना बनाने और पीने के लिए साफ या RO वाटर ही इस्तेमाल करना होगा। खाना बनाने और परोसने वाले वॉलेंटियर्स के लिए मास्क, दस्ताने और हेड कैप पहनना जरूरी होगा। भंडारों में आमतौर पर हाइजीन को अनदेखा कर दिया जाता है। इसमें खाना खाने वाले आमतौर पर मुफलिसी के मारे लोग ही होते हैं, इसलिए हाइजीन को लेकर आपत्ति दर्ज कराने का सूरत हाल नहीं होता। पर तुकाराम बचपन में बेबस गुर्बत की कड़वी हकीकत से वाबस्ता हो चुके हैं, इसीलिए गरीबों के दर्द को जानते हैं। वैसे FDA की भंडारे वाली गाइडलाइंस का हर तबके के लोग स्वागत कर रहे हैं।
3: नहीं, ये जो निर्णय लिया है वो अच्छा लिया है, जो भी है वो सबके हित के लिए है। अगर जो भी है, जो भी भंडारा या जो भी होता है उसमें अगर क्लीननेस रहेगा तो ये सबके हेल्थ के लिए अच्छा है।
4: इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज फॉर द गुड ऑफ द पीपल, गुड ऑफ द कम्युनिटी, और ये एक्सेप्टेबल होना चाहिए। और उनकी जो भी गाइडलाइंस है, ऑफकोर्स वो डिटेल में देखेंगे, जैसे कि हमारा मंडल होता है या ग्रुप्स होते हैं जहां पर ये सारी चीजें होती है, भंडारे एंड ऑल, वो उनको फॉलो करना चाहिए। और ये सभी के लिए है, गवर्नमेंट अगर कुछ पॉलिसीज ला रही है।
1: साफ है कि गरीब या आम जनता की सेहत और स्वास्थ्य को लेकर तुकाराम मुंडे बहुत संवेदनशील हैं। दूसरी ओर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट की अनदेखी करने वाली रसूखदार और पावरफुल लॉबी के खिलाफ एक्शन लेने में वो जरा भी हिचकिचाते नहीं है। अंजाम की परवाह किए बगैर तुकाराम ऐसी लॉबी से सीधा हेड ऑन कर लेते हैं। तुकाराम ने विमल इलायची का विज्ञापन करने पर बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान समेत अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को 14 अगस्त 2026 को नोटिस भेज दिया था। नोटिस में साफ तौर पर कहा गया कि विज्ञापन में इलायची के नाम पर पान मसाले का प्रमोशन हो रहा है, जबकि महाराष्ट्र में तंबाकू उत्पादों पर बैन है।
2: जो नोटिस इश्यू किया गया है अबाउट एडवर्टाइजिंग रेगुलेशन वायलेशन, उनको नोटिस रेगुलेशन 2018 के हिसाब से दिया गया है और सेक्शन 24 ऑफ फसाई एक्ट जो है उसके हिसाब से दिया गया है, क्योंकि ये गुटखा और जो प्रोडक्ट है महाराष्ट्र में बैन है और उसका एडवर्टाइजिंग ये सरोगेट एडवर्टाइजिंग में आता है, इसलिए हमने उनको नोटिस दिया, उनको टाइम दिया है।
1: साफ है कि निर्भीक तुकाराम रसूखदारों और पावरफुल लॉबीज के खिलाफ एक्शन लेने में जरा भी परहेज नहीं करते। हालांकि उन्हें इस नायकत्व के लिए धमकियां भी मिलती रही हैं, पर जो इंसान कर्तव्य परायणता का दिया अपने हाथों में लेकर लोकहित के अग्निपथ पर निकल जाता है, वो रास्ते में आने वाले सेहरा या बयाबा की परवाह नहीं करता। नियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराने और नियमों की अनदेखी करने वालों पर घास गिराने की वजह से शुरू से ही इनकी राह में कांटे बिछाए जाते रहे हैं, लेकिन एक सच्चे योद्धा की तरह हर मुश्किलों का ये डट कर मुकाबला करते हैं। आत्मा अगर गवाही दे तो बड़े से बड़ा एक्शन लेने से भी परहेज नहीं करते।
2: Once you do that and if you are a public servant, what is my role? That's the question I ask as a public servant. And if my role is to contribute for the betterment of the society, should I trade that part or should I compromise on that part? That was the question I ruminated upon. And the answer I got is I should trade this part, whatever the cost may be. Maybe sometimes it is less or more, whatever it is. That's a choice and that's a choice I made. And I don't think I regret anything of that today.
1: कहने की जरूरत नहीं कि साल 2026 में लोक सेवा का व्रत लेने के बाद से ही तुकाराम व्यापक जनहित के पथ पर निर्भीक होकर आगे बढ़ रहे हैं। 21 साल के सफर में 25 बार ट्रांसफर की दुश्वारी झेली, लेकिन जहां भी पोस्टिंग हुई, जिस विभाग की भी जिम्मेदारी मिली, पूरी क्रांति ला दी। 25 मई 2026 को FDA कमिश्नर बनने के बाद से ऐसे ऐसे साहसिक काम किए हैं कि नियमों की धजिया उड़ाने वाले पनाह मांग रहे हैं। महाराष्ट्र FDA का कमिश्नर बनने के बाद पहले हफ्ते में ही उन्होंने सब स्टैंडर्ड और मिलावटी सामान बेचने वाले 50 से ज्यादा ठिकानों पर छापे मारे और 100 लोगों को गिरफ्तार किया। उपचार के दावे वाले भ्रामक विज्ञापन दिखाने के आरोप में पतंजलि के आउटलेट पर छापे मारे और 51 लाख रुपए का सामान जब्त कर लिया। ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट जैसी ई कॉमर्स कंपनियों के 86 वेयर हाउसेज की जांच की और नियमों की अनदेखी की वजह से 14 वेयर हाउसेज के लाइसेंस सस्पेंड कर दिए। मुंबई में डोमिनोज पिज्जा के 4 आउटलेट के लाइसेंस सस्पेंड कर दिए। महाराष्ट्र में एनालॉग पनीर यानी बिना डेयरी से बने पनीर पर 1 साल तक के लिए बैन लगा दिया। तुकाराम मुंडे के इन ताबड़तोड़ एक्शन से महाराष्ट्र की आम जनता राहत महसूस कर रही है। दूसरी ओर होटल्स, रेस्तरा, कॉन्फेक्शनरीज, डेयरीज, कैफे और फूड एंड एग्रो फैक्ट्रीज के मालिकों को पहली बार यह एहसास हुआ है कि उनका काम सिर्फ मुनाफा ऐठना नहीं है, बल्कि लोगों की सेहत का, स्वास्थ्य का भी पूरा ख्याल रखना है।
0: ऐसा नहीं है कि FDA का कमिश्नर बनने के बाद से ही तुकाराम एक्शन मोड में आए हैं। महाराष्ट्र कैडर का IAS अधिकारी बनने के बाद से ही तुकाराम नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों पर वज्रपात करते रहे हैं और इसके लिए कई बार इन्हें धमकियां भी मिली, राह में रोड़े अटकाए गए, लेकिन तमाम चुनौतियों के बाद भी कभी भी अपने कर्तव्य पथ से विचलित नहीं हुए। एक गरीब किसान परिवार में जन्म लेने वाले तुकाराम ने बचपन में गरीबी का दंश झेला है, जीवन की दुश्वार देखी हैं, पैदावार के लिए खेतों में पसीना बहाया है और इसलिए इनका व्यक्तित्व फौलादी हो गया, हालात से हार नहीं मानने का जज्बा पैदा हो गया।

0: तुकाराम मुंढे आज महाराष्ट्र में आइडियल ब्यूरोक्रेसी की मिसाल बन चुके हैं। उनकी ईमानदारी और कर्तव्य परायणता गरीब मजलूम लोगों के स्वास्थ्य और सेहत की उम्मीद की लौ बन चुकी है। जबकि महाराष्ट्र में नियमों की अनदेखी करने वाले फूड और ड्रग बिजनेस से जुड़े प्रतिष्ठानों को हर पल तुकाराम का डर सता रहा है। बतौर एफडीए कमिश्नर 4 महीने से भी कम के इनके कार्यकाल में एफडीए 12,000 से ज्यादा निरीक्षण और छापेमारी कर चुका है। इनमें से 900 से ज्यादा हाई इंपैक्ट रेड्स शामिल हैं। खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता नियमों के उल्लंघन की वजह से महाराष्ट्र में कुल 603 कमर्शियल लाइसेंस सस्पेंड किए जा चुके हैं। मिलावटखोरी, प्रतिबंधित गुटखा या पान मसाला बेचने और नियमों की अनदेखी के मामले में 875 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इतना ही नहीं, एफडीए ने ऐसे मामलों में 650 से ज्यादा FIR भी दर्ज कराई है। तुकाराम की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वे नियमों की अनदेखी करने वाले प्रतिष्ठानों या व्यक्तियों के कद या रसूख से बेपरवाह रहते हैं। एफडीए ने नामी गिरामी फार्मास्यूटिकल कंपनी सिप्ला की पुणे स्थित यूनिट का 26 अगस्त को निरीक्षण किया और पैकेजिंग, स्टोरेज और खरीद बिक्री के रिकॉर्ड्स में गड़बड़ी और अनियमितता पाने पर इस यूनिट का सेल्स लाइसेंस रद्द कर दिया। तुकाराम के ताबड़तोड़ एक्शंस की जद में मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन यानी MCA भी आ चुका है। एफडीए ने MCA के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में स्थित 5 फूड आउटलेट्स पर 20 अगस्त को छापा मारकर 5 के FSSAI लाइसेंस सस्पेंड कर दिए। इतने हाई प्रोफाइल प्रतिष्ठानों के खिलाफ एक्शंस होंगे तो मामला कोर्ट में पहुंचेगा ही। MCA ने FDA के एक्शन के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया तो कोर्ट ने तुकाराम मुंडे को कड़ी फटकार लगा दी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि हम FDA को कितनी बार समझा चुके हैं कि मच्छर को तलवार से मत मारो, क्या आप खुद को लॉर्ड समझते हैं कि कुछ भी कर सकते हैं? तुकाराम को फटकार लगाते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनसे ये भी पूछ लिया कि FDA सिर्फ निजी संस्थानों पर छापेमारी क्यों कर रहा है, कानून का पालन तो सरकारी परिसरों की कैंटीन्स में भी होना चाहिए। तुकाराम भी कहां मानने वाले थे, उन्होंने अगले ही दिन बॉम्बे हाईकोर्ट कैंपस की 3 कैंटीनों पर रेड कर दी और 2 कैंटीन के लाइसेंस कैंसिल कर दिए।
1: ड्यूरिंग द हियरिंग द क्वेश्चंस वर एज वेदर यू आर टेकिंग एक्शन अगेंस्ट ओनली प्राइवेट और टेकिंग एक्शन अगेंस्ट द एस्टैब्लिशड गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट, वी आर टेकिंग, वी हैव द डेटा टू बैक इट अप एंड इन दैट कोर्स ऑफ इंटरेक्शन सेज दैट हैव यू inspected Mantralaya canteen, so we had already done that. So then have you inspected or visited High Court canteen also, which we had not done. So I said we have not done that, but we have done this one. So High Court expects that it should be visited. Well, fine, next day my team goes and finds it out whatever it is there.
0: बॉम्बे हाई कोर्ट की कैंटीन पर रेड डालकर तुकाराम ने ये साबित कर दिया कि वो अलग ही मिट्टी के बने हैं। आपको बता दें कि इस तरह की चुनौतियां तुकाराम अपने सर्विस पीरियड में अनेकों बार फेस कर चुके हैं। साल 2006 में सोलापुर में बतौर असिस्टेंट कलेक्टर अपनी पहली पोस्टिंग में रेत माफियाओं पर एक्शन लिया तो उन पर जानलेवा हमला हो गया। साल 2007 में नांदेड़ में अवैध रेत खनन के खिलाफ कार्रवाई की तो 5 महीने में तबादला हो गया। 2012 में मुंबई सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट में पोस्टिंग हुई तो टैक्स चोरों से 310 करोड़ रुपए वसूल लिए। साल 2014 में कलेक्टर बनकर दोबारा सोलापुर पहुंचे तो टैंकर माफियाओं की नकेल कस दी, जिसके बाद इन्हें महाराष्ट्र का वाटरमैन कहा जाने लगा। मार्च 2017 में पुणे महानगर परिवहन महामंडल लिमिटेड के चेयरमैन बने तो ड्यूटी से लंबे समय से गायब चल रहे 158 कॉन्ट्रैक्ट ड्राइवरों को एक साथ सस्पेंड कर दिया। साल 2022 में महाराष्ट्र के हेल्थ केयर कमिश्नर बने तो सरकारी डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस बंद करवा दी। कहने की जरूरत नहीं कि तुकाराम मुंढे को जो भी जिम्मेदारी मिली उन्होंने कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी की नई लीक खींच दी। दरअसल इस इंसान का पालन पोषण चांदी के चम्मच से नहीं हुआ है, इनका बचपन बहुत ज्यादा दुश्वारियों और आर्थिक तंगी के बीच बीता है। महाराष्ट्र के बीड जिले के गुमनाम से गांव ताड़सोना के एक गरीब किसान परिवार में 3 जून 1975 को जन्मे तुकाराम के पिता के पास इनके लिए चप्पल खरीदने तक के पैसे नहीं होते थे, लिहाजा ये बिना चप्पल के नंगे पांव स्कूल जाते थे। दिन में पढ़ाई करते थे और रात में खेतों की सिंचाई का काम भी करते थे। क्या आप यकीन करेंगे कि तुकाराम मासूम उम्र में सिर पर सब्जियां रखकर साप्ताहिक बाजार जाते थे और उन्हें बेचकर पैसे ले आते थे ताकि घर की रोजमर्रा की जरूरतें पूरी हो सकें। इतनी हार्डशिप में रहकर भी ये अपने क्लास में टॉप करते थे। तभी तो साल 2005 में तुकाराम ने यूपीएससी क्रैक किया और ऑल इंडिया 20वीं रैंक हासिल की। आज वही ताड़सोना गांव का गुदड़ी का लाल ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा का दिया जलाकर नौकरशाहों को सच्चाई की राह दिखा रहा है।
2: बंदे में है दम में आज आपने महाराष्ट्र के एफडीए कमिश्नर तुकाराम मुंडे के जीवन से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं को देखा। अगले हफ्ते ऐसी ही किसी और बेमिसाल शख्सियत के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है।
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
6: हम आपको दिखाते हैं एक मनोरंजक खबर न्यूयॉर्क की। देखिए अमेरिका के न्यूयॉर्क में निकली पैथ्स की फैशन परेड। जी हाँ, न्यूयॉर्क के ब्रायंट पार्क में बड़ी संख्या में डॉगीज के साथ उनके मालिक पहुंचे और उस मौके पर जमकर उन्होंने लुत्फ उठाया।
7: पालतू कुत्तों और उनके मालिकों की ये जमघट बेहद खास है। ये तस्वीरें न्यूयॉर्क के ब्रायंट पार्क की हैं। यहाँ पर पॉज ऑन परेड के चौथे संस्करण का आयोजन किया गया, जिसमें एक से बढ़कर एक शानदार तरीके से सजे धजे डॉगीज ने हिस्सा लिया। कहीं कुत्ते स्टाइलिश आउटफिट में नजर आए तो कहीं अपने मालिकों के साथ स्ट्रोलर में सैर करते दिखे। किसी ने मैक्सिकन हैट पहन रखी थी तो किसी को परी के रूप में सजाया गया। एक डॉग स्केटबोर्ड पर अपनी स्किल्स दिखाता नजर आया तो एक फ्रेंच अंदाज में तैयार होकर पहुंचा। वहीं कई लोगों ने अपने दुलारे डॉगीज को मोतियों की माला, चमकीले जैकेट, रफल्स और अलग अलग रंग बिरंगे कॉस्ट्यूम में सजाया था। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में डॉग्स और उनके मालिक पहुंचे। इसका मकसद इंसानों और उनके वफादार दोस्तों के बीच के खास रिश्ते को सेलिब्रेट करना था।
8: Which the energy here is just incredible, as it always is when you have so many people who love dogs in one place. This is the fourth time we've come together for Paws on Parade in partnership with Bryant Park, and we really just couldn't ask for a better day, a better vibe, and a better community of dog lovers than we have here in New York City.
7: यहाँ पर सिर्फ सजे-धजे डॉग्स को देखना ही अहम नहीं था, बल्कि हर कोई अपने-अपने पेट्स

0: their apartment, and this is a great time for everyone to kind of come out and meet all the other people with dogs and have their dogs meet and have everyone have a good time and get out in the sun and enjoy the park.
1: पार्क में एक तरफ डॉगीज माहौल का मजा ले रहे थे तो दूसरी तरफ उनके मालिक इस पूरे माहौल को कैमरे में कैद कर रहे थे। इस दौरान पेट्स और उनके मालिकों के बीच बॉन्डिंग को देखकर एक बार फिर ये साबित हो गया कि उनके बीच का रिश्ता सिर्फ साथ रहने तक सीमित नहीं बल्कि ये दोस्ती प्यार और साथ का रिश्ता है। इस आयोजन में डॉग्स के साथ उनकी सुरक्षा और देखभाल से जुड़े संगठनों ने भी हिस्सा लिया। खासतौर से अमेरिकन एकेडमी ऑफ कैनाइन वाटर रेस्क्यू के प्रतिनिधि भी यहां मौजूद रहे। ये संस्था ऐसे डॉग्स को प्रशिक्षित करती है जो प्रोफेशनल लाइफगार्ड्स और वाटर रेस्क्यू टीमों की मदद कर सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे लगातार दर्शकों से अपील कर रहा है कि आप भी जीएनटी पर मनाए जा रहे हैं सो सबसे जुड़िए। इसके लिए आपको बस इतना सा करना है कि अपने घर पधारी का जनन का वीडियो हमें भेजना है, हम उन वीडियोस को दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। हमारे पास लगातार दर्शकों की वीडियोस आ रहे हैं। देखिए उत्तर प्रदेश के मेरठ से करण लोधी ने हमें गणेशोत्सव की तस्वीरें शेयर की है। घर में खूबसूरत पंडाल सजाकर बप्पा को विराजमान उन्होंने किया। भगवान गजानन की पगड़ी और वस्त्रों के साथ मोतियों की माला अत्यधिक शोभायमान नजर आ रही है। मंगल मूर्ति की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई। दूसरी तस्वीर देखिए उत्तर प्रदेश के लखनऊ से प्रतिभा शुक्ला ने हमें भेजी है। इको फ्रेंडली पप्पा की शानदार प्रतिमा को घर में विधि विधान के साथ स्थापित किया गया। आसन पर विराजमान भगवान गजानन को फल और मिष्ठान का भोग लगाया गया है। परिवार पूरे श्रद्धा भाव के साथ गणपति बप्पा की आरती कर रहा है।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
5: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
5: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।

0: किसी जन्म की तारीख वाले लोगों को विचित्र बीमारियां हो सकती हैं? कौन सी जन्म की तारीख वाले लोगों को बीमारियों का वहम होता है? और कौन सी जन्म की तारीख वाले लोगों के साथ दुर्घटनाएं ज्यादा होती हैं? आपकी जन्म की तारीख के अनुसार क्या है आपकी सेहत का हाल और क्या है सेहत को बेहतर करने के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली

0: नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: एवरेस्ट दिखा ला, सही दिखा सही लाल।
3: महाराष्ट्र के चंद्रपुर में सजा तुकुम के राजा का दरबार, श्रद्धालुओं के बीच आकर्षण का केंद्र बनी बप्पा की मनमोहक प्रतिमा, चावल दाल साबुदाना और मूंगफली के दानों से किया गया निर्माण।
0: अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: एवरेस्ट दिखा ला, सही दिखा सही लाल।
3: महाराष्ट्र के चंद्रपुर में सजा तुकुम के राजा का दरबार, श्रद्धालुओं के बीच आकर्षण का केंद्र बनी बप्पा की मनमोहक प्रतिमा, चावल दाल साबुदाना और मूंगफली के दानों से किया गया निर्माण। गुजरात के गोधरा में निकली गणेश लीला का रेस्क्यू, पहाड़ी से उतरते वक्त नदी के तेज बहाव में फंसी, सूचना के बाद चला गया रेस्क्यू ऑपरेशन। नेशनल पार्क से गांधी सागर में शिफ्ट हुई मादा चीता सीसी B2। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अभ्यारण में किया रिलीज, देश का दूसरा बड़ा चीता घर बना गांधी सागर। गोल्ड मेडल से बस एक कदम दूर है भारतीय महिला क्रिकेट टीम, एशियन गेम्स में बांग्लादेश को 114 रनों से हराया, शेफाली वर्मा ने 49 गेंदों में लगाई सेंचुरी। एशियन गेम्स में भारत को शूटिंग में मिला दूसरा सिल्वर मेडल, हेला वेनिल ने 10 मीटर एयर राइफल में किया कमाल, मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में भी पदक पक्का।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी सुरक्षा।
4: Come on, Jim Hall.

मशीन से। जिसने भी हथियार खरीदा उसके सामने पछताने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा। कम कीमत और सस्ती टेक्नोलॉजी के चक्कर में चीन से वेपन तो खरीद लिया गया, लेकिन वो जंग के मैदान में कितना कारगर है इसका पता अब उसके खरीदारों को हो रहा है। यानी कि चीन से डिफेंस डील करने वाले देश के सामने अब सर पीटने के अलावा दूसरा रास्ता नहीं बचा। ना तो चीन की मिसाइलें मंजिल तक पहुंच रही हैं, न ही उसके टैंक पराक्रम दिखा रहे हैं। चीन के मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम भी लाइव फायर के दौरान खुद तबाह हो चुके हैं। वहीं ऑपरेशन सिंदूर में चीन के एयर डिफेंस सिस्टम का फ्लॉप होना दुनिया ने देख ही लिया।

0: चीन की ड्यूप्लीकेसी के बारे में पूरी दुनिया जानती है और अब तो इसके बाकायदा सबूत मिलने शुरू हो गए हैं, यानी अब दुनिया देख भी रही है। दरअसल हाल ही में सऊदी अरब ने हूती विद्रोहियों पर हमला किया जिसमें उसने DF-15A का इस्तेमाल किया जो कि अपने टारगेट पर पहुंचने से पहले ही फट गई। और आपको ये भी बता दें कि ये वही DF-15A है जो सऊदी अरब ने चीन से ली थी।
1: सोशल मीडिया पर DF-15 मिसाइल के कुछ वीडियोस भी सामने आए हैं। इनमें ये मिसाइल एक रेगिस्तान में पड़ी दिख रही है और कुछ लोग इसे देखते और फिर धकेल कर इधर उधर करते नजर आ रहे हैं।

0: ये लोग हूती लड़ाके और उनके समर्थक बताए गए हैं जो गिरी हुई सऊदी मिसाइल का जायजा ले रहे हैं।
1: दरअसल DA-50 ने शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का बूस्ट रेंज है। अब हाल ही में विश्लेषकों ने जो सऊदी अरब की तरफ से यमन में हमला किया गया था वहीं से इसके कुछ अवशेष ढूंढे हैं, जिसके बाद और जिसके अध्ययन से ये पता चलता है कि ये चीनी निर्मित ही है।
0: कई रक्षा विशेषज्ञों का दावा है कि ये मिसाइल सऊदी अरब की रॉयल सऊदी स्ट्रेटेजिक मिसाइल फोर्स ने हूती ठिकानों पर दागी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक मिसाइल लक्ष्य से चूक गई और यमन के रेगिस्तान में जा गिरी।
1: अगर मिसाइल दागने की पुष्टि हो जाती है तो ये प्रमाणिक हो जाएगा कि सऊदी अरब ने पहली बार चीनी मिसाइल का इस्तेमाल किया है। हालांकि अभी तक ना तो यमन और ना ही चीन से इसके बारे में कोई भी आधिकारिक जानकारी सामने आई है। सऊदी अरब भी फिलहाल खामोश है।
0: दावा यह किया जा रहा है कि करीब 3 दशक में ये पहली बार हुआ है जब सऊदी फोर्स ने चीन से खरीदी गई DF-15A शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का युद्ध में इस्तेमाल किया है। विश्लेषक इस निष्कर्ष पर इसलिए पहुंचे क्योंकि हूतियों के पास DF-15A जैसी मिसाइल होने के कोई प्रमाण नहीं है। उनके शास्त्रागार में मुख्य रूप से ईरानी तकनीक वाली मिसाइलें और ड्रोन हैं। सऊदी अरब के पास पहले से चीन से खरीदी गई DF-3A और DF-21 जैसी मिसाइलें होने के रिपोर्ट्स लंबे समय से चल रही हैं। लेकिन सऊदी अरब ने DF-15A शॉर्ट रेंज मिसाइल प्रणाली भी चीन से खरीद रखी है। इसकी कोई आधिकारिक जानकारी पहले कभी सामने नहीं आई, इसीलिए कई विशेषज्ञों ने इसे सऊदी की गुप्त मिसाइल क्षमता का हिस्सा माना है। अगर ये सऊदी की मिसाइल थी तो इसका लक्ष्य चूकना सऊदी की गुप्त मिसाइल क्षमता पर सवाल खड़े करता है। साथ ही चीनी हथियारों की विश्वसनीयता पर भी चर्चा छिड़ गई है।
2: देखिए, सबसे पहले ये बात क्लियर है कि सऊदी अरबिया का जो मिसाइल प्रोग्राम है उसकी शुरुआत देखिए चाइना ने की थी, और इसी के तहत चाइना ने अपने तमाम मिसाइलों की जो सप्लाई है वो सऊदी अरबिया को की थी, जिसमें प्रमुख जो मिसाइल्स हैं वो हैं DF-3A और DF-21। ये दोनों मिसाइलें लगातार सऊदी अरबिया के पास बनी हुई है, जिसका वो टाइम टू टाइम इस्तेमाल करता है। जहां तक उसके दूसरी मिसाइल DF-15 अल्फा का सवाल है, जब हूतियों के ऊपर मिसाइल फायर की सऊदी अरब ने तो उसके जो रेमनेंट, उसके जो स्प्रिंटर थे, उससे पता लगा कि सऊदी अरबिया के पास DF-15 अल्फा मिसाइल भी है, जो कि एक बड़ा ही प्रोमिनेंट बैलिस्टिक मिसाइल है। तो इस तरीके के जब आप मिसाइल को फायर करते हैं तो दिखाता है कि आपकी इन्वेंट्री में ये मिसाइल है।
0: सऊदी चीन मिसाइल डील का इतिहास लगभग 40 साल पुराना है और बेहद गोपनीय रहा है। ये रक्षा इतिहास के सबसे दिलचस्प अध्यायों में से एक है, क्योंकि सऊदी अरब पारंपरिक रूप से अमेरिका का सबसे बड़ा हथियार खरीदार रहा है, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए उसने हमेशा चीन पर ही भरोसा किया है। 1980 के दशक के मध्य में जब सऊदी अरब को ईरान इराक युद्ध के दौरान अपनी सुरक्षा को खतरा महसूस हुआ तो उसने अमेरिका से बैलिस्टिक मिसाइलें मांगी। अमेरिका ने इसराइल के विरोध और मध्य पूर्व में हथियारों की होड़ बढ़ने के डर से सऊदी को मिसाइलें देने से मना कर दिया। इसके बाद सऊदी अरब के प्रिंस खालिद बिन सुल्तान, जिन्हें सऊदी मिसाइल प्रोग्राम का जनक कहा जाता है, उन्होंने 1985 में गुप्त रूप से चीन से संपर्क किया। दोनों देशों के बीच तब आधिकारिक राजनयिक संबंध भी नहीं थे। साल 1988 में ये खुलासा हुआ कि सऊदी अरब ने चीन से DF-3A इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल खरीदी है। ये चीन की एक परमाणु सक्षम मिसाइल थी, लेकिन सऊदी अरब को देने के लिए चीन ने इसमें बदलाव कर दिए और इसे सिर्फ कन्वेंशनल पेलोड यानी कि पारंपरिक उच्च विस्फोटक ले जाने लायक ही बना दिया। सऊदी अरब ने मिसाइलों को खरीदने के बाद करीब 26 साल तक दुनिया से इसे छिपा कर रखा और पहली बार 2014 की एक सैन्य परेड में इसे सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया गया।
2: देखिए, सबसे पहले सऊदी अरबिया अमेरिका का बहुत ही स्ट्रॉन्ग अलाई है, सऊदी अरेबिया में अमेरिका के तमाम मिलिट्री बेसिस हैं, लेकिन जहां तक मिलिट्री मिसाइल्स का सवाल है, उसने चाइना की तरफ रुख किया क्योंकि चाइना उसको एक सस्ती मिसाइल देता है, एक जो उसका कॉस्ट इफेक्टिवनेस होता है। और साथ में ये देखिए, 1980 के दशक में चाइना के सऊदी अरेबिया के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन हुए और वो इतने प्रगाढ़ हुए कि तमाम तरीके का इन्वेस्टमेंट चाइना ने किया। इसी के तहत उसने ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में मध्यस्थता की, सऊदी अरेबिया और सीरिया के बीच में मध्यस्थता की। तो ये शुरुआत उसकी 1980 में हुई थी, जिसके तहत उसने DF-3 अल्फा मिसाइल को सप्लाई किया और आज की डेट में वो अन्य तरीके की भी मिसाइलें सऊदी अरेबिया को दिया। तो ये ज्यादा हिस्ट्री में ना जाके ये रिसेंटली 80s के दशक का यह डेवलपमेंट।
0: DF-3 मिसाइलें बहुत पुरानी हैं, लिक्विड फ्यूल आधारित थी और उनकी सटीकता बेहद खराब थी, इसीलिए सऊदी अरब को अपनी रणनीतिक क्षमता को आधुनिक बनाने की जरूरत पड़ी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब ने साल 2007 में चीन के साथ एक और गुप्त समझौता किया और अधिक आधुनिक DF-21 मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें खरीदी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA को सऊदी और चीन के बीच DF-21 मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल सौदे की भनक लग गई थी, लेकिन तब उन्होंने ये सुनिश्चित कर लिया था कि ये मिसाइलें भी परमाणु हथियार ले जाने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ पारंपरिक हमलों के लिए ही मॉडिफाई की गई हैं। तो अमेरिका ने इस पर कोई कड़ा विरोध नहीं जताया।
1: हाल ही में यमन के मरी प्रांत में DF-15 ने कमलबा मिलने से इस बात की पुष्टि होती है कि सऊदी अरब चीनी मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि सऊदी अरब भले ही अभी तक इस बात से इनकार करता आया हो, लेकिन इससे एक और बात की पुष्टि होती है और वो ये कि डील का दायरा इससे कहीं ज्यादा बड़ा है।
0: पिछले कुछ वर्षों में अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया कि सऊदी अरब अब सिर्फ चीन से मिसाइलें खरीद नहीं रहा है बल्कि चीन की तकनीकी मदद से अपनी खुद की बैलिस्टिक मिसाइल भी विकसित कर रहा है।
2: देखिए, जहां तक सऊदी अरेबिया के इंडिजिनस डेवलपमेंट का सवाल है मिसाइल के फील्ड में, डेफिनेटली उसकी मदद चाइना कर रहा है और इसी के तहत सऊदी अरेबिया ने सॉलिड फ्यूल मिसाइल डेवलप कर लिया है। उसके यहाँ जो ये मिसाइल बन रही है उसका उस जगह का नाम है अल दवदामी, इस जगह पे उसका मिसाइल प्रोग्राम है और इसकी मदद लगातार चाइना ने की है। और अब जब से युद्ध की शुरुआत किया है उसमें जरूर सेटबैक लग सकता है, लेकिन इसके पहले जब युद्ध नहीं हो रहा था तो चाइना अपने इन्वेस्टमेंट मार्केट और तमाम तरीके के डिफेंस इक्विपमेंट का मार्केट उसने मिडिल ईस्ट को पकड़ा था। तो इसी के तहत लगातार उसने टेक्नोलॉजिकल नो हाउ और जो उसका रॉ मटेरियल है सऊदी अरेबिया को दिया, जिससे कि सऊदी अरेबिया की जो इंडिजिनस मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो आगे बढ़ा और साथ में उसने सॉलिड फ्यूल का मिसाइल डेवलप किया।
0: सऊदी अरब लंबे समय से यमन में हूतियों के खिलाफ हवाई हमले करता रहा है। बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल युद्ध की तीव्रता बढ़ाने के संकेत माने जाते हैं। मारीब क्षेत्र में हाल ही में लड़ाई तेज हुई है और दोनों पक्ष एक दूसरे पर हमले बढ़ा रहे हैं।
1: कम कीमत, मेड इन चाइना, लेकिन शर्तें कड़ी, ये वो तमाम ऐसी चीजें हैं जो चीन हर उस देश पर लगाता है जिसे वो अपने हथियार देता है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर चीन कभी नहीं करता है और इसी के साथ साथ चीन मेंटेनेंस का खर्चा भी बिल्कुल नहीं लेता, यानी जो भी देश हथियार खरीदेगा मेंटेनेंस के लिए उसको वापस चीन का दरवाजा खटखटाना होगा। लेकिन विशेषज्ञ ये कहते हैं कि चीनी हथियार इस वक्त कागजों पर भले ही पुख्ता नजर आ रहे हो, लेकिन रण क्षेत्र में ये पूरी तरह से फिसड्डी साबित हो रहे हैं।
0: ग्लोबल डिफेंस मार्केट में चीन खुद को अमेरिका और रूस के विकल्प के तौर पर पेश करता है। वास्तविक युद्ध में उसकी प्रमुख मिसाइलों का फेल होना चीन के हथियारों की विश्वसनीयता और उनकी तकनीकी गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े करता है। मेड इन चाइना के चक्कर में फंसे बांग्लादेश का हाल देख लीजिए। 9 सितंबर 2026 को चटगांव में फील्ड फायर अभ्यास के दौरान टाइप 59 टैंक में विस्फोट हो गया और जैसे ही टैंक से गोला दागा गया वो बैरल से बाहर निकलने के बजाय टैंक के भीतर ही ब्लास्ट कर गया। इस भीषण विस्फोट के कारण टैंक के क्रू मेंबर्स में 2 बांग्लादेशी जवानों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक वरिष्ठ अधिकारी गंभीर रूप से घायल हो गया।
1: विशेषज्ञों का मानना है कि भले ही तोप और इलेक्ट्रॉनिक्स नया कर दिया गया हो, लेकिन टैंक का मेटल वही पुराना है, यानी 50 साल पुराना, जिसका असर ये हो रहा है कि टैंक बड़े बड़े गोला बारूद को झेल ही नहीं पा रहा। एक बार फायर करने के बाद वो वापस टैंक के अंदर ही विस्फोट करता है। इसका एक जीता जागता उदाहरण हाल फिलहाल में मिला भी है।
2: देखिए टैंक T-59 जो टैंक है वो बहुत ही पुराना टैंक है, चाइनीज ओरिजिन का है। अगर आपने इसको मेंटेन नहीं किया, रिफर्बिश करके आप काम चलाते रहते हैं, तो समय के साथ हर एक इक्विपमेंट की उपयोगिता घटती जाती है, और वो भी ऐसे समय में जब आप उसको ट्रेनिंग पर्पसेस के लिए यूज कर रहे हैं, लगातार उसको अपग्रेड कर रहे हैं, और जो उसका मेटलर्जी है वो फेल होता है। देखिए जब ब्रीच प्रेमेच्योर होता है तो उसके कई रीजन होते हैं। एमिशन की भी वजह हो सकती है, जो प्रेशर ब्रीच में जनरेट हुआ उसको सस्टेन नहीं कर पाया, इसका मतलब मेटलर्जी उसकी खराब थी, या फिर उसके बैरल में कोई रेमनेंट रह गया, या बैरल क्लीन नहीं हुआ उसकी वजह से प्रीमेच्योर हुआ। तो वजह कुछ भी हो सकती है। जब इस तरीके के लगातार इंसिडेंसेस होते हैं तो बेसिक शक जाता है उसकी मेटलर्जी पे, क्या कितना प्रेशर जनरेट कर रहा है, या इरेटिक बिहेवियर ऑफ एमिशन, तो इन सारी चीजों को देखना पड़ेगा।
1: हादसे में शामिल टैंक चीन में बना टाइप 59 है, जिसका इस्तेमाल बांग्लादेश की सेना करती है। टैंक 59 चीन में बना एक पुराना मेन बैटल टैंक है। इसे चीन का पहला ऐसा टैंक भी माना जाता है जिसे बड़ी तादाद में बनाया गया था। बांग्लादेशी सेना के बेड़े में शामिल टाइप 59 दुर्जॉय टैंक मूल रूप से करीब 70 साल पुराना सोवियत डिजाइन है, जिसे चीन ने कॉपी करके बनाया था और बाद में बांग्लादेश को इसे अपग्रेड करके दे दिया। टाइप 59 सैन्य टैंक काफी पुराना है, लेकिन समय के साथ इसके कई नए वर्जन और अपग्रेड तैयार किए गए हैं। इनमें ज्यादा बेहतर तोप, फायर कंट्रोल सिस्टम, रात में देखने की सुविधा और टैंक की सुरक्षा बढ़ाने वाले उपकरण जोड़े गए हैं, लेकिन मूल संरचना पुरानी ही रही।
2: जो हादसे हुए T-59 के, आप कितना भी अपग्रेड कर दें लेकिन आप उसकी मेटलर्जी नहीं बदल पाएंगे। जो आयरन है, जो बैरल है 125 mm स्मूथ बोर, उसको आप रिप्लेस नहीं कर पाते। हालांकि जो टैंक है, जब नंबर ऑफ राउंड्स जितने वो फायर कर लेते हैं, उसकी EFC वैल्यू होती है, इक्विवेलेंट फुल चार्ज की वैल्यू होती है, उसमें कितना वियर एंड टियर हुआ, और उसका बैरल भी बदला जाता है, लेकिन उस मेटलर्जी को आप कैसे इंप्रूव करेंगे जो एक पर्टिकुलर तरीके से बनाई गई है, उस कितना प्रेशर जनरेट करा, एमिनिशन जो आप लोड करके फायर कर रहे हैं जब उसका प्रोपेलेंट बर्न होता है तो कितना प्रेशर जनरेट करता है, और क्या वो स्टील या मेटलर्जी उसको सस्टेन कर पा रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये एक आउटडेटेड इक्विपमेंट है, टैंक है।
1: चीनी टैंकों में सेफ्टी फीचर्स और मेटल की क्वालिटी हमेशा से सवालों के घेरे में रही है। जरा सी ओवरहीटिंग या फिर लो क्वालिटी गन बैरल की वजह से गोला अंदर ही ब्लास्ट हो जाता है। बांग्लादेश में हुए टैंक हादसे ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा और साथ ही साथ चीनी हथियारों की विश्वसनीयता पर भी अब सवाल खड़े हो गए हैं। लेकिन यहाँ बांग्लादेश की मजबूरी है, वो चीन के अलावा कहीं और जा नहीं सकता, क्योंकि 70% हथियार उसने चीन से ही लिए हैं। बांग्लादेश की सेना रक्षा उपकरणों के लिए बहुत बड़े पैमाने पर चीन पर निर्भर है। सीब्रियनी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट और रक्षा विशेषज्ञों की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश दुनिया में चीनी हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है। वो अपनी सैन्य जरूरतों का 72-74% हथियार अकेले चीन से आयात करता है। हाल के वर्षों में खासकर 2024-26 के बीच चीनी हथियारों में लगातार आ रही खराबियों, घटिया कलपुर्जों और चीनी कंपनियों की ओर से मरम्मत के लिए मांगी जाने वाली भारी भरकम कीमत के कारण बांग्लादेशी सेना में असंतोष बढ़ा है, और यही वजह है कि बांग्लादेश अब धीरे धीरे अपनी सैन्य निर्भरता को बांटने के लिए तुर्की और कुछ हद तक पश्चिमी देशों के विकल्पों की तरफ भी हाथ बढ़ा रहा है। चीन अपनी सेना के लिए नए और अपग्रेडेड हथियार बना रहा है, लेकिन ऐसे में जो पुराने हथियारों का जखीरा है वो काफी हद तक चीन के पास बचा हुआ है, जैसे कि टाइप 59 टैंक हो या फिर जेट्स हो। अब इन्हें चीनी कंपनियां थोड़ा अपग्रेड करके बांग्लादेश और अफ्रीकी देशों को कम कीमतों में बेच देती हैं, और यहीं से चीन मुनाफा भी कमा रहा है और दूसरे देशों को कर्जदार भी बना रहा है। बाकी उसके सैन्य उपकरणों पर जो विश्वसनीयता है वो तो दुनिया जानती ही। रक्षा विशेषज्ञ और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीनी हथियारों के नाकाम होने के पीछे कई वजह हैं।
0: बड़े परीक्षणों का अभाव, अमेरिकी और रूसी हथियारों के उलट चीनी हथियार निर्यात करने से पहले मुश्किल और वास्तविक युद्ध जैसी परिस्थितियों से नहीं गुजरते। दूसरा है गुणवत्ता पर मात्रा को प्राथमिकता। चीन का मेन फोकस हथियारों की विश्वसनीयता और लाइफ साइकिल के बजाय भारी मात्रा में सस्ते हथियार बाजार में उतारने पर है। तीसरा है घटिया पुर्जे और सर्विसिंग। चीनी कंपनियां बिक्री के बाद मेंटेनेंस सपोर्ट देने में नाकाम रहती हैं, जिसे खरीदार देश के पास खराब पुर्जों को बदलने का कोई और विकल्प नहीं बचता। सस्ते होने के कारण जो देश चीनी हथियारों के जाल में फंस रहे हैं, वो अब अंतर्राष्ट्रीय मोर्चों पर इन रक्षा सौदों को लेकर पछता रहे हैं और चीन की वैश्विक साख को इससे धक्का भी लगा है।
2: पूरे विश्व जानता है कि चाइनीज इक्विपमेंट या चाइनीज कोई भी प्रोडक्ट है उसकी रिलायबिलिटी नहीं होती, वो वन टाइम यूज होता है। आपने यूज किया यूज एंड थ्रो टेक्नोलॉजी, तो उसमें क्वालिटी कंट्रोल नहीं होता। बहुत बड़ा आप जो इन्वेस्टमेंट, जो इनपुट का इन्वेस्टमेंट है वो नहीं करते हैं। जब आप इसको डिफेंस के इक्विपमेंट में लागू करते हैं तो आपने मेटलर्जी हो गया, आप सस्ता लोहा, सस्ता मटेरियल, सस्ता एम्युनिशन, सस्ते एक्सप्लोसिव, इन सारी चीजों का अगर आप इस्तेमाल करेंगे सिर्फ इस वजह से कि आपको कॉस्ट कटिंग करना है, सिर्फ इस वजह से कि आपको मास प्रोडक्शन करना है, क्योंकि आप मैन्युफैक्चरिंग हब है, डिफेंस के फील्ड में आप आत्मनिर्भर हैं, तो इससे होता यह है कि आपकी क्वालिटी कंप्रोमाइज होती है। और जब वो डिफरेंट डिफरेंट एनवायरमेंट में, डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर में, डिफरेंट डिफरेंट टेरेन में जब उसका इस्तेमाल होता है तो कोई ना कोई हिस्से पुर्जे उसके फेल होते हैं।
0: दिसंबर 2025 में कंबोडिया थाईलैंड में संघर्ष के दौरान एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें दावा ये किया गया था कि चीन का हथियार कैसे युद्ध के मैदान में फ्लॉप साबित हो गया। वीडियो में दावा किया गया कि कंबोडियाई सैनिक जब थाईलैंड पर निशाना लगाने के लिए चीनी रॉकेट लॉन्च कर रहे थे तो उसमें ब्लास्ट हो गया, जिसकी चपेट में कई कंबोडियाई सैनिक आ गए। 8 सैनिकों की तो जान चली गई।
2: देखिए, जहां तक चाइनीज MLRS और 19B रॉकेट सिस्टम का सवाल है, जब इसको लॉन्च किया गया, फायर किया गया, तो ये वर्टिकली अब जाके स्प्लिट हो गया। कहने का मतलब ये है कि जब आपने फायरिंग किया तो इसका जो एमिनिशन है, जो मिसाइल का नोज है, जो सेंसर है, वो पहले से ही एक्टिवेट हो गया, या तो इतने तरीके से सस्टेन फायरिंग में वो इस चीज को बियर नहीं कर पाया, या फिर इतना हीट जनरेट हुआ विद इन द बैरल उसकी वजह से एक्सप्लोशन हुआ। तो चाहे किसी भी वजह से आपका प्रीमेच्योर एक्सप्लोशन हुआ हो, कंबोडियन आर्मी ने इसको सफर किया एट द टाइम ऑफ वॉर। आपको ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा जिसमें रिडंडेंसी हो, जिसमें आप जो रेट ऑफ फायर डिस्क्राइब करें उसको अगर मेंटेन करें तो किसी भी तरीके के हाथ से ना हो।
0: कंबोडिया की सेना में चीन से खरीदी गई MLRS टाइप 90B रॉकेट का इस्तेमाल होता है और इसी हथियार को इस्तेमाल थाईलैंड के खिलाफ किया जा रहा था। दरअसल कंबोडिया के साथ युद्ध में थाईलैंड भी चीन से खरीदे गए टैंकों का इस्तेमाल ही कर रहा था। ये टैंक थे VT-4। युद्ध के समय इसकी परीक्षा हुई तो ये फ्लॉप साबित हुआ। VT-4 टैंक का बैरल फट गया, जिससे इसके क्रू मेंबर्स घायल हो गए। हथियारों की ताकत और भरोसे की असली परीक्षा युद्ध के मैदान में होती है और रणभूमि में। चीन के हथियारों की विश्वसनीयता क्या है वो धीरे धीरे दुनिया देख रही है। कंबोडिया के साथ युद्ध में थाई सेना के VT-4 टैंक का बैरल फटना चीन के लिए शर्मनाक है। मेन गन के अलावा टैंक का फायर कंट्रोल से जुड़ा टारगेटिंग सिस्टम और उसका लेजर वार्निंग सिस्टम भी खराब हो गया। ये सिस्टम आधुनिक बख्तरबंद लड़ाई के लिए बहुत जरूरी है, खासकर टारगेट पहचानने, हमले की सटीकता और दुश्मन के लेजर हमले से चेतावनी के लिए।
2: देखिए, जहां तक टैंक टेक्नोलॉजी का सवाल है, उस जब VT-4 टैंक की हम बात करते हैं तो उसको भी काफी तरीके का सेटबैक लगा। मेरा मानना है कि जो मेंटेनेंस टैंक को चाहिए, जो आपको उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना है कि कितने राउंड उसने AP शॉट फायर किए, कितने उसने हीट एमिशन फायर किया, इन सब का रिकॉर्ड रखेंगे तो बेहतर होगा, जिससे कि आप मेटलर्जी कितना वियर एंड टियर हुआ इसको आप कैलकुलेट कर पाएंगे। और जहां तक उसके लेजर लॉकिंग सिस्टम का सवाल है, जहां तक उसके लॉकिंग सिस्टम का सवाल है, उसको भी आपको एक फुल प्रूफ रखना होगा। ये देखिए, टैंक को सर्वाइव करने के लिए ये सारे सिस्टम काम करने चाहिए। अगर लॉकिंग सिस्टम ही खराब हो जाएगा तो आप कैसे टारगेट को लॉक करके उसके ऊपर फायर करेंगे।
0: VT-4 एक मेन बैटल टैंक है, जिसे चीनी कंपनी नॉरिनको ने बनाया है। चीन ने इस टैंक को पाकिस्तान और थाईलैंड समेत कई देशों को एक्सपोर्ट किया। इस टैंक में 125 mm की स्मूथबोर गन, जो पारंपरिक गोला बारूद के साथ साथ गन से लॉन्च होने वाली गाइडेड प्रोजेक्टाइल भी फायर कर सकती है। इसके साथ ही टैंक में एक डिजिटल फायर कंट्रोल सिस्टम और लेजर वार्निंग रिसीवर जैसे डिफेंसिव सिस्टम भी है, जो युद्ध के दौरान फेल हो गया था। मौजूदा समय में थाई सेना में 62 BT-4 टैंक ऑपरेशन है। इस टैंक का इस्तेमाल पाकिस्तानी सेना भी करती है।
1: एक एक करके चीन के तमाम हथियार फिसड्डी साबित हो रहे। कागजों पर भले ही ये कितने मजबूत हो, लेकिन रणक्षेत्र में ये बिल्कुल जीरो है। और इसका जीता जागता सबूत है पाकिस्तान द्वारा हाल ही में भारत पर किया गया हमला, जहां पर पाकिस्तान ने ड्रोन्स और मिसाइलें दागी थी, जो पूरी तरह से फिसड्डी साबित हुई है और ये पूरी दुनिया ने देखा भी है।
0: चीन जो खुद अपने तैयार किए गए एयर डिफेंस सिस्टम पर भरोसा नहीं करता है, जिसने अपनी सुरक्षा के लिए खुद रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीद रखा है, उसके यहाँ तैयार एयर डिफेंस सिस्टम पर पाकिस्तान इतरा रहा था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना के पराक्रम के सामने चीन से खरीदे गए HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम की एक नहीं चली। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान के लाहौर में तैनात चीन में बना HQ-9 एयर डिफेंस तबाह कर दिया।
1: पाकिस्तान ने 5 साल पहले चीन के साथ HQ-9 की डील की थी। अब चीन और पाकिस्तान दोनों इस बात का दावा करते हैं कि HQ-9 सीधे रूस के S-400 को टक्कर देता है। अब ये टक्कर कितनी दी गई है, इसका सिर्फ भारत ने ट्रेलर दिखाया है और पाकिस्तान खुद ब खुद पीछे चला गया।
0: चीन के हथियारों की खोखली ताकत को जानने के बावजूद पाकिस्तान चीन से सबसे ज्यादा हथियार खरीदता है। इसके पीछे पाकिस्तान की मजबूरी भी है। वो चीन के कर्ज के जाल में इस कदर फंस चुका है कि उसके पास कोई और विकल्प बचा ही नहीं है। लिहाजा चीन जो भी करता है, पाकिस्तान उसे सर झुकाकर कबूल करता है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के आंकड़ों के मुताबिक साल 2020 से 2024 के बीच में चीन ने पाकिस्तान के 81% आयातित हथियारों की आपूर्ति की है। 2020 से 24 से और 2015 से 19 की तुलना में देखा जाए तो पाकिस्तान ने हथियारों के आयात में 61% की बढ़ोतरी की है। आंकड़ों से साफ है कि चीन पाकिस्तान पर मेहरबान नहीं, बल्कि पाकिस्तान को लूटने खसोटने के लिए अपने कबाड़ हथियारों से थोप रहा है।
2: चाइना लगातार पाकिस्तान को एक टेस्ट बेड मानता है। उसने अपने BRI और CPEC के तरह का इन्वेस्टमेंट करके चाइना ने पूरी तरीके से पाकिस्तान को गुलाम बना रखा है। तमाम तरीके की जो मिलिट्री एड है, तमाम तरीके के एयर डिफेंस, तमाम तरीके के रॉकेट, मिसाइल, टैंक आज की डेट में वो पाकिस्तान को देता है। इसलिए देता है कि जैसे विश्व में दिखा सके कि पाकिस्तान आर्मी इसका इस्तेमाल कर रही है, इसका बखूबी हिंदुस्तान के बरखिलाफ उसने उसका डिप्लॉयमेंट कर रखा है, उसका ऑपरेशनल रेडीनेस 100% है और इसके तहत वो अन्य देशों को अपना सामान भेज सके।
1: रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे।
7: तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: गुड न्यूज टुडे लगातार दर्शकों से अपील कर रहा है कि आप भी जीएनटी पर मनाया जा रहे इस उत्सव से जुड़िए। इसके लिए बस आपको इतना सा करना है कि अपने घर में पधारे गजानन का वीडियो बनाकर हमें भेज देना है, हम उन वीडियोस को दुनिया तक पहुंचाएंगे। हमारे पास लगातार दर्शकों की वीडियोस आ रही हैं। राजस्थान के झालावाड़ से महक भावसार ने हमें गणेशोत्सव की तस्वीरें भेजी है। यहाँ गणेश पंडाल को हिमालय की बर्फीली वादियों की थीम पर सजाया गया है। ऊंची बर्फीली चोटियों पर उनके बीच पप्पा का आसन लगाया गया है। गजानन के पीछे देवाधिदेव महादेव की तस्वीर भी लगाई गई है। सुगंधित पुष्पों की माला धारण किए विधि विधान से पप्पा की पूजा अर्चना की जा रही है। दूसरी तस्वीर देखिए, गुजरात के राजकोट से निकल कर आ रही है, जहां पर अल्पना जड़ेजा के घर पर पप्पा के पंडाल को अलग ही थीम दी गई है। बादलों पर भगवान गजानन का सिंहासन सजाया गया है, साथ ही फूल मालाओं से मंगल मूर्ति के दरबार को और ज्यादा सुसज्जित किया गया है। सुगंधित पुष्पों की माला देखने को मिल रही है।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
2: कौन सी जन्म की तारीख वाले लोगों को विचित्र बीमारियां हो सकती हैं? कौन सी जन्म की तारीख वाले लोगों को बीमारियों का वहम होता है? और कौन सी जन्म की तारीख वाले लोगों के साथ दुर्घटनाएं ज्यादा होती हैं? आपकी जन्म की तारीख के अनुसार क्या है आपकी सेहत का हाल और क्या है सेहत को बेहतर करने के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
1: महाराष्ट्र के चंद्रपुर में सजा तुकुम के राजा का दरबार श्रद्धालुओं के बीच आकर्षण का केंद्र बनी बप्पा की मनमोहक प्रतिमा। चावल, दाल, साबूदाना और मूंगफली के दोनों से किया गया निर्माण। गणेशोत्सव के दौरान जालना में सजा बप्पा का अनोखा पंडाल, विघ्नहर्ता की पूजा अर्चना के साथ ही यहां हो रहे हैं रामायण के दर्शन। संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के प्राण बचाते नजर आ रहे हैं हनुमान। गुजरात के गोधरा में निकली गणेश प्रतिमा विसर्जन की भव्य शोभा यात्रा, 1000 से ज्यादा मूर्तियों को विधिवत दी गई विदाई। ढोल नगाड़ों के साथ गूंजे गणपति बप्पा मोरिया के जयकारे। राजस्थान के उदयपुर में नारायण सेवा संस्थान ने सामूहिक विवाह समारोह का किया आयोजन। शादी के पवित्र बंधन में बंधे 50 गरीब और दिव्यांग जोड़े नव विवाहितों को उपहार में दिए जरूरी सामान। उत्तराखंड के ऋषिकेश में एसडीआरएफ टीम ने किया महिला का रेस्क्यू। पहाड़ी से उतरते वक्त नदी में तेज बहाव में फंसी, सूचना के बाद चला गया रेस्क्यू ऑपरेशन। पूनो नेशनल पार्क से गांधी सागर में शिफ्ट हुई मादा चीता CCB2। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अभयारण्य में किया रिलीज। देश का दूसरा बड़ा चीता घर बना गांधी सागर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
1: अमरावती में गणेशोत्सव के दौरान बप्पा का श्री कृष्ण रूप और रुक्मिणी हरण की जीवंत लीला बनी आकर्षण का मुख्य केंद्र। मान्यता के अनुसार भगवान कृष्ण ने यहीं से रुक्मिणी का किया था हरण। इसी धार्मिक और पौराणिक प्रसंग को गणेश प्रतिमा की कलात्मक प्रस्तुति के साथ पेश किया गया। प्रतिमा को देखने के लिए दूर से आ रहे हैं बप्पा के भक्त, प्रतिमा के सामने रुक रुक कर रहे हैं दर्शन। श्रीनगर में धार्मिक उत्साह और आदर के साथ पारंपरिक गणेश प्रतिमा विसर्जन कार्यक्रम का आयोजन, बड़ी संख्या में शामिल हुए बप्पा के भक्त। विसर्जन से पहले निकाली गई बप्पा की शोभा यात्रा, लोगों ने लिया बप्पा का आशीर्वाद। श्री गणेश घाट पर विस्ताता नदी के पवित्र जल में प्रतिमा की हुई विसर्जन। पंचमहल में 6 दिन की पूजा के बाद पूरे भक्ति भाव के साथ किया गया बप्पा की प्रतिमा का विसर्जन। छोटी बड़ी सभी तरीके लगभग 1000 प्रतिमाओं का विसर्जन। श्रद्धालुओं ने पूरे उत्साह के साथ गणपति बप्पा मोरिया अगले बरस तू जल्दी आके जयकारों के साथ बप्पा को बधाई दी। ढोलकाड़ों डीजे और गुलाल के साथ शहर की सड़कों पर भव्य शोभा यात्राएं निकाली गई। शोभा यात्रा के दौरान अचानक बदल गया मौसम का मिजाज, मूसलाधार बारिश ने गणेश भक्तों के उत्साह को और बढ़ाया। पूरे शहर में बप्पा की शोभा यात्रा में देखा भक्तों का हुजूम, नम आंखों से विदाई। रांची में झारखंड के मंत्री संजय सेठ ने 7 दिन की पूजा उपासना के बाद पूरे भक्तिभाव के साथ बप्पा प्रतिमा का विसर्जन किया। श्रीनगर में भी धार्मिक उत्साह और भक्तिभाव से किया गया गणेश प्रतिमा का विसर्जन। विसर्जन से पहले निकाली गई बप्पा की शोभा यात्रा, भक्ति में डूबे नजर आए बप्पा के भक्त। ऐतिहासिक गणपत्यार मंदिर में की गई थी बप्पा की 7 दिन की साधना। 7 दिन तक बड़ी संख्या में बप्पा से आशीर्वाद लेने पहुंचे भक्त। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में सजा तुकुम के राजा का दरबार, चावल दाल साबुदाना और मूंगफली के दान से किया गया श्रृंगार। सूरत में गांव थीम पर बना गणेश पंडाल बना आकर्षण का मुख्य केंद्र। बप्पा के पंडाल को भक्तों ने नम आंखों से हैप्पी क्लब में विराजमान किया। पंडाल में बनाया गया है बप्पा का कमरा, यहां पर गांव में इस्तेमाल होने वाली हर एक चीज उपलब्ध। पंडाल में प्राकृतिक वातावरण के बीच स्थापित की गई है बप्पा की छोटी प्रतिमा, साथ ही साथ ऋषि मुनियों की प्रतिमाएं भी लगाई गई। इस पंडाल को बनाने के लिए आयोजकों को 6 महीने का समय लगा, हर एक घर से पुरानी वस्तुओं को जुड़ाकर बनाया गया। पुणे के राजगढ़ गांव महागणपति मंदिर में गणेशोत्सव की धूम, ड्रोन कैमरों से हुआ अद्भुत नजारा कायद। गणेशोत्सव के चलते राजगढ़ गांव में भी रंग बिरंगी रोशनी का अद्भुत दृश्य। राजगढ़ गांव महागणपति मंदिर में हर साल होता है भव्य आयोजन, दूर दूर से दर्शन करने के लिए पहुंचते भक्त। अमरावती के बुधवार वारा में खाटू श्याम मंदिर की थीम पर गणेश पंडाल में सजाई गई भव्य प्रतिमा। बप्पा के साथ खाटू श्याम जी के भी दर्शन करने के लिए भक्तों में उत्साह जबरदस्त, बड़ी संख्या में पहुंच रहे भक्त। भारतीय मैंस हॉकी टीम की एशियन गेम्स में धमाकेदार आगाज हुआ, इंडोनेशिया को 13-1 से हराया। दिलप्रीत सिंह के 4 गोल की मदद से भारतीय मैंस हॉकी टीम ने इंडोनेशिया के खिलाफ 13-1 से दमदार जीत हासिल की। पूरे मैच में सुखजीत और दिलप्रीत में बेहतरीन जुगलबंदी देखने को मिली। इस जीत के साथ भारतीय टीम ने एशियन गेम्स में धमाकेदार आगाज किया। 47वें मिनट में युगराज ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदल दिया और एक मिनट बाद ही सुखजीत ने अपना दूसरा फील्ड गोल किया। भारत मंगलवार को श्रीलंका के खिलाफ अपना अगला मैच खेलने जा रहा है। इंडोनेशिया को हराने के बाद भारतीय हॉकी टीम के हौसले बुलंद। 20वें एशियन गेम्स के पहले दिन ही इंडियन महिला टीम ने किया कमाल, बांग्लादेश को 114 रनों से हराया। एशियन गेम्स के फिनाले में भारत ने बनाई जगह, 22 सितंबर को श्रीलंका के खिलाफ खेलेगा मैच। टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 195 रन बनाए, पीछा करते हुए बांग्लादेश की पूरी टीम 81 रनों पर ढेर। शेफाली वर्मा ने महिला T20 में बनाया सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड, 49 गेंद में लगाई सेंचुरी। महिला T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में शेफाली वर्मा सबसे ज्यादा सिक्स लगाने वाली बल्लेबाज बन गए, उनके नाम 102 छक्के। एशियन गेम्स 2026 का आज पहला दिन, कई खेलों के मेडल पर भारत की नजर। एशियन गेम्स में भारत को मिला पहला मेडल, 10 मीटर एयर राइफल की महिला टीम ने जीता सिल्वर। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में भारत के लिए अच्छी खबर, सुचिका ने सेमीफाइनल्स में प्रवेश किया। एशियन गेम्स में भारत को शूटिंग में मिला दूसरा सिल्वर, एलावेनिया ने 10 मीटर एयर राइफल में जीता सिल्वर। देश के लिए एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल जीतने वाली सोनम के घर जश्न का माहौल। पौली में चल रहे भारत अमेरिका युद्ध अभ्यास में भारतीय सेना के साहसी और जांबाज मिलिट्री डॉग्स ने किया शानदार प्रदर्शन। विशेष अभियानों के दौरान सैनिकों की सहायता में प्रशिक्षित सैन्य डॉग्स ने रस्सियों से उतरने जैसे अभ्यासों में भाग लिया। प्रशिक्षण में मिलिट्री डॉग्स के K9 राइस, विक्टर, जैक और राउडी शामिल। युद्धाभ्यास 2026 में सेना के इन डॉग्स की भागीदारी सेना के जवानों, उच्च प्रशिक्षित जानवरों और उनके प्रशिक्षकों के बीच घनिष्ठ समन्वय को उजागर किया। मेरठ में एयर शो आज उसका दूसरा और आखिरी दिन, सूर्य किरण एरोबेटिक टीम नॉन हॉक MK-132 विमान से आसमान में दिखाया हैरतअंगेज करतब। जोधपुर के एयरफोर्स स्टेशन से सवारी को भारतीय एयर चीफ मार्शल और जापान की सेना प्रमुखों ने स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस में उड़ान भरी। वीर गर्जन सेना अभ्यास के दौरान दोनों देशों के प्रमुखों ने स्वदेशी तेजस में भरी उड़ान। जापानीज एयर चीफ को स्वदेशी तेजस लड़ाकू विमान की क्षमताओं, आधुनिक प्रणालियों और इसकी मारक क्षमता से कराया रूबरू। दोनों एयर चीफ ने एयरफील्ड के ऊपर फ्लाईपास किया, इसके बाद एयरबेस पर सुरक्षित लैंडिंग की। भारत जापान के बीच चल रहे युद्धाभ्यास की 9 सितंबर को ही शुरुआत, 22 सितंबर तक चलेगा युद्धाभ्यास। पुरुलिया में अचानक रुक, मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का काफिला, सैनिक स्कूल के कैडेट से मुलाकात। मुख्यमंत्री ने सैनिक स्कूल पुरुलिया को राज्य सरकार की ओर से हर संभव सहयोग का भरोसा जताया। ऋषिकेश में राम झूला के पास नदी में फंसी महिला को SDRF की टीम ने बाहर निकाला। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर में पूजा अर्चना की। महसाणा में खाद्य विभाग की बड़ी छापेमारी, सौंफ की बोरियों में मिलाया जा रहा था रंगा, फूड सेफ्टी ऑफिसर ने सैंपल लेकर कानूनी कार्रवाई की। कुरो नेशनल पार्क से गांधी सागर में शिफ्ट हुई मादा चीता CCP2। पुरुलिया में एयरपोर्ट से उद्योग तक विकास का प्लान तैयार, महेंदु अधिकारी ने 1,00,000 करोड़ निवेश का दावा किया। पंजाब का बुजुर्ग रास्ता भटक कर पहुंचा बिहार। जेंजी ने चैट जीपीटी की मदद से परिवार से मिलाया। पंजाब सरकार की तीर्थ यात्रा योजना के तहत अमृतसर गया था बुजुर्ग, लेकिन गलत ट्रेन में चढ़ गया। बुजुर्ग को अपने गांव का नाम था याद, युवक ने चैट जीपीटी की मदद से गांव का नाम पूछ कर बुजुर्ग को उनके गांव तक पहुंचाया। उदयपुर में नारायण सेवा संस्थान के 47वें सामूहिक विवाह समारोह में 50 दिव्यांग जोड़ों के लिए सात फेरे, देश भर से पहुंचे वर वधु। उन्नीस और 20 सितंबर को आयोजित दो दिवसीय समारोह में वरमाला, महिला संगीत, भजन कीर्तन और विदाई। दो दिवसीय समारोह के समापन पर संत महात्माओं, समाजसेवियों, जनप्रतिनिधियों, देश विदेश से आए अतिथियों ने शिरकत की। जूनागढ़ में गिरनार आत्मेश्वर के पास 35 यात्रियों का रेस्क्यू, तेज बारिश के चलते नदी के दूसरे किनारे पर फंस गए थे 35 यात्री। अयोध्या में 14 कोसी परिक्रमा मार्ग के चौड़ीकरण कार्य को अंतिम रूप देने की कवायद, इस चौड़ीकरण के रास्ते में आ रहे कई भवनों को हटाएगा। चित्तौड़गढ़ श्री सांवलिया सेठ मंदिर में दिखे समर्पण की अद्भुत मिसाल, व्यापारी ने करीब 1 किलो 200 ग्राम चांदी से बना सीमेंट प्लांट मॉडल अर्पित किया। भगवान को अर्पित किए गए सीमेंट प्लांट का मॉडल करीब 2.5 लाख रुपए कीमत। अंबाजी में भादरवी महामेला आज से हो गया शुरू, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने रथ खींचकर उद्घाटन किया। भादरवी महामेला में दिखा शक्ति, भक्ति और आस्था का संगम, 7 दिनों तक धूमधाम से जारी रहेगा उत्सव। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड की तैयारियां लगभग पूरी, 22 सितंबर को होगा आयोजन। जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस पर निकाली गई रैली, लोगों ने विश्व शांति की प्रार्थना की। हैदराबाद में नशा मुक्ति को लेकर चलाया गया अभियान, साइकिल राइडिंग से लोगों को किया गया जागरूक। तमिलनाडु के थूथुकुडी में चेथराई उत्सव की धूम, पारंपरिक बैलगाड़ी दौड़ का आयोजन। बैलगाड़ी दौड़ में हिस्सा लेने के लिए दूर दूर से पहुंचे प्रतियोगी, बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। राजौरी के सरकारी आईटीआई की लोगों को रोजगार देने की अच्छी पहल, छात्रों को दी जा रही है वोकेशनल ट्रेनिंग। म्यूनिख में ऑक्टोबर फेस्ट में वार्षिक पारंपरिक पोशाक परेड का आयोजन किया गया, पारंपरिक लिबास में नजर आए लोग। परेड का नेतृत्व घोड़े पर सवार म्यूनिक के बच्चे, म्यूनिक के राष्ट्रीय प्रतीक के मानवीकरण। अक्टूबर फेस्ट स्टैंड में लोगों ने पारंपरिक व्यंजनों का आनंद लिया, नाच गाकर मनाई खुशी। जर्मनी में हर साल इस फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है, बड़ी संख्या में पर्व मनाने विदेश से भी पहुंचते हैं लोग। 19 सितंबर से शुरू हुआ यह पर्व 4 अक्टूबर तक चलेगा, पिछले साल इसमें 65 लाख आगंतुक शामिल हुए थे। चीन में बेड ऑटम फेस्टिवल की तैयारियां जोर शोर से चल रही है, म्यूनिक केक का निर्माता ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए नए नए रचनात्मक स्वाद पेश कर रहे हैं। क- कमल के आकार की पेस्ट्री से लेकर स्टर्जन मछली से भरे हुए मून केक। उत्तर पश्चिमी चीन के निंगजिया में हुई स्वायत्त क्षेत्र में पारंपरिक चीनी चिकित्सा की सामग्री से बने मून केक में बहुत लोकप्रिय। पांचवें ग्लोबल डिजिटल ट्रेड एक्सपो से पहले एक रोबोट बना दवा विक्रेता। कंपनी ने इस सिस्टम को चीन का पहला रोबोटिक समाधान बताया जिसे वास्तविक खुदरा फार्मेसियों में तैनात किया जा सकता है। चीन के हेनान प्रांत में 12वीं चीन एक्रोबैटिक्स गोल्डन नेशनल अवार्ड का भव्य समापन। कलाकारों ने हवाई छलांग, कलाबाजी और रोमांचक का करतब दिखाया। दस से ज्यादा कलाकारों ने मानव पिरामिड बनाते हुए एक लंबी रस्सी को कूदकर पार किया। चीन ने पर्वतीय संरक्षण के एक महत्वपूर्ण प्रयास के तहत 20 कलगीदार आइबिस पक्षियों को छोड़ा। इन 20 कलगीदार आइबिस पक्षियों का चयन उनके उड़ने की क्षमता के आधार पर किया गया। इंडोनेशिया रेस्क्यू टीम ने जावा सागर में डूबे यात्री जहाज के बलबे से एक और शख्स को बाहर निकाला। शख्स को एयरलिफ्ट करके अस्पताल में भर्ती कराया गया। अधिकारियों ने बताया कि अब तक 100 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है। बाकी लापता लोगों की अभी भी तलाश जारी है। डूबे हुए जहाज को खोजने का प्रयास तेज। पूर्वी चीन के नानजिंग में खिले गुलाबी मूली घास के विशाल मैदान। गुलाबी घास के मैदान बने आकर्षण का मुख्य केंद्र। कृषि, संस्कृति और पर्यटन के नजरिए से महत्वपूर्ण। चीन में शंघाई युयुआन मॉल और पंड फाइनेंस सेंटर में कल्चरल हेरिटेज ग्रांट युयुआन म्यूजिक सीजन का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम के लिए पहली बार बनाया गया वाटर स्टेज जहां पर एक के बाद एक पारंपरिक ओपेरा प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम में कई संगीतमय प्रस्तुतियों का भी आयोजन किया गया। लोक कलाकारों ने पेश की एक से बढ़कर एक शानदार प्रस्तुति। आयोजन में जगमगाती लालटेन भी चार चांद लगाते हुए नजर आई। चंद्रमा की थीम पर आधारित यह लालटेन आगामी मध्य शरद उत्सव का जश्न। हर साल इस कार्यक्रम में लोक कलाकारों का अद्भुत आमंत्रण देखने को मिलता है।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है।

0: कौन सी जन्म की तारीख वाले लोगों को विचित्र बीमारियां हो सकती हैं? कौन सी जन्म की तारीख वाले लोगों को बीमारियों का वहम होता है? और कौन सी जन्म की तारीख वाले लोगों के साथ दुर्घटनाएं ज्यादा होती हैं? आपकी जन्म की तारीख के अनुसार क्या है आपकी सेहत का हाल और क्या है सेहत को बेहतर करने के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: गुड न्यूज टुडे लगातार दर्शकों से अपील कर रहा है कि आप भी जीएनटी पर मनाए जा रहे उत्सव से जुड़ जाइए। इसके लिए बस आपको इतना सा करना है कि आप अपने घर पर पधारे गजानन का वीडियो आपको बनाना है और हमें भेज देना है, हम उन वीडियोस को दुनिया तक पहुंचाएंगे। हमारे पास लगातार दर्शकों के वीडियोज पहुंच रहे हैं। देखिए उत्तर प्रदेश के जालौन से शशांक सोनी ने गणेशोत्सव की तस्वीरें शेयर की हैं। घर में एक शानदार पंडाल सजाकर बप्पा की स्थापना उन्होंने की। ऊंचे आसन पर विराजमान सुंदर पुष्पों की माला आप देख सकते हैं। बप्पा के पीछे महादेव की तस्वीर भी नजर आ रही है। यहाँ पर विधि विधान से भगवान गजानन की आराधना की जा रही है। वहीं पर देखिए दूसरी तस्वीर गुजरात के जामनगर से निकलकर आई है, जहां पर वीरेश मेहता ने घर के मंदिर के पास बप्पा की अनुपम प्रतिमा स्थापित की गई और पूरी चौकी को सुंदर फूलों से सजाया गया है। बप्पा सुगंधित पुष्पों की माला धारण किए हुए हैं। परिवार विधिवत विघ्नहर्ता की पूजा अर्चना कर रहे हैं। देखिए डॉक्टर संजय शर्मा ने हमें मुंबई से गणेशोत्सव का वीडियो शेयर किया है। कैलाश पर्वत की थीम पर बप्पा की स्थापना की गई, साथ में बाबा केदारनाथ मंदिर भी साफ तौर पर दर्शाया गया है। बाल गणेश को ऊंचे आसन पर स्थापित किया गया है, सुंदर फूलों से श्रृंगार किया गया है, साथ ही साथ बप्पा को मिष्ठान का भोग भी लगाया गया है। वहीं पर दूसरी तस्वीर छत्तीसगढ़ के छुई खदान से शैलेश महोबिया ने भेजी और लाल रंग की पगड़ी के साथ लाल रंग के वस्त्रों में बप्पा के अनुपम दर्शन हो रहे हैं। बाल गणेश अपने वाहन मूसक को भी गोद में बिठाए हुए हैं। बप्पा को सुंदर पुष्प अर्पित किए गए हैं, साथ ही साथ पंडाल में अखंड ज्योति प्रज्वलित की गई है।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: Good news today.

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: एवरेस्ट दिखा लाल, सही दिखा सही लाल।
3: महाराष्ट्र के चंद्रपुर में सजा तुकुम के राजा का दरबार, श्रद्धालुओं के बीच आकर्षण का केंद्र बनी पप्पा की मनमोहक प्रतिमा, चावल दाल साबूदाना और मूंगफली के दानों से किया गया निर्माण। गणेशोत्सव के दौरान चालना में सजा पप्पा का अनोखा पंडाल, विघ्नहर्ता की पूजा अर्चना के साथ यहां हो रहे हैं रामायण के दर्शन, संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के प्राण बचाते नजर आ रहे हनुमान। गुजरात के गोधरा में निकली गणेश प्रतिमा विसर्जन की भव्य शोभा यात्रा, 1000 से ज्यादा मूर्तियों को विधिवत की गई विदाई, ढोल नगाड़ों के साथ गूंजे गणपति बप्पा मोरिया के जयकारे।

राजस्थान जोधपुर में नारायण सेवा संस्थान ने सामूहिक विवाह समारोह का किया आयोजन। शादी के पवित्र बंधन में बंधे 50 गरीब और दिव्यांग जोड़े नवविवाहितों को उपहार में दिए गए जरूरी सामान। उत्तराखंड के ऋषिकेश में SDRF टीम ने किया महिला का रेस्क्यू। पहाड़ी से उतरते वक्त नदी के तेज बहाव में फंसी, सूचना के बाद चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। नेशनल पार्क से गांधी सागर में शिफ्ट हुई मादा चीता CCP2। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अभ्यारण्य में किया रिलीज। देश का दूसरा बड़ा चीता घर बना गांधी सागर में।

0: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस बेहद खास शो गुड लक टुडे में। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत स्वागत है आपका।
1: नमस्कार।
0: तो आज के इस खास शो में गुड लक टुडे के इस एपिसोड में हम जानने वाले हैं कि आपकी जन्म की तारीख के अनुसार आपकी अच्छी सेहत के लिए आप कौन से उपाय कर सकते हैं जिनसे आपकी सेहत बेहतर हो जाए। लेकिन उससे पहले सबसे पहले पंडित जी से जान लेंगे आज का गुड लक मंत्र क्या है।
1: अगर आप कूड़े में या सड़क पर अन्न फेंकते हैं, भोजन फेंकते हैं, तो ये महापाप है। ऐसा करने से आपको जीवन में बड़े आर्थिक नुकसान का, धन की बड़ी हानि का सामना करना पड़ेगा।
0: तो चलिए सबसे पहले पंडित जी से जान लेंगे कि 21 सितंबर 2026 यानी कि सोमवार का पंचांग क्या है।
1: दिनांक 21 सितंबर 2026 दिन सोमवार, तिथि है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि, रात के 8 बजे तक। नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। प्रातः 11:15 तक राहु काल का समय, प्रातः 7:30 से लगभग 9 बजे तक पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है। लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
0: और चलिए अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं कि आपके जन्म की तारीख के अनुसार कौन से उपाय आप अपनाकर अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं 1, 10, 19 और 28 तारीख से। अगर आपका जन्मदिन इन दिनों पर पड़ता है तो आप कौन से उपाय कर सकते हैं, पंडित जी से ये जान लेते हैं।
1: जी, हम आपको आज बता रहे हैं कि आपकी जन्म की तारीख के अनुसार आपका स्वास्थ्य कैसा रह सकता है और बेहतर स्वास्थ्य के लिए आपको कौन से उपाय करने चाहिए। अगर आपका जन्मदिन किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को है तो आपका स्वास्थ्य कैसा है, ये होता है अंक 1। और अंक 1 सूर्य की ऊर्जा से भरा हुआ है। 1 अंक वालों का स्वास्थ्य सामान्यतः उत्तम रहता है, फिर भी इनको हड्डियों, हृदय और आंखों की समस्या का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, खास तौर से हड्डियों की समस्या का। अगर 1 अंक वाले नियमित रूप से सूर्य देव की उपासना करें, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सूर्य मंत्र का जप करें तो इनका स्वास्थ्य हमेशा बेहतर होगा।
0: और चलिए वक्त हो चला है जानने का कि अगर आपका जन्मदिन 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख और 29 तारीख को पड़ता है तो आपको क्या कुछ उपाय करने चाहिए जिससे आपकी जो सेहत है वो बेहतर हो सके।
1: अब बात करते हैं अंक दो की। अगर आपका जन्मदिन किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को हो तो आपका अंक हो गया 2। 2 अंक में चंद्रमा की कोमलता और चंद्रमा की संवेदनशीलता सेंसिटिविटी भरी रहती है। 2 अंक वालों को सांस, सर्दी जुकाम और हार्मोन्स की समस्या हो सकती है। कभी कभी इनको भावनात्मक और मानसिक समस्या भी काफी परेशान करती है। 2 अंक वालों की ज्यादातर दिक्कतें मौसम बदलने पर आती हैं और मेंटली इमोशनली ये ज्यादा परेशान होते हैं। अगर 2 अंक वाले नियमित रूप से शिव जी की उपासना करें, शिव जी को जल चढ़ाएं और नमः शिवाय का नियमित रूप से अगर जप करें तो इनके लिए बहुत बेहतर होगा।
0: और अब वक्त हो चला है मेष, वृषभ और मिथुन राशि वाले जातकों के दैनिक राशिफल के बारे में जान लेने का।
1: मेष राशि, सेहत आपकी अच्छी रहेगी, धन का लाभ होगा, मनोरंजन में व्यस्त रहेंगे, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पारिवारिक समस्या आपको हो सकती है, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, हालांकि दोपहर से स्थितियों में सुधार होगा। चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। मिथुन राशि, काम का बोझ हल्का रहेगा, करियर में लाभ होगा, लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और आपको निभानी पड़ेंगी। शिव जी को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: और चलिए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं कि अगर आपका जन्मदिन 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख और 30 तारीख को पड़ता है तो आपको क्या कुछ उपाय करने चाहिए अपनी सेहत को बेहतर करने के लिए।
1: अब बात करते हैं अंक 3 वालों की। अगर आपका जन्मदिन किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को है तो आपका अंक है 3। 3 का अंक बृहस्पति का अंक माना जाता है और 3 अंक वालों को पेट की समस्या से, मोटापे से और मधुमेह यानी डायबिटीज से सतर्क रहना चाहिए। 3 अंक वाले खाने पीने में लापरवाह होते हैं जिसकी वजह से पेट की दिक्कतें इनको परेशान करती हैं। 3 अंक वाले उत्तम स्वास्थ्य के लिए खान पान को सात्विक रखें तो बेहतर होगा और ज्यादा से ज्यादा भगवान शिव की उपासना करें, शिव जी को जल चढ़ाएं और अधिक से अधिक नमः शिवाय का जप करें।
0: और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख और 31 तारीख को है। पंडित जी से अब जान लेते हैं कि आपके जन्मदिन पर आप क्या कुछ उपाय कर सकते हैं अपनी सेहत को, अपने स्वास्थ्य को बेहतरीन करने के लिए।
1: अब बात करते हैं अंक 4 की। अगर आपका जन्मदिन महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीख को है तो आपका अंक है 4। 4 का जो अंक है ये राहु का रहस्यमयी अंक है। 4 अंक वालों को विचित्र बीमारियां होती हैं जिनको पकड़ पाना बड़ा कठिन होता है, फिर भी इनको सांस की, त्वचा की और अवसाद यानी डिप्रेशन की शिकायत हो सकती है। 4 अंक वालों को कभी कभी विचित्र बीमारियां हो जाती हैं। बीमारियों का कारण और बीमारियों का निवारण पता नहीं चलता। अगर आपका अंक 4 है तो सबसे ज्यादा आपको डिप्रेशन से बचने का प्रयास करना चाहिए। राहु की उपासना से और नियमित जीवनचर्या से, रूटीन से आपको फायदा होगा। रोज शाम को राहु के मंत्र का जप करें, ओम रां राहवे नमः। सात्विक भोजन ग्रहण करें, ध्यान करें, बेवजह की चिंता और तनाव से बचाव करें।
0: और अब आगे बढ़ते हुए दैनिक राशिफल जान लेंगे। कर्क, सिंह और कन्या राशि वाले जातकों के दैनिक राशिफल के बारे में जानने का वक्त है।
1: कर्क राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, धन का लाभ होता दिख रहा है, रुके हुए काम पूरे होंगे, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, रुका हुआ धन मिल जाएगा, करियर में कुछ बदलाव होगा, मानसिक समस्या दूर होगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ऑफिस में विवादों से बचाव करें, हालांकि दोपहर से स्थितियों में सुधार होगा। चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सिल्वर और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा।
0: और चलिए अब बारी उनकी है जिनका जन्मदिन 5 को, 14 को और 23 तारीख को पड़ता है। पंडित जी से ये जान लेंगे कि आप लोग क्या कुछ उपाय कर सकते हैं जिससे आपकी सेहत बेहतर हो।
1: अब बात करते हैं अंक 5 की। अगर आपका जन्मदिन किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को है तो आपका अंक है 5। ये अंक बुध से संबंध रखता है तो बुध ग्रह की कमजोरियों की बीमारियां इनको हो सकती हैं। 5 अंक वालों को त्वचा की समस्या, स्नायु तंत्र नर्वस सिस्टम की समस्या और एलर्जी की समस्या से बचना चाहिए। 5 अंक वालों को उम्र बढ़ने के साथ कभी कभी कान, नाक और गले की समस्या भी हो जाती है। 5 अंक वालों को अक्सर ENT की प्रॉब्लम, लगातार जुकाम की प्रॉब्लम और एलर्जी बने रहने की प्रॉब्लम रहती है। अगर आपका अंक 5 है तो प्राणायाम करिए और नियमित रूप से टहलिएगा। भगवान गणेश की आप जितनी ज्यादा उपासना करें, गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं, गणपति के मंत्र का जप करें, उतना ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा।
0: तो वहीं 6 तारीख, 15 तारीख और 24 तारीख वाले जन्मदिन वाले लोगों के लिए क्या कुछ उपाय हैं जिससे अपनी सेहत को बेहतर कर सकें, अब पंडित जी से ये जानने का वक्त हो चला है।
1: अब बात करते हैं अंक 6 की। अगर आपकी जन्म की तारीख किसी भी महीने की 6 तारीख, 15 तारीख या 24 तारीख हो तो आपका अंक है 6। 6 का जो अंक है ये शुक्र ग्रह का अंक माना जाता है। सामान्यतः 6 अंक वालों को मधुमेह की यानी डायबिटीज की, आंखों की और हार्मोन्स की समस्या हो सकती है। 6 अंक वालों को उम्र बढ़ने के साथ वजन की समस्या भी हो सकती है। जो 6 अंक की महिलाएं हैं उनको अपने आंख का ध्यान देना है, वजन का ध्यान देना है, और 6 अंक के जो पुरुष हैं उन्हें अपने किडनी और अपने प्रोस्टेट का ध्यान देना है। अगर आपका अंक 6 है तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए सप्ताह में 1 दिन उपवास जरूर रखिएगा। बेहतर होगा रविवार का उपवास रखें और चांदी धारण करें। चांदी का एक कड़ा या चांदी का छल्ला या चांदी की चेन अगर आप गले में धारण करें तो आपको लाभ होगा।
0: और अब वक्त हो चला है तुला, वृश्चिक और धनु राशि वाले जातकों के दैनिक राशिफल के बारे में जान लेने का।
1: तुला राशि, रुका हुआ धन इस समय प्राप्त होगा। पुराने विवाद आपके हल होंगे। वाहन सावधानी से चलाइएगा। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, यात्रा के योग बन रहे हैं, धन का लाभ होगा। भावनाओं में आकर, इमोशंस में आकर निर्णय मत लीजिएगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, काम की रुकावट दूर होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। मान सम्मान आपको मिलेगा। शिव जी को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: अगर आपका जन्मदिन 7 तारीख, 16 तारीख और 25 तारीख को पड़ता है तो आपको क्या कुछ उपाय करने चाहिए अपने स्वास्थ्य के लिए, पंडित जी से अब ये जान लेते हैं।
1: अब बात करते हैं अंक 7 की। अगर आपका जन्मदिन किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को है तो आपका अंक है 7। 7 अंक का संबंध केतु नामक ग्रह से माना जाता है। सात अंक वालों को मूत्र विकार, यूरिन की प्रॉब्लम और रक्त की समस्या परेशान कर सकती है और कभी कभी हड्डियों में चोट लगने की, हड्डियों के सर्जरी की, हड्डियों के कष्ट की और त्वचा की समस्या भी हो जाती है। सात वालों को बीमारी से ज्यादा बीमारी का वहम होता है कि मुझे ये बीमारी ना हो जाए, मुझे वो बीमारी ना हो जाए। अगर आपका अंक सात है, अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं, तो नियमित रूप से धर्म स्थान पर जाएं, मंदिर में जाकर नियमित रूप से प्रार्थना करें और शिव जी की उपासना जरूर करें। रोज सुबह शिव जी को जल चढ़ाएं और नमः शिवाय का जप करें।
0: और चलिए अब बात उनकी जिनका जन्मदिन 8 तारीख, 17 तारीख और 26 तारीख को पड़ता है। अगर आपका जन्मदिन इन दिनों में पड़ता है तो क्या कुछ उपाय करें जिससे स्वास्थ्य बेहतर हो सके, अब ये जानने का वक्त है।
1: अब बात करते हैं अंक 8 की। अगर आपकी जन्म की तारीख किसी महीने की 8, 17 या 26 तारीख है, आपका जन्म 8, 17 या 26 को हुआ है, तो आपका अंक है 8। ये शनि का अंक है। 8 अंक वालों को न्यूरो प्रॉब्लम से, रीढ़ की हड्डी की समस्या, लोअर बैक की प्रॉब्लम हो सकती है, न्यूरो प्रॉब्लम आ सकती है, यूरिन की समस्या और आंखों की समस्या से भी 8 अंक वालों को बचना चाहिए। 8 अंक वालों को उम्र बढ़ने पर त्वचा की समस्या अक्सर हो जाती है और बार बार चोट चपेट लगती है, जिसकी वजह से इनका कष्ट बना रहता है। अगर आपकी जन्म की तारीख का संबंध 8 अंक से है, तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए हनुमान जी की उपासना करिएगा। कम से कम ज्यादा नहीं कर सकते तो सुबह शाम दोनों समय एक एक बार हनुमान चालीसा पढ़िएगा। एक लोहे का छल्ला मिडिल फिंगर में, मध्यमा अंगुली में अगर आप धारण करें तो आपको लाभ होगा।
0: तो वहीं 9 तारीख, 18 तारीख और 27 तारीख वाले लोगों के जिनके इस दिन जन्मदिन पड़ते हैं, उनके लिए क्या कुछ उपाय हैं वो जान लेते हैं।
1: बात करते हैं अंक 9 की। अगर आपकी जन्म तारीख किसी महीने की 9, 18 या 27 तारीख है, तो आपका अंक हो गया 9। 9 का अंक मंगल का शक्तिशाली अंक माना जाता है। 9 अंक वालों को रक्त की समस्या, ब्लड की प्रॉब्लम, बार बार दुर्घटना होना, जीवन में एक से ज्यादा सर्जरी होना, एक से ज्यादा शल्य चिकित्सा होना, इसकी संभावना बनती है। नौ अंक वाले अक्सर बड़ी दुर्घटना के शिकार होते हैं और नौ अंक वालों को हाई ब्लड प्रेशर से, उच्च रक्तचाप से भी बचना चाहिए। अगर आपका अंक नौ है तो सबसे पहले आप शांत रहना सीखिए, शांति से प्रेम से काम करिए। अच्छे स्वास्थ्य के लिए हनुमान जी की उपासना करिए, सुबह शाम हनुमान चालीसा पढ़िए और जब भी मौका मिले हनुमान जी के मंदिर जा करके उनका दर्शन करिए, आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा।
0: और अब वक्त हो चला है मकर, कुंभ और मीन राशि वाले जातकों के दैनिक राशिफल के बारे में जान लेने का।
1: मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान इस समय बनाए रखें, वाद विवाद से बचाव करें, दोपहर के बाद स्थितियों में सुधार होना शुरू होगा। चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। कुंभ राशि, धन का बड़ा लाभ होगा, रिश्तों की समस्या हल होगी, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संपत्ति का क्रय कर सकते हैं, कोई शुभ सूचना मिलेगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: और चलिए अब उनकी बात करते हैं जिनका जन्मदिन 21 सितंबर को है। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी बर्थडे, बर्थडे की शुभकामनाएं। अब जान लेते हैं पंडित जी से कि आपका आने वाला साल कैसा रहने वाला है।
1: जिन लोगों का जन्मदिन 21 सितंबर को है उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर में सुधार होगा, धन की स्थिति अच्छी होती जाएगी, स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव रह सकता है। अविवाहितों का विवाह इस साल हो सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर सूर्य भगवान की उपासना करें तो आपको लाभ होगा।
0: और चलिए अब वक्त हो चला है आज की जिज्ञासा के बारे में जान लेने का।
1: आज की जिज्ञासा है कि क्या पूर्व जन्म के बारे में बड़ी आसानी से जाना जा सकता है। देखिए, पूर्व जन्म के बारे में ज्यादातर जो लोग बताते हैं वो काल्पनिक बातें हैं, बेसिर पैर की बातें हैं, बिना किसी आधार के लोग उल्टे सीधे अनुमान लगाते रहते हैं। लेकिन आध्यात्मिक जगत में, आध्यात्म की दुनिया में साधना करके, ध्यान करके पूर्व जन्म के बारे में ठीक ठीक जाना जा सकता है। पूर्व जन्म के बारे में जानने के लिए गहरे ध्यान और ईश्वर की कृपा की आवश्यकता होती है।
0: चलिए पंडित जी से जान लेते हैं कि 21 सितंबर 2026 यानी कि सोमवार का शुभ पहर क्या है।
1: दिनांक 21 सितंबर 2026 दिन सोमवार, शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में भगवान गणेश की कपूर से आरती करिएगा। ऐसा करने से संतान संबंधी समस्याएं हल होंगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 21 सितंबर सोमवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में।
0: और चलिए अब वक्त हो चला है ये जानने का कि आज की गुडलक राशि कौन सी है।
1: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोग पूजा में किस वस्तु का इस्तेमाल जरूर करें। आज की गुडलक राशि है कर्क। इनको पूजा में सफेद मिठाई का, मिश्री का या चीनी का प्रयोग करना चाहिए। ऐसा करने से आपकी भावनात्मक समस्याएं दूर होंगी।
0: और चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने शो के सबसे जरूरी सेगमेंट की ओर, जो है महा उपाय के बारे में जान लेने का। पंडित जी से जान लेते हैं कि आज का महा उपाय क्या है।
1: जी, आज के महा उपाय में आपको बताते हैं कि अगर आप को सपने में मरे हुए लोग दिखाई देते हैं तो इसका मतलब क्या है, क्या उपाय करें। साफ सुथरे पलंग पर या साफ सुथरे स्थान पर ही सोइए। सोने के पहले किसी मंत्र का जप करें या भगवान का स्मरण करें, या तो नमः शिवाय 27 बार जप करके सोइए, या गायत्री मंत्र 27 बार जप करके सोइए। इस तरह के सपने दिखने बंद हो जाएंगे।
0: पंडित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।
1: धन्यवाद।
0: और इसी के साथ गुड लक टुडे के इस खास एपिसोड में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे,
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: बात करेंगे गणपति बप्पा की, गणेश उत्सव का आज सातवां दिन है। बप्पा की भक्ति और भव्यता रंग बिखरे हुए हैं इसके तमाम, और गणपति उत्सव में आस्था और टेक्नोलॉजी का अनोखा संगम देखने को मिल रहा है। तो कहीं पर देखिए बप्पा को खाटू श्याम बाबा के साथ स्थापित किया गया है, कहीं पर विघ्नहर्ता के पंडाल में पृथ्वी और भूगोल की प्रदर्शनी लगाई गई है। तो एक पंडाल में लोगों को अंगदान के लिए प्रेरित करने के लिए अनोखी पहल की गई है।

0: देश भर में गणेश उत्सव पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। कहीं भव्य दिव्य पंडाल सजे हैं जिनमें बाप्पा के अद्भुत स्वरूप विराजमान है, तो कहीं अनोखी थीम से गणपति उत्सव को खास रंग देने की कोशिश की गई है। गजानन एक है मगर उनके रूप अनेक है, जिनकी दिव्य आभा पूरे देश में इन दिनों बिखरी हुई है। ऐसे में जगह जगह एक से बढ़कर एक खूबसूरत गणपति पधारे हैं। गुजरात और महाराष्ट्र में गणपति उत्सव की सबसे ज्यादा धूम देखी जाती है। राजकोट में कई जगहों पर गणेश महोत्सव के बड़े आयोजन चल रहे हैं, कुछ नया करके सबका ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं। ऐसा ही एक गणेश पंडाल है स्पीड वेल चौक का राजा। केपीएस क्लब ने इस अद्भुत गणेश पंडाल का आयोजन किया है। इस साल पंडाल में एडवांस टेक्नोलॉजी और रोबोटिक्स का इस्तेमाल करके एक नया इनोवेशन किया गया है। ये दिखाने का प्रयास है कि राजकोट इंडस्ट्रीज इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के उपयोग के मामले में देश भर में क्यों जाना जाता है। इस पंडाल में दो खास रोबोट काम कर रहे हैं, जिनमें से एक रोबोट बाप्पा की आरती करता है जबकि दूसरा रोबोट घंटी बजाता है। ये रोबोटिक सिस्टम पूरी तरह से ऑटोमेशन पर काम करता है और इसे राजकोट में ही असेंबल किया गया है।
1: रोबोटिक आरती का हमने आयोजन किया है, इसमें दो रोबोट लगाया है। एक रोबोट बाप्पा की आरती उतारता है और दूसरा रोबोट आरती के साथ उसका घंट बजाता है। तो अभी क्या समय के साथ न्यू इनोवेशन के साथ न्यू टेक्नोलॉजी के साथ कभी लोगों को कुछ अच्छा लगे कि भाई ये कुछ ऑटोमेशन किया है और रोबोट आरती बापा की उतारता है।
0: राजकोट के लिए रोबोटिक्स कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये अनोखा नजारा लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। पंडाल को व्हाइट हेवन थीम पर सजाया गया है। अमरावती के बुधवारा इलाके में आजाद हिंद गणेश उत्सव मंडल ने पंडाल में खाटू श्याम मंदिर की भव्य झलक तैयार की है। यहां गणपति बापा की सुंदर प्रतिमा के साथ खाटू श्याम मंदिर का स्वरूप देने की कोशिश की गई है। पंडाल में पहुंचने वाले श्रद्धालु पहले गणपति बापा के दर्शन कर रहे हैं और इसके बाद खाटू श्याम जी का भी आशीर्वाद ले रहे हैं। मंदिर की आकर्षक सजावट और झांकी श्रद्धालुओं का ध्यान खींच रही है।
2: जो है हमारा उसमें खाटू श्याम बाबा का पूरा दरबार हमने सजाया है। 1928 में अब हमारे मंडल की स्थापना थी और तब से लेके अब तक कई साल से हम ये हर साल गणेश उत्सव का जो है आयोजन करते हैं।
0: महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के घुघुस में जय श्री राम गणेश मंडल की ओर से सर्वधर्मीय महाआरती का आयोजन किया गया। पिछले 10 वर्षों से चली आ रही इस अनोखी परंपरा में हिंदू समाज के साथ मुस्लिम सिख बौद्ध और ईसाई समाज के लोग भी बड़ी संख्या में शामिल होते हैं।
3: सर्वधर्मीय महाआरती का आयोजन किया जाता है। धर्म अनेक है मगर भाव एक है, वो है मानवता का। भगवान श्री गणेश सुख करता है विघ्न हरता है, तो सभी धर्म के लोग यहाँ आते हैं।
0: गणेश महाआरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने उपस्थित होकर भगवान गणेश का आशीर्वाद लिया। महाराष्ट्र के जालना में गणेश उत्सव पर भूगोल प्रदर्शनी का अनोखा दृश्य साकार किया गया है। मारुति की 11 प्रतिमाओं के साथ साकार की गई ये भूगोल प्रदर्शनी इन दिनों आकर्षण और चर्चा का विषय बनी हुई है। इस पहल का उद्देश्य है कि छात्रों को भूगोल विषय कठिन ना लगे और इस विषय की अलग अलग अवधारणाएं उन्हें आसानी से समझ आए। जालना के एक शिक्षक श्रीकांत चिंचखेड़कर ने ये अनोखी शैक्षणिक उपक्रम शुरू किया है। करीब 1.5 महीने की मेहनत के बाद इसे तैयार किया गया। गणेश उत्सव के माध्यम से धार्मिक आस्था के साथ शिक्षा और ज्ञान को जोड़ने की उनकी ये पहल जालना में चर्चा का विषय बनी हुई है। पृथ्वी, भारत भूमि, सौर मंडल, ग्रह, अंतरिक्ष और ब्रह्मांड सहित भूगोल की करीब 150 अवधारणाओं को यहाँ दिखाया गया है, जबकि 80 से ज्यादा मॉडल यहाँ रखे गए हैं। इस प्रदर्शनी की खास बात ये है कि हर कॉन्सेप्ट को मराठी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में प्रस्तुत किया गया है। प्रदर्शनी में पृथ्वी की संरचना, भारत का भौगोलिक स्वरूप, सौर मंडल, विभिन्न ग्रह, अंतरिक्ष और ब्रह्मांड जैसी कई संकल्पनाओं को मॉडल के जरिए समझाया गया है।
4: क्योंकि भूगोल जो है वो समझने में भी थोड़ा सा अड़चने आ जाती है, उसके एक्सपेरिमेंट ज्यादा मालूम नहीं रहते और सिर्फ अपन डायग्राम देखते हैं तो डायग्राम से कुछ सीख नहीं पाते, तो ये डायग्राम की वजह यहाँ पे मॉडल बनाए हुए हैं। यानी दरी कैसी है एक्चुअल में, ये उनको समझ में आना चाहिए। सामुद्रधुनी बोले तो क्या है, ये उनको समझ में आना चाहिए, ये इसका मूल जो है वो कंसेप्ट है।
0: विजयादशमी यानी दशहरे तक लोगों के लिए ये प्रदर्शनी उपलब्ध रहेगी। अष्ट विनायक गणपति के मंदिर में शामिल पुणे के शिरूर का राजन गांव महागणपति मंदिर गणेश उत्सव के अवसर पर आकर्षक रोशनी से जगमगा उठा है। पूरा परिसर रोशनी की भव्य सजावट के विहंगम नजर आ रहा है। गणेश उत्सव के अवसर पर मंदिर के साथ साथ पूरा गांव भी आकर्षक ढंग से सजा दिया गया है। गणराय के उत्सव में रोशनी का ये भव्य नजारा श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए खास आकर्षण बना हुआ है। बिहार के मोतिहारी में भी भव्य गणेश पूजा का आयोजन किया गया है। गणपति बप्पा के जयकारों से इन दिनों मोतिहारी गूंज रहा है। शहर के हृदय स्थल कहे जाने वाले गुदरी बाजार और ऐतिहासिक पंच मंदिर में चल रहे 10 दिन के गणेश पूजा महोत्सव ने पूरे शहर को भक्तिमय बना दिया है। भक्तों की भारी भीड़ बाप्पा के दर्शन के लिए उमड़ रही है। पिछले 31 साल से गणेश उत्सव समिति मोतिहारी में भव्य तरीके से गणेश पूजा का आयोजन करता आ रहा है। इस बार का पंडाल कोलकाता की थीम पर बनाया गया है। करीब 15 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण किया जाता है। इस बार खास बात यह है कि भगवान गणेश के साथ बाबा विश्वकर्मा और भोलेनाथ की भी मूर्ति स्थापित की गई है। गणपति 5 अलग अलग भव्य स्वरूपों में विराजमान है। सूरत के रांदेर इलाके में इस बार गणेश उत्सव के दौरान एक बेहद अनोखी और सामाजिक संदेश देने वाली थीम पर गणेश पंडाल तैयार किया गया है। आमतौर पर गणेश पंडालों में धार्मिक और पौराणिक झांकियां देखने को मिलती है, लेकिन सूरत के इस पंडाल में भगवान गणेश के दर्शन के साथ साथ ऑर्गन डोनेशन यानी अंगदान को लेकर लोगों को जागरूक करने की कोशिश की गई है। उद्देश्य यही है कि अंगदान के जरिए किसी जरूरतमंद व्यक्ति को एक नया जीवन दिया जा सके। पंडाल के बाहर ही मानव शरीर के अलग अलग अंगों को सांकेतिक रूप से प्रदर्शित किया गया है। इन अंगों के जरिए लोगों को ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि मृत्यु के बाद भी इंसान के अंग किसी दूसरे जरूरतमंद व्यक्ति की जान को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। ये भी बताया गया है कि ब्रेन डेड व्यक्ति के कौन कौन से अंग दान किए जा सकते हैं और प्राकृतिक मृत्यु की स्थिति में किन अंगों अथवा ऊतकों का दान संभव हो सकता है। इसके साथ ही अंगदान की प्रक्रिया और इसके महत्व को भी सरल तरीके से समझाने का प्रयास किया गया है। कुल मिलाकर सूरत का ये गणेश पंडाल सिर्फ भगवान गणेश के दर्शन का केंद्र नहीं है, बल्कि अंगदान महादान के संदेश को जन जन तक पहुंचाने वाली झांकी के रूप में भी लोगों को आकर्षित कर रहा है। छत्तीसगढ़ के भिलाई में भी गणेश उत्सव को लेकर माहौल भक्तिमय बना हुआ है। पंडालों और मंदिरों से गणपति बप्पा मोरिया के जयकारे गूंज रहे हैं। सुबह से ही भगवान गणेश के दर्शन और पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगती है। इस पंडाल में तकनीक और आस्था का एक ऐसा बेजोड़ संगम तैयार किया गया है जिसे देख हर कोई दंग है। भिलाई के सेक्टर 10 में सजे इस भव्य पंडाल को देखने के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। बस्तर की दंतेश्वरी माता से लेकर तमिलनाडु के मीनाक्षी मंदिर का नाता इस पंडाल से कैसे जुड़ा है, इसका मोहक नजारा यहां पेश किया जा रहा है। लोक संस्कृति और बस्तर की पावन पहचान को इस पंडाल में खूबसूरती से उकेरा गया है। तमिलनाडु के प्रसिद्ध मीनाक्षी अम्मन मंदिर में विराजमान कुरक विनायक घर गणपति के प्रतिरूप को उकेरा गया है, जिनकी ऐतिहासिकता करीब 2500 वर्ष पुरानी है और जिन्हें प्राचीन समय में एक ही काले पत्थर को तराश कर बनाया गया था। काले पत्थर की आभा वाले ये गणपति प्रतिमा इतनी सजीव और अलौकिक लगती है कि भक्त भाव विभोर होकर बस इन्हें निहारते रह जाते हैं। इस पंडाल की जो सबसे बड़ी और चमत्कारी USP है वो है इसकी आधुनिक और डिजिट सजावट। ये भिलाई का पहला ऐसा पूर्ण रूप से डिजिटल गणेश पंडाल बन चुका है, जहां चारों तरफ हाईटेक LED स्क्रीन का जाल बिछाया गया है। लगभग 4000 स्क्वायर फीट की इस विशालकाय डिजिटल स्क्रीन पर बापा की आरती के समय जब 3D और 360 डिग्री विजुअल्स चलते हैं, तो ऐसा लगता है मानो साक्षात ब्रह्मांड नीचे उतर आया है। इस डिजिटल तकनीक के जरिए पंडाल के भीतर ही बैठे बैठे श्रद्धालु देश के 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम और 51 शक्ति पीठों का लाइव और दिव्य दर्शन भी कर पा रहे हैं। राजकोट से रौनक मजीठिया, अमरावती से धनंजय सांबले, चंद्रपुर से विकास राजूरकर, जालना से गौरव साली, पुणे से स्मिता रायचंद शिंदे, मोतिहारी से सचिन पांडे, सूरत से संजय सिंह राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट गुड टुडे।
5: देखिए, भारत और अमेरिका के बीच युद्धाभ्यास 2026 का आयोजन चल रहा है। इसमें दोनों देशों के सैनिक अपने अपने पराक्रम और कुशलता का परिचय दे रहे हैं। युद्धाभ्यास 2026 उत्तराखंड के औली और राजस्थान के महाजन फील्ड रेंज में आयोजित किया जा रहा है। इसमें देखिए दोनों देशों के 600 जवान शामिल हो रहे हैं। 9 सितंबर से शुरू हुआ ये युद्धाभ्यास 28 सितंबर तक चलेगा। इसमें दोनों देशों से 600 सैनिक भाग ले रहे हैं। माना यह जा रहा है कि यह अभ्यास भारत अमेरिका रक्षा सहयोग को नई ऊंचाई पर ले जाने वाला कदम है।
6: दुश्मनों की किसी भी चाल को किस तरह नाकाम करना है, ये इन जवानों को अच्छे से पता है। आतंकियों के नापाक मंसूबों को किस तरह नेस्तोनाबूद करना है, ये इन जवानों के पराक्रमी प्रदर्शन को देखकर समझा जा सकता है। भारतीय सेना के जवानों के जज्बे और शौर्य से पूरी दुनिया अच्छी तरह से वाकिफ है, और यही वजह है कि भारतीय सेना और अमेरिका सेना जाबाजी का अभ्यास कर रही है। ये युद्ध अभ्यास दोनों देशों के सैनिक राजस्थान के महाजन फायरिंग रेंज और औली में कर रहे हैं।
7: अमेरिका के बीच युद्धाभ्यास का 22वां संस्करण शुरू हो चुका है, और इस बार युद्धाभ्यास की खास बात यह है कि ये एक साथ दो अलग अलग मोर्चों पर किया जा रहा है। भारत और अमेरिका की सेनाएं एक तरफ पाकिस्तान की सीमा के बेहद नजदीक महाजन फील्ड फायरिंग रेंजेस में रेगिस्तान में युद्ध की बारीकियां एक दूसरे से साझा कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नजदीक औली में भारत और अमेरिका के सैनिक एक साथ एक दूसरे को अपने युद्ध कौशल से रूबरू करा रहे हैं। युद्धाभ्यास की खास बात यह भी है कि भारत और अमेरिका के 600-600 सैनिक एक साथ अलग अलग टेरेन में युद्ध के कौशल सीख रहे हैं, और लगातार भारत और अमेरिका के बीच किस तरह से सैन्य तालमेल बढ़ रहा है उसकी वानगी भी पेश कर रहे हैं।
6: इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य पहाड़ी और अर्ध पहाड़ी क्षेत्रों में इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स की संयुक्त क्षमता को बढ़ाना है। यह अभ्यास सिर्फ पारंपरिक प्रशिक्षण नहीं है, बल्कि इसमें ड्रोन और स्वायत्त प्रणालियों के इस्तेमाल पर विशेष जोर दिया जा रहा है। निगरानी और टोही के लिए आधुनिक तकनीक का

0: युद्ध जैसे हालात का अनुभव मिलेगा। इसके लिए दोनों देशों की सेनाओं ने कमांड पोस्ट एक्सरसाइज, एक्सपर्ट एकेडमिक डिस्कशन और सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट एक्सचेंज भी कर रही है। युद्ध अभ्यास का सबसे बड़ा मकसद इंटरऑपरेबिलिटी यानी दोनों सेनाओं के बीच तालमेल बढ़ाना है। भारतीय और अमेरिकी सैनिक एक दूसरे की रणनीति, तकनीक और प्रक्रियाएं सीख रहे हैं और पराक्रम का प्रदर्शन कर रहे हैं। पहाड़ी इलाकों में पैदल सेना आधारित अभियानों पर जोर है, इससे संयुक्त अभियान चलाने की क्षमता मजबूत होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि बदलते वैश्विक सुरक्षा माहौल में ऐसे अभ्यास दोनों देशों के रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करते हैं। इसी क्रम में महाजन फायरिंग रेंज में M777 अल्ट्रा लाइट होवित्सर तोप से लाइव फायरिंग की गई, जिसमें डायरेक्ट फायरिंग मेथड का इस्तेमाल करके सामने दिख रहे टारगेट पर निशाना साधा गया। इस युद्ध अभ्यास का एक मकसद यह भी है कि मुश्किल परिस्थितियों में काम करने के लिए समझ विकसित करना। जहां संचार व्यवस्था बाधित हो, बिना इंसानी दखल वाले सिस्टम का इस्तेमाल बढ़ रहा हो, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हो रहा हो और इंटेलिजेंस प्रोसेस करने और फैसले लेने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल बढ़ रहा हो। 9 सितंबर से शुरू हुआ ये युद्ध अभ्यास 28 सितंबर तक चलेगा। इसमें दोनों देशों से 600 सैनिक भाग ले रहे हैं। माना जा रहा है कि यह अभ्यास भारत अमेरिका रक्षा सहयोग को नई ऊंचाई पर ले जाने वाला कदम है। कुल मिलाकर यह अभ्यास न सिर्फ सैन्य क्षमता बढ़ाएगा बल्कि आपसी विश्वास और सहयोग को भी मजबूत करेगा। शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे लगातार दर्शकों से अपील कर रहा है कि आप भी GNT पर मनाया जा रहे इस उत्सव से जुड़िए। इसके लिए बस आपको इतना सा करना है कि अपने घर पधारे गजानन का वीडियो बनाना है, हमें भेज देना है, हम उन वीडियोस को दुनिया तक पहुंचाएंगे। हमारे पास लगातार दर्शकों के वीडियोस आ रहे हैं, तस्वीरें देखिए। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से ठाकुर नरेश सिंह ने हमें गणेश उत्सव की तस्वीरें भेजी है। ऊंचे आसन पर विराजमान बप्पा के सिर पर शानदार पगड़ी आपको नजर आएगी। तरह तरह के मिष्ठान, भगवान गजानन को का भोग लगाया गया, साथ ही साथ मंडप में रंग बिरंगी लाइटिंग भी लगाई गई। वहीं पर दूसरी तस्वीर देखिए, महाराष्ट्र के नासिक से विलास जी सांगले ने ये तस्वीरें भेजी हैं। यहाँ पर ऊंचे आसन पर विराजमान बप्पा अपने हाथों से मोदक थामे हुए बहुत सुंदर नजर आ रहे हैं। रंग बिरंगी लाइटिंग में पूरा पंडाल अद्भुत नजर आ रहा है। भगवान गजानन भक्तों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद दे रहे हैं।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आ रहा है।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे।

0: आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों
2: महाराष्ट्र के चंद्रपुर में सजा तुकुम के राजा का दरबार श्रद्धालुओं के बीच आकर्षण का केंद्र बनी। पप्पा की मनमोहक प्रतिमा चावल, दाल, साबुदाना और मूंगफली के दानों से किया गया निर्माण। इस उत्सव के दौरान जालना में सजा पप्पा का अनोखा पंडाल, लग्नहर्ता की पूजा अर्चना के साथ यहां हो रहे हैं रामायण के दर्शन। संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के प्राण बचाते नजर आ रहे हनुमान। गुजरात के गोधरा में निकली गणेश प्रतिमा विसर्जन की भव्य शोभा यात्रा, 1000 से ज्यादा मूर्तियों को विधिवत की गई विदाई, ढोल नगाड़ों के साथ गूंजे गणपति बप्पा मोरिया के जयकारे। राजस्थान के उदयपुर में नारायण सेवा संस्थान ने सामूहिक विवाह समारोह का किया आयोजन। शादी के पवित्र बंधन में बंधे 50 गरीब और दिव्यांग जोड़े नव विवाहितों को उपहार में दिए गए जरूरी सामान। उत्तराखंड के ऋषिकेश में SDRF टीम ने किया महिला का रेस्क्यू, पहाड़ी से उतरते वक्त नदी के तेज बहाव में फंसी, सूचना के बाद चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। गुरु नेशनल पार्क से गांधी सागर में शिफ्ट हुई मादा चीता CCP2। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अभ्यारण्य में किया रिलीज, देश का दूसरा बड़ा चीता घर बना गांधी सागर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

चीन से। जिसने भी हथियार खरीदा उसके सामने पछताने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा। कम कीमत और सस्ती टेक्नोलॉजी के चक्कर में चीन से वेपन तो खरीद लिया गया, लेकिन वो जंग के मैदान में कितना कारगर है इसका पता अब उसके खरीदारों को हो रहा है। यानी कि चीन से डिफेंस डील करने वाले देश के सामने अब सर पीटने के अलावा दूसरा रास्ता नहीं बचा। ना तो चीन की मिसाइलें मंजिल तक पहुंच रही हैं, न ही उसके टैंक पराक्रम दिखा रहे हैं। चीन के मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम भी लाइव फायर के दौरान खुद तबाह हो चुके हैं। वहीं ऑपरेशन सिंदूर में चीन के एयर डिफेंस सिस्टम का फ्लॉप होना दुनिया ने देख ही लिया।

0: चीन की ड्यूप्लीकेसी के बारे में पूरी दुनिया जानती है और अब तो इसके बाकायदा सबूत मिलने शुरू हो गए हैं, यानी अब दुनिया देख भी रही है। दरअसल हाल ही में सऊदी अरब ने हूती विद्रोहियों पर हमला किया, जिसमें उसने DF-15A का इस्तेमाल किया, जो कि अपने टारगेट पर पहुंचने से पहले ही फट गई। और आपको ये भी बता दें कि ये वही DF-15A है जो सऊदी अरब ने चीन से ली थी।
1: सोशल मीडिया पर DF-15 मिसाइल के कुछ वीडियोस भी सामने आए हैं। इनमें ये मिसाइल एक रेगिस्तान में पड़ी दिख रही है और कुछ लोग इसे देखते और फिर धकेल कर इधर उधर करते नजर आ रहे हैं। ये लोग हूती लड़ाके और उनके समर्थक बताए गए हैं, जो गिरी हुई सऊदी मिसाइल का जायजा ले रहे हैं।
0: दरअसल DF-15A शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का बूस्ट रेंज है। अब हाल ही में विश्लेषकों ने जो सऊदी अरब की तरफ से यमन में हमला किया गया था, वहीं से इसके कुछ अवशेष ढूंढे हैं, जिसके बाद और जिसके अध्ययन से ये पता चलता है कि ये चीनी निर्मित ही है।
1: कई रक्षा विशेषज्ञों का दावा है कि ये मिसाइल सऊदी अरब की रॉयल सऊदी स्ट्रेटेजिक मिसाइल फोर्स ने हूती ठिकानों पर दागी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक मिसाइल लक्ष्य से चूक गई और यमन के रेगिस्तान में जा गिरी।
0: अगर मिसाइल दागने की पुष्टि हो जाती है तो ये प्रमाणिक हो जाएगा कि सऊदी अरब ने पहली बार चीनी मिसाइल का इस्तेमाल किया है। हालांकि अभी तक ना तो यमन और न ही चीन से इसके बारे में कोई भी आधिकारिक जानकारी सामने आई है। सऊदी अरब भी फिलहाल खामोश है।
1: दावा यह किया जा रहा है कि करीब 3 दशक में ये पहली बार हुआ है जब सऊदी फोर्स ने चीन से खरीदी गई DF-15A शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का युद्ध में इस्तेमाल किया है। विश्लेषक इस निष्कर्ष पर इसलिए पहुंचे क्योंकि हूतियों के पास DF-15A जैसी मिसाइल होने के कोई प्रमाण नहीं है। उनके शास्त्रागार में मुख्य रूप से ईरानी तकनीक वाली मिसाइलें और ड्रोन हैं। सऊदी अरब के पास पहले से चीन से खरीदी गई DF-3A और DF-21 जैसी मिसाइलें होने के रिपोर्ट्स लंबे समय से चल रही हैं। लेकिन सऊदी अरब ने DF-15A शॉर्ट रेंज मिसाइल प्रणाली भी चीन से खरीद रखी है। इसकी कोई आधिकारिक जानकारी पहले कभी सामने नहीं आई, इसीलिए कई विशेषज्ञों ने इसे सऊदी की गुप्त मिसाइल क्षमता का हिस्सा माना है। अगर ये सऊदी की मिसाइल थी तो इसका लक्ष्य चूकना सऊदी की गुप्त मिसाइल क्षमता पर सवाल खड़े करता है। साथ ही चीनी हथियारों की विश्वसनीयता पर भी चर्चा छिड़ गई है।
2: देखिए, सबसे पहले ये बात क्लियर है कि सऊदी अरबिया का जो मिसाइल प्रोग्राम है उसकी शुरुआत देखिए चाइना ने की थी, और इसी के तहत चाइना ने अपने तमाम मिसाइलों की जो सप्लाई है वो सऊदी अरबिया को की थी, जिसमें प्रमुख जो मिसाइल्स हैं वो हैं DF-3A और DF-21। ये दोनों मिसाइलें लगातार सऊदी अरबिया के पास बनी हुई है, जिसका वो टाइम टू टाइम इस्तेमाल करता है। जहां तक उसके दूसरी मिसाइल DF-15 अल्फा का सवाल है, जब हूतियों के ऊपर मिसाइल फायर की सऊदी अरब ने तो उसके जो रेमनेंट, उसके जो स्प्रिंटर थे, उससे पता लगा कि सऊदी अरबिया के पास DF-15 अल्फा मिसाइल भी है, जो कि एक बड़ा ही प्रोमिनेंट बैलिस्टिक मिसाइल है। तो इस तरीके के जब आप मिसाइल को फायर करते हैं तो दिखाता है कि आपकी इन्वेंट्री में ये मिसाइल है।
1: सऊदी चीन मिसाइल डील का इतिहास लगभग 40 साल पुराना है और बेहद गोपनीय रहा है। ये रक्षा इतिहास के सबसे दिलचस्प अध्यायों में से एक है, क्योंकि सऊदी अरब पारंपरिक रूप से अमेरिका का सबसे बड़ा हथियार खरीदार रहा है, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए उसने हमेशा चीन पर ही भरोसा किया है। 1980 के दशक के मध्य में जब सऊदी अरब को ईरान इराक युद्ध के दौरान अपनी सुरक्षा को खतरा महसूस हुआ तो उसने अमेरिका से बैलिस्टिक मिसाइलें मांगी। अमेरिका ने इसराइल के विरोध और मध्य पूर्व में हथियारों की होड़ बढ़ने के डर से सऊदी को मिसाइलें देने से मना कर दिया। इसके बाद सऊदी अरब के प्रिंस खालिद बिन सुल्तान, जिन्हें सऊदी मिसाइल प्रोग्राम का जनक कहा जाता है, उन्होंने 1985 में गुप्त रूप से चीन से संपर्क किया। दोनों देशों के बीच तब आधिकारिक राजनयिक संबंध भी नहीं थे। साल 1988 में ये खुलासा हुआ कि सऊदी अरब ने चीन से DF-3A इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल खरीदी है। ये चीन की एक परमाणु सक्षम मिसाइल थी, लेकिन सऊदी अरब को देने के लिए चीन ने इसमें बदलाव कर दिए और इसे सिर्फ कन्वेंशनल पेलोड यानी कि पारंपरिक उच्च विस्फोटक ले जाने लायक ही बना दिया। सऊदी अरब ने मिसाइलों को खरीदने के बाद करीब 26 साल तक दुनिया से इसे छिपा कर रखा और पहली बार 2014 की एक सैन्य परेड में इसे सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया गया।
2: देखिए, सबसे पहले सऊदी अरेबिया अमेरिका का बहुत ही स्ट्रांग एलाई है। सऊदी अरेबिया में अमेरिका के तमाम मिलिट्री बेसिस हैं, लेकिन जहां तक मिलिट्री मिसाइल्स का सवाल है, उसने चाइना की तरफ रुख किया क्योंकि चाइना उसको एक सस्ती मिसाइल देता है, एक जो उसका कॉस्ट इफेक्टिवनेस होता है। और साथ में ये देखिए, 1980 के दशक में चाइना के सऊदी अरेबिया के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन हुए और वो इतने प्रकार हुए कि तमाम तरीके का इन्वेस्टमेंट चाइना ने किया। इसी के तहत उसने ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में मध्यस्थता की, सऊदी अरेबिया और सीरिया के बीच में मध्यस्थता की। तो ये शुरुआत उसकी 1980 में हुई थी, जिसके तहत उसने DF-3 अल्फा मिसाइल को सप्लाई किया और आज की डेट में वो अन्य तरीके की भी मिसाइलें सऊदी अरेबिया को दिया। तो ये ज्यादा हिस्ट्री में ना जाके ये रिसेंटली 80s के दशक का यह डेवलप।
1: DF-3 मिसाइलें बहुत पुरानी हैं, लिक्विड फ्यूल आधारित थी और उनकी सटीकता बेहद खराब थी, इसीलिए सऊदी अरब को अपनी रणनीतिक क्षमता को आधुनिक बनाने की जरूरत पड़ी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब ने साल 2007 में चीन के साथ एक और गुप्त समझौता किया और अधिक आधुनिक DF-21 मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें खरीदी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA को सऊदी और चीन के बीच DF-21 मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल सौदे की भनक लग गई थी, लेकिन तब उन्होंने ये सुनिश्चित कर लिया था कि ये मिसाइलें भी परमाणु हथियार ले जाने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ पारंपरिक हमलों के लिए ही मॉडिफाई की गई हैं। तो अमेरिका ने इस पर कोई कड़ा विरोध नहीं जताया।
0: हाल ही में यमन के मरी प्रांत में DF-15A का मलबा मिलने से इस बात की पुष्टि होती है कि सऊदी अरब चीनी मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि सऊदी अरब भले ही अभी तक इस बात से इनकार करता आया हो, लेकिन इससे एक और बात की पुष्टि होती है और वो ये कि डील का दायरा इससे कहीं ज्यादा बड़ा है।
1: पिछले कुछ वर्षों में अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया कि सऊदी अरब अब सिर्फ चीन से मिसाइलें खरीद नहीं रहा है बल्कि चीन की तकनीकी मदद से अपनी खुद की बैलिस्टिक मिसाइल भी विकसित कर रहा है।
2: देखिए, जहां तक सऊदी अरेबिया के इंडिजिनस डेवलपमेंट का सवाल है मिसाइल के फील्ड में, डेफिनेटली उसकी मदद चाइना कर रहा है और इसी के तहत सऊदी अरेबिया ने सॉलिड फ्यूल मिसाइल डेवलप कर लिया है। उसके यहाँ जो ये मिसाइल बन रही है उसका उस जगह का नाम है अल दवदामी। इस जगह पे उसका मिसाइल प्रोग्राम है और इसकी मदद लगातार चाइना ने की है। और अब जब से युद्ध की शुरुआत किया है उसमें जरूर सेटबैक लग सकता है, लेकिन इसके पहले जब युद्ध नहीं हो रहा था तो चाइना अपने इन्वेस्टमेंट मार्केट और तमाम तरीके के डिफेंस इक्विपमेंट का मार्केट उसने मिडिल ईस्ट को पकड़ा था। तो इसी के तहत लगातार उसने टेक्नोलॉजिकल नोहाउ और जो उसका रॉ मटेरियल है सऊदी अरेबिया को दिया, जिससे कि सऊदी अरेबिया की जो इंडिजिनस मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो आगे बढ़ा और साथ में उसने सॉलिड फ्यूल का मिसाइल डेवलप किया।
1: सऊदी अरब लंबे समय से यमन में हूतियों के खिलाफ हवाई हमले करता रहा है। बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल युद्ध की तीव्रता बढ़ाने के संकेत माने जाते हैं। मारीब क्षेत्र में हाल ही में लड़ाई तेज हुई है और दोनों पक्ष एक दूसरे पर हमले बढ़ा रहे हैं।
0: कम कीमत, मेड इन चाइना, लेकिन शर्तें कड़ी, ये वो तमाम ऐसी चीजें हैं जो चीन हर उस देश पर लगाता है जिसे वो अपने हथियार देता है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर चीन कभी नहीं करता है और इसी के साथ साथ चीन मेंटेनेंस का खर्चा भी बिल्कुल नहीं लेता, यानी जो भी देश हथियार खरीदेगा मेंटेनेंस के लिए उसको वापस चीन का दरवाजा खटखटाना होगा। लेकिन विशेषज्ञ ये कहते हैं कि चीनी हथियार इस वक्त कागजों पर भले ही पुख्ता नजर आ रहे हो, लेकिन रण क्षेत्र में ये पूरी तरह से फिसड्डी साबित हो रहे हैं।
1: ग्लोबल डिफेंस मार्केट में चीन खुद को अमेरिका और रूस के विकल्प के तौर पर पेश करता है। वास्तविक युद्ध में उसकी प्रमुख मिसाइलों का फेल होना चीन के हथियारों की विश्वसनीयता और उनकी तकनीकी गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े करता है। मेड इन चाइना के चक्कर में फंसे बांग्लादेश का हाल देख लीजिए। 9 सितंबर 2026 को चटगांव में फील्ड फायर अभ्यास के दौरान टाइप 59 टैंक में विस्फोट हो गया और जैसे ही टैंक से गोला दागा गया वो बैरल से बाहर निकलने के बजाय टैंक के भीतर ही ब्लास्ट कर गया। इस भीषण विस्फोट के कारण टैंक के क्रू मेंबर्स में 2 बांग्लादेशी जवानों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक वरिष्ठ अधिकारी गंभीर रूप से घायल हो गया।
0: विशेषज्ञों का मानना है कि भले ही तोप और इलेक्ट्रॉनिक्स नया कर दिया गया हो, लेकिन टैंक का मेटल वही पुराना है, यानी 50 साल पुराना, जिसका असर ये हो रहा है कि टैंक बड़े बड़े गोला बारूद को झेल ही नहीं पा रहा है। एक बार फायर करने के बाद वो वापस टैंक के अंदर ही विस्फोट करता है। इसका एक जीता जागता उदाहरण हाल फिलहाल में मिला भी है।
2: देखिए टैंक T-59 जो टैंक है वो बहुत ही पुराना टैंक है, चाइनीज ओरिजिन का है। अगर आपने इसको मेंटेन नहीं किया, रिफर्बिश करके आप काम चलाते रहते हैं, तो समय के साथ हर एक इक्विपमेंट की उपयोगिता घटती जाती है, और वो भी ऐसे समय में जब आप उसको ट्रेनिंग पर्पसेस के लिए यूज कर रहे हैं, लगातार उसको अपग्रेड कर रहे हैं, और जो उसका मेटलर्जी है वो फेल होता है। देखिए जब ब्रीच प्रेमेच्योर होता है तो उसके कई रीजन होते हैं, एमिशन की भी वजह हो सकती है, जो प्रेशर ब्रीच में जनरेट हुआ उसको सस्टेन नहीं कर पाया, इसका मतलब मेटलर्जी उसकी खराब थी, या फिर उसके बैरल में कोई रेमनेंट रह गया या बैरल क्लीन नहीं हुआ उसकी वजह से प्रीमेच्योर हुआ, तो वजह कुछ भी हो सकती है। जब इस तरीके के लगातार इंसिडेंसेस होते हैं तो बेसिक शक जाता है उसकी मेटलर्जी पे, क्या कितना प्रेशर जनरेट कर रहा है या इरेटिक बिहेवियर ऑफ एमिशन, तो इन सारी चीजों को देखना पड़ेगा।
1: हादसे में शामिल टैंक चीन में बना टाइप 59 है, जिसका इस्तेमाल बांग्लादेश की सेना करती है। टैंक 59 चीन में बना एक पुराना मेन बैटल टैंक है। इसे चीन का पहला ऐसा टैंक भी माना जाता है जिसे बड़ी तादाद में बनाया गया था। बांग्लादेशी सेना के बेड़े में शामिल टाइप 59 दुर्जॉय टैंक मूल रूप से करीब 70 साल पुराना सोवियत डिजाइन है, जिसे चीन ने कॉपी करके बनाया था और बाद में बांग्लादेश को इसे अपग्रेड करके दे दिया। टाइप 59 सैन्य टैंक काफी पुराना है, लेकिन समय के साथ इसके कई नए वर्जन और अपग्रेड तैयार किए गए हैं। इनमें ज्यादा बेहतर तोप, फायर कंट्रोल सिस्टम, रात में देखने की सुविधा और टैंक की सुरक्षा बढ़ाने वाले उपकरण जोड़े गए हैं, लेकिन मूल संरचना पुरानी ही रही।
2: से हुए T-59 के आप कितना भी अपग्रेड कर दें लेकिन आप उसकी मेटलर्जी नहीं बदल पाएंगे। जो आयरन है, जो बैरल है 125 mm स्मूथ बोर, उसको आप रिप्लेस नहीं कर पाते। हालांकि जो टैंक है, जब नंबर ऑफ राउंड्स जितने वो फायर कर लेते, उसकी EFC वैल्यू होती है, इक्विवेलेंट फुल चार्ज की वैल्यू होती है, उसमें कितना वियर एंड टियर हुआ, और उसका बैरल भी बदला जाता है, लेकिन उस मेटलर्जी को आप कैसे इंप्रूव करेंगे जो एक पर्टिकुलर तरीके से बनाई गई है, उस कितना प्रेशर जनरेट कर रहा है, एमिनिशन जो आप लोड करके फायर कर रहे हैं जब उसका प्रोपेलेंट बर्न होता है तो कितना प्रेशर जनरेट करता है, और क्या वो स्टील या मेटलर्जी उसको सस्टेन कर पा रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये एक आउटडेटेड इक्विपमेंट है, टैंक है।
1: चीनी टैंकों में सेफ्टी फीचर्स और मेटल की क्वालिटी हमेशा से सवालों के घेरे में रही है। जरा सी ओवरहीटिंग या फिर लो क्वालिटी गन बैरल की वजह से गोला अंदर ही ब्लास्ट हो जाता है।
0: बांग्लादेश में हुए टैंक हादसे ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा और साथ ही साथ चीनी हथियारों की विश्वसनीयता पर भी अब सवाल खड़े हो गए हैं। लेकिन यहाँ बांग्लादेश की मजबूरी है, वो चीन के अलावा कहीं और जा नहीं सकता क्योंकि 70% हथियार उसने चीन से ही लिए हैं।
1: बांग्लादेश की सेना रक्षा उपकरणों के लिए बहुत बड़े पैमाने पर चीन पर निर्भर है। सिब्रियनी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट और रक्षा विशेषज्ञों की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश दुनिया में चीनी हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है। वो अपनी सैन्य जरूरतों का 72-74% हथियार अकेले चीन से आयात करता है। हाल के वर्षों में खासकर 2024-26 के बीच चीनी हथियारों में लगातार आ रही खराबियों, घटिया कलपुर्जों और चीनी कंपनियों की ओर से मरम्मत के लिए मांगी जाने वाली भारी भरकम कीमत के कारण बांग्लादेशी सेना में असंतोष बढ़ा है, और यही वजह है कि बांग्लादेश अब धीरे धीरे अपनी सैन्य निर्भरता को पाटने के लिए तुर्की और कुछ हद तक पश्चिमी देशों के विकल्पों की तरफ भी हाथ बढ़ा रहा है।
0: चीन अपनी सेना के लिए नए और अपग्रेडेड हथियार बना रहा है, लेकिन ऐसे में जो पुराने हथियारों का जखीरा है वो काफी हद तक चीन के पास बचा हुआ है, जैसे कि टाइप 59 टैंक हो या फिर जेट्स हो। अब इन्हें चीनी कंपनियां थोड़ा अपग्रेड करके बांग्लादेश और अफ्रीकी देशों को कम कीमतों में बेच देती हैं, और यहीं से चीन मुनाफा भी कमा रहा है और दूसरे देशों को कर्जदार भी बना रहा है। बाकी उसके सैन्य उपकरणों पर जो विश्वसनीयता है वो तो दुनिया जानती ही।
1: रक्षा विशेषज्ञ और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीनी हथियारों के नाकाम होने के पीछे कई वजह हैं। बड़े परीक्षणों का अभाव, अमेरिकी और रूसी हथियारों के उलट चीनी हथियार निर्यात करने से पहले मुश्किल और वास्तविक युद्ध जैसी परिस्थितियों से नहीं गुजरते। दूसरा है गुणवत्ता पर मात्रा को प्राथमिकता। चीन का मेन फोकस हथियारों की विश्वसनीयता और लाइफ साइकिल के बजाय भारी मात्रा में सस्ते हथियार बाजार में उतारने पर है। तीसरा है घटिया पुर्जे और सर्विसिंग। चीनी कंपनियां बिक्री के बाद मेंटेनेंस सपोर्ट देने में नाकाम रहती हैं, जिससे खरीदार देश के पास खराब पुर्जों को बदलने का कोई और विकल्प नहीं बचता। सस्ते होने के कारण जो देश चीनी हथियारों के जाल में फंस रहे हैं, वो अब अंतर्राष्ट्रीय मोर्चों पर इन रक्षा सौदों को लेकर पछता रहे हैं और चीन की वैश्विक साख को इससे धक्का भी लगा है।
2: पूरे विश्व जानता है कि चाइनीज इक्विपमेंट या चाइनीज कोई भी प्रोडक्ट है उसकी रिलायबिलिटी नहीं होती, वो वन टाइम यूज होता है। आपने यूज किया यूज एंड थ्रो टेक्नोलॉजी, तो उसमें क्वालिटी कंट्रोल नहीं होता। बहुत बड़ा आप जो इन्वेस्टमेंट, जो इनपुट का इन्वेस्टमेंट है वो नहीं करते हैं। जब आप इसको डिफेंस के इक्विपमेंट में लागू करते हैं तो आपने मेटलर्जी हो गया, आप सस्ता लोहा, सस्ता मटेरियल, सस्ते एमिनिशन, सस्ते एक्सप्लोसिव, इन सारी चीजों का अगर आप इस्तेमाल करेंगे सिर्फ इस वजह से कि आपको कॉस्ट कटिंग करना है, सिर्फ इस वजह से कि आपको मास प्रोडक्शन करना है, क्योंकि आप मैन्युफैक्चरिंग हब है, डिफेंस के फील्ड में आप आत्मनिर्भर हैं, तो इससे होता यह है कि आपकी क्वालिटी कंप्रोमाइज होती है। और जब वो डिफरेंट डिफरेंट एनवायरमेंट में, डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर में, डिफरेंट डिफरेंट टेरेन में जब उसका इस्तेमाल होता है तो कोई ना कोई हिस्से पुर्जे उसके फेल होते हैं।
1: दिसंबर 2025 में कंबोडिया थाईलैंड में संघर्ष के दौरान एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें दावा यह किया गया था कि चीन का हथियार कैसे युद्ध के मैदान में फ्लॉप साबित हो गया। वीडियो में दावा किया गया कि कंबोडियाई सैनिक जब थाईलैंड पर निशाना लगाने के लिए चीनी रॉकेट लॉन्च कर रहे थे तो उसमें ब्लास्ट हो गया, जिसकी चपेट में कई कंबोडियाई सैनिक आ गए। 8 सैनिकों की तो जान चली गई।
2: देखिए, जहां तक चाइनीज MLRS और 19B रॉकेट सिस्टम का सवाल है, जब इसको लॉन्च किया गया, फायर किया गया, तो ये वर्टिकली अब जाके स्प्लिट हो गया। कहने का मतलब ये है कि जब आपने फायरिंग किया तो इसका जो एमिनिशन है, जो मिसाइल का नोज है, जो सेंसर है, वो पहले से ही एक्टिवेट हो गया, या तो इतने तरीके से सस्टेन फायरिंग में वो इस चीज को बियर नहीं कर पाया, या फिर इतना हीट जनरेट हुआ विद इन द बैरल उसकी वजह से एक्सप्लोशन हुआ। तो चाहे किसी भी वजह से आपका प्रीमेच्योर एक्सप्लोशन हुआ हो, कंबोडियन आर्मी ने इसको सफर किया एट द टाइम ऑफ वॉर। आपको ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा जिसमें रिडंडेंसी हो, जिसमें आप जो रेट ऑफ फायर डिस्क्राइब करें उसको अगर मेंटेन करें तो किसी भी तरीके के हादसे ना हो।
1: कंबोडिया की सेना में चीन से खरीदी गई MLRS टाइप 90B रॉकेट का इस्तेमाल होता है और इसी हथियार को इस्तेमाल थाईलैंड के खिलाफ किया जा रहा था। दरअसल कंबोडिया के साथ युद्ध में थाईलैंड भी चीन से खरीदे गए टैंकों का इस्तेमाल ही कर रहा था। ये टैंक थे VT-4। युद्ध के समय इसकी परीक्षा हुई तो ये फ्लॉप साबित हुआ। VT-4 टैंक का बैरल फट गया, जिससे इसके क्रू मेंबर्स घायल हो गए। हथियारों की ताकत और भरोसे की असली परीक्षा युद्ध के मैदान में होती है, और रणभूमि में चीन के हथियारों की विश्वसनीयता क्या है वो धीरे धीरे दुनिया देख रही है। कंबोडिया के साथ युद्ध में थाई सेना के VT-4 टैंक का बैरल फटना चीन के लिए शर्मनाक है। मेन गन के अलावा टैंक का फायर कंट्रोल से जुड़ा टारगेटिंग सिस्टम और उसका लेजर वार्निंग सिस्टम भी खराब हो गया। ये सिस्टम आधुनिक बख्तरबंद लड़ाई के लिए बहुत जरूरी है, खासकर टारगेट पहचानने, हमले की सटीकता और दुश्मन के लेजर हमले से चेतावनी के लिए।
2: देखिए, जहां तक टैंक टेक्नोलॉजी का सवाल है, उस जब VT-4 टैंक की हम बात करते हैं तो उसको भी काफी तरीके का सेटबैक लगा। मेरा मानना है कि जो मेंटेनेंस टैंक को चाहिए, जो आपको उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना है कि कितने राउंड उसने AP शॉट फायर किए, कितने उसने हीट एमिशन फायर किया, इन सब का रिकॉर्ड रखेंगे तो बेहतर होगा, जिससे कि आप मेटलर्जी कितना वियर एंड टीयर हुआ इसको आप कैलकुलेट कर पाएंगे। और जहां तक उसके लेजर लॉकिंग सिस्टम का सवाल है, जहां तक उसके लॉकिंग सिस्टम का सवाल है, उसको भी आपको एक फूल प्रूफ रखना होगा। ये देखिए, टैंक को सर्वाइव करने के लिए ये सारे सिस्टम काम करने चाहिए। अगर लॉकिंग सिस्टम ही खराब हो जाएगा तो आप कैसे टारगेट को लॉक करके उसके ऊपर फायर करेंगे।
1: VT-4 एक मेन बैटल टैंक है, जिसे चीनी कंपनी नॉरिनको ने बनाया है। चीन ने इस टैंक को पाकिस्तान और थाईलैंड समेत कई देशों को एक्सपोर्ट किया। इस टैंक में 125 mm की स्मूथबोर गन, जो पारंपरिक गोला बारूद के साथ साथ गन से लॉन्च होने वाली गाइडेड प्रोजेक्टाइल भी फायर कर सकती है। इसके साथ ही टैंक में एक डिजिटल फायर कंट्रोल सिस्टम और लेजर वार्निंग रिसीवर जैसे डिफेंसिव सिस्टम भी है, जो युद्ध के दौरान फेल हो गया था। मौजूदा समय में थाई सेना में 62 BT-4 टैंक ऑपरेशन है। इस टैंक का इस्तेमाल पाकिस्तानी सेना भी करती है।
0: एक एक करके चीन के तमाम हथियार फिसड्डी साबित हो रहे। कागजों पर भले ही ये कितने मजबूत हो, लेकिन रण क्षेत्र में ये बिल्कुल जीरो है। और इसका जीता जागता सबूत है पाकिस्तान द्वारा हाल ही में भारत पर किया गया हमला, जहां पर पाकिस्तान ने ड्रोन्स और मिसाइलें दागी थी, जो पूरी तरह से फिसड्डी साबित हुई है। और ये पूरी दुनिया ने देखा भी है।
1: चीन, जो खुद अपने तैयार किए गए एयर डिफेंस सिस्टम पर भरोसा नहीं करता है, जिसने अपनी सुरक्षा के लिए खुद रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीद रखा है, उसके यहाँ तैयार एयर डिफेंस सिस्टम पर पाकिस्तान इतरा रहा था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना के पराक्रम के सामने चीन से खरीदे गए HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम की एक नहीं चली। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान के लाहौर में तैनात चीन में बना HQ-9 एयर डिफेंस तबाह कर दिया।
0: पाकिस्तान ने 5 साल पहले चीन के साथ HQ-9 की डील की थी। अब चीन और पाकिस्तान दोनों इस बात का दावा करते हैं कि HQ-9 सीधे रूस के S-400 को टक्कर देता है। अब ये टक्कर कितनी दी गई है, इसका सिर्फ भारत ने ट्रेलर दिखाया है और पाकिस्तान खुद ब खुद पीछे चला गया।
1: चीन के हथियारों की खोखली ताकत को जानने के बावजूद पाकिस्तान चीन से सबसे ज्यादा हथियार खरीदता है। इसके पीछे पाकिस्तान की मजबूरी भी है। वो चीन के कर्ज के जाल में इस कदर फंस चुका है कि उसके पास कोई और विकल्प बचा ही नहीं है। लिहाजा चीन जो भी करता है, पाकिस्तान उसे सर झुकाकर कबूल करता है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के आंकड़ों के मुताबिक साल 2020 से 2024 के बीच में चीन ने पाकिस्तान के 81% आयातित हथियारों की आपूर्ति की है। 2020 से 24 से और 2015 से 19 की तुलना में देखा जाए तो पाकिस्तान ने हथियारों के आयात में 61% की बढ़ोतरी की है। आंकड़ों से साफ है कि चीन पाकिस्तान पर मेहरबान नहीं, बल्कि पाकिस्तान को लूटने खसोटने के लिए अपने कबाड़ हथियारों से थोप रहा है।
2: चाइना लगातार पाकिस्तान को एक टेस्ट बेड मानता है। उसने अपने BRI और CPEC के तरह का इन्वेस्टमेंट करके चाइना ने पूरी तरीके से पाकिस्तान को गुलाम बना रखा है। तमाम तरीके के जो मिलिट्री एड है, तमाम तरीके के एयर डिफेंस, तमाम तरीके के रॉकेट, मिसाइल, टैंक, आज की डेट में वो पाकिस्तान को देता है। इसलिए देता है कि जैसे विश्व में दिखा सके कि पाकिस्तान आर्मी इसका इस्तेमाल कर रही है, इसका बखूबी हिंदुस्तान के बरखिलाफ उसने उसका डिप्लॉयमेंट कर रखा है, उसका ऑपरेशनल रेडीनेस 100% है और इसके तहत वो अन्य देशों को अपना सामान भेज सके।
0: रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
4: गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर पर है दुनिया भर में मशहूर तीर्थ स्थल अंबाजी। अंबाजी को देश के 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। अंबाजी में भादरवी महामेले को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। यहाँ पर ये उत्सव भादरवी महीने में नवमी से पूनम तक यानी 7 दिनों तक बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। मेले में देखिए शुभारंभ होने से माँ अंबे के रथ खींचकर और मंदिर के विद्वान ब्राह्मणों और उनके द्वारा शास्त्रों के अनुसार पूजा अर्चना करके इसकी शुरुआत हुई। ध्वजा चढ़ाई गई और शक्ति भक्ति और आस्था का संगम अद्भुत देखने को मिला। 20 से 26 सितंबर तक चलने वाले भादरवी महामेले में शामिल होने के लिए 40 लाख से ज्यादा भक्तों के आने की उम्मीद है। ऐसे में मेले के सुचारू आयोजन के लिए 29 कमेटियों और 7,000 कर्मचारियों को तैनात किया गया। सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए 6,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी हैं।
5: आतुरतापूर्वक राह देखते हैं। ऐसा भादरवी पूनम महामेला 2026 की आज शुरुआत की गई है, जब लाखों की संख्या में माई भक्त अगले 7 दिनों में अंबाजी में आएंगे। उनकी सेवा और सुरक्षा के लिए 7,000 से भी अधिक सरकारी कर्मचारी 24 घंटे परस्पर तैनात रहेंगे। पार्किंग, निःशुल्क भोजन, लॉ एंड ऑर्डर, मंदिर एवं कपड़ संचालन सहित 29 जितनी जिला कक्षा की समितियां भी बनाई गई है। तदुपरांत अंबाजी परिसर में 4 जितने किस्म के भोजन केंद्र, अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ 8 जितने रेस्ट रूम यानी कि विश्रामा केंद्र और 40 से अधिक पार्किंग स्थलों की भी पहचान की गई है।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: महाराष्ट्र के चंद्रपुर में सजा तुकुम के राजा का दरबार श्रद्धालुओं के बीच आकर्षण का केंद्र बनी। पप्पा की मनमोहक प्रतिमा चावल, दाल, साबुदाना और मूंगफली के दानों से किया गया निर्माण। उत्सव के दौरान जालना में सजा बप्पा का अनोखा पंडाल, लग्नार्था की पूजा अर्चना के साथ यहां हो रहे हैं रामायण के दर्शन। संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के प्राण बचाते नजर आ रहे हनुमान। गुजरात के गोधरा में निकली गणेश प्रतिमा विसर्जन की भव्य शोभा यात्रा, 1,000 से ज्यादा मूर्तियों को विधिवत की गई विदाई। ढोल नगाड़ों के साथ पूज्य गणपति बप्पा मोरिया के जयकारे। राजस्थान के उदयपुर में नारायण सेवा संस्थान ने सामूहिक विवाह समारोह का किया आयोजन। शादी के पवित्र बंधन में बंधे 50 गरीब और दिव्यांग जोड़े नवविवाहितों को उपहार में दिए गए जरूरी सामान। उत्तराखंड के ऋषिकेश में एसडीआरएफ टीम ने किया महिला का रेस्क्यू। पहाड़ी से उतरते वक्त नदी के तेज बहाव में फंसी, सूचना के बाद चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। नेशनल पार्क से गांधी सागर में शिफ्ट हुई मादा चीता CCP2। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अभ्यारण्य में किया रेडी। देश का दूसरा बड़ा चीता घर बना गांधी सागर में।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम, और मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। एक बार फिर से लेकर एक दमदार शख्सियत का सफरनामा। इस बार जिस निर्भीक शख्सियत का सफरनामा लेकर हम हाजिर हुए हैं, उसने महाराष्ट्र में मिलावटखोरी करने वाली और लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करने वाली लॉबी के खिलाफ ऐलानी जंग कर दिया है। महाराष्ट्र में फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का कमिश्नर बनने के बाद इस शख्स ने अपने ताबड़तोड़ एक्शन से लोगों की सेहत की कीमत पर मुनाफाखोरी करने वाली लॉबी की नींद उड़ा कर रख दी है।

0: आप समझ गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि महाराष्ट्र में फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन विभाग के कमिश्नर तुकाराम मुंडे हैं। महाराष्ट्र की जनता जिन्हें अब सिंघम आईएएस कहने लगी है। 25 मई 2026 को एफडीए के कमिश्नर पद की जिम्मेदारी मिलने के बाद से ही तुकाराम एक्शन मोड में है। इनके कमिश्नर बनने के बाद महाराष्ट्र के होटल्स, रेस्टोरेंट, कैफे और कन्फेक्शनरीज के मालिक और मालकिनों को पहली बार एहसास हुआ कि उनका काम सिर्फ आंखें मूंद कर मुनाफा वसूली करना नहीं है बल्कि लोगों की सेहत और हाइजीन का कायदे से ख्याल रखना भी है। 4 महीने से भी कम में इनके कार्यकाल में महाराष्ट्र के होटल्स और रेस्टोरेंट्स की सूरत बदल गई है। आम लोग इनकी कार्यशैली से काफी खुश हैं।
1: अंधेरा कितना ही घनघोर क्यों ना हो, एक दिया काफी होता है उस अंधेरे की कालिमा को चीरने के लिए। और उजाले की प्रकृति ही कुछ ऐसी है कि वो व्यवस्था की वस्तु स्थिति को उजागर कर देता है। महाराष्ट्र के एक आईएएस अधिकारी ने अदम्य इच्छा शक्ति, नेक नियति और कर्तव्य निष्ठा के रथ पर सवार होकर व्यवस्थागत नियमों का दीप प्रज्वलित किया तो कई नामचीन संस्थाओं, कंपनियों और हस्तियों के स्याह चेहरे उजागर हो गए। महाराष्ट्र के इस युगांधर आईएएस अधिकारी का नाम है तुकाराम हरिभाऊ मुंडे। एक ऐसा नौकरशाह जिसने अपनी जिम्मेदारियों के तर्जे अमल की बेहतरीन नजीर पेश कर न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि देश भर के ब्यूरोक्रेट्स को बता दिया है कि अगर वो सच्ची निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करें तो करोड़ों हिंदुस्तानियों की बहुत सी दुश्वारियां यूं ही खत्म हो जाएंगी। आपको बता दें कि महाराष्ट्र कैडर के आईएएस ऑफिसर के तौर पर साल 2006 में सोलापुर के असिस्टेंट कलेक्टर के पद पर ज्वाइनिंग के बाद से अब तक तुकाराम मुंडे हर रोज आम लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं सीधे तौर पर सुनते हैं।
2: That's where you pointed out that I meet people during 4 to 5 every day. So that's a connect with the people. And it's a practice I have been doing it since I joined the service, not now. So I believe that if public servant or civil servant is to serve in a public space, so who am I serving? Each and every individual? See, if I do not know or do not meet them, do not connect with them, how would I know what are the issues? What are they facing?
1: 21 साल के प्रशासनिक सफर में 25 से ज्यादा तबादलों का दंश झेल चुके तुकाराम मुंडे को 25 मई 2026 को महाराष्ट्र के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन विभाग के कमिश्नर की जिम्मेदारी सौंपी गई। तुकाराम जब से एफडीए के कमिश्नर बने हैं मिलावटखोर, मुनाफाखोर, धांधलेबाज पनाह मांग रहे हैं। उन्हीं के विभाग के भ्रष्ट, बेईमान और कामचोर मातहत कर्मचारी त्राही माम कर रहे हैं लेकिन जनता बहुत प्रसन्न है। सच कहें तो आम लोगों को पहली बार पता चला है कि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कितने काम का विभाग है। बीते 15 सितंबर को तुकाराम ने सोशल साइट एक्स पर एक पोस्ट कर कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स के अंदर चल रही एक ऐसी धांधली उजागर की है जिसे आम जनता पूरी तरह अनजान थी। अस्पतालों के मेडिकल इक्विपमेंट्स प्रोक्योरमेंट को लेकर तुकाराम मुंडे ने जो खुलासा किया है उसने सनसनी मचा दी है। 15 सितंबर को अपनी एक्स पोस्ट में तुकाराम ने लिखा है, महाराष्ट्र में हॉस्पिटल में इस्तेमाल होने वाली सामग्रियों पर किए गए सर्वे में ये पाया गया कि एक आईवी इन्फ्यूजन सेट की एक्चुअल खरीद करीब 11 रुपए होती है जबकि इस पर MRP 325 रुपए लिखी होती है, यानी 2841% का मार्कअप। बढ़ोतरी, एक सिरिंज 6.75 रुपए में खरीदी जाती है जबकि उस पर MRP लिखी होती है 57.20 रुपए। एक कैथेटर 29.41 रुपए में खरीदा जाता है जबकि उस पर MRP लिखी होती है 310 रुपए। कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स में भर्ती होने वाले मरीज के डिस्चार्ज से पहले परिजनों को जब बिल दिया जाता है तो उसे देखकर उनकी पेशानियों पर पसीने की बूंदें छलकने लगती हैं। उन्हें क्या पता कि इस भारी भरकम बिल के पीछे नौकरशाहों और हॉस्पिटल्स की दुराभिसंधि का हाथ है। बहरहाल अगर तुकाराम जैसे मसीहा के हाथ में कमान हो तो जनता राहत की उम्मीद कर सकती है। महाराष्ट्र FDA की ओर से सामने रखे गए सर्वे के नतीजों के बाद ट्रेड प्रोक्योरमेंट प्राइस और घोषित MRP के बीच अंतर को लेकर स्पष्ट गाइडलाइन बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हॉस्पिटल्स के साथ ही मोटे मुनाफे के लिए जनता की सेहत से खिलवाड़ करने वाले होटल्स, रेस्तरां कॉन्फेक्शनरीज, डेयरीज, कैफे और फूड एंड एग्रो फैक्ट्रीज पर भी तुकाराम मुंडे कहर बनकर बरस रहे हैं। त्योहारी मौसम में मुनाफाखोरों की चांदी हो जाती है, इसलिए मिलावट का धंधा चरम पर पहुंच जाता है। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की धूम के बीच फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने मुंबई के मशहूर बार और रेस्तरा कैफे मुंडेगर का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया। वजह जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। FDA ने अपनी जांच में पाया कि गर्म खाने की चीजों को जरूरी तापमान 60 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा पर नहीं रखा जा रहा था और कोल्ड स्टोरेज का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से कम पर नहीं रखा जा रहा था। इसके साथ ही खाना बनाने वाली जगह ड्रेनेज सिस्टम तय मानकों के मुताबिक नहीं था, जिससे क्रॉस कंटामिनेशन का खतरा था। सोचिए सरकार ने पब्लिक हेल्थ को ध्यान में रखकर कितने अच्छे रेगुलेशंस बनाए हैं, पर इन रेगुलेशंस के कंप्लायंस को लेकर नौकरशाहों में इतनी बेफिक्री बेपरवाही है कि रेस्तरा या कैफे मालिकों को कौन कहे, आम जनता भी उदासीन हो जाती है। नतीजा ये होता है कि पैसे देकर होटल्स में खाना खाओ और तोहफे के तौर पर बीमारी घर ले आओ। पर FDA के कमिश्नर के तौर पर तुकाराम ने पूरे देश को चता भी दिया है और बता भी दिया है कि कानून की किताब ठंडे बस्ते में डालने के लिए नहीं होती। क्या तुकाराम से पहले किसी ने सोचा होगा कि भंडारे, महाप्रसाद, लंगर या सामूहिक भोज के लिए भी गाइडलाइंस जारी की जा सकती है? महाराष्ट्र FDA ने इसके लिए भी गाइडलाइंस जारी कर दी है, जिसके मुताबिक भंडारा, महाप्रसाद, लंगर या किसी सामूहिक भोज के आयोजन से कम 7 दिन पहले ऑनलाइन फॉर्म जमा करना पड़ेगा। ऐसे आयोजनों में सिर्फ लाइसेंस प्राप्त कैटरर्स की ही सेवाएं ली जा सकेंगी। खाना बनाने और पीने के लिए साफ या RO वाटर ही इस्तेमाल करना होगा। खाना बनाने और परोसने वाले वॉलेंटियर्स के लिए मास्क, दस्ताने और हेड कैप पहनना जरूरी होगा। भंडारों में आमतौर पर हाइजीन को अनदेखा कर दिया जाता है। इसमें खाना खाने वाले आमतौर पर मुफलिसी के मारे लोग ही होते हैं, इसलिए हाइजीन को लेकर आपत्ति दर्ज कराने का सूरत हाल नहीं होता। पर तुकाराम बचपन में बेबस गुर्बत की कड़वी हकीकत से वाबस्ता हो चुके हैं, इसीलिए गरीबों के दर्द को जानते हैं। वैसे FDA की भंडारे वाली गाइडलाइंस का हर तबके के लोग स्वागत कर रहे हैं।
3: नहीं, ये जो निर्णय लिया है वो अच्छा लिया है, जो भी है वो सबके हित के लिए है। अगर जो भी है, जो भी भंडारा या जो भी होता है उसमें अगर क्लीननेस रहेगा तो ये सबके हेल्थ के लिए अच्छा है।
4: इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज फॉर द गुड ऑफ द पीपल, गुड ऑफ द कम्युनिटी, और ये एक्सेप्टेबल होना चाहिए। और उनकी जो भी गाइडलाइंस है, ऑफकोर्स वो डिटेल में देखेंगे, जैसे कि हमारा मंडल होता है या ग्रुप्स होते हैं जहां पर ये सारी चीजें होती है, भंडारे एंड ऑल, वो उनको फॉलो करना चाहिए। और ये सभी के लिए है, गवर्नमेंट अगर कुछ पॉलिसीज ला रही है।
1: साफ है कि गरीब या आम जनता की सेहत और स्वास्थ्य को लेकर तुकाराम मुंडे बहुत संवेदनशील हैं। दूसरी ओर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट की अनदेखी करने वाली रसूखदार और पावरफुल लॉबी के खिलाफ एक्शन लेने में वो जरा भी हिचकिचाते नहीं है। अंजाम की परवाह किए बगैर तुकाराम ऐसी लॉबी से सीधा हेड ऑन कर लेते हैं। तुकाराम ने विमल इलायची का विज्ञापन करने पर बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान समेत अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को 14 अगस्त 2026 को नोटिस भेज दिया था। नोटिस में साफ तौर पर कहा गया कि विज्ञापन में इलायची के नाम पर पान मसाले का प्रमोशन हो रहा है, जबकि महाराष्ट्र में तंबाकू उत्पादों पर बैन है।
2: जो नोटिस इश्यू किया गया है अबाउट एडवर्टाइजिंग रेगुलेशन वायलेशन, उनको नोटिस रेगुलेशन 2018 के हिसाब से दिया गया है और सेक्शन 24 ऑफ फसाई एक्ट जो है उसके हिसाब से दिया गया है, क्योंकि ये गुटखा और जो प्रोडक्ट है महाराष्ट्र में बैन है और उसका एडवर्टाइजिंग ये सरोगेट एडवर्टाइजिंग में आता है, इसलिए हमने उनको नोटिस दिया, उनको टाइम दिया है।
1: साफ है कि निर्भीक तुकाराम रसूखदारों और पावरफुल लॉबीज के खिलाफ एक्शन लेने में जरा भी परहेज नहीं करते, हालांकि उन्हें इस नायकत्व के लिए धमकियां भी मिलती रही हैं। पर जो इंसान कर्तव्य परायणता का दिया अपने हाथों में लेकर लोकहित के अग्निपथ पर निकल जाता है, वो रास्ते में आने वाले सेहरा या बयाबा की परवाह नहीं करता। नियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराने और नियमों की अनदेखी करने वालों पर घास गिराने की वजह से शुरू से ही इनकी राह में कांटे बिछाए जाते रहे हैं, लेकिन एक सच्चे योद्धा की तरह हर मुश्किलों का ये डट कर मुकाबला करते हैं। आत्मा अगर गवाही दे तो बड़े से बड़ा एक्शन लेने से भी परहेज नहीं करते।
2: Once you do that and if you are a public servant, what is my role? That's the question I ask as a public servant. And if my role is to contribute for the betterment of the society, should I trade that part or should I compromise on that part? That was the question I ruminated upon. And the answer I got is I should trade this part, whatever the cost may be. Maybe sometimes it is less or more, whatever it is. That's a choice and that's a choice I made. And I don't think I regret anything of that today.
1: कहने की जरूरत नहीं कि साल 2026 में लोक सेवा का व्रत लेने के बाद से ही तुकाराम व्यापक जनहित के पथ पर निर्भीक होकर आगे बढ़ रहे हैं। 21 साल के सफर में 25 बार ट्रांसफर की दुश्वारी झेली, लेकिन जहां भी पोस्टिंग हुई, जिस विभाग की भी जिम्मेदारी मिली, पूरी क्रांति ला दी। 25 मई 2026 को FDA कमिश्नर बनने के बाद से ऐसे ऐसे साहसिक काम किए हैं कि नियमों की धजिया उड़ाने वाले पनाह मांग रहे हैं। महाराष्ट्र FDA का कमिश्नर बनने के बाद पहले हफ्ते में ही उन्होंने सब स्टैंडर्ड और मिलावटी सामान बेचने वाले 50 से ज्यादा ठिकानों पर छापे मारे और 100 लोगों को गिरफ्तार किया। उपचार के दावे वाले भ्रामक विज्ञापन दिखाने के आरोप में पतंजलि के आउटलेट पर छापे मारे और 51 लाख रुपए का सामान जब्त कर लिया। ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट जैसी ई कॉमर्स कंपनियों के 86 वेयर हाउसेज की जांच की और नियमों की अनदेखी की वजह से 14 वेयर हाउसेज के लाइसेंस सस्पेंड कर दिए। मुंबई में डोमिनोज पिज्जा के 4 आउटलेट के लाइसेंस सस्पेंड कर दिए। महाराष्ट्र में एनालॉग पनीर यानी बिना डेयरी से बने पनीर पर 1 साल तक के लिए बैन लगा दिया। तुकाराम मुंडे के इन ताबड़तोड़ एक्शन से महाराष्ट्र की आम जनता राहत महसूस कर रही है। दूसरी ओर होटल्स, रेस्तरा, कॉन्फेक्शनरीज, डेयरीज, कैफे और फूड एंड एग्रो फैक्ट्रीज के मालिकों को पहली बार यह एहसास हुआ है कि उनका काम सिर्फ मुनाफा ऐठना नहीं है, बल्कि लोगों की सेहत का, स्वास्थ्य का भी पूरा ख्याल रखना है।
0: ऐसा नहीं है कि FDA का कमिश्नर बनने के बाद से ही तुकाराम एक्शन मोड में आए हैं। महाराष्ट्र कैडर का IAS अधिकारी बनने के बाद से ही तुकाराम नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों पर वज्रपात करते रहे हैं और इसके लिए कई बार इन्हें धमकियां भी मिली, राह में रोड़े अटकाए गए, लेकिन तमाम चुनौतियों के बाद भी कभी भी अपने कर्तव्य पथ से विचलित नहीं हुए। एक गरीब किसान परिवार में जन्म लेने वाले तुकाराम ने बचपन में गरीबी का दंश झेला है, जीवन की दुश्वार देखी हैं, पैदावार के लिए खेतों में पसीना बहाया है और इसलिए इनका व्यक्तित्व फौलादी हो गया, हालात से हार नहीं मानने का जज्बा पैदा हो गया।

0: तुकाराम मुंढे आज महाराष्ट्र में आइडियल ब्यूरोक्रेसी की मिसाल बन चुके हैं। उनकी ईमानदारी और कर्तव्य परायणता गरीब मजलूम लोगों के स्वास्थ्य और सेहत की उम्मीद की लौ बन चुकी है। जबकि महाराष्ट्र में नियमों की अनदेखी करने वाले फूड और ड्रग बिजनेस से जुड़े प्रतिष्ठानों को हर पल तुकाराम का डर सता रहा है। बतौर एफडीए कमिश्नर 4 महीने से भी कम के इनके कार्यकाल में एफडीए 12,000 से ज्यादा निरीक्षण और छापेमारी कर चुका है। इनमें से 900 से ज्यादा हाई इंपैक्ट रेड्स शामिल हैं। खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता नियमों के उल्लंघन की वजह से महाराष्ट्र में कुल 603 कमर्शियल लाइसेंस सस्पेंड किए जा चुके हैं। मिलावटखोरी, प्रतिबंधित गुटखा या पान मसाला बेचने और नियमों की अनदेखी के मामले में 875 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इतना ही नहीं, एफडीए ने ऐसे मामलों में 650 से ज्यादा FIR भी दर्ज कराई है। तुकाराम की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वे नियमों की अनदेखी करने वाले प्रतिष्ठानों या व्यक्तियों के कद या रसूख से बेपरवाह रहते हैं। एफडीए ने नामी गिरामी फार्मास्यूटिकल कंपनी सिप्ला की पुणे स्थित यूनिट का 26 अगस्त को निरीक्षण किया और पैकेजिंग, स्टोरेज और खरीद बिक्री के रिकॉर्ड्स में गड़बड़ी और अनियमितता पाने पर इस यूनिट का सेल्स लाइसेंस रद्द कर दिया। तुकाराम के ताबड़तोड़ एक्शंस की जद में मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन यानी MCA भी आ चुका है। एफडीए ने MCA के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में स्थित 5 फूड आउटलेट्स पर 20 अगस्त को छापा मारकर 5 के FSSAI लाइसेंस सस्पेंड कर दिए। इतने हाई प्रोफाइल प्रतिष्ठानों के खिलाफ एक्शंस होंगे तो मामला कोर्ट में पहुंचेगा ही। MCA ने FDA के एक्शन के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया तो कोर्ट ने तुकाराम मुंडे को कड़ी फटकार लगा दी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि हम FDA को कितनी बार समझा चुके हैं कि मच्छर को तलवार से मत मारो, क्या आप खुद को लॉर्ड समझते हैं कि कुछ भी कर सकते हैं? तुकाराम को फटकार लगाते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनसे ये भी पूछ लिया कि FDA सिर्फ निजी संस्थानों पर छापेमारी क्यों कर रहा है, कानून का पालन तो सरकारी परिसरों की कैंटीन्स में भी होना चाहिए। तुकाराम भी कहां मानने वाले थे, उन्होंने अगले ही दिन बॉम्बे हाईकोर्ट कैंपस की 3 कैंटीनों पर रेड कर दी और 2 कैंटीन के लाइसेंस कैंसिल कर दिए।
1: ड्यूरिंग द हियरिंग द क्वेश्चंस वर एज वेदर यू आर टेकिंग एक्शन अगेंस्ट ओनली प्राइवेट और टेकिंग एक्शन अगेंस्ट द एस्टैब्लिशड गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट, वी आर टेकिंग, वी हैव द डेटा टू बैक इट अप, एंड इन दैट कोर्स ऑफ इंटरेक्शन सेज दैट हैव यू inspected Mantralaya canteen, so we had already done that. So then have you inspected or visited High Court canteen also, which we had not done. So I said we have not done that, but we have done this one. So High Court expects that it should be visited. Well, fine, next day my team goes and finds it out whatever it is there.
0: बॉम्बे हाईकोर्ट की कैंटीन पर रेड डालकर तुकाराम ने ये साबित कर दिया कि वो अलग ही मिट्टी के बने हैं। आपको बता दें कि इस तरह की चुनौतियां तुकाराम अपने सर्विस पीरियड में अनेकों बार फेस कर चुके हैं। साल 2006 में सोलापुर में बतौर असिस्टेंट कलेक्टर अपनी पहली पोस्टिंग में रेत माफियाओं पर एक्शन लिया तो उन पर जानलेवा हमला हो गया। साल 2007 में नांदेड़ में अवैध रेत खनन के खिलाफ कार्रवाई की तो 5 महीने में तबादला हो गया। 2012 में मुंबई सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट में पोस्टिंग हुई तो टैक्स चोरों से 310 करोड़ रुपए वसूल लिए। साल 2014 में कलेक्टर बनकर दोबारा सोलापुर पहुंचे तो टैंकर माफियाओं की नकेल कस दी, जिसके बाद इन्हें महाराष्ट्र का वाटरमैन कहा जाने लगा। मार्च 2017 में पुणे महानगर परिवहन महामंडल लिमिटेड के चेयरमैन बने तो ड्यूटी से लंबे समय से गायब चल रहे 158 कॉन्ट्रैक्ट ड्राइवरों को एक साथ सस्पेंड कर दिया। साल 2022 में महाराष्ट्र के हेल्थ केयर कमिश्नर बने तो सरकारी डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस बंद करवा दी। कहने की जरूरत नहीं कि तुकाराम मुंढे को जो भी जिम्मेदारी मिली उन्होंने कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी की नई लीक खींच दी। दरअसल इस इंसान का पालन पोषण चांदी के चम्मच से नहीं हुआ है, इनका बचपन बहुत ज्यादा दुश्वारियों और आर्थिक तंगी के बीच बीता है। महाराष्ट्र के बीड जिले के गुमनाम से गांव ताड़सोना के एक गरीब किसान परिवार में 3 जून 1975 को जन्मे तुकाराम के पिता के पास इनके लिए चप्पल खरीदने तक के पैसे नहीं होते थे, लिहाजा ये बिना चप्पल के नंगे पांव स्कूल जाते थे। दिन में पढ़ाई करते थे और रात में खेतों की सिंचाई का काम भी करते थे। क्या आप यकीन करेंगे कि तुकाराम मासूम उम्र में सिर पर सब्जियां रखकर साप्ताहिक बाजार जाते थे और उन्हें बेचकर पैसे ले आते थे ताकि घर की रोजमर्रा की जरूरतें पूरी हो सकें। इतनी हार्डशिप में रहकर भी ये अपने क्लास में टॉप करते थे। तभी तो साल 2005 में तुकाराम ने यूपीएससी क्रैक किया और ऑल इंडिया 20वीं रैंक हासिल की। आज वही ताड़सोना गांव का गुदड़ी का लाल ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा का दिया जलाकर नौकरशाहों को सच्चाई की राह दिखा रहा है।
2: बंदे में है दम में आज आपने महाराष्ट्र के एफडीए कमिश्नर तुकाराम मुंडे के जीवन से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं को देखा। अगले हफ्ते ऐसी ही किसी और बेमिसाल शख्सियत के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: देखिए, भारत और अमेरिका के बीच युद्धाभ्यास 2026 का आयोजन चल रहा है। इसमें दोनों देशों के सैनिक अपने अपने पराक्रम और कुशलता का परिचय दे रहे हैं। युद्धाभ्यास 2026 उत्तराखंड के औली और राजस्थान के महाजन फील्ड रेंज में आयोजित किया जा रहा है। इसमें देखिए दोनों देशों के 600 जवान शामिल हो रहे हैं। 9 सितंबर से शुरू हुआ ये युद्धाभ्यास 28 सितंबर तक चलेगा। इसमें दोनों देशों से 600 सैनिक भाग ले रहे हैं। माना यह जा रहा है कि यह अभ्यास भारत अमेरिका रक्षा सहयोग को नई ऊंचाई पर ले जाने वाला कदम है।
2: दुश्मनों के किसी भी चाल को किस तरह नाकाम करना है, ये इन जवानों को अच्छे से पता है। आतंकियों के नापाक मंसूबों को किस तरह नेस्तोनाबूद करना है, ये इन जवानों के पराक्रमी प्रदर्शन को देखकर समझा जा सकता है। भारतीय सेना के जवानों के जज्बे और शौर्य से पूरी दुनिया अच्छी तरह से वाकिफ है, और यही वजह है कि भारतीय सेना और अमेरिका सेना जाबाजी का अभ्यास कर रही है। ये युद्ध अभ्यास दोनों देशों के सैनिक राजस्थान के महाजन फायरिंग रेंज और औली में कर रहे हैं।
3: अमेरिका के बीच युद्धाभ्यास का 22वां संस्करण शुरू हो चुका है, और इस बार युद्धाभ्यास की खास बात यह है कि ये एक साथ दो अलग अलग मोर्चों पर किया जा रहा है। भारत और अमेरिका की सेनाएं एक तरफ पाकिस्तान की सीमा के बेहद नजदीक महाजन फील्ड फायरिंग रेंजेस में रेगिस्तान में युद्ध की बारीकियां एक दूसरे से साझा कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नजदीक औली में भारत और अमेरिका के सैनिक एक साथ एक दूसरे को अपने युद्ध कौशल से रूबरू करा रहे हैं। युद्धाभ्यास की खास बात यह भी है कि भारत और अमेरिका के 600 सैनिक एक साथ अलग अलग टेरेन में युद्ध के कौशल सीख रहे हैं, और लगातार भारत और अमेरिका के बीच किस तरह से सैन्य तालमेल बढ़ रहा है उसकी वानगी भी पेश कर रहे हैं।
2: इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य पहाड़ी और अर्ध पहाड़ी क्षेत्रों में इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स की संयुक्त क्षमता को बढ़ाना है। यह अभ्यास सिर्फ पारंपरिक प्रशिक्षण नहीं है, बल्कि इसमें ड्रोन और स्वायत्त प्रणालियों के इस्तेमाल पर विशेष जोर दिया जा रहा है। निगरानी और टोही के लिए आधुनिक तकनीक का प्रदर्शन महाजन में चल रहा है। दोनों सेनाओं के विशेषज्ञ मल्टी डोमेन वॉरफेयर यानी कई क्षेत्रों में एक साथ युद्ध की उभरती तकनीकों पर विचार साझा कर रहे हैं। इससे योद्धाओं को वास्तविक युद्ध जैसे हालात का अनुभव मिलेगा। इसके लिए दोनों देशों की सेनाओं ने कमांड पोस्ट एक्सरसाइज, एक्सपर्ट एकेडमिक डिस्कशन और सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट एक्सचेंज भी कर रही है। युद्धाभ्यास का सबसे बड़ा मकसद इंटरऑपरेबिलिटी यानी दोनों सेनाओं के बीच तालमेल बढ़ाना है। भारतीय और अमेरिकी सैनिक एक दूसरे की रणनीति, तकनीक और प्रक्रियाएं सीख रहे हैं और पराक्रम का प्रदर्शन कर रहे हैं। पहाड़ी इलाकों में पैदल सेना आधारित अभियानों पर जोर है, इससे संयुक्त अभियान चलाने की क्षमता मजबूत होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि बदलते वैश्विक सुरक्षा माहौल में ऐसे अभ्यास दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करते हैं। इसी क्रम में महाजन फायरिंग रेंज में M777 अल्ट्रा लाइट होवित्सर तोप से लाइव फायरिंग की गई, जिसमें डायरेक्ट फायरिंग मेथड का इस्तेमाल करके सामने दिख रहे टारगेट पर निशाना साधा गया। इस युद्ध अभ्यास का एक मकसद यह भी है कि मुश्किल परिस्थितियों में काम करने के लिए समझ विकसित करना, जहां संचार व्यवस्था बाधित

0: अमेरिका रक्षा सहयोग को नई ऊंचाई पर ले जाने वाला कदम है। कुल मिलाकर यह अभ्यास न सिर्फ सैन्य क्षमता बढ़ाएगा बल्कि आपसी विश्वास और सहयोग को भी मजबूत करेगा। शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: कौन सी जन्म की तारीख वाले लोगों को विचित्र बीमारियां हो सकती हैं? कौन सी जन्म की तारीख वाले लोगों को बीमारियों का वहम होता है, और कौन सी जन्म की तारीख वाले लोगों के साथ दुर्घटनाएं ज्यादा होती हैं? आपकी जन्म की तारीख के अनुसार क्या है आपकी सेहत का हाल और क्या है सेहत को बेहतर करने के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम
8: महाराष्ट्र के चंद्रपुर में सजा तुकुम के राजा का दरबार, श्रद्धालुओं के बीच आकर्षण का केंद्र बनी पप्पा की मनमोहक प्रतिमा, चावल दाल साबूदाना और मूंगफली के दानों से किया गया निर्माण। उत्सव के दौरान चालना में सजा बप्पा का अनोखा पंडाल, लग्नहर्ता की पूजा अर्चना के साथ यहां हो रहे हैं रामायण के दर्शन, संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के प्राण बचाते नजर आ रहे हनुमान। गुजरात के गोधरा में निकली गणेश प्रतिमा विसर्जन की भव्य शोभा यात्रा, 1000 से ज्यादा मूर्तियों को विधिवत दी गई विदाई, ढोल नगाड़ों के साथ गूंजे गणपति बप्पा मोरिया के जयकारे। राजस्थान के उदयपुर में नारायण सेवा संस्थान ने सामूहिक विवाह समारोह का किया आयोजन, शादी के पवित्र बंधन में बंधे 50 करीब और दिव्यांग जोड़े, नव विवाहितों को उपहार में दिए गए जरूरी सामान। उत्तराखंड के ऋषिकेश में SDRF टीम ने किया महिला का रेस्क्यू, पहाड़ी से उतरते वक्त नदी के तेज बहाव में फंसी, सूचना के बाद चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। नेशनल पार्क से गांधी सागर में शिफ्ट हुई मादा चीता CCP2, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अभ्यारण्य में किया रिलीज, देश का दूसरा बड़ा चीता घर बना गांधी सागर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
9: Come on.

कम कीमत और सस्ती टेक्नोलॉजी के चक्कर में चीन से वेपन तो खरीद लिया गया, लेकिन वो जंग के मैदान में कितना कारगर है इसका पता अब उसके खरीदारों को हो रहा है। यानी कि चीन से डिफेंस डील करने वाले देश के सामने अब सर पीटने के अलावा दूसरा रास्ता नहीं बचा। ना तो चीन की मिसाइलें मंजिल तक पहुँच रही है, न ही उसके टैंक पराक्रम दिखा रहे हैं। चीन के मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम भी लाइव फायर के दौरान खुद तबाह हो चुके हैं। वहीं ऑपरेशन सिंदूर में चीन के एयर डिफेंस सिस्टम का फ्लॉप होना दुनिया ने देख ही लिया।

0: चीन की डुप्लीकेसी के बारे में पूरी दुनिया जानती है और अब तो इसके बाकायदा सबूत मिलने शुरू हो गए हैं, यानी अब दुनिया देख भी रही है। दरअसल हाल ही में सऊदी अरब ने हुती विद्रोहियों पर हमला किया, जिसमें उसने DF-15A का इस्तेमाल किया, जो कि अपने टारगेट पर पहुंचने से पहले ही फट गई। और आपको ये भी बता दें कि ये वही DF-15A है जो सऊदी अरब ने चीन से ली थी।
1: सोशल मीडिया पर DF-15 मिसाइल के कुछ वीडियोस भी सामने आए हैं। इनमें ये मिसाइल एक रेगिस्तान में पड़ी दिख रही है और कुछ लोग इसे देखते और फिर धकेल कर इधर उधर करते नजर आ रहे हैं। ये लोग हूती लड़ाके और उनके समर्थक बताए गए हैं, जो गिरी हुई सऊदी मिसाइल का जायजा ले रहे हैं।
0: दरअसल DF-15A शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का बूस्ट रेंज है। अब हाल ही में विश्लेषकों ने जो सऊदी अरब की तरफ से यमन में हमला किया गया था, वहीं से इसके कुछ अवशेष ढूंढे हैं, जिसके बाद और जिसके अध्ययन से ये पता चलता है कि ये चीनी निर्मित ही है।
1: कई रक्षा विशेषज्ञों का दावा है कि ये मिसाइल सऊदी अरब की रॉयल सऊदी स्ट्रेटेजिक मिसाइल फोर्स ने हूती ठिकानों पर दागी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक मिसाइल लक्ष्य से चूक गई और यमन के रेगिस्तान में जा गिरी।
0: अगर मिसाइल दागने की पुष्टि हो जाती है तो ये प्रमाणिक हो जाएगा कि सऊदी अरब ने पहली बार चीनी मिसाइल का इस्तेमाल किया है। हालांकि अभी तक ना तो यमन और ना ही चीन से इसके बारे में कोई भी आधिकारिक जानकारी सामने आई है। सऊदी अरब भी फिलहाल खामोश है।
1: दावा ये किया जा रहा है कि करीब 3 दशक में ये पहली बार हुआ है जब सऊदी फोर्स ने चीन से खरीदी गई DF-15A शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का युद्ध में इस्तेमाल किया है। विश्लेषक इस निष्कर्ष पर इसलिए पहुंचे क्योंकि हूतियों के पास DF-15A जैसी मिसाइल होने के कोई प्रमाण नहीं है। उनके शास्त्रागार में मुख्य रूप से ईरानी तकनीक वाली मिसाइलें और ड्रोन हैं। सऊदी अरब के पास पहले से चीन से खरीदी गई DF-3A और DF-21 जैसी मिसाइलें होने के रिपोर्ट्स लंबे समय से चल रही हैं। लेकिन सऊदी अरब ने DF-15A शॉर्ट रेंज मिसाइल प्रणाली भी चीन से खरीद रखी है। इसकी कोई आधिकारिक जानकारी पहले कभी सामने नहीं आई, इसीलिए कई विशेषज्ञों ने इसे सऊदी की गुप्त मिसाइल क्षमता का हिस्सा माना है। अगर ये सऊदी की मिसाइल थी तो इसका लक्ष्य चूकना सऊदी की गुप्त मिसाइल क्षमता पर सवाल खड़े करता है, साथ ही चीनी हथियारों की विश्वसनीयता पर भी चर्चा छिड़ गई है।
2: देखिए, सबसे पहले ये बात क्लियर है कि सऊदी अरबिया का जो मिसाइल प्रोग्राम है उसकी शुरुआत देखिए चाइना ने की थी, और इसी के तहत चाइना ने अपने तमाम मिसाइलों की जो सप्लाई है वो सऊदी अरबिया को की थी, जिसमें प्रमुख जो मिसाइल्स हैं वो हैं DF-3A और DF-21। ये दोनों मिसाइलें लगातार सऊदी अरबिया के पास बनी हुई है, जिसका वो टाइम टू टाइम इस्तेमाल करता है। जहां तक उसके दूसरी मिसाइल DF-15 अल्फा का सवाल है, जब हूतियों के ऊपर मिसाइल फायर की सऊदी अरब ने तो उसके जो रेमनेंट, उसके जो स्प्रिंटर थे, उससे पता लगा कि सऊदी अरबिया के पास DF-15 अल्फा मिसाइल भी है, जो कि एक बड़ा ही प्रोमिनेंट बैलिस्टिक मिसाइल है। तो इस तरीके के जब आप मिसाइल को फायर करते हैं तो दिखाता है कि आपकी इन्वेंट्री में ये मिसाइल है।
1: सऊदी चीन मिसाइल डील का इतिहास लगभग 40 साल पुराना है और बेहद गोपनीय रहा है। ये रक्षा इतिहास के सबसे दिलचस्प अध्यायों में से एक है, क्योंकि सऊदी अरब पारंपरिक रूप से अमेरिका का सबसे बड़ा हथियार खरीदार रहा है, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए उसने हमेशा चीन पर ही भरोसा किया है। 1980 के दशक के मध्य में जब सऊदी अरब को ईरान इराक युद्ध के दौरान अपनी सुरक्षा को खतरा महसूस हुआ तो उसने अमेरिका से बैलिस्टिक मिसाइलें मांगी। अमेरिका ने इसराइल के विरोध और मध्य पूर्व में हथियारों की होड़ बढ़ने के डर से सऊदी को मिसाइलें देने से मना कर दिया। इसके बाद सऊदी अरब के प्रिंस खालिद बिन सुल्तान, जिन्हें सऊदी मिसाइल प्रोग्राम का जनक कहा जाता है, उन्होंने 1985 में गुप्त रूप से चीन से संपर्क किया। दोनों देशों के बीच तब आधिकारिक राजनयिक संबंध भी नहीं थे। साल 1988 में ये खुलासा हुआ कि सऊदी अरब ने चीन से DF-3A इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल खरीदी है। ये चीन की एक परमाणु सक्षम मिसाइल थी, लेकिन सऊदी अरब को देने के लिए चीन ने इसमें बदलाव कर दिए और इसे सिर्फ कन्वेंशनल पेलोड, यानी कि पारंपरिक उच्च विस्फोटक ले जाने लायक ही बना दिया। सऊदी अरब ने मिसाइलों को खरीदने के बाद करीब 26 साल तक दुनिया से इसे छिपा कर रखा और पहली बार 2014 की एक सैन्य परेड में इसे सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया गया।
2: देखिए, सबसे पहले सऊदी अरेबिया अमेरिका का बहुत ही स्ट्रांग एलाई है। सऊदी अरेबिया में अमेरिका के तमाम मिलिट्री बेसिस है, लेकिन जहां तक मिलिट्री मिसाइल्स का सवाल है, उसने चाइना की तरफ रुख किया, क्योंकि चाइना उसको एक सस्ती मिसाइल देता है, एक जो उसका कॉस्ट इफेक्टिवनेस होता है। और साथ में ये देखिए, 1980 के दशक में चाइना के सऊदी अरेबिया के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन हुए, और वो इतने प्रकार हुए कि तमाम तरीके का इन्वेस्टमेंट चाइना ने किया। इसी के तहत उसने ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में मध्यस्थता की, सऊदी अरेबिया और सीरिया के बीच में मध्यस्थता की। तो ये शुरुआत उसकी 1980 में हुई थी, जिसके तहत उसने DF-3 अल्फा मिसाइल को सप्लाई किया, और आज की डेट में वो अन्य तरीके की भी मिसाइलें सऊदी अरेबिया को दिया। तो ये ज्यादा हिस्टोरिक हिस्ट्री में ना जाके ये रिसेंटली 80s के दशक का यह डेवलप।
1: DF-3 मिसाइलें बहुत पुरानी हैं, लिक्विड फ्यूल आधारित थी और उनकी सटीकता बेहद खराब थी, इसीलिए सऊदी अरब को अपनी रणनीतिक क्षमता को आधुनिक बनाने की जरूरत पड़ी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब ने साल 2007 में चीन के साथ एक और गुप्त समझौता किया और अधिक आधुनिक DF-21 मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें खरीदी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA को सऊदी और चीन के बीच DF-21 मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल सौदे की भनक लग गई थी, लेकिन तब उन्होंने ये सुनिश्चित कर लिया था कि ये मिसाइलें भी परमाणु हथियार ले जाने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ पारंपरिक हमलों के लिए ही मॉडिफाई की गई हैं। तो अमेरिका ने इस पर कोई कड़ा विरोध नहीं जताया।
0: हाल ही में यमन के मरी प्रांत में DF-15 ने कमलबा मिलने से इस बात की पुष्टि होती है कि सऊदी अरब चीनी मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि सऊदी अरब भले ही अभी तक इस बात से इनकार करता आया हो, लेकिन इससे एक और बात की पुष्टि होती है और वो ये कि डील का दायरा इससे कहीं ज्यादा बड़ा है।
1: पिछले कुछ वर्षों में अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया कि सऊदी अरब अब सिर्फ चीन से मिसाइलें खरीद नहीं रहा है, बल्कि चीन की तकनीकी मदद से अपनी खुद की बैलिस्टिक मिसाइल भी विकसित कर रहा है।
2: देखिए, जहां तक सऊदी अरेबिया के इंडिजिनस डेवलपमेंट का सवाल है मिसाइल के फील्ड में, डेफिनेटली उसकी मदद चाइना कर रहा है, और इसी के तहत सऊदी अरेबिया ने सॉलिड फ्यूल मिसाइल डेवलप कर लिया है। उसके यहाँ जो ये मिसाइल बन रही है, उसका उस जगह का नाम है अल दवदामी। इस जगह पे उसका मिसाइल प्रोग्राम है और इसकी मदद लगातार चाइना ने की है। और अब जब से युद्ध की शुरुआत किया है, उसमें जरूर सेटबैक लग सकता है, लेकिन इसके पहले जब युद्ध नहीं हो रहा था तो चाइना अपने इन्वेस्टमेंट मार्केट और तमाम तरीके के डिफेंस इक्विपमेंट का मार्केट उसने मिडिल ईस्ट को पकड़ा था। तो इसी के तहत लगातार उसने टेक्नोलॉजिकल नो हाउ और जो उसका रॉ मटेरियल है सऊदी अरेबिया को दिया, जिससे कि सऊदी अरेबिया की जो इंडिजिनस मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो आगे बढ़ा, और साथ में उसने सॉलिड फ्यूल का मिसाइल डेवलप किया।
1: सऊदी अरब लंबे समय से यमन में हूतियों के खिलाफ हवाई हमले करता रहा है। बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल युद्ध की तीव्रता बढ़ाने के संकेत माने जाते हैं। मारीब क्षेत्र में हाल ही में लड़ाई तेज हुई है और दोनों पक्ष एक दूसरे पर हमले बढ़ा रहे हैं।
0: कम कीमत, मेड इन चाइना, लेकिन शर्तें कड़ी, ये वो तमाम ऐसी चीजें हैं जो चीन हर उस देश पर लगाता है जिसे वो अपने हथियार देता है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर चीन कभी नहीं करता है, और इसी के साथ साथ चीन मेंटेनेंस का खर्चा भी बिल्कुल नहीं लेता, यानी जो भी देश हथियार खरीदेगा मेंटेनेंस के लिए उसको वापस चीन का दरवाजा खटखटाना होगा। लेकिन विशेषज्ञ ये कहते हैं कि चीनी हथियार इस वक्त कागजों पर भले ही पुख्ता नजर आ रहे हो, लेकिन रण क्षेत्र में ये पूरी तरह से फिसड्डी साबित हो रहे हैं।
1: ग्लोबल डिफेंस मार्केट में चीन खुद को अमेरिका और रूस के विकल्प के तौर पर पेश करता है। वास्तविक युद्ध में उसकी प्रमुख मिसाइलों का फेल होना चीन के हथियारों की विश्वसनीयता और उनकी तकनीकी गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े करता है। मेड इन चाइना के चक्कर में फंसे बांग्लादेश का हाल देख लीजिए। 9 सितंबर 2026 को चटगांव में फील्ड फायर अभ्यास के दौरान टाइप 59 टैंक में विस्फोट हो गया, और जैसे ही टैंक से गोला दागा गया, वो बैरल से बाहर निकलने के बजाय टैंक के भीतर ही ब्लास्ट कर गया। इस भीषण विस्फोट के कारण टैंक के क्रू मेंबर्स में 2 बांग्लादेशी जवानों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक वरिष्ठ अधिकारी गंभीर रूप से घायल हो गया।
0: विशेषज्ञों का मानना है कि भले ही तोप और इलेक्ट्रॉनिक्स नया कर दिया गया हो, लेकिन टैंक का मेटल वही पुराना है, यानी 50 साल पुराना, जिसका असर ये हो रहा है कि टैंक बड़े बड़े गोला बारूद को झेल ही नहीं पा रहा। एक बार फायर करने के बाद वो वापस टैंक के अंदर ही विस्फोट करता है। इसका एक जीता जागता उदाहरण हाल फिलहाल में मिला भी है।
2: देखिए टैंक T-59 जो टैंक है वो बहुत ही पुराना टैंक है, चाइनीज ओरिजिन का है। अगर आपने इसको मेंटेन नहीं किया, रिफर्बिश करके आप काम चलाते रहते हैं, तो समय के साथ हर एक इक्विपमेंट की उपयोगिता घटती जाती है, और वो भी ऐसे समय में जब आप उसको ट्रेनिंग पर्पसेस के लिए यूज कर रहे हैं, लगातार उसको अपग्रेड कर रहे हैं और जो उसका मेटलर्जी है वो फेल होता है। देखिए जब ब्रीच प्रेमेच्योर होता है तो उसके कई रीजन होते हैं, एमिशन की भी वजह हो सकती है, जो प्रेशर ब्रीच में जनरेट हुआ उसको सस्टेन नहीं कर पाया, इसका मतलब मेटलर्जी उसकी खराब थी, या फिर उसके बैरल में कोई रेमनेंट रह गया या बैरल क्लीन नहीं हुआ उसकी वजह से प्रीमेच्योर हुआ, तो वजह कुछ भी हो सकती है। जब इस तरीके के लगातार इंसिडेंसेस होते हैं तो बेसिक शक जाता है उसकी मेटलर्जी पे, क्या कितना प्रेशर जनरेट कर रहा है या इरेटिक बिहेवियर ऑफ एमिशन, तो इन सारी चीजों को देखना पड़ेगा।
1: हादसे में शामिल टैंक चीन में बना टाइप 59 है, जिसका इस्तेमाल बांग्लादेश की सेना करती है। टैंक 59 चीन में बना एक पुराना मेन बैटल टैंक है। इसे चीन का पहला ऐसा टैंक भी माना जाता है जिसे बड़ी तादाद में बनाया गया था। बांग्लादेशी सेना के बेड़े में शामिल टाइप 59 दुर्जॉय टैंक मूल रूप से करीब 70 साल पुराना सोवियत डिजाइन है, जिसे चीन ने कॉपी करके बनाया था और बाद में बांग्लादेश को इसे अपग्रेड करके दे दिया। टाइप 59 सैन्य टैंक काफी पुराना है, लेकिन समय के साथ इसके कई नए वर्जन और अपग्रेड तैयार किए गए हैं। इनमें ज्यादा बेहतर तोप, फायर कंट्रोल सिस्टम, रात में देखने की सुविधा और टैंक की सुरक्षा बढ़ाने वाले उपकरण जोड़े गए हैं, लेकिन मूल संरचना पुरानी ही रही।
2: जो हादसे हुए T-59 के, आप कितना भी अपग्रेड कर दें लेकिन आप उसकी मेटलर्जी नहीं बदल पाएंगे। जो आयरन है, जो बैरल है 125 mm स्मूथ बोर, उसको आप रिप्लेस नहीं कर पाते। हालांकि जो टैंक है, जब नंबर ऑफ राउंड्स जितने वो फायर कर लेते, उसकी EFC वैल्यू होती है, इक्विवेलेंट फुल चार्ज की वैल्यू होती है, उसमें कितना वियर एंड टियर हुआ, और उसका बैरल भी बदला जाता है, लेकिन उस मेटलर्जी को आप कैसे इंप्रूव करेंगे जो एक पर्टिकुलर तरीके से बनाई गई है, उस कितना प्रेशर जनरेट करा, एमिनिशन जो आप लोड करके फायर कर रहे हैं, जब उसका प्रोपेलेंट बर्न होता है तो कितना प्रेशर जनरेट करता है, और क्या वो स्टील या मेटलर्जी उसको सस्टेन कर पा रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये एक आउटडेटेड इक्विपमेंट है, टैंक है।
1: चीनी टैंकों में सेफ्टी फीचर्स और मेटल की क्वालिटी हमेशा से सवालों के घेरे में रही है। जरा सी ओवरहीटिंग या फिर लो क्वालिटी गन बैरल की वजह से गोला अंदर ही ब्लास्ट हो जाता है।
0: बांग्लादेश में हुए टैंक हादसे ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा और साथ ही साथ चीनी हथियारों की विश्वसनीयता पर भी अब सवाल खड़े हो गए हैं। लेकिन यहाँ बांग्लादेश की मजबूरी है, वो चीन के अलावा कहीं और जा नहीं सकता, क्योंकि 70% हथियार उसने चीन से ही लिए हैं।
1: बांग्लादेश की सेना रक्षा उपकरणों के लिए बहुत बड़े पैमाने पर चीन पर निर्भर है। सिब्रियनी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट और रक्षा विशेषज्ञों की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश दुनिया में चीनी हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है। वो अपनी सैन्य जरूरतों का 72-74% हथियार अकेले चीन से आयात करता है। हाल के वर्षों में खासकर 2024-26 के बीच चीनी हथियारों में लगातार आ रही खराबियों, घटिया कलपुर्जों और चीनी कंपनियों की ओर से मरम्मत के लिए मांगी जाने वाली भारी भरकम कीमत के कारण बांग्लादेशी सेना में असंतोष बढ़ा है, और यही वजह है कि बांग्लादेश अब धीरे धीरे अपनी सैन्य निर्भरता को बांटने के लिए तुर्की और कुछ हद तक पश्चिमी देशों के विकल्पों की तरफ भी हाथ बढ़ा रहा है।
0: चीन अपनी सेना के लिए नए और अपग्रेडेड हथियार बना रहा है, लेकिन ऐसे में जो पुराने हथियारों का जखीरा है वो काफी हद तक चीन के पास बचा हुआ है, जैसे कि टाइप 59 टैंक हो या फिर जेट्स हो। अब इन्हें चीनी कंपनियां थोड़ा अपग्रेड करके बांग्लादेश और अफ्रीकी देशों को कम कीमतों में बेच देती हैं, और यहीं से चीन मुनाफा भी कमा रहा है और दूसरे देशों को कर्जदार भी बना रहा है। बाकी उसके सैन्य उपकरणों पर जो विश्वसनीयता है वो तो दुनिया जानती ही।
1: रक्षा विशेषज्ञ और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीनी हथियारों के नाकाम होने के पीछे कई वजह हैं। बड़े परीक्षणों का अभाव, अमेरिकी और रूसी हथियारों के उलट चीनी हथियार निर्यात करने से पहले मुश्किल और वास्तविक युद्ध जैसी परिस्थितियों से नहीं गुजरते। दूसरा है गुणवत्ता पर मात्रा को प्राथमिकता। चीन का मेन फोकस हथियारों की विश्वसनीयता और लाइफ साइकिल के बजाय भारी मात्रा में सस्ते हथियार बाजार में उतारने पर है। तीसरा है घटिया पुर्जे और सर्विसिंग। चीनी कंपनियां बिक्री के बाद मेंटेनेंस सपोर्ट देने में नाकाम रहती हैं, जिसे खरीदार देश के पास खराब पुर्जों को बदलने का कोई और विकल्प नहीं बचता। सस्ते होने के कारण जो देश चीनी हथियारों के जाल में फंस रहे हैं, वो अब अंतर्राष्ट्रीय मोर्चों पर इन रक्षा सौदों को लेकर पछता रहे हैं और चीन की वैश्विक साख को इससे धक्का भी लगा है।
2: पूरे विश्व जानता है कि चाइनीज इक्विपमेंट या चाइनीज कोई भी प्रोडक्ट है उसकी रिलायबिलिटी नहीं होती, वो वन टाइम यूज होता है। आपने यूज किया यूज एंड थ्रो टेक्नोलॉजी, तो उसमें क्वालिटी कंट्रोल नहीं होता। बहुत बड़ा आप जो इन्वेस्टमेंट, जो इनपुट का इन्वेस्टमेंट है वो नहीं करते हैं। जब आप इसको डिफेंस के इक्विपमेंट में लागू करते हैं तो आपने मेटलर्जी हो गया, आप सस्ता लोहा, सस्ता मटेरियल, सस्ता एमिनिशन, सस्ते एक्सप्लोसिव, इन सारी चीजों का अगर आप इस्तेमाल करेंगे सिर्फ इस वजह से कि आपको कॉस्ट कटिंग करना है, सिर्फ इस वजह से कि आपको मास प्रोडक्शन करना है, क्योंकि आप मैन्युफैक्चरिंग हब है, डिफेंस के फील्ड में आप आत्मनिर्भर हैं, तो इससे होता यह है कि आपकी क्वालिटी कंप्रोमाइज होती है। और जब वो डिफरेंट डिफरेंट एनवायरमेंट में, डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर में, डिफरेंट डिफरेंट टेरेन में जब उसका इस्तेमाल होता है तो कोई ना कोई हिस्से पुर्जे उसके फेल होते हैं।
1: दिसंबर 2025 में कंबोडिया थाईलैंड में संघर्ष के दौरान एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें दावा यह किया गया था कि चीन का हथियार कैसे युद्ध के मैदान में फ्लॉप साबित हो गया। वीडियो में दावा किया गया कि कंबोडियाई सैनिक जब थाईलैंड पर निशाना लगाने के लिए चीनी रॉकेट लॉन्च कर रहे थे तो उसमें ब्लास्ट हो गया, जिसकी चपेट में कई कंबोडियाई सैनिक आ गए। 8 सैनिकों की तो जान चली गई।
2: देखिए, जहां तक चाइनीज MLRS और 19B रॉकेट सिस्टम का सवाल है, जब इसको लॉन्च किया गया, फायर किया गया, तो ये वर्टिकली अब जाके स्प्लिट हो गया। कहने का मतलब ये है कि जब आपने फायरिंग किया तो इसका जो एमिनिशन है, जो मिसाइल का नोज है, जो सेंसर है, वो पहले से ही एक्टिवेट हो गए, या तो इतने तरीके से सस्टेन फायरिंग में वो इस चीज को डियर नहीं कर पाए, या फिर इतना हीट जनरेट हुआ विद इन द बैरल उसकी वजह से एक्सप्लोजन हुआ। तो चाहे किसी भी वजह से आपका प्रीमेच्योर एक्सप्लोजन हुआ हो, कंबोडियन आर्मी ने इसको सफर किया एट द टाइम ऑफ वॉर। आपको ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा जिसमें रिडंडेंसी हो, जिसमें आप जो रेट ऑफ फायर डिस्क्राइब करें उसको अगर मेंटेन करें तो किसी भी तरीके के हादसे ना हो।
1: कंबोडिया की सेना में चीन से खरीदी गई MLRS टाइप 90B रॉकेट का इस्तेमाल होता है और इसी हथियार को इस्तेमाल थाईलैंड के खिलाफ किया जा रहा था। दरअसल कंबोडिया के साथ युद्ध में थाईलैंड भी चीन से खरीदे गए टैंकों का इस्तेमाल ही कर रहा था। ये टैंक थे VG-4। युद्ध के समय इसकी परीक्षा हुई तो ये फ्लॉप साबित हुआ। VG-4 टैंक का बैरल फट गया, जिससे इसके क्रू मेंबर्स घायल हो गए। हथियारों की ताकत और भरोसे की असली परीक्षा युद्ध के मैदान में होती है और रणभूमि में चीन के हथियारों की विश्वसनीयता क्या है, वो धीरे धीरे दुनिया देख रही है। कंबोडिया के साथ युद्ध में थाई सेना के VT-4 टैंक का बैरल फटना चीन के लिए शर्मनाक है। मेन गन के अलावा टैंक का फायर कंट्रोल से जुड़ा टारगेटिंग सिस्टम और उसका लेजर वार्निंग सिस्टम भी खराब हो गया। ये सिस्टम आधुनिक बख्तरबंद लड़ाई के लिए बहुत जरूरी है, खासकर टारगेट पहचानने, हमले की सटीकता और दुश्मन के लेजर हमले से चेतावनी के लिए।
2: देखिए, जहां तक टैंक टेक्नोलॉजी का सवाल है, उस जब VT-4 टैंक की हम बात करते हैं तो उसको भी काफी तरीके का सेटबैक लगा। मेरा मानना है कि जो मेंटेनेंस टैंक को चाहिए, जो आपको उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना कि कितने राउंड उसने एपी शॉट फायर किए, कितने उसने हीट एमिशन फायर किया, इन सब का रिकॉर्ड रखेंगे तो बेहतर होगा, जिससे कि आप मेटलर्जी कितना वियर एंड टीयर हुआ इसको आप कैलकुलेट कर पाएंगे। और जहां तक उसके लेजर लॉकिंग सिस्टम का सवाल है, जहां तक उसके लॉकिंग सिस्टम का सवाल है, उसको भी आपको एक फूल प्रूफ रखना होगा। ये देखिए, टैंक को सर्वाइव करने के लिए ये सारे सिस्टम काम करने चाहिए। अगर लॉकिंग सिस्टम ही खराब हो जाएगा तो आप कैसे टारगेट को लॉक करके उसके ऊपर फायर करेंगे।
1: VT-4 एक मेन बैटल टैंक है, जिसे चीनी कंपनी नॉरिनको ने बनाया है। चीन ने इस टैंक को पाकिस्तान और थाईलैंड समेत कई देशों को एक्सपोर्ट किया। इस टैंक में 125 mm की स्मूथबोर गन, जो पारंपरिक गोला बारूद के साथ साथ गन से लॉन्च होने वाली गाइडेड प्रोजेक्टाइल भी फायर कर सकती है। इसके साथ ही टैंक में एक डिजिटल फायर कंट्रोल सिस्टम और लेजर वार्निंग रिसीवर जैसे डिफेंसिव सिस्टम भी है, जो युद्ध के दौरान फेल हो गया था। मौजूदा समय में थाई सेना में 62 BT-4 टैंक ऑपरेशन है। इस टैंक का इस्तेमाल पाकिस्तानी सेना भी करती है।
0: एक एक करके चीन के तमाम हथियार फिसड्डी साबित हो रहे। कागजों पर भले ही ये कितने मजबूत हो, लेकिन रण क्षेत्र में ये बिल्कुल जीरो है। और इसका जीता जागता सबूत है पाकिस्तान द्वारा हाल ही में भारत पर किया गया हमला, जहां पर पाकिस्तान ने ड्रोन्स और मिसाइलें दागी थी, जो पूरी तरह से फिसड्डी साबित हुई है। और ये पूरी दुनिया ने देखा भी है।
1: चीन जो खुद अपने तैयार किए गए एयर डिफेंस सिस्टम पर भरोसा नहीं करता है, जिसने अपनी सुरक्षा के लिए खुद रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीद रखा है, उसके यहाँ तैयार एयर डिफेंस सिस्टम पर पाकिस्तान इतरा रहा था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना के पराक्रम के सामने चीन से खरीदे गए HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम की एक नहीं चली। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान के लाहौर में तैनात चीन में बना HQ-9 एयर डिफेंस तबाह कर दिया।
0: पाकिस्तान ने 5 साल पहले चीन के साथ HQ-9 की डील की थी। अब चीन और पाकिस्तान दोनों इस बात का दावा करते हैं कि HQ-9 सीधे रूस के S-400 को टक्कर देता है। अब ये टक्कर कितनी दी गई है, इसका सिर्फ भारत ने ट्रेलर दिखाया है और पाकिस्तान खुद ब खुद पीछे चला गया।
1: चीन के हथियारों की खोखली ताकत को जानने के बावजूद पाकिस्तान चीन से सबसे ज्यादा हथियार खरीदता है। इसके पीछे पाकिस्तान की मजबूरी भी है। वो चीन के कर्ज के जाल में इस कदर फंस चुका है कि उसके पास कोई और विकल्प बचा ही नहीं है। लिहाजा चीन जो भी करता है, पाकिस्तान उसे सर झुकाकर कबूल करता है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के आंकड़ों के मुताबिक साल 2020 से 2024 के बीच में चीन ने पाकिस्तान के 81% आयातित हथियारों की आपूर्ति की है। 2020 से 24 से और 2015 से 19 की तुलना में देखा जाए तो पाकिस्तान ने हथियारों के आयात में 61% की बढ़ोतरी की है। आंकड़ों से साफ है कि चीन पाकिस्तान पर मेहरबान नहीं, बल्कि पाकिस्तान को लूटने खसोटने के लिए अपने कबाड़ हथियारों से थोप रहा है।
2: चाइना लगातार पाकिस्तान को एक टेस्ट बेड मानता है। उसने अपने BRI और CPEC के तरह का इन्वेस्टमेंट करके चाइना ने पूरी तरीके से पाकिस्तान को गुलाम बना रखा है। तमाम तरीके की जो मिलिट्री एड है, तमाम तरीके के एयर डिफेंस, तमाम तरीके के रॉकेट, मिसाइल, टैंक आज की डेट में वो पाकिस्तान को देता है। इसलिए देता है कि जैसे विश्व में दिखा सके कि पाकिस्तान आर्मी इसका इस्तेमाल कर रही है, इसका बखूबी हिंदुस्तान के बरखिलाफ उसने उसका डिप्लॉयमेंट कर रखा है, उसका ऑपरेशनल रेडीनेस 100% है और इसके तहत वो अन्य देशों को अपना सामान भेज सके।
0: रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे,
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
8: गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर पर है दुनिया भर में मशहूर तीर्थ स्थल अंबाजी। अंबाजी को देश के 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। अंबाजी में भादरवी महामेले को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। यहां पर यह उत्सव भादरवी महीने में नवमी से पूनम तक यानी 7 दिनों तक बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। मेले में देखिए शुभारंभ होने से माँ अंबे के रथ खींचकर और मंदिर के विद्वान ब्राह्मणों और उनके द्वारा शास्त्रों के अनुसार पूजा अर्चना करके इसकी शुरुआत हुई। ध्वजा चढ़ाई गई और शक्ति भक्ति और आस्था का संगम अद्भुत देखने को मिला। 20 से 26 सितंबर तक चलने वाले भादरवी महामेले में शामिल होने के लिए 40 लाख से ज़्यादा भक्तों के आने की उम्मीद है। ऐसे में मेले के सुचारू आयोजन के लिए 29 कमेटियों और 7,000 कर्मचारियों को तैनात किया गया। सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए 6,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी हैं।
7: आतुरतापूर्वक राह देखते हैं। ऐसा भादरवी पूनम महामेला 2026 की आज शुरुआत की गई है, जब लाखों की संख्या में माई भक्त अगले 7 दिनों में अंबाजी में आएंगे। उनकी सेवा और सुरक्षा के लिए 7,000 से भी अधिक सरकारी कर्मचारी 24 घंटे परस्पर तैनात रहेंगे। पार्किंग, निःशुल्क भोजन, लॉ एंड ऑर्डर, मंदिर एवं कपल संचालन सहित 29 जितनी जिला कक्षा की समितियां भी बनाई गई हैं। तदुपरांत अंबाजी परिसर में 4 जितने निःशुल्क भोजन केंद्र, अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ 8 जितने रेस्ट रूम यानी कि विश्रामा केंद्र और 40 से अधिक पार्किंग स्थलों की भी पहचान की गई है।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
8: महाराष्ट्र के चंद्रपुर में सजा तुकुम के राजा का दरबार श्रद्धालुओं के बीच आकर्षण का केंद्र बनी। बप्पा की मनमोहक प्रतिमा चावल, दाल, साबुदाना और मूंगफली के दानों से किया गया निर्माण। गणेश उत्सव के दौरान जालना में सजा बप्पा का अनोखा पंडाल, विघ्नहर्ता की पूजा अर्चना के साथ यहां हो रहे हैं रामायण के दर्शन। संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के प्राण बचाते नजर आ रहे हनुमान। गुजरात के गोधरा में निकली गणेश प्रतिमा विसर्जन की भव्य शोभा यात्रा, 1,000 से ज्यादा मूर्तियों को विधिवत की गई विदाई। ढोल नगाड़ों के साथ पूजे गणपति बप्पा मोरिया के जयकारे। राजस्थान के उदयपुर में नारायण सेवा संस्थान ने सामूहिक विवाह समारोह का किया आयोजन। शादी के पवित्र बंधन में बंधे 50 करीब और दिव्यांग जोड़े, नव विवाहितों को उपहार में दिए गए जरूरी सामान। उत्तराखंड के ऋषिकेश में एसडीआरएफ टीम ने किया महिला का रेस्क्यू, पहाड़ी से उतरते वक्त नदी के तेज बहाव में फंसी, सूचना के बाद चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। नेशनल पार्क से गांधी सागर में शिफ्ट हुई मादा चीता CCP2। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अभ्यारण्य में किया रिलीज, देश का दूसरा बड़ा चीता घर बना गांधी सागर।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम, और मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। एक बार फिर से लेकर एक दमदार शख्सियत का सफरनामा। इस बार जिस निर्भीक शख्सियत का सफरनामा लेकर हम हाजिर हुए हैं, उसने महाराष्ट्र में मिलावटखोरी करने वाली और लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करने वाली लॉबी के खिलाफ ऐलानी जंग कर दिया है। महाराष्ट्र में फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का कमिश्नर बनने के बाद इस शख्स ने अपने ताबड़तोड़ एक्शन से लोगों की सेहत की कीमत पर मुनाफाखोरी करने वाली लॉबी की नींद उड़ा कर रख दी है।

0: आप समझ गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि महाराष्ट्र में फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन विभाग के कमिश्नर तुकाराम मुंडे हैं। महाराष्ट्र की जनता जिन्हें अब सिंघम आईएएस कहने लगी है। 25 मई 2026 को एफडीए के कमिश्नर पद की जिम्मेदारी मिलने के बाद से ही तुकाराम एक्शन मोड में है। इनके कमिश्नर बनने के बाद महाराष्ट्र के होटल्स, रेस्टोरेंट, कैफे और कन्फेक्शनरीज के मालिक और मालकिनों को पहली बार एहसास हुआ कि उनका काम सिर्फ आंखें मूंद कर मुनाफा वसूली करना नहीं है बल्कि लोगों की सेहत और हाइजीन का कायदे से ख्याल रखना भी है। 4 महीने से भी कम में इनके कार्यकाल में महाराष्ट्र के होटल्स और रेस्टोरेंट्स की सूरत बदल गई है। आम लोग इनकी कार्यशैली से काफी खुश हैं।
1: अंधेरा कितना ही घनघोर क्यों ना हो, एक दिया काफी होता है उस अंधेरे की कालिमा को चीरने के लिए। और उजाले की प्रकृति ही कुछ ऐसी है कि वो व्यवस्था की वस्तु स्थिति को उजागर कर देता है। महाराष्ट्र के एक आईएएस अधिकारी ने अदम्य इच्छा शक्ति, नेक नियति और कर्तव्य निष्ठा के रथ पर सवार होकर व्यवस्थागत नियमों का दीप प्रज्वलित किया तो कई नामचीन संस्थाओं, कंपनियों और हस्तियों के स्याह चेहरे उजागर हो गए। महाराष्ट्र के इस युगांधर आईएएस अधिकारी का नाम है तुकाराम हरिभाऊ मुंडे। एक ऐसा नौकरशाह जिसने अपनी जिम्मेदारियों के तर्जे अमल की बेहतरीन नजीर पेश कर न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि देश भर के ब्यूरोक्रेट्स को बता दिया है कि अगर वो सच्ची निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करें तो करोड़ों हिंदुस्तानियों की बहुत सी दुश्वारियां यूं ही खत्म हो जाएंगी। आपको बता दें कि महाराष्ट्र कैडर के आईएएस ऑफिसर के तौर पर साल 2006 में सोलापुर के असिस्टेंट कलेक्टर के पद पर ज्वाइनिंग के बाद से अब तक तुकाराम मुंडे हर रोज आम लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं सीधे तौर पर सुनते हैं।
2: That's where you pointed out that I meet people during 4 to 5 every day. So that's a connect with the people, and it's a practice I have been doing it since I joined the service, not now. So I believe that if public servant or civil servant is to serve in a public space, so who am I serving? Each and every individual. See, if I do not know or do not meet them, do not connect with them, how would I know what are the issues? What are they facing?
1: 21 साल के प्रशासनिक सफर में 25 से ज्यादा तबादलों का दंश झेल चुके तुकाराम मुंडे को 25 मई 2026 को महाराष्ट्र के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन विभाग के कमिश्नर की जिम्मेदारी सौंपी गई। तुकाराम जब से एफडीए के कमिश्नर बने हैं मिलावटखोर, मुनाफाखोर, धांधलेबाज पनाह मांग रहे हैं। उन्हीं के विभाग के भ्रष्ट, बेईमान और कामचोर मातहत कर्मचारी त्राहीमाम कर रहे हैं, लेकिन जनता बहुत प्रसन्न है। सच कहें तो आम लोगों को पहली बार पता चला है कि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कितने काम का विभाग है। बीते 15 सितंबर को तुकाराम ने सोशल साइट एक्स पर एक पोस्ट कर कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स के अंदर चल रही एक ऐसी धांधली उजागर की है जिसे आम जनता पूरी तरह अनजान थी। अस्पतालों के मेडिकल इक्विपमेंट्स प्रोक्योरमेंट को लेकर तुकाराम मुंडे ने जो खुलासा किया है उसने सनसनी मचा दी है। 15 सितंबर को अपनी एक्स पोस्ट में तुकाराम ने लिखा है, महाराष्ट्र में हॉस्पिटल में इस्तेमाल होने वाली सामग्रियों पर किए गए सर्वे में ये पाया गया कि एक आईवी इन्फ्यूजन सेट की एक्चुअल खरीद करीब 11 रुपए होती है जबकि इस पर MRP 325 रुपए लिखी होती है, यानी 2841% का मार्कअप। बढ़ोतरी, एक सिरिंज 6.75 रुपए में खरीदी जाती है जबकि उस पर MRP लिखी होती है 57.20 रुपए। एक कैथेटर 29.41 रुपए में खरीदा जाता है जबकि उस पर MRP लिखी होती है 310 रुपए। कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स में भर्ती होने वाले मरीज के डिस्चार्ज से पहले परिजनों को जब बिल दिया जाता है तो उसे देखकर उनकी पेशानियों पर पसीने की बूंदें छलकने लगती हैं। उन्हें क्या पता कि इस भारी भरकम बिल के पीछे नौकरशाहों और हॉस्पिटल्स की दुराभिसंधि का हाथ है। बहरहाल अगर तुकाराम जैसे मसीहा के हाथ में कमान हो तो जनता राहत की उम्मीद कर सकती है। महाराष्ट्र FDA की ओर से सामने रखे गए सर्वे के नतीजों के बाद ट्रेड प्रोक्योरमेंट प्राइस और घोषित MRP के बीच अंतर को लेकर स्पष्ट गाइडलाइन बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हॉस्पिटल्स के साथ ही मोटे मुनाफे के लिए जनता की सेहत से खिलवाड़ करने वाले होटल्स, रेस्तरां, कॉन्फेक्शनरीज, डेयरीज, कैफे और फूड एंड एग्रो फैक्ट्रीज पर भी तुकाराम मुंडे कहर बनकर बरस रहे हैं। त्योहारी मौसम में मुनाफाखोरों की चांदी हो जाती है, इसलिए मिलावट का धंधा चरम पर पहुंच जाता है। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की धूम के बीच फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने मुंबई के मशहूर बार और रेस्तरा कैफे मुंडेगर का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया। वजह जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। FDA ने अपनी जांच में पाया कि गर्म खाने की चीजों को जरूरी तापमान 60 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा पर नहीं रखा जा रहा था और कोल्ड स्टोरेज का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से कम पर नहीं रखा जा रहा था। इसके साथ ही खाना बनाने वाली जगह ड्रेनेज सिस्टम तय मानकों के मुताबिक नहीं था, जिससे क्रॉस कंटामिनेशन का खतरा था। सोचिए, सरकार ने पब्लिक हेल्थ को ध्यान में रखकर कितने अच्छे रेगुलेशंस बनाए हैं, पर इन रेगुलेशंस के कंप्लायंस को लेकर नौकरशाहों में इतनी बेफिक्री बेपरवाही है कि रेस्तरा या कैफे मालिकों को कौन कहे, आम जनता भी उदासीन हो जाती है। नतीजा ये होता है कि पैसे देकर होटल्स में खाना खाओ और तोहफे के तौर पर बीमारी घर ले आओ। पर FDA के कमिश्नर के तौर पर तुकाराम ने पूरे देश को चता भी दिया है और बता भी दिया है कि कानून की किताब ठंडे बस्ते में डालने के लिए नहीं होती। क्या तुकाराम से पहले किसी ने सोचा होगा कि भंडारे, महाप्रसाद, लंगर या सामूहिक भोज के लिए भी गाइडलाइंस जारी की जा सकती है? महाराष्ट्र FDA ने इसके लिए भी गाइडलाइंस जारी कर दी है, जिसके मुताबिक भंडारा, महाप्रसाद, लंगर या किसी सामूहिक भोज के आयोजन से कम 7 दिन पहले ऑनलाइन फॉर्म जमा करना पड़ेगा। ऐसे आयोजनों में सिर्फ लाइसेंस प्राप्त कैटरर्स की ही सेवाएं ली जा सकेंगी। खाना बनाने और पीने के लिए साफ या RO वाटर ही इस्तेमाल करना होगा। खाना बनाने और परोसने वाले वॉलेंटियर्स के लिए मास्क, दस्ताने और हेड कैप पहनना जरूरी होगा। भंडारों में आमतौर पर हाइजीन को अनदेखा कर दिया जाता है। इसमें खाना खाने वाले आमतौर पर मुफलिसी के मारे लोग ही होते हैं, इसलिए हाइजीन को लेकर आपत्ति दर्ज कराने का सूरत हाल नहीं होता। पर तुकाराम बचपन में बेबस गुर्बत की कड़वी हकीकत से वाबस्ता हो चुके हैं, इसीलिए गरीबों के दर्द को जानते हैं। वैसे FDA की भंडारे वाली गाइडलाइंस का हर तबके के लोग स्वागत कर रहे हैं।
3: नहीं, ये जो निर्णय लिया है वो अच्छा लिया है, जो भी है वो सबके हित के लिए ही है। अगर जो भी है, जो भी भंडारा या जो भी होता है उसमें अगर क्लीननेस रहेगा तो ये सबके हेल्थ के लिए अच्छा है।
4: इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज फॉर द गुड ऑफ द पीपल, गुड ऑफ द कम्युनिटी, और ये एक्सेप्टेबल होना चाहिए। और उनकी जो भी गाइडलाइंस है, ऑफकोर्स वो डिटेल में देखेंगे, जैसे कि हमारा मंडल होता है या ग्रुप्स होते हैं जहां पर ये सारी चीजें होती है, भंडारे एंड ऑल, वो उनको फॉलो करना चाहिए। और ये सभी के लिए है, गवर्नमेंट अगर कुछ पॉलिसीज ला रही है।
1: साफ है कि गरीब या आम जनता की सेहत और स्वास्थ्य को लेकर तुकाराम मुंडे बहुत संवेदनशील हैं। दूसरी ओर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट की अनदेखी करने वाली रसूखदार और पावरफुल लॉबी के खिलाफ एक्शन लेने में वो जरा भी हिचकिचाते नहीं हैं। अंजाम की परवाह किए बगैर तुकाराम ऐसी लॉबी से सीधा हेड ऑन कर लेते हैं। तुकाराम ने विमल इलायची का विज्ञापन करने पर बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान समेत अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को 14 अगस्त 2026 को नोटिस भेज दिया था। नोटिस में साफ तौर पर कहा गया कि विज्ञापन में इलायची के नाम पर पान मसाले का प्रमोशन हो रहा है, जबकि महाराष्ट्र में तंबाकू उत्पादों पर बैन है।
2: जो नोटिस इश्यू किया गया है अबाउट एडवर्टाइजिंग रेगुलेशन वायलेशन, उनको नोटिस रेगुलेशन 2018 के हिसाब से दिया गया है और सेक्शन 24 ऑफ फसाई एक्ट जो है उसके हिसाब से दिया गया है। क्योंकि ये गुटखा और जो प्रोडक्ट है महाराष्ट्र में बैन है और उसका एडवर्टाइजिंग ये सरोगेट एडवर्टाइजिंग में आता है, इसलिए हमने उनको नोटिस दिया, उनको टाइम दिया है।
1: साफ है कि निर्भीक तुकाराम रसूखदारों और पावरफुल लॉबीज के खिलाफ एक्शन लेने में जरा भी परहेज नहीं करते, हालांकि उन्हें इस नायकत्व के लिए धमकियां भी मिलती रही हैं। पर जो इंसान कर्तव्य परायणता का दिया अपने हाथों में लेकर लोकहित के अग्निपथ पर निकल जाता है, वो रास्ते में आने वाले सेहरा या बयाबा की परवाह नहीं करता। नियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराने और नियमों की अनदेखी करने वालों पर घास गिराने की वजह से शुरू से ही इनकी राह में कांटे बिछाए जाते रहे हैं, लेकिन एक सच्चे योद्धा की तरह हर मुश्किलों का ये डट कर मुकाबला करते हैं। आत्मा अगर गवाही दे तो बड़े से बड़ा एक्शन लेने से भी परहेज नहीं करते।
2: Once you do that and if you are a public servant, what is my role? That's the question I ask as a public servant. And if my role is to contribute for the betterment of the society, should I trade that part or should I compromise on that part? That was the question I ruminated upon. And the answer I got is I should trade this part, whatever the cost may be. Maybe sometimes it is less or more, whatever it is. That's a choice, and that's a choice I made. And I don't think I regret anything of that today.
1: कहने की जरूरत नहीं कि साल 2026 में लोक सेवा का व्रत लेने के बाद से ही तुकाराम व्यापक जनहित के पथ पर निर्भीक होकर आगे बढ़ रहे हैं। 21 साल के सफर में 25 बार ट्रांसफर की दुश्वारी झेली, लेकिन जहां भी पोस्टिंग हुई, जिस विभाग की भी जिम्मेदारी मिली, पूरी क्रांति ला दी। 25 मई 2026 को FDA कमिश्नर बनने के बाद से ऐसे ऐसे साहसिक काम किए हैं कि नियमों की धजिया उड़ाने वाले पनाह मांग रहे हैं। महाराष्ट्र FDA का कमिश्नर बनने के बाद पहले हफ्ते में ही उन्होंने सब स्टैंडर्ड और मिलावटी सामान बेचने वाले 50 से ज्यादा ठिकानों पर छापे मारे और 100 लोगों को गिरफ्तार किया। उपचार के दावे वाले भ्रामक विज्ञापन दिखाने के आरोप में पतंजलि के आउटलेट पर छापे मारे और 51 लाख रुपए का सामान जब्त कर लिया। ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट जैसी ई कॉमर्स कंपनियों के 86 वेयर हाउसेज की जांच की और नियमों की अनदेखी की वजह से 14 वेयर हाउसेज के लाइसेंस सस्पेंड कर दिए। मुंबई में डोमिनोज पिज्जा के 4 आउटलेट के लाइसेंस सस्पेंड कर दिए। महाराष्ट्र में एनालॉग पनीर यानी बिना डेयरी से बने पनीर पर 1 साल तक के लिए बैन लगा दिया। तुकाराम मुंडे के इन ताबड़तोड़ एक्शन से महाराष्ट्र की आम जनता राहत महसूस कर रही है। दूसरी ओर होटल्स, रेस्तरा, कॉन्फेक्शनरीज, डेयरीज, कैफे और फूड एंड एग्रो फैक्ट्रीज के मालिकों को पहली बार यह एहसास हुआ है कि उनका काम सिर्फ मुनाफा ऐंठना नहीं है, बल्कि लोगों की सेहत का, स्वास्थ्य का भी पूरा ख्याल रखना है।
0: ऐसा नहीं है कि FDA का कमिश्नर बनने के बाद से ही तुकाराम एक्शन मोड में आए हैं। महाराष्ट्र कैडर का IAS अधिकारी बनने के बाद से ही तुकाराम नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों पर वज्रपात करते रहे हैं और इसके लिए कई बार इन्हें धमकियां भी मिली, राह में रोड़े अटकाए गए, लेकिन तमाम चुनौतियों के बाद भी कभी भी अपने कर्तव्य पथ से विचलित नहीं हुए। एक गरीब किसान परिवार में जन्म लेने वाले तुकाराम ने बचपन में गरीबी का दंश झेला है, जीवन की दुश्वारी देखी हैं, पैदावार के लिए खेतों में पसीना बहाया है और इसलिए इनका व्यक्तित्व फौलादी हो गया, हालात से हार नहीं मानने का जज्बा पैदा हो गया।

0: तुकाराम मुंढे आज महाराष्ट्र में आइडियल ब्यूरोक्रेसी की मिसाल बन चुके हैं। उनकी ईमानदारी और कर्तव्य परायणता गरीब मजलूम लोगों के स्वास्थ्य और सेहत की उम्मीद की लौ बन चुकी है। जबकि महाराष्ट्र में नियमों की अनदेखी करने वाले फूड और ड्रग बिजनेस से जुड़े प्रतिष्ठानों को हर पल तुकाराम का डर सता रहा है। बतौर एफडीए कमिश्नर 4 महीने से भी कम के इनके कार्यकाल में एफडीए 12,000 से ज्यादा निरीक्षण और छापेमारी कर चुका है। इनमें से 900 से ज्यादा हाई इंपैक्ट रेट्स शामिल हैं। खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता नियमों के उल्लंघन की वजह से महाराष्ट्र में कुल 603 कमर्शियल लाइसेंस सस्पेंड किए जा चुके हैं। मिलावटखोरी, प्रतिबंधित गुटखा या पान मसाला बेचने और नियमों की अनदेखी के मामले में 875 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इतना ही नहीं, एफडीए ने ऐसे मामलों में 650 से ज्यादा FIR भी दर्ज कराई है। तुकाराम की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वे नियमों की अनदेखी करने वाले प्रतिष्ठानों या व्यक्तियों के कद या रसूख से बेपरवाह रहते हैं। एफडीए ने नामी गिरामी फार्मास्यूटिकल कंपनी सिप्ला की पुणे स्थित यूनिट का 26 अगस्त को निरीक्षण किया और पैकेजिंग, स्टोरेज और खरीद बिक्री के रिकॉर्ड्स में गड़बड़ी और अनियमितता पाने पर इस यूनिट का सेल्स लाइसेंस रद्द कर दिया। तुकाराम के ताबड़तोड़ एक्शंस की जद में मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन यानी MCA भी आ चुका है। एफडीए ने MCA के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में स्थित 5 फूड आउटलेट्स पर 20 अगस्त को छापा मारकर 5 के FSSAI लाइसेंस सस्पेंड कर दिए। इतने हाई प्रोफाइल प्रतिष्ठानों के खिलाफ एक्शंस होंगे तो मामला कोर्ट में पहुंचेगा ही। MCA ने FDA के एक्शन के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया तो कोर्ट ने तुकाराम मुंडे को कड़ी फटकार लगा दी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि हम FDA को कितनी बार समझा चुके हैं कि मच्छर को तलवार से मत मारो, क्या आप खुद को लॉर्ड समझते हैं कि कुछ भी कर सकते हैं? तुकाराम को फटकार लगाते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनसे ये भी पूछ लिया कि FDA सिर्फ निजी संस्थानों पर छापेमारी क्यों कर रहा है, कानून का पालन तो सरकारी परिसरों की कैंटीन्स में भी होना चाहिए। तुकाराम भी कहां मानने वाले थे, उन्होंने अगले ही दिन बॉम्बे हाईकोर्ट कैंपस की 3 कैंटीनों पर रेड कर दी और 2 कैंटीन के लाइसेंस कैंसिल कर दिए।
1: ड्यूरिंग द हियरिंग द क्वेश्चंस वर एज वेदर यू आर टेकिंग एक्शन अगेंस्ट ओनली प्राइवेट और टेकिंग एक्शन अगेंस्ट एस्टैब्लिशमेंट गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट, वी आर टेकिंग, वी हैव द डेटा टू बैक इट अप, एंड इन दैट कोर्स ऑफ इंटरेक्शन सेज हैव यू inspected Mantralaya canteen, so we had already done that, so then have you inspected or visited High Court canteen also, which we had not done, so I said we have not done that but we have done this one, so High Court expects that it should be visited. Well, fine, next day my team goes and finds it out whatever it is there.
0: बॉम्बे हाई कोर्ट की कैंटीन पर रेड डालकर तुकाराम ने ये साबित कर दिया कि वो अलग ही मिट्टी के बने हैं। आपको बता दें कि इस तरह की चुनौतियां तुकाराम अपने सर्विस पीरियड में अनेकों बार फेस कर चुके हैं। साल 2006 में सोलापुर में बतौर असिस्टेंट कलेक्टर अपनी पहली पोस्टिंग में रेत माफियाओं पर एक्शन लिया तो उन पर जानलेवा हमला हो गया। साल 2007 में नांदेड़ में अवैध रेत खनन के खिलाफ कार्रवाई की तो 5 महीने में तबादला हो गया। 2012 में मुंबई सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट में पोस्टिंग हुई तो टैक्स चोरों से 310 करोड़ रुपए वसूल लिए। साल 2014 में कलेक्टर बनकर दोबारा सोलापुर पहुंचे तो टैंकर माफियाओं की नकेल कस दी, जिसके बाद इन्हें महाराष्ट्र का वाटरमैन कहा जाने लगा। मार्च 2017 में पुणे महानगर परिवहन महामंडल लिमिटेड के चेयरमैन बने तो ड्यूटी से लंबे समय से गायब चल रहे 158 कॉन्ट्रैक्ट ड्राइवरों को एक साथ सस्पेंड कर दिया। साल 2022 में महाराष्ट्र के हेल्थ केयर कमिश्नर बने तो सरकारी डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस बंद करवा दी। कहने की जरूरत नहीं कि तुकाराम मुंडे को जो भी जिम्मेदारी मिली उन्होंने कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी की नई लीक खींच दी। दरअसल इस इंसान का पालन पोषण चांदी के चम्मच से नहीं हुआ है, इनका बचपन बहुत ज्यादा दुश्वारियों और आर्थिक तंगी के बीच बीता है। महाराष्ट्र के बीड जिले के गुमनाम से गांव ताड़सोना के एक गरीब किसान परिवार में 3 जून 1975 को जन्मे तुकाराम के पिता के पास इनके लिए चप्पल खरीदने तक के पैसे नहीं होते थे, लिहाजा ये बिना चप्पल के नंगे पांव स्कूल जाते थे। दिन में पढ़ाई करते थे और रात में खेतों की सिंचाई का काम भी करते थे। क्या आप यकीन करेंगे कि तुकाराम मासूम उम्र में सिर पर सब्जियां रखकर साप्ताहिक बाजार जाते थे और उन्हें बेचकर पैसे ले आते थे ताकि घर की रोजमर्रा की जरूरतें पूरी हो सकें। इतनी हार्डशिप में रहकर भी ये अपने क्लास में टॉप करते थे। तभी तो साल 2005 में तुकाराम ने यूपीएससी क्रैक किया और ऑल इंडिया 20वीं रैंक हासिल की। आज वही ताड़सोना गांव का गुदड़ी का लाल ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा का दिया जलाकर नौकरशाहों को सच्चाई की राह दिखा रहा है।
2: बंदे में है दम में आज आपने महाराष्ट्र के एफडीए कमिश्नर तुकाराम मुंडे के जीवन से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं को देखा। अगले हफ्ते ऐसी ही किसी और बेमिसाल शख्सियत के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: देखिए, भारत और अमेरिका के बीच युद्धाभ्यास 2026 का आयोजन चल रहा है। इसमें दोनों देशों के सैनिक अपने अपने पराक्रम और कुशलता का परिचय दे रहे हैं। युद्धाभ्यास 2026 उत्तराखंड के औली और राजस्थान के महाजन फील्ड रेंज में आयोजित किया जा रहा है। इसमें देखिए दोनों देशों के 600 जवान शामिल हो रहे हैं। 9 सितंबर से शुरू हुआ ये युद्धाभ्यास 28 सितंबर तक चलेगा। इसमें दोनों देशों से 600 सैनिक भाग ले रहे हैं। माना यह जा रहा है कि यह अभ्यास भारत अमेरिका रक्षा सहयोग को नई ऊंचाई पर ले जाने वाला कदम है।
3: दुश्मनों की किसी भी चाल को किस तरह नाकाम करना है, ये इन जवानों को अच्छे से पता है। आतंकियों के नापाक मंसूबों को किस तरह नेस्तोनाबूद करना है, ये इन जवानों के पराक्रमी प्रदर्शन को देखकर समझा जा सकता है। भारतीय सेना के जवानों के जज्बे और शौर्य से पूरी दुनिया अच्छी तरह से वाकिफ है, और यही वजह है कि भारतीय सेना और अमेरिका सेना जाबाजी का अभ्यास कर रही है। ये युद्ध अभ्यास दोनों देशों के सैनिक राजस्थान के महाजन फायरिंग रेंज और औली में कर रहे हैं।
4: अमेरिका के बीच युद्धाभ्यास का 22वां संस्करण शुरू हो चुका है, और इस बार युद्धाभ्यास की खास बात यह है कि ये एक साथ दो अलग अलग मोर्चों पर किया जा रहा है। भारत और अमेरिका की सेनाएं एक तरफ पाकिस्तान की सीमा के बेहद नजदीक महाजन फील्ड फायरिंग रेंजेस में रेगिस्तान में युद्ध की बारीकियां एक दूसरे से साझा कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नजदीक औली में भारत और अमेरिका के सैनिक एक साथ एक दूसरे को अपने युद्ध कौशल से रूबरू करा रहे हैं। युद्धाभ्यास की खास बात यह भी है कि भारत और अमेरिका के 600-600 सैनिक एक साथ अलग अलग टेरेन में युद्ध के कौशल सीख रहे हैं, और लगातार भारत और अमेरिका के बीच किस तरह से सैन्य तालमेल बढ़ रहा है उसकी वानगी भी पेश कर रहे हैं।
3: इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य पहाड़ी और अर्ध पहाड़ी क्षेत्रों में इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स की संयुक्त क्षमता को बढ़ाना है। यह अभ्यास सिर्फ पारंपरिक प्रशिक्षण नहीं है, बल्कि इसमें ड्रोन और स्वायत्त प्रणालियों के इस्तेमाल पर विशेष जोर दिया जा रहा है। निगरानी और टोही के लिए आधुनिक तकनीक का प्रदर्शन महाजन में चल रहा है। दोनों सेनाओं के विशेषज्ञ मल्टी डोमेन वॉरफेयर यानी कई क्षेत्रों में एक साथ युद्ध की उभरती तकनीकों पर विचार साझा कर रहे हैं। इससे योद्धाओं को वास्तविक युद्ध जैसे हालात का अनुभव मिलेगा। इसके लिए दोनों देशों की सेनाओं ने कमांड पोस्ट एक्सरसाइज, एक्सपर्ट एकेडमिक डिस्कशन और सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट एक्सचेंज भी कर रही है। युद्धाभ्यास का सबसे बड़ा मकसद इंटर ऑपरेबिलिटी यानी दोनों सेनाओं के बीच तालमेल बढ़ाना है। भारतीय और अमेरिकी सैनिक एक दूसरे की रणनीति, तकनीक और प्रक्रियाएं सीख रहे हैं और पराक्रम का प्रदर्शन कर रहे हैं। पहाड़ी इलाकों में पैदल सेना आधारित अभियानों पर जोर है, इससे संयुक्त अभियान चलाने की क्षमता मजबूत होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि बदलते वैश्विक सुरक्षा माहौल में ऐसे अभ्यास दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करते हैं। इसी क्रम में महाजन फायरिंग रेंज में M777 अल्ट्रा लाइट होवित्सर तोप से लाइव फायरिंग की गई, जिसमें डायरेक्ट फायरिंग मेथड का इस्तेमाल करके सामने दिख रहे टारगेट पर निशाना साधा गया। इस युद्ध अभ्यास का एक मकसद यह भी है कि मुश्किल परिस्थितियों में काम करने के लिए समझ विकसित करना, जहां संचार व्यवस्था बाधित हो, बिना इंसानी दखल वाले सिस्टम का इस्तेमाल बढ़ रहा हो, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हो रहा हो और इंटेलिजेंस प्रोसेस करने और फैसले लेने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल बढ़ रहा हो। 9 सितंबर से शुरू हुआ ये युद्ध अभ्यास 28 सितंबर तक चलेगा। इसमें दोनों देशों से 600-600 सैनिक भाग ले रहे हैं। माना जा रहा है कि यह अभ्यास भारत अमेरिका रक्षा सहयोग को नई ऊंचाई पर ले जाने वाला कदम है। कुल मिलाकर यह अभ्यास न सिर्फ सैन्य क्षमता बढ़ाएगा बल्कि आपसी विश्वास और सहयोग को भी मजबूत करेगा। शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।

कौन सी जन्म की तारीख वाले लोगों को विचित्र बीमारियां हो सकती हैं? कौन सी जन्म की तारीख वाले लोगों को बीमारियों का वहम होता है? और कौन सी जन्म की तारीख वाले लोगों के साथ दुर्घटनाएं ज्यादा होती हैं? आपकी जन्म की तारीख के अनुसार क्या है आपकी सेहत का हाल और क्या है सेहत को बेहतर करने के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
1: घूम के रदारों के बीच आकर्षण का केंद्र बनी पप्पा की मनमोहक प्रतिमा। चावल दाल उत्सव के दौरान जालना में सजा बप्पा का अनोखा पंडाल। विघ्नहर्ता की पूजा अर्चना के साथ यहां हो रहे हैं रामायण के दर्शन। संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के प्राण बचाते नजर आ रहे हनुमान। गुजरात के गोधरा में निकली गणेश प्रतिमा विसर्जन की भव्य शोभायात्रा। 1,000 से ज्यादा मूर्तियों को विधिवत की गई विदाई। ढोल नगाड़ों के साथ गूंजे गणपति बप्पा मोरिया के जयकारे। राजस्थान के उदयपुर में नारायण सेवा संस्थान ने सामूहिक विवाह समारोह का किया आयोजन। शादी के पवित्र बंधन में बंधे 50 गरीब और दिव्यांग जोड़े। नव विवाहितों को उपहार में दिए गए जरूरी सामान। उत्तराखंड के ऋषिकेश में SDRF टीम ने किया महिला का रेस्क्यू। पहाड़ी से उतरते वक्त नदी के तेज बहाव में फंसी। सूचना के बाद चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। नेशनल पार्क से गांधी सागर में शिफ्ट हुई मादा चीता CCP2। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अभ्यारण में किया रिलीज। देश का दूसरा बड़ा चीता घर बना गांधी सागर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: Hong Jim Hall.

चीन से, जिसने भी हथियार खरीदा उसके सामने पछताने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा। कम कीमत और सस्ती टेक्नोलॉजी के चक्कर में चीन से वेपन तो खरीद लिया गया, लेकिन वो जंग के मैदान में कितना कारगर है इसका पता अब उसके खरीदारों को हो रहा है। यानी कि चीन से डिफेंस डील करने वाले देश के सामने अब सर पीटने के अलावा दूसरा रास्ता नहीं बचा। ना तो चीन की मिसाइलें मंजिल तक पहुंच रही हैं, न ही उसके टैंक पराक्रम दिखा रहे हैं। चीन के मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम भी लाइव फायर के दौरान खुद तबाह हो चुके हैं। वहीं ऑपरेशन सिंदूर में चीन के एयर डिफेंस सिस्टम का फ्लॉप होना दुनिया ने देख ही लिया।

0: दरअसल हाल ही में सऊदी अरब ने हूती विद्रोहियों पर हमला किया, जिसमें उसने DF-15A का इस्तेमाल किया, जो कि अपने टारगेट पर पहुंचने से पहले ही फट गई। और आपको ये भी बता दें कि ये वही DF-15A है जो सऊदी अरब ने चीन से ली थी।
1: सोशल मीडिया पर DF-15 मिसाइल के कुछ वीडियोस भी सामने आए हैं। इनमें ये मिसाइल एक रेगिस्तान में पड़ी दिख रही है और कुछ लोग इसे देखते और फिर धकेल कर इधर उधर करते नजर आ रहे हैं। ये लोग हूती लड़ाके और उनके समर्थक बताए गए हैं, जो गिरी हुई सऊदी मिसाइल का जायजा ले रहे हैं।
0: दरअसल DF-15A शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का बूस्ट रेंज है। अब हाल ही में विश्लेषकों ने जो सऊदी अरब की तरफ से यमन में हमला किया गया था, वहीं से इसके कुछ अवशेष ढूंढे हैं, जिसके बाद और जिसके अध्ययन से ये पता चलता है कि ये चीनी निर्मित ही है।
1: कई रक्षा विशेषज्ञों का दावा है कि ये मिसाइल सऊदी अरब की रॉयल सऊदी स्ट्रेटेजिक मिसाइल फोर्स ने हूती ठिकानों पर दागी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक मिसाइल लक्ष्य से चूक गई और यमन के रेगिस्तान में जा गिरी।
0: अगर मिसाइल दागने की पुष्टि हो जाती है तो ये प्रमाणिक हो जाएगा कि सऊदी अरब ने पहली बार चीनी मिसाइल का इस्तेमाल किया है। हालांकि अभी तक ना तो यमन और न ही चीन से इसके बारे में कोई भी आधिकारिक जानकारी सामने आई है। सऊदी अरब भी फिलहाल खामोश है।
1: दावा ये किया जा रहा है कि करीब 3 दशक में ये पहली बार हुआ है जब सऊदी फोर्स ने चीन से खरीदी गई DF-15A शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का युद्ध में इस्तेमाल किया है। विश्लेषक इस निष्कर्ष पर इसलिए पहुंचे क्योंकि हूतियों के पास DF-15A जैसी मिसाइल होने के कोई प्रमाण नहीं है। उनके शास्त्रागार में मुख्य रूप से ईरानी तकनीक वाली मिसाइलें और ड्रोन हैं। सऊदी अरब के पास पहले से चीन से खरीदी गई DF-3A और DF-21 जैसी मिसाइलें होने के रिपोर्ट्स लंबे समय से चल रही हैं। लेकिन सऊदी अरब ने DF-15A शॉर्ट रेंज मिसाइल प्रणाली भी चीन से खरीद रखी है। इसकी कोई आधिकारिक जानकारी पहले कभी सामने नहीं आई, इसीलिए कई विशेषज्ञों ने इसे सऊदी की गुप्त मिसाइल क्षमता का हिस्सा माना है। अगर ये सऊदी की मिसाइल थी तो इसका लक्ष्य चूकना सऊदी की गुप्त मिसाइल क्षमता पर सवाल खड़े करता है। साथ ही चीनी हथियारों की विश्वसनीयता पर भी चर्चा छिड़ गई है।
2: देखिए, सबसे पहले ये बात क्लियर है कि सऊदी अरबिया का जो मिसाइल प्रोग्राम है उसकी शुरुआत देखिए चाइना ने की थी, और इसी के तहत चाइना ने अपने तमाम मिसाइलों की जो सप्लाई है वो सऊदी अरबिया को की थी, जिसमें प्रमुख जो मिसाइल्स हैं वो हैं DF-3A और DF-21। ये दोनों मिसाइलें लगातार सऊदी अरबिया के पास बनी हुई है, जिसका वो टाइम टू टाइम इस्तेमाल करता है। जहां तक उसके दूसरी मिसाइल DF-15 अल्फा का सवाल है, जब हूतियों के ऊपर मिसाइल फायर की सऊदी अरब ने, तो उसके जो रेमनेंट, उसके जो स्प्रिंटर थे, उससे पता लगा कि सऊदी अरबिया के पास DF-15 अल्फा मिसाइल भी है, जो कि एक बड़ा ही प्रोमिनेंट बैलिस्टिक मिसाइल है। तो इस तरीके के जब आप मिसाइल को फायर करते हैं तो दिखाता है कि आपकी इन्वेंट्री में ये मिसाइल है।
1: सऊदी चीन मिसाइल डील का इतिहास लगभग 40 साल पुराना है और बेहद गोपनीय रहा है। ये रक्षा इतिहास के सबसे दिलचस्प अध्यायों में से एक है, क्योंकि सऊदी अरब पारंपरिक रूप से अमेरिका का सबसे बड़ा हथियार खरीदार रहा है, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए उसने हमेशा चीन पर ही भरोसा किया है। 1980 के दशक के मध्य में जब सऊदी अरब को ईरान इराक युद्ध के दौरान अपनी सुरक्षा को खतरा महसूस हुआ तो उसने अमेरिका से बैलिस्टिक मिसाइलें मांगी। अमेरिका ने इसराइल के विरोध और मध्य पूर्व में हथियारों की होड़ बढ़ने के डर से सऊदी को मिसाइलें देने से मना कर दिया। इसके बाद सऊदी अरब के प्रिंस खालिद बिन सुल्तान, जिन्हें सऊदी मिसाइल प्रोग्राम का जनक कहा जाता है, उन्होंने 1985 में गुप्त रूप से चीन से संपर्क किया। दोनों देशों के बीच तब आधिकारिक राजनयिक संबंध भी नहीं थे। साल 1988 में ये खुलासा हुआ कि सऊदी अरब ने चीन से DF-3A इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल खरीदी है। ये चीन की एक परमाणु सक्षम मिसाइल थी, लेकिन सऊदी अरब को देने के लिए चीन ने इसमें बदलाव कर दिए और इसे सिर्फ कन्वेंशनल पेलोड यानी कि पारंपरिक उच्च विस्फोटक ले जाने लायक ही बना दिया। सऊदी अरब ने मिसाइलों को खरीदने के बाद करीब 26 साल तक दुनिया से इसे छिपा कर रखा और पहली बार 2014 की एक सैन्य परेड में इसे सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया गया।
2: देखिए, सबसे पहले सऊदी अरेबिया अमेरिका का बहुत ही स्ट्रांग एलाई है। सऊदी अरेबिया में अमेरिका के तमाम मिलिट्री बेसिस हैं, लेकिन जहां तक मिलिट्री मिसाइल्स का सवाल है, उसने चाइना की तरफ रुख किया क्योंकि चाइना उसको एक सस्ती मिसाइल देता है, एक जो उसका कॉस्ट इफेक्टिवनेस होता है। और साथ में ये देखिए, 1980 के दशक में चाइना के सऊदी अरेबिया के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन हुए और वो इतने प्रकार हुए कि तमाम तरीके का इन्वेस्टमेंट चाइना ने किया। इसी के तहत उसने ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में मध्यस्थता की, सऊदी अरेबिया और सीरिया के बीच में मध्यस्थता की। तो ये शुरुआत उसकी 1980 में हुई थी, जिसके तहत उसने DF-3 अल्फा मिसाइल को सप्लाई किया और आज की डेट में वो अन्य तरीके की भी मिसाइलें सऊदी अरेबिया को दिया। तो ये ज्यादा हिस्ट्री में ना जाके ये रिसेंटली 80s के दशक का यह डेवलप।
1: DF-3 मिसाइलें बहुत पुरानी हैं, लिक्विड फ्यूल आधारित थी और उनकी सटीकता बेहद खराब थी, इसीलिए सऊदी अरब को अपनी रणनीतिक क्षमता को आधुनिक बनाने की जरूरत पड़ी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब ने साल 2007 में चीन के साथ एक और गुप्त समझौता किया और अधिक आधुनिक DF-21 मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें खरीदी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA को सऊदी और चीन के बीच DF-21 मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल सौदे की भनक लग गई थी, लेकिन तब उन्होंने ये सुनिश्चित कर लिया था कि ये मिसाइलें भी परमाणु हथियार ले जाने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ पारंपरिक हमलों के लिए ही मॉडिफाई की गई हैं। तो अमेरिका ने इस पर कोई कड़ा विरोध नहीं जताया।
0: हाल ही में यमन के मरी प्रांत में DF-15 ने कमलबा मिलने से इस बात की पुष्टि होती है कि सऊदी अरब चीनी मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि सऊदी अरब भले ही अभी तक इस बात से इनकार करता आया हो, लेकिन इससे एक और बात की पुष्टि होती है और वो ये कि डील का दायरा इससे कहीं ज्यादा बड़ा है।
1: पिछले कुछ वर्षों में अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया कि सऊदी अरब अब सिर्फ चीन से मिसाइलें खरीद नहीं रहा है बल्कि चीन की तकनीकी मदद से अपनी खुद की बैलिस्टिक मिसाइल भी विकसित कर रहा है।
2: देखिए, जहां तक सऊदी अरेबिया के इंडिजिनस डेवलपमेंट का सवाल है मिसाइल के फील्ड में, डेफिनेटली उसकी मदद चाइना कर रहा है और इसी के तहत सऊदी अरेबिया ने सॉलिड फ्यूल मिसाइल डेवलप कर लिया है। उसके यहाँ जो ये मिसाइल बन रही है उसका उस जगह का नाम है अल दवदामी। इस जगह पे उसका मिसाइल प्रोग्राम है और इसकी मदद लगातार चाइना ने की है। और अब जब से युद्ध की शुरुआत किया है उसमें जरूर सेटबैक लग सकता है, लेकिन इसके पहले जब युद्ध नहीं हो रहा था तो चाइना अपने इन्वेस्टमेंट मार्केट और तमाम तरीके के डिफेंस इक्विपमेंट का मार्केट उसने मिडिल ईस्ट को पकड़ा था। तो इसी के तहत लगातार उसने टेक्नोलॉजिकल नोहाउ और जो उसका रॉ मटेरियल है सऊदी अरेबिया को दिया, जिससे कि सऊदी अरेबिया की जो इंडिजिनस मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो आगे बढ़ा और साथ में उसने सॉलिड फ्यूल का मिसाइल डेवलप किया।
1: सऊदी अरब लंबे समय से यमन में हूतियों के खिलाफ हवाई हमले करता रहा है। बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल युद्ध की तीव्रता बढ़ाने के संकेत माने जाते हैं। मारीब क्षेत्र में हाल ही में लड़ाई तेज हुई है और दोनों पक्ष एक दूसरे पर हमले बढ़ा रहे हैं।
0: कम कीमत, मेड इन चाइना, लेकिन शर्तें कड़ी, ये वो तमाम ऐसी चीजें हैं जो चीन हर उस देश पर लगाता है जिसे वो अपने हथियार देता है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर चीन कभी नहीं करता है और इसी के साथ साथ चीन मेंटेनेंस का खर्चा भी बिल्कुल नहीं लेता, यानी जो भी देश हथियार खरीदेगा मेंटेनेंस के लिए उसको वापस चीन का दरवाजा खटखटाना होगा। लेकिन विशेषज्ञ ये कहते हैं कि चीनी हथियार इस वक्त कागजों पर भले ही पुख्ता नजर आ रहे हो, लेकिन रण क्षेत्र में ये पूरी तरह से फिसड्डी साबित हो रहे हैं।
1: ग्लोबल डिफेंस मार्केट में चीन खुद को अमेरिका और रूस के विकल्प के तौर पर पेश करता है। वास्तविक युद्ध में उसकी प्रमुख मिसाइलों का फेल होना चीन के हथियारों की विश्वसनीयता और उनकी तकनीकी गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े करता है। मेड इन चाइना के चक्कर में फंसे बांग्लादेश का हाल देख लीजिए। 9 सितंबर 2026 को चटगांव में फील्ड फायर अभ्यास के दौरान टाइप 59 टैंक में विस्फोट हो गया और जैसे ही टैंक से गोला दागा गया वो बैरल से बाहर निकलने के बजाय टैंक के भीतर ही ब्लास्ट कर गया। इस भीषण विस्फोट के कारण टैंक के क्रू मेंबर्स में 2 बांग्लादेशी जवानों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक वरिष्ठ अधिकारी गंभीर रूप से घायल हो गया।
0: विशेषज्ञों का मानना है कि भले ही तोप और इलेक्ट्रॉनिक्स नया कर दिया गया हो, लेकिन टैंक का मेटल वही पुराना है, यानी 50 साल पुराना, जिसका असर ये हो रहा है कि टैंक बड़े बड़े गोला बारूद को झेल ही नहीं पा रहा है। एक बार फायर करने के बाद वो वापस टैंक के अंदर ही विस्फोट करता है। इसका एक जीता जागता उदाहरण हाल फिलहाल में मिला भी है।
2: देखिए टैंक T-59 जो टैंक है वो बहुत ही पुराना टैंक है, चाइनीज ओरिजिन का है। अगर आपने इसको मेंटेन नहीं किया, रिफर्बिश करके आप काम चलाते रहते हैं, तो समय के साथ हर एक इक्विपमेंट की उपयोगिता घटती जाती है, और वो भी ऐसे समय में जब आप उसको ट्रेनिंग पर्पसेस के लिए यूज कर रहे हैं, लगातार उसको अपग्रेड कर रहे हैं और जो उसका मेटलर्जी है वो फेल होता है। देखिए जब ब्रीच प्रेमेच्योर होता है तो उसके कई रीजन होते हैं, एमिशन की भी वजह हो सकती है, जो प्रेशर ब्रीच में जनरेट हुआ उसको सस्टेन नहीं कर पाया, इसका मतलब मेटलर्जी उसकी खराब थी, या फिर उसके बैरल में कोई रेमनेंट रह गया, या बैरल क्लीन नहीं हुआ उसकी वजह से प्रीमेच्योर हुआ, तो वजह कुछ भी हो सकती है। जब इस तरीके के लगातार इंसिडेंसेस होते हैं तो बेसिक शक जाता है उसकी मेटलर्जी पे, क्या कितना प्रेशर जनरेट कर रहा है, या इरेटिक बिहेवियर ऑफ एमिशन, तो इन सारी चीजों को देखना पड़ेगा।
1: हादसे में शामिल टैंक चीन में बना टाइप 59 है, जिसका इस्तेमाल बांग्लादेश की सेना करती है। टैंक 59 चीन में बना एक पुराना मेन बैटल टैंक है। इसे चीन का पहला ऐसा टैंक भी माना जाता है जिसे बड़ी तादाद में बनाया गया था। बांग्लादेशी सेना के बेड़े में शामिल टाइप 59 दुर्जॉय टैंक मूल रूप से करीब 70 साल पुराना सोवियत डिजाइन है, जिसे चीन ने कॉपी करके बनाया था और बाद में बांग्लादेश को इसे अपग्रेड करके दे दिया। टाइप 59 सैन्य टैंक काफी पुराना है, लेकिन समय के साथ इसके कई नए वर्जन और अपग्रेड तैयार किए गए हैं। इनमें ज्यादा बेहतर तोप, फायर कंट्रोल सिस्टम, रात में देखने की सुविधा और टैंक की सुरक्षा बढ़ाने वाले उपकरण जोड़े गए हैं, लेकिन मूल संरचना पुरानी ही रही।
2: जो हादसे हुए T-59 के, आप कितना भी अपग्रेड कर दें लेकिन आप उसकी मेटलर्जी नहीं बदल पाएंगे। जो आयरन है, जो बैरल है 125 mm स्मूथ बोर, उसको आप रिप्लेस नहीं कर पाते। हालांकि जो टैंक है, जब नंबर ऑफ राउंड्स जितने वो फायर कर लेते, उसकी EFC वैल्यू होती है, इक्विवेलेंट फुल चार्ज की वैल्यू होती है, उसमें कितना वियर एंड टियर हुआ, और उसका बैरल भी बदला जाता है, लेकिन उस मेटलर्जी को आप कैसे इंप्रूव करेंगे जो एक पर्टिकुलर तरीके से बनाई गई है, उस कितना प्रेशर जनरेट करा, एमिनिशन जो आप लोड करके फायर कर रहे हैं जब उसका प्रोपेलेंट बर्न होता है तो कितना प्रेशर जनरेट करता है, और क्या वो स्टील या मेटलर्जी उसको सस्टेन कर पा रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये एक आउटडेटेड इक्विपमेंट है, टैंक है।
1: चीनी टैंकों में सेफ्टी फीचर्स और मेटल की क्वालिटी हमेशा से सवालों के घेरे में रही है। जरा सी ओवरहीटिंग या फिर लो क्वालिटी गन बैरल की वजह से गोला अंदर ही ब्लास्ट हो जाता है।
0: बांग्लादेश में हुए टैंक हादसे ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा और साथ ही साथ चीनी हथियारों की विश्वसनीयता पर भी अब सवाल खड़े हो गए हैं। लेकिन यहाँ बांग्लादेश की मजबूरी है, वो चीन के अलावा कहीं और जा नहीं सकता, क्योंकि 70% हथियार उसने चीन से ही लिए हैं।
1: बांग्लादेश की सेना रक्षा उपकरणों के लिए बहुत बड़े पैमाने पर चीन पर निर्भर है। सिब्रियानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट और रक्षा विशेषज्ञों की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश दुनिया में चीनी हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है। वो अपनी सैन्य जरूरतों का 72-74% हथियार अकेले चीन से आयात करता है। हाल के वर्षों में खासकर 2024-26 के बीच चीनी हथियारों में लगातार आ रही खराबियों, घटिया कलपुर्जों और चीनी कंपनियों की ओर से मरम्मत के लिए मांगी जाने वाली भारी भरकम कीमत के कारण बांग्लादेशी सेना में असंतोष बढ़ा है, और यही वजह है कि बांग्लादेश अब धीरे धीरे अपनी सैन्य निर्भरता को बांटने के लिए तुर्की और कुछ हद तक पश्चिमी देशों के विकल्पों की तरफ भी हाथ बढ़ा रहा है।
0: चीन अपनी सेना के लिए नए और अपग्रेडेड हथियार बना रहा है, लेकिन ऐसे में जो पुराने हथियारों का जखीरा है वो काफी हद तक चीन के पास बचा हुआ है, जैसे कि टाइप 59 टैंक हो या फिर जेट्स हो। अब इन्हें चीनी कंपनियां थोड़ा अपग्रेड करके बांग्लादेश और अफ्रीकी देशों को कम कीमतों में बेच देती हैं, और यहीं से चीन मुनाफा भी कमा रहा है और दूसरे देशों को कर्जदार भी बना रहा है। बाकी उसके सैन्य उपकरणों पर जो विश्वसनीयता है वो तो दुनिया जानती ही।
1: रक्षा विशेषज्ञ और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीनी हथियारों के नाकाम होने के पीछे कई वजह हैं। बड़े परीक्षणों का अभाव, अमेरिकी और रूसी हथियारों के उलट चीनी हथियार निर्यात करने से पहले मुश्किल और वास्तविक युद्ध जैसी परिस्थितियों से नहीं गुजरते। दूसरा है गुणवत्ता पर मात्रा को प्राथमिकता। चीन का मेन फोकस हथियारों की विश्वसनीयता और लाइफ साइकिल के बजाय भारी मात्रा में सस्ते हथियार बाजार में उतारने पर है। तीसरा है घटिया पुर्जे और सर्विसिंग। चीनी कंपनियां बिक्री के बाद मेंटेनेंस सपोर्ट देने में नाकाम रहती हैं, जिससे खरीदार देश के पास खराब पुर्जों को बदलने का कोई और विकल्प नहीं बचता। सस्ते होने के कारण जो देश चीनी हथियारों के जाल में फंस रहे हैं, वो अब अंतर्राष्ट्रीय मोर्चों पर इन रक्षा सौदों को लेकर पछता रहे हैं और चीन की वैश्विक साख को इससे धक्का भी लगा है।
2: पूरे विश्व जानता है कि चाइनीज इक्विपमेंट या चाइनीज कोई भी प्रोडक्ट है, उसकी रिलायबिलिटी नहीं होती, वो वन टाइम यूज होता है। आपने यूज किया यूज एंड थ्रो टेक्नोलॉजी, तो उसमें क्वालिटी कंट्रोल नहीं होता। बहुत बड़ा आप जो इन्वेस्टमेंट, जो इनपुट का इन्वेस्टमेंट है, वो नहीं करते हैं। जब आप इसको डिफेंस के इक्विपमेंट में लागू करते हैं, तो आपने मेटलर्जी हो गया, आप सस्ता लोहा, सस्ता मटेरियल, सस्ता एमिनिशन, सस्ते एक्सप्लोसिव, इन सारी चीजों का अगर आप इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ इस वजह से कि आपको कॉस्ट कटिंग करना है, सिर्फ इस वजह से कि आपको मास प्रोडक्शन करना है, क्योंकि आप मैन्युफैक्चरिंग हब है, डिफेंस के फील्ड में आप आत्मनिर्भर हैं, तो इससे होता यह है कि आपकी क्वालिटी कंप्रोमाइज होती है। और जब वो डिफरेंट डिफरेंट एनवायरमेंट में, डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर में, डिफरेंट डिफरेंट टेरेन में जब उसका इस्तेमाल होता है, तो कोई ना कोई हिस्से पुर्जे उसके फेल होते हैं।
1: दिसंबर 2025 में कंबोडिया थाईलैंड में संघर्ष के दौरान एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें दावा यह किया गया था कि चीन का हथियार कैसे युद्ध के मैदान में फ्लॉप साबित हो गया। वीडियो में दावा किया गया कि कंबोडियाई सैनिक जब थाईलैंड पर निशाना लगाने के लिए चीनी रॉकेट लॉन्च कर रहे थे, तो उसमें ब्लास्ट हो गया, जिसकी चपेट में कई कंबोडियाई सैनिक आ गए। 8 सैनिकों की तो जान चली गई।
2: देखिए, जहां तक चाइनीज MLRS और 19B रॉकेट सिस्टम का सवाल है, जब इसको लॉन्च किया गया, फायर किया गया, तो ये वर्टिकली अब जाके स्प्लिट हो गया। कहने का मतलब ये है कि जब आपने फायरिंग किया, तो इसका जो एमिनिशन है, जो मिसाइल का नोज है, जो सेंसर है, वो पहले से ही एक्टिवेट हो गया, या तो इतने तरीके से सस्टेन फायरिंग में वो उस चीज को बियर नहीं कर पाया, या फिर इतना हीट जनरेट हुआ विद इन द बैरल, उसकी वजह से एक्सप्लोशन हुआ। तो चाहे किसी भी वजह से आपका प्रीमेच्योर एक्सप्लोशन हुआ हो, कंबोडियन आर्मी ने इसको सफर किया एट द टाइम ऑफ वॉर। आपको ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा जिसमें रिडंडेंसी हो, जिसमें आप जो रेट ऑफ फायर डिस्क्राइब करें उसको अगर मेंटेन करें, तो किसी भी तरीके के हादसे ना हो।
1: कंबोडिया की सेना में चीन से खरीदी गई MLRS टाइप 90B रॉकेट का इस्तेमाल होता है, और इसी हथियार को इस्तेमाल थाईलैंड के खिलाफ किया जा रहा था। दरअसल कंबोडिया के साथ युद्ध में थाईलैंड भी चीन से खरीदे गए टैंकों का इस्तेमाल ही कर रहा था। ये टैंक थे VT-4। युद्ध के समय इसकी परीक्षा हुई तो ये फ्लॉप साबित हुआ। VT-4 टैंक का बैरल फट गया, जिससे इसके क्रू मेंबर्स घायल हो गए। हथियारों की ताकत और भरोसे की असली परीक्षा युद्ध के मैदान में होती है, और रणभूमि में चीन के हथियारों की विश्वसनीयता क्या है, वो धीरे धीरे दुनिया देख रही है। कंबोडिया के साथ युद्ध में थाई सेना के VT-4 टैंक का बैरल फटना चीन के लिए शर्मनाक है। मेन गन के अलावा टैंक का फायर कंट्रोल से जुड़ा टारगेटिंग सिस्टम और उसका लेजर वार्निंग सिस्टम भी खराब हो गया। ये सिस्टम आधुनिक बख्तरबंद लड़ाई के लिए बहुत जरूरी है, खासकर टारगेट पहचानने, हमले की सटीकता और दुश्मन के लेजर हमले से चेतावनी के लिए।
2: देखिए, जहां तक टैंक टेक्नोलॉजी का सवाल है, उस जब VT-4 टैंक की हम बात करते हैं, तो उसको भी काफी तरीके का सेटबैक लगा। मेरा मानना है कि जो मेंटेनेंस टैंक को चाहिए, जो आपको उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना कि कितने राउंड उसने AP शॉट फायर किए, कितने उसने हीट एमिशन फायर किया, इन सब का रिकॉर्ड रखेंगे तो बेहतर होगा, जिससे कि आप मेटलर्जी कितना वियर एंड टीयर हुआ, इसको आप कैलकुलेट कर पाएंगे। और जहां तक उसके लेजर लॉकिंग सिस्टम का सवाल है, जहां तक उसके लॉकिंग सिस्टम का सवाल है, उसको भी आपको एक फूल प्रूफ रखना होगा। ये देखिए, टैंक को सर्वाइव करने के लिए ये सारे सिस्टम काम करने चाहिए। अगर लॉकिंग सिस्टम ही खराब हो जाएगा, तो आप कैसे टारगेट को लॉक करके उसके ऊपर फायर करेंगे।
1: VT-4 एक मेन बैटल टैंक है, जिसे चीनी कंपनी नॉरिनको ने बनाया है। चीन ने इस टैंक को पाकिस्तान और थाईलैंड समेत कई देशों को एक्सपोर्ट किया। इस टैंक में 125 mm की स्मूथबोर गन, जो पारंपरिक गोला बारूद के साथ साथ गन से लॉन्च होने वाली गाइडेड प्रोजेक्टाइल भी फायर कर सकती है। इसके साथ ही टैंक में एक डिजिटल फायर कंट्रोल सिस्टम और लेजर वार्निंग रिसीवर जैसे डिफेंसिव सिस्टम भी है, जो युद्ध के दौरान फेल हो गया था। मौजूदा समय में थाई सेना में 62 BT-4 टैंक ऑपरेशन है। इस टैंक का इस्तेमाल पाकिस्तानी सेना भी करती है।
0: एक एक करके चीन के तमाम हथियार फिसड्डी साबित हो रहे। कागजों पर भले ही ये कितने मजबूत हो, लेकिन रण क्षेत्र में ये बिल्कुल जीरो है। और इसका जीता जागता सबूत है पाकिस्तान द्वारा हाल ही में भारत पर किया गया हमला, जहां पर पाकिस्तान ने ड्रोन्स और मिसाइलें दागी थी, जो पूरी तरह से फिसड्डी साबित हुई है और ये पूरी दुनिया ने देखा भी है।
1: चीन, जो खुद अपने तैयार किए गए एयर डिफेंस सिस्टम पर भरोसा नहीं करता है, जिसने अपनी सुरक्षा के लिए खुद रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीद रखा है, उसके यहाँ तैयार एयर डिफेंस सिस्टम पर पाकिस्तान इतरा रहा था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना के पराक्रम के सामने चीन से खरीदे गए HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम की एक नहीं चली। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान के लाहौर में तैनात चीन में बना HQ-9 एयर डिफेंस तबाह कर दिया।
0: पाकिस्तान ने 5 साल पहले चीन के साथ HQ-9 की डील की थी। अब चीन और पाकिस्तान दोनों इस बात का दावा करते हैं कि HQ-9 सीधे रूस के S-400 को टक्कर देता है। अब ये टक्कर कितनी दी गई है, इसका सिर्फ भारत ने ट्रेलर दिखाया है और पाकिस्तान खुद ब खुद पीछे चला गया।
1: चीन के हथियारों की खोखली ताकत को जानने के बावजूद पाकिस्तान चीन से सबसे ज्यादा हथियार खरीदता है। इसके पीछे पाकिस्तान की मजबूरी भी है। वो चीन के कर्ज के जाल में इस कदर फंस चुका है कि उसके पास कोई और विकल्प बचा ही नहीं है, लिहाजा चीन जो भी करता है पाकिस्तान उसे सर झुकाकर कबूल करता है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के आंकड़ों के मुताबिक साल 2020 से 2024 के बीच में चीन ने पाकिस्तान के 81% आयातित हथियारों की आपूर्ति की है। 2020 से 24 से और 2015 से 19 की तुलना में देखा जाए तो पाकिस्तान ने हथियारों के आयात में 61% की बढ़ोतरी की है। आंकड़ों से साफ है कि चीन पाकिस्तान पर मेहरबान नहीं, बल्कि पाकिस्तान को लूटने खसोटने के लिए अपने कबाड़ हथियारों से थोप रहा है।
2: चाइना लगातार पाकिस्तान को एक टेस्ट बेड मानता है। उसने अपने BRI और CPEC के तरह का इन्वेस्टमेंट करके चाइना ने पूरी तरीके से पाकिस्तान को गुलाम बना रखा है। तमाम तरीके के जो मिलिट्री एड है, तमाम तरीके के एयर डिफेंस, तमाम तरीके के रॉकेट, मिसाइल, टैंक आज की डेट में वो पाकिस्तान को देता है। इसलिए देता है कि जैसे विश्व में दिखा सके कि पाकिस्तान आर्मी इसका इस्तेमाल कर रही है, इसका बखूबी हिंदुस्तान के बरखिलाफ उसने उसका डिप्लॉयमेंट कर रखा है, उसका ऑपरेशनल रेडीनेस 100% है और इसके तहत वो अन्य देशों को अपना सामान भेज सके।
0: रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर पर है दुनिया भर में मशहूर तीर्थस्थल अंबाजी। अंबाजी को देश के 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। अंबाजी में भादरवी महामेले को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। यहां पर ये उत्सव भादरवी महीने में नवमी से पूनम तक यानी 7 दिनों तक बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। मेले में देखिए शुभारंभ होने से माँ अंबे के रथ खींचकर और मंदिर के विद्वान ब्राह्मणों और उनके द्वारा शास्त्रों के अनुसार पूजा अर्चना करके इसकी शुरुआत हुई, ध्वजा चढ़ाई गई और शक्ति भक्ति और आस्था का संगम अद्भुत देखने को मिला। 20 से 26 सितंबर तक चलने वाले भादरवी महामेले में शामिल होने के लिए 40 लाख से ज्यादा भक्तों के आने की उम्मीद है। ऐसे में मेले के सुचारू आयोजन के लिए 29 कमेटियों और 7,000 कर्मचारियों को तैनात किया गया। सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए 6,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी हैं।
6: आतुरता पूर्वक राह देखते हैं ऐसा भादरवी पूनम महामेला 2026 की आज शुरुआत की गई है। जब लाखों की संख्या में माई भक्त अगले 7 दिनों में अंबाजी में आएंगे, उनकी सेवा और सुरक्षा के लिए 7,000 से भी अधिक सरकारी कर्मचारी 24 घंटे परस्पर तैनात रहेंगे। पार्किंग, निःशुल्क भोजन, लॉ एंड ऑर्डर, मंदिर एवं कपड़ संचालन सहित 29 जितनी जिला कक्षा की समितियां भी बनाई गई हैं। तदुपरांत अंबाजी परिसर में 4 जितने निःशुल्क भोजन केंद्र, अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ 8 जितने रेस्ट रूम यानी कि विश्रामा केंद्र और 40 से अधिक पार्किंग स्थलों की भी पहचान की गई है।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
5: महाराष्ट्र के चंद्रपुर में सजा तुकुम के राजा का दरबार श्रद्धालुओं के बीच आकर्षण का केंद्र बनी। पप्पा की मनमोहक प्रतिमा चावल, दाल, साबुदाना और मूंगफली के दानों से किया गया निर्माण। उत्सव के दौरान चालना में सजा बप्पा का अनोखा पंडाल, विघ्नहर्ता की पूजा अर्चना के साथ यहां हो रहे हैं रामायण के दर्शन। संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के प्राण बचाते नजर आ रहे हनुमान। गुजरात के गोधरा में निकली गणेश प्रतिमा विसर्जन की भव्य शोभा यात्रा, 1,000 से ज्यादा मूर्तियों को विधिवत की गई विदाई। ढोल नगाड़ों के साथ गूंजे गणपति बप्पा मोरिया के जयकारे। राजस्थान के उदयपुर में नारायण सेवा संस्थान ने सामूहिक विवाह समारोह का किया आयोजन। शादी के पवित्र बंधन में बंधे 50 करीब और दिव्यांग जोड़े नव विवाहितों को उपहार में दिए गए जरूरी सामान। उत्तराखंड के ऋषिकेश में एसडीआरएफ टीम ने किया महिला का रेस्क्यू। पहाड़ी से उतरते वक्त नदी के तेज बहाव में फंसी, सूचना के बाद चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। नेशनल पार्क से गांधी सागर में शिफ्ट हुई मादा चीता CCP2। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अभ्यारण्य में किया रिलीज। देश का दूसरा बड़ा चीता घर बना गांधी सागर।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम, और मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। एक बार फिर से लेकर एक दमदार शख्सियत का सफरनामा। इस बार जिस निर्भीक शख्सियत का सफरनामा लेकर हम हाजिर हुए हैं, उसने महाराष्ट्र में मिलावटखोरी करने वाली और लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करने वाली लॉबी के खिलाफ ऐलानी जंग कर दिया है। महाराष्ट्र में फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का कमिश्नर बनने के बाद इस शख्स ने अपने ताबड़तोड़ एक्शन से लोगों की सेहत की कीमत पर मुनाफाखोरी करने वाली लॉबी की नींद उड़ा कर रख दी है।

0: आप समझ गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि महाराष्ट्र में फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन विभाग के कमिश्नर तुकाराम मुंडे हैं। महाराष्ट्र की जनता जिन्हें अब सिंघम आईएएस कहने लगी है। 25 मई 2026 को एफडीए के कमिश्नर पद की जिम्मेदारी मिलने के बाद से ही तुकाराम एक्शन मोड में है। इनके कमिश्नर बनने के बाद महाराष्ट्र के होटल्स, रेस्टोरेंट, कैफे और कन्फेक्शनरीज के मालिक और मालकिनों को पहली बार एहसास हुआ कि उनका काम सिर्फ आंखें मूंद कर मुनाफा वसूली करना नहीं है बल्कि लोगों की सेहत और हाइजीन का कायदे से ख्याल रखना भी है। 4 महीने से भी कम में इनके कार्यकाल में महाराष्ट्र के होटल्स और रेस्टोरेंट्स की सूरत बदल गई है। आम लोग इनकी कार्यशैली से काफी खुश हैं।
1: अंधेरा कितना ही घनघोर क्यों ना हो, एक दिया काफी होता है उस अंधेरे की कालिमा को चीरने के लिए। और उजाले की प्रकृति ही कुछ ऐसी है कि वो व्यवस्था की वस्तु स्थिति को उजागर कर देता है। महाराष्ट्र के एक आईएएस अधिकारी ने अदम्य इच्छा शक्ति, नेक नियति और कर्तव्य निष्ठा के रथ पर सवार होकर व्यवस्थागत नियमों का दीप प्रज्वलित किया तो कई नामचीन संस्थाओं, कंपनियों और हस्तियों के स्याह चेहरे उजागर हो गए। महाराष्ट्र के इस युगांधर आईएएस अधिकारी का नाम है तुकाराम हरिभाऊ मुंडे। एक ऐसा नौकरशाह जिसने अपनी जिम्मेदारियों के तर्जे अमल की बेहतरीन नजीर पेश कर न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि देश भर के ब्यूरोक्रेट्स को बता दिया है कि अगर वो सच्ची निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करें तो करोड़ों हिंदुस्तानियों की बहुत सी दुश्वारियां यूं ही खत्म हो जाएंगी। आपको बता दें कि महाराष्ट्र कैडर के आईएएस ऑफिसर के तौर पर साल 2006 में सोलापुर के असिस्टेंट कलेक्टर के पद पर ज्वाइनिंग के बाद से अब तक तुकाराम मुंडे हर रोज आम लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं सीधे तौर पर सुनते हैं।
2: That's where you pointed out that I meet people during 4 to 5 every day. So that's a connect with the people, and it's a practice I have been doing it since I joined the service, not now. So I believe that if public servant or civil servant is to serve in a public space, so who am I serving? Each and every individual. See, if I do not know or do not meet them, do not connect with them, how would I know what are the issues? What are they facing?
1: 21 साल के प्रशासनिक सफर में 25 से ज्यादा तबादलों का दंश झेल चुके तुकाराम मुंडे को 25 मई 2026 को महाराष्ट्र के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन विभाग के कमिश्नर की जिम्मेदारी सौंपी गई। तुकाराम जब से एफडीए के कमिश्नर बने हैं मिलावटखोर, मुनाफाखोर, धांधलेबाज पनाह मांग रहे हैं। उन्हीं के विभाग के भ्रष्ट, बेईमान और कामचोर मातहत कर्मचारी त्राहिमाम कर रहे हैं, लेकिन जनता बहुत प्रसन्न है। सच कहें तो आम लोगों को पहली बार पता चला है कि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कितने काम का विभाग है। बीते 15 सितंबर को तुकाराम ने सोशल साइट एक्स पर एक पोस्ट कर कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स के अंदर चल रही एक ऐसी धांधली उजागर की है जिसे आम जनता पूरी तरह अनजान थी। अस्पतालों के मेडिकल इक्विपमेंट्स प्रोक्योरमेंट को लेकर तुकाराम मुंडे ने जो खुलासा किया है उसने सनसनी मचा दी है। 15 सितंबर को अपनी एक्स पोस्ट में तुकाराम ने लिखा है, महाराष्ट्र में हॉस्पिटल में इस्तेमाल होने वाली सामग्रियों पर किए गए सर्वे में ये पाया गया कि एक आईवी इन्फ्यूजन सेट की एक्चुअल खरीद करीब 11 रुपए होती है जबकि इस पर MRP 325 रुपए लिखी होती है, यानी 2841% का मार्कअप। बढ़ोतरी, एक सिरिंज 6.75 रुपए में खरीदी जाती है जबकि उस पर MRP लिखी होती है 57.20 रुपए। एक कैथेटर 29.41 रुपए में खरीदा जाता है जबकि उस पर MRP लिखी होती है 310 रुपए। कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स में भर्ती होने वाले मरीज के डिस्चार्ज से पहले परिजनों को जब बिल दिया जाता है तो उसे देखकर उनकी पेशानियों पर पसीने की बूंदें छलकने लगती हैं। उन्हें क्या पता कि इस भारी भरकम बिल के पीछे नौकरशाहों और हॉस्पिटल्स की दुराभिसंधि का हाथ है। बहरहाल अगर तुकाराम जैसे मसीहा के हाथ में कमान हो तो जनता राहत की उम्मीद कर सकती है। महाराष्ट्र FDA की ओर से सामने रखे गए सर्वे के नतीजों के बाद ट्रेड प्रोक्योरमेंट प्राइस और घोषित MRP के बीच अंतर को लेकर स्पष्ट गाइडलाइन बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हॉस्पिटल्स के साथ ही मोटे मुनाफे के लिए जनता की सेहत से खिलवाड़ करने वाले होटल्स, रेस्तरां, कॉन्फेक्शनरीज, डेयरीज, कैफे और फूड एंड एग्रो फैक्ट्रीज पर भी तुकाराम मुंडे कहर बनकर बरस रहे हैं। त्योहारी मौसम में मुनाफाखोरों की चांदी हो जाती है, इसलिए मिलावट का धंधा चरम पर पहुंच जाता है। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की धूम के बीच फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने मुंबई के मशहूर बार और रेस्तरा कैफे मुंडेगर का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया। वजह जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। FDA ने अपनी जांच में पाया कि गर्म खाने की चीजों को जरूरी तापमान 60 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा पर नहीं रखा जा रहा था और कोल्ड स्टोरेज का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से कम पर नहीं रखा जा रहा था। इसके साथ ही खाना बनाने वाली जगह ड्रेनेज सिस्टम तय मानकों के मुताबिक नहीं था, जिससे क्रॉस कंटामिनेशन का खतरा था। सोचिए, सरकार ने पब्लिक हेल्थ को ध्यान में रखकर कितने अच्छे रेगुलेशंस बनाए हैं, पर इन रेगुलेशंस के कंप्लायंस को लेकर नौकरशाहों में इतनी बेफिक्री बेपरवाही है कि रेस्तरा या कैफे मालिकों को कौन कहे, आम जनता भी उदासीन हो जाती है। नतीजा ये होता है कि पैसे देकर होटल्स में खाना खाओ और तोहफे के तौर पर बीमारी घर ले आओ। पर FDA के कमिश्नर के तौर पर तुकाराम ने पूरे देश को चता भी दिया है और बता भी दिया है कि कानून की किताब ठंडे बस्ते में डालने के लिए नहीं होती। क्या तुकाराम से पहले किसी ने सोचा होगा कि भंडारे, महाप्रसाद, लंगर या सामूहिक भोज के लिए भी गाइडलाइंस जारी की जा सकती है? महाराष्ट्र FDA ने इसके लिए भी गाइडलाइंस जारी कर दी है, जिसके मुताबिक भंडारा, महाप्रसाद, लंगर या किसी सामूहिक भोज के आयोजन से कम 7 दिन पहले ऑनलाइन फॉर्म जमा करना पड़ेगा। ऐसे आयोजनों में सिर्फ लाइसेंस प्राप्त कैटरर्स की ही सेवाएं ली जा सकेंगी। खाना बनाने और पीने के लिए साफ या RO वाटर ही इस्तेमाल करना होगा। खाना बनाने और परोसने वाले वॉलेंटियर्स के लिए मास्क, दस्ताने और हेड कैप पहनना जरूरी होगा। भंडारों में आमतौर पर हाइजीन को अनदेखा कर दिया जाता है। इसमें खाना खाने वाले आमतौर पर मुफलिसी के मारे लोग ही होते हैं, इसलिए हाइजीन को लेकर आपत्ति दर्ज कराने का सूरत हाल नहीं होता। पर तुकाराम बचपन में बेबस गुर्बत की कड़वी हकीकत से बाबस्ता हो चुके हैं, इसीलिए गरीबों के दर्द को जानते हैं। वैसे FDA की भंडारे वाली गाइडलाइंस का हर तबके के लोग स्वागत कर रहे हैं।
3: नहीं, ये जो निर्णय लिया है वो अच्छा लिया है, जो भी है वो सबके हित के लिए है। अगर जो भी है वो जो भी भंडारा या जो भी होता है उसमें अगर क्लीननेस रहेगा तो ये सबके हेल्थ के लिए अच्छा है।
4: इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज फॉर द गुड ऑफ द पीपल, गुड ऑफ द कम्युनिटी, और ये एक्सेप्टेबल होना चाहिए। और उनकी जो भी गाइडलाइंस है, ऑफकोर्स वो डिटेल में देखेंगे, जैसे कि हमारा मंडल होता है या ग्रुप्स होते हैं जहां पर ये सारी चीजें होती है, भंडारे एंड ऑल, वो उनको फॉलो करना चाहिए। और ये सभी के लिए है, गवर्नमेंट अगर कुछ पॉलिसीज ला रही है।
1: साफ है कि गरीब या आम जनता की सेहत और स्वास्थ्य को लेकर तुकाराम मुंडे बहुत संवेदनशील हैं। दूसरी ओर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट की अनदेखी करने वाली रसूखदार और पावरफुल लॉबी के खिलाफ एक्शन लेने में वो जरा भी हिचकिचाते नहीं है। अंजाम की परवाह किए बगैर तुकाराम ऐसी लॉबी से सीधा हेड ऑन कर लेते हैं। तुकाराम ने बिमल इलायची का विज्ञापन करने पर बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान समेत अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को 14 अगस्त 2026 को नोटिस भेज दिया था। नोटिस में साफ तौर पर कहा गया कि विज्ञापन में इलायची के नाम पर पान मसाले का प्रमोशन हो रहा है, जबकि महाराष्ट्र में तंबाकू उत्पादों पर बैन है।
2: जो नोटिस इश्यू किया गया है अबाउट एडवर्टाइजिंग रेगुलेशन वायलेशन, उनको नोटिस रेगुलेशन 2018 के हिसाब से दिया गया है और सेक्शन 24 ऑफ फसाई एक्ट जो है उसके हिसाब से दिया गया है, क्योंकि ये गुटखा और जो प्रोडक्ट है महाराष्ट्र में बैन है और उसका एडवर्टाइजिंग ये सरोगेट एडवर्टाइजिंग में आता है, इसलिए हमने उनको नोटिस दिया, उनको टाइम दिया है।
1: साफ है कि निर्भीक तुकाराम रसूखदारों और पावरफुल लॉबीज के खिलाफ एक्शन लेने में जरा भी परहेज नहीं करते, हालांकि उन्हें इस नायकत्व के लिए धमकियां भी मिलती रही हैं। पर जो इंसान कर्तव्य परायणता का दिया अपने हाथों में लेकर लोकहित के अग्निपथ पर निकल जाता है, वो रास्ते में आने वाले सेहरा या बयाबा की परवाह नहीं करता। नियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराने और नियमों की अनदेखी करने वालों पर घास गिराने की वजह से शुरू से ही इनकी राह में कांटे बिछाए जाते रहे हैं, लेकिन एक सच्चे योद्धा की तरह हर मुश्किलों का ये डट कर मुकाबला करते हैं। आत्मा अगर गवाही दे तो बड़े से बड़ा एक्शन लेने से भी परहेज नहीं करते।
2: Once you do that and if you are a public servant, what is my role? That's the question I ask as a public servant. And if my role is to contribute for the betterment of the society, should I trade that part or should I compromise on that part? That was the question I ruminated upon. And the answer I got is I should trade this part, whatever the cost may be. Maybe sometimes it is less or more, whatever it is. That's a choice, and that's a choice I made. And I don't think I regret anything of that today.
1: कहने की जरूरत नहीं कि साल 2026 में लोक सेवा का व्रत लेने के बाद से ही तुकाराम व्यापक जनहित के पथ पर निर्भीक होकर आगे बढ़ रहे हैं। 21 साल के सफर में 25 बार ट्रांसफर की दुश्वारी झेली, लेकिन जहां भी पोस्टिंग हुई, जिस विभाग की भी जिम्मेदारी मिली, पूरी क्रांति ला दी। 25 मई 2026 को FDA कमिश्नर बनने के बाद से ऐसे ऐसे साहसिक काम किए हैं कि नियमों की धजिया उड़ाने वाले पनाह मांग रहे हैं। महाराष्ट्र FDA का कमिश्नर बनने के बाद पहले हफ्ते में ही उन्होंने सब स्टैंडर्ड और मिलावटी सामान बेचने वाले 50 से ज्यादा ठिकानों पर छापे मारे और 100 लोगों को गिरफ्तार किया। उपचार के दावे वाले भ्रामक विज्ञापन दिखाने के आरोप में पतंजलि के आउटलेट पर छापे मारे और 51 लाख रुपए का सामान जब्त कर लिया। ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट जैसी ई कॉमर्स कंपनियों के 86 वेयर हाउसेज की जांच की और नियमों की अनदेखी की वजह से 14 वेयर हाउसेज के लाइसेंस सस्पेंड कर दिए। मुंबई में डोमिनोज पिज्जा के 4 आउटलेट के लाइसेंस सस्पेंड कर दिए। महाराष्ट्र में एनालॉग पनीर यानी बिना डेयरी से बने पनीर पर 1 साल तक के लिए बैन लगा दिया। तुकाराम मुंडे के इन ताबड़तोड़ एक्शन से महाराष्ट्र की आम जनता राहत महसूस कर रही है। दूसरी ओर होटल्स, रेस्तरा, कॉन्फेक्शनरीज, डेयरीज, कैफे और फूड एंड एग्रो फैक्ट्रीज के मालिकों को पहली बार यह एहसास हुआ है कि उनका काम सिर्फ मुनाफा ऐंठना नहीं है, बल्कि लोगों की सेहत का, स्वास्थ्य का भी पूरा ख्याल रखना है।
0: ऐसा नहीं है कि FDA का कमिश्नर बनने के बाद से ही तुकाराम एक्शन मोड में आए हैं। महाराष्ट्र कैडर का IAS अधिकारी बनने के बाद से ही तुकाराम नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों पर वज्रपात करते रहे हैं और इसके लिए कई बार इन्हें धमकियां भी मिली, राह में रोड़े अटकाए गए, लेकिन तमाम चुनौतियों के बाद भी कभी भी अपने कर्तव्य पथ से विचलित नहीं हुए। एक गरीब किसान परिवार में जन्म लेने वाले तुकाराम ने बचपन में गरीबी का दंश झेला है, जीवन की दुश्वार देखी हैं, पैदावार के लिए खेतों में पसीना बहाया है और इसलिए इनका व्यक्तित्व फौलादी हो गया, हालात से हार नहीं मानने का जज्बा पैदा हो गया।

0: तुकाराम मुंढे आज महाराष्ट्र में आइडियल ब्यूरोक्रेसी की मिसाल बन चुके हैं। उनकी ईमानदारी और कर्तव्य परायणता गरीब मजलूम लोगों के स्वास्थ्य और सेहत की उम्मीद की लौ बन चुकी है। जबकि महाराष्ट्र में नियमों की अनदेखी करने वाले फूड और ड्रग बिजनेस से जुड़े प्रतिष्ठानों को हर पल तुकाराम का डर सता रहा है। बतौर एफडीए कमिश्नर 4 महीने से भी कम के इनके कार्यकाल में एफडीए 12,000 से ज्यादा निरीक्षण और छापेमारी कर चुका है। इनमें से 900 से ज्यादा हाई इंपैक्ट रेड्स शामिल हैं। खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता नियमों के उल्लंघन की वजह से महाराष्ट्र में कुल 603 कमर्शियल लाइसेंस सस्पेंड किए जा चुके हैं। मिलावटखोरी, प्रतिबंधित गुटखा या पान मसाला बेचने और नियमों की अनदेखी के मामले में 875 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इतना ही नहीं, एफडीए ने ऐसे मामलों में 650 से ज्यादा एफआईआर भी दर्ज कराई है। तुकाराम की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वे नियमों की अनदेखी करने वाले प्रतिष्ठानों या व्यक्तियों के कद या रसूख से बेपरवाह रहते हैं। एफडीए ने नामी गिरामी फार्मास्यूटिकल कंपनी सिप्ला की पुणे स्थित यूनिट का 26 अगस्त को निरीक्षण किया और पैकेजिंग, स्टोरेज और खरीद बिक्री के रिकॉर्ड्स में गड़बड़ी और अनियमितता पाने पर इस यूनिट का सेल्स लाइसेंस रद्द कर दिया। तुकाराम के ताबड़तोड़ एक्शंस की जद में मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन यानी एमसीए भी आ चुका है। एफडीए ने एमसीए के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में स्थित 5 फूड आउटलेट्स पर 20 अगस्त को छापा मारकर 5 के एफएसएसएआई लाइसेंस सस्पेंड कर दिए। इतने हाई प्रोफाइल प्रतिष्ठानों के खिलाफ एक्शंस होंगे तो मामला कोर्ट में पहुंचेगा ही। एमसीए ने एफडीए के एक्शन के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया तो कोर्ट ने तुकाराम मुंडे को कड़ी फटकार लगा दी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि हम एफडीए को कितनी बार समझा चुके हैं कि मच्छर को तलवार से मत मारो, क्या आप खुद को लॉर्ड समझते हैं कि कुछ भी कर सकते हैं? तुकाराम को फटकार लगाते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनसे ये भी पूछ लिया कि एफडीए सिर्फ निजी संस्थानों पर छापेमारी क्यों कर रहा है, कानून का पालन तो सरकारी परिसरों की कैंटीन्स में भी होना चाहिए। तुकाराम भी कहां मानने वाले थे, उन्होंने अगले ही दिन बॉम्बे हाईकोर्ट कैंपस की 3 कैंटीनों पर रेड कर दी और 2 कैंटीन के लाइसेंस कैंसिल कर दिए।
1: ड्यूरिंग द हियरिंग द क्वेश्चंस वर एज वेदर यू आर टेकिंग एक्शन अगेंस्ट ओनली प्राइवेट और टेकिंग एक्शन अगेंस्ट द एस्टैब्लिशमेंट गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट, वी आर टेकिंग, वी हैव द डेटा टू बैक इट अप एंड इन दैट कोर्स ऑफ इंटरेक्शन सेज दैट हैव यू inspected Mantralaya canteen, so we had already done that. So then have you inspected or visited High Court canteen also, which we had not done. So I said we have not done that, but we have done this one. So High Court expects that it should be visited. Well, fine, next day my team goes and finds it out whatever it is there.
0: बॉम्बे हाई कोर्ट की कैंटीन पर रेड डालकर तुकाराम ने ये साबित कर दिया कि वो अलग ही मिट्टी के बने हैं। आपको बता दें कि इस तरह की चुनौतियां तुकाराम अपने सर्विस पीरियड में अनेकों बार फेस कर चुके हैं। साल 2006 में सोलापुर में बतौर असिस्टेंट कलेक्टर अपनी पहली पोस्टिंग में रेत माफियाओं पर एक्शन लिया तो उन पर जानलेवा हमला हो गया। साल 2007 में नांदेड़ में अवैध रेत खनन के खिलाफ कार्रवाई की तो 5 महीने में तबादला हो गया। 2012 में मुंबई सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट में पोस्टिंग हुई तो टैक्स चोरों से 310 करोड़ रुपए वसूल लिए। साल 2014 में कलेक्टर बनकर दोबारा सोलापुर पहुंचे तो टैंकर माफियाओं की नकेल कस दी, जिसके बाद इन्हें महाराष्ट्र का वाटरमैन कहा जाने लगा। मार्च 2017 में पुणे महानगर परिवहन महामंडल लिमिटेड के चेयरमैन बने तो ड्यूटी से लंबे समय से गायब चल रहे 158 कॉन्ट्रैक्ट ड्राइवरों को एक साथ सस्पेंड कर दिया। साल 2022 में महाराष्ट्र के हेल्थ केयर कमिश्नर बने तो सरकारी डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस बंद करवा दी। कहने की जरूरत नहीं कि तुकाराम मुंडे को जो भी जिम्मेदारी मिली उन्होंने कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी की नई लीक खींच दी। दरअसल इस इंसान का पालन पोषण चांदी के चम्मच से नहीं हुआ है, इनका बचपन बहुत ज्यादा दुश्वारियों और आर्थिक तंगी के बीच बीता है। महाराष्ट्र के बीड जिले के गुमनाम से गांव ताड़सोना के एक गरीब किसान परिवार में 3 जून 1975 को जन्मे तुकाराम के पिता के पास इनके लिए चप्पल खरीदने तक के पैसे नहीं होते थे, लिहाजा ये बिना चप्पल के नंगे पांव स्कूल जाते थे। दिन में पढ़ाई करते थे और रात में खेतों की सिंचाई का काम भी करते थे। क्या आप यकीन करेंगे कि तुकाराम मासूम उम्र में सिर पर सब्जियां रखकर साप्ताहिक बाजार जाते थे और उन्हें बेचकर पैसे ले आते थे ताकि घर की रोजमर्रा की जरूरतें पूरी हो सकें। इतनी हार्डशिप में रहकर भी ये अपने क्लास में टॉप करते थे। तभी तो साल 2005 में तुकाराम ने यूपीएससी क्रैक किया और ऑल इंडिया 20वीं रैंक हासिल की। आज वही ताड़सोना गांव का गुदड़ी का लाल ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा का दिया जलाकर नौकरशाहों को सच्चाई की राह दिखा रहा है।
2: बंदे में है दम में आज आपने महाराष्ट्र के एफडीए कमिश्नर तुकाराम मुंडे के जीवन से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं को देखा। अगले हफ्ते ऐसी ही किसी और बेमिसाल शख्सियत के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
3: कौन सी जन्म की तारीख वाले लोगों को विचित्र बीमारियां हो सकती हैं? कौन सी जन्म की तारीख वाले लोगों को बीमारियों का वहम होता है और कौन सी जन्म की तारीख वाले लोगों के साथ दुर्घटनाएं ज्यादा होती हैं? आपकी जन्म की तारीख के अनुसार क्या है आपकी सेहत का हाल और क्या है सेहत को बेहतर करने के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम
6: देखिए, भारत और अमेरिका के बीच युद्धाभ्यास 2026 का आयोजन चल रहा है। इसमें दोनों देशों के सैनिक अपने अपने पराक्रम और कुशलता का परिचय दे रहे हैं। युद्धाभ्यास 2026 उत्तराखंड के औली और राजस्थान के महाजन फील्ड रेंज में आयोजित किया जा रहा है। इसमें देखिए दोनों देशों के 600 जवान शामिल हो रहे हैं। 9 सितंबर से शुरू हुआ ये युद्धाभ्यास 28 सितंबर तक चलेगा। इसमें दोनों देशों से 600 सैनिक भाग ले रहे हैं। माना यह जा रहा है कि यह अभ्यास भारत अमेरिका रक्षा सहयोग को नई ऊंचाई पर ले जाने वाला कदम है।
7: दुश्मनों की किसी भी चाल को किस तरह नाकाम करना है ये इन जवानों को अच्छे से पता है। आतंकियों के नापाक मंसूबों को किस तरह नेस्तोनाबूद करना है ये इन जवानों के पराक्रमी प्रदर्शन को देखकर समझा जा सकता है। भारतीय सेना के जवानों के जज्बे और शौर्य से पूरी दुनिया अच्छी तरह से वाकिफ है और यही वजह है कि भारतीय सेना और अमेरिका सेना जाबाजी का अभ्यास कर रही है। ये युद्ध अभ्यास दोनों देशों के सैनिक राजस्थान के महाजन फायरिंग रेंज और औली में कर रहे हैं।
8: अमेरिका के बीच युद्धाभ्यास का 22वां संस्करण शुरू हो चुका है और इस बार युद्धाभ्यास की खास बात यह है कि ये एक साथ दो अलग अलग मोर्चों पर किया जा रहा है। भारत और अमेरिका की सेनाएं एक तरफ पाकिस्तान की सीमा के बेहद नजदीक महाजन फील्ड फायरिंग रेंजेस में रेगिस्तान में युद्ध की बारीकियां एक दूसरे से साझा कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नजदीक औली में भारत और अमेरिका के सैनिक एक साथ एक दूसरे को अपने युद्ध कौशल से रूबरू करा रहे हैं। युद्धाभ्यास की खास बात यह भी है कि भारत और अमेरिका के 600 सैनिक एक साथ अलग अलग टेरेन में युद्ध के कौशल सीख रहे हैं और लगातार भारत और अमेरिका के बीच किस तरह से सैन्य तालमेल बढ़ रहा है उसकी वानगी भी पेश कर रहे हैं।
7: इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य पहाड़ी और अर्ध पहाड़ी क्षेत्रों में इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स की संयुक्त क्षमता को बढ़ाना है। यह अभ्यास सिर्फ पारंपरिक प्रशिक्षण नहीं है, बल्कि इसमें ड्रोन और स्वायत्त प्रणालियों के इस्तेमाल पर विशेष जोर दिया जा रहा है। निगरानी और टोही के लिए आधुनिक तकनीक का प्रदर्शन महाजन में चल रहा है। दोनों सेनाओं के विशेषज्ञ मल्टी डोमेन वॉरफेयर यानी कई क्षेत्रों में एक साथ युद्ध की उभरती तकनीकों पर विचार साझा कर रहे हैं। इससे योद्धाओं को वास्तविक युद्ध जैसे हालात का अनुभव मिलेगा। इसके लिए दोनों देशों की सेनाओं ने कमांड पोस्ट एक्सरसाइज, एक्सपर्ट एकेडमिक डिस्कशन और सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट एक्सचेंज भी कर रही है। युद्धाभ्यास का सबसे बड़ा मकसद इंटरऑपरेबिलिटी यानी दोनों सेनाओं के बीच तालमेल बढ़ाना है। भारतीय और अमेरिकी सैनिक एक दूसरे की रणनीति, तकनीक और प्रक्रियाएं सीख रहे हैं और पराक्रम का प्रदर्शन कर रहे हैं। पहाड़ी इलाकों में पैदल सेना आधारित अभियानों पर जोर है, इससे संयुक्त अभियान चलाने की क्षमता मजबूत होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि बदलते वैश्विक सुरक्षा माहौल में ऐसे अभ्यास दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करते हैं। इसी क्रम में महाजन फायरिंग रेंज में M777 अल्ट्रा लाइट होवित्सर तोप से लाइव फायरिंग की गई, जिसमें डायरेक्ट फायरिंग मेथड का इस्तेमाल करके सामने दिख रहे टारगेट पर निशाना साधा गया। इस युद्ध अभ्यास का एक मकसद यह भी है कि मुश्किल परिस्थितियों में काम करने के लिए समझ विकसित करना। जहां संचार व्यवस्था बाधित हो, बिना इंसानी दखल वाले सिस्टम का इस्तेमाल बढ़ रहा हो, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हो रहा हो और इंटेलिजेंस प्रोसेस करने और फैसले लेने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल बढ़ रहा हो। 9 सितंबर से शुरू हुआ ये युद्ध अभ्यास 28 सितंबर तक चलेगा। इसमें दोनों देशों से 600 सैनिक भाग ले रहे हैं। माना जा रहा है कि यह अभ्यास भारत अमेरिका रक्षा सहयोग को नई ऊंचाई पर ले जाने वाला कदम है। कुल मिलाकर यह अभ्यास न सिर्फ सैन्य क्षमता बढ़ाएगा बल्कि आपसी विश्वास और सहयोग को भी मजबूत करेगा। शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
3: किसी जन्म की तारीख वाले लोगों को विचित्र बीमारियां हो सकती हैं।

0: की तारीख के अनुसार क्या है आपकी सेहत का हाल और क्या है सेहत को बेहतर करने के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: ये कहता है
2: कि भाग्य कहीं
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: महाराष्ट्र के चंद्रपुर में सजा तुकुम के राजा का दरबार, श्रद्धालुओं के बीच आकर्षण का केंद्र बनी बप्पा की मनमोहक प्रतिमा, चावल दाल साबूदाना और मूंगफली के दानों से किया गया निर्माण। गणेशोत्सव के दौरान जालना में सजा बप्पा का अनोखा पंडाल, विघ्नहर्ता की पूजा अर्चना के साथ यहां हो रहे हैं रामायण के दर्शन, संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के प्राण बचाते नजर आ रहे हनुमान। गुजरात के गोधरा में निकली गणेश प्रतिमा विसर्जन की भव्य शोभा यात्रा, 1000 से ज्यादा मूर्तियों को विधिवत की गई विदाई, ढोल नगाड़ों के साथ गूंजे गणपति बप्पा मोरिया के जयकारे। राजस्थान के उदयपुर में नारायण सेवा संस्थान ने सामूहिक विवाह समारोह का किया आयोजन, शादी के पवित्र बंधन में बंधे 50 गरीब और दिव्यांग जोड़े, नव विवाहितों को उपहार में दिए गए जरूरी सामान। उत्तराखंड के ऋषिकेश में SDRF टीम ने किया महिला का रेस्क्यू, पहाड़ी से उतरते वक्त नदी के तेज बहाव में फंसी, सूचना के बाद चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। नेशनल पार्क से गांधी सागर में शिफ्ट हुई मादा चीता CCP2, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अभ्यारण्य में किया रिलीज, देश का दूसरा बड़ा चीता घर बना गांधी सागर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
5: Come on,

चीन से जिसने भी हथियार खरीदा उसके सामने पछताने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा। कम कीमत और सस्ती टेक्नोलॉजी के चक्कर में चीन से वेपन तो खरीद लिया गया, लेकिन वो जंग के मैदान में कितना कारगर है इसका पता अब उसके खरीदारों को हो रहा है। यानी कि चीन से डिफेंस डील करने वाले देश के सामने अब सर पीटने के अलावा दूसरा रास्ता नहीं बचा। ना तो चीन की मिसाइलें मंजिल तक पहुँच रही है, न ही उसके टैंक पराक्रम दिखा रहे हैं। चीन के मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम भी लाइव फायर के दौरान खुद तबाह हो चुके हैं। वहीं ऑपरेशन सिंदूर में चीन के एयर डिफेंस सिस्टम का फ्लॉप होना दुनिया ने देख ही लिया।

0: चीन की डुप्लीकेसी के बारे में पूरी दुनिया जानती है और अब तो इसके बाकायदा सबूत मिलने शुरू हो गए हैं, यानी अब दुनिया देख भी रही है। दरअसल हाल ही में सऊदी अरब ने हुती विद्रोहियों पर हमला किया जिसमें उसने DF-15A का इस्तेमाल किया जो कि अपने टारगेट पर पहुंचने से पहले ही फट गई। और आपको ये भी बता दें कि ये वही DF-15A है जो सऊदी अरब ने चीन से ली थी।
1: सोशल मीडिया पर DF-15 मिसाइल के कुछ वीडियोस भी सामने आए हैं। इनमें ये मिसाइल एक रेगिस्तान में पड़ी दिख रही है और कुछ लोग इसे देखते और फिर धकेल कर इधर उधर करते नजर आ रहे हैं। ये लोग हूती लड़ाके और उनके समर्थक बताए गए हैं जो गिरी हुई सऊदी मिसाइल का जायजा ले रहे हैं।

0: दरअसल DF-15 ने शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का बूस्ट रेंज है। अब हाल ही में विश्लेषकों ने जो सऊदी अरब की तरफ से यमन में हमला किया गया था, वहीं से इसके कुछ अवशेष ढूंढे हैं, जिसके बाद और जिसके अध्ययन से ये पता चलता है कि ये चीनी निर्मित ही है।
1: कई रक्षा विशेषज्ञों का दावा है कि ये मिसाइल सऊदी अरब की रॉयल सऊदी स्ट्रेटेजिक मिसाइल फोर्स ने हूती ठिकानों पर दागी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक मिसाइल लक्ष्य से चूक गई और यमन के रेगिस्तान में जा गिरी।
0: अगर मिसाइल दागने की पुष्टि हो जाती है तो ये प्रमाणिक हो जाएगा कि सऊदी अरब ने पहली बार चीनी मिसाइल का इस्तेमाल किया है। हालांकि अभी तक ना तो यमन और ना ही चीन से इसके बारे में कोई भी आधिकारिक जानकारी सामने आई है। सऊदी अरब भी फिलहाल खामोश है।
1: दावा ये किया जा रहा है कि करीब 3 दशक में ये पहली बार हुआ है जब सऊदी फोर्स ने चीन से खरीदी गई DF-15A शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का युद्ध में इस्तेमाल किया है। विश्लेषक इस निष्कर्ष पर इसलिए पहुंचे क्योंकि हूतियों के पास DF-15A जैसी मिसाइल होने के कोई प्रमाण नहीं है। उनके शास्त्रागार में मुख्य रूप से ईरानी तकनीक वाली मिसाइलें और ड्रोन हैं। सऊदी अरब के पास पहले से चीन से खरीदी गई DF-3A और DF-21 जैसी मिसाइलें होने के रिपोर्ट्स लंबे समय से चल रही हैं। लेकिन सऊदी अरब ने DF-15A शॉर्ट रेंज मिसाइल प्रणाली भी चीन से खरीद रखी है। इसकी कोई आधिकारिक जानकारी पहले कभी सामने नहीं आई, इसीलिए कई विशेषज्ञों ने इसे सऊदी की गुप्त मिसाइल क्षमता का हिस्सा माना है। अगर ये सऊदी की मिसाइल थी तो इसका लक्ष्य चूकना सऊदी की गुप्त मिसाइल क्षमता पर सवाल खड़े करता है, साथ ही चीनी हथियारों की विश्वसनीयता पर भी चर्चा छिड़ गई है।
2: देखिए, सबसे पहले ये बात क्लियर है कि सऊदी अरबिया का जो मिसाइल प्रोग्राम है उसकी शुरुआत देखिए चाइना ने की थी, और इसी के तहत चाइना ने अपने तमाम मिसाइलों की जो सप्लाई है वो सऊदी अरबिया को की थी, जिसमें प्रमुख जो मिसाइल्स हैं वो हैं DF-3A और DF-21। ये दोनों मिसाइलें लगातार सऊदी अरबिया के पास बनी हुई है, जिसका वो टाइम टू टाइम इस्तेमाल करता है। जहां तक उसके दूसरी मिसाइल DF-15 अल्फा का सवाल है, जब हूतियों के ऊपर मिसाइल फायर की सऊदी अरब ने तो उसके जो रेमनेंट, उसके जो स्प्रिंटर थे, उससे पता लगा कि सऊदी अरबिया के पास DF-15 अल्फा मिसाइल भी है, जो कि एक बड़ा ही प्रोमिनेंट बैलिस्टिक मिसाइल है। तो इस तरीके के जब आप मिसाइल को फायर करते हैं तो दिखाता है कि आपकी इन्वेंट्री में ये मिसाइल है।
1: सऊदी चीन मिसाइल डील का इतिहास लगभग 40 साल पुराना है और बेहद गोपनीय रहा है। ये रक्षा इतिहास के सबसे दिलचस्प अध्यायों में से एक है, क्योंकि सऊदी अरब पारंपरिक रूप से अमेरिका का सबसे बड़ा हथियार खरीदार रहा है, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए उसने हमेशा चीन पर ही भरोसा किया है। 1980 के दशक के मध्य में जब सऊदी अरब को ईरान इराक युद्ध के दौरान अपनी सुरक्षा को खतरा महसूस हुआ तो उसने अमेरिका से बैलिस्टिक मिसाइलें मांगी। अमेरिका ने इसराइल के विरोध और मध्य पूर्व में हथियारों की होड़ बढ़ने के डर से सऊदी को मिसाइलें देने से मना कर दिया। इसके बाद सऊदी अरब के प्रिंस खालिद बिन सुल्तान, जिन्हें सऊदी मिसाइल प्रोग्राम का जनक कहा जाता है, उन्होंने 1985 में गुप्त रूप से चीन से संपर्क किया। दोनों देशों के बीच तब आधिकारिक राजनयिक संबंध भी नहीं थे। साल 1988 में ये खुलासा हुआ कि सऊदी अरब ने चीन से DF-3A इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल खरीदी है। ये चीन की एक परमाणु सक्षम मिसाइल थी, लेकिन सऊदी अरब को देने के लिए चीन ने इसमें बदलाव कर दिए और इसे सिर्फ कन्वेंशनल पेलोड यानी कि पारंपरिक उच्च विस्फोटक ले जाने लायक ही बना दिया। सऊदी अरब ने मिसाइलों को खरीदने के बाद करीब 26 साल तक दुनिया से इसे छिपा कर रखा और पहली बार 2014 की एक सैन्य परेड में इसे सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया गया।
2: देखिए, सबसे पहले सऊदी अरबिया अमेरिका का बहुत ही स्ट्रॉन्ग एलाई है। सऊदी अरेबिया में अमेरिका के तमाम मिलिट्री बेसिस हैं, लेकिन जहां तक मिलिट्री मिसाइल्स का सवाल है, उसने चाइना की तरफ रुख किया, क्योंकि चाइना उसको एक सस्ती मिसाइल देता है, एक जो उसका कॉस्ट इफेक्टिवनेस होता है। और साथ में ये देखिए, 1980 के दशक में चाइना के सऊदी अरेबिया के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन हुए और वो इतने प्रकार हुए कि तमाम तरीके का इन्वेस्टमेंट चाइना ने किया। इसी के तहत उसने ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में मध्यस्थता की, सऊदी अरेबिया और सीरिया के बीच में मध्यस्थता की। तो ये शुरुआत उसकी 1980 में हुई थी, जिसके तहत उसने DF-3 अल्फा मिसाइल को सप्लाई किया और आज की डेट में वो अन्य तरीके की भी मिसाइलें सऊदी अरेबिया को दिया। तो ये ज्यादा हिस्टोरिक हिस्ट्री में ना जाके ये रिसेंटली 80s के दशक का यह डेवलप।
1: DF-3 मिसाइलें बहुत पुरानी हैं, लिक्विड फ्यूल आधारित थी और उनकी सटीकता बेहद खराब थी, इसीलिए सऊदी अरब को अपनी रणनीतिक क्षमता को आधुनिक बनाने की जरूरत पड़ी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब ने साल 2007 में चीन के साथ एक और गुप्त समझौता किया और अधिक आधुनिक DF-21 मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें खरीदी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA को सऊदी और चीन के बीच DF-21 मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल सौदे की भनक लग गई थी, लेकिन तब उन्होंने ये सुनिश्चित कर लिया था कि ये मिसाइलें भी परमाणु हथियार ले जाने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ पारंपरिक हमलों के लिए ही मॉडिफाई की गई हैं। तो अमेरिका ने इस पर कोई कड़ा विरोध नहीं जताया।
0: हाल ही में यमन के मरी प्रांत में DF-15 ने का मलबा मिलने से इस बात की पुष्टि होती है कि सऊदी अरब चीनी मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि सऊदी अरब भले ही अभी तक इस बात से इनकार करता आया हो, लेकिन इससे एक और बात की पुष्टि होती है और वो ये कि डील का दायरा इससे कहीं ज्यादा बड़ा है।
1: पिछले कुछ वर्षों में अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया कि सऊदी अरब अब सिर्फ चीन से मिसाइलें खरीद नहीं रहा है बल्कि चीन की तकनीकी मदद से अपनी खुद की बैलिस्टिक मिसाइल भी विकसित कर रहा है।
2: देखिए, जहां तक सऊदी अरेबिया के इंडिजिनस डेवलपमेंट का सवाल है मिसाइल के फील्ड में, डेफिनेटली उसकी मदद चाइना कर रहा है और इसी के तहत सऊदी अरेबिया ने सॉलिड फ्यूल मिसाइल डेवलप कर लिया है। उसके यहाँ जो ये मिसाइल बन रही है उसका उस जगह का नाम है अल दवदामी। इस जगह पे उसका मिसाइल प्रोग्राम है और इसकी मदद लगातार चाइना ने की है और जब से युद्ध की शुरुआत किया है उसमें जरूर सेटबैक लग सकता है, लेकिन इसके पहले जब युद्ध नहीं हो रहा था तो चाइना अपने इन्वेस्टमेंट मार्केट और तमाम तरीके के डिफेंस इक्विपमेंट का मार्केट उसने मिडिल ईस्ट को पकड़ा था। तो इसी के तहत लगातार उसने टेक्नोलॉजिकल नोहाउ और जो उसका रॉ मटेरियल है सऊदी अरेबिया को दिया, जिससे कि सऊदी अरेबिया की जो इंडिजिनस मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो आगे बढ़ा और साथ में उसने सॉलिड फ्यूल का मिसाइल डेवलप किया।
1: सऊदी अरब लंबे समय से यमन में हूतियों के खिलाफ हवाई हमले करता रहा है। बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल युद्ध की तीव्रता बढ़ाने के संकेत माने जाते हैं। मारीब क्षेत्र में हाल ही में लड़ाई तेज हुई है और दोनों पक्ष एक दूसरे पर हमले बढ़ा रहे हैं।
0: कम कीमत, मेड इन चाइना, लेकिन शर्तें कड़ी, ये वो तमाम ऐसी चीजें हैं जो चीन हर उस देश पर लगाता है जिसे वो अपने हथियार देता है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर चीन कभी नहीं करता है और इसी के साथ साथ चीन मेंटेनेंस का खर्चा भी बिल्कुल नहीं लेता, यानी जो भी देश हथियार खरीदेगा मेंटेनेंस के लिए उसको वापस चीन का दरवाजा खटखटाना होगा। लेकिन विशेषज्ञ ये कहते हैं कि चीनी हथियार इस वक्त कागजों पर भले ही पुख्ता नजर आ रहे हो, लेकिन रण क्षेत्र में ये पूरी तरह से फिसड्डी साबित हो रहे हैं।
1: ग्लोबल डिफेंस मार्केट में चीन खुद को अमेरिका और रूस के विकल्प के तौर पर पेश करता है। वास्तविक युद्ध में उसकी प्रमुख मिसाइलों का फेल होना चीन के हथियारों की विश्वसनीयता और उनकी तकनीकी गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े करता है। मेड इन चाइना के चक्कर में फंसे बांग्लादेश का हाल देख लीजिए। 9 सितंबर 2026 को चटगांव में फील्ड फायर अभ्यास के दौरान टाइप 59 टैंक में विस्फोट हो गया और जैसे ही टैंक से गोला दागा गया वो बैरल से बाहर निकलने के बजाय टैंक के भीतर ही ब्लास्ट कर गया। इस भीषण विस्फोट के कारण टैंक के क्रू मेंबर्स में 2 बांग्लादेशी जवानों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक वरिष्ठ अधिकारी गंभीर रूप से घायल हो गया।
0: विशेषज्ञों का मानना है कि भले ही तोप और इलेक्ट्रॉनिक्स नया कर दिया गया हो, लेकिन टैंक का मेटल वही पुराना है, यानी 50 साल पुराना। जिसका असर ये हो रहा है कि टैंक बड़े बड़े गोला बारूद को झेल ही नहीं पा रहा। एक बार फायर करने के बाद वो वापस टैंक के अंदर ही विस्फोट करता है। इसका एक जीता जागता उदाहरण हाल फिलहाल में मिला भी है।
2: देखिए टैंक T-59 जो टैंक है वो बहुत ही पुराना टैंक है, चाइनीज ओरिजिन का है। अगर आपने इसको मेंटेन नहीं किया, रिफर्बिश करके आप काम चलाते रहते हैं, तो समय के साथ हर एक इक्विपमेंट की उपयोगिता घटती जाती है, और वो भी ऐसे समय में जब आप उसको ट्रेनिंग पर्पसेस के लिए यूज कर रहे हैं, लगातार उसको अपग्रेड कर रहे हैं और जो उसका मेटलर्जी है वो फेल होता है। देखिए जब ब्रीच प्रेमेच्योर होता है तो उसके कई रीजन होते हैं, एमिशन की भी वजह हो सकती है, जो प्रेशर ब्रीच में जनरेट हुआ उसको सस्टेन नहीं कर पाया, इसका मतलब मेटलर्जी उसकी खराब थी, या फिर उसके बैरल में कोई रेमनेंट रह गया या बैरल क्लीन नहीं हुआ उसकी वजह से प्रीमेच्योर हुआ, तो वजह कुछ भी हो सकती है। जब इस तरीके के लगातार इंसिडेंसेस होते हैं तो बेसिक शक जाता है उसकी मेटलर्जी पे, क्या कितना प्रेशर जनरेट कर रहा है या इरेटिक बिहेवियर ऑफ एमिशन, तो इन सारी चीजों को देखना पड़ेगा।
1: हादसे में शामिल टैंक चीन में बना टाइप 59 है, जिसका इस्तेमाल बांग्लादेश की सेना करती है। टैंक 59 चीन में बना एक पुराना मेन बैटल टैंक है। इसे चीन का पहला ऐसा टैंक भी माना जाता है जिसे बड़ी तादाद में बनाया गया था। बांग्लादेशी सेना के बेड़े में शामिल टाइप 59 दुर्जॉय टैंक मूल रूप से करीब 70 साल पुराना सोवियत डिजाइन है, जिसे चीन ने कॉपी करके बनाया था और बाद में बांग्लादेश को इसे अपग्रेड करके दे दिया। टाई 59 सैन्य टैंक काफी पुराना है, लेकिन समय के साथ इसके कई नए वर्जन और अपग्रेड तैयार किए गए हैं। इनमें ज्यादा बेहतर तोप, फायर कंट्रोल सिस्टम, रात में देखने की सुविधा और टैंक की सुरक्षा बढ़ाने वाले उपकरण जोड़े गए हैं, लेकिन मूल संरचना पुरानी ही रही।
2: जो हादसे हुए T-59 के, आप कितना भी अपग्रेड कर दें लेकिन आप उसकी मेटलर्जी नहीं बदल पाएंगे। जो आयरन है, जो बैरल है 125 mm स्मूथ बोर, उसको आप रिप्लेस नहीं कर पाते। हालांकि जो टैंक है, जब नंबर ऑफ राउंड्स जितने वो फायर कर लेते, उसकी EFC वैल्यू होती है, इक्विवेलेंट फुल चार्ज की वैल्यू होती है, उसमें कितना वियर एंड टियर हुआ, और उसका बैरल भी बदला जाता है, लेकिन उस मेटलर्जी को आप कैसे इंप्रूव करेंगे जो एक पर्टिकुलर तरीके से बनाई गई है, उस कितना प्रेशर जनरेट करा, एमिनिशन जो आप लोड करके फायर कर रहे हैं जब उसका प्रोपेलेंट बर्न होता है तो कितना प्रेशर जनरेट करता है, और क्या वो स्टील या मेटलर्जी उसको सस्टेन कर पा रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये एक आउटडेटेड इक्विपमेंट है, टैंक है।
1: चीनी टैंकों में सेफ्टी फीचर्स और मेटल की क्वालिटी हमेशा से सवालों के घेरे में रही है। जरा सी ओवरहीटिंग या फिर लो क्वालिटी गन बैरल की वजह से गोला अंदर ही ब्लास्ट हो जाता है।
0: बांग्लादेश में हुए टैंक हादसे ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा और साथ ही साथ चीनी हथियारों की विश्वसनीयता पर भी अब सवाल खड़े हो गए हैं। लेकिन यहाँ बांग्लादेश की मजबूरी है, वो चीन के अलावा कहीं और जा नहीं सकता क्योंकि 70% हथियार उसने चीन से ही लिए हैं।
1: बांग्लादेश की सेना रक्षा उपकरणों के लिए बहुत बड़े पैमाने पर चीन पर निर्भर है। सिब्रियानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट और रक्षा विशेषज्ञों की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश दुनिया में चीनी हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है। वो अपनी सैन्य जरूरतों का 72-74% हथियार अकेले चीन से आयात करता है। हाल के वर्षों में खासकर 2024-26 के बीच चीनी हथियारों में लगातार आ रही खराबियों, घटिया कलपुर्जों और चीनी कंपनियों की ओर से मरम्मत के लिए मांगी जाने वाली भारी भरकम कीमत के कारण बांग्लादेशी सेना में असंतोष बढ़ा है, और यही वजह है कि बांग्लादेश अब धीरे धीरे अपनी सैन्य निर्भरता को बांटने के लिए तुर्की और कुछ हद तक पश्चिमी देशों के विकल्पों की तरफ भी हाथ बढ़ा रहा है।
0: चीन अपनी सेना के लिए नए और अपग्रेडेड हथियार बना रहा है, लेकिन ऐसे में जो पुराने हथियारों का जखीरा है वो काफी हद तक चीन के पास बचा हुआ है, जैसे कि टाइप 59 टैंक हो या फिर जेट्स हो। अब इन्हें चीनी कंपनियां थोड़ा अपग्रेड करके बांग्लादेश और अफ्रीकी देशों को कम कीमतों में बेच देती हैं, और यहीं से चीन मुनाफा भी कमा रहा है और दूसरे देशों को कर्जदार भी बना रहा है। बाकी उसके सैन्य उपकरणों पर जो विश्वसनीयता है वो तो दुनिया जानती ही।
1: रक्षा विशेषज्ञ और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीनी हथियारों के नाकाम होने के पीछे कई वजह हैं। पहला है बड़े परीक्षणों का अभाव, अमेरिकी और रूसी हथियारों के उलट चीनी हथियार निर्यात करने से पहले मुश्किल और वास्तविक युद्ध जैसी परिस्थितियों से नहीं गुजरते। दूसरा है गुणवत्ता पर मात्रा को प्राथमिकता। चीन का मेन फोकस हथियारों की विश्वसनीयता और लाइफ साइकिल के बजाय भारी मात्रा में सस्ते हथियार बाजार में उतारने पर है। तीसरा है घटिया पुर्जे और सर्विसिंग। चीनी कंपनियां बिक्री के बाद मेंटेनेंस सपोर्ट देने में नाकाम रहती हैं, जिसे खरीदार देश के पास खराब पुर्जों को बदलने का कोई और विकल्प नहीं बचता। सस्ते होने के कारण जो देश चीनी हथियारों के जाल में फंस रहे हैं, वो अब अंतर्राष्ट्रीय मोर्चों पर इन रक्षा सौदों को लेकर पछता रहे हैं और चीन की वैश्विक साख को इससे धक्का भी लगा है।
2: पूरे विश्व जानता है कि चाइनीज इक्विपमेंट या चाइनीज कोई भी प्रोडक्ट है उसकी रिलायबिलिटी नहीं होती, वो वन टाइम यूज होता है। आपने यूज किया यूज एंड थ्रो टेक्नोलॉजी, तो उसमें क्वालिटी कंट्रोल नहीं होता। बहुत बड़ा आप जो इन्वेस्टमेंट, जो इनपुट का इन्वेस्टमेंट है वो नहीं करते हैं। जब आप इसको डिफेंस के इक्विपमेंट में लागू करते हैं तो आपने मेटलर्जी हो गया, आप सस्ता लोहा, सस्ता मटेरियल, सस्ता एमिनिशन, सस्ते एक्सप्लोसिव, इन सारी चीजों का अगर आप इस्तेमाल करेंगे सिर्फ इस वजह से कि आपको कॉस्ट कटिंग करना है, सिर्फ इस वजह से कि आपको मास प्रोडक्शन करना है, क्योंकि आप मैन्युफैक्चरिंग हब है, डिफेंस के फील्ड में आप आत्मनिर्भर हैं, तो इससे होता यह है कि आपकी क्वालिटी कंप्रोमाइज होती है। और जब वो डिफरेंट डिफरेंट एनवायरमेंट में, डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर में, डिफरेंट डिफरेंट टेरेन में जब उसका इस्तेमाल होता है तो कोई ना कोई हिस्से पुर्जे उसके फेल होते हैं।
1: दिसंबर 2025 में कंबोडिया थाईलैंड में संघर्ष के दौरान एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें दावा यह किया गया था कि चीन का हथियार कैसे युद्ध के मैदान में फ्लॉप साबित हो गया। वीडियो में दावा किया गया कि कंबोडियाई सैनिक जब थाईलैंड पर निशाना लगाने के लिए चीनी रॉकेट लॉन्च कर रहे थे तो उसमें ब्लास्ट हो गया, जिसकी चपेट में कई कंबोडियाई सैनिक आ गए। 8 सैनिकों की तो जान चली गई।
2: देखिए, जहां तक चाइनीज MLRS और 19B रॉकेट सिस्टम का सवाल है, जब इसको लॉन्च किया गया, फायर किया गया, तो ये वर्टिकली अब जाके स्प्लिट हो गया। कहने का मतलब ये है कि जब आपने फायरिंग किया तो इसका जो एमिनिशन है, जो मिसाइल का नोज है, जो सेंसर है, वो पहले से ही एक्टिवेट हो गए, या तो इतने तरीके से सस्टेन फायरिंग में वो इस चीज को बियर नहीं कर पाए, या फिर इतना हीट जनरेट हुआ विद इन द बैरल उसकी वजह से एक्सप्लोजन हुआ। तो चाहे किसी भी वजह से आपका प्रीमेच्योर एक्सप्लोजन हुआ हो, कंबोडियन आर्मी ने इसको सफर किया एट द टाइम ऑफ वॉर। आपको ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा जिसमें रिडंडेंसी हो, जिसमें आप जो रेट ऑफ फायर डिस्क्राइब करें उसको अगर मेंटेन करें तो किसी भी तरीके के हादसे ना हो।
1: कंबोडिया की सेना में चीन से खरीदी गई MLRS टाइप 90B रॉकेट का इस्तेमाल होता है और इसी हथियार को इस्तेमाल थाईलैंड के खिलाफ किया जा रहा था। दरअसल कंबोडिया के साथ युद्ध में थाईलैंड भी चीन से खरीदे गए टैंकों का इस्तेमाल ही कर रहा था। ये टैंक थे VT-4। युद्ध के समय इसकी परीक्षा हुई तो ये फ्लॉप साबित हुआ। VT-4 टैंक का बैरल फट गया, जिससे इसके क्रू मेंबर्स घायल हो गए। हथियारों की ताकत और भरोसे की असली परीक्षा युद्ध के मैदान में होती है और रणभूमि में चीन के हथियारों की विश्वसनीयता क्या है, वो धीरे धीरे दुनिया देख रही है। कंबोडिया के साथ युद्ध में थाई सेना के VT-4 टैंक का बैरल फटना चीन के लिए शर्मनाक है। मेन गन के अलावा टैंक का फायर कंट्रोल से जुड़ा टारगेटिंग सिस्टम और उसका लेजर वार्निंग सिस्टम भी खराब हो गया। ये सिस्टम आधुनिक बख्तरबंद लड़ाई के लिए बहुत जरूरी है, खासकर टारगेट पहचानने, हमले की सटीकता और दुश्मन के लेजर हमले से चेतावनी के लिए।
2: देखिए, जहां तक टैंक टेक्नोलॉजी का सवाल है, उस जब VT-4 टैंक की हम बात करते हैं तो उसको भी काफी तरीके का सेटबैक लगा। मेरा मानना है कि जो मेंटेनेंस टैंक को चाहिए, जो आपको उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना कि कितने राउंड उसने एपी शॉट फायर किए, कितने उसने हीट एमिशन फायर किया, इन सब का रिकॉर्ड रखेंगे तो बेहतर होगा, जिससे कि आप मेटलर्जी कितना वियर एंड टीयर हुआ इसको आप कैलकुलेट कर पाएंगे। और जहां तक उसके लेजर लॉकिंग सिस्टम का सवाल है, जहां तक उसके लॉकिंग सिस्टम का सवाल है, उसको भी आपको एक फूल प्रूफ रखना होगा। ये देखिए, टैंक को सर्वाइव करने के लिए ये सारे सिस्टम काम करने चाहिए। अगर लॉकिंग सिस्टम ही खराब हो जाएगा तो आप कैसे टारगेट को लॉक करके उसके ऊपर फायर करेंगे।
1: VT-4 एक मेन बैटल टैंक है, जिसे चीनी कंपनी नॉरिनको ने बनाया है। चीन ने इस टैंक को पाकिस्तान और थाईलैंड समेत कई देशों को एक्सपोर्ट किया। इस टैंक में 125 mm की स्मूथबोर गन, जो पारंपरिक गोला बारूद के साथ साथ गन से लॉन्च होने वाली गाइडेड प्रोजेक्टाइल भी फायर कर सकती है। इसके साथ ही टैंक में एक डिजिटल फायर कंट्रोल सिस्टम और लेजर वार्निंग रिसीवर जैसे डिफेंसिव सिस्टम भी है, जो युद्ध के दौरान फेल हो गया था। मौजूदा समय में थाई सेना में 62 BT-4 टैंक ऑपरेशन है। इस टैंक का इस्तेमाल पाकिस्तानी सेना भी करती है।
0: एक एक करके चीन के तमाम हथियार फिसड्डी साबित हो रहे। कागजों पर भले ही ये कितने मजबूत हो, लेकिन रणक्षेत्र में ये बिल्कुल जीरो है। और इसका जीता जागता सबूत है पाकिस्तान द्वारा हाल ही में भारत पर किया गया हमला, जहां पर पाकिस्तान ने ड्रोन्स और मिसाइलें दागी थी, जो पूरी तरह से फिसड्डी साबित हुई है। और ये पूरी दुनिया ने देखा भी है।
1: चीन जो खुद अपने तैयार किए गए एयर डिफेंस सिस्टम पर भरोसा नहीं करता है, जिसने अपनी सुरक्षा के लिए खुद रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीद रखा है, उसके यहाँ तैयार एयर डिफेंस सिस्टम पर पाकिस्तान इतरा रहा था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना के पराक्रम के सामने चीन से खरीदे गए HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम की एक नहीं चली। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान के लाहौर में तैनात चीन में बना HQ-9 एयर डिफेंस तबाह कर दिया।
0: पाकिस्तान ने 5 साल पहले चीन के साथ HQ-9 की डील की थी। अब चीन और पाकिस्तान दोनों इस बात का दावा करते हैं कि HQ-9 सीधे रूस के S-400 को टक्कर देता है। अब ये टक्कर कितनी दी गई है, इसका सिर्फ भारत ने ट्रेलर दिखाया है और पाकिस्तान खुद ब खुद पीछे चला गया।
1: चीन के हथियारों की खोखली ताकत को जानने के बावजूद पाकिस्तान चीन से सबसे ज्यादा हथियार खरीदता है। इसके पीछे पाकिस्तान की मजबूरी भी है। वो चीन के कर्ज के जाल में इस कदर फंस चुका है कि उसके पास कोई और विकल्प बचा ही नहीं है। लिहाजा चीन जो भी करता है, पाकिस्तान उसे सर झुकाकर कबूल करता है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के आंकड़ों के मुताबिक साल 2020 से 2024 के बीच में चीन ने पाकिस्तान के 81% आयातित हथियारों की आपूर्ति की है। 2020 से 24 से और 2015 से 19 की तुलना में देखा जाए तो पाकिस्तान ने हथियारों के आयात में 61% की बढ़ोतरी की है। आंकड़ों से साफ है कि चीन पाकिस्तान पर मेहरबान नहीं, बल्कि पाकिस्तान को लूटने खसोटने के लिए अपने कबाड़ हथियारों से थोप रहा है।
2: चाइना लगातार पाकिस्तान को एक टेस्ट बेड मानता है। उसने अपने BRI और CPEC के तरह का इन्वेस्टमेंट करके चाइना ने पूरी तरीके से पाकिस्तान को गुलाम बना रखा है। तमाम तरीके की जो मिलिट्री एड है, तमाम तरीके के एयर डिफेंस, तमाम तरीके के रॉकेट, मिसाइल, टैंक आज की डेट में वो पाकिस्तान को देता है। इसलिए देता है कि जैसे विश्व में दिखा सके कि पाकिस्तान आर्मी इसका इस्तेमाल कर रही है, इसका बखूबी हिंदुस्तान के बरखिलाफ उसने उसका डिप्लॉयमेंट कर रखा है, उसका ऑपरेशनल रेडीनेस 100% है और इसके तहत वो अन्य देशों को अपना सामान भेज सके।
0: रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
5: गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर पर है दुनिया भर में मशहूर तीर्थ स्थल अंबाजी। अंबाजी को देश के 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। अंबाजी में भादरवी महामेले को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। यहां पर यह उत्सव भादरवी महीने में नवमी से पूनम तक यानी 7 दिनों तक बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। मेले में देखिए शुभारंभ होने से माँ अंबे के रथ खींचकर और मंदिर के विद्वान ब्राह्मणों और उनके द्वारा शास्त्रों के अनुसार पूजा अर्चना करके इसकी शुरुआत हुई, ध्वजा चढ़ाई गई, और शक्ति भक्ति और आस्था का संगम अद्भुत देखने को मिला। 20 से 26 सितंबर तक चलने वाले भादरवी महामेले में शामिल होने के लिए 40 लाख से ज्यादा भक्तों के आने की उम्मीद है। ऐसे में मेले के सुचारू आयोजन के लिए 29 कमेटियों और 7,000 कर्मचारियों को तैनात किया गया। सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए 6,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी है।
6: आतुरता पूर्वक राह देखते हैं। ऐसा भादरवी पूनम महामेला 2026 की आज शुरुआत की गई है, जब लाखों की संख्या में माई भक्त अगले 7 दिनों में अंबाजी में आएंगे। उनकी सेवा और सुरक्षा के लिए 7,000 से भी अधिक सरकारी कर्मचारी 24 घंटे परस्पर तैनात रहेंगे। पार्किंग, निःशुल्क भोजन, लॉ एंड ऑर्डर, मंदिर एवं टप्पर संचालन सहित 29 जितनी जिला कक्षा की समितियां भी बनाई गई हैं। तदुपरांत अंबाजी परिसर में 4 जितने किस्म के भोजन केंद्र, अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ 8 जितने रेस्ट रूम यानी कि विश्रामा केंद्र और 40 से अधिक पार्किंग स्थलों की भी पहचान की गई है।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: महाराष्ट्र के चंद्रपुर में सजा तुकुम के राजा का दरबार श्रद्धालुओं के बीच आकर्षण का केंद्र बनी। पप्पा की मनमोहक प्रतिमा चावल, दाल, साबुदाना और मूंगफली के दानों से किया गया निर्माण। इस उत्सव के दौरान जालना में सजा बप्पा का अनोखा पंडाल, विघ्नहर्ता की पूजा अर्चना के साथ यहां हो रहे हैं रामायण के दर्शन, संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के प्राण बचाते नजर आ रहे हनुमान। गुजरात के गोधरा में निकली गणेश प्रतिमा विसर्जन की भव्य शोभा यात्रा, 1,000 से ज्यादा मूर्तियों को विधिवत की गई विदाई, ढोल नगाड़ों के साथ पूजे गणपति बप्पा मोरिया के जयकारे। राजस्थान के उदयपुर में नारायण सेवा संस्थान ने सामूहिक विवाह समारोह का किया आयोजन। शादी के पवित्र बंधन में बंधे 50 करीब और दिव्यांग जोड़े नव विवाहितों को उपहार में दिए गए जरूरी सामान। उत्तराखंड के ऋषिकेश में एसडीआरएफ टीम ने किया महिला का रेस्क्यू, पहाड़ी से उतरते वक्त नदी के तेज बहाव में फंसी, सूचना के बाद चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। नेशनल पार्क से गांधी सागर में शिफ्ट हुई मादा चीता CCP2। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अभ्यारण्य में किया रिलीज, देश का दूसरा बड़ा चीता घर बना गांधी सागर।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम, और मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। एक बार फिर से लेकर एक दमदार शख्सियत का सफरनामा। इस बार जिस निर्भीक शख्सियत का सफरनामा लेकर हम हाजिर हुए हैं, उसने महाराष्ट्र में मिलावटखोरी करने वाली और लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करने वाली लॉबी के खिलाफ ऐलानी जंग कर दिया है। महाराष्ट्र में फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का कमिश्नर बनने के बाद इस शख्स ने अपने ताबड़तोड़ एक्शन से लोगों की सेहत की कीमत पर मुनाफाखोरी करने वाली लॉबी की नींद उड़ा कर रख दी है।

0: आप समझ गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि महाराष्ट्र में फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन विभाग के कमिश्नर तुकाराम मुंडे हैं। महाराष्ट्र की जनता जिन्हें अब सिंघम आईएएस कहने लगी है। 25 मई 2026 को एफडीए के कमिश्नर पद की जिम्मेदारी मिलने के बाद से ही तुकाराम एक्शन मोड में है। इनके कमिश्नर बनने के बाद महाराष्ट्र के होटल्स, रेस्टोरेंट, कैफे और कन्फेक्शनरीज के मालिक और मालकिनों को पहली बार एहसास हुआ कि उनका काम सिर्फ आंखें मूंद कर मुनाफा वसूली करना नहीं है बल्कि लोगों की सेहत और हाइजीन का कायदे से ख्याल रखना भी है। 4 महीने से भी कम में इनके कार्यकाल में महाराष्ट्र के होटल्स और रेस्टोरेंट्स की सूरत बदल गई है। आम लोग इनकी कार्यशैली से काफी खुश हैं।
1: अंधेरा कितना ही घनघोर क्यों ना हो, एक दिया काफी होता है उस अंधेरे की कालिमा को चीरने के लिए। और उजाले की प्रकृति ही कुछ ऐसी है कि वो व्यवस्था की वस्तु स्थिति को उजागर कर देता है। महाराष्ट्र के एक आईएएस अधिकारी ने अदम्य इच्छा शक्ति, नेक नियति और कर्तव्य निष्ठा के रथ पर सवार होकर व्यवस्थागत नियमों का दीप प्रज्वलित किया तो कई नामचीन संस्थाओं, कंपनियों और हस्तियों के स्याह चेहरे उजागर हो गए। महाराष्ट्र के इस युगांधर आईएएस अधिकारी का नाम है तुकाराम हरिभाऊ मुंडे। एक ऐसा नौकरशाह जिसने अपनी जिम्मेदारियों के तर्जे अमल की बेहतरीन नजीर पेश कर न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि देश भर के ब्यूरोक्रेट्स को बता दिया है कि अगर वो सच्ची निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करें तो करोड़ों हिंदुस्तानियों की बहुत सी दुश्वारियां यूं ही खत्म हो जाएंगी। आपको बता दें कि महाराष्ट्र कैडर के आईएएस ऑफिसर के तौर पर साल 2006 में सोलापुर के असिस्टेंट कलेक्टर के पद पर ज्वाइनिंग के बाद से अब तक तुकाराम मुंडे हर रोज आम लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं सीधे तौर पर सुनते हैं।
2: That's where you pointed out that I meet people during 4 to 5 every day. So that's a connect with the people, and it's a practice I have been doing it since I joined the service, not now. So I believe that if public servant or civil servant is to serve in a public space, so who am I serving? Each and every individual. So if I do not know or do not meet them, do not connect with them, how would I know what are the issues? What are they facing?
1: 21 साल के प्रशासनिक सफर में 25 से ज्यादा तबादलों का दंश झेल चुके तुकाराम मुंडे को 25 मई 2026 को महाराष्ट्र के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन विभाग के कमिश्नर की जिम्मेदारी सौंपी गई। तुकाराम जब से एफडीए के कमिश्नर बने हैं मिलावटखोर, मुनाफाखोर, धांधलेबाज पनाह मांग रहे हैं। उन्हीं के विभाग के भ्रष्ट, बेईमान और कामचोर मातहत कर्मचारी त्राहीमाम कर रहे हैं, लेकिन जनता बहुत प्रसन्न है। सच कहें तो आम लोगों को पहली बार पता चला है कि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कितने काम का विभाग है। बीते 15 सितंबर को तुकाराम ने सोशल साइट एक्स पर एक पोस्ट कर कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स के अंदर चल रही एक ऐसी धांधली उजागर की है जिसे आम जनता पूरी तरह अनजान थी। अस्पतालों के मेडिकल इक्विपमेंट्स प्रोक्योरमेंट को लेकर तुकाराम मुंडे ने जो खुलासा किया है उसने सनसनी मचा दी है। 15 सितंबर को अपनी एक्स पोस्ट में तुकाराम ने लिखा है, महाराष्ट्र में हॉस्पिटल में इस्तेमाल होने वाली सामग्रियों पर किए गए सर्वे में ये पाया गया कि एक आईवी इन्फ्यूजन सेट की एक्चुअल खरीद करीब 11 रुपए होती है जबकि इस पर MRP 325 रुपए लिखी होती है, यानी 2,841% का मार्कअप। बढ़ोतरी, एक सिरिंज 6.75 रुपए में खरीदी जाती है जबकि उस पर MRP लिखी होती है 57.20 रुपए। एक कैथेटर 29.41 रुपए में खरीदा जाता है जबकि उस पर MRP लिखी होती है 310 रुपए। कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स में भर्ती होने वाले मरीज के डिस्चार्ज से पहले परिजनों को जब बिल दिया जाता है तो उसे देखकर उनकी पेशानियों पर पसीने की बूंदें छलकने लगती हैं। उन्हें क्या पता कि इस भारी भरकम बिल के पीछे नौकरशाहों और हॉस्पिटल्स की दुराभिसंधि का हाथ है। बहरहाल अगर तुकाराम जैसे मसीहा के हाथ में कमान हो तो जनता राहत की उम्मीद कर सकती है। महाराष्ट्र FDA की ओर से सामने रखे गए सर्वे के नतीजों के बाद ट्रेड प्रोक्योरमेंट प्राइस और घोषित MRP के बीच अंतर को लेकर स्पष्ट गाइडलाइन बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हॉस्पिटल्स के साथ ही मोटे मुनाफे के लिए जनता की सेहत से खिलवाड़ करने वाले होटल्स, रेस्तरां, कॉन्फेक्शनरीज, डेयरीज, कैफे और फूड एंड एग्रो फैक्ट्रीज पर भी तुकारा मुंडे कहर बनकर बरस रहे हैं। त्योहारी मौसम में मुनाफाखोरों की चांदी हो जाती है, इसलिए मिलावट का धंधा चरम पर पहुंच जाता है। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की धूम के बीच फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने मुंबई के मशहूर बार और रेस्तरा कैफे मुंडेगर का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया। वजह जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। FDA ने अपनी जांच में पाया कि गर्म खाने की चीजों को जरूरी तापमान 60 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा पर नहीं रखा जा रहा था और कोल्ड स्टोरेज का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से कम पर नहीं रखा जा रहा था। इसके साथ ही खाना बनाने वाली जगह ड्रेनेज सिस्टम तय मानकों के मुताबिक नहीं था, जिससे क्रॉस कंटामिनेशन का खतरा था। सोचिए, सरकार ने पब्लिक हेल्थ को ध्यान में रखकर कितने अच्छे रेगुलेशंस बनाए हैं, पर इन रेगुलेशंस के कंप्लायंस को लेकर नौकरशाहों में इतनी बेफिक्री बेपरवाही है कि रेस्तरा या कैफे मालिकों को कौन कहे, आम जनता भी उदासीन हो जाती है। नतीजा ये होता है कि पैसे देकर होटल्स में खाना खाओ और तोहफे के तौर पर बीमारी घर ले आओ। पर FDA के कमिश्नर के तौर पर तुकाराम ने पूरे देश को चता भी दिया है और बता भी दिया है कि कानून की किताब ठंडे बस्ते में डालने के लिए नहीं होती। क्या तुकाराम से पहले किसी ने सोचा होगा कि भंडारे, महाप्रसाद, लंगर या सामूहिक भोज के लिए भी गाइडलाइंस जारी की जा सकती है? महाराष्ट्र FDA ने इसके लिए भी गाइडलाइंस जारी कर दी है, जिसके मुताबिक भंडारा, महाप्रसाद, लंगर या किसी सामूहिक भोज के आयोजन से कम 7 दिन पहले ऑनलाइन फॉर्म जमा करना पड़ेगा। ऐसे आयोजनों में सिर्फ लाइसेंस प्राप्त कैटरर्स की ही सेवाएं ली जा सकेंगी। खाना बनाने और पीने के लिए साफ या RO वाटर ही इस्तेमाल करना होगा। खाना बनाने और परोसने वाले वॉलेंटियर्स के लिए मास्क, दस्ताने और हेड कैप पहनना जरूरी होगा। भंडारों में आमतौर पर हाइजीन को अनदेखा कर दिया जाता है। इसमें खाना खाने वाले आमतौर पर मुफलिसी के मारे लोग ही होते हैं, इसलिए हाइजीन को लेकर आपत्ति दर्ज कराने का सूरते हाल नहीं होता। पर तुकाराम बचपन में बेबस गुर्बत की कड़वी हकीकत से बाबस्ता हो चुके हैं, इसीलिए गरीबों के दर्द को जानते हैं। वैसे FDA की भंडारे वाली गाइडलाइंस का हर तबके के लोग स्वागत कर रहे हैं।
3: नहीं, ये जो निर्णय लिया है वो अच्छा लिया है, जो भी है वो सबके हित के लिए ही है। अगर जो भी और जो भी भंडारा या जो भी होता है उसमें अगर क्लीननेस रहेगा तो ये सबके हेल्थ के लिए अच्छा है।
4: इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज फॉर द गुड ऑफ द पीपल, गुड ऑफ द कम्युनिटी, और ये एक्सेप्टेबल होना चाहिए। और उनकी जो भी गाइडलाइंस है ऑफकोर्स वो डिटेल में देखेंगे, जैसे कि हमारा मंडल होता है या ग्रुप्स होते हैं जहां पर ये सारी चीजें होती है, भंडारे एंड ऑल, वो उनको फॉलो करना चाहिए। और ये सभी के लिए है, गवर्नमेंट अगर कुछ पॉलिसीज ला रही है।
1: साफ है कि गरीब या आम जनता की सेहत और स्वास्थ्य को लेकर तुकाराम मुंडे बहुत संवेदनशील हैं। दूसरी ओर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट की अनदेखी करने वाली रसूखदार और पावरफुल लॉबी के खिलाफ एक्शन लेने में वो जरा भी हिचकिचाते नहीं हैं। अंजाम की परवाह किए बगैर तुकाराम ऐसी लॉबी से सीधा हेड ऑन कर लेते हैं। तुकाराम ने विमल इलायची का विज्ञापन करने पर बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान समेत अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को 14 अगस्त 2026 को नोटिस भेज दिया था। नोटिस में साफ तौर पर कहा गया कि विज्ञापन में इलायची के नाम पर पान मसाले का प्रमोशन हो रहा है, जबकि महाराष्ट्र में तंबाकू उत्पादों पर बैन है।
2: जो नोटिस इश्यू किया गया है अबाउट एडवर्टाइजिंग रेगुलेशन वायलेशन, उनको नोटिस रेगुलेशन 2018 के हिसाब से दिया गया है और सेक्शन 24 ऑफ फसाई एक्ट जो है उसके हिसाब से दिया गया है, क्योंकि ये गुटखा और जो प्रोडक्ट है महाराष्ट्र में बैन है और उसका एडवर्टाइजिंग ये सरोगेट एडवर्टाइजिंग में आता है, इसलिए हमने उनको नोटिस दिया, उनको टाइम दिया है।
1: साफ है कि निर्भीक तुकाराम रसूखदारों और पावरफुल लॉबीज के खिलाफ एक्शन लेने में जरा भी परहेज नहीं करते, हालांकि उन्हें इस नायकत्व के लिए धमकियां भी मिलती रही हैं। पर जो इंसान कर्तव्य परायणता का दिया अपने हाथों में लेकर लोकहित के अग्निपथ पर निकल जाता है, वो रास्ते में आने वाले सेहरा या बयाबा की परवाह नहीं करता। नियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराने और नियमों की अनदेखी करने वालों पर घास गिराने की वजह से शुरू से ही इनकी राह में कांटे बिछाए जाते रहे हैं, लेकिन एक सच्चे योद्धा की तरह हर मुश्किलों का ये डट कर मुकाबला करते हैं। आत्मा अगर गवाही दे तो बड़े से बड़ा एक्शन लेने से भी परहेज नहीं करते।
2: Once you do that and if you are a public servant, what is my role? That's the question I ask as a public servant. And if my role is to contribute for the betterment of the society, should I trade that part or should I compromise on that part? That was the question I ruminated upon. And the answer I got is I should trade this part, whatever the cost may be. Maybe sometimes it is less or more, whatever it is. That's a choice, and that's a choice I made. And I don't think I regret anything of that today.
1: कहने की जरूरत नहीं कि साल 2026 में लोक सेवा का व्रत लेने के बाद से ही तुकाराम व्यापक जनहित के पथ पर निर्भीक होकर आगे बढ़ रहे हैं। 21 साल के सफर में 25 बार ट्रांसफर की दुश्वारी झेली, लेकिन जहां भी पोस्टिंग हुई, जिस विभाग की भी जिम्मेदारी मिली, पूरी क्रांति ला दी। 25 मई 2026 को FDA कमिश्नर बनने के बाद से ऐसे ऐसे साहसिक काम किए हैं कि नियमों की धजिया उड़ाने वाले पनाह मांग रहे हैं। महाराष्ट्र FDA का कमिश्नर बनने के बाद पहले हफ्ते में ही उन्होंने सब स्टैंडर्ड और मिलावटी सामान बेचने वाले 50 से ज्यादा ठिकानों पर छापे मारे और 100 लोगों को गिरफ्तार किया। उपचार के दावे वाले भ्रामक विज्ञापन दिखाने के आरोप में पतंजलि के आउटलेट पर छापे मारे और 51 लाख रुपए का सामान जब्त कर लिया। ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट जैसी ई कॉमर्स कंपनियों के 86 वेयर हाउसेज की जांच की और नियमों की अनदेखी की वजह से 14 वेयर हाउसेज के लाइसेंस सस्पेंड कर दिए। मुंबई में डोमिनोज पिज्जा के 4 आउटलेट के लाइसेंस सस्पेंड कर दिए। महाराष्ट्र में एनालॉग पनीर यानी बिना डेयरी से बने पनीर पर 1 साल तक के लिए बैन लगा दिया। तुकाराम मुंडे के इन ताबड़तोड़ एक्शन से महाराष्ट्र की आम जनता राहत महसूस कर रही है। दूसरी ओर होटल्स, रेस्तरा, कॉन्फेक्शनरीज, डेयरीज, कैफे और फूड एंड एग्रो फैक्ट्रीज के मालिकों को पहली बार यह एहसास हुआ है कि उनका काम सिर्फ मुनाफा ऐंठना नहीं है, बल्कि लोगों की सेहत का, स्वास्थ्य का भी पूरा ख्याल रखना है।
0: ऐसा नहीं है कि FDA का कमिश्नर बनने के बाद से ही तुकाराम एक्शन मोड में आए हैं। महाराष्ट्र कैडर का IAS अधिकारी बनने के बाद से ही तुकाराम नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों पर वज्रपात करते रहे हैं और इसके लिए कई बार इन्हें धमकियां भी मिली, राह में रोड़े अटकाए गए, लेकिन तमाम चुनौतियों के बाद भी कभी भी अपने कर्तव्य पद से विचलित नहीं हुए। एक गरीब किसान परिवार में जन्म लेने वाले तुकाराम ने बचपन में गरीबी का दंश झेला है, जीवन की दुश्वारी देखी हैं, पैदावार के लिए खेतों में पसीना बहाया है और इसलिए इनका व्यक्तित्व फौलादी हो गया, हालात से हार नहीं मानने का जज्बा पैदा हो गया।

0: तुकाराम मुंढे आज महाराष्ट्र में आइडियल ब्यूरोक्रेसी की मिसाल बन चुके हैं। उनकी ईमानदारी और कर्तव्य परायणता गरीब मजलूम लोगों के स्वास्थ्य और सेहत की उम्मीद की लौ बन चुकी है। जबकि महाराष्ट्र में नियमों की अनदेखी करने वाले फूड और ड्रग बिजनेस से जुड़े प्रतिष्ठानों को हर पल तुकाराम का डर सता रहा है। बतौर एफडीए कमिश्नर 4 महीने से भी कम के इनके कार्यकाल में एफडीए 12,000 से ज्यादा निरीक्षण और छापेमारी कर चुका है। इनमें से 900 से ज्यादा हाई इंपैक्ट रेट्स शामिल हैं। खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता नियमों के उल्लंघन की वजह से महाराष्ट्र में कुल 603 कॉमर्शियल लाइसेंस सस्पेंड किए जा चुके हैं। मिलावटखोरी, प्रतिबंधित गुटखा या पान मसाला बेचने और नियमों की अनदेखी के मामले में 875 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इतना ही नहीं, एफडीए ने ऐसे मामलों में 650 से ज्यादा एफआईआर भी दर्ज कराई है। तुकाराम की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वे नियमों की अनदेखी करने वाले प्रतिष्ठानों या व्यक्तियों के कद या रसूख से बेपरवाह रहते हैं। एफडीए ने नामी गिरामी फार्मास्यूटिकल कंपनी सिप्ला की पुणे स्थित यूनिट का 26 अगस्त को निरीक्षण किया और पैकेजिंग, स्टोरेज और खरीद बिक्री के रिकॉर्ड्स में गड़बड़ी और अनियमितता पाने पर इस यूनिट का सेल्स लाइसेंस रद्द कर दिया। तुकाराम के ताबड़तोड़ एक्शंस की जद में मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन यानी एमसीए भी आ चुका है। एफडीए ने एमसीए के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में स्थित 5 फूड आउटलेट्स पर 20 अगस्त को छापा मारकर 5 के एफएसएसएआई लाइसेंस सस्पेंड कर दिए। इतने हाई प्रोफाइल प्रतिष्ठानों के खिलाफ एक्शंस होंगे तो मामला कोर्ट में पहुंचेगा ही। एमसीए ने एफडीए के एक्शन के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया तो कोर्ट ने तुकाराम मुंडे को कड़ी फटकार लगा दी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि हम एफडीए को कितनी बार समझा चुके हैं कि मच्छर को तलवार से मत मारो, क्या आप खुद को लॉर्ड समझते हैं कि कुछ भी कर सकते हैं? तुकाराम को फटकार लगाते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनसे ये भी पूछ लिया कि एफडीए सिर्फ निजी संस्थानों पर छापेमारी क्यों कर रहा है, कानून का पालन तो सरकारी परिसरों की कैंटीन्स में भी होना चाहिए। तुकाराम भी कहां मानने वाले थे, उन्होंने अगले ही दिन बॉम्बे हाईकोर्ट कैंपस की 3 कैंटीनों पर रेड कर दी और 2 कैंटीन के लाइसेंस कैंसिल कर दिए।
1: ड्यूरिंग द हियरिंग द क्वेश्चंस वर एज वेदर यू आर टेकिंग एक्शन अगेंस्ट ओनली प्राइवेट और टेकिंग एक्शन अगेंस्ट एस्टैब्लिशमेंट गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट, वी आर टेकिंग, वी हैव द डेटा टू बैक इट अप, एंड इन दैट कोर्स ऑफ इंटरेक्शन सेज हैव यू inspected Mantralaya canteen, so we had already done that, so then have you inspected or visited High Court canteen also, which we had not done, so I said we have not done that but we have done this one, so High Court expects that it should be visited. Well, fine, next day my team goes and finds it out whatever it is there.
0: बॉम्बे हाई कोर्ट की कैंटीन पर रेड डालकर तुकाराम ने ये साबित कर दिया कि वो अलग ही मिट्टी के बने हैं। आपको बता दें कि इस तरह की चुनौतियां तुकाराम अपने सर्विस पीरियड में अनेकों बार फेस कर चुके हैं। साल 2006 में सोलापुर में बतौर असिस्टेंट कलेक्टर अपनी पहली पोस्टिंग में रेत माफियाओं पर एक्शन लिया तो उन पर जानलेवा हमला हो गया। साल 2007 में नांदेड़ में अवैध रेत खनन के खिलाफ कार्रवाई की तो 5 महीने में तबादला हो गया। 2012 में मुंबई सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट में पोस्टिंग हुई तो टैक्स चोरों से 310 करोड़ रुपए वसूल लिए। साल 2014 में कलेक्टर बनकर दोबारा सोलापुर पहुंचे तो टैंकर माफियाओं की नकेल कस दी, जिसके बाद इन्हें महाराष्ट्र का वाटरमैन कहा जाने लगा। मार्च 2017 में पुणे महानगर परिवहन महामंडल लिमिटेड के चेयरमैन बने तो ड्यूटी से लंबे समय से गायब चल रहे 158 कॉन्ट्रैक्ट ड्राइवरों को एक साथ सस्पेंड कर दिया। साल 2022 में महाराष्ट्र के हेल्थ केयर कमिश्नर बने तो सरकारी डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस बंद करवा दी। कहने की जरूरत नहीं कि तुकाराम मुंडे को जो भी जिम्मेदारी मिली उन्होंने कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी की नई लीक खींच दी। दरअसल इस इंसान का पालन पोषण चांदी के चम्मच से नहीं हुआ है, इनका बचपन बहुत ज्यादा दुश्वारियों और आर्थिक तंगी के बीच बीता है। महाराष्ट्र के बीड जिले के गुमनाम से गांव ताड़सोना के एक गरीब किसान परिवार में 3 जून 1975 को जन्मे तुकाराम के पिता के पास इनके लिए चप्पल खरीदने तक के पैसे नहीं होते थे, लिहाजा ये बिना चप्पल के नंगे पांव स्कूल जाते थे। दिन में पढ़ाई करते थे और रात में खेतों की सिंचाई का काम भी करते थे। क्या आप यकीन करेंगे कि तुकाराम
2: कौन सी जन्म की तारीख वाले लोगों को विचित्र बीमारियां हो सकती हैं? कौन सी जन्म की तारीख वाले लोगों को बीमारियों का वहम होता है और कौन सी जन्म की तारीख वाले लोगों के साथ दुर्घटनाएं ज्यादा होती हैं? आपकी जन्म की तारीख के अनुसार क्या है आपकी सेहत का हाल और क्या है सेहत को बेहतर करने के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है
7: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे,
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
10: देखिए। भारत और अमेरिका के बीच युद्धाभ्यास 2026 का आयोजन चल रहा है, इसमें दोनों देशों के सैनिक अपने अपने पराक्रम और कुशलता का परिचय दे रहे हैं। युद्धाभ्यास 2026 उत्तराखंड के औली और राजस्थान के महाजन फील्ड रेंज में आयोजित किया जा रहा है। इसमें देखिए दोनों देशों के 600 जवान शामिल हो रहे हैं। 9 सितंबर से शुरू हुआ ये युद्धाभ्यास 28 सितंबर तक चलेगा। इसमें दोनों देशों से 600 सैनिक भाग ले रहे हैं। माना यह जा रहा है कि यह अभ्यास भारत अमेरिका रक्षा सहयोग को नई ऊंचाई पर ले जाने वाला कदम है।
11: दुश्मनों की किसी भी चाल को किस तरह नाकाम करना है ये इन जवानों को अच्छे से पता है। आतंकियों के नापाक मंसूबों को किस तरह नेस्तोनाबूद करना है ये इन जवानों के पराक्रमी प्रदर्शन को देखकर समझा जा सकता है। भारतीय सेना के जवानों के जज्बे और शौर्य से पूरी दुनिया अच्छी तरह से वाकिफ है और यही वजह है कि भारतीय सेना और अमेरिका सेना जाबाजी का अभ्यास कर रही है। ये युद्ध अभ्यास दोनों देशों के सैनिक राजस्थान के महाजन फायरिंग रेंज और औली में कर रहे हैं।
12: अमेरिका के बीच युद्धाभ्यास का 22वां संस्करण शुरू हो चुका है और इस बार युद्धाभ्यास की खास बात यह है कि ये एक साथ दो अलग अलग मोर्चों पर किया जा रहा है। भारत और अमेरिका की सेनाएं एक तरफ पाकिस्तान की सीमा के बेहद नजदीक महाजन फील्ड फायरिंग रेंजेस में रेगिस्तान में युद्ध की बारीकियां एक दूसरे से साझा कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नजदीक औली में भारत और अमेरिका के सैनिक एक साथ एक दूसरे को अपने युद्ध कौशल से रूबरू करा रहे हैं। युद्धाभ्यास की खास बात यह भी है कि भारत और अमेरिका के 600 सैनिक एक साथ अलग अलग टेरेन में युद्ध के कौशल सीख रहे हैं और लगातार भारत और अमेरिका के बीच किस तरह से सैन्य तालमेल बढ़ रहा है उसकी वानगी भी पेश कर रहे हैं।
11: इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य पहाड़ी और अर्ध पहाड़ी क्षेत्रों में इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स की संयुक्त क्षमता को बढ़ाना है। यह अभ्यास सिर्फ पारंपरिक प्रशिक्षण नहीं है बल्कि इसमें ड्रोन और स्वायत्त प्रणालियों के इस्तेमाल पर विशेष जोर दिया जा रहा है। निगरानी और टोही के लिए आधुनिक तकनीक का प्रदर्शन महाजन में चल रहा है। दोनों सेनाओं के विशेषज्ञ मल्टी डोमेन वॉरफेयर यानी कई क्षेत्रों में एक साथ युद्ध की उभरती तकनीकों पर विचार साझा कर रहे हैं। इससे योद्धाओं को वास्तविक युद्ध जैसे हालात का अनुभव मिलेगा। इसके लिए दोनों देशों की सेनाओं ने कमांड पोस्ट एक्सरसाइज, एक्सपर्ट एकेडमिक डिस्कशन और सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट एक्सचेंज भी कर रही है। युद्धाभ्यास का सबसे बड़ा मकसद इंटर ऑपरेबिलिटी यानी दोनों सेनाओं के बीच तालमेल बढ़ाना है। भारतीय और अमेरिकी सैनिक एक दूसरे की रणनीति, तकनीक और प्रक्रियाएं सीख रहे हैं और पराक्रम का प्रदर्शन कर रहे हैं। पहाड़ी इलाकों में पैदल सेना आधारित अभियानों पर जोर है, इससे संयुक्त अभियान चलाने की क्षमता मजबूत होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि बदलते वैश्विक सुरक्षा माहौल में ऐसे अभ्यास दोनों देशों के रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करते हैं। इसी क्रम में महाजन फायरिंग रेंज में M777 अल्ट्रा लाइट होवित्सर तोप से लाइव फायरिंग की गई, जिसमें डायरेक्ट फायरिंग मेथड का इस्तेमाल करके सामने दिख रहे टारगेट पर निशाना साधा गया। इस युद्ध अभ्यास का एक मकसद यह भी है कि मुश्किल परिस्थितियों में काम करने के लिए समझ विकसित करना, जहां संचार व्यवस्था बाधित हो, बिना इंसानी दखल वाले सिस्टम का इस्तेमाल बढ़ रहा हो, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हो रहा हो और इंटेलिजेंस प्रोसेस करने और फैसले लेने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल बढ़ रहा हो। 9 सितंबर से शुरू हुआ ये युद्ध अभ्यास 28 सितंबर तक चलेगा। इसमें दोनों देशों से 600 सैनिक भाग ले रहे हैं। माना जा रहा है कि यह अभ्यास भारत अमेरिका रक्षा सहयोग को नई ऊंचाई पर ले जाने वाला कदम है। कुल मिलाकर यह अभ्यास न सिर्फ सैन्य क्षमता बढ़ाएगा बल्कि आपसी विश्वास और सहयोग को भी मजबूत करेगा। शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
13: और दुर्भाग्य कहता है
14: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
15: अविश्वास में विश्वास बसता है,
16: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
17: गुड न्यूज टुडे।
2: कौन सी जन्म की तारीख वाले लोगों को विचित्र बीमारियां हो सकती हैं? कौन सी जन्म की तारीख वाले लोगों को बीमारियों का वहम होता है, और कौन सी जन्म की तारीख वाले लोगों के साथ दुर्घटनाएं ज्यादा होती हैं? आपकी जन्म की तारीख के अनुसार क्या है आपकी सेहत का हाल और क्या है सेहत को बेहतर करने के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
18: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
18: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना